0: नंबर एक क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर वन डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल।
1: हमारे आंदोलन के जो सबसे दो बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, तो उसकी ना किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
2: अब सवाल है कि सरकार शनिवार को मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर क्या फैसला करेगी, जहां प्रधानमंत्री ने गुरुवार की रात वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं और इससे हर छात्र और उसके परिवार को दुख पहुंचा है।
3: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को यह भी लिख चुके हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जहां शुक्रवार को संसद में एक बार फिर सदन चलाने की सत्ता पक्ष की कोशिश नाकाम रही, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले किसी भी तरह की चर्चा को तैयार नहीं है।
4: आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपी हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोना मांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है, तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा।
5: पहली मांग करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा उन पर एक्शन अकाउंटेबिलिटी, और थर्ड दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। दीज आर द थ्री कंडीशंस। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन एनी डिस्कशन।
2: यानी जंतर मंतर से प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद तक प्रदर्शनकारी और विपक्ष जब केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तब सूत्रों के हवाले से खबर यह आती है कि सरकार और पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान काम होगा। दावा है कि सरकार ये मानती है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से भागना सबसे आसान काम होता है। सरकार कहती है कि लोगों ने हमें जनादेश दिया है और हम उसे पूरा करेंगे। सरकार एनटीए की समस्याओं की एक सूची तैयार कर रही है और इनका जल्द ही समाधान भी देगी।
6: हम तो वही सुनेंगे और वही मानेंगे जो आधिकारिक होगा। अब सोर्सेस जिस दिन कैबिनेट हो रही है उस कैबिनेट की ब्रीफिंग एक मंत्री आकर कर रहे हैं, साथ साथ सोर्सेस क्या होते हैं आप बताइए, अंदर क्या हुआ, नीट के इस आंदोलन पर क्या चर्चा हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या चर्चा हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी इन्होंने स्पष्ट तौर पे लगातार ये मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर कोई चर्चा नहीं संभव है।
7: सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्त की। ये सेंटिमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा।
8: छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी संवेदना की भावना के साथ प्रयत्नशील है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया, तो एक तरफ यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है संवेदनशीलता के साथ।
9: सरकार के सूत्र ये कहते हैं कि केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की दोबारा नीट परीक्षा बिना किसी लीक के कराए जाने की तारीफ भी की। सरकार का मानना है कि काम होगा लीक प्रूफ परीक्षा व्यवस्था बनाने से, और अगर अकाउंटेबिलिटी की बात हो तो फिर काम होगा दोषियों को तय समय में सजा दिलाने वाली व्यवस्था को बनाने से। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश भी जारी किया, कैबिनेट में पेपर लीक संशोधन बिल को स्वीकृति भी दिलाई जो अगले सप्ताह पेश होगा।
10: छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था क्या वो पास हुआ है बिल, जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे।
9: नेक्स्ट,
11: मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, और पेपर लीक में
12: कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज।
2: कैबिनेट मीटिंग के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आज कोई पेपर लीक नहीं होगा। असल में सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से देश के छात्रों को दिए गए न्याय के भरोसे और पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त करने वाले बिल को मिली मंजूरी से जुड़ा रहा।
3: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: पेपर लीक से छात्रों को होने वाली परेशानी के मुद्दे पर देश में चलते प्रदर्शन के बीच 21 जुलाई को एनडीए की मीटिंग में पीएम कह चुके हैं पेपर लीक घोर पाप है। इसके बाद 23 जुलाई को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया दोषियों को जल्द सजा देने, केस के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, और फिर गुरुवार रात 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया।
3: पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
2: पेपर लीक को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार फैसले ले रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संशोधन बिल 2024 को कैबिनेट से मिली मंजूरी भी शामिल है, जिसे अब अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। दावा है नए बिल में पेपर लीक माफिया के खिलाफ सजा देने के और कड़े प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में जांच और फैसला करके पेपर लीक के दोषी को सजा दी जाएगी। 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान होगा।
13: मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है, और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा।
9: सरकार सख्त है, निर्णय ले रही है, एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने लगे हैं, लेकिन क्या इससे भी पेपर लीक रुक पाएगा?
14: अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे।
4: अब प्रधानमंत्री जी ने वीडियो डाला, बच्चों से संवाद किया और सरकार का मंशा को बताया, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, ये तो ठीक बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलो, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी रात को क्यों बोले, ये कोई बात नहीं हुआ। इस तरह का नेता प्रतिपक्ष को बहाना ढूंढ करके कटास करने का कोई जरूरत नहीं है, समाधान ढूंढने चाहिए बच्चों का भविष्य के लिए, छात्रों का भविष्य को हम सब मिलकर के अच्छा कैसे कराए इस पे ध्यान देना चाहिए।
15: सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है, अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों का हित हो चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं, उनको जो मार्कशीट दिखाई गई उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद वो फिर वो उनके जो मेल अकाउंट से सब डिलीटेड है विद इन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है इसको हटाना चाहिए सरकार को।
16: युवाओं के आंदोलन पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि वो सही मायने में इस सिस्टम को ठीक करने के हक में। अगर होते तो 5 साल में 17 पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस के शासन में हुए। विपक्षी राज्यों

0: ने जब उनकी सरकारें थी, हमारी सरकार ने तो गंभीरता से लिया भी और कड़ी कार्रवाई भी की है, आगे भी बड़े कदम उठा रहे हैं।
1: जो सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, रात के 12 बजे वो अपने खुद का टेलीप्रॉम्प्टर वीडियो नहीं बना के अगर सदन में आके बोले तो बेटर है। और हमें सिर्फ एक ही चीज सुनना है और कुछ नहीं सुनना है। किस एजुकेशन सेक्रेटरी को आप हटाए, किससे आप क्या करवाए, कहां से आप क्या कॉम्प्रोमाइज कराए, किसको डराए, किसको धमकाए, कितना CRPF लाए, वी आर नॉट बॉदर्ड। ओनली वन थिंग, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन।
2: नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैलेट गन के इस्तेमाल का भी है। राहुल गांधी आज साहिल नाम के छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, दावा किया कि साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। इस आधार पर राहुल ने सरकार पर देश के भविष्य यानी कि छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस दावे को पहले ही खारिज कर चुकी है, वो कह चुकी है कि हम लोग पैलेट गन का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, हमारे पास है ही नहीं।
3: क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ?
4: सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, ये है पैलेट गन।
3: अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक नौजवान को लेकर आए, दावा किया कि छात्रों का समर्थन करने के दौरान इस पर पैलेट गन चलाई गई है।
4: इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है।
3: राहुल गांधी दावा करते हैं कि 20 तारीख को जब दिल्ली में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तभी साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और दावा ये तक कि साहिल को चोट लगी।
4: कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है।
3: साहिल लोचाप दाम का ये नौजवान दिल्ली के निजफगढ़ का रहने वाला है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है। 20 जुलाई को साहिल कॉकरोच पार्टी की तरफ से संसद मार्च में शामिल हुआ और दावा है कि इसी दौरान साहिल पर पैलेट गन चलाई गई।
5: मेरा नाम साहिल है, मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूं, इनकलाब जिंदाबाद।
3: 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी के सौरव दास ने सोशल मीडिया पर पहली बार छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा करते हुए साहिल का वीडियो शेयर किया था। सौरव दास के इस दावे को दिल्ली पुलिस ने खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। साहिल के मामा ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने की बात कही, लेकिन पैलेट गन का नाम नहीं लिया।
6: मैं था साहिल, तो देख के सारे में
7: कटा हुआ था छर्रे, क्या
6: छर्रे छर्रे छर्रे नहीं, आप पूरे मुंह पे आंखों के अंदर पूरी पूरे देख के घबरा गए, क्या क्या नहीं है ये चीज। फिर डॉक्टरों से पता चला कि ये चीज, उन्होंने कहा कि आंख में जाकर आंखों का ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा।
7: यहाँ पर जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि किस चीज का निशान है, क्या है?
6: यहाँ पे बस कुछ नहीं बताया, डॉक्टर ने बस कहा ऑपरेशन होगा, बाकी और कुछ नहीं कहा।
7: ऑपरेशन हो गया या कब?
6: एक ऑपरेशन हो गया था, सुबह हुआ था ऑपरेशन, रात को।
7: आज हुआ है?
6: कल सुबह हुआ था, और मैं रात को लगे थे 1 बजे कराने की टाइम, 6 बजे खत्म हुआ था ऑपरेशन, और उसके बाद एक और ऑपरेशन अब है 2-3 दिन बाद।
7: आँख का ही है? आँख कह रहे हैं आँख बच जाएगी यहाँ पे,
6: नो करें, 1-2% चांस है।
7: निशान देख पा रहे थे उसके?
6: निशान देखे हमने, आंखों में भी देखे हैं, आंखों भी जैसे यहाँ से कट पड़ रहे हैं दोनों।
7: शरीर से जो निकले थे छर्रे, वो आप देख पाए थे? जो निकाला गया?
6: नहीं देखा।
7: डॉक्टर ने, आप लोगों ने पूछा कि हुआ क्या है, क्या लगा इसके शरीर में?
6: बस हाँ पूछा था हमने, सिर्फ इतना बताया वहाँ था उसमें, बस इतना ही बताई थी हमने कि वहाँ
7: क्या लगा है शरीर में, क्या चोट है
6: ये पता, हमें खुद पता नहीं चला क्या ये क्या बताए।
3: आज तक ने ऐसे ही एक 25 साल के प्रदर्शनकारी से भी बात की, जिन्होंने दावा किया है कि उनके मेडिकल लीगल दस्तावेज में पैलेट इंजरी दर्ज है। ये देखिए, 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर शेख इरशाद मंसूरी नाम का नौजवान भी पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ। जबलपुर के पाटन के रहने वाले इरशाद के भाई ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने का दावा किया, लेकिन

0: क्या ये जख्म पैलेट गन की है, इस पर वो कुछ नहीं कहते।
1: 20 तारीख को 8:30 करीब बजे उसके फ्रेंड का फोन आया था हमारे पास, उसी के नंबर से। उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट में थे तो घायल हो गए, इस वजह से हॉस्पिटल आए हैं अभी इलाज के लिए।
2: तो क्या उस समय का क्या माहौल था घर पर?
1: घर में तो बहुत एकदम से टेंशन बन गई थी, सोच में सब लोगों को प्रॉब्लम बनने लगी। पापा जी थे, फिर वहाँ कॉन्टेक्ट किया उनसे तो इलाज के लिए फिर ले गए।
2: क्या बताया कि क्या लगा है, क्या आपको क्या पता चला कि क्या लगा और कैसे हुआ क्या?
1: मेरे को तो उसने वीडियो कॉलिंग की थी अपने दोस्त के जरिए से, तो कुछ उसको चेहरे में लगा, मेरे हिसाब से तो छर्रे वगैरह लगे हैं उसको चेहरे में, जिस चीज के भी हों।
0: पैलेट गन एक स्पेशल तरह की पंप एक्शन गन है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हो चुका है, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर इसके इस्तेमाल के दावे को लेकर सवाल गहरा हो चुका है।
3: पेपर लीक मामले के विरोध में हो रहे प्रदर्शन से जुड़े एक और विवाद से आइए हम आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ने अपने छात्रों और स्टाफ को जंतर मंतर के प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी है डीयू यानी कि। तो इस पर राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए समय आने पर संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय करने की बात कही है।
4: तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है, सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरह देश के कई बड़े शिक्षा संस्थान निशाने पर हैं। वजह जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई छात्रों को एडवाइजरी है, जिसमें छात्रों से विरोध प्रदर्शनों से बचने की सलाह दे दी गई। जेएनयू की एडवाइजरी में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए नई दिल्ली के जंतर मंतर पर या उसके आसपास होने वाली सभाओं में शामिल न होने, न ही वहां जाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रों को जिम्मेदारी से काम लेने की सलाह दी गई। चेतावनी ये दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही यूनिवर्सिटी के आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी छात्रों से जंतर मंतर से दूर रहने की अपील करते हुए इससे पढ़ाई लिखाई और करियर के मौकों पर बुरा असर पड़ने को लेकर चेताया है। कहा है कि जंतर मंतर पर किसी भी तरह की गैर कानूनी भीड़ या प्रदर्शन के कारण कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
5: एडमिनिस्ट्रेशन का भी अगर ऐसा कुछ गाइडलाइन है, मैनेजर जैसे अभी हमने कहा कि हमारे जानकारी में नहीं है, अच्छा। तो मेरे ख्याल से अच्छा है और हम सब स्टूडेंट्स को इसको देखना चाहिए और गौर करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है कि वहाँ पे नहीं जाना है, बचना है या ऐसा कुछ, तो हम उससे एग्री करते हैं।
6: गलत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, सब अच्छा से सब होगा सही, बाकी सब तो गुड ही है।
7: लोग अगर जाएं कहीं तो हम लोग प्रिकॉशन लें, जैसे हम लोग आराम से जाएं, सेफ पीस आंदोलन, पीस मूवमेंट करें, ठीक है। जो भी प्रोटेस्ट करना है पीसफुली करें, आराम से जाए, वहाँ बैठे बात करें, जिससे भी बात करें, कोई ऑफिशियल से एडमिनिस्ट्रेशन है उससे आराम से बात करें, अच्छे से बात करें, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं, हम लोग यही कर सकते हैं। और
0: चर्चा अब ये छिड़ गई कि ये छात्रों को सलाह दी जा रही है या फिर उनको कार्रवाई का डर दिखाकर जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल होने से डीयू और जेएनयू की तरफ से रोका जा रहा है। जेएनयू की पहचान भारत में छात्र आंदोलनों के सबसे अहम केंद्रों में से एक के तौर पर रही है। दशकों से इस कैंपस में शिक्षा नीति और कैंपस के कामकाज से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक के मुद्दों पर प्रदर्शन होते आए, जिससे विरोध प्रदर्शन इसकी सार्वजनिक पहचान का एक खास हिस्सा बने। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जब छात्रों को चेताया तब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर विरोध जताते हुए लिखा है कि छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर धमकाने की हिम्मत कैसे हुई, समय आने पर आपकी जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं एआईयू ने छात्रों से विरोध प्रदर्शन की बजाय परीक्षाओं पर ध्यान देने को कहा है। आईआईटी रुड़की ने भी छात्रों और स्टाफ को सलाह दी, हालांकि बाद में कहा गया कि ऐसे निर्देश हर साल जारी होते हैं।
3: आक्रोश जनता पार्टी की अपील पर देश भर में छात्रों और विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल में प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं का गुस्सा शिक्षा की बदहाल व्यवस्था पर फूटा।
8: से पता गया है?
9: नहीं।
8: घर पे नहीं बताया?
9: नहीं।
8: घर पे क्या बोला है?
9: अभी जाकर बता देंगे, हमें पता नहीं था कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
8: अच्छा, आप रास्ते से निकले, देखा कि हो रहा है, पहुंच गए? आक्रोश देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे?
9: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए, हम उनको जानते भी नहीं थे।
0: लखनऊ के परिवर्तन चौक पर पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। कई छात्राएं घर पर बताकर भी नहीं आई। उनका कहना था कि वो अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही है, आगे नीट परीक्षा देनी है। अगर बार बार पेपर लीक होता रहेगा तो मेहनत करने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा।
10: जब तक इस्तीफा नहीं दे देती है तब तक धरना चलना चाहिए। पिछले 12 साल में 152 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ लिटरली खेला जा रहा है।
9: हमारी भी मांग वही है जो बाकी स्टूडेंट्स की है, जैसे कि पहले तो हमें हमसे माफी मांगनी चाहिए जैसा बर्ताव हमारे साथ किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। और दूसरी बात, दिल्ली पुलिस कुछ कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक वो रिजाइनेशन नहीं देंगे आंदोलन।
0: लखनऊ में इस प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी लखनऊ में परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक मार्च करते हुए पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए।
8: ये जितने स्टूडेंट्स आप यहां देख रहे हैं, लड़के हैं लड़कियां, एक वाइट टर्न दिखाई सामने, ये कुल मिलाकर एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो आपने एक तरफ देखा दिल्ली में और दूसरी तरफ देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में। अगले दो दिन फिर प्रोटेस्ट है। अब देखना यह है कि ये जो प्रोटेस्ट है क्या ये जारी रहेगा और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, इस पर नजर फिलहाल बनी रहेगी, क्योंकि जो गूंज जंतर मंतर से उठी थी वो अब राजधानी पहुंच चुकी है।
0: छात्रों का ऐसा ही प्रदर्शन कोलकाता में भी हुआ है, जहां SFI के कार्यकर्ताओं ने CJP के आंदोलन का समर्थन करते हुए कोलकाता में सड़कों को जाम कर दिया।
11: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर आज SFI द्वारा बुलाई गई छात्र छात्राओं की एक बहुत बड़ी रैली कोलकाता में आयोजन किया गया, जहां सियालदा से लेकर धर्मतला जो सेंट्रल कोलकाता का इलाका है यहां पर आज ये रैली हुआ हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में लोग जो हैं, जो खासकर छात्र छात्राएं हैं, वो हाथ में तिरंगा लिए SFI के फ्लैग लिए यहां आ पहुंचे हैं, अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
0: मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन निकाला। इस प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे भी शामिल होते हैं।
12: लेकिन ये जन की बात है, ये अब दिल्ली वालों को सुनना होगा। मैं तमाम देशभक्तांना सांगतोय की दिल्ली मध्ये या पद्धतीने बेछूट पद्धतीने।
0: भोपाल में पेपर लीक के मुद्दे पर सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए और पेपर लीक को सिस्टम का लीकेज बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। इसमें वो छात्र छात्रा भी शामिल होते हैं जिनकी परीक्षाएं वर्षों से लटकी हुई हैं।
13: भोपाल के नीलम पार्क में इस वक्त अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो युवा हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए छात्र हैं, वो तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं रुकी हुई है वो होनी चाहिए, वक्त पर नतीजे घोषित होने चाहिए, वक्त पे भर्तियां निकलनी चाहिए। ये बताइए जो दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं, जिसके बाद आज आप यहाँ पे इकट्ठा हुए?
14: सर वो सब गलत है, जो भी शिक्षा को लेके जो भी है, ये कोई भी मतलब ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हैं जो लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के स्टूडेंट ही भविष्य है आगे चल के।
0: हैदराबाद की सड़कों पर भी नीट पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश दिखा। पुराने हैदराबाद में इकट्ठा हुए लोग और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया।
15: आज BRS का यूथ विंग ने हैदराबाद के धरना चौक पर भारी विरोध प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं मेरे ठीक बिल्कुल पीछे भारी संख्या में यहां पर BRS के लीडर्स, युवा छात्र के संगठन और साथ ही BRS का युवा मोर्चा यहाँ पर जमा हुए हैं।
16: स्टूडेंट्स का एजुकेशन का मामला है तो मैं पूर्व से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये जो एजुकेशन है इसको सुधारना एक युवा का काम है। युवा जब तक नहीं जागेगा ये एजुकेशन सिस्टम सेट नहीं होगा।
0: नीट पेपर लीक मामले ने शिक्षा की बदहाली को उघाड़ कर रख दिया है, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि पेपर लीक के खिलाफ अब छात्रों के सब्र का बांध टूटने लगा है।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

संदेश कहा, आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद। हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ा रहेगा संवाद। अनशन तोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम वांगचुक का पलटवार, कहा सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिनों तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर है धिक्कार।

सूत्र के मुताबिक इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान। आज दोपहर 3:30 बजे नड्डा और जितेंद्र सिंह से फिर मिलेगा सीजेपी डेलीगेशन। आज तक से बोले अभिजीत दीप के, प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, अहमदाबाद और सूरत में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू, असम में 61 लोगों की मौत।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर फिर वीडियो संदेश जारी किया और पीएम ने अपने कल के वीडियो पर आभार जताया। पीएम ने कहा कि हमारे कल के वीडियो संदेश पर सकारात्मक सुझाव के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कल एक वीडियो जारी किया गया था, आपको अच्छे से याद होगा, मिलियंस में उसके व्यू गए, 300 मिलियन से ज्यादा, जहां उन्होंने सख्त कानून बनाने की बात कही थी और उसके बाद अब ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये उसके बाद वीडियो जारी किया गया। कल देर रात ये वीडियो जारी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और उन्होंने कहा कि कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिला था, हमारा नाता और मजबूत होगा, हमारे वीडियो पर सकारात्मक सुझाव दिए हैं।
1: थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया है। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: वहीं सोनम वांगचुक ने भी नया वीडियो संदेश जारी करते हुए अनशन तोड़ने पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की गर्मी में 26 दिन अनशन करने के बाद भी अगर उन्हें सफाई देनी पड़े कि उनकी सरकार से क्या डील हुई है तो ये शर्म की बात है। 26 दिन अनशन के बाद क्या साबित करना होगा, ये सोनम वांगचुक पूछ रहे हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक ने जब अनशन तोड़ा तो बहुत सारे लोग सवाल उठाने लगे सोनम वांगचुक की ईमानदारी पर।
2: दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूं। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद, क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था, मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है, बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखा कर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से क्यों नहीं तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं आपने देखा होगा, क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठ कर डील करना पड़ता? धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं।
0: तो सरकार और सीजेपी के बीच दो राउंड की बातचीत हो गई है, आज तीसरे दौर की वार्ता है। शुक्रवार को सीजेपी के सौरभ दास आशुतोष रांका से सरकार के दो मंत्री मुलाकात करते दिखे, वो तस्वीर आपने देखी होंगी। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे और सरकार ने इस पर विचार करने के लिए आज तक का वक्त दिया। अब आज दोपहर फिर मुलाकात होनी है। सवाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी मांग को लेकर है, जिस पर ना सीजेपी पीछे हट रही है और ना सरकार पीछे हट रही है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से नहीं कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाएगा। विपक्ष भी चाहता है कि इस्तीफा हो जाए और इसीलिए जंतर मंतर पर धरना जारी है, संसद ठप है।
3: मैंने इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है।
4: 2018 में मंत्री एमजे अकबर का नाम छोड़ दिया जाए तो 12 साल का मोदी सरकार का इतिहास है, किसी मंत्री का कभी इस्तीफा नहीं हुआ। परफॉर्मेंस की कसौटी पर जरूर कसकर मंत्रिमंडल बदलाव में चेहरे बदले गए, तो क्या यही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भी होगा, जहां पहले नीट पेपर लीक को इस्तीफा मांगते हुए भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक अनशन गुरुवार रात तोड़ चुके हैं। जंतर मंतर से अस्पताल पहुंचने के बाद से उनकी मांगों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग धीरे धीरे पहले ही धूमिल हो चुकी थी।
2: उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है,
5: गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड दोज पार्टिसिपेटिंग इन द मार्च टू द पार्लियामेंट ऑन July 20, 2026।
4: बाकी सीजेपी की अगुवाई में चलता धरना जारी है, जहां शुक्रवार दोपहर दूसरी बार सरकार से बातचीत करने सीजेपी के दो प्रतिनिधि पहुंचे। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। 2 घंटे बातचीत चली, 3 मांग 5 सुझाव सीजेपी की तरफ से दिए गए। पेपर लीक की वजह से जान देने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने के साथ 20 तारीख को प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प या हिंसा में किसी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई न होने की 2 मांग तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी और पहली मांग ही सबसे बड़ा पेच बनी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए बिना धरना जंतर मंतर से नहीं हटेगा।
6: नंबर 1 क्या है, सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल।
7: हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा
8: हमारे आंदोलन के जो सबसे 2 बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी तो उसकी ना किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
4: अब सवाल है कि सरकार शनिवार को मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर क्या फैसला करेगी, जहां प्रधानमंत्री ने गुरुवार की रात वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं और इससे हर छात्र और उसके परिवार को दुख पहुंचा है।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को यह भी लिख चुके हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जहां शुक्रवार को संसद में एक बार फिर सदन चलाने की सत्ता पक्ष की कोशिश नाकाम रही, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले किसी भी तरह की चर्चा को तैयार नहीं है।
9: आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपी हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है, तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा।
10: पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion.
4: यानी जंतर मंतर से प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद तक प्रदर्शनकारी और विपक्ष जब केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तब सूत्रों के हवाले से खबर ये आती है कि सरकार और पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान काम होगा। दावा है कि सरकार ये मानती है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से भागना सबसे आसान काम होता है। सरकार कहती है कि लोगों ने हमें जनादेश दिया है और हम उसे पूरा करेंगे। सरकार एनटीए की समस्याओं की एक सूची तैयार कर रही है और इनका जल्द ही समाधान भी देगी।
11: हम तो वही सुनेंगे और वही मानेंगे जो आधिकारिक होगा। अब सोर्सेस जिस दिन कैबिनेट हो रही है उस कैबिनेट की ब्रीफिंग एक मंत्री आकर कर रहे हैं। साथ साथ सोर्सेस क्या होते हैं आप बताइए, अंदर क्या हुआ, नीट के इस आंदोलन पर क्या चर्चा हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या चर्चा हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने स्पष्ट तौर पे लगातार ये मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर कोई चर्चा नहीं संभव है।
12: सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी। ये सेंटिमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा।
13: छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी संवेदना की भावना के साथ प्रयत्नशील है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया, तो एक तरफ यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है संवेदनशीलता के साथ।
0: अब देखिए, सरकार के सूत्र कहते हैं कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की दोबारा नीट परीक्षा बिना किसी लीक कराए जाने पर तारीफ भी की थी। अब सरकार का मानना है कि काम होगा लीक प्रूफ परीक्षा व्यवस्था बनाने से। अगर अकाउंटेबिलिटी की ही बात है तो फिर काम होगा दोषियों को तय समय में सजा दिलाने वाली व्यवस्था को बनाने से, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी किया, कैबिनेट में पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दिलाई जो अगले हफ्ते पेश होगा।
14: क्या छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था क्या वो पास हुआ है बिल जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे?
15: नेक्स्ट, मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और पेपर लीक में
16: कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज।
4: कैबिनेट मीटिंग के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आज कोई पेपर लीक नहीं होगा। असल में सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से देश के छात्रों को दिए गए न्याय के भरोसे और पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त करने वाले बिल को मिली मंजूरी से जुड़ा रहा।
1: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
4: पेपर लीक से छात्रों को होने वाली परेशानी के मुद्दे पर देश में चलते प्रदर्शन के बीच 21 जुलाई को एनडीए की मीटिंग में पीएम कह चुके हैं पेपर लीक घोर पाप है। इसके बाद 23 जुलाई को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया दोषियों को जल्द सजा देने, केस के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, और फिर गुरुवार रात 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया।
1: पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
4: पेपर लीक को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार फैसले ले रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संशोधन बिल 2024 को कैबिनेट से मिली मंजूरी भी शामिल है, जिसे अब अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। दावा है नए बिल में पेपर लीक माफिया के खिलाफ सजा देने के और कड़े प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में जांच और फैसला करके पेपर लीक के दोषी को सजा दी जाएगी। 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान होगा।
1: मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए
17: एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा।
0: तो ये दिख रहा है सरकार सख्त फैसले ले रही है, एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने लगी है, लेकिन क्या इससे भी पेपर लीक रुक जाएगा?
18: अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे।
19: अब प्रधानमंत्री जी ने वीडियो डाला, बच्चों से संवाद किया और सरकार का मंशा को बताया, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, ये तो ठीक बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलो, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी रात को क्यों बोले, ये कोई बात नहीं हुआ। इस तरह का नेता प्रतिपक्ष को बहाना ढूंढ करके कटास करने का कोई जरूरत नहीं है, समाधान ढूंढने चाहिए बच्चों का भविष्य के लिए, छात्रों का भविष्य को हम सब मिलकर के अच्छा कैसे कराए इस पे ध्यान देना चाहिए।
20: सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है, अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों का हित हो चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं, उनको जो मार्कशीट दिखाई गई उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड है विद इन 10 मिनट्स, तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है इसको हटाना चाहिए सरकार को।
21: युवाओं के आंदोलन पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि वो सही मायने में इस सिस्टम को ठीक करने के हक में। अगर होते तो 5 साल में 17 पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस के शासन में हुए, विपक्षी राज्यों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, क्या कदम उठाए अखिलेश जी, क्या कदम उठाए राहुल जी, क्या कदम उठाए बाकी नेताओं ने जब उनकी सरकारें थी? हमारी सरकार ने तो गंभीरता से लिया भी और कड़ी कार्रवाई भी की है, आगे भी बड़े कदम उठा रहे हैं।
22: जो सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, रात के 12 बजे वो अपने खुद का टेलीप्रॉम्प्टर वीडियो नहीं बना के अगर सदन में आके बोले तो बेटर है। और हमें सिर्फ एक ही चीज सुनना है और कुछ नहीं सुनना है, किस एजुकेशन सेक्रेटरी को आप हटाए, किससे आप क्या करवाए, कहां से आप क्या कॉम्प्रोमाइज कराए, किसको डराए, किसको धमकाए, कितना CRPF लाए, वी आर नॉट बॉदर्ड। ओनली वन थिंग, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन।
0: नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा सियासी विवाद पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप से छिड़ता दिख रहा है। राहुल गांधी कल साहिल नाम के छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने दावा किया कि साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। इस आधार पर राहुल गांधी ने सरकार पर देश के भविष्य छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस इस दावे को पहले ही खारिज कर चुकी है।
23: क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ?
24: सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना, ये देखिए ये है पैलेट गन, ये है पैलेट गन।
23: अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक नौजवान को लेकर आए, दावा किया कि छात्रों का समर्थन करने के दौरान इस पर पैलेट गन चलाई गई है।
24: इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है।
23: राहुल गांधी दावा करते हैं कि 20 तारीख को जब दिल्ली में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया तभी साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और दावा ये तक कि साहिल को चोट लगी।
24: कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी, इनकी कोई गलती नहीं।
23: साहिल लोचाब नाम का ये नौजवान दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है। 20 जुलाई को साहिल कॉकरोच पार्टी की तरफ से संसद मार्च में शामिल हुआ और दावा है कि इसी दौरान साहिल पर पैलेट गन चलाई गई।
2: मेरा नाम साहिल है, मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।
23: 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी के सौरव दास ने सोशल मीडिया पर पहली बार छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा करते हुए साहिल का वीडियो शेयर किया था। सौरव दास के इस दावे को दिल्ली पुलिस ने खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। साहिल के मामा ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने की बात कही, लेकिन पैलेट गन का नाम नहीं लिया।
3: मैं था साहिल, तो देख के सारे मेरे यहाँ ब्लड लग रही है,
5: कटा हुआ था छर्रे, क्या
3: छर्रे यहाँ पे पूरे मुंह पे आंखों के अंदर पूरे देख के घबरा गए, क्या है क्या नहीं है ये चीज। फिर डॉक्टरों से पता चला कि ये चीज, उन्होंने कहा कि आंख में लड़के आंखों का ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा।
5: यहाँ पर जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि किस चीज का निशान है, क्या है?
3: यहाँ पे बस कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने, बंद करते ऑपरेशन होगा, बाकी और कुछ नहीं करा।
5: ऑपरेशन हो गया या कब?
3: एक ऑपरेशन हो गया, सुबह हुआ था ऑपरेशन, रात को।
5: आज हुआ है?
3: कल सुबह हुआ था, और मैं रात को लगे थे 1 बजे कराने के टाइम, 6 बजे खत्म हुआ था ऑपरेशन, और उसके बाद एक और ऑपरेशन अब है 2-3 दिन बाद।
5: आँख का ही है? आँख कह रहे हैं आँख बच जाएगी यहाँ पे,
3: नो करें 1-2% चांस है।
5: निशान देख पा रहे थे उससे?
3: निशान देखे हैं मैंने, आंखों में भी देखे हैं, आंखों के जैसे यहाँ से कट पड़ रहे हैं दोनों तरफ।
5: शरीर से जो निकले थे छर्रे वो आप देख पाए थे, जो निकाला गया?
3: नहीं देखा।
5: डॉक्टर ने, आप लोगों ने पूछा कि हुआ क्या है, क्या लगा इसके शरीर में?
3: बस हाँ पूछा था हमने, सिर्फ इतना बताया वहाँ था उसमें, बस इतना ही बताई थी हमने कि वहाँ
5: क्या लगा है शरीर में, क्या चोट है नहीं
3: पता। ये पता, हमें खुद पता नहीं चला क्या ये छे क्या, हम दूसरों को क्या बताए।
23: आज तक ने ऐसे ही एक 25 साल के प्रदर्शनकारी से भी बात की, जिन्होंने दावा किया है कि उनके मेडिकल लीगल दस्तावेज में पैलेट इंजरी दर्ज है। ये देखिए, 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर शेख इरशाद मंसूरी नाम का नौजवान भी पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ। जबलपुर के पाटन के रहने वाले इरशाद के भाई ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने का दावा किया, लेकिन क्या ये जख्म पैलेट गन के हैं, इस पर वो कुछ नहीं कहते।
6: 20 तारीख को 8:30 करीब बजे उसके फ्रेंड का फोन आया था हमारे पास, उसी के नंबर से। उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट में थे तो घायल हो गए, इस वजह से हॉस्पिटल आए हैं अभी इलाज के लिए।
7: क्या माहौल था घर
6: में? तो बहुत एकदम से टेंशन बन गई थी, सोच में सब लोगों को प्रॉब्लम बनने लगी। पापा जी थे, फिर वहाँ कांटेक्ट किया उनसे, तो इलाज के लिए फिर ले गए।
7: क्या बताया कि क्या लगा है, क्या आपको क्या पता चला कि क्या लगा और कैसे हुआ क्या?
6: मेरे को तो उसने वीडियो कॉलिंग की थी अपने दोस्त के जरिए से, तो कुछ उसको चेहरे में लगा, मेरे हिसाब से तो छर्रे वगैरह लगे हैं उसको चेहरे में, जिस चीज के भी हों।
23: पैलेट गन एक स्पेशल तरह की पंप एक्शन गन है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हो चुका है, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर इसके इस्तेमाल के दावे को लेकर सवाल गहरा हो चुका है।
0: पेपर लीक मामले के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से जुड़े एक और विवाद से आपको हम खबरदार करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ने अपने छात्रों और स्टाफ को जंतर मंतर के प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी, तो उस पर राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए समय आने पर संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय करने की बात कही है।
25: तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है, सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान।
23: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरह देश के कई बड़े शिक्षा संस्थान निशाने पर है। वजह जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई छात्रों को एडवाइजरी है, जिसमें छात्रों से विरोध प्रदर्शनों से बचने की सलाह दे दी गई। जेएनयू की एडवाइजरी में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए नई दिल्ली के जंतर मंतर पर या उसके आसपास होने वाली सभाओं में शामिल न होने, न ही वहां जाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रों को जिम्मेदारी से काम लेने की सलाह दी गई। चेतावनी ये दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही यूनिवर्सिटी के आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी छात्रों से जंतर मंतर से दूर रहने की अपील करते हुए इससे पढ़ाई लिखाई और करियर के मौकों पर बुरा असर पड़ने को लेकर चेताया है। कहा है कि जंतर मंतर पर किसी भी तरह की गैर कानूनी भीड़ या प्रदर्शन के कारण कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
26: एडमिनिस्ट्रेशन का भी अगर ऐसा कुछ गाइडलाइन है, मैनेजर जैसे अभी हमने कहा कि हमारे जानकारी में नहीं है। अच्छा।
3: तो मेरे ख्याल से अच्छा है और हम सब स्टूडेंट्स को इसको देखना चाहिए और गौर करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है कि वहाँ पे नहीं जाना है, बचना है या ऐसा कुछ, तो हम उससे एग्री करते हैं।
8: गलत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, सब अच्छा से किए सब होगा सही, बाकी सब तो बोल रही है।
9: लोग अगर जाएं कहीं तो हम लोग प्रिकॉशन लें, जैसे हम लोग आराम से जाएं, सेफ पीस आंदोलन पीस मूवमेंट करें, ठीक है, जो भी प्रोटेस्ट करना है पीसफुली करें, आराम से जाएं, वहाँ बैठे बात करें, जिससे भी बात करें, कोई ऑफिशियल से एडमिनिस्ट्रेशन है उससे आराम से बात करें, अच्छे से बात करें, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं, हम लोग यही कर सकते हैं। और
23: चर्चा अब ये छिड़ गई कि ये छात्रों को सलाह दी जा रही है या फिर उनको कार्रवाई का डर दिखाकर जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल होने से डीयू और जेएनयू की तरफ से रोका जा रहा है। जेएनयू की पहचान भारत में छात्र आंदोलनों के सबसे अहम केंद्रों में से एक के तौर पर रही है। दशकों से इस कैंपस में शिक्षा नीति और कैंपस के कामकाज से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक के मुद्दों पर प्रदर्शन होते आए, जिससे विरोध प्रदर्शन इसकी सार्वजनिक पहचान का एक खास हिस्सा बने। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जब छात्रों को चेताया तब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर विरोध जताते हुए लिखा है कि छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर धमकाने की हिम्मत कैसे हुई, समय आने पर आपकी जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं AIU ने छात्रों से विरोध प्रदर्शन के बजाय परीक्षाओं पर ध्यान देने को कहा है। IIT रुड़की ने भी छात्रों और स्टाफ को सलाह दी, हालांकि बाद में कहा गया कि ऐसे निर्देश हर साल जारी होते हैं।
0: यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
11: No.
12: Oh no.
11: Welcome to Get Real.
12: I got something to say.
11: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
12: Oh my god.
13: It's got to be deliciously desperate.
12: Why do these girls forget her?
26: She has a soft spot for troubled men.
13: Boo bloody.
11: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
12: Love runs deeper than we know.
11: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney Plus.
27: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: रातों में सो जाते हैं? क्यों देव शयनी एकादशी से शुभ कार्य बंद हो जाते हैं? देव शयनी एकादशी का क्या है पूजा विधान, और देव शयनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य।
1: The greatest shopping event of the summer is here. Macy's Black Friday in July sale is back, where you'll find 40 to 60% savings on all the hottest summer fashion and more. Don't wait. Get first dibs on everything you love about Black Friday shopping, from unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices. Head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month. Black Friday in July at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
2: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

और दूसरे दिन जारी किया वीडियो संदेश, कहा आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद, हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ा रहेगा संवाद। अनशन तोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम वांगचुक का पलटवार, कहा सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिनों तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर है धिक्कार।

0: संभव सूत्र के मुताबिक इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान। आज दोपहर 3:30 बजे नड्डा और जितेंद्र सिंह से फिर मिलेगा सीजेपी डेलीगेशन। आज तक से बोले अभिजीत दीप के प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। अहमदाबाद और सूरत में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू। असम में 61 लोगों की मौत। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर फिर से एक वीडियो संदेश जारी किया और पीएम ने अपने कल के वीडियो पर आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी कल के वीडियो संदेश पर सकारात्मक सुझाव के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। एक वीडियो जारी किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, जिसे आप देख रहे हैं, और कल जो वीडियो जारी किया था उसको लेकर उन्होंने आभार जताया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया है। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: सोनम वांगचुक ने भी एक नया वीडियो संदेश जारी करते हुए अनशन तोड़ने पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की गर्मी में 26 दिन अनशन करने के बाद भी अगर उन्हें सफाई देनी पड़े तो उनकी सरकार से क्या डील हुई, तो ये शर्म की बात है।
2: थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद, क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखा कर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से क्यों नहीं तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं आपने देखा होगा, क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठ कर डील करना पड़ता? धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं।
0: तो सरकार और सीजेपी के बीच 2 राउंड की बातचीत हो गई, आज तीसरे दौर की बात होगी। शुक्रवार को सीजेपी के सौरभ दास आशुतोष रंका से सरकार के 2 मंत्री मुलाकात करते हैं। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वहीं सरकार ने इस पर विचार करने के लिए आज तक के समय मांगा है और आज इस पर वो अपनी बात रखेंगे। अब आज दोपहर फिर से मुलाकात होनी है। सवाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी मांग को लेकर है, जिस पर ना सीजेपी पीछे हट रही, ना विपक्ष पीछे हट रहा है, और इसीलिए जंतर मंतर पर धरना जारी है और संसद ठप।
3: मैंने इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है।
4: 2018 में मंत्री एमजे अकबर का नाम छोड़ दिया जाए तो 12 साल का मोदी सरकार का इतिहास है, किसी मंत्री का कभी इस्तीफा नहीं हुआ। परफॉर्मेंस की कसौटी पर जरूर कसकर मंत्रिमंडल बदलाव में चेहरे बदले गए, तो क्या यही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भी होगा? जहां पहले नीट पेपर लीक को इस्तीफा मांगते हुए भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक अनशन गुरुवार रात तोड़ चुके हैं। जंतर मंतर से अस्पताल पहुंचने के बाद से उनकी मांगों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग धीरे धीरे पहले ही धूमिल हो चुकी थी।
2: उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है,
5: गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड दोज पार्टिसिपेटिंग इन द मार्च टू द पार्लियामेंट ऑन जुलाई 2026।
4: बाकी सीजेपी की अगुवाई में चलता धरना जारी है, जहां शुक्रवार दोपहर दूसरी बार सरकार से बातचीत करने सीजेपी के दो प्रतिनिधि पहुंचे। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। दो घंटे बातचीत चली, 3 मांग 5 सुझाव सीजेपी की तरफ से दिए गए। पेपर लीक की वजह से जान देने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने के साथ 20 तारीख को प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प या हिंसा में किसी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई न होने की 2 मांग तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी और पहली मांग ही सबसे बड़ा पेच बनी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए बिना धरना जंतर मंतर से नहीं हटेगा।
6: नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल।
7: हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो
8: हमारे आंदोलन के जो सबसे 2 बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, तो उसकी ना किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
4: अब सवाल है कि सरकार शनिवार को मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर क्या फैसला करेगी, जहां प्रधानमंत्री ने गुरुवार की रात वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं और इससे हर छात्र और उसके परिवार को दुख पहुंचा है।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को यह भी लिख चुके हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जहां शुक्रवार को संसद में एक बार फिर सदन चलाने की सत्ता पक्ष की कोशिश नाकाम रही, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले किसी भी तरह की चर्चा को तैयार नहीं है।
9: आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपी हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है, तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा।
10: पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। दीज आर द 3 conditions। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन, एनी डिस्कशन।
4: यानी जंतर मंतर से प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद तक प्रदर्शनकारी और विपक्ष जब केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तब सूत्रों के हवाले से खबर ये आती है कि सरकार और पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान काम होगा, दावा है कि सरकार ये मानती है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से भागना सबसे आसान काम होता है। सरकार कहती है कि लोगों ने हमें जनादेश दिया है और हम उसे पूरा करेंगे। सरकार एनटीए की समस्याओं की एक सूची तैयार कर रही है और इनका जल्द ही समाधान भी देगी।
11: हम तो वही सुनेंगे और वही मानेंगे जो आधिकारिक होगा। अब सोर्सेस जिस दिन कैबिनेट हो रही है उस कैबिनेट की ब्रीफिंग एक मंत्री आकर कर रहे हैं, साथ साथ सोर्सेस क्या होते हैं आप बताइए, अंदर क्या हुआ, नीट के इस आंदोलन पर क्या चर्चा हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या चर्चा हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने स्पष्ट तौर पर लगातार ये मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर कोई चर्चा नहीं संभव है।
12: सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी। ये सेंटिमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा।
13: छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी संवेदना की भावना के साथ प्रयत्नशील है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया, तो एक तरफ यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है संवेदनशीलता के साथ।
0: सरकार के सूत्र कहते हैं कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की दोबारा नीट परीक्षा बिना किसी लीक के कराए जाने पर तारीफ की थी। सरकार का मानना है कि काम होगा लीक प्रूफ परीक्षा व्यवस्था बनाने से। अगर अकाउंटेबिलिटी की ही बात है तो फिर काम होगा दोषियों को तय समय में सजा दिलाने वाली व्यवस्था को बचाने से। इसीलिए प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी किया, कैबिनेट में पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दिलाई जो अगले हफ्ते पेश होगा।
14: छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था क्या वो पास हुआ है बिल जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे?
15: नेक्स्ट,
16: मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और पेपर लीक में
15: कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज।
4: कैबिनेट मीटिंग के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आज कोई पेपर लीक नहीं होगा।
15: नेक्स्ट,
4: असल में सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से देश के छात्रों को दिए गए न्याय के भरोसे और पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त करने वाले बिल को मिली मंजूरी से जुड़ा रहा।
1: सोमवार से संसद का

0: सजा देने, केस के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेगी और फिर गुरुवार रात 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया।
1: पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
0: पेपर लीक को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार फैसले ले रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संशोधन बिल 2024 को कैबिनेट से मिली मंजूरी भी शामिल है, जिसे अब अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। दावा है नए बिल में पेपर लीक माफिया के खिलाफ सजा देने के और कड़े प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में जांच और फैसला करके पेपर लीक के दोषी को सजा दी जाएगी। 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान होगा।
2: मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा।
3: सरकार सख्त फैसले ले रही है, एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने लगे हैं, लेकिन क्या इससे भी पेपर लीक रुक जाएगा?
4: उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं, हम देखेंगे।
5: और प्रधानमंत्री जी ने वीडियो डाला, बच्चों से संवाद किया और सरकार का मंशा को बताया, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, ये तो ठीक बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलो, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी रात को क्यों बोले, ये कोई बात नहीं हुआ। इस तरह का नेता प्रतिपक्ष को बहाना ढूंढ करके कटास करने का कोई जरूरत नहीं है, समाधान ढूंढने चाहिए बच्चों का भविष्य के लिए, छात्रों का भविष्य को हम सब मिलकर के अच्छा कैसे कराए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
6: सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है, अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों का हित हो चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं, उनको जो मार्कशीट दिखाई गई उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड है विद इन 10 मिनट्स, तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है इसको हटाना चाहिए सरकार को।
7: युवाओं के आंदोलन पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि वो सही मायने में इस सिस्टम को ठीक करने के हक में। अगर होते तो 5 साल में 17 पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस के शासन में हुए, विपक्षी राज्यों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, क्या कदम उठाए अखिलेश जी, क्या कदम उठाए राहुल जी, क्या कदम उठाए बाकी नेताओं ने जब उनकी सरकारें थी? हमारी सरकार ने तो गंभीरता से लिया भी और कड़ी कार्रवाई भी की है, आगे भी बड़े कदम उठा रहे हैं।
8: जो सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, रात के 12 बजे वो अपने खुद का टेलीप्रॉम्प्टर वीडियो नहीं बना के अगर सदन में आके बोले तो बेटर है। और हमें सिर्फ एक ही चीज सुनना है और कुछ नहीं सुनना है। किस एजुकेशन सेक्रेटरी को आप हटाए, किससे आप क्या करवाए, कहां से आप क्या कॉम्प्रोमाइज कराए, किसको डराए, किसको धमकाए, कितना CRPF लाए, वी आर नॉट बॉदर्ड। ओनली वन थिंग, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन।
3: नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा सियासी विवाद पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप से छिड़ता दिख रहा है। राहुल गांधी कल साहिल नाम के छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखे और दावा किया कि साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। इस आधार पर राहुल ने सरकार पर देश के भविष्य छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस इस दावे को पहले से खारिज कर रही है।
9: क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ?
10: सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई,

0: कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन, ये है पैलेट गन।
1: अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक नौजवान को लेकर आए, दावा किया कि छात्रों का समर्थन करने के दौरान इस पर पैलेट गन चलाई गई है।
0: इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है।
1: राहुल गांधी दावा करते हैं कि 20 तारीख को जब दिल्ली में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तभी साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और दावा ये तक कि साहिल को चोट लगी।
0: कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं।
1: साहिल लोचाप नाम का यह नौजवान दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है। 20 जुलाई को साहिल कॉकरोच पार्टी की तरफ से संसद मार्च में शामिल हुआ और दावा है कि इसी दौरान साहिल पर पैलेट गन चलाई गई।
2: मेरा नाम साहिल है, मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।
1: 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी के सौरव दास ने सोशल मीडिया पर पहली बार छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा करते हुए साहिल का वीडियो शेयर किया था। सौरव दास के इस दावे को दिल्ली पुलिस ने खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। साहिल के मामा ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने की बात कही, लेकिन पैलेट गन का नाम नहीं लिया।
3: मैं था साहिल, तो देख के सारे मेरे यहाँ ब्लड लग रही है, यहाँ लग रही
4: है। कटा हुआ था छर्रे? क्या
3: छर्रे? छर्रे यहाँ पे पूरे मुंह पे, आंखों के अंदर, पूरी पूरे देख के घबरा गए हम तो भाई, क्या है क्या नहीं है ये चीज। फिर डॉक्टरों से पता चला कि ये चीज, उन्होंने कहा कि आंख में जाकर आंखों का ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा।
4: यहाँ पर जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि किस चीज का निशान है, क्या है?
3: यहाँ पे बस कुछ नहीं बताया तो डॉक्टर ने, बंद करते ऑपरेशन होगा, बाकी और कुछ नहीं करा।
4: ऑपरेशन हो गया या कब?
3: एक ऑपरेशन हो गया था, सुबह हुआ था ऑपरेशन, रात को।
4: आज हुआ है?
3: कल सुबह हुआ था, और मैं रात को लगे थे 1 बजे कराने की, 6 बजे खत्म हुआ था ऑपरेशन, और उसके बाद एक और ऑपरेशन अब है 2-3 दिन बाद।
4: आँख का ही है? आँख कह रहे हैं आँख बच जाएगी यहाँ पे,
3: नो करें 1-2% चांस है।
4: निशान देख पा रहे थे उससे?
3: निशान देखे थे, निशान देखे हैं मैंने, आँखों में भी देखे हैं, आँखों भी जैसे यहाँ से कट पड़ रहे हैं, यहाँ दोनों
4: शरीर से जो निकले थे छर्रे वो आप देख पाए थे? जो निकाला गया?
3: नहीं देखा।
4: डॉक्टर ने, आप लोगों ने पूछा कि हुआ क्या है, क्या लगा इसके शरीर में?
3: बस हाँ पूछा था हमने, सिर्फ इतना बताया वहाँ था उसमें, बस इतना ही बताई थी हमने कि वहाँ
4: क्या लगा है शरीर में, क्या चोट है, नहीं
3: पता। ये पता, हमें खुद पता नहीं चला क्या ये चले चले चले छे छे क्या, हम दूसरे क्या बताए।
1: आज तक ने ऐसे ही एक 25 साल के प्रदर्शनकारी से भी बात की, जिन्होंने दावा किया है कि उनके मेडिकल लीगल दस्तावेज में पैलेट इंजरी दर्ज है। ये देखिए, 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर शेख इरशाद मंसूरी नाम का नौजवान भी पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ। जबलपुर के पाटन के रहने वाले इरशाद के भाई ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने का दावा किया, लेकिन क्या ये जख्म पैलेट गन के हैं, इस पर वो कुछ नहीं कहते।
5: 20 तारीख को 8:30 करीब बजे उसके फ्रेंड का फोन आया था हमारे पास, उसी के नंबर से। उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट में थे तो घायल हो गए, इस वजह से हॉस्पिटल आए हैं अभी इलाज के लिए।
6: क्या उस समय का माहौल था घर
5: में? तो बहुत एकदम से टेंशन बन गई थी, सोच में सब लोगों को प्रॉब्लम बनने लगी। पापा जी थे, फिर वहाँ कांटेक्ट किया उनसे, तो इलाज के लिए फिर ले गए।
6: क्या बताया कि क्या लगा है, क्या आपको क्या पता चला कि क्या लगा और कैसे हुआ क्या?
5: मेरे को तो उसने वीडियो कॉलिंग की थी अपने दोस्त के जरिए से, तो कुछ उसको चेहरे में लगा, मेरे हिसाब से तो छर्रे वगैरह लगे हैं उसको चेहरे में, जिस चीज के भी हों।
1: पैलेट गन एक स्पेशल तरह की पंप एक्शन गन है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हो चुका है, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर इसके इस्तेमाल के दावे को लेकर सवाल गहरा हो चुका है।
7: लीग मामले के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से जुड़े एक और विवाद से आपको खबरदार करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ने अपने छात्रों से, अपने स्टाफ से जंतर मंतर के प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी है, तो इस पर राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए समय आने पर संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय करने की बात कही।
8: दूर नहीं है सरकार को, अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरह देश के कई बड़े शिक्षा संस्थान निशाने पर हैं। वजह जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई छात्रों को एडवाइजरी है, जिसमें छात्रों से विरोध प्रदर्शनों से बचने की सलाह दे दी गई। जेएनयू की एडवाइजरी में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए नई दिल्ली के जंतर मंतर पर या उसके आसपास होने वाली सभाओं में शामिल न होने न ही वहां जाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रों को जिम्मेदारी से काम लेने की सलाह दी गई। चेतावनी ये दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही यूनिवर्सिटी के आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी छात्रों से जंतर मंतर से दूर रहने की अपील करते हुए इससे पढ़ाई लिखाई और करियर के मौकों पर बुरा असर पड़ने को लेकर चेताया है। कहा है कि जंतर मंतर पर किसी भी तरह की गैर कानूनी भीड़ या प्रदर्शन के कारण कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
9: एडमिनिस्ट्रेशन का भी अगर ऐसा कुछ गाइडलाइन है, मैनेजर जैसे अभी हमने कहा कि हमारे जानकारी में नहीं है, तो मेरे ख्याल से अच्छा है और हम सब स्टूडेंट्स को इसको देखना चाहिए और गौर करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है कि वहाँ पे नहीं जाना है, बचना है या ऐसा कुछ, तो हम उससे एग्री करते हैं।
10: गलत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, सब अच्छा से किए सब होगा सही, बाकी सब तो बोल रही है।
11: लोग अगर जाएं कहीं तो हम लोग प्रिकॉशन लें, जैसे हम लोग आराम से जाएं, सेफ पीस आंदोलन पीस मूवमेंट करें, ठीक है, जो भी प्रोटेस्ट करना है पीसफुली करें, आराम से जाएं, वहाँ बैठे बात करें, जिससे भी बात करें, कोई ऑफिशियल से एडमिनिस्ट्रेशन है उससे आराम से बात करें, अच्छे से बात करें, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं, हम लोग यही कर सकते हैं। और
1: चर्चा अब ये छिड़ गई कि ये छात्रों को सलाह दी जा रही है या फिर उनको कार्रवाई का डर दिखाकर जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल होने से डीयू और जेएनयू की तरफ से रोका जा रहा है। जेएनयू की पहचान भारत में छात्र आंदोलनों के सबसे अहम केंद्रों में से एक के तौर पर रही है। दशकों से इस कैंपस में शिक्षा नीति और कैंपस के कामकाज से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक के मुद्दों पर प्रदर्शन होते आए, जिससे विरोध प्रदर्शन इसकी सार्वजनिक पहचान का एक खास हिस्सा बने। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जब छात्रों को चेताया तब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर विरोध जताते हुए लिखा है कि छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर धमकाने की हिम्मत कैसे हुई, समय आने पर आपकी जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं एआईयू ने छात्रों से विरोध प्रदर्शन की बजाय परीक्षाओं पर ध्यान देने को कहा है। आईआईटी रुड़की ने भी छात्रों और स्टाफ को सलाह दी, हालांकि बाद में कहा गया कि ऐसे निर्देश हर साल जारी होते हैं।
7: एक छोटा सा ब्रेक, जल लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: क्या देवशयनी एकादशी से देवता वास्तव में सो जाते हैं? क्यों देवशयनी एकादशी से शुभ कार्य बंद हो जाते हैं? देवशयनी एकादशी का क्या है पूजा विधान और देवशयनी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
14: This is the sound of Claire cooking dinner at home, and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
15: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
16: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
17: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
16: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere.

0: के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं। बिकॉज मैं शहीद का दर्जा दूंगी, बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्ते आए थे और पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है, केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो ज्यादतियां कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए।
1: ये तो जब ये पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तब प्रधानमंत्री की नींद खुली है। आज भी हम ये कहेंगे कि सदन में आने से पहले उनको अपने मंत्री का इस्तीफा लेकर आना चाहिए, फिर चर्चा करवानी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा जो भी पेपर लीक में इन्वॉल्व है उनको मिलनी चाहिए।

पीएम मोदी ने फिर जारी किया वीडियो संदेश, कहा सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद। सरकार की ताबड़तोड़ एक्शन, एनटीए से हटाए गए 47 अफसर, पुलिस एक्शन भी संभव। आज फिर कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के प्रतिनिधि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की बैठक, अभिजीत दीप के बोले प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, आज कांग्रेस का देश भर में कैंडल मार्च। सूत्रों की खबर, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेगी सरकार। गुजरात से असम तक बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, अहमदाबाद और सूरत पानी पानी में, सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू, असम में 61 लोगों की मौत। हॉर्मुज के समुद्र में फिर एलपीजी टैंकर पर हमला, शिप में सवार थे 28 भारतीय, ईरानी मीडिया का दावा अमेरिकी फोर्स ने किया अटैक।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज देव शयनी एकादशी का पावन पर्व है और आज की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से अगले 4 महीने तक शुभ और मंगल कार्य बंद हो जाएंगे। तो देव शयनी एकादशी का महत्व क्या है, इसकी विशेषता और पूजा विधान क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आज के दिन की विशेषता क्या है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः 11:34 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9:10 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं देव शयनी एकादशी के बारे में। साल में कुल मिलाकर सामान्यतः 24 एकादशियां होती हैं और अधिक मास होने से 26 एकादशी हो जाती है, लेकिन उसमें देवशयनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, भीमसेनी एकादशी, इनका अपना विशिष्ट महत्व है। तो देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है पहले ये जानते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयनी एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी से अगले 4 महीने तक, यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए अगले 4 महीने तक शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं भगवान विष्णु के देवताओं के शयन की वजह से। अगले 4 महीने तक शुभ कार्य नहीं होते। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इसी समय से चातुर्मास आरंभ होता है और सामान्यतः तपस्वियों के लिए ये नियम है कि वो एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रुकेंगे, निरंतर भ्रमण करते रहेंगे। लेकिन चातुर्मास में देव शयनी एकादशी से तपस्वियों का भ्रमण बंद हो जाता है। इन दिनों में केवल ब्रज क्षेत्र की यात्रा की जा सकती है। देव शयनी एकादशी कहते इसलिए हैं क्योंकि ऐसा मानते हैं कि अब देवताओं का शयन होगा, अब भगवान विष्णु का शयन होगा और सारे शुभ और मंगल कार्य अगले 4 महीने तक बंद रहेंगे। आज देव शयनी एकादशी है और आज विशेष पूजा करके
भगवान विष्णु को योग निद्रा में सुलाया जाएगा। एकादशी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, परिवार में शांति बनाए रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब आपके मन में एक बात जरूर आ रही होगी कि क्या वास्तव में देव शयनि एकादशी पर देवता सो जाते हैं, भगवान का शयन हो जाता है, क्या वास्तव में भगवान भी कभी सोते हैं? देखिए, हरि और देव, हरि का अर्थ भगवान विष्णु भी है, देव का अर्थ देवता है, लेकिन हरि और देव का अर्थ तेजस तत्व से भी है, तेज तत्व से भी है। इस समय में जो चातुर्मास का समय होता है, इस समय में सूर्य चंद्रमा और प्रकृति, इनका तेज कम होता जाता है, इनका तेज धीरे धीरे घटने लगता है। तो तेज घटने का मतलब है जो प्रकृति की शुभता है, जो शुभ शक्तियां हैं, वो कमजोर होने लगती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है, यानी शुभता अब कम हो गई है। तेज तत्व के कमजोर होने से, शुभ शक्तियों के कमजोर होने से इस समय काम करने को मना किया जाता है, क्योंकि अगर शुभता कम होगी और आप उस समय काम करेंगे तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ नहीं होंगे। इसके अलावा शुभता चूंकि कम रहेगी, बावजूद इसके अगर आप शुभ कार्य करेंगे तो काम में बाधा आने की संभावना बनेगी। इसीलिए चार महीने तक श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये जो चातुर्मास हैं, इनमें शुभ कार्य करने की मनाही तब तक होती है
जब तक देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु और देवता योग निद्रा से न जग जाएं। देवशयनी एकादशी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा।

से बिगड़ सकता है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, छोटी यात्रा हो सकती है, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न उर्मिला जी ने हमें लिखा है, बिहार से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 नवंबर 1988, जन्म का समय शाम के 5 बजे, जन्म का स्थान है बेगूसराय बिहार। उर्मिला जी कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, बहुत अशांति रहती है, तो क्या मेरी शादी चल पाएगी और अगर चल पाएगी तो मैं वैवाहिक जीवन को कैसे बेहतर कर सकती हूँ। उर्मिला जी, सबसे पहले तो आप खुद अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए। केवल एक पक्षकार की गलती से दिक्कत नहीं हो रही है, दोनों की गलती है। आपको भी क्रोध बहुत आता है, आपकी वाणी पर कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से मामला थोड़ा बिगड़ जाता है। धैर्य और संयम से काम लें, आने वाला समय अच्छा है, तो ऐसा लगता है कि आपकी वैवाहिक जिंदगी चलेगी भी और बेहतर भी चलेगी। अक्टूबर 2026 के बाद सुधार दिख रहा है, लेकिन आप अपनी वाणी का, क्रोध का थोड़ा ध्यान रखिए। एक ओपल बनवा के पहने, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, देव शयनी एकादशी का जो अवसर है वो बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। अगर आप आज उपवास रखते हैं या सात्विकता रखते हैं और भगवान की पूजा साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपको बहुत सारे वरदान मिल सकते हैं। क्या क्या वरदान मिल सकते हैं? सामूहिक पापों का और समस्याओं का नाश होता है। सारे मोहल्ले के लोग, सोसाइटी के लोग, घर के लोग मिल करके अगर आज भजन कीर्तन करें थोड़ा भी समय निकाल करके, तो सामूहिक पापों का और सामूहिक समस्याओं का नाश होगा। और आज के दिन साधना करने से, उपासना और ध्यान करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। आज के दिन साधना, पूजा, उपासना करने से दुर्घटनाओं के जो योग हैं वो दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देव शयनी एकादशी पर आप उपवास रखें और इसके बाद अगले 4 महीने तक चातुर्मास में आप साधना उपासना करें
तो आप अपने शरीर को और अपने मन को नवीन कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। देव शयनी एकादशी पर भगवान योग निद्रा में जरूर चले जाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। तो आप जितने समय प्रभु योग निद्रा में हैं, उतने समय अगर आप साधना उपासना ज्यादा करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। देखिए, देव शयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी के 4 महीने तक विवाह, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा, लेकिन ये 4 महीने साधना के, उपासना के और तपस्या के महीने हैं। इसीलिए सावन में भगवान शिव की उपासना करिएगा, भाद्रपद में भगवान कृष्ण और गणपति की उपासना करिएगा, आश्विन में पितरों की और देवी की उपासना करिएगा और कार्तिक में भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। अगर आप चातुर्मास में ठीक से साधना उपासना करें तो आप अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। देव शयनी एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है। और आज आपको जिज्ञासा में बताएंगे कि एकादशी तिथि पर चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी, परिवार में अशांति से बचिएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार पर भी थोड़ा ध्यान दें, ऑफिस में विवाद हो सकता है, शनि मंत्र का जप करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब ये जानते हैं कि देव शयनी एकादशी पर पूजा उपासना कैसे करेंगे। देखिए, आज रात की पूजा बहुत विशेष है, तो रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। उनको पीली वस्तु में, पीली मिठाई, पीले फूल, पीला वस्त्र अर्पित करिएगा और इसके बाद उनके मंत्रों का जप करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, या हरि नाम का जप करिएगा या हरि नाम का संकीर्तन करिएगा। मंत्रों का जप करने के बाद उनकी आरती उतारिएगा और आरती के बाद एक विशेष मंत्र बोल करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करिएगा। श्लोक मंत्र स्क्रीन पर देखिए। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम्। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम्। विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम्। विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम्। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप भले ही योग निद्रा में जा रहे हों, लेकिन भक्तों पर अपनी करुणा बनाए रखें, भक्तों पर ध्यान अपना बनाए रखें। इस प्रकार से आप देव शयनी एकादशी की रात को साधना पूजा कर सकते हैं। और अगर आप विशेष लाभ चाहते हैं तो देव शयनी एकादशी की मध्य रात्रि को यानी आज मिडनाइट में एक बार दीपक जला करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा या सुनिएगा, आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।

करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा मरून।

स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

लाभ होगा, मानसिक तनाव दूर होगा, करियर में लापरवाही ना करें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें, दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा जानते भी हैं और मानते भी हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, पौराणिक कथा ये कहती है कि शक्ति से बचने के लिए एक महर्षि थे, महर्षि मेधा। महर्षि मेधा जमीन में समा गए, भूमि में समा गए और उन्हीं के रक्त से और मांस से चावल का निर्माण हुआ। और जिस दिन वो जमीन में समाए वो दिन थी एकादशी की तिथि। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर अगर आप चावल खाते हैं तो वो महर्षि मेधा के रक्त और मांस के बराबर है। ये तो पौराणिक बात है। वैज्ञानिक बात यह है कि चाहे एकादशी पूर्णिमा के पहले पड़े, चाहे अमावस्या के पहले पड़े, इस दिन मन में चिंता होने की, मन में तनाव या डिप्रेशन होने की संभावना बहुत होती है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है कि एकादशी पर हल्का भोजन करिए, जबकि चावल एक भारी भोजन है। तो इसीलिए आपके मन पर दुष्प्रभाव ना पड़े, आप मेंटली परेशान ना हो या आपको पेट में कोई असुविधा का अनुभव ना हो, इसलिए कहा गया कि एकादशी पर चावल ना खाएं। वास्तव में इसका पाप पुण्य से लेना देना नहीं है।

तो एकादशी को चावल ही नहीं कोई भी भारी और गरिष्ठ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1 काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2 स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3 शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 4 धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5 यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6 स्थान परिवर्तन हो सकता है। नंबर 7 रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8 करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 9 काम की अधिकता रहेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6:00 से 7:30 तक। इस समय में शनि देव के मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, जरा सा घी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगा के जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन भूमि भवन आभूषण, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान।

वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि के लोगों को, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में आप जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज एकादशी तिथि है, आज सात्विकता बनाए रखें, प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग ना करें और आज हर व्यक्ति थोड़ा समय निकाल कर श्री हरि की उपासना करे तो बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन जारी किया वीडियो संदेश, कहा आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद, हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया वीडियो को देखने और उस पर अपने विचार साझा करने वाले युवाओं का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा देर रात युवाओं से मिलने का अवसर मिला और उनके सकारात्मक सुझावों ने उन्हें बेहद प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक सोच देश के उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत। अनशन तोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम वांगचुक का पलटवार, कहा सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिनों तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर धिक्कार। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, दो बड़े फैसलों पर मोहर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। केंद्र सरकार की कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगात, 1264 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को मंजूरी। कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बीच बल्लारी गुंतकल रेल नेटवर्क पर जल्द बिछाई जाएगी तीसरी और चौथी लाइन, इससे 99 गांव की रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा बल्लारी गुंतकल खंड पर डबल रेल लाइन से कर्नाटक आंध्र प्रदेश में संपर्क और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को पीएम मोदी की सलाह, बोले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहें सक्रिय, केंद्र के कामों पर रील पोस्ट कर युवाओं से सीधे जुड़ने का सुझाव दिया। पीएम मोदी के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा फैसला, हटाए गए एनटीए के 47 अफसर, पुलिस कार्रवाई भी संभव। शिक्षा मंत्रालय में बड़े बदलाव, एनटीए ने भर्ती के लिए जारी किया विज्ञापन, 4 वरिष्ठ जनरल मैनेजर और 16 युवा प्रोफेशनल की भर्ती होगी। पेपर लीक पर सख्त कानून का मसौदा कैबिनेट में मंजूर, 10 साल तक सजा और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान, सोमवार को संसद में पेश हो सकता है संशोधन विधेयक। सूत्रों के हवाले से खबर, इस्तीफा नहीं देंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मंत्री के साथ मजबूती से खड़ी है पार्टी। सरकार की दलील का इस्तीफा देने का मतलब जिम्मेदारी से भागना, व्यवस्था में खामियाओं का जल्द होगा समाधान। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन मामले में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पेपर लीक के विरोध में आज कांग्रेस का देशव्यापी मार्च, सभी से शामिल होने की अपील। सरकार के सामने सीजेपी ने रखी 3 मांगे, बोले पीड़ितों को मुआवजा और छात्रों से केस वापस लेने पर सहमति, प्रधान के इस्तीफे की मांग पर विचार कर रही सरकार, आज जवाब। जेपी नड्डा ने कहा सीजेपी ने 3 मांगे और 5 सुझाव रखे, आंतरिक चर्चा करने के बाद सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ आज एक और बैठक सरकार करेगी। छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर सीजेपी का बड़ा ऐलान, अभिजीत दीप के बोले सबूत जुटाने और पुलिसकर्मियों की पहचान के लिए लॉन्च होगी वेबसाइट, प्रधान के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच के लिए बड़ा एक्शन, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। दिल्ली पुलिस की सख्त चेतावनी, जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर अफवाहें ना फैलाएं, सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस के एफआरएस सिस्टम ने किया बड़ा खुलासा, जंतर मंतर के घटनास्थल से लेकर आसपास के इलाकों में 400 आपराधिक इतिहास वाले क्रिमिनल घूमते हुए देखे गए। छात्र प्रदर्शन को लेकर केंद्र पर बरसी ममता बनर्जी, एक्स पर पोस्ट कर लिखा शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए इतनी बेताब क्यों है सरकार। बैलेट गन से घायल छात्रों को लेकर सामने आए राहुल गांधी, का युवक ने गवाई एक आंख, बंद हो सकती है बंद हो इनसे मारपीट, सरकार से सभी डिमांड पूरी करने की मांग। पुणे में कलेक्ट्रेट और लाल महल पर आयोजित सीजेएफ के विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। पुणे में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की, भारी भीड़ के चलते पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नीट पेपर लीक मामले पर शिवसेना और एमएनएस का साथ एक साथ आए हैं आदित्य और अमित ठाकरे ने शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली निकाली। मुंबई में भी सीजेपी प्रदर्शन को भारी समर्थन, आजाद मैदान समेत कई जगहों पर जुटे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली में विश्व मांगल्य सभा कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा जब हम युवा थे तो दौर आज्ञा मानने का था, अब ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी सवाल पूछती है और हम उन्हें तर्क समझाना होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से होगा शुरू, विधानसभा सचिवालय से जारी की गई अधिसूचना। सीएम योगी ने यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, सुरक्षा और सुविधा होगी सर्वोच्च प्राथमिकता। सीएम योगी के पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर 24 घंटे रहेगी निगरानी, ड्रोन और सीसीटीवी से पेट्रोलिंग अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश। चढ़ावा चोरी पर शंकराचार्य विमुक्तेश्वर आनंद का आरोप, कहा राम मंदिर में चोरी ही नहीं दलाली और कमीशनखोरी भी हुई, एसआईटी जांच पर सवाल उठाए। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी कार्रवाई के विरोध में एसपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, धक्का मुक्की के दौरान इंस्पेक्टर ने निकाली पिस्टल, वीडियो वायरल।
इस बार सहारनपुर में कावड़ यात्रा पर एटीएस का पहरा, तीन कंपनी पीएसी आरपीएफ के साथ सारे सादे कपड़ों में पुलिस तैनात रही। अलीगढ़ में भी कावड़ यात्रा की तैयारी तेज, मंदिर परिसर में व्यवस्थाएं की जा रही चाक चौबंद, प्रशासन के सुरक्षित माहौल में कावड़ यात्रा आयोजित करने का आश्वासन। धार बोचाला विवाद में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड के बोकारो बाल सुधार गृह में फ्लू का प्रकोप, 20 बाल बंदी पाए गए संक्रमित, एक आईसीयू में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। बिहार पुलिस ने 19 खिलाड़ियों को दी नौकरी की सौगात, आकाशदीप और मुकेश कुमार बने डीएसपी, सीएम सम्राट चौधरी ने बांटे नियुक्ति पत्र। नागपुर में स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम, बारगव अस्त्र का प्रदर्शन, 10 सेकंड में 64 रॉकेट दागकर दुश्मनों का स्टार्म अटैक करेगा बेदम। मॉडर्न वॉरफेयर के लिए क्षमताओं का किया परीक्षण, भारतीय सेना के डेलीगेशन के सामने हुआ प्रदर्शन। मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर बड़ी बाजारों की रौनक, मार्केट में एक से बढ़कर एक आभूषण और ड्रेस मौजूद, सराफा मार्केट में लालबाग चौराजा सेट की भारी डिमांड। कटरा में पुलिस की बड़ी कामयाबी, वैष्णो देवी और शिवखोड़ी में गुम हुए 206 मोबाइल वापस लौटाए। कड़ी सुरक्षा के बीच पुरी में बहुड़ा यात्रा का शुभारंभ हुआ, लाखों लोग भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा में शामिल हुए। असम में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया गया, मरने वालों की संख्या 61 पहुंची। आज देश के बड़े हिस्से पर सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून का असर, कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। पश्चिम भारतीय कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद, कई उत्तर पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में भी दिन भर तेज बारिश हो सकती है। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी वलसाड़ पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। भारी बारिश के चलते 3 आईएएस अधिकारियों ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों का बोट में बैठकर दौरा किया, राहत कार्यों की समीक्षा की। रामबन और उधमपुर जिले में कई जगहों पर भूस्खलन, कीचड़ खिसकने और पत्थर गिरने के कारण जम्मू राष्ट्रीय श्रीनगर राजमार्ग अब भी बंद है। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के बीच फटा बादल, पांगी घाटी जाने वाली पूरी सड़क बंद हो गई। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी में बह मासूम का 4 दिन बाद शव बरामद, एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने ड्रोन और गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया। रुद्रप्रयाग के कालीशिला में हार्ट अटैक से अचेत हुए गुजरात के श्रद्धालु का सफल रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर से किया गया एयरलिफ्ट। सूरत में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, पूरा रिहायशी इलाका पानी में डूबा, सड़कों पर खड़े दोपहिया वाहन भी जलमग्न हो गए, ड्रोन से निगरानी। गुजरात में औरंगा नदी की बाढ़ में फंसी पर्यटकों की बस, जालना के 15 से 17 नागरिकों समेत 35 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। गुजरात के नवसारी में बाढ़ के बीच बेगार गांव में इंडियन कोस्ट गार्ड का बचाव अभियान, लोगों को एयरलिफ्ट किया। गुजरात के बनासकांठा में पिछले 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश, पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए खलियान। भाभर और दियोदर में 11 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज, कई इलाकों में जलभराव, लोगों को मुश्किल। सूरत में बाढ़ बारिश का कहर, खाड़ी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, 300 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए, घर छोड़ने को मजबूर। साबरकांठा में भारी बारिश के बाद सैलाब, पानी में बाइक फंसे 2 युवक,

0: बागपत में केले के मूल भाव को लेकर फल विक्रेता और बाप बेटे में हिंसक झड़प, बीच सड़क जमकर लातगू से चले। मोतिहारी में कुछ युवकों को रील बनाना भारी पड़ा, बगीचे में बना रहे थे वीडियो, ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीटा। मेरठ में जगन्नाथ शोभा यात्रा में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक की मौत, 10 झुलसे। सहारनपुर में मंदिर चोरी के मामले में 3 गिरफ्तार, मंदिर से चुराए घंटे, लोटे, दीपक, इन्वर्टर बरामद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बाल सुधार गृह से 3 नाबालिग फरार हुए, रोशनदान की ग्रिल तोड़कर भागे, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर लगभग 2 करोड़ रुपए की सोने और डायमंड की जेवरात बरामद, गुजरात के 2 युवक गिरफ्तार हुए। सासाराम में पुलिस बैरक की छत पर बीएसएपी जवान ने की खुदकुशी, अपने ही सरकारी हथियार से सिर में मारी गोली। मध्य प्रदेश के पन्ना में मोबाइल कवर की डिलीवरी को लेकर विवाद, एसडीएम ने ऑर्डर किए थे 2 मोबाइल कवर लेकिन 1 मिलने पर बुलाई पुलिस, वीडियो वायरल। जालना में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 किलो से ज्यादा गांजा बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार, लाखों का माल जब्त। आसनसोल में रामपुर चेक पोस्ट पर रिश्वत के आरोप में 2 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर सस्पेंड, एसीबी करेगी जांच। भारत जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 आज खेला जाएगा, वैभव सूर्यवंशी पर नजर। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा पावर लिफ्ट झंडू कुमार ने खोला भारत का खाता, जीता ब्रॉन्ज मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में झंडू कुमार ने मेंस हैवीवेट पावर लिफ्टिंग में परचम लहराया। ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही विक्रांत मैसी की मुसाफिर कैफे, नेटफ्लिक्स पर यह दिल को छू लेने वाली रोमांटिक ड्रामा। सरकारी स्कूलों की चरमराती व्यवस्था को दिखाती वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय रिलीज, अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम कर रही है क्या कि मैंने की सीरीज। थिएटर्स में रिलीज होने के लिए सिर्फ 21 दिन बाद ओटीटी पर आई तेलुगु फिल्म नागबंथम, एक प्राचीन पवित्र खजाने को बुरी ताकतों से बचाने की लड़ाई के इर्द-गिर्द घूमती है फिल्म की कहानी। मेकर्स ने टाली राजकुमार राव की प्रहार की रिलीज डेट, पहले 7 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही थी। तैयार के बाद ताबड़तोड़ एक्शन करेंगे आहन पांडे, नई फिल्म में रिलीज डेट का ऐलान, 26 मार्च 2027 में दस्तक देगी। ईरान के अहवाज शहर में अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद कई धमाके, ईरानी मीडिया के अनुसार इस हफ्ते 4 लोगों की मौत, 5 घायल। ट्रंप ने तेहरान और उसके सहयोगी पर कड़ी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी, कहा कूटनीतिक समाधान का रास्ता अब भी खुला है। ब्लैक सी में कमर्शियल जहाज पर हमला, हमले में एक भारतीय की मौत की खबर। ईरानी सेना ने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया जबरदस्त हमला, बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को बनाया निशाना। ईरान की सेना आईआरजीसी ने खाड़ी देशों में रह रहे लोगों को जारी की बड़ी चेतावनी, कहा आम लोगों को उन ठिकानों से दूर रहना चाहिए जहां अमेरिकी सैनिक हैं। ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी, कहा ईरान के खिलाफ पहले से भी बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। ईरान की रफ्तार से इसराइल और अमेरिका हैरान, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस और इसराइली हमलों में तबाह हुए बुनियादी ढांचों को ईरान ने पुनर्निर्माण किया। फिलीपींस की नौसेना ने चीनी नौसेना पर फिर लगाया फिलीपींस के जहाज पर हमला करने का आरोप। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जाएंगे अमेरिका, ट्रंप ने दी जानकारी, कहा 24 सितंबर को अमेरिका आएंगे शी जिनपिंग। फ्रांस के जंगल में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices, head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month, Black Friday in July at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
4: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint Bade Aram Se.
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: 16 साल पहले एक धमाका क्या थी, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को आरडीएक्स रिमोट बम से उड़ाने की साजिश, देखिए आज तक पर।
3: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: सो सॉरी।
2: आइए आइए चला आइए आइए पाइए सीईओ की नौकरी पाइए आइए आइए आइए।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है, जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है, तीन मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर should apologize to the students. These are the three conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it.
2: के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं, बिकॉज मैं शहीद का दर्जा दूंगी, बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्ते आए थे। और पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो ज्यादतियां कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए।
3: ये तो जब ये पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तब प्रधानमंत्री की नींद खुली है। आज भी हम ये कहेंगे कि सदन में आने से पहले उनको अपने मंत्री का इस्तीफा लेकर आना चाहिए, फिर चर्चा करवानी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा जो भी पेपर लीक में इन्वॉल्व है उनको मिलनी चाहिए।

पीएम मोदी ने फिर जारी किया वीडियो संदेश, कहा सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद। सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन, एनटीए से हटाए गए 47 अफसर, पुलिस एक्शन भी संभव।

जितेंद्र सिंह की बैठक। अभिजीत दीप के बोले, प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, आज कांग्रेस का देश भर में कैंडल मार्च, सूत्रों की खबर। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेगी सरकार। गुजरात से असम तक बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, अहमदाबाद और सूरत पानी पानी में, सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू, असम में 61 लोगों की मौत। और हॉर्मुज के समंदर में फिर एलपीजी टैंकर पर हमला, शिप में सवार थे 28 भारतीय। ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिकी फोर्स ने किया अटैक।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सुबह के 8 बजे और वक्त हो चला है खास बुलेटिन का, सुपर 8 का। और इस बुलेटिन में होंगी देश दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की पूरी कहानी। लगातार दूसरे दिन वीडियो जारी कर कहा कि आपके सुझावों के लिए धन्यवाद। वहीं हम आपको यह भी दिखाएंगे कि 26 दिन के अनशन के बाद सोनम वांगचुक का नया वीडियो संदेश, और क्या है उस वीडियो संदेश में, क्या बोले आंदोलन को लेकर। सीजेपी और सरकार के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत है, दोपहर 3:30 बजे अहम बैठक होगी, सबकी नजर उस पर होगी। हम बताएंगे क्या हुआ दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन को लेकर, पुलिस की तैयारी, जंतर मंतर पर FRS सिस्टम से अपराधियों की पहचान, 18 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद, और नीट पेपर लीक मामले में छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी की मां पहुंची सीजेपी प्रदर्शन में, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, और पुणे में सीजेपी प्रदर्शन की बड़ी तस्वीर आपको दिखाएंगे, कलेक्ट्रेट और लाल महल पर उमड़ी भारी भीड़, वो भी हम आपको बताएंगे, और मौसम के हाल की बात करेंगे। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर है, कई राज्यों में बाढ़ के हालात, और आखिर में बात ईरान की भी होगी, अमेरिका की भी होगी, जो वॉर चल रहा है। अहवाज शहर में मिसाइल हमलों के बाद कई धमाकों की गूंज सुनाई दी है। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर फिर से एक वीडियो संदेश जारी किया, और पीएम ने अपने कल के वीडियो पर आभार जताया। पीएम ने कहा कि हमारे कल के वीडियो संदेश पर सकारात्मक सुझाव के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो 300 मिलियन व्यूज पार किए और 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर उनके उसके बाद बढ़ गए थे, कई छात्र उनके साथ जुड़े थे।
1: कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: तो ये तो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से जो संदेश दिया गया वो हमने आपको बताया। वहीं सीजेपी और सरकार के बीच आज तीसरे दौर की अहम बैठक होने जा रही है, और सूत्रों से ये खबर है कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज दोपहर करीब 3:30 बजे सीजेपी के डेलीगेशन के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें सौरभ दास होंगे, रांका होंगे। अब सूत्रों से खबर है कि बैठक के बाद सीजेपी संसद तक एक और मार्च का ऐलान कर सकती है। इस बीच आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीजेपी नेता अभिजीत दिवके ने साफ कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में तीसरे दौर की इस बैठक पर सबकी नजर है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि विरोध प्रदर्शन आपराधिक बैकग्राउंड के लोग इसमें शामिल थे। दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि उनके फेस रिकॉग्निशन सिस्टम ने ऐसे करीब 400 लोगों को चिन्हित किया जो 20 जुलाई के आंदोलन में शामिल थे और उनका आपराधिक रिकॉर्ड है। दिल्ली पुलिस ने तस्वीरें भी जारी की हैं। देखिए, शुरुआत से ये बात कही गई है कि छात्र हंगामा नहीं कर रहे, छात्र तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन छात्रों की आड़ में कुछ अराजक तत्व थे जिन्होंने छात्रों के इस प्रोटेस्ट को खराब किया, जिन्होंने तोड़फोड़ की। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, मारपीट तोड़फोड़ के वो वीडियो चर्चा का विषय बने थे कि आखिर क्या ये छात्र हैं जो इतनी तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लेकिन अब ये बड़ा खुलासा और ये बहुत अहम है कि 400 हिस्ट्री शीटर उस वक्त मौजूद थे प्रदर्शन में।
2: हिमांशु, ये संख्या और भी बहुत बड़ी है जो 400 की है, क्योंकि लगातार जो डाटाबेस है दिल्ली पुलिस का वो खुलासे कर रहा है, क्योंकि ये जहां पर मैं मौजूद हूं, ये देखिए ये संसद मार्ग थाना है और यहां से पूरा इलाका, क्योंकि सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो सामने जंतर मंतर की रोड महज चंद कदम की दूरी पर है, तो ये जो पूरा इलाका है ये बैरिकेड के बाद हर जगह पुलिस ने कैमरे लगा रखे थे और खास तौर से जो एंट्री एग्जिट प्वाइंट है, जो रास्ते जंतर मंतर को जाते हैं, कई ऐसी जगह है जैसे अगर आप देखेंगे यहां पर भी कई ऐसे कैमरे लगे हैं, तो इनमें भी पुलिस ने अपडेट किया था, कई ऐसे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के कैमरे जगह जगह इंस्टॉल करवाए ताकि अगर कोई ऐसा शख्स जो इस भीड़ में शामिल होता है और उसकी मंशा कोई छात्रों के साथ वो जुड़ा नहीं है लेकिन छात्र बन के वहां पर पहुंचना है और उसकी डिमांड कोई नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है, तो ऐसे लोग जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है, जो छात्र नहीं है, उनकी पहचान की जा सके, क्योंकि ये लोग सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही नहीं बल्कि स्टूडेंट के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं, जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी खतरनाक हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों की पहचान करना बेहद जरूरी थी और इसीलिए ये तमाम कवायद की गई थी और अब उनके चेहरे एक करके साफ हो रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं, उनकी पुलिस अलग से लिस्ट बना रही है और उन सभी के खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वर्दी को देख करके अटैक हुआ था, जिस तरीके से पुलिस पर अटैक हुआ था और जिन लोगों के चेहरे उसमें सामने आए थे तभी पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी। आपको बता दें हिमांशु कि 10 से ज्यादा FIR इस पूरे मामले में दर्ज है, तो जिन लोगों ने, जो लोग भी आपराधिक बैकग्राउंड के, जिनका स्टूडेंट से, छात्रों से, इस प्रोटेस्ट से किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, प्रोटेस्ट साइट के लिए खतरा है, तो ऐसे लोगों की एक लिस्ट तैयार कर ली गई
0: है। हिमांशु कह सकते हैं कि भीड़ की आड़ में कुछ भेड़िए भी थे जिन्होंने छात्रों के इस प्रदर्शन को बदनाम किया और जो लोग छात्रों पर सवाल उठा रहे थे, जो कह रहे थे कि छात्रों ने मारपीट की, उनके लिए भी यह खबर बहुत अहम होती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का मामला अब गर्मा गया। राहुल गांधी ने इसको लेकर सरकार पर सवाल उठाए जबकि दिल्ली पुलिस ने इससे साफ इनकार किया कि किसी पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ।
3: क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ?
4: सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन,
3: ये है पैलेट गन। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक नौजवान को लेकर आए, दावा किया कि छात्रों का समर्थन करने के दौरान इस पर पैलेट गन चलाई गई है।
4: इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है।
3: राहुल गांधी दावा करते हैं कि 20 तारीख को जब दिल्ली में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया तभी साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और दावा ये तक कि साहिल को चोट लगी।
4: कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है।
3: साहिल लोचाब नाम का ये नौजवान दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है। 20 जुलाई को साहिल कॉकरोच पार्टी की तरफ से संसद मार्च में शामिल हुआ और दावा है कि इसी दौरान साहिल पर पैलेट गन चलाई गई।
5: मेरा नाम साहिल है, मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूं, इनकलाब जिंदाबाद।
3: 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी के सौरव दास ने सोशल मीडिया पर पहली बार छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा करते हुए साहिल का वीडियो शेयर किया था। सौरव दास के इस दावे को दिल्ली पुलिस ने खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। आज तक ने ऐसे ही एक 25 साल के प्रदर्शनकारी से भी बात की जिन्होंने दावा किया है कि उनके मेडिकल लीगल दस्तावेज में पैलेट इंजरी दर्ज है। ये देखिए, 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर शेख इरशाद मंसूरी नाम का नौजवान भी पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ। जबलपुर के पाटन के रहने वाले इरशाद के भाई ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने का दावा किया, लेकिन क्या ये जख्म पैलेट गन के हैं इस पर वो कुछ नहीं कहते।
6: 20 तारीख को 8:30 करीब बजे उसके फ्रेंड का फोन आया था हमारे पास उसी के नंबर से। उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट में थे तो घायल हो गए हैं, इस वजह से हॉस्पिटल आए हैं अभी इलाज के लिए।
3: पैलेट गन एक स्पेशल तरह की पंप एक्शन गन है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हो चुका है, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर इसके इस्तेमाल के दावे को लेकर सवाल गहरा हो चुका है।
0: अब छात्र आंदोलन के बीच मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा है कि युवा पीढ़ी सवाल करती है। हम बड़ों के सामने सवाल नहीं करते थे, लेकिन अब का दौर अलग है। युवाओं से संवाद की जरूरत है। युवाओं को अब ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। नई पीढ़ी विश्लेषण करती है।
7: खासकर मनुष्यों में मातृत्व ये उनके जीवन का सत्य है, क्योंकि नई पीढ़ी के संस्कार, उनकी शिक्षा आदि बातें बाकी जीवों में प्राकृतिक रीति से होती है। उसके लिए कोई स्कूल कॉलेज शिक्षा वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है, परंतु मनुष्यों में विचार होने के कारण वो अच्छा भी हो सकता है और गड़बड़ भी कर सकता है, तो उसको दिशा देना बहुत आवश्यक होता है। वो मनुष्यों को उचित दिशा देने वाला पहला गुरु तो माता ही है। बचपन में ही उसके स्वभाव की प्रवृत्ति आदि आदि सब घर वालों के कारण बनती है और प्रमुखतः माता के कारण बनती है, क्योंकि उसकी पूरी चिंता माता करती है।
0: और इसी बीच बड़ी खबर चिकमंगलुरु से है। बीजेपी एमएलसी सीटी रवि पर एफआईआर दर्ज हुई है। नीट प्रदर्शनकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कर्नाटक पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखा। सीटी रवि ने नीट प्रोटेस्ट में मुसलमानों के शामिल होने को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो अनपढ़ हैं, उनका नीट प्रोटेस्ट से क्या काम है, और अब उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। तो बीजेपी एमएलसी सीटी रवि की बात की जा रही है, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। किस बयान पर एफआईआर दर्ज हुई वो सुनवाते हैं।
8: ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ ಕೇಳಕ್ ಬಯಸೋದು, ಮುಲ್ಲಾನಿಗೂ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಎದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರ ಅಕ್ಷರ ಬರಲ್ಲ, ಆತ ಬಂದು ನೀಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಅಂತೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಮೋದಿ ಹಟಾವ್ ಅಂತೆ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ ಕೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನಿನ್ ಎದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರ ಅಕ್ಷರ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ಇನ್ನ ಸಿಎಗೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಗೂ ಈ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ?
0: नीट पेपर लीक के मुद्दे पर आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी। सभी जिलों में कैंडल मार्च निकालने का प्लान है। तो नीट पेपर लीक का मुद्दा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का मामला अब देश के हर दिल तक ले जाने की तैयारी में कांग्रेस है। सभी जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च का प्लान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब देश के हर कोने में हो, ऐसा कांग्रेस की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, और यह बड़ी तस्वीर पुणे से सामने आई। पुणे के कलेक्ट्रेट और लाल महल इलाके में सीजेपी के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, और प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये पुणे की तस्वीर, लाल महल पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं, पुलिस बल भी तैनात है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो उन हालातों को सुधारा जाए, उसके लिए पुलिस ने तैयारी की हुई। लेकिन देखिए बारिश है, बारिश के बाद छाता खुला हुआ है यहाँ पर, बारिश के मौसम में भी सभी प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। नीट पेपर लीक मामले में आत्महत्या करने वाली नागपुर की छात्रा का आकांक्षा चतुर्वेदी की मां नीलम चतुर्वेदी आज नागपुर में सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुई। संविधान चौक पर चल रहे आंदोलन में पहुंचकर उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। नीलम चतुर्वेदी ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो रोज आंदोलन में शामिल होंगी और जरूरत पड़ी तो दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में हिस्सा लेंगी। आरोप लगाया कि बेटी की मौत के बाद आज तक सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं आया। नीट पेपर लीक के बाद तनाव में आकर आकांक्षा चतुर्वेदी ने 20 मई को आत्महत्या कर ली।
9: बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं ये आंदोलन ऐसा चलता ही रहेगा। और इसका नरेंद्र मोदी का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, जो पेपर लीक हुआ उसको फांसी होना चाहिए और सरकार को मांगे पूरी करना चाहिए, नहीं ये आंदोलन ऐसे चलता ही रहेगा। बंद होने वाला नहीं है।
10: आपके घर कोई आया था?
9: हमारे घर कोई नहीं आया, हमारा दुख भी पूछने नहीं आया, हमारा कोई प्रकार का पूछने नहीं आया, कोई नेता मंत्री बहुत दूर में नहीं है, लेकिन इंसाफ चाहिए। नहीं ये चलता रहेगा, हम भी रो जाएंगे इसी आंदोलन में, हम भी बैठे।
0: वहीं सोनम वांगचुक ने भी एक नया वीडियो संदेश जारी करते हुए अनशन तोड़ने पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की गर्मी में 26 दिन अनशन करने के बाद अगर उन्हें सफाई देनी पड़े कि उनकी सरकार से क्या डील हुई है, तो ये शर्म की बात है, धिक्कार है उन लोगों पर।
11: दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूं। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद, क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था, मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है, बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखा कर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से क्यों नहीं तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं आपने देखा होगा, क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठ कर डील करना पड़ता? धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं।
0: ईरान के अवध शहर में अमेरिकी मिसाइल हमलों के बाद कई धमाके होने की खबर है, और ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 घायल हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेहरान और उसके सहयोगियों को कड़ी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कूटनीतिक समाधान का रास्ता अब भी खुला हुआ है। अब आपको दिखाते हैं गुजरात की तबाही। अहमदाबाद से लेकर वलसाड़ तक हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है, लोग परेशान हो गए हैं।
12: आसमानी आफत से पानी पानी गुजरात, अहमदाबाद से लेकर वलसाड़ तक सैलाब ही सैलाब, जहां तक नजर डालो सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके तेजी से डूबते जा रहे हैं। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ और बारिश ने जीना दूभर कर दिया। गांव हो या शहर, मोहल्ले हो या हाई राइज बिल्डिंग, सब परेशान हैं, सब बेहाल हैं और रोजमर्रा की जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है। गुजरात के वलसाड़ की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पिछले कुछ घंटों से सुर्खियां बटोर रही है। एक सोसाइटी की पार्किंग में कई गाड़ियां छत तक डूब गईं। 5-5 फीट तक भरे पानी में फंसी गाड़ियों की हालत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निचले इलाकों में पानी कितनी तेजी से भरा है। वलसाड़ में चारों तरफ यही हाल है। नदियों में बारिश के पानी की वजह से बहाव इतना तेज है कि आसपास के लोगों में खौफ पैदा हो गया। वलसाड़ की ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। पुल के नीचे बहते पानी की धार जैसे सब कुछ बाहर ले जाने पर आमादा है। निचली कॉलोनियों में इतना पानी भर चुका है कि घरों से लेकर गाड़ियां तक पानी में कई कई फीट तक डूबे दिख रहे हैं। यह हालात गिने चुने कुछ इलाकों के नहीं, करीब करीब पूरे जिले में लगातार हो रही बारिश ने हर इलाके में पानी भर दिया। इसकी बड़ी वजह मधुबन बांध भी है, जिस पर दबाव कम करने के लिए उसके सभी 10 गेट खोलने पड़े और लाखों क्यूसेक पानी तेजी से निचले इलाकों में भरता जा रहा है।
13: मैं इस वक्त वलसाड जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बेहतर बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 848 मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है, यहाँ देख आप से देख सकते हैं जो गाड़ियां है वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है।
12: और अब गुजरात के अहमदाबाद पर एक नजर डालिए, बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया है।
0: और देखिए बारिश में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। सो कुडो हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

पीएम मोदी ने फिर जारी किया वीडियो संदेश, कहा सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद। सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन, एनटीए से हटाए गए 47 अफसर, पुलिस एक्शन भी संभव। आज फिर कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के प्रतिनिधि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की बैठक। अभिजीत दीप के बोले, प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, आज कांग्रेस का देश भर में कैंडल मार्च, सूत्रों से खबर, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेगी सरकार। गुजरात से असम तक बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, अहमदाबाद और सूरत पानी पानी में, सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू, असम में 61 लोगों की मौत हुई।

और हॉर्मुज के समंदर में फिर एलपीजी टैंकर पर हमला। शिप में सवार थे 28 भारतीय। ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिकी फोर्स ने किया अटैक। प्रेजेंटेड

पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन जारी किया वीडियो संदेश, कहा आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया वीडियो को देखने और उस पर अपने विचार साझा करने वाले युवाओं का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा देर रात युवाओं से मिलने का अवसर मिला और उनके सकारात्मक सुझावों ने बेहद प्रेरित किया। पीएम ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी और रचनात्मक सोच देश के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत। अनशन तोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम मौर्य का पलटवार, कहा सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिन तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर है धिक्कार। पीएम की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, दो बड़े फैसलों पर लगी मोहर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। केंद्र सरकार की कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगात, 1264 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को मंजूरी। कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बीच बल्लारी गुंदकुल रेल नेटवर्क पर जल्द बिछाई जाएगी तीसरी और चौथी लाइन, इससे 99 गांव की रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पीएम मोदी ने एक्सपालिका बल्लारी गुंदकुल खंड पर डबल रेल लाइन से कर्नाटक आंध्र प्रदेश में संपर्क और लॉजिस्टिक व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को पीएम मोदी की सलाह, बोले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहें सक्रिय, केंद्र के कामों पर रील पोस्ट कर युवाओं से जुड़ने की कोशिश करें। मोदी के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा फैसला, हटाया गया एनटीए के 47 अफसर, पुलिस कार्रवाई भी संभव। शिक्षा मंत्रालय में बड़े बदलाव, एनटीए में भर्ती के लिए जारी किया विज्ञापन, 4 वरिष्ठ जनरल मैनेजर, 16 युवा प्रोफेशनल की भर्ती होगी। पेपर लीक पर सख्त कानून का मसौदा कैबिनेट में मंजूर, 10 साल तक सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान, संसद में सोमवार को पेश होगा बिल। सूत्रों के हवाले से खबर, इस्तीफा नहीं देंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मंत्री के साथ मजबूती से खड़ी हुई है पार्टी। सरकार की दलील, कहा इस्तीफा देने का मतलब जिम्मेदारी से भागना, व्यवस्था में खामियों का जल्द होगा समाधान। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन, मामले में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सोमवार को सुनवाई। पेपर लीक के विरोध में आज कांग्रेस का देशव्यापी मार्च, सभी से शामिल होने की अपील। सरकार के सामने सीजेपी ने 3 मांगे रखी, बोले पीड़ितों को मुआवजा और छात्रों से केस वापस लेने पर सहमति, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार। नड्डा ने कहा सीजेपी ने 3 मांगे रखी, 5 सुझाव रखे, आंतरिक चर्चा करने के बाद सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ आज एक और बैठक होगी। छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर सीजेपी का बड़ा ऐलान, अभिजीत दीप के बोले सबूत जुटाने और पुलिसकर्मियों की पहचान के लिए लॉन्च होगी वेबसाइट। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच के लिए बड़ा एक्शन, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। दिल्ली पुलिस की सख्त चेतावनी, जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर अफवाहें ना फैलाए, सख्त कार्रवाई होगी वरना। एफआरएस सिस्टम ने किया बड़ा खुलासा, जंतर मंतर के धरना स्थल से लेकर आसपास के इलाकों में 400 से ज्यादा आपराधिक इतिहास, क्रिमिनल घूमते दिखे। छात्र प्रदर्शन को लेकर केंद्र पर बरसी ममता बनर्जी, एक्स पर पोस्ट कर लिखा शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए इतनी बेताबी क्यों है। पैलेट गन से घायल छात्र को लेकर सामने आए राहुल गांधी का, युवक ने गवाही एक आग, बंद हो मारपीट, सरकार छात्रों की रिमांड पूरी करे। पुणे में कलेक्ट्रेट और लाल महल पर आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, नारेबाजी की। पुणे में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की, भारी भीड़ के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नीट पेपर लीक मामले पर शिवसेना और एमएनएस एक साथ, आदित्य और अमित ठाकरे ने शिवाजी पार्क में निकाली तिरंगा रैली। मुंबई में भी सीजेपी प्रदर्शन को भारी समर्थन, आजाद मैदान समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारी जुटे, सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली में विश्व मंगल्य सभा कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा जब हम युवा थे तो दौर आज्ञा मानते थे, अब ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी सवाल पूछती है और तर्क समझाना होता है। इस बार सहारनपुर में कांवड़ यात्रा पर एटीएस का पहरा, 3 कंपनी पीएसी आरपीएफ के साथ साधा कपड़े में तैनात रहेगी पुलिस। अलीगढ़ में भी कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर परिसर में व्यवस्था की जा रही है चाक चौबंद, कांवड़ यात्रा आयोजित करने का आश्वासन भी सुरक्षित माहौल में दिया गया है। महाराष्ट्र के डोंबिवली में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने श्रद्धालुओं के साथ रथ खींचा। झारखंड के बोकारो बाल सुधार गृह में फ्लू का प्रकोप, 20 बाल बंदी पाए गए संक्रमित, एक आईसीयू में भर्ती। बिहार सरकार ने 19 खिलाड़ियों को दी नौकरी की सौगात, आकाशदीप और मुकेश कुमार डीएसपी बने। नागपुर में स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का प्रदर्शन, 10 सेकंड में 64 रॉकेट दागकर दुश्मनों का स्टॉर्म अटैक करेगा बेदम। मॉडर्न वॉर फेयर के लिए क्षमताओं का किया परीक्षण, भारतीय सेना के डेलीगेशन के सामने प्रदर्शन। कटरा में पुलिस की बड़ी कामयाबी, वैष्णो देवी और शिवखोड़ी में गुम हुए 206 मोबाइल वापस लौटाए गए।
कड़ी सुरक्षा के बीच पुरी में बहुड़ा यात्रा का शुभारंभ हुआ। लाखों लोग भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा में शामिल हुए। असम में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू, मरने वालों की संख्या पहुंची 61। आज देश के बड़े हिस्से पर सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून का असर, कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद, कई उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में भी दिन भर तेज बारिश हो सकती है। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सिंह भी वलसाड़ पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। भारी बारिश के चलते 3 आईएएस अधिकारियों ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों का बोट में बैठकर दौरा किया, राहत कार्यों की समीक्षा की। रामबन और उधमपुर जिले में कई जगहों पर भूस्खलन, कीचड़ खिसकने और पत्थर गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी बंद। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के बीच फटा बादल, पांगी घाटी जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी में बहे मासूम का 4 दिन बाद शव बरामद, एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने ड्रोन और गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया था। रुद्रप्रयाग के कालीशिला में हार्ट अटैक से अचेत हुए गुजरात के श्रद्धालु का सफल रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर से किया गया एयरलिफ्ट। सूरत में बाढ़ बारिश से भारी बारिश, तबाही और पूरा रिहायशी इलाका पानी में डूबा। राजगढ़ में प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में हाई वोल्टेज हंगामा, जिला पंचायत अध्यक्ष को रोका, मंच पर बुलाया, फिर भीड़ में पड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल हुआ। बिजनौर में चढ़ता मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 2 मजदूरों की मौत, 2 लापता, धमाके में शवों के टुकड़े दूर तक गिरे। यूपी के बांदा में डीजल पेट्रोल का मामला सामने आया, डीजल घोटाले का मामला सामने आया, जांच में दस्तावेजों में हेराफेरी होने के बाद 3 कर्मचारी निलंबित। पंजाब के मोगा में सरकारी स्कूल के शिक्षक को सस्पेंड, शिक्षक पर छेड़छाड़ के आरोप। हिमाचल के पांगी में भीषण लैंडस्लाइड हुई, किलाड़ उदयपुर मार्ग पर चलती गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरा, 13 लोगों की मौत, 2 सुरक्षित। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद भीषण आग, 2 की मौत, 2 लापता। बागपत में केले के मूल भाव को लेकर फल विक्रेता बाप बेटे में हिंसक झड़प। मोतिहारी में कुछ युवकों को रील बनाना भारी पड़ा, बगीचे में बना रहे थे वीडियो, ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीटा। मेरठ में जगन्नाथ शोभा यात्रा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 1 की मौत, 10 झुलसे। सहारनपुर में मंदिर चोरी के मामले में 3 गिरफ्तार, मंदिर से चुराए गए घंटे, लोटे, दीपक बरामद हुए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बाल सुधार गृह से 3 नाबालिग फरार हुए, रोशनदान की बिल तोड़कर भागे, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर लगभग 2 करोड़ रुपए की सोने और डायमंड की जेवरात बरामद हुई, रात के 2 युवक गिरफ्तार हुए। सासाराम में पुलिस बैरक की छत पर बीएसएपी जवान ने की खुदकुशी, अपने ही सरकारी हथियार से सिर में मारी गोली। एमपी के पन्ना में मोबाइल कवर की डिलीवरी को लेकर विवाद, एसडीएम ने ऑर्डर किए थे 2 मोबाइल कवर लेकिन 1 मिलने पर बुलाई पुलिस, वीडियो वायरल। जालना में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 किलो से ज्यादा गांजा बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार, लाखों का माल जब्त। आसनसोल में रामपुर चेक पोस्ट पर रिश्वत के आरोप में 2 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर सस्पेंड, एसीबी करेगी जांच। भारत जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 आज, वैभव पर सबकी नजर। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने खोला भारत का खाता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में झंडू कुमार ने मेंस हैवीवेट पावर लिफ्टिंग में परचम लहराया। घरों की बिक्री और नए प्रोजेक्ट लॉन्च को लेकर बायर्स का निराशा घटने का नाइट फ्रैंक नायडिको का दावा। रसोई की महंगाई ने दुनिया के हर तीसरे व्यक्ति की थाली से पौष्टिक भोजन दूर किया, गेहूं, चीनी, प्याज और खाद्य तेल के महंगा होने से पोषण पर सबसे ज्यादा असर। भारतीय पेमेंट कंपनियों ने एनपीसीआई से यूपीआई में 1 क्लिक चेकआउट के प्रस्ताव का विरोध किया, इस कदम से बड़े ऐप्स का दबदबा बढ़ेगा जिससे छोटी कंपनियों को नुकसान होगा। मुंबई के ऑटोमेशन एक्सपो में मेक इन इंडिया और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, एआई की मदद से ताइवान एक्सीलेंसी दिखाएगा, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की नई तकनीक। यूरोपियन यूनियन ने डीएमए रूल्स तोड़ने के आरोप में गूगल पर करीब $1 बिलियन का जुर्माना लगाया। ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है विक्रांत मैसी की मुसाफिर कैफे, नेटफ्लिक्स पर दिल को छूने वाली रोमांटिक ड्रामा। सरकारी स्कूलों की चरमराती व्यवस्था को दिखाती वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय रिलीज, के मेनन की गजब एक्टिंग। थिएटर्स में रिलीज होने के लिए 21 दिन बाद ओटीटी पर आई तेलुगु फिल्म नागबंधम, एक प्राचीन पवित्र खजाने को बुरी ताकतों से बचाने की लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती है कहानी।
मेघर्स ने टाली राजकुमार राव के प्रहार की रिलीज, पहले 7 अगस्त को रिलीज होनी थी। सैयारा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन करते दिखेंगे आहान पांडे, नई फिल्म रिलीज होगी 26 मार्च 2027 को। ईरान के आवाज शहर में अमेरिकी मिसाइल हमलों में कई धमाके हुए हैं, ईरानी मीडिया के अनुसार 4 लोगों की मौत, 5 घायल। ट्रंप ने तेहरान और उसके सहयोगियों को कड़ी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी, कहा कूटनीतिक समाधान का रास्ता भी खुला है। ब्लैक सी में कमर्शियल जहाज पर हमला, एक भारतीय की मौत की खबर। ईरानी सेना ने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को जबरदस्त हमला किया, बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान की सेना IRGC ने खाड़ी देश में रह रहे इलाकों को लोगों को जारी की चेतावनी, कहा आम लोग उन ठिकानों से दूर रहे जहां अमेरिकी सैनिक हैं। ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी, कहा ईरान के खिलाफ पहले से भी बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने के बारे में सोच रहा हूं। ईरान की गिरफ्तार से इजराइल और अमेरिका हैरान, द वॉल स्ट्रीट। डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि पहले से भी बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं ईरान पर। ईरान की रफ्तार से इसराइल और अमेरिका हैरान, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस और इजरायली हमलों में तबाह हुए बुनियादी ढांचों को ईरान ने पुनर्निर्माण किया। फिलीपींस की नौसेना ने चीनी नौसेना पर फिर लगाया फिलीपींस के जहाज पर हमला करने का आरोप, दक्षिण कोरिया चीन सागर में फिलीपींस के जहाज पर वाटर कैनन से हमला। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी कि अमेरिका आएंगे 24 सितंबर को शी जिनपिंग। फ्रांस के जंगलों में भीषण आग, बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, कैप फेरे प्रायद्वीप में सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज देव शयनी एकादशी का पावन पर्व है और आज की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से अगले 4 महीने तक शुभ और मंगल कार्य बंद हो जाएंगे। तो देव शयनी एकादशी का महत्व क्या है, इसकी विशेषता और पूजा विधान क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। आज के दिन की विशेषता क्या है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार, तिथि है आशा।

और अधिक मास होने से 26 एकादशी हो जाती है, लेकिन उसमें देवशयनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, भीमसेनी एकादशी, इनका अपना विशिष्ट महत्व है। तो देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है पहले ये जानते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी से अगले चार महीने तक यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए अगले चार महीने तक शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं भगवान विष्णु के देवताओं के शयन की वजह से। अगले चार महीने तक शुभ कार्य नहीं होते। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इसी समय से चातुर्मास आरंभ होता है और सामान्यतः तपस्वियों के लिए ये नियम है कि वो एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रुकेंगे, निरंतर भ्रमण करते रहेंगे। लेकिन चातुर्मास में देवशयनी एकादशी से तपस्वियों का भ्रमण बंद हो जाता है। इन दिनों में केवल ब्रज क्षेत्र की यात्रा की जा सकती है। देवशयनी एकादशी कहते इसलिए हैं क्योंकि ऐसा मानते हैं कि अब देवताओं का शयन होगा, अब भगवान विष्णु का शयन होगा और सारे शुभ और मंगल कार्य अगले चार महीने तक बंद रहेंगे। आज देवशयनी एकादशी है और आज विशेष पूजा करके भगवान विष्णु को योग निद्रा में सुलाया जाएगा। एकादशी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, परिवार में शांति बनाए रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा।

शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब आपके मन में एक बात जरूर आ रही होगी कि क्या वास्तव में देव शयनी एकादशी पर देवता सो जाते हैं, भगवान का शयन हो जाता है, क्या वास्तव में भगवान भी कभी सोते हैं? देखिए, हरि और देव, हरि का अर्थ भगवान विष्णु भी है, देव का अर्थ देवता है, लेकिन हरि और देव का अर्थ तेजस तत्व से भी है, तेज तत्व से भी है। इस समय में जो चातुर्मास का समय होता है, इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति, इनका तेज कम होता जाता है, इनका तेज धीरे धीरे घटने लगता है। तो तेज घटने का मतलब है जो प्रकृति की शुभता है, जो शुभ शक्तियां हैं, वो कमजोर होने लगती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है, यानी शुभता अब कम हो गई है। तेज तत्व के कमजोर होने से, शुभ शक्तियों के कमजोर होने से इस समय काम करने को मना किया जाता है, क्योंकि अगर शुभता कम होगी और आप उस समय काम करेंगे तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ नहीं होंगे। इसके अलावा शुभता चूंकि कम रहेगी, बावजूद इसके अगर आप शुभ कार्य करेंगे तो काम में बाधा आने की संभावना बनेगी। इसीलिए चार महीने तक श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये जो चातुर्मास हैं, इनमें शुभ कार्य करने की मनाही तब तक होती है जब तक देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु और देवता योग निद्रा से न जग जाएं। देवशयनी एकादशी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, छोटी यात्रा हो सकती है, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न उर्मिला जी ने हमें लिखा है, बिहार से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 नवंबर 1988, जन्म का समय शाम के 5 बजे, जन्म का स्थान है बेगूसराय बिहार। उर्मिला जी कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, बहुत अशांति रहती है, तो क्या मेरी शादी चल पाएगी और अगर चल पाएगी तो मैं वैवाहिक जीवन को कैसे बेहतर कर सकती हूँ। उर्मिला जी, सबसे पहले तो आप खुद अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए। केवल एक पक्षकार की गलती से दिक्कत नहीं हो रही है, दोनों की गलती है। आपको भी क्रोध बहुत आता है, आपकी वाणी पर कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से मामला थोड़ा बिगड़ जाता है। धैर्य और संयम से काम लें, आने वाला समय अच्छा है, तो ऐसा लगता है कि आपकी वैवाहिक जिंदगी चलेगी भी और बेहतर भी चलेगी। अक्टूबर 2026 के बाद सुधार दिख रहा है, लेकिन आप अपनी वाणी का, क्रोध का थोड़ा ध्यान रखिए। एक ओपल बनवा के पहने, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, देव शयनी एकादशी का जो अवसर है वो बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। अगर आप आज उपवास रखते हैं या सात्विकता रखते हैं और भगवान की पूजा साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपको बहुत सारे वरदान मिल सकते हैं। क्या क्या वरदान मिल सकते हैं? सामूहिक पापों का और समस्याओं का नाश होता है। सारे मोहल्ले के लोग, सोसाइटी के लोग, घर के लोग मिल करके अगर आज भजन कीर्तन करें थोड़ा भी समय निकाल करके, तो सामूहिक पापों का और सामूहिक समस्याओं का नाश होगा। और आज के दिन साधना करने से, उपासना और ध्यान करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। आज के दिन साधना, पूजा, उपासना करने से दुर्घटनाओं के जो योग हैं वो दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देव शयनी एकादशी पर आप उपवास रखें और इसके बाद अगले 4 महीने तक चातुर्मास में आप साधना उपासना करें तो आप अपने शरीर को और अपने मन को नवीन कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। देव शयनी एकादशी पर भगवान योग निद्रा में जरूर चले जाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। तो आप जितने समय प्रभु योग निद्रा में हैं, उतने समय अगर आप साधना उपासना ज्यादा करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। देखिए, देव शयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी के 4 महीने तक विवाह, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा।
लेकिन ये 4 महीने साधना के, उपासना के और तपस्या के महीने हैं। इसीलिए सावन में भगवान शिव की उपासना करिएगा, भाद्रपद में भगवान कृष्ण और गणपति की उपासना करिएगा, आश्विन में पितरों की और देवी की उपासना करिएगा और कार्तिक में भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। अगर आप चातुर्मास में ठीक से साधना उपासना करें तो आप अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। देव शयनी एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है। और आज आपको जिज्ञासा में बताएंगे कि एकादशी तिथि पर चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी, परिवार में अशांति से बचिएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार पर भी थोड़ा ध्यान दें, ऑफिस में विवाद हो सकता है, शनि मंत्र का जप करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब ये जानते हैं कि देव शयनी एकादशी पर पूजा उपासना कैसे करेंगे। देखिए, आज रात की पूजा बहुत विशेष है, तो रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। उनको पीली वस्तु में पीली मिठाई, पीले फूल, पीला वस्त्र अर्पित करिएगा और इसके बाद उनके मंत्रों का जप करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, या हरि नाम का जप करिएगा या हरि नाम का संकीर्तन करिएगा। मंत्रों का जप करने के बाद उनकी आरती उतारिएगा और आरती के बाद एक विशेष मंत्र बोल करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करिएगा। श्लोक मंत्र स्क्रीन पर देखिए, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम,
विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप भले ही योग निद्रा में जा रहे हों, लेकिन भक्तों पर अपनी करुणा बनाए रखें, भक्तों पर ध्यान अपना बनाए रखें। इस प्रकार से आप देव शयनी एकादशी की रात को साधना पूजा कर सकते हैं। और अगर आप विशेष लाभ चाहते हैं तो देव शयनी एकादशी की मध्य रात्रि को यानी आज मिडनाइट में एक बार दीपक जला करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा या सुनिएगा, आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, सेहत अच्छी रहेगी, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा मरून। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

लाभ होगा, मानसिक तनाव दूर होगा, करियर में लापरवाही ना करें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें, दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा जानते भी हैं और मानते भी हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, पौराणिक कथा ये कहती है कि शक्ति से बचने के लिए एक महर्षि थे, महर्षि मेधा। महर्षि मेधा जमीन में समा गए, भूमि में समा गए, और उन्हीं के रक्त से और मांस से चावल का निर्माण हुआ। और जिस दिन वो जमीन में समाए, वो दिन थी एकादशी की तिथि। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर अगर आप चावल खाते हैं तो वो महर्षि मेधा के रक्त और मांस के बराबर है। ये तो पौराणिक बात है। वैज्ञानिक बात यह है कि चाहे एकादशी पूर्णिमा के पहले पड़े, चाहे अमावस्या के पहले पड़े, इस दिन मन में चिंता होने की, मन में तनाव या डिप्रेशन होने की संभावना बहुत होती है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है कि एकादशी पर हल्का भोजन करिए, जबकि चावल एक भारी भोजन है। तो इसीलिए आपके मन पर दुष्प्रभाव ना पड़े, आप मेंटली परेशान ना हो या आपको पेट में कोई असुविधा का अनुभव ना हो, इसलिए कहा गया कि एकादशी पर चावल ना खाएं। वास्तव में इसका पाप पुण्य से लेना देना नहीं है, लेकिन

तो एकादशी को चावल ही नहीं कोई भी भारी और गरिष्ठ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1 काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2 स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3 शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 4 धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5 यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6 स्थान परिवर्तन हो सकता है। नंबर 7 रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8 करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 9 काम की अधिकता रहेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि देव के मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, जरा सा घी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगा के जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन भूमि भवन आभूषण, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान।

वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि के लोगों को, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में आप जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज एकादशी तिथि है, आज सात्विकता बनाए रखें, प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग ना करें और आज हर व्यक्ति थोड़ा समय निकाल कर श्री हरि की उपासना करे तो बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, दिल्ली के वसंत कुंज में कार नाले में जा गिरी है। कार में एक सेना अधिकारी का बेटा सवार था और हादसे में उसकी मौत हो गई। वसंत कुंज दिल्ली का पॉश इलाकों में शामिल है, जहां फिसलन भरी सड़क पर कार अचानक बेकाबू हो गई और नाले में जा गिरी। हादसे के वक्त सेना अधिकारी के बेटे की महिला मित्र गाड़ी चला रही थी। 20 वर्षीय यशवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी दोस्त घायल बताई जा रही है, जो गाड़ी चला रही थी। सेना अधिकारी के बेटे की मौत हुई।
3: वसंत कुंज इंक्लेव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, कार की जो ये स्थिति है, ये पूरी तरीके से पलटी है। ये स्कोडा कार है और ये जो घटना हुई है 24 जुलाई को है, सुबह सुबह की घटना है। और ये जो नाला आप देख रहे हैं, इस नाले में ये कार पूरी तरीके से पलट गई थी, जिसके कारण इसमें जो कार सवार जो ड्राइवर था उसकी मौत हुई है। देखिए, ये जो घटना हुई है, दरअसल पुलिस को इसकी सूचना मिली थी, जो 24 तारीख को जो है सुबह सुबह सूचना मिली थी कि ये गाड़ी जो है वो नाले में पलटी हुई है। उसके बाद पुलिस यहाँ पे आई, पुलिस ने जब यहाँ पे देखा और स्थानीय लोगों ने जब देखा, तो ये गाड़ी पूरी तरीके से इस नाले में पलटी हुई थी और लोग भी मदद कर रहे थे इसको हटाने के लिए। और ये गाड़ी जो था, जो इसका ड्राइवर था, वो इसी में फंसा हुआ था। उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है और वो एक आर्मी ऑफिसर है, उनका लड़का था। उसके साथ एक लड़की भी इस गाड़ी में बैठी थी, जो कि निकाल ली गई, वो निकल गई थी, उसकी जान बच गई।
2: इस बीच एक और बड़ी खबर, वो भी आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि जंतर मंतर पर 20 जुलाई को जो हंगामा हुआ, छात्रों के विरोध प्रदर्शन में आपराधिक बैकग्राउंड के लोग शामिल थे और उनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम ने प्रदर्शन में ऐसे 2500 लोगों की पहचान की। देखिए, आंकड़ा बढ़ रहा है, 2500 लोगों की पहचान किया जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब ये छात्र होंगे, आप समझ लीजिए कि 2500 ऐसे लोग थे जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने ऐसे स्ट्रीटर्स की तस्वीरें भी जारी की हैं और अब तक इस मामले में 15 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। 20 जुलाई को तोड़फोड़ हुआ, पत्रकारों के साथ मारपीट हुई, गाली गलौज की गई, सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। अब लोग पूछ रहे थे कौन थे, वो छात्र थे, स्टूडेंट्स थे प्रदर्शन करने वाले, तो अब उसका जवाब यहां पर दिखाई दे रहा होगा। 2500 ऐसे लोग जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। किस छात्र पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं? हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बहुत से सवाल थे कि कौन थे वो लोग जो हुड़दंग मचा रहे थे, सरकारी निजी संपत्ति को तोड़ रहे थे, अब शायद उसका जवाब मिल गया।
4: बिल्कुल, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं था, ना तो प्रोटेस्ट से, ना छात्रों से, ना उनकी डिमांड से। दरअसल कानून व्यवस्था को खराब करना शायद उनकी थी, लेकिन अभी जब पकड़े जाएंगे, उसके बाद जब उनसे पूछताछ होगी, तब काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि अभी तक जो डाटा मिला उसके मुताबिक उनमें से कुछ का तो पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना ही नहीं है। यानी जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जब स्टूडेंट छात्रों ने अपनी मांग को लेकर के प्रोटेस्ट शुरू किया, जंतर मंतर पे उन्होंने आना शुरू किया, तो उसी के साथ ही जो असामाजिक तत्व है उन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। और जब लगा कि लॉ एंड ऑर्डर वो बिगाड़ सकते हैं, तो उन्होंने उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आप देखिए जिस तरीके से वर्दी को हिमांशु टारगेट किया गया, आप 20 जुलाई की बात करेंगे, 20 जुलाई को तो जो हुआ वो सबने किस तरीके से, कई ऐसी जगह थी जहां पे टारगेट किया गया। और बुधवार को एक बार फिर से दो ACP रैंक के अधिकारियों के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई, जिसमें ACP कनॉट प्लेस विवेक भगत, इंस्पेक्टर जो वुमेन सेल में है नंद किशोर, इन सबके पास हम पहुंचे थे। आज तक ने सबसे बात की और पूरा कि उन्होंने वो ड्यूटी पर पहुंचे थे और किस तरीके से टारगेट करके एक फेक, आप देखिए उनसे बातें कही गई थी कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो इंस्पेक्टर जिनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो हम बात करेंगे, आप लोग अगर शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसके कहने के साथ ही उनपे अटैक कर दिया गया। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि जैसे प्लान तरीके से भड़काना स्टूडेंट को अलग अलग हिस्से में जा करके, तो ये कौन लोग थे और क्यों यहाँ पर आ रहे थे, इसके लिए पुलिस ने डे वन से वहां पे FRS सिस्टम लगा रखा था, क्योंकि जब भी इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट होता है तो प्रोटेस्ट साइट को भी सिक्योर रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि कोई स्टूडेंट अगर वहां पे आ रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को भी भेज रहा है, तो उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी पुलिस की है। तो ऐसे में पुलिस नजर रखती है कि जो स्टूडेंट आ रहा है प्रोटेस्ट करने, वो प्रोटेस्ट करे और सुरक्षित अपने घर वापस जाए, लेकिन असामाजिक तत्व उसमें पहुंचते हैं, गड़बड़ी।
2: और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हिमांशु कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इनको पकड़ा जाए और कार्रवाई भी की जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी, ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी जिलों में कैंडल मार्च निकालने का प्लान कांग्रेस की तरफ से तैयार किया गया है। तो नीट पेपर लीक का मुद्दा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का मामला अब देश के हर जिले तक ले जाने की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है, और इसी के चलते आज सभी जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च निकालने का प्लान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांग ही रहे हैं, साथ ही नीट पेपर लीक का मुद्दा और उसके जरिए जनता के बीच जाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। कैंडल मार्च निकाला जाएगा और सभी जिला मुख्यालयों में निकाला जाएगा। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका यहां निभा रही है, पूरी तरह से एक्टिव है कांग्रेस, मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाते हुए राहुल गांधी भी रोजाना मीडिया के सामने आ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, सवाल पूछ रहे हैं सरकार से और जवाब मांगा जा रहा है। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है और इसी वजह से सदन भी नहीं चल पा रही है, क्योंकि जब तक इस्तीफा नहीं तब तक कार्रवाई नहीं, ऐसा कांग्रेस कह चुकी है। तो देश के सबसे बड़े पेपर लीक नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले का कथित मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता पुलिस के हत्थे चढ़ गया, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने उसे बिहार से गिरफ्तार किया, यही है वो जिसको आप देख रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता, जो कि बताया जा रहा है कि पेपर लीक का एक बड़ा चेहरा है। और अब विजेंद्र गुप्ता वही नाम जिसका 2024 में नीट पेपर लीक के बाद आज तक इंडिया टुडे ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, उस स्टिंग में उसने कथित तौर पर पेपर लीक सिंडिकेट के तौर तरीकों और NTA की सुरक्षा व्यवस्था में खामियों का खुलासा किया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता का नाम देश के कई पेपर लीक मामलों से जुड़ता रहा है। महाराष्ट्र ईटी पेपर लीक केस में इससे पहले उसकी पत्नी समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन विजेंद्र गुप्ता लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अरविंद, विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी कितनी बड़ी सफलता?
5: बहुत बड़ी सफलता है महाराष्ट्र पुलिस के लिए अब विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी। कई दिनों से ये महाराष्ट्र पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था, लेकिन फाइनली महाराष्ट्र पुलिस ने इसे बिहार से गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ इसके साथ एक और आरोपी है जिसे महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़ा है। विजेंद्र गुप्ता की अगर बात करें हिमांशु, तो 2024 में जब नीट पेपर लीक हुआ था तब मैं खुद और मेरी सहयोगी श्रेया हम बिहार गए थे और हमने इसका स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें खुलासा हुआ था कि विजेंद्र गुप्ता कई देश के पेपर लीक में शामिल रहा है। और साथ ही साथ जो पूरा पेपर लीक का सिंडिकेट है बिहार से लेकर पूरे देश में फैला हुआ है, उसको लेकर बड़े खुलासे विजेंद्र गुप्ता ने किए थे। NTA को लेकर खुलासा किया था, कैसे पेपर लीक होता है, कैसे देश के जितने बड़े एग्जाम होते हैं उनका पेपर लीक होता है, उसके बारे में खुलासा किया था। साथ ही साथ विजेंद्र गुप्ता ने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में उस दौरान दावा किया था कि CBI मुझे पकड़ नहीं सकती। बड़ा सवाल यह है कि इतने पेपर लीक में शामिल होने के बावजूद भी ये बाहर था जेल से, उसके बाद इसने TET एग्जाम जो महाराष्ट्र का एग्जाम था उसको लीक किया, जिस मामले में इसकी पत्नी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने भी ठान लिया था कि इस छात्रों के सबसे बड़े दुश्मन को गिरफ्तार करना है, जिसके बाद बिहार में कई दिनों तक महाराष्ट्र पुलिस की टीम लगी थी और फाइनली विजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है महाराष्ट्र पुलिस।
2: अरविंद, ये बताइए कि विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी से क्या पेपर लीक सिंडिकेट की जो परतें हैं वो खुल पाएंगी? कितनी सफलता इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने में मिलेगी?
5: बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो टीईटी पेपर लीक, जिसमें लाखों की संख्या में महाराष्ट्र पुलिस में बच्चों ने एग्जाम दिया था, सबसे पहले तो उनका दुश्मन है ये, उसको गिरफ्तार किया है। उस मामले में महाराष्ट्र पुलिस इससे पूछताछ करेगी, लेकिन साथ ही साथ और भी जो एग्जाम होते हैं, पूरा जो पेपर लीक का सिंडिकेट कैसे चलता है, इसको भी जानने में महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी मदद मिलने वाली है। तो देखिए किस तरह से पेपर लीक होता है, आज तक इंडिया टुडे ने 2024 में ही इस पेपर माफिया को बिहार जाकर एक्सपोज किया था, लेकिन उसके बाद ये बाहर था और बाहर रहने का नतीजा ये हुआ कि इसने एक और पेपर लीक करा दिया था हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद, टीईटी एग्जाम, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस को इसकी तलाश थी और महाराष्ट्र पुलिस ने फाइनली इसे गिरफ्तार किया है, मुंबई लेकर गई है। अब इससे पूछताछ होगा और पेपर लीक सिंडिकेट को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं हिमांशु।
2: और बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं पेपर लीक को लेकर, जो अभी तक विजेंद्र गुप्ता के बारे में समझ में आया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं सीजेपी और सरकार के बीच आज तीसरे दौर की अहम बैठक होने जा रही है। सबकी नजर 3 बजे से 3:30 बजे तक होगी, जब ये बैठक होगी, जहां पर होंगे सौरभ दास, रांका, जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दो सरकार की तरफ से, दो सीजेपी की तरफ से। तो आज दोपहर 3:30-3 बजे कांग्रेस जनता पार्टी का डेलीगेशन के साथ बातचीत होगी और ये सूत्र बता रहे हैं कि बैठक के बाद सीजेपी संसद तक एक और मार्च का ऐलान कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर यानी हेडलाइंस पर।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन में क्रिमिनल नेटवर्क का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने 2500 से ज्यादा आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों की पहचान की, अब तक 15 FIR। कांग्रेस जनता पार्टी और सरकार के प्रतिनिधियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच आज तीसरे राउंड की बैठक। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर समाधान की उम्मीद। गुजरात से असम तक बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। अहमदाबाद और सूरत पानी पानी में, सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू। असम में 61 लोगों की मौत। दिल्ली के पौशला के वसंत कुंज में नाले में गिरी तेज रफ्तार कार, सेना के अधिकारी के बेटे की मौत। कार चला रही महिला मित्र जख्मी। सड़क पर फिसलन के कारण हादसा। और हॉर्मुज के समुद्र में फिर एलपीजी टैंकर पर हमला। शिप में सवार थे 28 भारतीय। ईरानी मीडिया का दावा, अमेरिकी फोर्स ने किया अटैक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
0: उधमपुर में भारी बारिश से जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई। जिले की 102 जलापूर्ति योजनाएं बारिश से क्षतिग्रस्त। 27 जलापूर्ति योजनाओं में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद। रामनगर और चैनारी में जलापूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित। रियासी में मानसून की बारिश के बीच दिखा दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल पुल। मानसून के मौसम में चिनाब रेल पुल का मनमोहक नजारा। भारतीय सेना का गुजरात में बाढ़ राहत अभियान, 43 लोगों को सुरक्षित निकाला। कई जिलों में बचाव कार्य जारी। असम में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू। मरने वालों की संख्या 61 पहुंची। आज देश के बड़े हिस्से पर सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून का असर। कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद। कई उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में भी दिनभर तेज बारिश हो सकती है। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी वलसाड़ पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। भारी बारिश के चलते 3 IAS अधिकारियों ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों का बोर्ड में बैठक कर दौरा किया, राहत कार्यों की समीक्षा की। रामबन और उधमपुर में कई जगहों पर भूस्खलन, कीचड़ खिसकने और पत्थर गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी बंद। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के बीच फटा बादल। पांगी घाटी जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी में बहे मासूम का 4 दिन बाद शव बरामद। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने ड्रोन और गोताखोरों की मदद से चलाया था सर्च ऑपरेशन। रुद्रप्रयाग के कालीशिला में हार्ट अटैक से अचेत हुए गुजरात के श्रद्धालु का सफल रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर से किया गया एयरलिफ्ट। सूरत में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, पूरा रिहायशी इलाका पानी में डूबा। सड़कों पर खड़े दोपहिया वाहन पूरी तरह जलमग्न। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें अब सामने आई। गुजरात में औरंगा नदी की बाढ़ में फंसी पर्यटकों की बस। जालना के 15 से 17 नागरिक समेत 35 यात्रियों को किया गया सुरक्षित रेस्क्यू। गुजरात के नवसारी में बाढ़ के बीच मेघार गांव में इंडियन कोस्ट गार्ड का बचाव अभियान, लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुजरात के बनासकांठा में पिछले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश, पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए खेत खलिहान। भाबर और दियोदर में 11 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज। कई इलाकों में भारी जलभराव, लोगों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। सूरत के बाढ़ बारिश का कहर, खाड़ी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। 300 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन जारी किया वीडियो संदेश, कहा आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद, हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ेगा। पीएम मोदी ने अपने हालिया वीडियो को देखने और उस पर अपने विचार साझा करने वाले युवाओं का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा देर रात युवाओं से मिलने का अवसर मिला और उनके सकारात्मक सुझावों ने बहुत प्रेरित किया। पीएम ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी और रचनात्मक सोच देश के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत। अनशन तोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम मौर्य का पलटवार, कहा सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिनों तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर है धिक्कार। पीएम मोदी के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा फैसला, हटाए गए एनटीए के 47 अफसर, पुलिस कार्रवाई भी संभव। शिक्षा मंत्रालय में बड़े बदलाव, एनटीए ने भर्ती के लिए जारी किया विज्ञापन, 4 वरिष्ठ जनरल मैनेजर, 16 युवा प्रोफेशनल की भर्ती होगी। पेपर लीक पर सख्त कानून का मसौदा कैबिनेट में मंजूर, 10 साल तक सजा, 10 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान, सोमवार को संसद में पेश हो सकता है संशोधन विधेयक। सूत्रों के हवाले से खबर, इस्तीफा नहीं देंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सरकार मंत्री के साथ खड़ी है। अभिजीत दिपके को हुआ टाइफॉइड, इलाज जारी, ब्लड रिपोर्ट पर संक्रमण की पुष्टि, वीडियो जारी कर बोले संघर्ष जारी रहेगा। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन मामले में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पेपर लीक के विरोध में आज कांग्रेस का देशव्यापी मार्च, सभी से शामिल होने की अपील। सरकार के सामने सीजेपी ने रखी तीन मांगे, बोले पीड़ितों को मुआवजा और छात्रों से केस वापस लेने पर सहमति। प्रधान के इस्तीफे की मांग पर विचार कर रही सरकार, आज आएगा जवाब। जेपी नड्डा ने कहा सीजेपी ने तीन मांगे और पांच सुझाव रखे, आंतरिक चर्चा करने के बाद सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ आज एक और बैठक करेगी सरकार। छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर सीजेपी का बड़ा ऐलान, अभिजीत दीप के बोले सबूत जुटाने और पुलिसकर्मियों की पहचान के लिए लॉन्च होगी वेबसाइट। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच के लिए बड़ा एक्शन, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। दिल्ली पुलिस की सख्त चेतावनी, जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर अफवाहें ना फैलाए, होगी सख्त कार्रवाई। जंतर मंतर प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, FRS कैमरों से 2500 से ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की पहचान, 15 FIR। छात्र प्रदर्शन को लेकर केंद्र पर बरसी ममता बनर्जी, एक्स पर पोस्ट कर लिखा शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए इतनी बेताब क्यों है सरकार। पैलेट गन से घायल छात्रों को लेकर सामने आए राहुल गांधी, कहा युवक ने गवाई एक आंख, बंद हो इनसे मारपीट। पुणे में कलेक्टर और लाल महल पर आयोजित CGF के विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी। पुणे में प्रदर्शन के आयोजन प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की, भारी भीड़ के चलते पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नीट पेपर लीक मामले पर शिवसेना, UBT और MNS एक साथ, आदित्य और अमित ठाकरे ने शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली निकाली। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बोले मेट्रो इंटरनेट और रास्ते बंद किए, पेपर लीक नहीं रोक पाए। दिल्ली में विश्व मांगल्य सभा कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा जब हम युवा थे तो और दौर आज्ञा मानने का था, अब ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी सवाल पूछती है, उनको समझाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा, विधानसभा सचिवालय से जारी की गई अधिसूचना। सीएम योगी ने यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, सुरक्षा और सुविधा होगी सर्वोच्च प्राथमिकता। सीएम योगी के पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर 24 घंटे रहेगी नजर, ड्रोन और CCTV से पेट्रोलिंग, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। शराबा चोरी पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का आरोप, कहा राम मंदिर में चोरी ही नहीं दलाली और कमीशनखोरी भी हुई, SIT जांच पर सवाल उठाए। रामपुर में जौहरी यूनिवर्सिटी कार्रवाई के विरोध में SP कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, धक्का मुक्की के दौरान इंस्पेक्टर ने निकाली पिस्टल, वीडियो वायरल। ईरान के अहबाज शहर में अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद कई धमाके, ईरानी मीडिया के अनुसार इस हमले में 4 की मौत, 5 घायल। ट्रंप ने तेहरान और उसके सहयोगियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी, कहा कूटनीतिक समाधान का रास्ता भी खुला है। ब्लैक सी में कमर्शियल जहाज पर हमला, हमले में एक भारतीय की मौत की खबर। ईरानी सेना ने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया, बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को बनाया निशाना। ईरान की सेना IRGC ने खाड़ी देशों में रह रहे लोगों को जारी की चेतावनी, कहा उन जगहों से दूर रहे जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। महाराष्ट्र ईटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता बिहार से गिरफ्तार, एक अन्य आरोपी भी पकड़ा गया। इस बार सहारनपुर में कांवड़ यात्रा पर ATS का पहरा, 3 कंपनी PAC RRF के साथ सादे कपड़ों में पुलिस रही। अलीगढ़ में भी कांवड़ यात्रा की तैयारी थी, मंदिर परिसर में व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। धार भोजशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। झारखंड के बोकारो बाल सुधार गृह में फ्लू का प्रकोप, 20 बाल बंदी पाए गए संक्रमित, 1 ICU में भर्ती। देवशयनी एकादशी पर पंडरपुर में उमड़ा आस्था का सैलाब, चंद्रभागा नदी में लाखों वारकरियों ने लगाई पवित्र डुबकी, ड्रोन से दिखा नजारा। दिल्ली के संसद मार्ग पर निहंग का लाठी प्रदर्शन, लाठी बांधने के बाद तितर बितर हुई भीड़, कर्तव्य दिखाते हुए समय भी गिरा। मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर बड़ी बाजारों की रौनक, मार्केट में एक से बढ़कर एक आभूषण और ड्रेस मौजूद, सराफा मार्केट में लालबाग चौराजा सेट की भारी डिमांड। कटरा में पुलिस की बड़ी कामयाबी, वैष्णो देवी और शिवखोड़ी में गुम 206 मोबाइल वापस लौटाए। कड़ी सुरक्षा के बीच पुरी में बहुड़ा यात्रा का शुभारंभ हुआ, लाखों लोग भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा में शामिल हुए। नीच विरोध प्रदर्शन के दौरान बयान पर विवाद, बीजेपी MLC CT रवि पर भड़काऊ भाषण का आरोप, FIR दर्ज। दिल्ली के वसंत कुंज में दर्दनाक सड़क हादसा, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे 20 वर्षीय छात्र की कार नाले में गिरने से मौत, युवती घायल। तेज मोड़ पर फिसली कार नाले में पलटी, वसंत कुंज हादसे में आर्मी अफसर के बेटे की मौत, अमेरिका में पढ़ता था। लखनऊ अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर LDA का बुलडोजर, 15 मौतों के बाद अवैध निर्माण ध्वस्त, भारी पुलिस बल की तैनाती। अमरोहा में नेटवर्किंग फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, आयुर्वेदिक सामान बेचने की नौकरी का झांसा देकर 16 लोगों को बनाया बंधक, 9 आरोपी गिरफ्तार। राजगढ़ में प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में हाई वोल्टेज हंगामा, जिला पंचायत अध्यक्ष को रोका, मंच पर बुलाया, फिर भीड़ में थप्पड़ पड़ा, वीडियो वायरल हुआ। बिजनौर में तैरता मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, दो मजदूरों की मौत, दो लापता, धमाके में शवों के टुकड़े दूर तक गिरे। यूपी के बांदा में डीजल घोटाले का मामला सामने आया, जांच में दस्तावेजों की हेराफेरी के बाद 3 कर्मचारी निलंबित। पंजाब के मोगा में सरकारी स्कूल के शिक्षक को सस्पेंड किया, शिक्षक पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप। हिमाचल के पांगी में भीषण लैंडस्लाइड, किलाड़ उदयपुर मार्ग पर चलती गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरा, 13 लोगों की मौत, 2 सुरक्षित। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग, 2 की मौत, 2 लापता। बागपत में केले के मूल भाव को लेकर फल विक्रेता और बाप बेटे में हिंसक झड़प हुई। मोतिहारी में कुछ युवकों को रील बनाना भारी पड़ा, बगीचे में बना रहे थे वीडियो, ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीटा। मेरठ में जगन्नाथ शोभा यात्रा की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 1 की मौत, 10 झुलसे। सहारनपुर में मंदिर चोरी के मामले में 3 गिरफ्तार, मंदिर से चुराए घंटे, लोटे, दीपक, इन्वर्टर बरामद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बाल सुधार गिरफ्त से 3 नाबालिग फरार, रोशनदान की ग्रिल तोड़कर भागे। वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर लगभग 2 करोड़ रुपए की सोने और डायमंड की जेवरात बरामद, गुजरात के 2 युवक गिरफ्तार हुए। सासाराम में पुलिस बैरक की छत पर बीएसएपी जवान ने खुदकुशी की, अपने ही सरकारी हथियार से सिर में गोली मारी। एमपी के पन्ना में मोबाइल कवर की डिलीवरी को लेकर विवाद, एसडीएम ने ऑर्डर किए थे 2 मोबाइल, 1 मिलने पर पुलिस बुला ली। जालना में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 किलो से ज्यादा गांजा बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार, लाखों का माल जब्त। आसनसोल में रामपुर चेकपोस्ट पर रिश्वत के आरोप में 2 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर सस्पेंड, एसीपी जांच कर रही है। भारत जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 आज, वैभव पर सबकी नजर। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार के अच्छे प्रदर्शन से भारत को मिला ब्रॉन्ज मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में झंडू कुमार ने मेंस हैवीवेट पावर लिफ्टिंग में परचम लहराया। ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही विक्रांत बेंसी की मुसाफिर कैफे, नेटफ्लिक्स पर दिल को छू लेने वाली रोमांटिक ड्रामा। सरकारी स्कूलों की चरमराती व्यवस्था को दिखाती वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय रिलीज, के मेनन मुख्य किरदार। थिएटर्स में रिलीज होने के सिर्फ 21 दिन बाद ओटीटी पर आई तेलुगु फिल्म नागबंदम। मेकर्स तेंताली राजकुमार राव की प्रहार की रिलीज डेट, पहले 7 अगस्त को रिलीज हो रही थी। सैयारा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन करेंगे आहान पांडे, नई फिल्म रिलीज डेट का ऐलान 24 मार्च 2027 में दस्तक देगी। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके को टाइफाइड हो गया है, उन्होंने खुद एक वीडियो जारी किया और इस बारे में जानकारी दी। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में टाइफाइड की पुष्टि हुई है। अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख, अब उनको टाइफाइड हो गया और ये देखिए ये दिखा रहे हैं।
2: आप सबको पता था पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, तो ब्लड रिपोर्ट्स आ गए एंड आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद टाइफाइड और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, रोज सुबह और शाम को आईवीज लग रहे हैं। बट आई रियली वांट टू थैंक ऑल द कॉकरोचेस जो पूरे देश भर में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस मूवमेंट को इतना सक्सेसफुल बना दिया है आप लोगों ने। अ बिग बिग थैंक यू टू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर मेकिंग दिस मूवमेंट सच अ बिग बिग सक्सेस एंड आई एम वेरी श्योर अगर हम ऐसे ही पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर होगा।
0: तो ये अभिजीत दीपके थे जो बता रहे थे कि उनकी बीमारी डायग्नोज हुई है टाइफाइड, लेकिन उसके बावजूद सब लोग जुटे हैं, ये अच्छी बात है। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश की चंबा से, जहां पहाड़ इस कदर दरका की पत्थरों की बारिश होने लगी। चंबा से सामने आई डराने वाली तस्वीरें, देखते ही देखते पहाड़ से मलबे और विशाल चट्टानों की बारिश होने लगी और इस खौफनाक लैंडस्लाइड का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। देखिए ये आपके सामने कैसे लैंडस्लाइड हो रहा है, आवाज सुनिए, ये आवाज कैसे डराती है।

0: पीछे आ जाओ पीछे।
1: डैम वालों का क्या बना होना बेचारों का यार,
2: ये तो हम अपना काम कर रहे सर।
1: डैम वालों का क्या बना होना बेचारों का यार,
3: ये कैसे भाग रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पहाड़ दरका है, पत्थरों की अचानक बारिश होने लगी, सड़कों पर मलबा आ गया, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए और ऐसा भयानक मंजर शायद ही आपने अपनी जिंदगी में कभी देखा होगा। एक बार फिर से अगर ये वीडियो दोबारा से शुरू हो तो आप देखिएगा कि कैसे पहाड़ दरका है। अब एक और खबर आपको इससे ही मिली जुली बताते हैं, लेकिन वो है बारिश से तबाही की। असम में बाढ़ ने तबाही मचाई। असम के जोरहाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ समेत 10 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में, और अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा।
4: आसमानी आफत सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं है, मुसीबत पूर्वोत्तर में भी दस्तक दे चुकी है। असम के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां बाढ़ का पानी लगातार निचले इलाकों में फैल रहा है। घर जलमग्न हैं, सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं और लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने को मजबूर हैं। कई परिवार अब भी बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। रास्ते बंद हैं, संपर्क टूट चुका है और खेत खलिहान भी पानी में डूब चुके हैं।
5: कोई सड़क और पुल डूबे हुए हैं, जिसमें उनके खेत और संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। आप देख रहे हैं अभी हम हैं शिवसागर जिले के, सबसे ज्यादा असर हुआ है शिवसागर, सराइडो और जोरहाट में। देखने को कोई मिल रहा है, हजारों परिवार अपने घर छोड़कर राहत शिविर में, राहत की मजबूत है, जबकि कोई लोग अब भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं।
4: असम में बाढ़ से 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट

0: में 1.86 लाख और जोरहाट में 1.15 लाख लोग प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से असम में 25,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूब गई है, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिन नदियों का जल स्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, उनमें डिब्रूगढ़ की बरहिंदिंग, शिवसागर की किखोर और देसांग, गोलाघाट की धनसिरी तथा श्री भूमि की नदी शामिल है। शिवसागर में जल स्तर अभी भी बढ़ रहा है और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। असम के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश से नदियां बेकाबू हो गई हैं। वहीं गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। गुवाहाटी का यह पेट्रोल पंप पूरी तरह पानी में डूब गया, बैंक के अंदर पानी भर गया और बाजार भी जलमग्न दिखाई दिए। असम इन दिनों कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ नदियों का सैलाब है तो दूसरी तरफ जल निकासी की खराब व्यवस्था से पैदा हुए हालात। दोनों ही परिस्थितियों में सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को उठानी पड़ रही है। आज तक ब्यूरो।
1: वक्त चला बहुत छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से,
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: 16 साल पहले एक धमाका क्या थी, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को आरडीएक्स रिमोट बम से उड़ाने की साजिश, देखिए आज तक पर।
3: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान है, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
4: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे, इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
3: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम,
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: सो सॉरी,
6: आइए आइए चलाइए, आइए पाइए सीईओ की नौकरी, पाइए आइए आइए आइए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: Jack FM now playing what we want commercial free on TuneIn Premium.
3: What you got for me, Jack?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free. Hexa.

0: नीट पेपर लीक पर सवाल, जंतर मंतर समेत कई शहरों में छात्रों के उबाल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और संसद से लेकर सड़क तक बवाल के बीच जब देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से ये तस्वीरें सामने आई तो इस पूरे आंदोलन के बीच अब तक का सबसे बड़ा घटनाक्रम माना गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक से मुलाकात के लिए पहुंचे, उनकी मांगों पर चर्चा की, पेपर लीक मामले में एक्शन का भरोसा दिया, जिसके बाद वांगचुक ने बीते 26 दिनों से जारी अपना अनशन खत्म कर दिया। साथ ही सरकार के इस कदम को जवाबदेही की पहली शुरुआत बता दिया। इस अनशन के टूटते ही आधी रात को ही पीएम मोदी का वीडियो संदेश आया। पीएम ने वांगचुक की अच्छी सेहत की कामना के साथ छात्रों को भी पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा भरोसा दिया। साफ है कि नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी आंदोलन के बीच अब सरकार एक्शन मोड में है। सीजेपी और प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। दो मंत्रियों का अस्पताल जाकर वांगचुक का आंदोलन खत्म कराना इन प्रयासों की अहम कड़ी है, लेकिन सवालों की सुई अब भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आकर अटकी हुई है, क्योंकि भले ही सरकार की पहल के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया, लेकिन अनशन खत्म करने के बाद उनके बयानों में कहीं भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग का जिक्र नहीं था। अब विपक्ष भी सवाल कर रहा है कि आखिर जिन मांगों को लेकर सोनम वांगचुक ने अपना आंदोलन शुरू किया उसका क्या हुआ, आखिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार की ओर से कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा।
1: सबकी अपील थी कि वो अपना अनशन खत्म करें, उनका जीवन इस देश के लिए अमूल्य है, लेकिन जो आंदोलन के मुद्दे हैं, इस देश के करोड़ों युवाओं के मुद्दे हैं, उस मुद्दे का क्या हुआ? मुसद्दा तो मिल गया नरेंद्र मोदी जी को, कह रहे हैं हमें मुसद्दा मिल गया, मेरे ख्याल से वो मसौदा कहना चाह रहे होंगे, लेकिन जो डिमांड थी आंदोलनकारियों की उसमें से कौन सी डिमांड उनकी पूरी हुई, ये महत्वपूर्ण है।
2: सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया है अपना, हालांकि अनशन पर बैठे थे प्रधान, जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, लेकिन इस्तीफा तो हुआ नहीं, लेकिन सोनम वांगचुक जी अनशन तोड़ दिए। मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। अब वो बड़े प्लेटफार्म पर आए, कांग्रेस के प्लेटफार्म पर आकर के लड़ाई लड़े, और क्योंकि उस प्लेटफार्म से लड़ाई शायद नहीं लड़ पा रहे थे, इसलिए अनशन तोड़ा है।
0: इस बीच बीजेपी की अपील पर देश के तमाम शहरों में छात्रों का आंदोलन जारी है। कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से साफ कह दिया गया है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। उधर सरकार सीजेपी के प्रतिनिधियों से बातचीत कर आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश में जुटी है। लगातार बढ़ते इस घटनाक्रम पर देश में हर किसी की निगाहें टिकी हैं। आज तक ब्यूरो।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन में क्रिमिनल नेटवर्क का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने 2500 से ज्यादा आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों की पहचान की। अब तक 15 FIR दर्ज। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के प्रतिनिधियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच आज तीसरे राउंड की बैठक। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर समाधान की उम्मीद। महाराष्ट्र पेपर लीग मास्टरमाइंड की खत्म हुई फरारी। बिहार से पकड़ा गया विजेंद्र गुप्ता। 2 साल पहले आज तक ने किया था स्टिंग ऑपरेशन। गुजरात से असम तक बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। अहमदाबाद और सूरत पानी। सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू। असम में 61 लोगों की मौत। और दिल्ली के पौश इलाके वसंत कुंज में नाले में गिरी तेज रफ्तार कार। सेना के अधिकारी के बेटे की मौत। कार चला रही महिला मित्र जख्मी। सड़क पर फिसलन के कारण हादसा।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, आज इस आंदोलन का बहुत बड़ा दिन। आज केंद्र सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत होगी। कल दोनों पक्षों के बीच दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वीपी हाउस में बैठक हुई थी, जिसके बाद दो मांगों पर लगभग सहमति बन गई थी। पहली मांग तो ये थी कि 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए पीड़ितों को। दूसरी मांग थी कि केस वापस लिया जाए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर विचार के लिए सरकार की ओर से आज बात करने को कहा गया था, कल बात होगी इस पर। हालांकि कुछ ही देर बाद सूत्रों के हवाले से एक खबर आई कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पक्ष में नहीं है। और इसी बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने बड़ा कदम उठाते हुए शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक साथ 47 अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया। छात्रों के आंदोलन के बीच इस मुद्दे पर सियासत भी गर्माती जा रही है। पीएम मोदी ने एक बार फिर से एक वीडियो साझा किया, तो कांग्रेस की ओर से देश के अलग अलग शहरों में आज मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च की तैयारी है। उधर दिल्ली पुलिस के हवाले से एक खबर चिंता बढ़ाने वाली है, और वाकई ये बहुत बड़ी खबर है। पुलिस ने यह दावा किया है कि जंतर मंतर पर जारी आंदोलन में 20 तारीख को जो हंगामा हुआ था, कई अराजक तत्वों की पहचान की गई है। आज शनिवार होने की वजह से जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ने की आशंका है, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था को बहुत कड़ा कर दिया गया है, सावधानी बरती जा रही। तो एक और जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन जारी है, देश के कई शहरों में भी इसका असर दिख रहा है। सरकार बातचीत के जरिए आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश कर रही है। उधर विपक्ष के हमलों के बीच सियासी तनातनी बढ़ी हुई है। आज इस मुद्दे को लेकर क्या बड़ी हलचल है, सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं। आज सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत होगी, लगभग 3:30 बजे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे बड़ा मुद्दा होगा यहां। वहीं छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आज कांग्रेस जिला स्तर पर कैंडल मार्च निकालेगी। मोमबत्ती लेकर जिला स्तर पर जगह जगह यह मार्च निकाला जाएगा। वहीं नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होगी, 3:30 बजे उम्मीद है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा नहीं होगा, इस पर आज रुख साफ सरकार कर सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि इस मांग पर कोई समझौता ही नहीं होगा, इससे कम हम कुछ मानेंगे ही नहीं। शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच दूसरे दौर की बैठक हुई थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। कल केस वापस लेने पर सहमति बन गई। मृतक छात्रों के परिवार वालों पर 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने पर इस पर भी लगभग सहमति है, लगभग कहीं कोई आपत्ति नहीं है, यह सीजेपी की तरफ से भी कहा गया था। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा नहीं होगा, इस पर सरकार ने अभी अपना रुख साफ नहीं किया सीजेपी के सामने। हालांकि सूत्रों से खबर आई कि सरकार शिक्षा मंत्री के साथ में है, उनका इस्तीफा लेने के पक्ष में नहीं है।
1: कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर अभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है, फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे।
0: अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। अमित, एक बात बताइए, कल बैठक हुई थी, दो मांगे लगभग सहमति बन गई, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात अड़ी हुई है। आज 3:30 बजे बैठक होगी, लेकिन कल इस ओर इशारा मिल रहा है कि सरकार अपने मंत्री के साथ में खड़ी हुई है, क्या कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं?
2: देखिए हिमांशु, जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी का सवाल है, वो इस वक्त अब एक ऐसे मुहाने पे पहुंच गए हैं जहां से अगर वो चाहे भी तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में वो मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जंतर मंतर पे जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और देश में 30 tier cities और स्मॉल टाउन्स तक ये प्रदर्शन अब पहुंच चुका है। चाहे वो बिहार हो या फिर यूपी हो या कोई और राज्य की आप बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, हर जगह छोटे छोटे कस्बों में इस तरह तरह के प्रदर्शन शुरू हो गए। तो जब आपका प्रदर्शन नेशन वाइड फैल जाता है तो बहुत ज्यादा आप अपने कोर डिमांड से पीछे नहीं हट सकते हैं, और यही वजह कि कल भी जब मैंने अंडरस्टैंडिंग ली थी, जब ये बातचीत के लिए रिप्रेजेंटेटिव जा रहे थे सीजेपी की तरफ से, तो उनका कहना यही था कि आखिरकार प्रदर्शन शुरू क्यों हुआ था। प्रदर्शन सरकार की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने को लेकर हुआ था, और वो अकाउंटेबिलिटी जो है फिक्स होती हुई तभी दिखेगी जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा। और उस इस्तीफे को लेके क्या सरकार तैयार है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडिकेशन फिलहाल तो ऐसे नहीं मिल रहे हैं कि इस्तीफे को लेकर सरकार में एक सहमति बनी हो या शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई पहल फिलहाल की गई हो। हालांकि दूसरी तरफ आपको एक तस्वीर जरूर दिखती है कि पहले शिक्षा मंत्रालय के अंदर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में खासतौर पर विनीत जोशी जो बहुत ही बड़े अधिकारी थे उनको उनका ट्रांसफर किया गया, उनको शिक्षा मंत्रालय से हटाया गया। उसके अगले ही दिन हमने कल देर शाम ये खबरें सुनी कि एनटीए का पूरा ओवरहॉलिंग हो रहा है, और 47 जो ऑफिसर्स हैं एनटीए के वो पता चला कि संभवतः उनको हटा दिया गया। और फिर एक और
0: मतलब एक्शन बड़े लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन सीजेपी एक ही बात पर अड़ी है, सिर्फ एक बात पर, कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी नहीं। शुक्रिया अमिताभ का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, नीट पेपर लीक के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ। अभिजीत दीपके की माने तो कॉकरोचों को वो धन्यवाद कर रहे हैं। 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज के बाद यह मुद्दा और ज्यादा गर्मा गया। सीजेपी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच सरकार ने साफ संकेत दिया कि वो इस मांग को स्वीकार नहीं करेगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि सरकार इसी समस्या का समाधान नहीं मानती। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना मतलब जिम्मेदारियों से पीछे हटना, पल्ला झाड़ लेना, सबसे आसान रास्ता है। जनता ने सरकार को जनादेश दिया है और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए व्यवस्था में सुधार करेगी। पूरी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है।
3: क्या छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था, क्या वो पास हुआ है बिल, जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे?
4: नेक्स्ट। मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, और पेपर लीक में
5: कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज।
6: कैबिनेट मीटिंग के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आज कोई पेपर लीक नहीं होगा। असल में सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से देश के छात्रों को दिए गए न्याय के भरोसे और पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त करने वाले बिल को मिली मंजूरी से जुड़ा रहा।
7: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
6: पेपर लीक से छात्रों को होने वाली परेशानी के मुद्दे पर देश में चलते प्रदर्शन के बीच 21 जुलाई को एनडीए की मीटिंग में पीएम कह चुके हैं पेपर लीक घोर पाप है। इसके बाद 23 जुलाई को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया दोषियों को जल्द सजा देने, केस के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, और फिर गुरुवार रात 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया।
7: पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
6: पेपर लीक को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार फैसले ले रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संशोधन बिल 2024 को कैबिनेट से मिली मंजूरी भी शामिल है, जिसे अब अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। दावा है नए बिल में पेपर लीक माफिया के खिलाफ सजा देने के और कड़े प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में जांच और फैसला करके पेपर लीक के दोषी को सजा दी जाएगी। 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान होगा।
8: मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है, और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा।
0: अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, अभी आप जानकारी दे ही रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के साथ सरकार डटकर खड़ी हुई है, जो सूत्र अभी बता रहे हैं। सरकार ने सख्ती के संकेत दे दिए हैं, 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना, अधिकारियों पर गाज गिर रही है। और सरकार ऐसे क्या कदम उठा सकती है जिससे भरोसा जागे, सीजेपी के साथ एक बात बन सके और छात्रों को लगे कि सरकार बहुत गंभीर है?
2: देखिए, दो रणनीति मुझे स्पष्ट रूप से दिख रही है कि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो इंस्टाग्राम वीडियो भी देखें जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे उनकी सरकार कैबिनेट से जो अमेंडमेंट्स हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले, उसको पास कराकर सदन के अंदर लेकर आएगी, तो जो पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी है वहां तो सफलता हो सकता है कि सरकार को एक बार को मिल जाए, क्योंकि विपक्ष फिलहाल ये कह रहा है कि जो लाठी चार्ज हुआ है सोनम वांगचुक के साथ, जो कुछ भी हुआ और पेपर लीक, ये तीन मामले हैं जिसपे वो चर्चा चाहता है और इसको लेकर बहस लगातार चल रही है, सदन चल नहीं पा रहा है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि सोमवार को जब सरकार ये बिल लेके आएगी तो सरकार प्रेशर बनाएगी विपक्ष पे, ये कहते हुए कि देखिए हम छात्रों के हित में बिल ला रहे हैं, लेकिन विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है, सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है। तो हो सकता है कि पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी में तो आपको एक ब्रेक थ्रू उस स्ट्रैटेजी से मिल जाए, लेकिन क्या सड़क पे जो हालात बने हुए हैं, देश भर में जो हालात बने हुए हैं, उसमें कोई मॉडरेशन आएगा, कोई कहते हैं ना कि थोड़ा ग्राफ नीचे आना वो आएगा, वो फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप आंदोलन का ग्राफ देखेंगे तो सोनम वांगचुक को जब हटाया गया फोर्सफुली जंतर मंतर से, हमें संभवतः लगा होगा कि ये इस आंदोलन का पीक मोमेंट है। अब 20 जुलाई के आंदोलन के बाद असल का ग्राफ ऊपर बढ़ने का ग्राफ जो होता है वो शुरू हो गया है। आप किसी भी आंदोलन की हिस्ट्री उठा के देखिए, अन्ना आंदोलन में क्या हुआ था, जब अन्ना हजारे को उठाया गया था कांग्रेस की सरकार द्वारा, उनको डिटेन किया गया था, उसके बाद से ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ था। उसी तरह से सोनम वांगचुक को फोर्सफुली वहां से उठाना, वहां से ग्राफ उठता है, और जैसे जिस तरह के वीडियोस जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साधे हुआ है 20 जुलाई के पूरे घटनाक्रम को लेकर, उन वीडियोस ने देश भर में एक तरह से मैसेज फैला दिया है, तो आंदोलन तो फिलहाल ऊपर
0: बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अमित बने रहिए हमारे साथ, और भी कई मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। तो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा कदम उठाया। NTA ने 47 अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया। इसके साथ ही कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की भी तैयारी है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि ये कार्रवाई NTA में बड़े सुधार और जवाबदेही तय करने के लिए शुरू किए गए बड़े अभियान का हिस्सा है। मंत्रालय का कहना है कि आने वाले दिनों में एजेंसी में सुधार से जुड़े और भी कई अहम कदम उठाए जाएंगे। अमित बने हुए हमारे साथ। अमित, 47 अफसर बर्खास्त किए गए हैं, आने वाले वक्त में और भी बड़े कड़े कदम उठाए जाएंगे जो सुधार की ओर आगे बढ़ेंगे, ऐसा सरकार ये भरोसा दिला रही है। लेकिन जो छात्र हैं, मैं CJP की बात नहीं कर रहा, मैं छात्रों की बात कर रहा हूं, क्योंकि छात्र बहुत गंभीरता के साथ इस वक्त सरकार के सामने खड़े हैं। इन फैसलों से छात्रों पर असर पड़ सकता है?
2: देखिए, NTA में कल देर शाम ये भी हमें एक स्टेटमेंट के थ्रू समझाया गया था कि उसमें कैसे अब यंग फेलोज को हायर किया जाएगा, नया टैलेंट पूल लाया जाएगा, अधिकारियों के लेवल पे भी वहां पे बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। और ये अपने आप में आश्चर्य की बात है कि इतना लंबा आंदोलन चला और NTA में कोई फेरबदल नहीं हुआ। आप ये कह सकते हैं कि पहले जो NEET UG की परीक्षा करवानी थी वो ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी सरकार के लिए रही होगी और उसका रिजल्ट निकालना भी प्रायोरिटी रही होगी, और संभवतः उसके बाद सबसे बड़ी तब्दीली जिस संस्थान में होनी चाहिए थी वहां हो रही है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि अगर आप इसको एक आ, आ, आ, किसी बीमारी के तौर पे देखें तो सिम्टम्स का ट्रीटमेंट के तौर पे छात्र देखेंगे इसको, और जो मेन इशू है वो अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने की बात बन गई है। अब इसको सीधा सीधा हमें समझना पड़ेगा, छात्रों के मन में एक सिंपल सीधा टारगेट सेट हो गया है। देश भर में आप तमाम तरह की बातें तर्क लगा सकते हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा इसको फ्यूल किया जा रहा है या कहीं पे कोई खराब एलिमेंट्स आ गए हैं, ये सारे तर्क लगाए जा सकते हैं, और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन अलग अलग राज्यों में कर रही होगी निश्चित रूप से। लेकिन सिंपल टारगेट जो होता है वो छात्रों के लिए फिलहाल सेट हो गया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, और जब तक उस मांग पे बातचीत नहीं आगे बढ़ती है, संभवतः
0: यही तो बात सबसे बड़ी अड़ी हुई। अभी एक बार फिर से बने रहिए, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर फिर से एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने एक दिन पहले जारी वीडियो पर जो पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं मिली हैं उनका आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे कल के वीडियो संदेश पर सकारात्मक सुझाव के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। अब देखिए, इस वीडियो को अपलोड हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और इस पर करीब 335 मिलियन व्यूज आ चुके हैं।
7: थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: और पीएम तो लगातार कह ही रहे हैं अपने मंत्रियों से कि इंस्टाग्राम पर रील्स बनाइए, एक्टिव होइए। 335 मिलियन व्यूज रिकॉर्ड बनाया है। वहीं नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी अलग अलग जिलों में कैंडल मार्च निकालेगी और कांग्रेस की तरफ से इसकी तैयारियां की गई हैं। अमित बने हुए हमारे साथ। अमित, हम देख रहे हैं कांग्रेस जब से सीजेपी एक्टिव हुई है, छात्रों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद से कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस भी काफी एक्टिव दिखाई दे रही है और अभी जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च। कांग्रेस किस रणनीति की ओर आगे बढ़ रही है?
2: कई बार आप अपने ही इतिहास से सीखते हैं और कांग्रेस पार्टी को संभवतः ये समझ आ गया है कि जो उनके साथ यूपीए 2 के मिड पॉइंट में हुआ था, उनका मानना है, क्योंकि आप अगर रणनीति देखेंगे कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी सदन में क्या कर रही है, सड़क पे क्या कर रही है, तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि उनको लग रहा है कि ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए यूपीए 2 मोमेंट आ गया है। जिस तरह से अन्ना आंदोलन में मुश्किलें खड़ी हो रही थी सरकार के लिए, वैसी ही मुश्किलें फिलहाल यहां खड़ी हो रही हैं। और विपक्षी दल निश्चित रूप से यह प्रयास करेगा कि सबसे ज्यादा उसका जो बेनिफिट है, पॉलिटिकल बेनिफिट, वो उस समय हो। और वो कैसे होगा? जब आप एक्टिव मोड में दिखाई देंगे, तो राहुल गांधी सदन के अंदर एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। जो बीते 10-15 सालों में किसी ने सोचा नहीं था, प्रधानमंत्री के घर के बाहर 3 घंटे तक उनका धरना प्रदर्शन चला। उसके बाद फिर से वो सदन के अंदर प्रेशर बनाते हैं, अगले दिन अपने सारे जो गठबंधन के साथी है उनको लेकर वो गांधी स्मृति पहुंच जाते हैं, बहुत जद्दोजहद होता है। तो हर दिन नैरेटिव सेट करना, एजेंडा सेट करना और ये छात्रों को बताना और दिखाना कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं। हालांकि राहुल गांधी अभी तक ना तो सोनम वांगचुक से मिलने के लिए गए हैं और ना ही जो जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है सीजेपी का, उनसे मिलने के लिए गए हैं। कन्हैया कुमार या अलग अलग नेताओं के वहां जाने की बात जरूर कही जा रही थी अलग अलग दिनों में, लेकिन फिलहाल अगर टॉप लीडरशिप आप कहेंगे तो वो जंतर मंतर नहीं पहुंचा है। ये भी हो सकता है कि ये कांग्रेस की रणनीति हो कि उस जगह को न्यूट्रल दिखने दिया जाए और पॉलिटिकल फ्रंट सड़कों पर अलग।
0: हालांकि जो विपक्षी दल है वो एक दूसरे पर क्रेडिट लेने की आरोप भी लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि कांग्रेस बीजेपी की भी टीम है, क्रेडिट लेने की तैयारी यहां पर की जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए, इसी बीच बड़ी खबर कर्नाटक के चिकमंगलुरु से आ रही है। छात्र आंदोलन के बीच आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी के जो विधायक हैं सीटी रवि, एफआईआर दर्ज हो गई है इन पर। नीट प्रोटेस्ट में मुसलमानों के शामिल होने को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसे लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब देखिए, केस दर्ज हुआ है सीटी रवि पर, लेकिन क्यों हुआ, क्या बयान दिया था उन्होंने, वो सुनिए।
9: ना निमन केळक बैसदो ಮುಲ್ಲಾನಿಗು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಎದೆ ಸೇಳಿದ್ರೆ 3 ಅಕ್ಷರ ಬರಲ್ಲ, ಆತ ಬಂದು ನೀಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಅಂತೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಮೋದಿ ಹಟಾವ್ ಅಂತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ ಕೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಎದೆ ಸೀಳಿದ್ರೆ 3 ಅಕ್ಷರ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ಇನ್ನ ಸಿ ಎಗೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಗೂ ಈ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ?
0: और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने को लेकर सवाल उठे तो उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर इसका जवाब दिया। सोनम वांगचुक ने वीडियो संदेश जारी कर अनशन तोड़ने वालों पर, सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा। कहा कि दिल्ली की गर्मी में 26 दिन अनशन खत्म करने के बाद अगर उन्हें सफाई देनी पड़ रही है और सरकार के बीच उनके बीच क्या डील हुई तो ये शर्म की बात है।
10: दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूं। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद, क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था, मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है, बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखा कर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से क्यों नहीं तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं आपने देखा होगा, क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठ कर डील करना पड़ता? धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं।
0: सोनम वांगचुक का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, उसको लेकर सफदरजंग अस्पताल की ओर से सफाई दी गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक वीडियो अस्पताल के अंदर से सोनम वांगचुक का वायरल होता है, जिसको लेकर अब सफाई दी गई है, और अस्पताल का कहना है कि वायरल वीडियो 21 जुलाई का है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सोनम वांगचुक का एक वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो के वायरल होने पर सफदरजंग अस्पताल की तरफ से सफाई दी जाती है, ये देखिए। और उस वीडियो में सोनम वांगचुक कहते हुए दिखाई देते हैं कि अरेस्ट मी, इस तरह की बात वो कहते हुए दिखाई देते हैं। अब लोगों ने सोशल मीडिया पर उस वीडियो को जब सर्कुलेट किया तो बताया कि आज का वीडियो है और सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। तो इसमें स्पष्टीकरण सफदरजंग अस्पताल की तरफ से दिया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के पहले का वो वीडियो है। सफदरजंग अस्पताल की तरफ से सफाई दी गई। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
13: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
14: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
11: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी, सो कुडो।
15: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: 16 साल पहले एक धमाका क्या थी, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को RDX रिमोट बम से उड़ाने की साजिश, देखिए आज तक पर.
3: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर.
4: हमारे पीछे आप देखें और वहीं रेल भवन जो कि संसद परिसर पर ही है, टीयर गैस को इस्तेमाल करने जा रही है और यहाँ पे टीयर गैस का इस्तेमाल पुलिस करती हुई नजर आ रही है. पीछे संसद का पूरा मार्ग है और यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है. कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली. आज
5: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है. अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं. सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन में क्रिमिनल नेटवर्क का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने 2500 से ज्यादा आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों की पहचान की। अब तक 15 FIR दर्ज। कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच आज तीसरे राउंड की बैठक। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर समाधान की उम्मीद। महाराष्ट्र पेपर लीक का मास्टर माइंड की खत्म हुई फरारी। बिहार से पकड़ा गया विजेंद्र गुप्ता। 2 साल पहले आज तक ने किया था स्टिंग ऑपरेशन। गुजरात से असम, बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। अहमदाबाद और सूरत पानी पानी। सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू। असम में 61 लोगों की हुई मौत। और दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में नाले में गिरी तेज रफ्तार कार। सेना के अधिकारी के बेटे की मौत। कार चला रही महिला मित्र जख्मी। सड़क पर फिसलन के कारण हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर का विरोध जारी है। प्रदर्शन जारी है जंतर मंतर पर। और इसी बीच आज एक बार फिर CJP के प्रतिनिधि और सरकार के बीच बातचीत होगी। वक्त 3 से 3:30 बजे का। सबकी नजर इस बातचीत पर होगी। आज शनिवार को जंतर मंतर पर पहुंचने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सैटरडे संडे छुट्टी, ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पहुंच सकते हैं। और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर को देखते हुए जो प्रदर्शन वहां पर चल रहा है, आज भी 18 मेट्रो स्टेशन बंद है। और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा अब और भी बढ़ा दी है। यह बड़ी खबर इस वक्त है कि आपको बता रहे हैं, अगर आप प्लान कर रहे हो मेट्रो से सफर करने का, मुश्किलें बढ़ सकती है, परेशानी हो सकती है। आज भी दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन बंद है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के चलते। 18 मेट्रो स्टेशन बंद है क्योंकि सैटरडे है। पिछली बार सैटरडे संडे भीड़ अच्छी खासी थी और इस बार भी यह माना जा रहा है कि सैटरडे संडे को भीड़ ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में सावधानी बरती जा रही है। और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर लिखते हुए, मेट्रो बंद करो, रास्ते बंद करो, दुकानें बंद करो, इंटरनेट बंद करो, खाना बंद करो, अपना हक मांग रहे छात्रों के खिलाफ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए। बस एक चीज बंद नहीं कर पाए, बस एक चीज मोदी जी बंद नहीं कर पाए, पेपर लीक। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। मेट्रो बंद, दुकानें बंद, रास्ते बंद, इंटरनेट बंद, खाना बंद, सब बंद, लेकिन पेपर लीक बंद नहीं कर पाए मोदी। तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन के बीच निहंग सिखों का एक वीडियो सामने आया। और वीडियो शुक्रवार रात करीब 11 बजे का है, जिसमें निहंग सिख लाठियां भांजते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद वहां भीड़ अचानक चितर बितर हो गई। अब यह देखिए, यह निहंग सिख का वीडियो है। अब लाठियां भांजते हुए कलाबाजी करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बैलेंस इस दौरान उनका खुद का थोड़ा सा इधर उधर हो गया और गिर गए, लेकिन भीड़ चितर बितर कर दी। ये देखिए, निहंग सिख लाठियां लेकर बैरिकेटिंग खुद करते हुए जमकर लाठियां बांधी, यहां पर कलाकारी करते हुए। अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं जंतर मंतर से। अब देखिए, जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है और उसी बीच एक बड़ी खबर यहां पर आई है। पुलिस ने यह खुलासा किया कि विरोध प्रदर्शन में आपराधिक बैकग्राउंड के लोग शामिल थे। 20 जुलाई का जो प्रदर्शन हुआ था, इसमें आपराधिक बैकग्राउंड के लोग शामिल थे। और पुलिस का यह दावा है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम FRS ने ऐसे करीब 2500 लोगों की पहचान की है जो भीड़ की आड़ में उपद्रव कर रहे थे। 20 जुलाई के आंदोलन में ये शामिल थे और इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। दिल्ली पुलिस ने इनकी तस्वीरें भी जारी की हैं और इनके पास इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, इन पर कई केस दर्ज हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, 20 तारीख को जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, कितना कुछ नुकसान पहुंचा, सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, पत्थरबाजी की गई, मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया गया। अब आपराधिक पृष्ठभूमि के 2500 लोगों की पहचान हुई है, लेकिन क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है?
1: मैं एंकर की आवाज सुन रहा था, जल्दी
0: जुड़ेंगे हम हमारे सहयोगी हिमांशु से, वो हमारी आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से उनको जोड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या 2500 लोगों की पहचान जो हुई है, ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अलग अलग जगह लगाए गए थे। हिमांशु, 2500 लोगों की पहचान हुई है, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी, जो अराजक तत्व थे, मैं छात्रों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अराजक तत्वों की बात कर रहा हूं, क्या ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है?
1: देखिए, अभी लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं जयसिंह रोड पे मौजूद हूं, जहां पर बुधवार को भी आपके आगे देखिए और आगे वो
0: कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, शायद व्यवस्था वहां पर ऐसी की गई होगी। जुड़ेंगे मानशु आपसे दोबारा, लेकिन ये देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे। अब जो छात्र हैं वो छात्र शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, शांति से विरोध कर रहे थे, लेकिन लोग पत्थर लेकर आते हैं, पथराव करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, तो वो छात्र नहीं थे। अब बहुत कुछ ये स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, छात्रों की आड़ में ये आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अराजक तत्व गुंडे 2500 लोगों की जिनकी पहचान हुई है ये वो लोग थे, हो सकते हैं, और अभी ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। नीट पेपर लीक मामले में छात्रों के प्रदर्शन के बीच सरकार सख्त है और कानून का भरोसा दे रही है, तो वहीं सोनम वांगचुक ने भी अनशन तोड़ दिया, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी एक बात पर अड़ी हुई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब ऐसे में आज कॉकरोच जनता पार्टी क्या रुख अपनाती है? सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके से आज तक ने एक्सक्लूसिव बात की।
2: पहला सवाल यही है कि आंदोलन के मुद्दे अब क्या है? अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, फिलहाल तो सरकार मना कर रही है, लेकिन अगर इस्तीफा हो जाता है तो क्या यह आंदोलन थमेगा?
3: हमारे आंदोलन के जो सबसे दो बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, तो उसकी ना किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो ये था कि जिन बच्चों ने सुसाइड करी उनके परिवारों को 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसके साथ 20 जुलाई को जो हुआ, जिस ब्रूटैलिटी के साथ पुलिस ने बच्चों के सर फोड़े, लड़कियों को पीटा है, तो उसके रिगार्डिंग हमने एक और डिमांड ऐड करी है कि जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, एक तो उसकी वजह से पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ में जिन बच्चों के ऊपर झूठे केसेस लगाकर उनको डिटेन या अरेस्ट किया गया था वो सारे केसेस वापस लिए जाने चाहिए।
2: लेकिन अब विपक्षी पार्टियां भी आपको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टी के नेता आपके यहां पर दिखे, राहुल गांधी वहां पर एक अलग प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं?
3: मैं सभी विपक्षी पार्टियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो उन सभी ने अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को बाजू में रखकर स्टूडेंट्स के साथ एक साथ आए, और जो उन्होंने समझा कि जो देश का मुद्दा है, जो भविष्य का मुद्दा है इस देश का, उसके लिए वो सब साथ में आकर हमारे साथ खड़े रहे, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ।
2: लेकिन सोनम वांगचुक अब जो है उन्होंने तो अपना अनशन वापस ले लिया है, उन्होंने कहा है कि हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उन्होंने कहा है कि वो मांग उन्होंने पुश नहीं की, लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने वो मांग पुश नहीं की है, तो क्या अब आपके रास्ते अलग हो चुके हैं? उस पर आपका क्या कहेंगे आप?
3: इससे मुझे बहुत ही राहत और खुशी मिली है। हम खुद सोनम सर से बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज अपना अनशन तोड़ दीजिए, आगे का प्रोटेस्ट हम जारी रखेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और कल जैसे मुझे पता चला सोनम सर ने अनशन तोड़ दिया, आई वॉज वेरी रिलीव्ड, और बहुत जरूरी भी था, क्योंकि सोनम सर की जान जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए। और 26 दिनों तक उन्होंने जो दर्द सहा है, जो सेक्रीफाइस किया है अपने हेल्थ का, आई थिंक इससे ज्यादा कोई और कुछ कर नहीं सकता था इस मूवमेंट के लिए। अपनी जान को एक तरीके से दांव पर लगाकर सोनम सर ने इस देश की जनता को जागरूक किया है।
2: ठीक है, लेकिन आगे का प्लान क्या, क्योंकि आंदोलन तो पूरा पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के आसपास नजर आ रहा है, लेकिन आगे क्या प्लान होगा, क्या कुछ और भी मुद्दे हैं उसको भी आप उठाने की कोशिश करेंगे?
3: अभी तो ये आंदोलन हमारा ऐसे ही जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, और मुझे लगता है इसमें सरकार की भी भलाई है कि जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो आज जो देश में लाखों की नंबर्स में स्टूडेंट्स और युवा सड़कों पर उतरे हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर वो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे। तो सरकार की भलाई भी इसी में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए।
2: लेकिन दो राउंड आपकी बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ में, आपका प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलकर आया हुआ है, आज भी जो बातचीत हुई है क्या आप उससे संतुष्ट है? क्या
3: संतुष्ट हूँ ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी जस्ट डायलॉग शुरू ही हुआ है। मोस्टली उन्होंने कहा है कि वो दो डिमांड्स पर अग्री कर रहे हैं, बट उस पर भी उन्होंने ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई दिया नहीं है। उन्होंने कल फिर से डायलॉग के लिए बुलाया है तो हम फिर से डायलॉग के लिए जाएंगे, बट हमारी प्राइमरी डिमांड जो है उससे हम पीछे नहीं हटने वाले, दैट इज द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर।
2: लेकिन एक और इस बीच जो चीज हुई है वो एजुकेशन सेक्रेटरी जो है उनका तबादला कर दिया गया, उनके जगह पर दो नए एजुकेशन सेक्रेटरी आएंगे, एक हायर एजुकेशन के लिए, एक प्राइमरी एजुकेशन और बाकी इसके लिए आएंगे। तो अब आप करप्शन का मुद्दा उठा रहे, कह रहे हैं कि भाई उनमें जो एक सेक्रेटरी है वो करप्शन में लिप्त है, ये मुद्दा आप कहां से उठा रहे, क्या यही मुद्दा रहेगा आप इसके आगे?
3: क्योंकि मुझे पता चला है कि उनके ऊपर ऑलरेडी करप्शन के बहुत सारे एलिगेशन है, एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट में उन्होंने करप्शन किया हुआ था, तो एक तरीके से उनको प्रमोट किया जा रहा है, करप्ट लोगों को ये सरकार प्रमोट कर रही है, तो ये क्या हो रहा है? हम बोल रहे हैं कि कॉन्क्रीट एक्शन ले लो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, आप जो कर रहे हो वो ये करोगे और करप्ट लोगों को प्रमोट कर रहे हो, सो दिस इज नॉट राइट।
0: अभी जिनको आप सुन रहे थे अभिजीत दीप के, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक, उनको टाइफाइड हो गया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्होंने खुद इस बारे में जानकारी दी, एक वीडियो बनाते हुए अभिजीत दीप के, सीजेपी के संस्थापक, उनको टाइफाइड हुआ है, एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने जानकारी दी और कॉकरोचों का धन्यवाद भी किया।
4: जैसे कि आप सबको पता था पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, तो ब्लड रिपोर्ट्स आ गए एंड आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद टाइफाइड और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, रोज सुबह और शाम को आईवीज लग रहे हैं। बट आई रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल द कॉकरोचेस जो पूरे देश भर में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस मूवमेंट को इतना सक्सेसफुल बना दिया है आप लोगों ने। अ बिग बिग थैंक यू टू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर मेकिंग दिस मूवमेंट सच अ बिग बिग सक्सेस एंड आई एम वेरी श्योर अगर हम ऐसे ही पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर होगा।
0: नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा सियासी विवाद पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप से छिड़ता दिख रहा है और राहुल गांधी एक दिन पहले, कल आपको याद होगा, आपने देखा होगा आज तक पर, साहिल नाम के एक छात्र को लेकर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दावा किया कि साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और इस आधार पर राहुल ने सरकार पर, देश के भविष्य छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाए। हालांकि दिल्ली पुलिस इस दावे को पहले से खारिज कर रही है।
5: क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ?
6: सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना, ये देखिए ये है पैलेट गन, ये है पैलेट गन।
5: अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक नौजवान को लेकर आए, दावा किया कि छात्रों का समर्थन करने के दौरान इस पर पैलेट गन चलाई गई है।
6: इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है।
5: राहुल गांधी दावा करते हैं कि 20 तारीख को जब दिल्ली में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया तभी साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और दावा ये तक कि साहिल को चोट लगी,
6: कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी, इनकी कोई गलती नहीं है।
5: साहिल लोचाब नाम का ये नौजवान दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है। 20 जुलाई को साहिल कॉकरोच पार्टी की तरफ से संसद मार्च में शामिल हुआ और दावा है कि इसी दौरान साहिल पर पैलेट गन चलाई गई।
7: मेरा नाम साहिल है, मेरा नाम साहिल है, मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।
5: 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी के सौरव दास ने सोशल मीडिया पर पहली बार छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा करते हुए साहिल का वीडियो शेयर किया था। सौरव दास के इस दावे को दिल्ली पुलिस ने खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। साहिल के मामा ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने की बात कही, लेकिन पैलेट गन का नाम नहीं लिया।
8: मैं था साहिल तो देख के सारे मेरे नाम ब्लड लग रहे हैं, नाम लग रहे हैं।
9: कटा हुआ था छर्रे? क्या
8: छर्रे? छर्रे छर्रे नहीं, यहाँ पे पूरे मुंह पे, आंखों के अंदर, पूरी पूरे देख के घबरा गए हम तो भाई क्या है क्या नहीं है ये चीज। फिर डॉक्टरों से पता चला कि ये चीज, उन्होंने कहा कि आंख में लड़के आंखों का ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा।
9: यहाँ पर जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि किस चीज का निशान है, क्या है?
8: यहाँ पे बस कुछ नहीं बताया तो डॉक्टर ने, बंद करते ऑपरेशन होगा, बाकी और कुछ नहीं करा।
9: ऑपरेशन हो गया या कब?
8: एक ऑपरेशन हो गया, सुबह हुआ था ऑपरेशन, रात को।
9: आज हुआ है?
8: कल सुबह हुआ था, और मैं रात को लगे थे 1 बजे कराने की, 6 बजे खत्म हुआ था ऑपरेशन, और उसके बाद एक और ऑपरेशन अब है 2-3 दिन बाद।
9: आँख का ही है? आँख कह रहे हैं आँख बच जाएगी यहाँ पे,
8: मगर 1-2% चांस है।
9: निशान देख पा रहे थे उसके?
8: निशान देखे हैं मैंने, आंखों में भी देखे हैं, आंखों के जैसे यहाँ से कट पड़ रहे हैं दोनों तरफ।
9: शरीर से जो निकले थे छर्रे वो आप देख पाए थे? जो निकाला गया?
8: नहीं देखा।
9: डॉक्टर ने, आप लोगों ने पूछा कि हुआ क्या है, क्या लगा इसके शरीर में?
8: बस हाँ पूछा था हमने, सिर्फ इतना बताया था वहाँ था उसमें, बस इतना ही बताई थी हमने कि
9: क्या लगा है शरीर में, क्या चोट है नहीं
8: ये पता, हमें खुद पता नहीं चला क्या ये चले चले चले छे छे छे क्या, हम दूसरों को क्या बताएं।
5: आज तक ने ऐसे ही एक 25 साल के प्रदर्शनकारी से भी बात की, जिन्होंने दावा किया है कि उनके मेडिकल लीगल दस्तावेज में पैलेट इंजरी दर्ज है। ये देखिए, 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर शेख इरशाद मंसूरी नाम का नौजवान भी पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ। जबलपुर के पाटन के रहने वाले इरशाद के भाई ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने का दावा किया, लेकिन क्या ये जख्म पैलेट गन की है इस पर वो कुछ नहीं कहते।
10: 20 तारीख को 8:30 करीब बजे उसके फ्रेंड का फोन आया था हमारे पास, उसी के नंबर से। उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट में थे तो घायल हो गए, इस वजह से हॉस्पिटल आए हैं अभी इलाज के लिए।
11: क्या उस समय का क्या माहौल

0: सीजेपी के आंदोलन को लेकर इस वक्त एक बड़ी तस्वीर पुणे से सामने आई। पुणे के कलेक्ट्रेट और लाल महल इलाके में सीजेपी के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुट रहे हैं। मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। अब प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। ये देखिए, ये भीड़ सीजेपी प्रदर्शन में उमड़ी है और हालात बिगड़े नहीं, उसको लेकर पुलिस की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। कल की तस्वीरें बताई जा रही हैं, 24 तारीख की लाल महल पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे और पेपर लीक को लेकर विरोध जताया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। तरफ लोगों की भीड़ ही दिखाई थी, बारिश हो रही थी लेकिन उसके बावजूद लोग छाता लेकर यहां पर पहुंचे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, सड़क जाम थी, पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी है। यहां नीट पेपर लीक मामले में आत्महत्या करने वाली नागपुर की छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी की मां नीलम चतुर्वेदी आज नागपुर में सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुई। संविधान चौक पर चल रहे आंदोलन में पहुंचकर उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। नीलम चतुर्वेदी ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो रोज आंदोलन में शामिल होंगी और जरूरत पड़ी तो दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में भी हिस्सा लेंगी। आरोप लगाया उन्होंने कि बेटी की मौत के बाद आज तक सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं आया। नीट पेपर लीक के बाद तनाव में आकर आकांक्षा चतुर्वेदी ने 20 मई को आत्महत्या कर ली।
1: इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं ये आंदोलन ऐसा चलता ही रहेगा और इसका नरेंद्र मोदी का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, जो पेपर लीक हुआ उसको फांसी होना चाहिए और सरकार को मांगे पूरी करना चाहिए, नहीं ये आंदोलन ऐसे चलता ही रहेगा, बंद होने वाला नहीं है।
2: आपके घर कोई आया था?
1: हमारे घर कोई नहीं आया, हमारा दुख भी पूछने नहीं आया, हमारा कोई प्रकार का पूछने नहीं आया, कोई नेता मंत्री बहुत दूर में नहीं है, लेकिन इंसाफ चाहिए, नहीं ये चलता रहेगा हम भी रो जाएंगे इसी आंदोलन में, हम भी बैठे।
0: छात्र आंदोलन के बीच मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी अब सवाल करती है, हम बड़ों के सामने सवाल नहीं करते थे लेकिन अब का दौर अलग है, युवाओं से संवाद की जरूरत है, युवाओं को अब ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, नई पीढ़ी विश्लेषण करती है।
3: खासकर मनुष्यों में मातृत्व ये उनके जीवन का सत्य है, क्योंकि नई पीढ़ी के संस्कार, उनकी शिक्षा आदि बातें बाकी जीवों में प्राकृतिक रीति से होती है, उसके लिए कोई स्कूल कॉलेज शिक्षा वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है, परंतु मनुष्यों में विचार होने के कारण वो अच्छा भी हो सकता है और गड़बड़ भी कर सकता है, तो उसको दिशा देना बहुत आवश्यक होता है, वो मनुष्यों को उचित दिशा देने वाला पहला गुरु तो माता ही है, बचपन में ही उसके स्वभाव की प्रवृत्ति आदि आदि सब घर वालों के कारण बनती है और प्रमुखता माता के कारण बनती है, क्योंकि उसकी पूरी चिंता माता करती है।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Terms apply. Visit wellsfargo.com/depositdisclosures for fees and details.
8: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: सॉरी,
3: आइए

0: सत्र जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद भी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं दिख रहे। उधर संसद में विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है। दोनों जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन का एक ही मुद्दा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार सीजेपी और प्रदर्शनकारी छात्रों से संवाद कर शांति का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। इस बीच सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए अब कड़े कानून लाने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक को लेकर सरकार पहले जो बिल लाई थी उसी में संशोधन कर प्रावधानों को और भी ज्यादा कड़ा करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित नए संशोधन के बाद पेपर लीक में दोषी पाए जाने वाले को 5 से 10 साल की कैद की सजा हो सकती है, जबकि पुराने बिल में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान था। बिल में प्रावधान ये भी है कि अगर पेपर लीक में कोचिंग सेंटर या कोचिंग सेंटर से जुड़ा शिक्षक शामिल पाया गया तो कोचिंग को भी बंद किया जा सकता है। साथ ही पेपर लीक के मामले के तेजी से निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। उधर सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि पेपर लीक पर सरकार की ओर से सख्त कदम उठाया गया और कड़ा कानून लाया गया तो कांग्रेस भी चर्चा में शामिल हो सकती है। हालांकि पेपर लीक को लेकर सरकार को घेर रहा विपक्ष अपने तेवर कम करने को तैयार नहीं है। संसद में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान के इस शोर को गौर से सुनिए। विपक्ष की पूरी ताकत जिस एक मांग पर टिक गई है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हर एक प्रदर्शन हर एक धरने के बाद राहुल गांधी एक ही सवाल उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा।
1: मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो।
0: एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने पेपर लीक केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की बात कही थी और देर रात वीडियो जारी कर कड़े एक्शन का भरोसा दिया। लेकिन इस भरोसे के बीच ना ही विपक्ष का हंगामा थम रहा है, ना ही छात्रों का प्रदर्शन खत्म होता दिख रहा है। ऐसे में ये बड़ा सवाल हुआ कि सरकार के नए बिल में कड़े प्रावधान का विपक्ष और प्रदर्शनकारी छात्रों पर क्या असर होगा। क्या नए बिल से हंगामा और विरोध प्रदर्शन शांत होगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कम।
1: जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन में क्रिमिनल नेटवर्क का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने 2500 से ज्यादा आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों की पहचान की। अब तक 15 FIR दर्ज। कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच आज तीसरे राउंड की बैठक। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर समाधान की उम्मीद। महाराष्ट्र पेपर लीक का मास्टरमाइंड की खत्म हुई फरारी। बिहार से पकड़ा गया विजेंद्र गुप्ता। 2 साल पहले आज तक ने किया था स्टिंग ऑपरेशन। गुजरात से असम तक बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। अहमदाबाद और सूरत में पानी पानी। सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया। असम में 61 लोगों की हुई मौत। और दिल्ली के पॉश इलाके बसंत कुंज में नाले में गिरी तेज रफ्तार कार। सेना के अधिकारी के बेटे की मौत। कार चला रही महिला मित्र जख्मी हुई। सड़क पर फिसलने के कारण हादसा।

महाराष्ट्र टी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, पेपर लीक केस में विजेंद्र गुप्ता गिरफ्तार, बिहार से इंद्रजीत सिन्हा को भी हिरासत में लिया। पुणे में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की, भारी भीड़ के चलते पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नीट पेपर लीक मामले पर शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस एक साथ आए, आदित्य और अमित ठाकरे ने शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली निकाली। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बोले, मेट्रो इंटरनेट और रास्ते बंद किए, पेपर लीक नहीं रोक पाए। दिल्ली में विश्व मांगल्य सभा कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जब हम युवा थे तो दौर आज्ञा मानने का था, अब ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी सवाल पूछती है। पीएम मोदी के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा फैसला, हटाएगा एनटीए के 47 अफसर, पुलिस कार्रवाई संभव। शिक्षा मंत्रालय में बड़े बदलाव, एनटीए ने भर्ती के लिए जारी किया विज्ञापन, 4 वरिष्ठ जनरल मैनेजर, 16 युवा प्रोफेशनल की होगी भर्ती। पेपर लीक पर सख्त कानून पर मसौदा कैबिनेट में मंजूर, 10 साल तक सजा, 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान, सोमवार को संसद में विधेयक पेश होगा। सूत्रों के हवाले से खबर, इस्तीफा नहीं देने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नहीं देंगे, मंत्री के साथ मजबूती से पार्टी खड़ी है। अभिजीत दीपके को हुआ टाइफाइड, इलाज जारी, ब्लड रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई, वीडियो जारी कर पुष्टि की। पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन जारी किया वीडियो संदेश, कहा, आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद, हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ेगा। पीएम मोदी ने अपने हालिया वीडियो को देखने और उस पर अपने विचार साझा करने वाले युवाओं का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा, देर रात युवाओं से मिलने का अवसर मिला और उनके सकारात्मक सुझावों ने उन्हें बेहद प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी और रचनात्मक सोच देश के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत। अंचल तोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम वांग चुका पलटवार, कहा, सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिनों तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर धिक्कार। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन मामलों में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सोमवार को सुनवाई। पेपर लीक के विरोध में आज कांग्रेस का देशव्यापी मार्च, सभी से शामिल होने की अपील। सरकार के सामने सीजेपी ने रखी 3 मांगे, बोले, पीड़ितों को मुआवजा, छात्रों से केस वापस लेने पर सहमति, प्रधान के इस्तीफे की मांग पर विचार कर रही सरकार। जेपी नड्डा ने कहा, सीजेपी ने 3 मांगे रखी हैं, 5 सुझाव रखे हैं, आंतरिक चर्चा करने के बाद सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक होगी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर सीजेपी का बड़ा ऐलान, अभिजीत दीप के बोले, सबूत जुटाने और पुलिसकर्मियों की पहचान के लिए लॉन्च होगी वेबसाइट। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच के लिए बड़ा एक्शन किया, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। दिल्ली पुलिस की सख्त चेतावनी, जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर अफवाहें न फैलाएं, सख्त कार्रवाई होगी। जंतर मंतर प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एफआरएस कैमरों में 2500 से ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की पहचान, 15 एफआईआर। छात्र प्रदर्शन को लेकर केंद्र पर बरसी ममता बनर्जी, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए इतनी बेताबी क्यों। पैलेटगंज से घायल छात्र को लेकर सामने आए राहुल गांधी, का युवक ने गवाही एक आग, बंद हो इनसे मारपीट। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से होगा शुरू, विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। सीएम योगी ने यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी के पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रहेगी, ड्रोन और सीसीटीवी से पेट्रोलिंग, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश। चढ़ावा चोरी पर शंकराचार्य विमुक्तेश्वर आनंद का आरोप, कहा, राम मंदिर में चोरी ही नहीं, दलाली और कमीशन खोरी भी हुई, एसआईटी जांच पर उठाए सवाल। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी कार्रवाई के विरोध में एसपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, धक्का मुक्की के दौरान इंस्पेक्टर ने निकाली पिस्टल, वीडियो वायरल। इस बार सहारनपुर में कांवड़ यात्रा पर एटीएस का पहरा, 3 कंपनी पीएससीआरआरएफ के साथ सादे कपड़ों में पुलिस तैनात रहेगी। अलीगढ़ में भी कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर परिसर में व्यवस्थाएं की जा रही हैं चाक चौबंद, प्रशासन का सुरक्षित माहौल में कांवड़ यात्रा आयोजित करने का आश्वासन। धारबोचाला विवाद में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। झारखंड के बोकारो बाल सुधार गृह में फ्लू का प्रकोप, 20 बाल बंदी पाए गए संक्रमित, 1 आईसीयू में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। देवशनी एकादशी पर पंडरपुर में उमड़ा आस्था का सैलाब, चंद्रभागा नदी में लाखों वारकरियों ने लगाई पवित्र डुबकी, ड्रोन से दिखा भव्य नजारा। दिल्ली के संसद मार्ग पर निहंग का लाठी प्रदर्शन, लाठी भाड़ने के बाद तितर बितर हुई भीड़, कर्तव्य दिखाते समय खुद भी गिरा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए शानदार खबर, झंडू कुमार ने पुरुषों की हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीता, 190 किलोग्राम का वजन उठाया। द्रास में कारगिल विजय दिवस की तैयारियां तेज, 26 जुलाई को गूंजेगा शौर्य और बलिदान का सम्मान।
कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ नवयुवक दल का मोर्चा, भारत कात्यायन बोले युवाओं को असली हीरो हमारे शहीद, कारगिल दिवस पर दिल्ली वॉर मेमोरियल में कैंडल मार्च। नीट विरोध प्रदर्शन के दौरान बयान पर विवाद, बीजेपी एमएलसी सीटी रवि पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप, एफआईआर दर्ज। दिल्ली के वसंत कुंज में दर्दनाक सड़क हादसा, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे 20 वर्षीय छात्र की कार नाले में गिरने से मौत, युवती घायल। तेज मोड़ पर पिछली कार नाले में पलटी, वसंत कुंज हादसे में आर्मी अफसर के बेटे की मौत, अमेरिका में पढ़ता था छात्र। लखनऊ अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर एलडीए का बुलडोजर, 15 मौतों के बाद अवैध निर्माण ध्वस्त, भारी पुलिस बल की तैनाती। अमरोहा में नेटवर्किंग फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, आयुर्वेदिक सम्मान बचाने के लिए सामान बचाने के लिए नौकरी का झांसा देकर 16 लोगों को बनाया बंधक, 9 आरोपी गिरफ्तार। राजगढ़ में प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में हाई वोल्टेज हंगामा, जिला पंचायत अध्यक्ष को रोका, मंच पर बुलाया, फिर भीड़ में थप्पड़ पड़ा, वीडियो वायरल। इंदौर में तैरता मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, हड़कंप मचा, जांच जारी है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 2 मजदूरों की मौत, 2 लापता, धमाके से शवों के टुकड़े दूर तक गिरे। यूपी के बांदा में डीजल घोटाले का मामला सामने आया, जांच में दस्तावेजों में हेराफेरी के बाद 3 कर्मचारी निलंबित। पंजाब के मोगा में सरकारी स्कूल के शिक्षक को सस्पेंड किया, छेड़छाड़ का आरोप। हिमाचल के पानी में भीषण लैंडस्लाइड, किलाड़ उदयपुर मार्ग पर चलती गाड़ी के ऊपर गिरा पहाड़, हादसे के बाद गाड़ी में लगी आग, 13 लोगों की मौत, 2 बच गए। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद भीषण आग, 2 लोगों की मौत, 2 लापता। बागपत में केले के मूल भाव को लेकर फल विक्रेता, बाप बेटे में हिंसक झड़प हो गई। मोतिहारी में कुछ युवकों को रील बनाना भारी पड़ा, बगीचे में वीडियो बना रहे थे, ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीट दिया। मेरठ में जगन्नाथ शोभा यात्रा में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 1 की मौत, 10 झुलसे। सहारनपुर में मंदिर चोरी के मामले में 3 गिरफ्तार, मंदिर से चुराए गए घंटे, लोटे, दीपक, इन्वर्टर बरामद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बाल सुधार गृह से 3 नाबालिग फरार, रोशन दान की ग्रिल तोड़कर भागे, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर लगभग 2 करोड़ रुपए की सोने और डायमंड के जेवरात बरामद, गुजरात के 2 युवक गिरफ्तार हुए। सासाराम में पुलिस बैरक की छत पर बीएसएपी जवान ने की खुदकुशी, अपने ही सरकारी हथियार से सिर में मारी गोली। एमपी के पन्ना में मोबाइल कवर की डिलीवरी को लेकर विवाद, एसटीएम ने ऑर्डर किए थे 2 मोबाइल कवर लेकिन 1 मिलने पर पुलिस बुला ली। ईरान के आबाद शहर में अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद कई धमाके की खबर, ईरानी मीडिया के अनुसार 4 लोगों की मौत, 5 घायल। ट्रंप ने तेहरान और उसके सहयोगियों को कड़ी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी, कहा कूटनीतिक समाधान का रास्ता अब भी खुला है। ब्लैक सी में कमर्शियल जहाज पर हमला, हमले में 1 भारतीय की मौत की खबर। ईरानी सेना ने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया जबरदस्त हमला, बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को बनाया निशाना। ईरान की सेना आईआरजीसी ने खाड़ी देशों में रह रहे लोगों को जारी की चेतावनी, उन ठिकानों से दूर रहने को कहा जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। उधमपुर में भारी बारिश से जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई, जिले की 102 जलापूर्ति योजनाएं बारिश से क्षतिग्रस्त। 27 जलापूर्ति योजनाओं में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद, रामनगर और चैनानी में जलापूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित, लगातार बारिश के बाद बहाली का काम शुरू। रियासी में मानसून की बारिश के बाद दिखा दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल पुल, बेहद खूबसूरत। भारतीय सेना का गुजरात में बाढ़ राहत अभियान, 43 लोगों को सुरक्षित निकाला, कई जिलों में बचाव अभियान जारी है। असम में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू, 61 लोगों की अब तक मौत। आज देश के बड़े हिस्से पर सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून का असर, कई इलाकों में बारिश का अनुमान। पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद, उत्तर पूर्वी और दक्षिण राज्यों में 2 दिन भर तेज बारिश हो सकती है। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी वलसाड़ पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। भारी बारिश के चलते 3 आईएएस अधिकारियों ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों का बोर्ड में बैठकर दौरा किया, राहत कार्यों की समीक्षा की। रामबन और उधमपुर में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, कीचड़ खिसकने और पत्थर गिरने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के बीच बादल फटा, पांगी घाटी जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी में बहे मासूम का 4 दिन बाद शव बरामद, एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने ड्रोन और गोताखोरों की मदद से चलाया था ऑपरेशन। रुद्रप्रयाग के काली सीमा में हार्ट अटैक से अचेत हुए गुजरात के श्रद्धालु का सफल रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट। सूरत में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, पूरा इलाका पानी में डूबा, दोपहिया वाहन भी डूब गए, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। गुजरात में औरंगा नदी में बाढ़ से फंसे पर्यटक की बस, जालना में 15 से 17 नागरिकों समेत 35 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। गुजरात के नवसारी में बाढ़ के बीच मेघार गांव में इंडियन कोस्ट गार्ड का बचाव अभियान, लोगों को एयरलिफ्ट किया।
बनासकांठा में पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश, पानी में डूबे नजर आए खेत खलियान। भाबर और दियोचर में 11 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज, कई इलाकों में भारी जलभराव, लोगों को परेशानी। सूरत में बाढ़ बारिश का कहर, खाड़ी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, 300 से ज्यादा परिवार प्रभावित, घर छोड़ने को मजबूर। ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है विक्रांत मैसेकी मुसाफिर कैफे, नेटफ्लिक्स पर दिल को छूने वाली रोमांटिक ड्रामा। सरकारी स्कूलों की चकनाती व्यवस्था को दिखाती वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय रिलीज, के मैनन मुख्य किरदार। थिएटर्स में रिलीज होने के लिए सिर्फ 21 दिन बाद ओटीटी पर आई तेलुगु फिल्म नागाबंदम, एक प्राचीन पवित्र खजाने को बुरी ताकत से बचाने की लड़ाई है। मेकर्स ने चाली राजकुमार राव की प्रहार की रिलीज डेट, पहले 7 अगस्त को रिलीज हो रही थी। सैयारे के बाद ताबड़तोड़ एक्शन करेंगे आहन पांडे, नई फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान 26 मार्च 2027 को रिलीज होगी।

0: और अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं, एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको बताते हैं। शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों का प्रदर्शन चल रहा है, अभ्यर्थी न्याय की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मायावती के आवास पर अभ्यर्थी इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। और ये देखिए, मायावती के आवास पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, शिक्षा भर्ती उम्मीदवारों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और न्याय की मांग इन छात्रों की तरफ से की जा रही है। ये सभी अभ्यर्थी इकट्ठे हुए हैं, प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया। लंबे वक्त से शिक्षक भर्ती के उम्मीदवार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, अपनी मांग उठाते आ रहे हैं। इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आवास पर अभ्यर्थी इकट्ठा हुए थे, वहां प्रदर्शन कर रहे थे और उनको पुलिसकर्मियों ने हिरासत में लिया और भीड़ को शांत भी कराया। संतोष शर्मा जुड़े हुए हमारे सहयोगी, हमारे साथ संतोष, क्या हो रहा है वहां? जुड़ेंगे दोबारा हमारे सहयोगी संतोष से और वो बताएंगे कि वहां पर आखिर हो क्या रहा है। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको हिरासत में भी लिया गया। मायावती के घर पर ये प्रदर्शन, नारेबाजी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का ये हंगामा है और न्याय की मांग इन अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। लंबे वक्त से ये इंतजार कर रहे हैं और अब ये तस्वीरें। संतोष जुड़ गया हमारे सहयोगी, हमारे साथ संतोष, क्या हो रहा है वहाँ?
1: देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जो अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करते हैं, आज लखनऊ के मालवनी इलाके में स्थित बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर पहुंचे थे। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे और उनका सीधे से कहना है कि सरकार पर दबाव मायावती बनाए, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये उन दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का है जिसकी वो राजनीति करती हैं, और उनके इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित केस है उसमें पैरवी करवाई जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले का फैसला आ सके। तो इन्हीं मांगों को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी मायावती के आवास पहुंचे थे और जिसके बाद उनको हिरासत में लेकर पुलिस पहुंच चुकी है, पुलिस लाइन ले जाया जा चुका है और वहां पर उनको हिरासत में रखा गया है। तो एक तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी थे वो आज बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर पहुंचे थे घेराव करने के लिए।
0: और वही प्रदर्शन की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दी। शुक्रिया संतोष आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी फुल ऑन एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी देर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और छात्रों के मुद्दे को लेकर नेता विपक्ष मीडिया से बातचीत करेंगे अब से कुछ ही देर बाद। देखिए, कल भी राहुल आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, साहिल को लेकर आए थे। साहिल हरियाणा का रहने वाला, पैलेट गन का शिकार जो बताया गया राहुल गांधी की तरफ से। एक और बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के चंबा से पहाड़ इस कदर दरका कि पत्थरों की बारिश होने लगी, पहाड़ दरका। लैंडस्लाइड हुआ है। डराने वाली तस्वीरें हैं और ये आप शोर सुनेंगे तो आप डरेंगे, भारी तबाही और लोगों में दहशत है। वीडियो कैमरे में कैद हुआ है लैंडस्लाइड का, खौफनाक वीडियो। लोग भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त वहां पर कोई वाहन या व्यक्ति नहीं गुजर रहा था, यह अच्छी बात रही। चंबा और आसपास के इलाकों में भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ गया है और NHPC चमेरा 3 परियोजना के आसपास और पहाड़ी सड़कों पर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। एक बार फिर से आप देखेंगे, लैंडस्लाइड से पहाड़ से पत्थर गिरे, उसके बाद ये हालात हुए हैं। लैंडस्लाइड यहां पर हुई है। अब आपको दिखाते हैं गुजरात की तबाही। अहमदाबाद से लेकर वलसाड़ तक हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया, निचले इलाकों में तेजी से पानी भर रहा है और रिहायशी इलाकों में रहना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है।
2: आसमानी आफत से पानी पानी गुजरात, अहमदाबाद से लेकर वलसाड तक सैलाब ही सैलाब। जहां तक नजर डालो सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके तेजी से डूबते जा रहे हैं। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ और बारिश ने जीना दूभर कर दिया। गांव हो या शहर, मोहल्ले हो या हाई राइज बिल्डिंग, सब परेशान हैं, सब बेहाल हैं और रोजमर्रा की जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है। गुजरात के वलसाड़ की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पिछले कुछ घंटों से सुर्खियां बटोर रही है। एक सोसाइटी की पार्किंग में कई गाड़ियां छत तक डूब गईं। 5-5 फीट तक भरे पानी में फंसी गाड़ियों की हालत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निचले इलाकों में पानी कितनी तेजी से भरा है। वलसाड़ में चारों तरफ यही हाल है। नदियों में बारिश के पानी की वजह से बहाव इतना तेज है कि आसपास के लोगों में खौफ पैदा हो गया। वलसाड़ की ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। पुल के नीचे बहते पानी की धार जैसे सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। निचली कॉलोनियों में इतना पानी भर चुका है कि घरों से लेकर गाड़ियां तक पानी में कई कई फीट तक डूबे दिख रहे हैं। ये हालात गिने चुने कुछ इलाकों के नहीं, करीब करीब पूरे जिले में लगातार हो रही बारिश ने हर इलाके में पानी भर दिया। इसकी बड़ी वजह मधुबन बांध भी है, जिस पर दबाव कम करने के लिए उसके सभी 10 गेट खोलने पड़े और लाखों क्यूसेक पानी तेजी से निचले इलाकों में भरता जा रहा है।
3: मैं इस वक्त वलसाड़ जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बेहतर बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 848 मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है, यहाँ देखे आप देख सकते हैं जो गाड़ियां है वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है।
2: और अब गुजरात के अहमदाबाद पर एक नजर डालिए। बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया है। अहमदाबाद के आमली गांव में तो आपदा ऐसी बरसती है कि घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। गाड़ियां डूबी हुई और हर जगह पानी भर गया है।
4: मेरे आसपास में आप देख रहे हैं कमर तक का पानी यहाँ पे भरा हुआ है और मेरे पीछे की तरफ की आप कार भी देख पा रहे हैं किस प्रकार से संपूर्ण जलमग्न है। कार के अलावा जो टू व्हीलर हैं, जो मोटरसाइकिल आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। और ये अहमदाबाद का बोपल इलाके का आमली गांव है। आमली गांव के अंदर जो प्रवेश द्वार है उसकी भी मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ। कमर तक का पानी है, लोग कमर तक के पानी में से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं, चाहे बच्चे हों चाहे महिलाएं हों।
2: ये बदतर हालात इस तालाब की दीवार टूटने की वजह से पैदा हुए। तालाब में भरा पानी आसपास के इलाकों में फैल गया और लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं।
4: मेरे आसपास की भी तस्वीरें आप यहां पे देख लीजिए। यहां पे जो भी तस्वीर जिस तरफ भी आप अपनी नजर को दौड़ाएंगे चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी आपको दिखाई पड़ेगा। यहां पे ऑटो रिक्शा है वो भी पूरी तरह से जलमग्न है। सामने की तरफ की मोटरसाइकिल की बात कर ले चाहे कोई भी व्हीकल बात करे, ये बोपल में स्थित आमली की तस्वीरें हैं और काफी चिंताजनक यहां के हालात यहां पे तस्वीरों में दिखाई भी पड़ रहे हैं।
2: जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ रहा है गुजरात के बाकी इलाकों में भी हालात खराब होते जा रहे हैं। नदियां और नालों में पानी का बहाव बढ़ने से सूरत जैसे शहर के निचले इलाकों में पानी से लबालब भर रहे हैं। पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में दस्तक दे रहा है।
0: और दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के वसंत कुंज में एक कार नाले में जा गिरी और वहां पर आप देखिए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन उस वक्त किया गया था। और बताया जा रहा है कि ये जिस महिला को आप देख रहे हैं, जिस लड़की को आप देख रहे हैं, यही गाड़ी चला रही थी और बताया जा रहा है कि इस रोड पर फिसलन थी जिस वजह से ये हादसा हुआ और इस हादसे में इस लड़की का दोस्त जो कि सेना अधिकारी का बेटा था उसकी जान चली गई। और अमेरिका में वो पढ़ाई करता था, भारत आया हुआ था। ये लड़की उस सेना के अधिकारी के बेटे की दोस्त थी, गाड़ी चला रही थी लेकिन कार अनियंत्रित होती है और इस नाले में जा गिरी जहां पर उस लड़के की मौत हो गई, जो सेना अधिकारी का बेटा है उसकी मौत हो गई और ये महिला मित्र जख्मी हो। जब रेस्क्यू किया गया उस वक्त की तस्वीरें ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये नाला है, वसंत कुंज पौश इलाका है, वहां पर ये नाला और ये गाड़ी पूरी तरह से गाड़ी पलट गई है, उल्टी है गाड़ी। इस गाड़ी में से इस लड़की को बचा लिया गया, इसकी जान बच गई लेकिन इसका दोस्त नहीं बच पाया। गाड़ी ये लड़की ड्राइव कर रही थी और इसका दोस्त जो लड़का था वो बाजू वाली सीट पर था। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें, जो स्थानीय लोग थे उन्होंने ही सबसे पहले जैसे ही यह हादसा हुआ सबसे पहले बचाने की कोशिश की और जो लड़की ड्राइव कर रही थी उसको इस नाले से गाड़ी के अंदर से बाहर निकाला, हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन बदकिस्मती से दुर्भाग्यवश उस युवक को नहीं बचा पाए जो पास में बैठा था। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
6: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint Bade Aram Se.
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
3: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
4: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन में क्रिमिनल नेटवर्क का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने 2000 से ज्यादा आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों की पहचान की। अब तक 15 FIR। कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच आज तीसरे राउंड की बैठक। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर समाधान की उम्मीद। महाराष्ट्र पेपर लीक का मास्टरमाइंड की खत्म हुई फरारी। बिहार से पकड़ा गया विजेंद्र गुप्ता। 2 साल पहले आज तक ने किया था स्टिंग ऑपरेशन। गुजरात से असम तक बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। अहमदाबाद और सूरत पानी पानी। सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू। असम में 61 की मौत। और दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में नाले में गिरी तेज रफ्तार कार। सेना के अधिकारी के बेटे की मौत। कार चला रही महिला मित्र जख्मी। सड़क पर फिसलन के कारण हादसा।

0: दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के बीच सुबह 11:30 बजे दो बड़ी खबरें आपको बताएंगे। पहली खबर सियासत से जुड़ी, छात्रों के आंदोलन को लेकर थोड़ी ही देर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वहीं दिल्ली पुलिस भी दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देने वाली है। एक तरफ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हरियाणा के एक युवा साहिल को साथ में लेकर, जो कि एक छात्र था डीयू का और उसको पैलेट गन लगी हुई थी, और आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खास होगा, देश की जनता जानना चाहेगी। और 1 बजे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और दिल्ली पुलिस हो सकता है इस बारे में जानकारी दे कि जो हंगामा हुआ था उसमें कई आपराधिक प्रवृत्ति वाले हिस्ट्री शीटर जिनके रिकॉर्ड है, आपराधिक रिकॉर्ड, उनकी पहचान कर ली गई है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच आज एक बार फिर सीजेपी के प्रतिनिधि और सरकार के बीच बातचीत होगी और आज शनिवार को जंतर मंतर पर पहुंचने वालों की संख्या बढ़ सकती है, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। इसी बीच पुलिस ने लोहे की शीट की मदद से बैरिकेड को फिक्स कर दिया है ताकि बैरिकेड्स हिलाए और गिराए ना जा सके। इसके आगे बैरिकेड्स को लोहे की चेन से बांधा गया है क्योंकि पिछली बार बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं जय सिंह रोड पर, सामने जंतर मंतर का प्रोटेस्ट साइट है, आप देखिए बीच में ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है और इस पूरे इलाके को पुलिस ने बैरिकेटिंग करके, देखिए लेयर वाइज अगर आप देखेंगे तो हर तरफ कम से कम 6 से 7 लेयर बैरिकेटिंग पुलिस के द्वारा की गई है और सामने आपको लोगों की भीड़ आती हुई नजर आएगी। आप देखिए, अगर आप देखेंगे संसद मार्ग की तरफ तो सीपी की तरफ से लगातार यहां पर भीड़ जो है वो आगे बढ़ रही है। अब हम पुलिस की सुरक्षा के बारे में दिखाते हैं, जो ये बैरिकेटिंग है आप देखिए, 1, 2, 3 लेयर की बैरिकेटिंग, उनको चेन से आपस में बांधा गया है, रस्सी से बांधा गया है ताकि अगर हटाने की कोशिश की जाए तो एक बैरिकेड एक हटे नहीं। लेकिन उसके बाद आप देखिए ये नीचे आपको लोहे की शीट नजर आएगी और इन लोहे की शीट्स ये जो आप देख रहे हैं ये बैरिकेड इससे जुड़ी हुई है और इन शीट्स को आप देखिए जमीन में, यहां पर अगर आप ये देखेंगे तो ये पेंच लगे हुए हैं, इनके जरिए जमीन में इनको फिक्स कर दिया गया, बीच सड़क पर इनको फिक्स कर दिया गया है। कोशिश ये है कि जब अगर कभी सिचुएशन खराब हो और प्रदर्शनकारी इस तरफ बढ़ें और इसको ढकेलने की कोशिश करें तो ये इसे हटाया ना जा सके। तो इस तरीके से आप देखेंगे पूरी रोड पर इसे इस तरीके से फिक्स किया गया है, इधर ही नहीं आगे की तरफ भी इसको पूरा अगर आप देखेंगे तो इसे फिक्स किया गया है और कोशिश यही है और इसके पहले भी बैरिकेड, तो इन सारी चीजों को लगाने की वजह यही है ताकि अगर कभी हालात खराब हुए, प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच गतिरोध बढ़ता है और उसके बाद वो आगे की तरफ आते हैं और इस तरफ आते हैं और यहां वो आके बैरिकेड हटाने की कोशिश करते हैं तो वो बैरिकेड हटा ना पाए, बैरिकेड हिले नहीं, इसके लिए ये कोशिश की गई है। जिसमें जैसे आप देखिए कि यहां पर लगाने ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को आप देखिए, कोशिश की गई है कि यहां पर इतने ये जो इस तरीके के आप कील देख रहे हैं इन कीलों को इसमें फिक्स किया गया है। आप ये देखिए कुछ ऐसी कील है जो मुड़ गई है लगाते वक्त, इनको फिक्स किया गया है रोड के साथ ताकि प्रदर्शनकारी इसे पीछे न खिसका सके। और ये तस्वीरें हैं जय सिंह रोड की, कैमरामैन इमैनुअल जोश के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: आज तक से बातचीत में ज्वाइंट सीपी विजय सिंह ने बताया कि अभी जंतर मंतर पर स्थिति सामान्य है, वहीं बैरिकेड को फिक्स करने पर उन्होंने कहा कि जो अथॉरिटी को जो सही लग रहा है वो किया जा रहा है,
2: नॉर्मल है सिचुएशन।
1: और यहाँ पे बैरिकेड हमने देखा सर फिक्स करके लगाया गया, तो ये तो एक नया पैटर्न,
2: इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताएगी इसके बारे में।
1: और भीड़ कितनी होगी सर और कैसे उसको नजर रखे हुए हैं आप लोग खुद? मैं देख रहा हूँ कि ज्वाइंट सीपी आप हैं और आप एकदम पैदल चल के पूरी चीजों पर नजर रखेंगे।
2: कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताएगी, इसका क्राउड का असेसमेंट हो रहा है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो बताएगी। थैंक यू।
0: अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दोपहर 2 बजे दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी सीजेपी के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस, और वक्त 1 बजे का बताया गया है और हो सकता है जो अराजक तत्व आए थे बीच में, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो स्त्री शीटर रहे हैं, जिनकी पहचान FRS से हुई है यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से, तो उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, क्या सूत्र बता रहे हैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज होने वाली है दिल्ली पुलिस की 1 बजे, क्या वहां दिल्ली पुलिस बात रखने वाली है?
3: देखिए, पिछले एक हफ्ते के बीच में देखा गया कि सोशल मीडिया पे कई सारी भ्रामक खबरें भी आई हैं, कई सारे क्लेम्स भी किए गए हैं, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस लगातार कई जो फेक खबरें चली हैं उनको लेकर के पुलिस की तरफ से रिबटल भी आया है, बताया भी गया है, और 480 अकाउंट्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे उनको भी ब्लॉक किया गया है। तो एक तो ये पॉइंट है, जहां तक हमें सूत्र बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में बैठ करके सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाए गए और उन अकाउंट्स के जरिए फेक और AI वीडियोस क्रिएट किए गए और जो स्टूडेंट यहां पर बैठे हैं जंतर मंतर पर उनको भड़काने की कोशिश की गई। हिमांशु, इसके अलावा भी हमने देखा है कि कई सारे वीडियोस और भी सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए जाते रहे हैं, जिसको लेकर के पुलिस ने स्पष्टीकरण दी। अब इस पूरे मामले में 15 FIR दर्ज है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। दूसरी तरफ हमने देखा कि FRS को लेकर के जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है उसने 2500 के करीब चेहरे अब तक पहचाने जा चुके हैं जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, तो वो कौन लोग हैं, उनके खिलाफ पुलिस की क्या कार्रवाई होगी, एक ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसको सामने पुलिस यहाँ पर रख सकती है। और दूसरी तरफ जो लगातार पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेयर, इसमें ये बात सामने आती रही कि पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा सकता है, तो हो सकता है
0: तो हर एक मुद्दे पर आज दिल्ली पुलिस अपनी बात रखने जा रही है और सभी को इंतजार भी रहेगा इसका। शुक्रिया जुड़ने के लिए मानशु आपका। इस बीच जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि विरोध प्रदर्शन में आपराधिक बैकग्राउंड के लोग शामिल थे। 20 जुलाई के प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस का यह बड़ा दावा है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम ने ऐसे करीब 2500 लोगों की पहचान की है जो 20 जुलाई को आंदोलन में शामिल थे, जिन्होंने पथराव किया, उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, 2000 बताया जा रहा है कि 2000 लोगों की पहचान हुई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में यह आंकड़ा और बढ़ जाए क्योंकि अलग अलग जगह कैमरे लगे हैं। FRS जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है वो अलग अलग जगह जांच पड़ताल जैसे आगे बढ़ेगी क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो हो सकता है कि ये आंकड़ा 2000 से आगे हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इंस्टाग्राम वीडियो ने सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं बनाया बल्कि सरकार की रणनीति का भी नया संकेत दे दिया। आधी रात को पोस्ट किए गए वीडियो में पीएम ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून का ऐलान किया। 24 घंटे के भीतर वीडियो को 30 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। और फिर अगले ही दिन पीएम ने युवाओं को धन्यवाद कहा और इसी बीच कैबिनेट ने पेपर लीक पर और सख्त कानून का मसौदा भी मंजूर कर लिया।
4: आधी रात को पोस्ट किए गए वीडियो में पीएम मोदी ने देश भर में पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून लाने का ऐलान किया। वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और 24 घंटे के भीतर 30 करोड़ से ज्यादा व्यूज के साथ इंस्टाग्राम रील का नया रिकॉर्ड बन गया।
5: थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी।
4: शुक्रवार को पीएम मोदी ने एक और वीडियो जारी कर युवाओं का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के सुझाव और उनका भरोसा उनके साथ रिश्ते को और मजबूत करेगा। पीएम का फोकस साफ था, पेपर लीक जैसे मुद्दे पर सरकार सिर्फ बयान नहीं बल्कि कानून के जरिए सख्त कार्रवाई का संदेश देना चाहती है। पेपर लीक पर सरकार एक्शन मोड पे है। कैबिनेट ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 में संशोधन के मसौदे को मंजूरी दे दी। सरकार का कहना है कि नए प्रावधानों के तहत पेपर लीक कराने वाले गिरोहों पर और कड़ी सजा और ज्यादा सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। सरकार इस बिल को मानसून सत्र में जल्द से जल्द संसद से पारित कराना चाहती है। सरकार न सिर्फ कानून को सख्त बनाने जा रही है बल्कि NDA में भी बदलाव ला रही है। 47 अफसर बाहर किए गए, पुलिस एक्शन भी हो सकता है।
5: पिछले ढाई महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
4: विपक्ष और प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं, लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। सरकार का तर्क है कि इस्तीफा देना जिम्मेदारी से भागना होगा, फोकस सिस्टम को सुधारने और पेपर लीक नेटवर्क को खत्म करने पर है। सरकार का दावा है कि कई पेपर लीक गैंग पकड़े जा चुके हैं और आगे भी बड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को भी साफ संदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा कि सिर्फ सरकारी योजनाओं की जानकारी पोस्ट करना काफी नहीं है, युवाओं से जुड़ना है तो इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहना होगा, रील बनानी होगी और संवाद को ज्यादा इंटरैक्टिव बनाना होगा। यानी सरकार अब सोशल मीडिया को सिर्फ प्रचार का नहीं बल्कि सीधे संवाद का सबसे बड़ा मंच मान रही है। एक तरफ इंस्टाग्राम पर रिकॉर्ड व्यूज, दूसरी तरफ पेपर लीक पर सख्त कानून की तैयारी और साथ ही मंत्रियों को सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहने की सलाह। साफ है कि सरकार अब युवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल संवाद और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई दोनों मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रही है। आज तक ब्यूरो।
0: नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रही कांग्रेस जनता पार्टी और सरकार के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होगी और ये बातचीत दोपहर 3 से 3:30 बजे के बीच होनी है। माना जा रहा है कि हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार अपना रुख साफ कर दे। सीजेपी ने तो कहा है कि इससे कम में समझौता होगा नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो चाहिए ही चाहिए। इससे पहले कल दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हुई थी दूसरे दौर की, 3 मांगे रखी गई थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ितों को 1 करोड़ मुआवजा और केस वापस। तो 1 करोड़ मुआवजा और केस वापस पर सहमति बनी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पर पेच अटका हुआ है।
6: कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर अभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है, फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे।
0: और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, नीट पेपर लीक के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ। 20 जुलाई को लाठीचार्ज के बाद ये मुद्दा और ज्यादा गर्मा गया। अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग सीजेपी अड़ी हुई है और सरकार अब ये संकेत दे रही है कि वो स्वीकार नहीं करेगी इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि सरकार इसे समस्या का समाधान नहीं मानती है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार का ये मानना है कि इस्तीफा देना जिम्मेदारी से पीछे हट जाना सबसे आसान रास्ता होता है। जनता ने सरकार को जनादेश दिया है और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए व्यवस्था में सुधार करेगी।
7: क्या छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था, क्या वो पास हुआ है बिल जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे?
8: नेक्स्ट।
9: मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और पेपर लीक में
8: कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज।
10: कैबिनेट मीटिंग के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आज कोई पेपर लीक नहीं होगा। नेक्स्ट। असल में सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से देश के छात्रों को दिए गए न्याय के भरोसे और पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त करने वाले बिल को मिली मंजूरी से जुड़ा रहा।
5: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
10: पेपर लीक से छात्रों को होने वाली परेशानी के मुद्दे पर देश में चलते प्रदर्शन के बीच 21 जुलाई को एनडीए की मीटिंग में पीएम कह चुके हैं पेपर लीक घोर पाप है। इसके बाद 23 जुलाई को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया दोषियों को जल्द सजा देने, केस के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेगी और फिर गुरुवार रात 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया।
5: पिछले ढाई महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
10: पेपर लीक को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार फैसले ले रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संशोधन बिल 2024 को कैबिनेट से मिली मंजूरी भी शामिल है, जिसे अब अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। दावा है नए बिल में पेपर लीक माफिया के खिलाफ सजा देने के और कड़े प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में जांच और फैसला करके पेपर लीक के दोषी को सजा दी जाएगी। 10 साल की सजा और 10 करोड़

जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, उनसे मेरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ मूवमेंट के बारे में, आरएसएस के बारे में, हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है। मेन चीज जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की तीन डिमांड्स हैं और दीज आर नॉट नेगोशिएबल डिमांड्स, एंड दिस इज नॉट मी सेइंग इट, दिस इज द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सेइंग इट, दैट देयर आर थ्री नॉन नेगोशिएबल डिमांड्स। द फर्स्ट डिमांड, पहली डिमांड इज दैट द एजुकेशन मिनिस्टर हु इज करप्ट, इनकॉम्पिटेंट, मिसअलाइंड, हैज टू बी सैक्ड। देयर इज सम टॉक गोइंग ऑन, वी गेट इंफॉर्मेशन दीज डेज फ्रॉम द गवर्नमेंट, there's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period. Second, show your leg, this young lady is injured. Yesterday, I showed you a young man who has been shot in the eye. And there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. Ye teen non-negotiable points hain inke. Pehla ki Narendra Pradhan ko hataya jaye, cabinet se nikala jaye. बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सोल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो। यह किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, इनके इनके यहां पे लिगमेंट टेयर हुआ है। कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए, और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है। जिन लोगों ने ये किया है, जो इंप्लीमेंटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सजा मिलनी पड़ेगी। और तीसरी बात, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो रात रात वीडियो बना रहे हैं, कल वीडियो बनाई कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए, सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है, इनकी मांग सुझावों की नहीं है, इनकी मांग धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की है। तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति है, ये इन स्टूडेंट्स से माफी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनल थिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ, एंड आई एम प्राउड ऑफ एवरी सिंगल वन ऑफ यू हु इज स्टैंडिंग देयर रेजिस्टिंग दिस गवर्नमेंट दैट इज

0: attacking the Constitution, destroying the Constitution, attacking our institutions, and destroying our future. Thank you. Yes. This is all the system that is attacking them. I told them inside. I said, do not worry. Do not worry. No amount of strength. The entire Indian government, every single person in the Indian government cannot move you from there. So, jitna karna hai, wo kare. Band karna hai, band karo. Dhamkana hai, dhamkao. Kuch karna hai, karo. Hum nahi hatne wale hain. Ye nahi hatne wale hain. ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह। इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट, द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू। गेट वेल सून, डू फिजियोथेरेपी। थैंक यू। डू यू वांट मी टू गेट यू सम एडवाइस ऑन दैट? हां ओके, वी विल, आई विल गेट यू सम एडवाइस ऑन दैट। आई एम अ एक्सपर्ट ऑन मंडे। ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू।
1: यू वांट टू आज तीन छात्राओं के साथ आए और इनको चोट लगी है। अब ये छात्राएं कुछ कहना चाह रही हैं।
2: आई थिंक द डिस्कशन दैट वी हैड टुडे विद राहुल गांधी सर इज मोस्ट फ्रूटफुल। ऐसे डिस्कशंस जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे होते ही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा नहीं होती है। इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से टेक ओवर करके यंग प्रॉमिसिंग माइंड्स को, उनकी एजुकेशन को, लर्निंग को, क्यूरियोसिटी को खत्म कर दिया जा रहा है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होता है। एंड इट वॉज अ वंडरफुल डिस्कशन ऑन दैट। और एक और जो हमारा कंसर्न है, जो हमने सर के साथ शेयर किया, कि आज बिहार बंद का एक कॉल था जिस कॉल से पहले कल बड़ी।
1: तो राहुल गांधी की तरफ से एक बात कही गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पास्ट है और ये छात्र फ्यूचर है और पास्ट फ्यूचर से नहीं लड़ सकता। छात्रों की तीन मांगे हैं और शिक्षा मंत्री को हटाया जाना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान, ये पहले भी राहुल गांधी कह चुके हैं और अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं। तीन मांगे, उन तीनों मांगों को मान लेना चाहिए। छात्रों की मांग पूरी तरह से जायज है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
4: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
7: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
8: You're listening to CNBC.
9: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
10: Keep it on smooth jazz.
11: This is Roots Reggae.
12: Exclusively on TuneIn.
13: This is classic hip-hop.
14: Exclusively on TuneIn.
7: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है, जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है, तीन मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा, उन पर एक्शन अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर should apologize to the students. These are the three conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: तरबंदर पर छात्रों के प्रदर्शन में क्रिमिनल नेटवर्क का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने 2000 से ज्यादा आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों की पहचान की। अब तक 15 FIR दर्ज। कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच आज तीसरे राउंड की बैठक। राहुल गांधी ने फिर की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग। महाराष्ट्र पेपरली का मास्टर माइंड की खत्म हुई फरारी। बिहार से पकड़ा गया विजेंद्र गुप्ता। 2 साल पहले आज तक ने किया था स्टिंग ऑपरेशन। गुजरात से असम तक बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। अहमदाबाद और सूरत पानी पानी। सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू। असम में 61 लोगों की मौत। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में नाले में गिरी तेज रफ्तार कार। सेना के अधिकारी के बेटे की मौत। कार चला रही महिला मित्र जख्मी। सड़क पर फिसलन के कारण हादसा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है।
3: सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा।
4: कॉम्पेंसेशन एंड FIRs का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी की ऐसा फ्यूचर में भी FIRs फाइल ना हो उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया।
5: हमने उनको कहा
6: धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा।
7: वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन एनी डिस्कशन बिफोर मिस्टर प्रधान इज सैक्ड।

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज मुद्दा बड़ा है, मुद्दा गंभीर है, मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है, भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे उन तमाम छात्रों से जुड़ा हुआ है, उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है जो पेपर लीक की वजह से प्रभावित हुए हैं, और वो तमाम छात्र जो ये मानते हैं कि पेपर लीक रुकना चाहिए। और इसीलिए पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार जो धरना प्रदर्शन हुआ है उसके बाद से सरकार एक्टिव हुई है, और कैबिनेट की बैठक में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट से पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा के प्रावधान वाले बिल को मंजूरी मिल भी गई है। अब वो राष्ट्रपति के लिए उनके अनुमोदन के लिए आगे जाएगा, उसके बाद से वो एक कानून का स्वरूप लेगा और उसके बाद इसको एनएक्ट कर दिया जाएगा। अब ये प्रावधान क्या क्या है इसमें, 3 महीने के अंदर सजा की बात है, 10 करोड़ जो जुर्माना है और 10 साल की सजा का प्रावधान है। इससे पहले कल आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो आया जिसे प्रदर्शनकारी छात्रों से संवाद की सबसे बड़ी पहल माना जा सकता है। जेन जी को सीधे कनेक्ट करने वाला एक सेल्फी मोड में पीएम ने वीडियो छात्रों के साथ शेयर किया है और कहा है, वादा किया है कि मैं इसको रोकूंगा जो पेपर लीक हो रहा है। उधर आज सरकार ने सीजेपी के प्रतिनिधियों की बातचीत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कायम रखी है। कल फिर सीजेपी के प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिलने वाले हैं और माना जा रहा है कि जो मांगे इनकी तरफ से हैं उसको लेकर सरकार अपना पक्ष कल साफ करेगी। इस बीच शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की शर्त पूरी होने से पहले भूख हड़ताल तोड़ने वाले सोनम वांगचुक कांग्रेस नेताओं इमरान मसूद और राशिद अल्वी के निशाने पर आए, तो कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सड़क से संसद तक सरकार को घेरने में है। आज कांग्रेस कल देश भर में कह रही है कि हम कैंडल मार्च निकालेंगे और सत्याग्रह करेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी आप देख रहे हैं वो लगातार एक्टिव हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष के इस विरोध के बावजूद सरकार प्रदर्शनकारियों को मना सकेगी, क्या सख्त कानून और फास्ट ट्रैक सजा से पेपर लीक पर छात्रों को इंसाफ मिल सकेगा, उनका भरोसा क्या जगेगा, प्रधानमंत्री का जेन जी मोड मानेंगे प्रदर्शनकारी, यही आज हल्ला बोल का विषय। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे साथ प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं, अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ आप दोनों का स्वागत है। हमारे साथ अमित जमई जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ रोहित सिंह जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और खास मेहमान प्रोफेसर अंशु जोशी जो कि प्रोफेसर हैं जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स बन गए। सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार से सीजेपी के जो प्रतिनिधि है फिर मिले हैं, और अब जो 3 मांगे उनकी हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुआवजा मिले उनको जिन बच्चों की जान गई है, जिन छात्रों के खिलाफ पुलिस एक्शन हुआ है उनके सारे केसेस वापस लिए जाएं, और तीसरा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब सरकार कह रही है कि हम कल इस पर फाइनल बात कहेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखें।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
0: बीती आधी रात को जेएन जी के फेवरेट सेल्फी मोड में जारी हुआ पीएम नरेंद्र मोदी का ये वीडियो संदेश पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों को भरोसा दिलाने का सबसे बड़ा प्रयास है।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वीडियो में प्रधानमंत्री ने जैसा वादा किया था कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन एक्ट 2024 में बदलाव के मसौदे को मंजूरी दी गई। सूत्रों के मुताबिक बिल के प्रावधानों के मुताबिक पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए 3 महीने में जांच और फैसला सुनाया जाएगा। पेपर लीक के दोषियों को 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपयों का जुर्माना भरना होगा। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ सरकार की दूसरे राउंड की बातचीत भी हुई। केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुलाकात के बाद सीजेपी ने कहा कि कि पेपर लीक पर खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिवारों को एक एक करोड़ रुपयों का मुआवजा और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने पर सरकार सकारात्मक है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर जवाब देने के लिए सरकार ने कल तक का समय मांगा है।
2: सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे, और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास् ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे।
0: सीजेपी के साथ कल एक और राउंड की बातचीत होने की पुष्टि सरकार की ओर से भी की गई है।
3: हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा।
0: कल रात को जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी थी। भूख हड़ताल तोड़ने के लिए वांगचुक ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की शर्त को मुद्दा नहीं बनाया। वांगचुक ने नए वीडियो में इस पर सफाई दी है।
4: अब आप कहेंगे जरूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को ना टाल कर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं। बल्कि दे देते इस्तीफा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता।
0: सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने सीजेपी के प्रदर्शन को शक्ति दी, लेकिन भूख हड़ताल तोड़ने के बाद कांग्रेस की ओर से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
5: अन्ना पार्ट टू, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था, कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां?
6: उन्होंने अपना फास्ट तोड़ दिया बीजेपी के नेताओं के कहने की वजह से। इसमें मुझे बड़ी साजिश की बू आती है। सरकार ने दबाव बनाया है, डराया है, क्या कारण है, क्यों तोड़ा गया है, जबकि कोई भी डिमांड नहीं मानी गई। इस सवाल का ज्यादा सही जवाब तो सोनम वांगचुक ही दे सकते हैं।
0: इस बीच कांग्रेस समेत विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद और संसद के बाहर हंगामा जारी रखा। उधर राहुल गांधी ने 20 जुलाई को सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की ओर से पैलेट गन का इस्तेमाल किए जाने के आरोपों को भी उठाया।
7: सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है।
0: पेपर लीक के खिलाफ बना माहौल विपक्ष को संजीवनी दे गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की दखल के बावजूद विपक्ष सरकार को घेरने का एक मौका नहीं गंवा रहा। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और प्रदीप भंडारी जी, पहला सवाल आप ही से है, देखिए आपके सामने जनता है, और ये दुर्भाग्य की बात है कि देश की संसद के जरिए बच्चों तक उनकी जो मुद्दे हैं वो सुन तो सके कि हमारे नेता क्या बोल रहे हैं, वो संवाद नहीं हो पा रहा है संसद में। तो ये आपके लिए मौका है, आप बताइए देश को और यहां पर जो छात्र बैठे हैं उनको कि वो क्यों आप पर भरोसा करें, क्योंकि बार बार बार बार पेपर लीक हुआ है, बार बार बच्चे प्रभावित हुए हैं, और ये भी एक सच्चाई है कि कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली इसकी वजह से, कौन जवाब दे है?
8: देखिए अंजना जी, मैं खुद युवा हूं और मैं इस देश के युवा को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का इंटेंट युवाओं की बात को सुनना, युवाओं की बात और एस्पिरेशंस को आगे ले जाना और उनकी कंसर्न्स के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। पिछले कई दिनों से जब राहुल गांधी जी भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, समाजवादी पार्टी भी प्रोटेस्ट नहीं कर रही थी, सोनम वांगचुक जी युवाओं की बात को आगे लेकर जा रहे थे। आप सभी इसको सोचिए, उनकी तीन बातें कल थी। पहली कि जितने भी छात्र नीट के इसमें जिनके जान गई है उनको एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाए, साथ में संसद के अंदर चर्चा हो, और तीसरा कि जब संसद के अंदर चर्चा हो और साथ में एडिक्वेट कंपनसेशन हो, कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर पे कोई भी केस ना हो। तीनों की तीनों मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मांग ली और पीएम के वीडियो में वो स्पष्ट है। अब दुनिया भर में पेपर लीक को रोकने के लिए एक डेटरेंट की बात होती है। चाइना के अंदर 5 से 7 साल सजा है, यूनाइटेड स्टेट्स में 5 से 7 साल सजा है। आप सभी एक कहते हैं कि देश के अंदर केस चलता रहता है पर सजा नहीं होती। इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने कैबिनेट में 3 महीने के अंदर अगर कोई भी पेपर लीक करता है उसका कन्विक्शन, मैं कन्विक्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ ट्रायल ही नहीं, 10 करोड़ तक का उसको पेनल्टी और 10 साल की सजा, ये दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा डेटरेंट है। अब रेजिग्नेशन और नॉन रेजिग्नेशन की जो बात है, अगर हम चर्चा पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ इसी बात पे करेंगे कि रेजिग्नेशन होना चाहिए तभी, तो पेपर लीक कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, आप सभी मानते हैं पेपर लीक भाजपा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, तब तो फिर पंजाब के अंदर 2 दिन पहले एक पेपर लीक हुआ, हम आप सब में से ही कई छात्र पंजाब के वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने कोई रेजिग्नेशन नहीं देखा। कल ही कर्नाटका के अंदर एक पेपर लीक हुआ, 80 लाख की ब्राइब दी गई, हमने रेजिग्नेशन नहीं देखा। प्रियंका वाड्रा जी का जो सहयोगी है वो 2005 के अंदर अरेस्ट हुआ है पेपर लीक के अंदर, और उनका सहयोगी बना फिर रहा था और कांग्रेस में नेशनल सेक्रेटरी था। ये सब राजनीतिक बात है, आप भी कहेंगे मैं भी कहूंगा।
0: उत्तराखंड में भी लीक हुआ है।
8: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल
8: मैं कह रहा
0: हूं,
8: नहीं मैं नहीं छोड़ रहा, उधर भी लीक हुआ है, तो ये एक पैनोरमिक समस्या है। तो क्या सिर्फ अगर रेजिग्नेशन नॉन रेजिग्नेशन से ही अगर संसद के अंदर चर्चा होगी तो फिर इन सभी सरकारों को वॉक द टॉक करके पहले अपनी बात पे इंप्लीमेंट करना चाहिए, फिर आगे बात होनी चाहिए। और 10 सेकंड में एक और स्टेक होल्डर जो सीजेपी के लोग हैं, जो उसको हम मानते हैं आम आदमी पार्टी के एक्सटेंडेड फ्रंट, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में रह चुके, उनकी भी 3 में से 2 मांगों के अंदर हमने इन प्रिंसिपल बात करी है, पर हम लोकतंत्र के अंदर जहां आप सभी के वोट से हमें भी वोट मिले, कुछ वोट इन्हें भी मिले, देश का युवा चाहता है संसद में बहस हो और फिर संसद के बाद देश का युवा निर्णय कर ले किसको क्या करना है, क्योंकि हमारी नीति और नियत युवाओं के प्रति है। वापस से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।
0: ठीक है अभय जी, अब आपके पास ये सवाल है कि आप समाधान चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सिर्फ इसके लिए आप पॉलिटिकली फायदा उठाएं, क्योंकि मौका है, छात्र निकले हुए हैं, क्योंकि समाधान तो यही है ना कि व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। वो कह रहे हैं कि इस्तीफे पर क्यों अड़े हैं, बातचीत क्यों नहीं करते देश की संसद में।
9: जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। क्या कह रहे थे छात्र प्रधानमंत्री जी, एक बार उठाकर तो देखिए। अभी 8 दिन पहले पार्लियामेंट में आपने जवाब दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोई डेडलाइन नहीं होती। आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली में बनाई, क्या कन्विक्शन रेट है बताइए ना, 81% क्रिमिनल्स को के साथ प्रोसिक्यूशन खड़ा है, सिर्फ 19% है उनका कन्विक्शन का रेट। प्रधानमंत्री जी मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी अक्टूबर 5, 2023 को भी आपने यही बात की जोधपुर की एक रैली में कि मैं पेपर लीक करने वालों को छोड़ूंगा नहीं, कड़ा कानून हमने बना दिया है। आपने जुलाई 2, 2024 को भी यही बात कही, लोकसभा में कही, उसके बाद आपने फरवरी 10, 2024 को यही बात कही प्रधानमंत्री जी, उसके बाद जयपुर 17, 2024 दिसंबर को, तो तारीख पर तारीख प्रधानमंत्री जी देते हैं आप। आप बताइए छात्रों को, सिर्फ पेपर लीक एक मसला नहीं है, पूरे विश्व में एक उदाहरण बताइए कि छात्रों ने अगर न्याय की मांग की हो तो बर्बरता से पैलेट गन से मारा। ये कश्मीर की बहस में कहते थे आतंकवादियों पर पैलेट गन चला रहे, अरे हमारे छात्र आतंकवादी नहीं है,
8: नहीं है छात्र,
9: डंडों में कील लगाकर बर्बरता से मारा। प्रधानमंत्री जी आप दम सादे हॉट सीए देखते रहे टेलीविजन पर, आपने एक वीडियो डाला अंजना जी ने बोला। प्रधानमंत्री जी मेरे को, मुझे दुख हुआ, मेरे देश का प्रधानमंत्री जी को इतना ज्ञान नहीं कि जो रिजल्ट 16 तारीख को आया बोले 19 तारीख को नीट का
10: रिजल्ट आया, जिसको परिणामों का पता नहीं वो चिंता नहीं करता, उसको सिर्फ अपने राजनीतिक दल की जीत और हार के परिणामों से चिंता है। प्रधानमंत्री जी, एक के बाद 152 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले हुए, आप जानते हैं भारत का इतिहास साक्षी है। एक घोटाला कैसा हुआ, डीमेट का एक घोटाला था भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह घोटाला इतना बड़ा है कि हमारे पास स्टाफ भी नहीं है कि हम उसकी जांच कर पाए। 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला था, एक घोटाला, एक स्कैम ऐसा था जो बिहार में सजा हो, जिसको हुई 2020 में जेल से छूटा, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फिर उसने स्कैम किया। प्रधानमंत्री जी कहां डिटरेंट की बात कर रहे थे, कौन सा भय है बताइए ना। सत्ता की सरपरस्ती में आप अपराधियों को पनाह देते हैं, एक कन्विक्शन बता दीजिए। 12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, एक के बाद एक, और आज की बात नहीं है, जब से आपने शपथ ली प्रधानमंत्री जी उसके बाद से पेपर लीक होना प्रारंभ हो गए। आप 2015 से मेरे पास सूची पड़ी है, 10वीं और 12वीं के सीबीएसई के पेपर लीक हुए, एसएससी के पेपर लीक हुए, नीट के पेपर। बिहार में क्या हुआ, बिहार में तो यह हुआ कि पुलिस ने पकड़ा कि 68% जो पेपर प्रश्न पत्र हैं वो नीट की एग्जाम के हैं, ये पकड़ा, ये रिकॉर्ड पर है। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कह दिया नहीं नहीं परीक्षा निरस्त नहीं होगी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अरे सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है साहब, जो तुम शपथ पत्र देते हो वही सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, वो प्रोसिक्यूशन जो तुम्हारा जो शपथ पत्र देगा वही निर्णय लेगा। इस देश के भविष्य को बेचने वाली सरकार को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तीन मांगे हमारी, प्रधानमंत्री जी क्या तकलीफ है, आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लेते प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी क्या तकलीफ, क्षमा मांगिए ना प्रधानमंत्री जी, आपने इतना बड़ा वीडियो डाला छात्रों से क्षमा मांगी, आपके गृह मंत्री जी ने बर्बरता से पिटवाया छात्रों को, आपने टेलीविजन पर नहीं देखा।
0: ठीक है, पैलेट गन्स पर उनका सवाल है, पैलेट गन के उस पर भी आप जवाब दीजिए। एक सेकंड, क्या आपने देरी की जिसकी वजह से ऐसी स्थिति आई, बच्चों से पहले बात कर लेते तो ये हालत तो नहीं होती।
8: चलिए मैं सबका जवाब दूंगा, मुझे इस पीड़ा इस बात की भी आप सभी करिएगा, जितनी बार इनने बीजेपी कांग्रेस की नाम ली उससे आधे बार भी इनने युवा की बात नहीं की, ना इनने युवा के रिफॉर्म की बात करी। इससे स्पष्ट होता है कि इनकी मकसद राजनीतिक है और क्रेडिट होड़ की। मैं इनके साथ वापस से बात नहीं करूंगा, मैं युवाओं की बात करूंगा। मैं युवाओं की बात, पहले अंजना जी ने जो पार्ट किया कि भाई पैलेट गन की बात है, किसी को दिल्ली के अंदर पैलेट गन चलाने का अधिकार नहीं है। देखिए सब युवा मानेंगे कि एसीपी भगत, आप सबके पिताजी भी कोई ना कोई प्रोफेशन के अंदर है, उनके भी बच्चे और माताजी हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार है, उनको कुछ लंपेन एलिमेंट्स में, स्टूडेंट्स ने नहीं, कुछ असामाजिक तत्वों ने पकड़ा और दो स्टूडेंट्स ने उनकी जान बचाई, और वो दो स्टूडेंट्स को आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज वो देश के सामने एक मिसाल है कि स्टूडेंट का एक प्रोटेस्ट के अंदर भी व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो हम जांच करेंगे कि अगर आज तक या किसी के पास ऐसे कोई तथ्य है जो ये बात कर रहे हैं, ऑफिशियली कोई पैलेट गन की बात नहीं, पर होगा तब भी जांच होगी। अंजना जी,
0: आरएमएल की तरफ से लिखा हुआ है बाकायदा उनके भाई, और हमने ऑनर दिखाया,
8: बिल्कुल आपने आपने दिखा है, दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल कल भी उनने कहा था कोई पैलेट गन नहीं, अगर कुछ ऐसा है तो जरूर इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं 10 सेकंड बात करूंगा, मैं छात्रों से वापस से कहना चाहता हूं, हम सब चाहते क्या है, हम सब भले भाजपा हो कांग्रेस हो, चाहते क्या है कि हम चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो और आप सभी इस देश के अंदर एजुकेशन रिफॉर्म हो। जब 15 दिन, जब 20 दिन तक राहुल गांधी इस देश में नहीं थे, इस देश में जब 15 दिन तक, जब 15 दिन तक राहुल गांधी इस देश के अंदर नहीं थे, तब सोनंग वांगचुक आप सबकी बात उठा रहे थे, जिस दिन से जब सोना मांग, और उनके खुद का कल का बयान है कि भाई चर्चा तो करो संसद में, अगर संसद निर्णय करता है जो अभय जी कहते हैं तो हम संसद के निर्णय को मानेंगे, पर चर्चा से क्यों भाग रहे हो, चर्चा की अकाउंटेबिलिटी आपकी भी हमारी भी है कि ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश का बच्चा बच्चा नहीं है, क्या पंजाब का बच्चा बच्चा नहीं है, क्या कर्नाटका का बच्चा बच्चा नहीं है, अरे हर छात्र छात्र है, मेरी और आपकी तो सत्ता आएगी जाएगी पर यह छात्र आगे रहेगा, और छात्र की मैं बात कर रहा हूं तो सबसे बड़ी बात है कि छात्र को रिफॉर्म चाहिए। अभय जी मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, मुझे गाली बकनी है बको, भाजपा को जो बोलना है बोलो, पर छात्रों की बात करो, छात्रों की बात तभी होगी जब 3 महीने के अंदर देश के अंदर कन्विक्शन होगा, ट्रायल नहीं कन्विक्शन, पहली बार ऐसा हुआ है, तब होगी जब मैं और आप संसद में बैठकर ये बोलेंगे कि ये कमी है इसको मिलकर सुधारें, तब नहीं होगी कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल क्रेडिट की लड़ाई के अंदर हो जाए, इसको छोड़ो 1 महीने बाद कर लेना, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है।
0: एक सवाल है मेरा आपसे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात आप कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का ऐलान रेप और पॉक्सो के लिए भी किया गया, निर्भया कांड में 7 साल लगे, मुझे एक सॉलिड जवाब चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये कोर्ट बिठा देने से और 3 महीने में हो जाएगा नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन बहुत मैटर करता है। और यही वजह है कि सिर्फ 2 केसेस में कन्विक्शन हुआ है। कैसे होगा ये, क्या व्यवस्था है, क्या ये सिर्फ अभी मतलब जिसको कहते हैं ना फायर फाइटिंग टेक्निक है?
8: फायर फाइटिंग टेक्निक इसलिए नहीं है कि अलग से एक जज का अपॉइंटमेंट ऑलरेडी किया गया और लॉ के अंदर अमेंडमेंट किया है कि विद इन 3 मंथ्स कन्विक्शन हैज टू हैपन। तो जब लॉ के अंदर अमेंडमेंट है तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी बाध्य है कि 3 महीने के अंदर कन्विक्शन होगा। निर्भया केस में लॉ में अमेंडमेंट नहीं था कि 3 महीने में कन्विक्शन होना चाहिए।
9: छात्रों आप गूगल करके देखिएगा, 8 दिन पहले तक सोनम वांगचुक को यह चीनी एजेंट बता रहे,
8: कोई नहीं।
9: और आज सोनम
7: 2007 में आपने एनएसए के अंदर उनको अंदर डाल दिया था। 2007 में आपने उनको एनएसए के अंदर अंदर डाल दिया था। आपकी सरकार क्या कह रही थी 2007 में? आपको क्या कह रहे थे वो?
9: अब सोनम वांगचुक
7: जिन्होंने आपकी आवाज उठाई उन तक को डिस्क्रेडिट करना चालू कर गए। भाई आपको अपना राजनीतिक वोट में कहना उसका वोट लेने देना नहीं है, पर सोनम वांगचुक को आप बदनाम करना चालू हो गए।
9: 40 विद्यार्थी रोज आत्महत्या कर रहे हैं पिछले 10 साल से। 40 विद्यार्थी रोज सुसाइड,
7: जम्मू कश्मीर, हिमाचल, तेलंगाना,
0: फिर ये कहते हुए कि देखिए आज बात छात्रों की कीजिए, पार्टी के लिए चालाकी से फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए। दोनों के लिए कह रही हूँ, भंडारी जी आपके लिए भी और आपके लिए भी। अभय दुबे जी, अमित जमाई जी, अब अमित जमाई जी को बोलिए। अमित जमाई जी,
9: 47% रिटेंशन रेट है स्कूल का, सरकार की सत्ता।
0: अमित जमाई जी, अमित जमाई जी माइक उठाइए ना।
11: देखिए
9: क्योंकि अफोर्डेबल नहीं है।
11: देखिए देखिए
0: समाधान क्या है, समाधान पर फोकस करना जरूरी है या नहीं?
11: समाधान जो है, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अब उनके कार्यकाल में तकरीबन 20 पर्चे लीक हुए, पुलिस फोर्स से लेकर लेखपाल से लेकर शिक्षकों से लेकर काफी पर्चे लीक हुए। आप मुख्यमंत्री जी जानते ही, हमारी बर्बाद कर देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, यूपी के बाहर निपटवा देंगे, न जाने क्या क्या करवा देंगे। एसटीएफ को जांच हुआ, जो पर्चा कंपनी जहां छपती थी वो गुजराती कंपनी थी, विनीत आर्या उसका मालिक था, उसको इतना समय दिया गया कि वो अमेरिका भाग सके। आज तक किस फास्ट्रैक कोर्ट के जरिए आप उसको अमेरिका से वापस लाएंगे? बहुत बड़े बड़े मेहमान तो पहले ही से बाहर है। तो सीधी सी बात है कि सरकार शिक्षा में इंटरेस्टेड नहीं है। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, अपने कार्यकाल में, अंजना जी मैं तारीफ की बात नहीं कह रहा हूं, 12 विश्वविद्यालय बनाए उन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर।
0: पेपर लीक कितने हुए?
11: हर साल 2 विश्वविद्यालय
0: पेपर लीक कितने
11: हर
0: हुए?
11: साल पेपर लीक के बहुत कोई बड़ी घटना कंटिन्यूअस नहीं हुई, और जो घटना हुई उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर बच्चे सोल्यूशन पूछा जा रहा है, जब आपको याद है, आप तो बड़ा पार्लियामेंट आपने कवर किया है, मनमोहन सिंह जी के समय पे सुषमा जी, आडवाणी जी अलग अलग समय पे एलओपी रहे, क्या ये बात सही नहीं कि हर दिन संसद चलने के पहले उन दोनों का आपस में टेलीफोनिक बातचीत भी होती थी? लेकिन आज के जो चाणक्य हमारे गृहमंत्री हैं, भारत के गृहमंत्री, इतना अहंकारी इंसान तो भारत में आज तक किसी ने देखा ही नहीं
8: है।
11: अरे एलओपी आदरणीय राहुल जी को फोन लगाओ,
8: मैं जवाब
11: बच्चों के, अच्छा चलो उनसे बात मत करो, अखिलेश जी से बात मत करो, सीधे जाओ जंतर मंतर, जो बच्चियां जिनको पीटा गया, हमें एक वीडियो चल रहा है कि डंडे से उसके बैग पे एक बहन के मारा जा रहा, कपड़े फाड़ने का
8: झूठ
11: परमिशन दिल्ली पुलिस को किस पुलिस की ट्रेनिंग में दिया गया?
9: क्या बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे हैं?
11: हमारी बेटी के कपड़े फाड़े गए,
9: क्या सबने टेलीविजन पर देखा? क्या बात करते हो आप?
8: मैं जवाब दूंगा।
11: आप कह रहे हो वो सारे बच्चे
0: प्रदीप जी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि बच्चों के साथ पुलिस की ज्यादतियां हुई है? आप नहीं इनकार कर सकते?
7: नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा।
0: बच्चों के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके लिए कौन से? और देखिए इस बच्चे ने कुछ देर पहले एक सवाल किया था जब आप लोग नहीं पहुंचे थे, उसने सवाल बड़ा सही किया था कि अगर हम लोग ये आंदोलन नहीं करते तो आप लोग कुछ नहीं करते, बस टेलीग्राम बैन करके और चुप रह जाते। मतलब एक बच्चों में जो ये ट्रस्ट डेफिसिट है, यू हैव टू एड्रेस।
11: अंजना जी,
0: उसके बाद वो आंदोलन पर उतरते हैं।
11: अंजना जी,
0: अंजना जी ऐसा करती है?
11: अंजना जी 10 सेकंड मुझे पूरी
8: बोलिए।
11: देखिए समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये सब की जिम्मेदारी कि आप उनको अकाउंटेबल बनाइए। लेकिन आज प्रधानमंत्री की सरकार है, हम किसे पूछेंगे? अखिलेश यादव जिम्मेदार है?
8: जवाब दे।
11: जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एक आखिरी बात, आप कह रहे हो ये कौन सा देश है जो अपने देश के नागरिकों, भविष्य के ऊपर पैलेट गन से हमला करता हो?
8: मैं जवाब देता हूं।
11: ये कौन सा पुलिस है? ये गृह मंत्री अमित शाह जी का पुलिस हमारे लोगों पे, छात्रों पे पैलेट गन से हमला करते हो? क्या दिल्ली कश्मीर है? क्या हमारे बच्चे आतंकवादी हैं?
8: कोई नहीं आतंकवादी है, कोई नहीं आतंकवादी।
11: आरएसएस के नेता ने कहा ये जितने बच्चे हैं इनके पीछे सीआईए है।
8: किसी ने नहीं,
11: आप लोग पीछे सीआईए है?
8: नहीं है।
11: विदेशी ताकत है?
8: चलो,
11: अरे ट्रम्प साहब तो पहले ही आपके पापा हैं।
8: चलो,
11: फोन लगाइए, पूछ लीजिए विदेशी ताकत है, किसकी ताकत है।
8: चलो, आप वापस से इनकी स्पीच में उठा के देखिए, जितनी बार डोनाल्ड ट्रंप, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा की बात करी उतनी बार इनकी शब्द के व्याकरण में युवा तक नहीं है। इससे वापस से इनकी मंशा साफ हो जाती है।
12: बीच में बीच में बीच में देखो, अबे
8: युवाओं की बात
12: नॉर्मल है। मुझे बच्चों के सवाल भी लेने हैं, बच्चों के सवाल भी लेने हैं। एक स्वर में
10: शेम शेम करना, अगर आपने देखा है तो
8: मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। रुक जाओ,
11: विश्वविद्यालय
8: मैंने दो वीडियो देखे।
12: अरे हो गया गुरुदेव, प्लीज
8: मत करो, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं भी
12: चाहूं बाकी सारे,
8: मैं एक एक कर बात करना चाहता हूं।
12: जल्दी मुझे सवाल लेने हैं, हाँ जल्दी।
8: तीन पत्रकारों को किस तरीके से, स्टूडेंट्स ने नहीं, कुछ असामाजिक,
12: उनके लिए आप चिंता मत कीजिए।
8: सुनिए,
12: उनके लिए मत कीजिए चिंता। आप बच्चों पर बताइए कि बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ?
8: बच्चों के साथ में हूँ,
12: किसी के खिलाफ हिंसा गलत है?
8: अगर किसी के खिलाफ कोई इनोसेंट पीसफुल प्रोटेस्टर के साथ गलत है, अगर कोई आरएफ के गलत है, हिंसा सही नहीं है। स्टूडेंट्स की हम इज्जत करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए
12: उन्होंने कहा छोटे मोटे लीक हुए थे। चलिए, पर उनकी सरकार चली गई है। भंडारी जी कहाँ हैं आप? सरकार को जनता ने बाहर कर दिया, अब आप सरकार है।
8: जिम्मेदारी पर स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी।
12: जल्दी से फिर मुझे सवाल लेने बच्चों।
11: देखिए कब हटेगा इतना बताओ, आज
8: आप बताओ के पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर कब हटेगा? पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर कब हटेगा ये बताओ।
12: बोले
8: हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी हरा
11: जाके नरेंद्र मोदी को भी बता देना,
8: 15 दिन के लिए बैठ कर जाओ। तुम सब बच्चा बच्चा नहीं है, पंजाब का बच्चा बच्चा नहीं है, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा।
13: सुनिए, बहुत गंभीर बात है, सास पतोह की तरह झगड़ा मत कीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर आप बैठे हैं, सुनिए ध्यान से। पानी, अरे सुनिए ना भाई, महत्वपूर्ण बात पर बात कर रहे हैं।
12: ये महिलाओं के स्टीरियोटाइपिंग से जुड़ा है, प्लीज ऐसा मत बोलिए।
13: नहीं, मैं आगे बोल रहा हूँ।
12: ससुर और दामाद नहीं लड़ते।
13: अच्छा ठीक है, यही बात कर लेते हैं।
12: प्लीज स्टॉप दिस,
13: इसी पर बात कर लेते हैं।
12: स्टीरियोटाइपिंग की वो लड़ती रहती है।
13: पानी का पाइप लीक हो या क्वेश्चन पेपर लीक हो, हर लीक इम्पोर्टेंट है। देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कल मध्य रात्रि जब पूरा विपक्ष सोया हुआ था तो प्रधानमंत्री ने छात्रों नौजवानों के साथ सीधा संवाद किया है।
10: अच्छा।
13: और मैं बीच में टोक नहीं रहा था दुबे जी,
10: अच्छा बोला।
13: टोका तो की कीजिएगा, अच्छा तो फिर हम भी टोकेंगे, रुक जाइए।
12: प्रधानमंत्री
13: बहुत गंभीर विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, देश के बच्चों के भविष्य का मामला है। आपको टीआरपी की चिंता हो रही है? देश के प्रधानमंत्री ने छात्रों नौजवानों को एड्रेस करते हुए देश में पेपर लीक के संदर्भ में गंभीर बात कही है। रुकिए मिस्टर दुबे, रुकिए,
12: रुकिए, बात है ये, प्लीज। मैं
13: राहुल गांधी की तरफ इन मौसम बरसात मत कीजिए। रुकिए,
10: छात्रों को रोक के बर्बरता से मार रहे हैं।
13: देखिए भाई, छात्र नौजवानों के आड़ में किसी प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र को नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए आदरणीय सोनम वांगचुक जी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिन अनशन किया। विपक्ष के सभी बड़े नेता, चाहे श्रीमान राहुल जी हों, श्रीमान अखिलेश जी हों और एक हमारे प्रदेश के श्रीमान तेजस्वी जी हों, जो आज तक किस देश में हैं पता नहीं है। पार्लियामेंट के 24 घंटा पहले राहुल जी और अखिलेश जी की लैंडिंग होती है और उनके परिवार के प्रतिनिधि जाकर के सोनम जी और सीजेपी के लोगों से मिलते हैं और एक बड़ा पॉलिटिकल स्क्रिप्ट पे राजनीतिक ड्रामा, देश की मजबूत सरकार जिसको छात्रों और नौजवानों ने समर्थन देके 2014 में लाया, मोदी जी को अगर किसी ने प्रधानमंत्री बनाया तो आप छात्रों ने और हम नौजवानों ने बनाया, तो क्या मोदी जी अपने आधार वोट के खिलाफ जाएंगे? कल 12 बजे रात को जब राहुल जी सो रहे थे, अखिलेश जी सो रहे थे और तेजस्वी जी खो रहे थे, तो देश के प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों के लिए और छात्रों के लिए, आप लोगों को जोहा है, जोहा समझते हैं, खोजा है, ये भोजपुरी का शब्द है, और हम लोग बहुत ज्यादा माँ बेटी की इज्जत करते हैं, बिहार के रहने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, प्रधानमंत्री कठोर कार्रवाई करेंगे, कोई नेतागिरी का पार्ट नहीं बनना है, देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास रखिए। बाबूजी नाराज होते हैं तो पड़ोसी के घर में हम लोग जाते हैं कि बाबूजी से लड़ के फिर बाबू जी के साथ रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री से विद्यार्थियों ने संवाद किया है, प्रधानमंत्री ने संवाद को समझ के
14: रुकिए
13: अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे कि नहीं, अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे कि नहीं, नहीं इस्तीफा अखिलेश यादव, रुकिए चुपचाप।
14: अरे गलती तू
13: कर रहे हैं, अखिलेश यादव
12: इस्तीफा देंगे,
13: सुनिए बताते हैं कहे देंगे, सुनिए कहे देंगे, सुनना पड़ेगा। अरे पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं,
12: पेपर लीक
13: देश का विद्यार्थी पार्लियामेंट में, देश के शिक्षा मंत्री, सुनिए ना अंजना जी,
12: बाबूजी
13: रुकिए, गंभीर बात है, अरे रुकिए गंभीर बात है
12: रोहित जी,
13: अरे रुकिए ना,
12: अरे पेपर
13: रुकिए तो,
12: अरे पेपर
13: क्या करें कि पाइप लीक हुआ है, हम तो कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है, रुकिए धैर्य रखिए, धीरज रखिए, सुनिए
9: बाबूजी के स्वभाव का पता
13: लगता है, दादाजी के पास में जाइएगा,
9: बाबू कितना गुस्से में,
13: बाबूजी राहुल गांधी खोज रहे हैं,
9: बाबूजी का
13: सुनिए
9: कितना गुस्से में है,
13: तू बात
9: ये देखिए,
13: बताइए ना बिन मौसम बरसा,
9: बाबूजी ने वीडियो जारी कर दिया,
13: ए दुबे जी
9: बाबूजी का बाबू को देखिए,
13: ए दुबे जी चुप रहिए, सुनिए सुनिए अंजना जी, बहुत गंभीर बात है, मां बहुत जल्दी है, मैं हम भी हैं, देखिए बहुत बड़ी साजिश है, देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही के तहत देश के पार्लियामेंट को बोलेंगे, तब ना देश का विद्यार्थी जानेगा कि नीट का पेपर चपरासी लीक किया,
14: कब
13: कोचिंग वाला लीक किया, जब अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे, मांगो इस्तीफा अखिलेश यादव का। अरे विद्यार्थी लोग सुनिए, हम भी 36 साल के जवान हैं, आप लोग 18-20 साल के हैं, आपसे डबल हम हैं, हमसे डबल बाकी लोग हैं, सुनिए इस्तीफा मांगिए राहुल गांधी का, इस्तीफा मांगिए अखिलेश का,
12: मतलब आप तो उल्टी ही गंगा बहा रहे हैं। अरे गुरु इधर देखिए,
13: घर के पैसा से,
12: अरे उल्टी गंगा बहाइएगा,
13: अरे पार्लियामेंट चलेगा तब ना शिक्षा मंत्री बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे, गृह मंत्री
9: बोलेंगे,
13: और सुनिए झारखंड तेलंगाना तमिलनाडु
12: अरे सुनिए आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं, चुप हो जाइए, उल्टी गंगा बहा रहे हैं,
15: मैं जरा
12: उल्टी गंगा बहा रहे हैं, चलिए बोलिए बोलिए मैम, अरे रोहित जी माइक नीचे हो गया, उल्टी गंगा बहा रहे हैं,
15: प्रोग्राम इज अबाउट ओवर, मैं दो मिनट अपनी बात रख लूं,
13: बोलिए ना
15: प्लीज, आप बीच में मत बोलिएगा,
12: हाँ ठीक है, बारी बारी
15: आप भी मत बोलिए,
12: बारी बारी
15: बोलेंगे, आप ही बोल लीजिए फिर,
9: अरे प्रोडक्शन पानी लाओ भाई,
13: पानी
9: शांत शांत गजाधारी।
12: अच्छा देखिए विषय बहुत गंभीर है, इसको हल्का मत बनाइए प्लीज, चलिए
15: से आप लोग इसका मजाक बना रहे हैं ना, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये जो सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इनके फ्यूचर से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये, आप शिक्षा का जिस तरह से मजाक बना रहे हैं, ये मजाक का, हंसने का, ताली बजाने का, ताली पिटवाने का मुद्दा नहीं है, पेपर लीक एक बहुत ही सीरियस इशू है, लेकिन पेपर लीक हमारे देश में क्यों होते हैं, आज से तो नहीं हो रहे, बहुत वर्षों से हो रहे हैं, तो इसका कारण समझने की जरूरत है, और मैं अगले दो मिनट का समय चाहूंगी अंजना जी, कुछ फैक्ट्स रखना चाहती हूं, अपने देश में 25 करोड़ स्कूली बच्चे हैं और 4.5 करोड़ हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, और यदि आप इसकी स्केल देखेंगे, इन आंकड़ों को देखेंगे, तो स्लोवाकिया, मालडोवा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे कई देश हैं जिनकी जो कुल जनसंख्या है उनकी दोगुनी या तिगुनी ये आंकड़ा है। अब इस स्केल पे जब हम स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित कराते हैं तो इसमें लूपहोल्स निकल के आते हैं, और इन लूपहोल्स को हमको दूर करना पड़ेगा, इसमें स्टूडेंट्स का भी योगदान होना चाहिए, प्रोफेसर्स का भी योगदान होना चाहिए, सारे एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स का योगदान होना चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर मसला है। और रही बात इस्तीफे की, तो 2006 से लेकर के 2014 तक, तब जबकि कांग्रेस की सरकार थी, अमित जी बीच में मत बोलिएगा प्लीज, तब 60 पेपर लीक्स हुए, लेकिन उस समय के किसी भी राज्य के शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री या केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तो शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने के लिए जो प्रोटेस्ट किया गया उसमें नारे या जिस तरह के पोस्टर्स दिखाए गए, आप सब अग्री होंगे कि क्या यदि आपके हाथ में वैसे गालियों भरे पोस्टर पकड़ा दिए जाए तो आप उनको लेकर के खड़े होंगे,
9: तो क्या मारेंगे छात्रों को,
15: क्या आप ऐसे पोस्टर
9: मारोगे,
10: क्या छात्रों को, क्या बात
12: करते हैं? अब आप लोग सब चुप हो जाइए, अब कोई नहीं बोलेगा, अब एक सेकंड, अब कोई नहीं बोलेगा, बच्चे बोलेंगे। चलिए
16: मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब ये पीसफुल प्रोटेस्ट था तो इसमें हिंदूज गॉड को क्यों मॉक किया गया, उनको क्यों अब्यूज किया गया? और फिर आप बोलते हो कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बल्कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज उसमें खुद इन्वॉल्व करी एक पीसफुल प्रोटेस्ट को। सोनम सर खुद वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और स्टूडेंट्स भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसमें रिलीजियन लाने का कोई मतलब नहीं था।
17: मैम मेरा सवाल भदौरिया जी से
18: है,
17: आपने कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, युवा खड़ा था वहां पे, हम भी एक युवा के तौर पे हैं, पर हम ऐसे स्लोगन्स लेके नहीं जाते जिसमें हम इंडियन आर्मी को गाली दें, अपने प्रधानमंत्री जी को गाली दें, तो वो एक नेशनल प्रोटेस्ट नहीं था, उसकी उसमें राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा था।
16: मेरा ये क्वेश्चन है कि पेपर्स तो कैट और सीए भी करवाता है ना, तो उनके तो लीक्स नहीं होते? फिर गवर्नमेंट इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वो तो प्राइवेट ही है, लेकिन गवर्नमेंट खुद फिर क्यों नहीं करवाती है इसको?
12: वेरी वैलिड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल।
16: मैम ये पेपर लीक की प्रॉब्लम है, वो 12 साल से नहीं चल रही है, वो 12 साल से पहले भी हो रही थी, ये बहुत पहले की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे राजनीतिक दौर से बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है स्टूडेंट के बेसिस पे।
19: मैम ये बोल रहे हैं कि आज तक कोई मंत्री इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन एनडीए की सरकार था जो नीतीश कुमार थे रेलवे मिनिस्टर, जब रेलवे का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था, तो आज धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे रहे, अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, या अपने कुर्सी से प्यार है?
12: दो तीन सवाल और उसके बाद से आप लोग जवाब दीजिएगा।
16: मैम जैसे कि मैं
12: पकड़ा हुआ बेटा,
16: मैम जैसे कह रही थी कि वो इस्तीफा क्यों देंगे, तो जब कोई स्टूडेंट एक ही गलती 3 बार करता है तो उसे भी तो स्कूल से निकाल दिया जाता है ना,
10: रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। Exactly. Yeah, रिस्ट्रिकेट करेगी जनता।
12: आई आई
20: मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे, जैसे आप कह रहे थे कि बच्चों को मारा नहीं गया है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी कहाँ थे जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जब बच्चों को मारा गया, जब बहुत वायरल हो गया सब कुछ,
16: बात पहले भी की जा सकती थी,
20: डिसीजन नहीं लिया गया ना सर, अब लेने का फायदा नहीं है, अब आ रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए ना सर, पहले होना चाहिए था।
21: और अभी जो भी हमारे पीएम ने बोला है कि ये कोर्ट्स आएंगे और ये सब चीज़ें सुधार आएंगी, हम कैसे विश्वास कर लें कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली सुधरेंगी? अभी आपसे बोला जा रहा था तो आपने भी डिनाई किया है कि मारा नहीं गया है, जो कि सरासर झूठ बोल रहे हो आप लोग, मारा गया है सबको पता है, इंस्टाग्राम पे और सारी जगहों पे प्रूफ्स हैं हमारे पास, तो आप भी झूठ बोल रहे हो। तो
22: मैम अकाउंटेबिलिटी की बात सर ने की, तो अकाउंटेबल होने के लिए आपको संसद जैसे हम मंदिर मानते हैं वहाँ पर हमें प्रेजेंट भी तो होना पड़ेगा, वो तो खुद प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं और उस प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कैसे आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें?
12: ठीक,
23: मेरा पक्ष दोनों तरफ से, ये मैटर नहीं करता कि इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं, इस समय रेवोल्यूशन आना चाहिए और पेपर लीक होना बंद होना चाहिए।
12: और उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? एक आखिरी सवाल,
24: इस प्रोटेस्ट के रिजल्ट में 20 दिन क्यों लग गए, इतना लंबा टाइम क्यों लिया, जब पता था न्यूज चल रही है सब जगह, तो सोनम वांगचुक 20 दिन तक भूखे हैं, फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर वो हॉस्पिटल में चले गए।
12: चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, जो इनका सवाल है वहीं से शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, इतनी देर क्यों कर दी हुजूर आते आते?
8: प्रोटेस्टर्स पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार पीसफुली जंतर मंतर पे दिया गया था। जिस दिन प्रोटेस्टर्स ने ऑफिशियली कहा कि वो सरकार के साथ मिलना चाहते हैं, एक नहीं एक ही दिन के अंदर सरकार 2 बार मिली। सोनम वांगचुक जी की जब तबियत, और हाईकोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक जी की राइट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार सरकार को है, तब जाकर सरकार 20 दिन बाद आई। हम कांग्रेस की सरकार नहीं है कि मिडनाइट के अंदर लाठी चार्ज कर दें और जिस तरीके से सबको हटाए, सबको राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है। और मेरी बात नहीं तो आप सोनम वांगचुक जी की बात सुनिए, जो उन्होंने कल कहा कि मेरी जो तीनों बात थी वो तीनों बात मान ली गई है, और सबसे महत्वपूर्ण संसद में चर्चा होनी चाहिए, हम सब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आप भी कल को जाके सांसद बनेंगे एमएलए बनेंगे, हम सब अकाउंटेबल संसद और लेजिस्लेटर्स को है, यही हमारा संविधान सिखाता है। अब आपने बात करी शिक्षा मंत्री की अकाउंटेबिलिटी की, आप सभी याद करिए रीनीट का एग्जामिनेशन विद इन 49 डेज हुआ, जिसमें से आप में से कोई गरीब मां का बेटा, कोई दूसरा व्यक्ति, 11 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया, 22 लाख बच्चे अपीयर किया, 11 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया, 55% उसमें महिलाएं हैं। तो वही पूरे हमने उस गलती से सीखा, वही शिक्षा मंत्री के अंडर में रीनीट का एग्जामिनेशन हुआ, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई और होल ऑफ गवर्नमेंट से हुआ। अब बात करते हैं राजनीतिक नहीं है, अगर आप सभी कहते हैं कि चर्चा, मैं कह रहा हूं चर्चा हो उसका संसद निर्णय ले ले, पर अगर अकाउंटेबिलिटी हम सब कह रहे हैं कि रेजिग्नेशन पे होती है तो हम सबको यह कहना चाहिए कि पिछले एक साल में जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सरकार नहीं है, हमारे अंडर नहीं आता, वहां के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार नहीं, हमारे अंडर नहीं आता, वहां के भी इसको इस्तीफा देना चाहिए। परसों पंजाब के अंदर हमारे अंडर नहीं आता, पंजाब के शिक्षा मंत्री को भी देना चाहिए। और कल कर्नाटक हमारे अंदर नहीं आता, वहां 80 लाख की ब्राइब हो रही है, वहां के भी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं वॉट अबाउट नहीं कर रहा, मापदंड नहीं, अंजना जी मापदंड मापदंड जवाबदेही बराबर होनी चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
0: सरकार इसलिए थोड़ी सौंपी थी कि आप बताओगे वहां क्या कर रहे हो, कांग्रेस को हटा दिया
8: अंजना जी,
0: 12 साल
8: यहाँ सब, यहाँ कहीं भाजपा नहीं है। हमारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई तभी हमने रीनीट का एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कराया, तभी हमने 3 महीने के अंदर कन्विक्शन का रेट लाया, लीगली हमने अमेंड करा, ये हम लोग अकाउंटेबल अब संविधान को हमेशा रह रहे हैं। अगर हम नहीं डिलीवर करेंगे तो हमसे कोर्ट सवाल पूछेगा, ऐसे ही सरकार चलती है। और एक और ये सपा कह रहे थे, आप सभी युवाएं कर लीजिए, देश में पेपर लीक के खिलाफ पहला कानून कब बना? 70 साल से था, पहले से समस्या चली आ रही थी, नहीं कब बना? हम लेके आए, उसके बाद भी दिक्कत हुई, कुछ प्रोफेसर्स ने, इन्विजिलेटर्स ने पेपर लीक किया, वो सबके सब जेल के अंदर है। शिक्षा मंत्री ने डायरेक्ट लिया, उसके किसी व्यक्ति ने नहीं किया, उसने खुद ने आइडेंटिफाई किया कि भाई एक इन्विजिलेटर ने पेपर लीक किया, मैं खुद सीबीआई ऑर्डर करूंगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, ये बात है। ये मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा, आप मुझे सोल्यूशन दीजिए, सोल्यूशन इस्तीफे नॉन इस्तीफे नहीं, सोल्यूशन रिफॉर्म है, सोल्यूशन ज्यादा टाइम बाउंड सजा है, सोल्यूशन 50,000 की सीट को बढ़ा के 1.5 लाख नीट की सीट करना, जिससे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज
0: मिले। सोल्यूशन
8: की बात करें, जिसने स्टूडेंट पे लाठी चलाई उस पर कार्रवाई होगी, जिसने पीसफुल पे
0: कब होगी
8: मैं बताता हूं,
0: नहीं अज्ञात नाम से अननोन नाम से कई बच्चों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है,
8: ऑलरेडी हो गया,
0: कितने कितने पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ,
8: अंजना जी
0: कौन करेगा पुलिस वालों के खिलाफ?
8: अंजना जी लेट एक
0: सेकंड, प्रदीप जी लेट्स बी रियलिस्टिक,
8: अंजना बहुत रियलिस्टिक है,
0: क्या
8: अभी मैं बता रहा हूँ, अभी वहां पे प्रोटेस्टर्स हैं और कई लंपन एलिमेंट्स हैं जो संसद उखाड़ फेंक देंगे, उमर खालिद के नारे, प्रधानमंत्री जी वाली, कई दो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सोनम वांगचुक जी ने भी कहा वायलेंस नहीं है, हम सब ने देखा वायलेंस हुआ है, एक बार ये पूरी की चीज को करने दीजिए, अपने आप कार्रवाई होगी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, जिसने कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी एक्ट कर गलती करी है उस पर एक्शन होगा, पर जिसने साथ में पत्रकारों को भी पीटा है, जिसने आरएएफ के जवान को भी पीटा है, वो स्टूडेंट नहीं है, वो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का फायदा उठा के असामाजिक हमें स्वीकारना होगा।
0: प्रदीप जी अब
1: आदरणीय सोनम वांगचुक,
0: पार्लियामेंट में पूछ रहे थे कि पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी,
1: उसका भी आदरणीय सोनम वांगचुक जी 6 महीने बाद जेल से छूटे हैं, किसने जेल में डाला, क्या कह रहे थे तब ये
8: उनका कल का बयान क्या था,
1: क्या कह रहे थे कि चीनी एजेंट है ये चीनी, देखिए चुप रहिए आपके बीच में नहीं बोला, उस बिटिया ने पूछा कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं आप जाते हैं, राहुल गांधी जी गए थे लोकसभा अध्यक्ष के पास कि अध्यक्ष जी आप बात चर्चा तो कराइए, उन्होंने कहा यहाँ नहीं बैठेंगे, सरकार से पूछकर बैठेंगे, तो राहुल गांधी जी बैठ गए प्रधानमंत्री जी की आवाज के बाहर, प्रधानमंत्री जी की आवाज के बाहर बैठ गए,
8: ऑन रिकॉर्ड से,
1: अरे प्रधानमंत्री का घर जो लोक कल्याण मार्ग है वो
8: प्रधानमंत्री
1: जी
8: पार्लियामेंट
1: हमारी
8: स्टूडेंट की है, युवाओं की है, पार्लियामेंट में
1: वीडियो बना रहे प्रधानमंत्री,
8: अरे पार्लियामेंट में चर्चा करो,
1: उनका प्रवक्ता क्या कह रहा है, एक बिटिया को देखा हमने कि उसने ऐसी जगह डंडा मारा जिसको मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता,
8: गलत है,
1: माँ की
8: गलत है, पर साथ में मुझे
1: झूठ बोलते हो
8: नहीं, आप झूठ बोल रहे हो,
1: से मारा
8: पे आप मुझे
1: पूरे देश ने देखा,
8: पूरे देश ने देखा, पंजाब से लेकर कर्नाटक में इस
1: बात का,
8: जिस बच्चे के खिलाफ अंजना जी,
0: बिल्कुल ये बात सही है, ये बात सही है, संसद में चर्चा होनी चाहिए और वहां पर सभी लोग, कम से कम नेता सामने आए, वो अकाउंटेबल रखे पूरे सिस्टम को, और जो उपाय हो सकते हैं वो भी बताइए, और अपने अपने नेता का खूब महिमा मंडन कीजिए, अपनी पार्टी का चालाकी से फायदा भी निकालिए, लेकिन बच्चों का मुद्दा है, पेपर लीक भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है, इस बात को मत भूलिएगा, और इस बार तो बच्चे उतरे हैं, भूलने नहीं देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद खासतौर पर उन बच्चों का जो हमारे साथ इस चर्चा में आ जाए हैं, एक बार उनको दिखा दीजिए, क्योंकि ये बच्चे और उनकी आवाज ही इस देश के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: 16 साल पहले एक धमाका क्या थी, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को आरडीएक्स रिमोट बम से उड़ाने की साजिश, देखिए आज तक पर।
2: In association with
3: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
5: सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने के बाद सीजेपी के जो समर्थन में छात्र हैं, वो बड़ी संख्या में, ये सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जंतर मंतर की ओर पहुंच रहे हैं।
6: इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं, यहां इस वक्त गहमा गहमी भी है। किस तरह से लोग सड़कों पर मार्च कर रहे हैं और जंतर मंतर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
7: तमाम जो छात्र हैं, जो

0: वांगचुक ने क्यों तोड़ा अनशन? 26 दिन बाद वांगचुक क्यों तैयार? अनशन के द एंड की इनसाइड स्टोरी। जब सोनम वांगचुक को पुलिस जंतर मंतर से ले गई, वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग में भर्ती कराया गया। गिरती सेहत का हवाला देकर उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन परिजनों ने सवाल उठाए, सरकार की कोशिशों पर आशंका जताई। मामला कोर्ट तक पहुंचा। वांगचुक सफदरजंग से मेदांता शिफ्ट किए गए और 24 जुलाई की तारीख आते आते परिस्थिति बदल गई।
1: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए।
0: सहज सवाल उठता है कि आखिर ये तब्दीली कैसे आई? सरकार ने वांगचुक को अनशन तोड़ने के लिए कैसे तैयार किया? इसके पीछे की एक्सक्लूसिव कहानी जान लीजिए। 23 जुलाई को अमित शाह, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की बैठक हुई। बैठक 4 घंटे चली। वांगचुक को दिए जाने वाले प्रस्ताव फाइनल हुए। पहले वांगचुक की पत्नी से बात की गई, उन्हें सरकार का प्लान बताया गया। इसके बाद मेदांता अस्पताल में वांगचुक से नड्डा, जितेंद्र सिंह मिले। वांगचुक को बताया गया कि सरकार नया कानून बनाएगी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नया कानून बनाएगा। वांगचुक को ये भी बताया गया कि नए बिल पर आज ही कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी, अगले हफ्ते संसद में नया बिल पेश कर दिया जाएगा। वांगचुक को सरकार का प्रस्ताव सही लगा और वो अनशन तोड़ने पर राजी हो गए। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी रह गया है कि आखिर वांगचुक अब आगे क्या करेंगे? सूत्रों की माने तो इस बारे में भी वांगचुक ने अपना इरादा साफ कर दिया है। वांगचुक ने सरकार को बता दिया है कि अनशन तोड़ने के बाद वो लद्दाख चले जाएंगे। लद्दाख लौटने से पहले वो छात्रों से बात करेंगे, छात्रों को बताएंगे कि सरकार के आश्वासन पर भरोसा करें, ये भी बताएंगे कि असामाजिक तत्वों से प्रभावित वो ना हो। तो देखने वाली बात यह है कि अब वाकई में सोनम वांगचुक की क्या भूमिका रहती है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रदर्शनकारियों के साथ आकर राहुल गांधी ने एक बार फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। आज दोपहर 3:30 बजे सीजेपी और सरकार में तीसरे राउंड की बैठक। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन में क्रिमिनल नेटवर्क का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने 2000 से ज्यादा आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों की चयन की पहचान की, अब तक 15 FIR दर्ज। पटना में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, पत्थरबाजी के बाद धर पकड़ तेज। हिरासत में लिए तेज प्रताप यादव ने कहा, युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। महाराष्ट्र पेपर लीक का मास्टरमाइंड की खत्म हुई फरारी, बिहार से पकड़ा गया विजेंद्र गुप्ता, दूसरा आरोपित इंद्रजीत सिन्हा भी गिरफ्तार। और दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में नाले में गिरी तेज रफ्तार कार, सेना के अधिकारी के बेटे की मौत, कार चला रही महिला मित्र जख्मी, सड़क पर फिसलन के कारण हादसा।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ मानशु दीक्षित। पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार में आज फिर प्रदर्शनकारी छात्र और पुलिस में जमकर भिड़ंत हुई। पटना में पथराव हुआ तो पुलिस धरपकड़ शुरू हुई, कईयों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारी गांधी मैदान पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर छात्रों को रोका और उसके बाद हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन में शामिल हुए तेज प्रताप यादव को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार के छपरा में भी जमकर बवाल हुआ है। अब ये वो तस्वीरें देखिए, ये गांधी मैदान जाने की कोशिश कर रहे थे छात्र, लेकिन फिर पुलिस से झड़प होती है। पुलिस ने रोकने की कोशिश करती है और फिर पुलिस ने दौड़ा देती, पथराव भी हुआ,
1: बहुत ज्यादा दौड़
0: और प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी चलाई गई पुलिस की तरफ से। अब तेज प्रताप यादव को हिरासत में लिया गया। तेज प्रताप यादव हिरासत में लेने के बाद कह रहे हैं कि वो कंधे से कंधा मिलाकर छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। छपरा में भी कुछ ऐसे ही हालात रहे। ये तो पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार में सिर्फ पटना ही नहीं, छपरा में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच में किस तरह के हालात बने, ये आप देखिए। तेज प्रताप यादव लीड कर रहे थे, बाद में इनको ले लिया गया हिरासत में, ये देखिए। तो छात्रों को लेकर इससे पहले भी प्रदर्शन हुआ बिहार में, वो देख चुके हैं कि कैसे लाठियां चली थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए थे, ऐसा के छात्र भी थे और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ था बिहार में। अब वो तस्वीर पूरे देश भर में वायरल हुई थी, जब छात्र वाटर कैनन पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे, रस्सियों से टग ऑफ वॉर कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर तेज प्रताप यादव की अगुवाई में जब प्रदर्शन हुआ तो तस्वीरें कुछ ऐसी थी।
2: युवा नौजवान के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला करके और अपने हक के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं।
3: तो जहां छात्र जुट रहे हैं वहां पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है और लगातार जो छात्र है सड़कों पर उतरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। किसी भी छात्र को सड़कों पर उतरने नहीं दिया जा रहा है और गांधी मैदान के आसपास के जितने इलाके हैं वहां से छात्रों को हटाया जा रहा है। एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं छात्र छात्राएं, देखिए यहाँ भी इकट्ठा हुई है और पुलिस जो है समझाने का प्रयास कर रही है कि एक जगह इकट्ठा ना हो। और जो आज बंद का ऐलान किया गया है उसको देखते हुए छात्र लगातार जो है पटना की सड़कों पर उतर रहे हैं और देखिए यहाँ पे अभी भी एक छात्र है और इधर इधर आइएगा, इधर आइएगा। क्या कहना है आपका?
4: मेरा यही कहना है कि जिस तरह से ये लोग ने शिक्षा व्यवस्था कर दिया, अपना बाल बच्चों को विदेश में पढ़ा रहा है, हम लोग आम आदमी का बच्चा फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं है।
3: ये आप किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नीट छात्रों के लिए कि अपनों के लिए?
4: स्टूडेंट के लिए, सारे स्टूडेंट के लिए। अगर एक इस्तीफा मिलता है ना सबका सिस्टम सही हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, इसीलिए देना होगा कि उसके डर से अपने आप सारा शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगा, चाहे स्टेट लेवल का हो या फिर नेशनल लेवल का हो।
3: पुलिस जो है अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है, सड़कों पर छात्रों को एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 22 जुलाई को पटना में जो उपद्रव हुआ उसमें कई छात्रों को भी चिन्हित किया गया है। जिस तरीके से पटना के एसएसपी का कल बयान आया कि बाहरी छात्रों को बुलाया गया था पटना में प्रदर्शन करने के लिए, सभी को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है, वहीं आज इस बंद के दौरान जगह जगह पटना के जगह जगह जो छात्र इकट्ठा हो रहे हैं तो उन्हें भी पुलिस फिलहाल हटा रही है। अभी देखना होगा कि ये बंद का कॉल जो छात्रों ने किया है आगे कितना सफल होता है। सुजीत कुमार, बिहार तक पटना।
0: और आइए अब आपको दिखाते हैं नॉन स्टॉप 100 प्रेजेंटेड।

कटरा गांधी मैदान में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई, प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे छात्रों को हिरासत में लेकर हटाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन, गांधी मैदान पहुंच रहे लेफ्ट छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का एक्शन। पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में तेज प्रताप यादव हिरासत में, पटना में पुलिस कार्रवाई, युवाओं के समर्थन में सड़क पर उतरे तेज प्रताप। दिल्ली छात्र प्रदर्शन, सुरक्षा व्यवस्था सख्त, दिल्ली पुलिस का अपडेट, 130 पुलिसकर्मी घायल, जंतर मंतर पर करीब 10,000 लोगों की मौजूदगी, 3,000 पुलिसकर्मी तैनात। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बोले, मेट्रो इंटरनेट रास्ते बंद किए, पेपर लीक नहीं रोक पाए। नीट मामले पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार पर बोला हमला, कहा छात्रों की मांगे जायज, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी आक्रामक, बोले पीड़ित छात्रों से सरकार माफी मांगे और दोषियों पर कार्रवाई हो। विवाद पर राहुल गांधी की दो टूक, कहा छात्रों की तीन मुख्य मांगे से कोई समझौता नहीं करेगा, सरकार को समाधान करना होगा। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नीट सफल छात्रों से की मुलाकात, उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। नीट पेपर लीक दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, पंकज चौधरी बोले युवाओं के सपनों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। पीएम मोदी के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा फैसला है, हटाए गए एनटी के 47 अफसर, पुलिस कार्रवाई भी संभव। शिक्षा मंत्रालय में बड़े बदलाव, एनटीए ने भर्ती के लिए जारी किया विज्ञापन, 4 वरिष्ठ जनरल मैनेजर और 16 युवा प्रोफेशनल की भर्ती होगी। पेपर लीक पर सख्त कानून का मसौदा कैबिनेट में मंजूर, 10 साल तक सजा, 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान, सोमवार को पेश हो सकता है संशोधन विधेयक। सूत्रों के हवाले से खबर, इस्तीफा नहीं देंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मंत्री के साथ मजबूती से खड़ी है सरकार। अभिजीत दीप्ति को हुआ टाइफाइड, इलाज जारी, ब्लड रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि, वीडियो जारी कर जानकारी दी। पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन जारी किया वीडियो संदेश, कहा आपकी सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद, हमारा नाता और सक्रियता से बढ़ेगा। पीएम मोदी ने अपने हालिया वीडियो को देखने और उस पर अपने विचार साझा करने वाले युवाओं का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा देर रात युवाओं से मिलने का अवसर मिला और उनके सकारात्मक सुझावों ने उन्हें बेहद प्रेरित किया। पीएम ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी और रचनात्मक सोच देश के उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत। अनशन तोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम वांगचुक का पलटवार, कहा सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिनों तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर धिक्कार। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन मामले में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सोमवार को सुनवाई। पेपर लीक के विरोध में आज कांग्रेस का देशव्यापी मार्च, सभी से शामिल होने की अपील। सरकार के सामने सीजेपी ने रखी तीन मांगे, बोले पीड़ितों को मुआवजा है दिया जाए और छात्रों से जो केस उन पर लगाए हैं वो वापस लिए जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। जेपी नड्डा ने कहा सीजेपी ने तीन मांगे रखी, 5 सुझाव रखे, आंतरिक चर्चा के बाद आज बैठक होगी। छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर सीजेपी का बड़ा ऐलान, अभिजीत दीप के बोले सबूत जुटाने और पुलिसकर्मियों की पहचान के लिए लॉन्च होगी वेबसाइट। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का लखनऊ में प्रदर्शन, मायावती के आवास के बाहर जुटे अभ्यर्थी, मांगों के लेकर नारेबाजी। मायावती बाहर आओ के नारों पर गूंजा लखनऊ, महिला अभ्यर्थियों ने पूर्व सीएम के आवास के बाहर विरोध किया। महाराष्ट्र टीएटी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, पेपर लीक केस में विजेंद्र गुप्ता गिरफ्तार, पुलिस ने बिहार से इंद्रजीत सिन्हा को भी हिरासत में लिया। पुणे में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की, भारी भीड़ के चलते पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। फतेहपुर से सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले सैफई सिंडिकेट ने विकास और युवाओं के भविष्य पर डाका डाला है। नकल माफियाओं पर सीएम योगी सख्त, बोले 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना, संपत्ति भी जब्त होगी। योगी आदित्यनाथ का दावा, यूपी में 9 साल में दी गई 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां, पारदर्शिता के साथ व्यवस्था की गई। पेपर लीक मामले पर लखनऊ में आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन, इको गार्डन में भारी पुलिस बल तैनात, चंद्रशेखर आजाद होंगे शामिल। दिल्ली के बाद लखनऊ में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, दंगा नियंत्रण संसाधनों के साथ फोर्स तैनात। इस बार सहारनपुर में कावड़ यात्रा पर एटीएस का पहरा, 3 कंपनी पीएसी आरआरएफ के सेट, 7 सादे कपड़ों में पुलिस तैनात रहेगी। अलीगढ़ में भी कावड़ यात्रा की तैयारी तेज, मंदिर परिसर में व्यवस्थाएं की जा रही है चाक चौबंद, प्रशासन का सुरक्षित माहौल में कावड़ यात्रा आयोजित कराने का आश्वासन। धार भोजशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड के बोकारो बाल सुधार गृह में फ्लू का प्रकोप, 20 बाल बंदी पाए गए संक्रमित, एक आईसीयू में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग धड़का। नीट विरोध प्रदर्शन के दौरान बयान पर विवाद, बीजेपी एमएलसी सीटी रवि पर भड़काऊ भाषण का आरोप, एफआईआर दर्ज।
दिल्ली के वसंत कुंज में दर्दनाक सड़क हादसा, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे 20 वर्षीय छात्र की कार नाले में गिरने से मौत, युवती घायल। तेज मोड़ पर फिसली कार, नाले में पलटी, वसंत कुंज हादसे में आर्मी अफसर के बेटे की मौत, अमेरिका में पढ़ता था। लखनऊ अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर एलडी का बुलडोजर, 15 मौतों के बाद अवैध निर्माण ध्वस्त, भारी पुलिस बल तैनात। अमरोहा में नेटवर्किंग फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़, आयुर्वेदिक सामान बेचने की नौकरी का झांसा देकर 16 लोगों को बनाया बंधक, 9 आरोपी गिरफ्तार। राजगढ़ में प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में हाई वोल्टेज हंगामा, जिला पंचायत अध्यक्ष को रोका, मंच पर बुलाया, फिर भीड़ में थप्पड़ पड़ गया, वीडियो वायरल हुआ। बिजनौर में तैरता मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, हड़कंप मचा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 2 मजदूरों की मौत, 2 लापता, धमाके में शवों के टुकड़े दूर तक बिखरे। यूपी के बांदा में डीजल घोटाले का मामला सामने आया, जांच में दस्तावेजों में हेराफेरी होने के बाद 3 कर्मचारी निलंबित। पंजाब के मोगा में सरकारी स्कूल के शिक्षक को सस्पेंड किया, शिक्षक पर छेड़छाड़ की गंभीर आरोप। हिमाचल के पांगी में भीषण लैंडस्लाइड, किलाड़ उदयपुर मार्ग पर चलती गाड़ी के ऊपर गिरा पहाड़, 13 लोगों की मौत, 2 बच्चे सुरक्षित। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद भीषण आग लग गई। बागपत में केले के मूल भाव को लेकर फल विक्रेता और बाप बेटे में हिंसक झड़प। मोतिहारी में कछुओं को रील बनाना भारी पड़ा, बगीचे में वीडियो बना रहे थे, ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पीट दिया। मेरठ में जगन्नाथ शोभा यात्रा में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 1 की मौत, 10 झुलस गए। सहारनपुर में मंदिर चोरी के मामले में 3 गिरफ्तार, मंदिर से चुराए गए घंटे, लोटे, दीपक, इन्वर्टर बरामद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बाल सुधार गृह से 3 नाबालिग फरार, रोशनदान की ग्रिल तोड़कर भागे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर लगभग 2 करोड़ रुपए की सोने और डायमंड की जेवरात बरामद हुए, गुजरात के 2 युवक गिरफ्तार। सासाराम में पुलिस बैरक की छत पर बीएसएपी जवान ने की खुदकुशी, अपने ही सरकारी हथियार से सिर में गोली मारी। मध्य प्रदेश के पन्ना में मोबाइल कवर की डिलीवरी को लेकर विवाद, एसडीएम ने ऑर्डर दिए थे 2 मोबाइल कवर लेकिन 1 मिलने पर पुलिस बुला ली, वीडियो वायरल। ईरान के अहवाज शहर में अमेरिकी मिसाइल हमलों के बाद कई धमाके होने की खबर, ईरानी मीडिया के अनुसार इस हमले में 4 की मौत, 5 घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान और उसके सहयोगियों को कड़ी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी, कहा कूटनीतिक समाधान का रास्ता अब भी खुला है। ब्लैक सी में कमर्शियल जहाज पर हमला, हमले में 1 भारतीय की मौत की खबर। ईरानी सेना ने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया जबरदस्त हमला, बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया। आईआरजीसी ने खाड़ी देशों में रह रहे लोगों को चेतावनी जारी की, उन जगहों से दूर रहें जहां अमेरिकी सैनिक हैं। उधमपुर में भारी बारिश से जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित, जिले की 102 जलापूर्ति योजनाएं बारिश से क्षतिग्रस्त। 27 जलापूर्ति योजनाओं में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद, रामनगर और चेनानी में जलापूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित। रियासी में मानसून की बारिश के बीच दिखा दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब, रेल पुल बेहद खूबसूरत। भारतीय सेना का गुजरात में बाढ़ राहत अभियान, 43 लोगों को सुरक्षित निकाला, कई जिलों में बचाव कार्य जारी है। असम में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू, मरने वालों की संख्या 61। आज देश के बड़े हिस्से पर सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून का असर, कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में भी तेज बारिश हो सकती है। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी वलसाड़ पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। 3 आईएएस अधिकारियों ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों का बोट में बैठकर दौरा किया, राहत कार्यों की समीक्षा की। गुजरात की औरंगा नदी की बाढ़ में फंसे पर्यटकों की बस, जालना के 15 से 17 नागरिक समेत 35 यात्री सुरक्षित। गुजरात के नवसारी में बाढ़ के बीच मेघार गांव में इंडियन कोस्ट गार्ड का बचाव अभियान, लोगों को एयरलिफ्ट किया। गुजरात के बनासकांठा में पिछले 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश, पूरी तरह पानी में डूबे दिखे खेत खलिहान। बाबर और दियोदर में 11 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज, कई इलाकों में जलभराव। सूरत में बाढ़ बारिश का कहर, खाड़ी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, 300 से ज्यादा परिवार प्रभावित, घर छोड़ने को मजबूर। रामबन और उधमपुर जिले में कई जगहों पर भूस्खलन, कीचड़ खिसकने और पत्थर गिरने के कारण जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के बाद बादल फट गया। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी में बहे मासूम का 4 दिन बाद शव बरामद, एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने ड्रोन और गोताखोरों की मदद से ऑपरेशन चलाया। रुद्रप्रयाग के कालीशिला में हार्ट अटैक से अचेत हुए गुजरात के श्रद्धालु का सफल रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर से किया गया एयरलिफ्ट। सूरत में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, पूरा रिहायशी इलाका पानी में डूबा, सड़कों पर खड़े दोपहिया वाहनों पूरी तरह से जलमग्न। ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही विक्रांत मैसी की मुसाफिर कैफे, नेटफ्लिक्स पर दिल को छू लेने वाली रोमांटिक ड्रामा।
सरकारी स्कूलों की चरमराती व्यवस्था को दिखाती वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय रिलीज हो गई। के मेनन मुख्य किरदार। थिएटर्स में रिलीज होने के सिर्फ 21 दिन बाद ओटीटी पर आई तेलुगु फिल्म नागबंधम, एक प्राचीन पवित्र खजाने को बुरी ताकतों से बचाने की लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती है कहानी। मेकर्स तिताली राजकुमार राव की प्रहार की रिलीज है, पहले 7 अगस्त को रिलीज होनी थी। सैयारा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन करेंगे आहान पांडे, नई फिल्म की डेट रिलीज का ऐलान 26 मार्च 2027 को आएगी।

0: बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बिहार में आज फिर प्रदर्शनकारी छात्र और पुलिस में भिड़ंत हो गई। पटना में पथराव हुआ तो पुलिस धरपकड़ शुरू की गई, कई लोगों को हिरासत में लिया गया और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, तेज प्रताप यादव अगुवाई कर रहे थे, तेज प्रताप यादव को हिरासत में लिया गया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर छात्रों के साथ हम खड़े हुए हैं और भीड़ थी वहां पर, और उसके बाद पुलिस का एक्शन। प्रदर्शनकारी गांधी मैदान पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोका, उसके बाद हिरासत में लिया। प्रदर्शन में शामिल तेज प्रताप यादव की तस्वीर आप देख ही रहे हैं। बिहार के छपरा में भी जमकर बवाल हुआ और ये देखिए अभी की तस्वीर है, ये देखिए जो बैरिकेटिंग होती है, बैरिकेटिंग को रेलगाड़ी बना दिया है। पथराव यहाँ पर किया जा रहा है, पत्थर यहाँ पर फेंके जा रहे हैं। अभी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना में। पटना में कुछ लोग चेहरे पर रुमाल साफी बांधे हुए हैं, धूप से बचने के लिए साफी का वैसे इस्तेमाल होता है, धूप से बचने के लिए साफी का इस्तेमाल होता है, लेकिन पुलिस की पहचान से बचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रोहित सिंह जुड़े हुए हमारे साथ, रोहित क्या हो रहा है ये? रोहित सुन पा रहे हैं तो दोबारा जुड़ेंगे रोहित से, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए कैसे प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है, जगह जगह पत्थर मारे जा रहे हैं, जगह जगह पथराव किया जा रहा है, लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं पथराव से। और ये देखिए उसके बाद जो उपद्रवी हैं, उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी की है, उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस लाठियां लेकर तैयार है और जो भी यहां पर प्रदर्शन कर रहा है उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, सबक सिखाया जा रहा है। और ये देखिए कितना पथराव किया जा रहा है, यहां पुलिस मौजूद है उसके बावजूद यहां पथराव किया जा रहा है और अब चुन चुन कर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। तो तस्वीरें आपने देखी, पटना की ये तस्वीरें हैं, छपरा में भी सड़कों पर छात्र आ चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहित बने हुए हमारे साथ, रोहित क्या हो रहा है इस वक्त पटना में?
1: हिमांशु देखिए, बिहार बंद का जो आह्वान ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और लेफ्ट के बाकी जो छात्र संगठन है उन्होंने दिया था, उसका कुछ मिला जुला असर जो है वो देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना समेत चार पांच जिले ऐसे हैं जहां पर सुबह से ही उपद्रव की खबरें आ रही हैं, प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, चाहे वो समस्तीपुर हो, छपरा हो, सिवान हो, और वहाँ पर भी जो प्रदर्शनकारी है वो पुलिस के साथ उलझ रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, और राजधानी पटना में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। इस वक्त हम पटना के डाक बंगला चौराहे इलाके पर मौजूद हैं और चारों तरफ आप देख सकते होंगे यहाँ पर पुलिस का भारी बंदोबस्त है, लेकिन इसके बावजूद भी रह रहकर 50-100 की संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो गांधी मैदान से होते हुए डाक बंगला चौराहे पर पहुंचते हैं और यहां पहुंचने के बाद जैसे ही हंगामा प्रदर्शन शुरू करते हैं उसके बाद पत्थरबाजी होती है और फिर लाठीचार्ज करके उन्हें खदेड़ दिया जाता है। तो एक दो बार ऐसा हो चुका है पिछले एक घंटे में, जब कुछ प्रदर्शनकारी पहुंचे उसके बाद पत्थरबाजी हुई उन लोगों की और पुलिस ने फिर खदेड़ के उनको अलग किया। और आप ज़मीन पर भी देख सकते हैं भागा दौड़ी में जूते चप्पल जो है वो तमाम आपको फैले हुए यहाँ पर सड़क पर बिखरा हुआ नजर आ रहा होगा। तो पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दो दिन पहले हम लोगों ने देखा था जिस तरीके की हिंसा पटना में देखने को मिली थी, उसके बाद पिछले 48 घंटों में पुलिस और प्रशासन कोशिश कर रहा है कि स्थिति
0: जी तो देखिए हालात सही नहीं है। ये पथराव की तस्वीरें बता रही हैं, भागलपुर, औरंगाबाद, छपरा, पटना, हर जगह इस वक्त छात्र एकजुट है और छात्र फिर हम आपको कह रहे हैं कि छात्रों की आड़ में कुछ अराजक तत्व भी आते हैं सड़कों पर जो इतना हंगामा करते हैं क्योंकि छात्र पढ़ता है। भागलपुर की तस्वीरें आप देखिए, भागलपुर में आप हालात आप देखिए क्या हो रहा है इस वक्त भागलपुर में। भागलपुर में गाड़ियों पर उछल कूद की जा रही है। बड़े बड़े पत्थर यहां पर आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर यहां पर फेंके गए हैं कि अगर किसी को लग जाए तो उसका सर फट जाए। और अब उपद्रवियों को पकड़ा भी जा रहा है, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस ने कह दिया है कि अगर आप सीमा लांघेंगे तो फिर उसके खामियाजे आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए औरंगाबाद में कितने बड़े बड़े पत्थर आपको सड़कों पर चौराहों पर दिखाई दे रहे हैं। छपरा में भी छात्रा दौड़ रहा और उसके बाद चिन्हित करते हुए पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। जब छात्र पुलिस को दौड़ा रहे हैं तो उसके बाद पुलिस भी छात्रों को दौड़ा रही है। पॉलिटिकल भी हो चुका है अभी पूरा मामला। तेज प्रताप यादव की पार्टी ने छात्रों के पक्ष में विरोध प्रदर्शन किया। तेज प्रताप कह रहे हैं कि हम तो छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर से जो शुरू हुआ वो देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचा, राज्यों से राजधानियों में पहुंचा और फिर अलग अलग शहरों में पहुंचा। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अब एक बड़ा सोर्स बन चुका है। सोशल मीडिया के इस प्रोटेस्ट संबंधित उपयोग में कई बार यह भी देखा गया है कि कई असत्य, भ्रामक एवं गुमराह करने वाले पोस्ट भी शेयर किए गए हैं। इसके चलते कानून व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी बहुत ही तेजी से वायरल हो जाती है, लेकिन हर पोस्ट, वीडियो या फोटो सही हो यह जरूरी नहीं है। इसीलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले या उसे आगे शेयर करने से पहले उसका फैक्ट चेक करना बेहद जरूरी है। दिल्ली पुलिस भी सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखे हुई है। फेक न्यूज, एआई और डीप फेक वीडियोस, एडिटेड क्लिप्स और गुमराह करने वाली पोस्ट के बारे में हम लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जानकारी साझा कर रहे हैं ताकि लोग सही और गलत जानकारी के बीच फर्क समझ सके। आज की इस ब्रीफिंग का उद्देश्य आपके सामने फैक्ट्स रखना है और यह बताना है कि किस तरह सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो भी जानकारी आपके साथ साझा करूं उसके फैक्ट्स भी आपके साथ साथ आपके सामने यहीं इसी स्क्रीन पर सामने रखूं। मैं कुछ ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहूंगा जिनका मकसद पैनिक फैलाना या सिंपल फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना नजर आ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में मेरी सहायता वैशाली करेंगी। यहां पे सबसे पहले मैं उस सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहता हूं जिसमें दावा किया गया कि 20 जुलाई की घटनाओं के दौरान पुलिस कार्रवाई की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस दावे का खंडन किया और स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो फेक न्यूज अलर्ट हमने जनरेट किया। नेक्स्ट दिखाइए। जैसे से पहले ये र्यूमर जो सर्कुलेट कर रहा था उसके लिए हमारा जो पोस्ट हमने डाला दिल्ली पुलिस ने, यह भी आप देख सकते हैं। इसी तरह एक राजनेता ने रात में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी कर रही है। इस वीडियो से लोगों में डर, भ्रम और अफरा तफरी की प्रबल संभावना बनी। दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है और लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ हैंडल्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी फेक इंफॉर्मेशन फैलाने में सक्रिय पाए गए थे। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक बयानों को एडिट करके और विजुअल कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। फर्जी कंटेंट में AI या डीप फेक वीडियो में शामिल एक श्री सोनम वांगचुक जी का भी वीडियो है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा।
4: दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन जब मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाया जा रहा था, उन्होंने मेरे लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं बार बार कहता रहा, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी।
3: ठीक है, एक अन्य डीपफेक वीडियो में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी DGMO के नाम से एक झूठा बयान जोड़कर यह दावा किया गया कि चल रहे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के कारण भारतीय सेना को नई दिल्ली में तैनात किया जा रहा है।
5: प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, आई हैव ऑर्डर्ड द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन फोर्सेस टू न्यू दिल्ली। वी मस्ट क्रश द एंटी नेशनल्स एंड टेररिस्ट प्रोटेस्टिंग इन जंतर मंतर न्यू दिल्ली। These terrorists have attacked police and RAF personnel while blackmailing the government. I want to make it clear that we will crush every head that.
3: ऐसे कई सारे और वीडियोज हैं, बट आज दिखाने के लिए हमें कुछ वीडियोज आपके सामने लेके आए हैं। पेपर लीक और डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इररेगुलरिटीज के खिलाफ भारत सरकार की कमिटमेंट के तहत दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टीम एक DCP स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में और स्पेशल CP क्राइम के सुपरविजन में काम करेगी। इस संबंध में आदेश कल ही जारी कर दिए गए हैं। अंत में हम दिल्ली पुलिस की तरफ से सभी शांतिपूर्ण प्रोटेस्टर्स और जंतर मंतर पर दिन रात काम कर रहे वॉलंटियर्स का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। इन्होंने इस पूरे समय शांति व्यवस्था और कम्युनिटी सिक्योरिटी बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की भरपूर सहायता की है। दिल्ली पुलिस आगे भी अपने ऑफिशियल हैंडल्स के माध्यम से वेरिफाइड जानकारी साझा करती रहेगी और किसी भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी समय समय पर आप सभी तक पहुंचाती रहेगी। अंत में मीडिया के सभी साथियों, आज यहां आने के लिए और अपना कीमती समय यहां देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।
6: रोहित जी, इसमें एक दो चीजें और।
0: रोहित राजवीर सिंह DCP मध्य दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से फेक अकाउंट्स के जरिए, फेक पोस्ट के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की गई। फेक न्यूज के 400 से ज्यादा हैंडल्स की पहचान पुलिस की तरफ से की गई है, जो कि अफवाह फैला रहे थे। महिला की मौत का झूठा दावा किया गया और इसी तरह से कई फेक वीडियोस बनाए गए थे सोनम वांगचुक के, सर्कुलेट किए जा रहे थे सोशल मीडिया पर। फेक वीडियो बनाया गया, माहौल खराब करने की कोशिश की गई। 400 से ज्यादा विदेशी हैंडल ब्लॉक भी किए गए हैं पाकिस्तान से, जिनको ऑपरेट किया जा रहा था। महिला की मौत का झूठा दावा किया गया, भीड़ को उकसाने की बात की गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सच्चाई सभी के सामने रखी। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कैसे फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन इसको नाकामयाब किया दिल्ली पुलिस ने।
7: जी देखिए बिल्कुल, अभी जो कुछ वीडियोस भी प्ले किया गया यहाँ पर, दो वीडियो खास तौर से प्ले किया गया जिसमें सोनम वांगचुक का एक डीप फेक वीडियो प्ले किया गया जिसमें ये कहते हुए सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल के बेड से दिखाया गया कि किस तरीके से उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, अब शब्दों का इस्तेमाल उनके साथ किया गया और ये जानबूझ करके लोगों को भड़काने की कोशिश के तहत ये सब कुछ किया गया ताकि लोग भड़कें और इन सभी जो भी ये सोशल मीडिया जो भी क्रिएटर है उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ एक और जो पोस्ट जो बेहद महत्वपूर्ण था जिसे शेयर किया गया जानबूझ करके उसमें ताकि लोगों को भड़काया जा सके कम से कम एक हिस्सा, हालांकि देखिए ज्यादातर स्टूडेंट हैं वो इस चीज को समझते हैं लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बिना जाने समझे चीजों को आगे शेयर कर दे रहे हैं, उसको आगे ये भी नहीं देखते कि क्या इसमें सच्चाई हो सकती या नहीं, क्योंकि उसको शेयर किया गया आर्मी की तरफ से और बाकायदा एक डीप फेक वीडियो हिमांशु बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि किस तरीके से अब आर्मी की तैनाती दिल्ली में करने वाली है सरकार, आर्मी वहां पहुंचेगी और सब कुछ क्रश कर देगी, क्लियर कर देगी। तो ये क्लियर मैसेज यहां से पुलिस ने दिया है कि जो लोग इस तरीके के वीडियोस बना रहे हैं शेयर कर रहे हैं एक तो वो सावधान हो जाए और दूसरी तरफ बिना सोचे समझे इन वीडियोस पे
0: मांचू पाकिस्तान ने इनका भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान से फेक अकाउंट बनाकर भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, जो पहले किया था वही दोबारा
7: ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी, जी माशू ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिस तरीके से किया गया था उसी तरीके से एक बार फिर कोशिश की गई। 480 अकाउंट ऑलरेडी ब्लॉक किए जा चुके हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, पाकिस्तान में बैठ करके वीडियोस बना करके जो पुराने वीडियोस हैं उसको नए तरीके से एआई की मदद से उसको जंतर मंतर या सीपी और आसपास का दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ मिस इन्फॉर्मेशन किस तरीके से बार बार शेयर की जा रही है। पुलिस ने एक और जिक्र किया यहां पर हिमांशु जिसमें कहा गया कि एक नेता के द्वारा ये कहा गया कि क्रैक डाउन पुलिस कर सकती है और पुलिस ने यहां पर जो डीसीपी रोहित राजवीर जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं उन्होंने कहा कि तुरंत ही दिल्ली पुलिस ने इस चीज का खंडन किया और साफ किया कि कोई क्रैक डाउन पुलिस नहीं करने जा रही है, जो छात्र जहां बैठे हैं उनको वहां से नहीं हटाया जा रहा है, न हटाने की कोई प्लानिंग है। इतना ही नहीं पुलिस ने एक चीज और क्लियर किया कि जो भी आने जाने जो छात्र यहां पे पहुंच रहे हैं उनको भी किसी तरीके से रोका नहीं जा रहा, यानी जंतर मंतर का जो रास्ता है वो रास्ता ब्लॉक भी नहीं किया जा रहा है, किसी को टच नहीं किया जा रहा, जो प्रोटेस्ट है वो जारी है, सरकार के साथ बातचीत जाहिर तौर पे जारी है, आज एक बार फिर से बातचीत होनी है। तो अभी फिलहाल सभी की नजर उसी तरफ है कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। तो पुलिस यहां पर खासतौर से जो पुलिस की तरफ से ये ब्रीफिंग की गई थी हिमांशु उसमें ये समझाने की कोशिश थी कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर के किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी अगर सोशल मीडिया पे खास तौर से
0: बने रही है, मानसू देखिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम बात करते रहेंगे। लेकिन देखिए ये बहुत जरूरी है ये खबर बताना कि पाकिस्तान की तरफ से भी फेक पोस्ट किए गए, फेक अकाउंट बनाए गए और माहौल खराब करने की कोशिश की गई, जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किया गया था वही सब कुछ किया गया दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान, माहौल खराब करने की कोशिश की गई, अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई ताकि जो युवा हैं युवाओं को बरगलाया जा सके, युवाओं को भड़काया जा सके। और सीधे आपको लिए चलते एक बार फिर से बिहार जहां पर जबरदस्त बवाल इस वक्त भी चल रहा है और प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जा रहा था लेकिन फिर अचानक पथराव शुरू हो गया, पथराव के साथ साथ फिर ये देखिए अब जो भी हंगामा करने वाले प्रदर्शनकारी थे, जो भी उपद्रवी थे, उन उपद्रवियों को पकड़ा जा रहा है, उन उपद्रवियों को हिरासत में लिया जा रहा है, उन उपद्रवियों को सबक सिखाया जा रहा है। अब हंगामा हुआ तो हंगामे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, छपरा और औरंगाबाद से जो तस्वीरें सामने आई थी वो अच्छी तस्वीरें नहीं थी प्रदर्शन की,
8: कोशिश कर रही है,
0: कहीं गाड़ियों पर चढ़कर कूदा जा रहा था, कहीं पर पत्थर फेंके जा रहे थे, बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे थे पुलिस वालों को टारगेट करते हुए और ये तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अब इसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जा रहा है, पुलिस वीडियो हमेशा चालू था, कैमरा हमेशा चालू था, अब वो चेहरों की शिनाख्त की जाएगी और उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको सबक भी सिखाया जाएगा। पुलिस अपनी तैयारी कर चुकी है और ये जो आप कवायद देख रहे हैं ये उन्हीं को पकड़ने की कवायद है। ये तस्वीरें देखिए कैसे पुलिस ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। भागलपुर से ही आएंगे, छपरा से भी कुछ ऐसे ही आया, भिड़ गए प्रदर्शनकारी पुलिस से। रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। रोहित अभी क्या हालात है वहां पर, सब कुछ शांत हुआ या नहीं?
1: नहीं मानशु, देखिए स्थिति अभी शांत नहीं हुआ है और जैसा कि हम बता रहे थे पटना के डाक बंगला चौराहे पर हम इस वक्त मौजूद हैं और रह रहकर कुछ प्रदर्शनकारी जो है यहां पहुंच जा रहे हैं और हल्ला हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस को जो है ऊपर कार्रवाई करनी पड़ रही है और अभी भी दो तीन जो महिला छात्राएँ हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई थी प्रदर्शनकारी, अब उनको पकड़ के जो है पुलिस वाले जो है वो डिटेंशन वैन की तरफ ले जाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए पूरे डाक बंगला चौराहे पर जो है इस वक्त एपिसेंटर बना हुआ है इस पूरे प्रदर्शन का और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ संख्या में 50-100 की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं यहां पर। उसके बाद पुलिस उन पर बल प्रयोग करती है, पत्थरबाजी भी होती है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, पुलिस लाठीचार्ज करके उनको तितर बितर करने की कोशिश कर रही है, आंसू गैस के गोले भी जो है वो तैयार हैं। लेकिन हालात जो है राजधानी पटना समेत तकरीबन आधा दर्जन ऐसे ज़िले हैं बिहार में जहां पर आज सुबह से ही हंगामा देखने को मिल रहा है, चाहे वो सिवान हो, छपरा हो, समस्तीपुर हो, पूर्णिया हो, हर जगह जो है प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा है, पत्थरबाजी की है, प्रशासन के साथ उलझ गए हैं, कई जगह जिलाधिकारियों को भी घेर लिया गया है और इस वक्त पटना में भी जो है वैसे ही कुछ हालात नजर आ रहा है और भारी संख्या में आज पुलिस बल की जो है वो तैनाती वो सड़कों पर देखी जा रही है, क्योंकि दो दिन पहले जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने एक तरीके से कहें तो पटना पर जो है वो काबू पा लिया था, वीवीआईपी एरिया तक घुस गए थे जहां पर मुख्यमंत्री और राजभवन और वीवीआईपी जोन है, उससे अब दोबारा उस चीज़ का जो कहें तो रिपीटेशन ना हो उसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। लेकिन आंदोलन जो है प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं डाक बंगला चौराहे पर, कहीं कहीं से छुपे हुए रहते हैं और 20-25 की संख्या में अचानक से आ जाते हैं, फिर पुलिस उनको खदेड़ कर भगाती है। और देखिए आप किस तरीके से पटना में हर तरफ आपको केवल और केवल इस डाक बंगला चौराहे के पास जो है वो पुलिसकर्मी नजर आएंगे और सड़कों पर देखिए किस तरीके से पत्थर जब लाठीचार्ज होता है तो जूते चप्पलें जो हैं वो यहाँ सब कुछ जो है वो बिखरा हुआ है, जो दिखाता है कि किस तरीके से इस वक्त राजधानी पटना में भी हालात जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है और बिहार बंद का जो
0: रोहित आप बने रहिए, लेकिन छपरा की तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाई जा रही हैं और छपरा में भी जमकर उपद्रव हुआ है। उपद्रवियों ने सारे बैरिकेडिंग तोड़ कर रख दिए, जगह जगह पत्थर देखे जा रहे हैं छपरा में और उसके बाद अब चुन चुन के उन उपद्रवियों को पकड़ा जा रहा है और बल प्रयोग करते हुए पुलिस अब उन उपद्रवियों को पकड़ रही है जो पहले तो हुड़दंग मचा रहे थे, पुलिस पर पथराव कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे सरकारी निजी संपत्ति में और उसके बाद। और ये पटना की तस्वीरें देखिए, पूरा हर जगह एक लश्कर सा बना दिया है, पुलिस इतनी मौजूद है पटना में इस वक्त। अब रोहित ये बताइए, कल भी प्रदर्शन हुआ था पटना में, हमने पहले भी तस्वीरें देखी थी, पटना की बात करेंगे रोहित आपसे, लेकिन आलोक जायसवाल छपरा से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं तो उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं।
8: नीट पेपर लीक के खिलाफ जो पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है आज, इसके तहत छपरा में आज काफी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन शुरू हुआ था लेकिन बाद में प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक होता गया, जो बैरिकेडिंग्स है और जो पोस्टर से पोस्टर प्रदर्शनकारियों द्वारा फाड़ दिए गए। आप देख सकते हैं जो इस समय जो पूरे सड़क पर पत्थर पड़े हुए हैं, ये पूरा पत्थर जो है ये प्रदर्शनकारियों द्वारा चला गया है और पुलिस पर भी पत्थर चला गया, कई लोग घायल हुए हैं और लगातार पत्थरबाजी हुई है। इस समय हम छपरा के हथुआ मार्केट के पास मौजूद है, ये पत्थरबाजी ना सिर्फ इस जगह पर हुई है बल्कि पंकज सिन्हा रोड पे, कलेक्ट्रेट रोड पे, सारे सड़कों पर हुई है। पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों ने शहर की शांति व्यवस्था जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त करने की कोशिश की है और कई लोगों को घायल होने की खबर है, अभी कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों को चोट लगी इसका कोई सरकारी आंकड़ा नहीं मिला। फिलहाल डीआईजी सारण, एसएसपी और जिलाधिकारी मौके पर मौजूद है और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक प्रदर्शन हिंसक हो गया, आप देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है इस स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है और जो उधर से जो प्रदर्शनकारी है जो उपद्रवी के रूप में है मौजूद है वहाँ पे लगातार पथराव कर रहे हैं। अभी जब प्रदर्शन के में जब प्रदर्शनकारी मार्च कर रहे थे तो कलेक्ट्रेट का जो बिल्डिंग है जो बाउंड्री है बाउंड्री के बाहर जो पोस्टर्स थे उसको फाड़ दिया था। जो बैरिकेडिंग लगे थे बैरिकेडिंग को उन्होंने रेल बना दिया था और काफ़ी नुकसान किया था उन लोगों ने। और अभी देख सकते हैं कि इस समय लगातार फायरिंग हो रही है और पुलिस वाले भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार पुलिस भी जो पत्थर का जवाब पत्थर से दे रही है और इस स्थिति को किसी तरह नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। इस समय काफ़ी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और प्रदर्शनकारी है या उपद्रवी है इसको है ना।
0: अभी की तस्वीरें पटना की हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये क्या हुड़दंग इस वक्त पटना में चल रहा है। पटना में इतने पुलिसकर्मी मौजूद है फिर भी सामने देखिए कि उपद्रवी जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र की आड़ में उपद्रवी। आप क्योंकि आप देखिए आप पूरा चेहरा ढका हुआ है, काले कपड़े से सफेद कपड़े से पूरा चेहरा ढका हुआ है, हेलमेट पहने हुए हैं और बड़े बड़े पत्थर पुलिस वालों की ओर फेंके जा रहे हैं। रोहित बने हुए हमारे साथ। रोहित ये तस्वीरें बता रही है कि बहुत हालात बिगड़ते जा रहे हैं पटना में।
1: बिल्कुल, देखिए हालात जो है वो नियंत्रित करने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है यहाँ पर और पटना ट्रैफिक SP भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद है और आज तक पर हम इसमें मौजूद। सर आप बात कुछ करना चाहेंगे? सर क्या हालात हैं? सब कुछ ठीक है? चलिए SP साहब जो है बता रहे हैं सब कुछ ठीक है। तो घूम घूम के वो लोग यहाँ पर डिप्लॉयमेंट चेक कर रहे हैं किस तरीके से यातायात को सुचारू रखा जाए, लेकिन सुबह से ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, चाहे वो गांधी मैदान हो, JP गोलंबर हो, डाक बंगला चौराहे हो, ये तमाम ऐसे वल्नरेबल एरियाज हैं जहाँ पर जो प्रदर्शन का हमेशा एपी सेंटर रहा है और इन जगहों पर पूरी तरीके से एक तरीके से कहते हो लाव लश्कर के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि उपद्रवी जो रह रहकर आ रहे हैं उनको उन पर काबू पाया जा सके, उनको खदेड़ा जा सके। तो और लगातार प्रदर्शनकारी जो यहाँ पहुँचते भी हैं वो सबसे बड़ी बात है पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। तो जो ये लेफ्ट के जो स्टूडेंट विंग के जो लोगों ने आज बिहार बंद का कॉल दिया है तो जगह जगह पर जो देख रहे हैं इनकी तरफ से पत्थरबाजी की जा रही है और पुलिस को भी काफी मशक्कत करना पड़ रहा है इन लोगों
0: को। रोहित इसमें दिख रहा है कि आधे से ज्यादा जो छात्र के नाम पर आए हैं, जो पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं पटना में एक ब्रिज सा बना हुआ है जो छात्र के नाम पर आए हैं, साफी से पूरा चेहरा ढका हुआ है, काले कपड़े से सफेद कपड़े से चेहरा ढका हुआ है। क्या पुलिस को इस बात का अंदेशा नहीं था कि पहले जब एक दो दिन से इस तरह के हालात है तो सावधानी पहले से ही बरती जाए, इतने हालात बिगड़े ही ना?
1: देखिए बिल्कुल, एक नया ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है कि ये जो प्रदर्शनकारियों के जो आ रहे हैं यहाँ पर जहाँ भी प्रदर्शन हो रहा है उनमें से कई लोग जो है वो चेहरा अपना ढक कर आ रहे हैं, कोई मास्क पहन के आ रहा है, कोई चेहरा ढक के रुमाल से ढक के आ रहा है। अब इसमें ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि ये वाकई में छात्र हैं या कोई बाहरी कोई तत्व इसमें घुसे हुए हैं, बाहरी कुछ लोग घुसे हुए हैं, ये पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल हो जा रहा है इनकी शिनाख्त करना। और इसलिए हमने देखा था दो दिन पहले जब पटना में जमकर बवाल मचा था उसके बाद पुलिस ने 117 ऐसे प्रदर्शनकारियों की तस्वीर जारी की थी जो उस प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की थी, जिन्होंने भड़काया था और शामिल थे उस हिंसा में। तो वैसे 117 चेहरों को जो है उनका फोटो जो है जारी किया गया था। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पुलिस आज दिन भर जो है वो मुस्तैद नजर आ रही है, लेकिन हालात सिर्फ पटना ही नहीं, पटना के अलावा भी जो हम जो दिखा रहे हैं छपरा में जहां सबसे ज़्यादा जो है वो हिंसा देखने को मिली है, समस्तीपुर में आगजनी की गई है और यहां पर आप देख सकते सब तरफ चारों तरफ पुलिस की तैनाती, वाटर कैनन यहां पर तैयार किया हुआ है कि अगर कुछ ऐसे हालात होते हैं तो वाटर कैनन भी जो है वो चलाया जा सके ताकि उपद्रवियों पर काबू पाया जा सके। यानी कि दिल्ली के बाद अगर कहीं हालात सबसे ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं मानशु तो वो पटना में इस वक्त नज़र आ रहा है। जी
0: बिल्कुल, वो दिख भी रहा है यहाँ पर कि हालात कैसे ख़राब यहाँ पर हो गए हैं। छपरा में तो जमकर उत्पात मचाया है उपद्रवियों ने और अब उसके बाद छपरा में अब पुलिस जो छात्र की आड़ में उपद्रव कर रहे थे, अराजकता फैला रहे थे, पुलिस उनको चुन चुन के पकड़ रही है छपरा में। औरंगाबाद में देखिए पथराव कैसे हुआ, औरंगाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर पुलिस संयम से शांति से खड़ी हुई है लेकिन फिर अचानक पथराव होता है, फिर पुलिस को भी अब ये देखिए फिर पटना, अब फिर एक बार फिर से खदेड़ा जा रहा है, फिर से एक बार खदेड़ा जा रहा है। और ये देखिए जब जो छात्र रोहित बने हुए हमारे साथ, रोहित एक बार फिर से खदेड़ा जा रहा है अब।
9: हाँ शामिल हो जा रहे हैं।
0: रोहिती कौन सा ब्रिज है जहाँ पर छात्रों को खदेड़ने की तस्वीरें आ रही हैं?
1: हमारे साथ एएसपी साहब मौजूद है सर, एक सर आज तक पर आप लाइव इस वक्त मौजूद हैं, आज तक पर एएसपी हमारे साथ मौजूद है कृष्ण मुरारी प्रसाद साहब। सर क्या हालात बने हुए हैं जरा बताइए डाक बंगला चौराहे पर, सुबह से आपको देख रहे हैं कि आप लोग लगातार गश्ती कर रहे हैं।
10: अब देखिए सबसे पहले यह है कि डाक बंगला चौराहा काफ़ी व्यस्त मार्ग है और यहाँ पर अनावश्यक रूप से अवरुद्ध करना मार्ग को वो कतई स्वीकार नहीं होगी। अगर आपने कॉल ऑफ किया है तो लोग अपने छोटे ये सांकेतिक रूप से होनी चाहिए और उसके लिए अगर धरना स्थल हम लोग का गर्दनी बाग धरना स्थल है वहाँ पर जाएं, धरना स्थल पर अपने जाकर के धरना करें, उसके लिए जो नियम बने काम करें। लेकिन दूसरी बात है कि इसमें प्रदर्शनकारी घुस जा रहे हैं, लोग पत्थर फेंक रहे हैं और लोगों को चोटें आ रही हैं, गाड़ी तोड़ते कर रहे हैं, ये स्वीकार्य नहीं है।
1: आप लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं सर प्रदर्शनकारी जो पत्थरबाजी कर रहे हैं?
10: देखिए कानून को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और उसी के लिए हम लोग हैं।
1: जगह जगह पर आप लोगों ने तैनात की, आप लोग की देख
10: जी निश्चित रूप से।
1: चलिए कुछ बाहरी तत्व भी घुसे हुए हैं क्या, एक सवाल है ये?
10: हम लोग पहचान कर रहे हैं, पहचान करके सब जगह लगे हुए हैं, हम लोग पहचान भी कर रहे हैं, अब बाकी कार्रवाई सब पक्की जाएगी।
1: चलिए ये पटना के एडिशनल एसपी कृष्ण मोहन प्रसाद हैं जो कि जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से जो है वो प्रदर्शनकारी जो पहुंच रहे हैं यहां पर उनमें से कई जो है वो बाहरी तत्व हो सकते हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं लगातार उनके तरफ से, इससे बड़ी गंभीर चुनौती उनके सामने आ रही है। लेकिन फिर भी कोशिश उनके तरफ से की जा रही है कि गश्ती पूरे इलाके का किया जाए ताकि कहीं भी प्रदर्शनकारी छुपे।
0: अब बिल्कुल ये दिख रहा है कि कैसे हालात खराब हुए तो उसके बाद अब पुलिस भी एक्शन मोड में आ चुकी है और पुलिस का कहना है कि आप शांति से प्रदर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी को समस्या होगी आम लोगों को, अगर आप नियम कानून तोड़ेंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब आप पटना की तस्वीरें देखिए, सड़कों पर कितना पत्थर है। क्या ये पत्थर पहले से यहाँ पर आया था? ये देखिए आप छपरा में, देखिए छपरा में भी ऐसी हालात है, बल प्रयोग हुआ, पथराव हुआ। औरंगाबाद में देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। ये देखिए औरंगाबाद में पुलिस वालों को टारगेट करते हुए, भागलपुर में गाड़ियों के ऊपर कूदाफांदी चल रही है, कम उम्र के नौजवान, अब इन्हें छात्र कहें या ना कहें ये जांच का विषय है, लेकिन छात्रों के नाम पर ये प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों के नाम पर ये आंदोलन हो रहा है। बिहार में ज्यादातर जो पत्थरबाजी कर रहे थे वो अपना चेहरा ढके हुए थे और उसके बाद पुलिस की तरफ से भी कड़ी कार्रवाई की गई। अब फिर से ये तस्वीरें आप देखिए, ये पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको यहां पर पत्थर दिखाई दे रहे होंगे। आम लोग शांति से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन बिहार में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जो बवाल हुआ, जो झड़प हुई, उस वजह से सभी को दिक्कत हुई, सभी को परेशानी हुई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। सबसे पहले आज तेज प्रताप यादव आते हैं, तेज प्रताप यादव को हिरासत में ले लिया जाता है। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि हम तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं छात्रों के साथ, लेकिन कई जगह पर छात्रों की आड़ में कुछ अराजक तत्व भी आए, ऐसी जो खबर आई, जानकारी मिली, बड़े बड़े पत्थर पुलिसकर्मियों पर फेंके गए।

0: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now. Sokudo.
3: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
5: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा रुंगटा स्टील टीएमटी से बना
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रांग नहीं रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड
8: आगे आगे
9: मिल गया आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: 16 साल पहले एक धमाका क्या थी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को आरडीएक्स रिमोट बम से उड़ाने की साजिश देखिए आज तक पर

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी हिंट बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ फिटनेस योगा मेंटल वेलनेस सब कुछ एक ही जगह फिट तक सिंपल टिप्स एक्सपर्ट इंसाइट्स रियल कॉन्वर्सेशंस लाइफ अपग्रेड करो इजी वे वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।
3: हमारे पीछे आप देखें और वहीं रेल भवन जो कि संसद परिसर पर ही है
4: टियर गैस को इस्तेमाल करने जा रही है और यहाँ पे टियर गैस का इस्तेमाल पुलिस करती हुई नजर आ रही है।
3: पीछे संसद का पूरा मार्ग है और यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से टियर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
5: कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मौसमी सिंह दिल्ली। आज
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की आज अब बिहार तक पहुंच गई है। बिहार की ये चार तस्वीरें देखिए, पटना छपरा औरंगाबाद भागलपुर हर जगह जमकर प्रदर्शन जमकर उपद्रव कहीं पर पथराव कहीं पर तोड़फोड़ और पुलिस का लाठीचार्ज। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। बैरिकेडिंग प्रदर्शनकारियों की तरफ से तोड़ी गई है पथराव किया जा रहा है तो पुलिस की तरफ से लाठियों से जवाब दिया जा रहा है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट

0: ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach In association with
1: Bharat ki apni electric sawari
5: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love or the trends everyone's obsessing over or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you and prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
1: Sokudo.
8: अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए. अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है. तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है. जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी. मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है, तीन मांगे हैं स्टूडेंट्स की. पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो. सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी. और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर should apologize to the students. These are the three conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it.
9: के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था. जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं. बिकॉज मैं शहीद का दर्जा दूंगी, बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्ते आए थे. और इस पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है. तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो ज्यादतियां कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए.
10: ये तो जब ये पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तब प्रधानमंत्री की नींद खुली है. आज भी हम ये कहेंगे कि सदन में आने से पहले उनको अपने मंत्री का इस्तीफा लेकर आना चाहिए, फिर चर्चा करवानी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा जो भी पेपर लीक में इन्वॉल्व है उनको मिलनी चाहिए.

पेपर लीक पर बिहार में शहर शहर कदर, लेफ्ट के बंद पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, पत्थरबाजी लाठी चार्ज, पटना छपरा भागलपुर औरंगाबाद में हालात बेकाबू। जंतर मंतर प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का दावा, सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं डी फेक एआई वीडियो, पाकिस्तानी अकाउंट का खुलासा, 2000 से ज्यादा आपराधिक बैकग्राउंड की पहचान। प्रदर्शनकारियों के साथ आकर राहुल गांधी ने एक बार फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। आज दोपहर 3:30 बजे सीजेपी और सरकार में तीसरे राउंड की बैठक। महाराष्ट्र पेपर लीक का मास्टरमाइंड की खत्म हुई फरारी, बिहार से पकड़ा गया विजेंद्र गुप्ता, दूसरा आरोपी इंद्रजीत सिन्हा भी गिरफ्तार। और गुजरात से असम तक बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात है, अहमदाबाद और सूरत पानी पानी, सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू, असम में 61 लोगों की मौत।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जंतर मंतर से बड़ी खबर। एक बार फिर से बवाल हो गया है वहां, फिर से हंगामे की खबर है जंतर मंतर पर। एक बार फिर से वही हुआ जो पिछले 20 तारीख को हुआ था, फिर से हंगामा होता है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं, हालात बेकाबू ना हो इसके लिए पुलिस की तरफ से सख्ती की जा रही है। आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से दागे गए हैं भीड़ को काबू करने के लिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से हंगामा होता है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अरविंद, क्या हो रहा है वहां?
1: देखिए जी, ये टोलस्टॉय मार्ग है जो जंतर मंतर से कुछ दूरी पर जो चौराहा है वहां पर जो फोर्स है हमेशा की तरह लगी है, बैरिकेटिंग भी वहां पर लगी हुई है। और लेकिन वहां पर कुछ प्रदर्शनकारी आए और उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद आरएएफ की टीम ने कुछ टीयर गैस की सेल छोड़ी है ताकि जो भीड़ है वो पीछे की तरफ हट जाए और हालात बेकाबू ना हो। ये टोलस्टॉय मार्ग पर हिमांशु पहले भी दो बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें सामने आई थी। देर शाम ये झड़प होती थी, लेकिन आज दोपहर के वक्त ही जो एक नियत स्थान है जहां पर आरएएफ की टीम और पुलिस की टीम ने बैरिकेटिंग कर रखी है, ये पार्लियामेंट जो स्ट्रीट है उससे आगे की तरफ जो टोलस्टॉय मार्ग है वहां से जंतर मंतर कुछ दूरी पर है, वहां पर भी कई छात्र जमा है। तो वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने, आरएएफ की टीम ने टीयर गैस की सेल छोड़ी है ताकि जो भीड़ है वो बेकाबू न हो और आगे बढ़ने की कोशिश।
0: अरविंद, एक बात बताइए, ये बात पहले ही अंदेशा जताया जा रहा था कि शनिवार और रविवार को भीड़ बढ़ सकती है। अब शनिवार को जैसे ये खबर आई, जैसे आप टोलस्टॉय रोड की बात बता रहे हैं, भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्या विशेष कोई एहतियात और बरती गई है शनिवार रविवार को ध्यान में रखते हुए?
1: बिल्कुल, देखिए भारी फोर्स है वहां पर हिमांशु, चाहे आरएएफ की बात करें, पुलिस की बात करें या अर्धसैनिक बल, वहां पर्याप्त संख्या में है और एक नियत स्थान है जो टोलस्टॉय है उससे आगे की तरफ पार्लियामेंट स्ट्रीट और उसके बाद संसद भवन पड़ता है। उस टोलस्टॉय मार्ग पर ही पुलिस ने सभी जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोका हुआ है। जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन टोलस्टॉय मार्ग पर आए दिन नारेबाजी होती है, वहां पर भी भीड़ बड़ी संख्या में जमा होती है, नारेबाजी होती है, वो तक तो ठीक है। लेकिन अभी जो हमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि वो वहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और तभी उनको डिस्बर्स करने के लिए, उनको शांत करने के लिए टीयर गैस की सेल छोड़ी गई। साथ ही साथ जो पुलिस है उसका संवाद भी, जो प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनाइजर है उनसे भी लगातार संवाद बन रहा है। बात की जाए तो फ्राइडे को पूरी तरह से शांति बनी रही, लेकिन आज कुछ प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद आरएएफ की टीम ने कुछ टीयर गैस की सेल छोड़ी है और उनको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं।
0: काबू करने की कोशिश कर रहा है। 3:30 बजे तो बैठक होनी है सरकार और सीजेपी के बीच में, जहां सौरभ दास और रांका और केंद्र सरकार के जो मंत्री है जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके बीच में मुलाकात होगी। तो ऐसे में उससे पहले अगर आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है तो फिर पुलिस की तरफ से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं उनको रोकने के लिए, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि शांति बनाए रखें और हालात काबू में रहें, ये बेहतर। तो दिल्ली के जंतर मंतर का हाल आपको बताया, अब आपको लिए चलते हैं बिहार। पटना में आज जबरदस्त हंगामा हुआ, जबरदस्त आज बवाल हुआ। पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बिहार के अलग अलग शहरों में हंगामे की खबर है। लेफ्ट के छात्रों का विरोध था और हंगामा इतना बड़ा कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस को पथराव हुआ उसके बाद। अब ये देखिए बिहार के सिवान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको भागलपुर दिखाया, औरंगाबाद दिखाया, हमने आपको छपरा की तस्वीरें दिखाई, अब यहां देखिए, सुनिए पहले आप क्या हुआ वहां। ये पथराव पुलिस कर्मियों पर किया जा रहा है, उसके बाद पुलिस की तरफ से लाठियों का इस्तेमाल किया गया और भीड़ को खदेड़ा गया। आप देखिए कितने बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है पुलिस वालों को मारने के लिए। लेफ्ट का विरोध प्रदर्शन था है अलग अलग जगह पर, और अब आप देखिए अब उपद्रवियों को खदेड़ने की भी तैयारी पुलिस की तरफ से की गई। और पटना में छपरा में, सिवान में जो भी नियम कायदे कानून तोड़ रहा है, पुलिस उसके साथ सख्ती से निपट रही है, बल प्रयोग किया जा रहा है। और एक बार आप इस रोड पर देखिए, सड़क पर देखिए, नीचे आपको पत्थर बिखरे हुए दिखाई देंगे। अब आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए। ये देखिए टियर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो भीड़ एकजुट हुई है उस भीड़ को तितर बितर किया जा सके, क्योंकि जब भीड़ एकजुट होकर आगे बढ़ती है उसके बाद पुलिस से टकराव होता है, पथराव किया जाता है पुलिसकर्मियों पर और फिर पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया जाता है। आज सुबह से बिहार के अलग अलग शहरों से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। पटना से हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, जो पटना में देखा, जो छपरा में देखा, जो औरंगाबाद में देखा, अब वही चीज सिवान में भी देखने को मिल रही है। यहां पर भी टियर गैस के गोले दागे जा रहे हैं, पथराव हो रहा है।
2: बिल्कुल, जैसा कि हम बता रहे थे कि दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित कोई राज्य है तो वो है बिहार, जहां पर पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहा है, हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। और आज जो है बिहार बंद का आह्वान किया हुआ है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। और अभी देखिए डाक बंगला चौराहे पर कोई एक्शन की यहाँ देखिए तैयारी चल रही है, क्योंकि कुछ पुलिस को शायद जानकारी मिली है कि दूसरी तरफ से प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ जुटने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेकर आप देखिए ये भारी संख्या में पुलिस बल जो है अब वो एक तरफ जो है वो कूच कर रही है, क्योंकि इनको शायद ऐसा जानकारी मिला है कि कुछ प्रदर्शनकारी उधर से आने वाले हैं। तो रह रहकर इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो आज राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे इलाके से जो है वो देखने को मिल रही है, जब 150 की संख्या में प्रदर्शनकारी थोड़ी थोड़ी देर पर पहुंचते हैं, फिर पत्थरबाजी करते हैं, उसके बाद पुलिस को भी जो है उन पर लाठीचार्ज करना पड़ता है और फिर तितर बितर उनको करना पड़ता है। और साथ ही साथ सिर्फ पटना ही नहीं, तकरीबन एक दर्जन जिले बिहार में आज ऐसे हैं जहां पर जमकर बवाल मचा है।
0: भीड़ को लीड कौन कर रहा है रोहित?
2: नाम ले लीजिए, देखिए ये आज जो बंद का आह्वान किया गया है वो लेफ्ट पार्टियों के जो स्टूडेंट्स विंग है आईसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उनके नेतृत्व में जो है ये पूरा जो है आज बंद का आह्वान किया गया है। और भी लेफ्ट पार्टीज के जो नेता हैं उनको उन्होंने समर्थन दिया है। बिहार में विपक्ष के RJD और VIP पार्टी ने भी जो है इस बंद को अपना समर्थन जो है वो दिया हुआ है। तो अब देखिए दूसरी तरफ से कुछ छात्र जो हैं, कुछ प्रदर्शनकारी वहां से अब जुटना शुरू हो रहे हैं। आप देखिए तो यहां पर फिर से एक बार फिर आप देखिए पुलिस जो है बैरिकेडिंग लगाकर एक बार फिर यहां पर तैयारी कर रहे हैं कि वहां से अगर वो लोग कुछ पत्थरबाजी करेंगे या हिंसा होगी तो फिर उनको किस तरीके से काबू पाया जाएगा, उसको लेकर देखिए यहां पर तैयारी चल रही है। क्योंकि ये डाक बंगला चौराहा जो है चारों तरफ से यहां सड़क है, तो किसी भी तरफ से जो है ये प्रदर्शनकारी जो अचानक से पहुंच जाते हैं तो पुलिस को चारों मोर्चों पर जो है वो अपनी तैनाती जो है वो दुरुस्त रखनी है। और यहाँ पर देखिए एक तरफ से यहाँ आप देखिए फिर 50 ज़्यादा नहीं, सिर्फ 40-50 की संख्या में यहाँ पर देखिए फिर जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर देखिए जुट रहे हैं। अब इनको पुलिस जो है खदेड़ने के लिए अब आगे बढ़ रही है। और यही तस्वीर आज बिहार के कई जिलों में देखने को मिला है। छपरा में तो जबरदस्त बवाल मचा है, वहां पर तो कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। देखिए यहां खदेड़ा जा रहा है प्रदर्शनकारियों को, देखिए यहां खदेड़ा जा रहा है, उनको यहां से भगाने की कोशिश की जा रही है, लाठीचार्ज की कोशिश यहां पर हो रही है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर डाक बंगला चौराहा जो हम बता रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर पर 25-50-100 की संख्या में अचानक से प्रदर्शनकारी आते हैं, फिर पुलिस इनको खदेड़ती है और उसके बाद फिर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश यहां पर की जाती है। जो यहां पर भी हमने भी लाइव तस्वीरों में दिखाया कि अचानक से यहां पर 25-50 प्रदर्शनकारी जुट रहे थे लेकिन फिर पुलिस ने इनको खदेड़ दिया है। तो यही हालात सुबह से पटना में भी देखने को मिल रहा है और बिहार के विभिन्न राज्यों में, माफ कीजिएगा, बिहार के विभिन्न जिलों में भी जो है।
0: आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए तस्वीरें दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप समस्तीपुर में देखिए, अब जिस तरह से प्रदर्शन समस्तीपुर में हो रहा है ऐसा प्रदर्शन हो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। समस्तीपुर में देखिए छात्राएं हैं, छात्र हैं, ये इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का। और ये तरीका होता है जो समस्तीपुर में हो रहा है, ये तरीका होता है विरोध प्रदर्शन का। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ ये समस्तीपुर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर बात भी हो रही है, यहाँ पर छात्राएं हैं, छात्र हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पथराव का इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पर पथराव नहीं किया है, यहाँ पर मारपीट नहीं हुई है, सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन बाकी की 5 तस्वीरें आप देखिए, भागलपुर देखिए गाड़ी के ऊपर चढ़ गया एक शख्स, छपरा में देखिए छपरा में अभी रोज बता रहे थे कि हालात खराब कर दिए छपरा में, तो औरंगाबाद में देखिए बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर है, सीवान में बैरिकेडिंग तोड़ के रख दिए, और पटना में डाक बंगला चौराहा। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं क्या हालात है यहाँ पर। रोहित, अभी वर्तमान हालात को ध्यान में रखते हुए आपको लगता है कि ये जल्द ही शांत होगा ये माहौल, या फिर ऐसे ही बरकरार रहेगा?
2: नहीं देखिए, अब लगता है कि कुछ देर तक इसी तरीके का हालात रहेंगे, क्योंकि जो लेफ्ट के छात्र विंग है वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बंद को सफल बनाया जाए, किसी तरीके से अपनी उपस्थिति जो है दर्ज कराई जाए, और जो उनकी मुख्य मांगे हैं पेपर लीक हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ये तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो लोग सरकार पर हमलावर हैं और नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। और यहाँ भी देखिए, कुछ छात्रों को जब खदेड़ दिया गया है तो वो छात्र जो प्रदर्शनकारी भी है वो लोग किसी गली में घुस गए हैं, अब उनको वहाँ से खोजने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो पूरे इलाके में जो है लगातार पुलिस घूम घूम कर जो है वहाँ पर कोशिश कर रही है कि छात्रों को, इन प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा न होने दिया जाए, क्योंकि जैसे ही अगर ये 500,000 की संख्या में इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर इन पर काबू पाना शायद थोड़ा मुश्किल होगा पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए भी। इसीलिए ये छोटी छोटी संख्या में जैसे ही जुटते हैं यहाँ पर तो इनको यहाँ से खदेड़ दिया जाता है, ताकि ये लोग एक साथ एक जगह पे जुट ना पाए। और यही हालात जो है, हम बार बार बोल रहे हैं, दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित बिहार है, और सभी ज़िलों में लगभग हम देख रहे हैं कि आज सुबह से जो है भारी बवाल देखने को मिला है छपरा में।
0: आपकी तो बात हुई होगी रोहित, आपकी तो बात हुई होगी पुलिस अधिकारियों से, आप बात कर भी रहे थे, लगभग कितने ऐसे हैं उपद्रवी, मैं उपद्रवियों शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि छात्रों की आड़ में कुछ लोग करते हैं, अराजकता करते हैं, और उन पर सख्त कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है, छात्रों की बात नहीं कर रहे। तो कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, और कार्रवाई के आगे और बढ़ सकती है?
2: देखिए, हमने बताया परसों जो, देखिए अभी इस पहले गली से जो है कुछ यहाँ पर एसपी के नेतृत्व में जो है गली में घुस गए थे जो प्रदर्शनकारी, उनको खदेड़ के जो है वहां से हटाया गया है, और पुलिस अब वापस यहाँ लौट रही है, और फिर जहां जहां भी किसी भी गली में ये लोग छुप रहे हैं तो उनको यहाँ पर खदेड़ने की कोशिश आप देख सकते हैं यहाँ पर आज तक पर लाइव और एक्सक्लूसिव किस तरीके से यहाँ पर पूरा मामला जो है सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक उपद्रवियों की बात है तो एसपी से भी हमारी बात हुई, वो भी कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो इसमें घुस गए हैं असामाजिक तत्व, तो उनको शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है कि कौन है ऐसे लोग। ज़्यादातर लोग जो आ रहे हैं प्रदर्शन में चेहरों पर मास्क लगाया हुआ है, रुमाल से चेहरे को ढका हुआ है ताकि पहचान छिपाई जा सके, वो कौन है, वाकई में छात्र हैं, वाकई में प्रदर्शनकारी हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर कोई असामाजिक तत्व है, ये सब चीज़ें जो हैं वो जाँच का विषय है जी।
0: और ये देखिए, पटना में महिला पुलिस भी अपना काम करती हुई और जो महिला प्रदर्शनकारी हैं उनको रोकते हुए, ये देखिए ये पटना की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं पर काबू पाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो लोग हंगामा करने के बाद कहीं दुकानों में छुप गए हैं तो उनको भी काबू में करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। ये पटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, छात्रों का उपद्रव, पथराव, हिंसा होता है और उसके बाद फिर पुलिस की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जाती है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, अंदर घुस घुस के चिन्हित किया जा रहा है कि कहीं उपद्रवी अब आड़ लेने के लिए इधर छुप तो नहीं गए हैं, ये यहां पर देखा जा रहा है, और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक तरह से एक मार्च निकालने की कोशिश की जा रही है जिसे अराजक तत्वों के मन में डर पैदा किया जा सके। अब यहां देखिए चेकिंग की जा रही है कि कौन है, क्या ये उपद्रवियों में या फिर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से है, क्या चेक किया जा रहा है, आईडी चेक की जा रही है। रोहित हमारे साथ बने हुए, रोहित गलियों में जा जाकर, दुकानों में जा जाकर चिन्हित किया जा रहा है, पहचान की जा रही है कि छात्र हैं या उपद्रवी हैं।
2: बिल्कुल, देखिए हमने भी दिखाया किस तरीके से यहाँ पर थोड़ी देर पहले 25-50 की संख्या में प्रदर्शनकारी आए, फिर वहाँ पे उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको यहाँ से खदेड़ा गया, उसके बाद वो लोग गलियों में जो है अगल बगल जो है वहाँ जाके छुप गए, वहाँ पर भी जाकर है उनको खोजने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे ही प्रदर्शनकारी जुटते हैं उसके बाद जब कार्रवाई होती है तो वो लोग इधर उधर जो है वो छिप जाते हैं गलियों में, दुकानों में, और इसलिए पुलिस को देखिए रह कर कोशिश करनी पड़ रही है कि किसी तरीके से इन प्रदर्शनकारियों को जो है वो खोज के निकाला जाए, और ये पहले शिनाख्त की जाए कि ये वाकई में छात्र हैं या प्रदर्शनकारी हैं, या फिर प्रदर्शनकारियों की आड़ में असामाजिक तत्व जो है वो घुसे हुए हैं। एसपी साहब, ये बार बार ये प्रदर्शनकारी जो है वो छोटी छोटी संख्या में आ रहे हैं, ये लोग क्या छुप गए, गलियों में छुप गए हैं क्या, कहीं दुकानों में?
3: देखिए,
2: देख रहे हैं काफी मुश्किल हो रही है यहाँ पुलिस के लिए भी, गलियों में छिप जा रहे हैं और लगातार कार्रवाई जो है यहाँ पर पुलिस की वो देखी जा रही है। और सबसे बड़ी कोशिश ये है कि पुलिस ये जरूर इंश्योर करना चाह रही है कि ज़्यादा संख्या में जो पुलिस जो प्रदर्शनकारी हैं वो जुटे नहीं एक साथ, वरना फिर पुलिस को बहुत ज़्यादा बल प्रयोग करना पड़ सकता है, वाटर कैनन चलाने की स्थिति आ सकती है, आंसू के गैस गोले चलाने की कोशिश हो सकती है। और इसीलिए फिलहाल पुलिस चप्पे चप्पे पर जो है वो घूम रही है और कहीं भी अगर प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं वो खदेड़ा जा रहा है जी।
0: लेकिन ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब पहले एक दो दिन से इस तरह के हालात हैं तो वो पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर करनी चाहिए थी, लेकिन छह शहरों की तस्वीरें दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। भागलपुर में देखिए प्रदर्शनकारी गाड़ियों पर कैसे चढ़कर कूदाफांदी कर रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और कई गाड़ियों को तोड़ भी दिया गया है। छपरा में तो सबसे ज़्यादा उपद्रव हुआ है, छपरा में बड़े बड़े पत्थर फेंके गए हैं, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए हैं, दुकानों को तोड़ने की कोशिश की गई है। औरंगाबाद में आप देख लीजिए, ये छपरा से पीछे नहीं है, यहाँ पर और बड़े बड़े पत्थर आपको सड़कों पर दिखाई देंगे, लेकिन उसके बाद पुलिस की तरफ से एक्शन हुआ। पटना के डाक बंगले चौराहे की तस्वीर तो रोहित आपको लगातार दिखा रहे हैं कि गलियों में उपद्रवी छुपे हुए हैं, 30-35-40 की संख्या में आते हैं, हंगामा करते हैं और फिर उसके बाद फिर किसी गली में छुप जाते हैं, फिर पुलिस उनके पीछे गलियों में जा रही है। सीवान में भी जमकर हुड़दंग हुआ, चेहरे पर साफा बांधा, रूमाल बांधा, पत्थर फेंके और गायब हो गए और फिर पुलिस ढूंढती फिर रही है उन्हें। समस्तीपुर में एक लगा कि यहाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, छात्राएं आगे चल रही हैं प्रथम पंक्ति में, पीछे से छात्र चल रहे हैं, बिहार बंद उसमें लिखा हुआ है, हाथ में एक बैनर पोस्टर है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो ये भी उसमें लिखा हुआ है। पुलिस वालों से बातचीत होती है, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ होती है और ये अच्छी बात है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हंगामा हो जाता है और बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाता है तो फिर पुलिस के पास ज़्यादा ऑप्शन बचता नहीं है। रोहित, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जब पहले से ही देख रहे हैं कि हालात बेहद अच्छा, उससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ कह रही हैं, वो सुन लेते हैं।
3: People for making more friends on Instagram is ridiculous at this time. It is ridiculous. He is responsible. He is responsible for young children being out on the streets all over India. He is responsible that they are being shot with pellet guns as if they are terrorists. He is responsible. He has to answer to the nation. He has to show himself in parliament. He has to make the change that the students are asking for. He has to ask Dharminder Pradhan to resign. He has to sack him. And nothing less is enough. Because the students no longer believe in the system. The system has let them down. 152 paper leaks have happened in this regime. The system has broken them and their future. Anybody who wants to give an exam is terrified. If the paper leaks, some rich giant would be able to buy it for 30-40 lakhs. What will the rest of the students do? They don't have belief in the system anymore. And you are giving them a solution from the system. You are telling them, don't worry. We'll make the law stronger. What stronger law? What bill? The same bill that they introduced a few years back. They've only increased the sentence. We will see now what all they've done. But that's not good enough, because if you don't believe in the system, how can you believe the system is going to help you? The only thing that can be done is when you step out of the system, which means the Prime Minister has to show guts, he has to show courage, he has to show responsibility, and he has to show leadership. And leadership means that if his minister is responsible and under his nose 152 papers have leaked, he sacks that minister. That is leadership. And there is no leadership coming from Narendra Modi. All that is coming are feeble excuses and force. And he can use whatever force he wants on the students. Those students will not back down because they are young, they are brave, they are earnest, and they believe that they believe in our constitution. They believe that this country gave them some rights for which they are fighting. This country belongs to them. It does not belong to anybody else. It belongs to the youth. It belongs to them. This is their future. It does not belong to Narendra Modi ji. The parliament does not belong to Narendra Modi ji. It belongs to the people of India, and the people of India are speaking. His job, his duty, his responsibility is to listen.
4: Thank you.
5: Thank you.
6: Thank you. Thank you.
0: प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे और पीड़ित छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया। प्रियंका ये भी कह रही हैं कि छात्रों की जो मांगे हैं वो मान लेनी चाहिए। आप जंतर मंतर की ये तस्वीर देख लीजिए, देखिए आज फुल ऑन एक्शन पूरे दिन, जंतर मंतर बिहार, फिर जंतर मंतर। अब जंतर मंतर पर ये देखिए, बैरिकेड पर एक बार फिर से चढ़ने की कोशिश, बैरिकेड को पार करने की कोशिश। हालांकि ये बताया गया है कि यहाँ पर हालात खराब हुए तो पुलिस की तरफ से टीयर गैस, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे भीड़ को काबू करने के लिए। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, तो जंतर मंतर पर एक बार फिर बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की गई थी लेकिन पुलिस ने काबू किया। अभी जो आप तस्वीर देख रहे थे ये भी जंतर मंतर से ही तस्वीर बताई जा रही थी, जहां पर छात्र एकजुट हो रहे हैं और जबकि शनिवार रविवार भीड़ बढ़ सकती है, तो इसीलिए सावधानी बरतने के लिए भी वहां पर पुलिस ने इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन गर्मी का हाल है, गर्मी है, उमस है, बारिश हो नहीं रही है, तो ऐसे में आप देखिए जो बिजना होता है, जो हाथ वाले पंखे, उनसे गर्मी को दूर करते हुए छात्र गर्मी से भी लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए भी लड़ रहे हैं, दोहरी मार है इस वक्त छात्रों के लिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जो मांग यहां पर छात्रों की तरफ से की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, जो लोकसभा में गूंज रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, जो राज्यसभा में गूंज रहा था धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, सीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, अभिजीत दीपके के साथ साथ जो इस देश के जो छात्र हैं वो छात्र मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और इस इस्तीफे से कम कुछ बर्दाश्त होगा ही नहीं। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रमुख मांग थी ये छात्रों की और छात्रों ने कह दिया था कि इससे कम में कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो चाहिए ही चाहिए, और जो इस्तीफा इस्तीफा का नारा लोकसभा राज्यसभा में लग रहा था, अब यह बड़ी खबर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए यह देखिए चिट्ठी जारी किया, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, यह धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, छात्रों के सामने सरकार अब झुक गई है, यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और यह देखिए, पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है, यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है, देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। आगे लिखते हैं, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, हिमांशु जो छात्र चाह रहे थे वो हो गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया।
1: अब देखिए बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और ये क्योंकि कल जब सीजेपी के साथ दूसरे राउंड की मुलाकात हुई तब उन्होंने ये साफ कर दिया था कि धरना जो है तब तक खत्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा। और जब ये श्योर किया गया, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो मुलाकात कर रहे थे, कि इस विषय पे हम फैसला नहीं ले सकते, हम आगे बातचीत करके आपको बताएंगे, आज तीसरे राउंड की बातचीत होनी थी और आज जो है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा जो है वो दे दिया है एज ए शिक्षा मंत्री के तौर से। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता उड़ीसा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षा की पूर्ति के लिए हर संभव रूप से समर्पित रहूंगा।
0: और बड़ी जीत छात्रों की यहाँ पर कही जा सकती है, शिक्षा मंत्री का यहाँ पर इस्तीफा हो गया और उन्होंने कहा है कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यानी वो ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो भी हो रहा है उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाए, इस वजह से इस्तीफा दे रहे हैं।
1: देखिए बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो भी कुछ हुआ है वो देश के लिए उन्होंने किया है, युवाओं के लिए किया है, लेकिन कुछ देश विरोधी ताकतें जो है इस पूरे आंदोलन का फायदा ना उठाएं, और इसीलिए जो है उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। और युवाओं की अगर मांग है उसको रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो चाहते हैं कि देश के युवा जो है वो आगे बढ़े, और राष्ट्र सेवा मेरे जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है, मैं इसके लिए सदैव जो है समर्पित रहूंगा।
0: लेकिन हिमांशु युवा बताइए कि अब तो इस्तीफा हो गया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, जो साढ़े तीन बजे जो बैठक होने जा रही थी, क्या वो अभी भी हो सकती है आपको लगता है? क्योंकि जो मुख्य मांग थी पहले दो पर तो सहमति लगभग हो गई थी, अब यही एक पेच फंसा हुआ था, अब ये पेच भी सुलझ गया।
1: देखिए बिल्कुल इसी चीज को लेकर पेच फंसा हुआ था, और पूरे आंदोलन की जो मांग थी उसमें एक ही चीज मुख्य रूप से थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और इसीलिए जो है वो अब ये मानकर चल सकते हैं कि आंदोलन के लिए अब जो मांग थी वो मान ली गई है, और धर्मेंद्र प्रधान ने खुद स्वेच्छता से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में अब जो है इस जो तीसरे राउंड की बैठक है उसका कोई महत्व जो है वो नहीं रह जाएगा, और इसीलिए ये इस्तीफा जो है तीसरे राउंड की मुलाकात से पहले दे दिया गया, क्योंकि आज 3:30 बजे ये बैठक दोबारा तीसरी बार होनी थी, और उससे पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये इस्तीफा दिया। अब चूंकि आंदोलन की अगर सभी मांगे जो है मान ली गई है तो उसके बाद इस बैठक का तीसरे राउंड की कोई महत्व।
0: लेकिन हिमांशु आपके सूत्र क्या बता रहे, क्योंकि कल शाम तक जो खबर थी कि सरकार अपने शिक्षा मंत्री के साथ खड़ी हुई है, और ये कहा गया है कि इस्तीफा देना यानी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना, और अब इस्तीफा आ जाता है, तो इसके पीछे क्या माना जाए?
1: देखिए अगर इस्तीफा आ ही गया है तो कल अगर आप देखें पिछले 24-48 घंटों के अंदर जो है सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस बात की घोषणा की कि नीट पेपर लीक मामले में जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के सबसे पहले सुनवाई की जाएगी, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया, और उसके साथ साथ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि कैबिनेट के अंदर जो है एक बड़ा बिल जो है जो पब्लिक एग्जाम
0: आप बने रहिए हमारे साथ। मौसमी सिंह भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। मौसमी, छात्र लंबे वक्त से मांग कर रहे थे, लोकसभा राज्यसभा में हंगामा इसी बात को लेकर था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फिर बात होगी, और हो गया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।
4: हिमाचल, ये 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, अपने आप में ये बेहद अप्रत्याशित है कि मोदी सरकार में कोई मंत्री इस तरीके से इस्तीफा दे, और अपने आप में राहुल गांधी ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप धर्मेंद्र प्रधान को कोई और मंत्रालय ट्रांसफर कर देते हैं उससे काम नहीं चलेगा, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि उससे काम नहीं चलेगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना है, उनको मंत्रिमंडल से बाहर आपको करना पड़ेगा, उनको इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। उसको लेकर तमाम छात्रों से भी आज उन्होंने जो भूख हड़ताल पे बैठे थे उनसे मुलाकात की थी। उधर जंतर मंतर में छात्रों की जिस तरह से भीड़ उमड़ रही थी, प्रधानमंत्री फेसबुक दो बारी फेसबुक पे उन्होंने अपना पोस्ट डाला, इंस्टाग्राम पे अपना पोस्ट डाला, तो अपने आप में सरकार को कहीं ना कहीं लगा कि ये पूरा आंदोलन छात्रों का आंदोलन हो गया, युवाओं की मांग है। और जिस तरीके से मध्यस्थता में भी सीजेपी ने कह दिया कि इस्तीफे से नीचे हम लोग नहीं मानेंगे, तब सरकार को लगा कि अब बात और बिगड़ सकती है, इस मसले पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना अपने आप में मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल का ये पहली बार होगा कि इस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा या किसी भी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा हो, जवाबदेही लेते हुए, अकाउंटेबिलिटी लेते हुए। कल तक तमाम मंत्री ये कह रहे थे कि सिस्टम को बेहतर बनाना है, इस्तीफे से क्या होगा, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा मील का पत्थर इस पूरे आंदोलन में, जहां पे जो प्राथमिक मांग थी छात्रों की इस तरीके से जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं जो इस्तीफे की जानकारियां, ये अपने आप में ये एक अप्रत्याशित मोड़ पर ये आंदोलन,
0: और इसको मौसमी विपक्ष की जीत कहा जाएगा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा हर जगह विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा रहा और यह कहता रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिना उसके बातचीत नहीं होगी। सरकार कहती रही कि आप बातचीत तो करिए लेकिन सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद बात, और इस पर विपक्ष लड़ा रहा। जी
4: विपक्ष और जो जो प्लेयर्स थे इसमें स्टेक होल्डर्स थे, अगर आपको मेरी आवाज ठीक से मिल रही है हिमांशु, जो स्टेक होल्डर्स थे इसमें, चाहे वो सीजेपी हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो जितने प्रदर्शन छात्र हो, सब लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे थे। सोशल मीडिया में लगातार सरकार को छात्र घेर रहे थे और अपने आप में सरकार को कहीं ना कहीं लगा कि एक तरीके से ये आंदोलन बेवजह इतना तूल पकड़ रहा है और मतलब कि एक मांग पे छात्र अड़े हुए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इशारा किया था कि छात्र हमारे देश के युवा हमारा भविष्य है और उनकी बात को हम सुनेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट का हमने ऐलान किया, लेकिन उस पर भी छात्रों की प्रतिक्रिया आई कि हमको इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात बात में, तो वो अपने आप में सरकार को संकेत मिल गए। ये सरकार ऐसी है जो ग्राउंड रियालिटी को भागने में आज तक हम लोगों ने देखा है कि चाहे वो चुनाव हो या कोई भी नीतियां हो, किसान आंदोलन हो, तो किसान कानून भी सरकार
0: अच्छा, आप बने रहिए मौसमी हमारे साथ। हिमांशु हमारे साथ में, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आप तो लंबे वक्त से इस पूरे प्रोटेस्ट को भी कवर कर रहे हैं, बीजेपी सरकार की जो भी नीतियां उनको भी बहुत अच्छे से कवर करते आए हैं 2014 से। अब अंदर की कहानी जानना चाहते हैं लोग आपसे कि आखिर क्या हुआ कि अचानक जो सरकार कहती थी कि वो अपने मंत्री के साथ में है, उसके बाद अचानक से इस्तीफे की खबर आ जाती है, वो भी तब जब आज बैठक होने वाली थी उससे पहले।
5: देखिए, कल जब दूसरे राउंड की बैठक हुई थी, हिमांशु मैंने पहले भी बताया, उसमें ये साफ कर दिया गया था, सीजेपी के जो दोनों प्रतिनिधि आए थे सौरभ और आशुतोष, उनकी तरफ से ये साफ किया गया कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफे के बिना ये प्रोटेस्ट, ये धरना खत्म नहीं होगा। ये भी उन्होंने कहा था कि अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो हमको जाके इस बात की घोषणा करने पड़ेगी। कल रात आज तक ने ये सूत्रों के हवाले से खबर भी चलाई थी कि हम सोमवार को फिर से जो है वो संसद तक मार्च कर सकते हैं, इसकी घोषणा हमको करने पड़ेगी, 72 घंटे का समय दिया गया था। लेकिन आज तीसरे राउंड की जो मुलाकात होनी थी उससे पहले सरकार को ये तय करके उनको बताना था कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे पर सरकार क्या कर रही है। दोनों ही मंत्रियों ने कहा था, धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके इस्तीफे को लेकर वो अंतिम फैसला कुछ भी नहीं हो सकता, सरकार में चर्चा होगी और चर्चा करके जो कुछ होगा हम अगले राउंड की बैठक में आपको बता देंगे। ये चीजें कल दूसरे राउंड की मुलाकात में हुआ था, लेकिन आज 3:30 बजे मुलाकात होनी थी। सरकार के अंदर जो भी डिस्कशन हुए हो और जिस तरीके से कल एक बंद का आह्वान किया गया, चाहे वो पुणे में हो, महाराष्ट्र के अन्य शहरों में हो, कोलकाता में हो, लखनऊ या देश के अन्य शहरों के अंदर हो, वहां पर जो है जिस तरीके से लोग आए इस आंदोलन में, उसके बाद शायद सरकार को लगा कि ये आंदोलन ज्यादा ना बढ़े और इसीलिए ये इस्तीफा जो है वो शिक्षा मंत्री ने खुद से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर वो इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू महामहिम उनको भेजेंगी रिकमेंडेशन के साथ कि उनको पदमुक्त कर दिया जाए, उनका रेजिग्नेशन जो है, इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया जाए और उसके बाद देश का अगला कौन जो है वो शिक्षा मंत्री होगा, इसके इसका भी फैसला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेंगे कि अभी वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है उसमें किस मंत्री को जो है अगला शिक्षा मंत्री बनाया जाए। ये सारी प्रक्रिया अभी होनी है, लेकिन एक चीज जरूर है, सरकार के अंदर इस चीज को लेकर एक चर्चा जरूर थी कि जिस तरीके से विरोध हो रहा है, सरकार को लगता था ये विरोध उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा विरोध हो रहा है। सरकार का एक असेसमेंट था 20 जुलाई को जो हुआ उसमें भी सरकार को लगता था चीजें कंट्रोल होंगी और इसीलिए जो है बातचीत के लिए सीजेपी के जो प्रतिनिधि है उनको बुलाया, उनसे बातचीत की, सोनम वांगचू से जाके मुलाकात की, जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह ने, उसके बाद सोनम वांगचू से दोबारा मुलाकात हुई और उनका अनशन जो है वो खत्म करवाया दोनों ही मंत्रियों ने, आश्वासन देके कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होंगे। कल जब दूसरे राउंड की मुलाकात हुई है सीजेपी के दोनों प्रतिनिधियों से, उसमें जब ये मामला इस चीज को लेकर अड़ गया कि तीन मांगे हैं, तीन में से दो हम मान लेते हैं, तीसरी मांग का कोई भी जो है फैसला नहीं हो सकता, तब जब ये कहा गया कि हम इसके बिना ये प्रदर्शन खत्म नहीं हो सकता है, तब शायद सरकार के लिए एक तरीके से ये एक बना कि कम्युनिकेशन गैप तो सरकार करना चाहती थी, बातचीत का क्रम जारी रखना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से दोनों ही प्रतिनिधियों ने अपनी मंशा साफ कर दी कि इस्तीफा होना चाहिए और अगर नहीं होगा तो हम एक बार फिर से संसद तक मार्च और देश भर में कैंडल मार्च रखेंगे, उससे शायद सरकार को लगता है कि अगर इस तरीके से यूथ दबाव बना रहा है तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान ने आगे आके सबसे पहले अपनी ही तरफ से इस्तीफा जो है वो आगे ऑफर किया है। एक चीज जरूर है इसमें, अगर आप देखेंगे सरकार ने पिछले 48 घंटों में कई फैसले लिए। मैंने पहले भी कहा एनटीए के अंदर जो है पदों को 47 लोगों को सस्पेंड करना, फास्ट्रैक कोर्ट का गठन करना, फास्ट्रैक कोर्ट के लिए अनाउंसमेंट गठन, उसके साथ साथ कैबिनेट में अगला बिल में जो है
0: 10 साल की सजा,
5: प्राइवेट एग्जाम के अंदर जो है वो जो कानून है उसको और सुदृढ़ करना और सख्त करना, वो कल कैबिनेट ने पास कर दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो जारी किया था उसके अंदर धन्यवाद दिया लोगों को। तो एक तरीके से लगातार 6 बड़े कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाए गए थे, लेकिन उससे मामला बात बनती हुई नजर नहीं आई। अगर बात बनती तो शायद धर्मेंद्र प्रधान अपनी तरफ से इस्तीफे का ऑफर नहीं करते।
0: तो वो बहुत स्पष्ट दिखा कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी तरफ से इस्तीफा दिया, बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, छात्र लगातार अपनी बात पर अड़े हुए थे, विपक्ष भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था, संसद हंगामे की भेंट चढ़ती जा रही थी, विपक्ष लगातार कह रहा था कि इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, इसके अलावा और कोई बात हो ही नहीं रही थी। लेकिन हिमांशु, जरा अपने अनुभव के हिसाब से ये बताइए कि इसका इम्पैक्ट अब आने वाले वक्त में क्या पड़ेगा इस सरकार पर, इस फैसले का, जो ये कहा गया कि इससे पहले अभी ऐसा नहीं हुआ था लेकिन अब हुआ है।
5: हिमांशु, मैंने पिछले 12 सालों में इस सरकार के कामकाज को, उसकी कार्यप्रणाली को जानने और समझने की कोशिश की है, उसको कवर किया है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं हुआ जिसपे सरकार बहुत जल्दी दबाव में आई हो। भूमि अधिग्रहण बिल हो, उसको लेकर सरकार फ्रंट फुट पे रही, जब किसानों की तरफ से ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ उस बिल को नहीं लाया गया। दूसरी तरफ आप देखें किसान आंदोलन जो हुआ, 3 कृषि बिल जो सरकार लेकर आई थी उसको लेकर लगभग 1 साल से ज्यादा जो है किसान जो है आंदोलन करते रहे, दिल्ली के बॉर्डर को घेर के रखा, सरकार मनाने की कोशिश करती रही, 13 राउंड की बातचीत हुई लेकिन किसान नहीं माने, उसके बाद बातचीत का क्रम बंद हो गया। लेकिन जब सरकार को इस बात का एहसास हो गया कि फार्मर प्रोटेस्ट जो है, किसानों का जो आंदोलन है वो खत्म नहीं होगा, सरकार ने 3 बिल वापस लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो गुरुपूर्व के दिन इस 3 बिलों को वापस लिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि ये बिल जो मैं लेके आया था, ये जो कानून थे, ये किसानों के हित में थे, लेकिन हम किसानों को ये समझाने में नाकामयाब रहे हैं कि ये उनके लिए कैसे हितकारी थे, उनके लिए कैसे फायदेमंद थे, वो वापसी हुई। उसके बाद 12 सालों में अगर किसी एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है हिमांशु, तो वो है एमजी अकबर, जिनको लेकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई इस्तीफा नहीं मांगा था, किसी ने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला था। एमजी अकबर का जो इस्तीफा हुआ था वो मीटू पे हुआ था। खुद प्रधानमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नृपेंद्र मिश्रा, वो गए, उन्होंने उनको समझाया कि आपको इस्तीफा देना होगा, मीटू एक महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सरकार की इमेज जो है इससे खराब हो सकती है। एमजी अकबर का इस्तीफा हुआ था पिछले 12 सालों में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ हो। मंत्रिमंडल में विस्तार में फेरबदल में कई मंत्रियों को हटाया गया होगा, कई मंत्रियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो दबाव में काम नहीं करते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन इस बार जिस तरीके से छात्र जो है वो सड़क पे थे, पहले सरकार को ये लगता रहा ये आंदोलन जो है उतना लंबा नहीं चलेगा। सोनम वांगचू जो है वो 26 दिन के अनशन पर रहे, वो जब सफदरजंग लेके जाए गए वहां पे भी उन्होंने अनशन जारी रखा, फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में जब लेके जाया गया, वहां एडमिट कराया गया, वहां से वहां पे भी उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा। तब जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने मुलाकात की एक राउंड की, उनको मनाने की कोशिश की, उनको बताया कि सरकार किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को जो है वो ठीक कर रही है और पेपर एनटीए किस तरीके से फुल प्रूफ सिस्टम को बनाना चाहता है जिससे भविष्य में कभी भी पेपर लीक जैसे मामले ना हो, लेकिन वो नहीं माने। फिर दूसरे राउंड जब वो गए तब उन्होंने उनको मनाया कि आपकी जो बातें हैं, जो मांगे हैं, उसको किया जाएगा, संसद के अंदर चर्चा होगी और उस चर्चा के अंदर तमाम एजुकेशन सिस्टम को लेकर सुधार पर सारे जो भी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कैबिनेट में एक बिल लाने वाले हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है, ये तमाम चीजें जो है बताई गई। और आप देखिए एजुकेशन सेक्रेटरी जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी है विनीत जोशी उनका ट्रांसफर किया गया, एनटीए के 47 अधिकारियों को बदला गया, फास्टैग कोर्ट की घोषणा गठन होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया बिल जो प्राइवेट एग्जाम 2024 बिल है, कानून है, उसमें नए संशोधन लाना और कड़े जो है सजा हो, उसमें फास्ट ट्रैक हो, 3 महीने के अंदर जांच हो, 3 महीने में ही फैसला आ जाए, 10 साल की सजा हो, 10 करोड़ रुपए तक का फाइन हो, ये तमाम चीजें जो है उस कानून में संशोधन के लिए तैयार किया गया। आज इसकी बिल की कॉपी जो है सभी सांसदों को सर्कुलेट कर दी गई है कि सोमवार को इस बिल को जो है संसद के अंदर लाया जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो एक तरफ विपक्ष था, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी, और उसमें एक कदम पे कहे तो सरकार को एक राहत मिली थी जब सोनम वांगचुक ने,
0: देखिए प्रदर्शनकारियों की आप बात कर रहे हैं मानसी, तो वो तस्वीरें जंतर मंतर की दिखाना जरूरी हो जाता है क्योंकि एक किसान आंदोलन था, वो भी इतिहास में उसका नाम हो गया, अपनी एक जगह थी, और अब जंतर मंतर का ये आंदोलन जिसके सामने स्पष्ट कहा जा सकता है कि सरकार झुकी, और सीजेपी के इस आंदोलन ने, छात्रों के आंदोलन, मैं ये छात्रों का कहूंगा कि छात्र यहां पर एकजुट हुए थे, देश के अलग अलग कोने से छात्र यहां पर एकजुट हुए थे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, तो छात्रों का यह आंदोलन था और छात्रों का यह आंदोलन सफल हुआ। छात्र जो चाह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, वो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हो गया है। हिमांशु हमारे सहयोगी जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज खुश तो बहुत होंगे ये सभी छात्र जो ये मांग कर रहे थे इतने दिनों से कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और कुछ नहीं चाहिए, और हो गया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।
6: बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें आप देखिए पीछे, ये आप देखेंगे जंतर मंतर की सीधी तस्वीरें हैं, और कुछ ही मिनटों में यहाँ का माहौल बदला है हिमांशु, एकदम से जैसे ही खबर आई। हालांकि जब पहले छात्र किसी बात को लेकर उग्र हो गए और आगे बढ़ने की कोशिश,
0: मानसू मैं आपके पास आऊंगा, और देखिए लगता है जल्दी ही सीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, और सीजेपी भी अपनी बात यहां पर रखेगी, जिसमें दीप के होंगे, जिसमें सौरभ दास भी होंगे, रंगा भी होंगे, हो सकता है। हिमांशु प्लीज कंटिन्यू कीजिए, देखिए छात्रों के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है।
6: बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर नो डाउट देखिए करीब करीब 1 महीना होने वाला है, और ऐसे में कई बार गतिरोध भी हमने देखा, बुधवार को यहाँ पे हमने गतिरोध देखा, 2 दिन शांति थी और आज फिर गतिरोध देखने को मिला था, लेकिन इसी बीच जैसे ही ये खबर आई तो एकदम से यहाँ पर जो सेलिब्रेशन है उसकी तस्वीरें आप देखेंगे, सीधे नारेबाजी हो रही है और एक सेलिब्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन कई सारे ऐसे छात्र थे जिनको पुलिस ने जा करके समझाया, जिनको अनाउंसमेंट करके समझाया गया, जिनको बताया गया, क्योंकि नेट यहाँ पर स्लो है, तो ऐसे में सबके पास जो जानकारी आ रही थी वो जानकारी से पूरी तरीके से एक बार में उस पर वो विश्वास नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में जो तमाम लीडर्स थे उनको सबसे पहले जानकारी दी।
0: एक तस्वीर, ये तस्वीर देखिए अभिजीत दीप के,
7: इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वैष्णवी जी बुले नेम्स ऑफ ऑल द लीग वाले बच्चों को बैनर लो, ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु किरणा, पवन पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवरे, अवंतिका मौर्य, जतिन कुमार, गोपिका, शेख सना, वेत्यानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं दो मिनट का साइलेंस, इन बच्चों के लिए, प्लीज।
0: जी दीपिके कह रहे हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे काफी सुना है, लेकिन इस्तीफे हो गए, इस्तीफा हुआ है।
7: नहीं भाई यार, बैरिकेड से दूर पीछे हटिए, सारे लोग पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए, देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे अच्छों के इस्तीफे ले सकते हैं हम, तो डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है, अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे ऐसे ही नहीं जाएंगे, नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को।

0: To the people of India, this is how a democracy should be. Ye loktantr hai, ye loktantr hai. मुझे पिछले एक महीने से बहुत बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे, क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा, आप जानते नहीं हो क्या इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है।
1: तो अभी आप सुन रहे थे दीपके को, अभिजीत दीपके को। उन्होंने बताया कि बहुत से लोगों ने कहा कि सरकार सुनती नहीं है, बहुत से लोगों ने कहा कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन इस्तीफा हो गया। वो बार बार कह रहे हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और सरकार को हमने झुकाया है। लेकिन इतनी देर में अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि शायद एक बार बार सोनम
0: इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वैष्णवी जी, पुट द नेम्स ऑफ ऑल द लीड वाले बच्चों को बैनर लो।
1: जब अभिजीत दीपके को फोन पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिली, और जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिली, वो खुश हुए और बोलते, वी हैव डन इट। हालांकि इतनी देर अभिजीत दीपके ने बोला, लेकिन सोनम वांगचुक का जिक्र यहां पर अभी तक नहीं हुआ है, जिन्होंने शुरुआत की, जिन्होंने छात्रों को एकजुट किया, जिन्होंने एक अलख जगाई, और सोनम वांगचुक का साथ देने के लिए पूरा देश एकजुट हुआ, छात्र अलग अलग राज्यों से जंतर मंतर पर आए। लेकिन अभी सोनम वांगचुक का जिक्र अभिजीत दीपके की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन अभिजीत दीपके ये कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार को झुका दिया है, और छात्रों ने जो प्रदर्शन किया, छात्रों की मांग थी, अब वो पूरी नहीं।
2: खाना पानी वंचित ना करें लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे
3: हैं नहीं आ रहे, आगे
2: ना करें।
4: देखिए
2: इंटरनेट बंद,
4: सौरभ भाई
2: मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर चिपका दिया, ये सब करने बहुत बचकानी बातें हैं। प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों के संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है।
3: कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए?
2: जब बुलाएंगे अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे। उसके पहले भी हो सकता है।
1: देखिए छात्रों का हुजूम, जो छात्र पिछले लंबे वक्त से जंतर मंतर पर टिके हुए थे, जो मांग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और इससे कम हम कुछ भी नहीं चाहते। शुरुआत ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से होती थी, जिनकी सुबह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से होती थी, और शाम रात सब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से होती थी। अब वो मांग पूरी हुई, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, और अब

0: कॉकरोच, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक अब खुशियां मना रहे हैं जंतर मंतर पर।
1: बहुत बड़ा आंदोलन, उस बहुत बड़े आंदोलन के बाद से क्या यह बहुत बड़ी जीत भी मानी जाएगी इस आंदोलन की, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस काम को करने के लिए अब तक आनाकानी चल रही थी, जिस इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ था, तमाम तरह के सवाल थे और उन सवालों के बाद उन सवालों को लगातार सिर्फ और सिर्फ नजरअंदाज किया जा रहा था, तो जब यह इस्तीफा होना ही था तो पहले क्यों नहीं हुआ, पहले ही हो जाता तो शायद ये नौबत ना आती, ये तमाम तरह की बातें अब लोग कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे थे कि ये दिन तो आएगा ही और अब आज वो दिन आ गया है। जंतर मंतर पर एक तरह का जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सोनम वांगचुक ने भले ही अपना अनशन त्याग दिया हो लेकिन एक बहुत बड़ा पल है ये, एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा भी जुड़ गए। हिमांशु, ये जब ये दिन आना ही था, इस्तीफा देना ही था, ये दबाव में दिया गया इस्तीफा है या सरकार को लगा कि नहीं इस्तीफा ले ही लेना चाहिए?
2: देखिए, मैंने पहले भी बताया कि दो राउंड की जो मुलाकात हुई है, उन दोनों राउंड की मुलाकात में जो पहली मांग थी सीजेपी के दोनों प्रतिनिधियों की, वो थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कल जब मुलाकात हुई तो सरकार की तरफ से कहा गया कि
1: केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सुनाते हैं, उनका बयान आ रहा है।
3: हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत बहुत बधाई, हमारे देश के युवाओं को, जेंजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया, धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था, लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी, हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर, अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद।
1: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना और उन्होंने सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा है, ये कहा लोकतंत्र की जीत है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये देश की राजधानी के जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जहां सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है और आज वहां पर ये जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सीजेपी के इस प्रदर्शन को दो नजरियों से देखा गया है, एक इसे विरोध के रूप में देख रहे थे और वहां पर आलोचना, और हिमांशु भी वहां से लाइव इसे भी जानकारी दे रहे हैं।
4: मंतर पर जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, ये तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर तमाम बैरिकेड को पार करके छात्र आगे की तरफ आ गए और यहाँ पर अब लगातार सेलिब्रेशन चालू है। वंदे मातरम और तमाम जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस की जय, जो लगातार गतिरोध बना हुआ था, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जय का भी नारा लगाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, अब तमाम जो लोग धरने प्रदर्शन में यहाँ पर शामिल थे वो यहाँ पर अब सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें संसद मार्ग और ठीक जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट की है जहां पर एक महीने से करीब छात्र लगातार धरने पर, प्रदर्शन पर बैठे हुए थे।
1: जंतर मंतर की ये तस्वीरें कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों की, उनके साथ आए लोगों की है जो इस समय वहां पर झूमते हुए नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये जश्न हमने कल रात को भी बहुत जबरदस्त देखा था, जंतर मंतर पर नाचते हुए। बहुत सारे वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए, अब आज में हाथ में तिरंगा भी दिखाई दे रहा है और जश्न मनाया जा रहा है और सब लोग वहां तिरंगा लहराते दिख रहे हैं। खुशी किस बात की है? खुशी इस बात की है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है।
5: प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज नीचे बैठ जाइए प्लीज। देखो पैनिक नहीं करना है, ऐसे आराम से बैठे रहिए, आएंगे ये 500 रुपए की चड्डी वाले गुंडे आएंगे, ये इन चड्डी वालों से डरना नहीं है, यहाँ पर हम ऐसे ही शांति से बैठे रहेंगे, हम हमारी तरफ से कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे, हम हमारी तरफ से कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे। वी हैव टू बी रियली काम एंड वेरी पीसफुल, दैट इज अवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा पीसफुल होना है, हम यहीं पर ऐसे शांति से बैठे रहेंगे, देखते क्या करते हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह बस पुलिस वाले गुंडों से काम कराते थे, लेकिन अभी आरएसएस के गुंडे भी भेज दिए हैं, तो पुलिस वाले गुंडे भी आ जाए, आरएसएस वाले गुंडे भी आ जाए, ये प्रोसेस खत्म नहीं होगा, बैठ जाइए शांति से। कहीं पर नहीं जाना, हमें यही बैठे रहना है, ये इन लोगों की कोशिश है प्रोटेस्ट को खत्म करने की।
1: हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी जुड़ गए हैं, साथ साथ पटना से रोहित भी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या ये प्रदर्शन अब खत्म होगा? क्योंकि हम अभी सुना रहे थे अभिजीत दीपके को, कह रहे थे कि भाई हम अभी यहां से उठेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और नारे भी लग रहे थे मोदी विरोधी, लेकिन क्या अब ये प्रोटेस्ट खत्म होगा या नहीं? अब
6: देखिए, उनकी जो बाकी दो मांगे हैं, जो 20 जून से अभी तक छात्रों पे केस रजिस्टर हुए हैं, एफआईआर हुई है, उन एफआईआर को वापस किया जाए, और उसके साथ साथ जो है, जो जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया जो है मुआवजा दिया जाए। उसके साथ शायद उनकी ये भी मांग है कि जिन पुलिस वालों के वीडियोज आए हैं बच्चों को मारते हुए, जो सिविल ड्रेस में मार रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। ये अगर मांगे हैं सरकार के सामने, सरकार ने कल दो मांगे उनकी मांग ली थी, एक जो केस रजिस्टर हुए हैं उनको वापस लेने का, और दूसरा जो है वो मुआवजा देने का, मुआवजे का अमाउंट कितना हो, 1 करोड़ हो या उससे कम हो या उससे ज्यादा हो, इसको लेकर उन्होंने कहा था प्रिंसिपली हम इसको मानते हैं, कितना रकम दी जाएगी मुआवजे के तौर पे ये तय करके आपको बताया जाएगा। दो मांगों पे जो है सरकार ने विचार कर लिया था, तीसरे पे उन्होंने कहा कि ये हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, इसके लिए एक बात होती है, हमको ऊपर अपनी सरकार में बात करनी है, उसके बाद हम आपको अपडेट देंगे। ये बात कल जो है दोनों ही जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने अपनी बात में कहा था, और ये भी अंदर खाने उन्होंने कहा था कि अगर उनकी बात को नहीं माना गया तो उनको एक और मार्ग जो है वो संसद के लिए निकालना पड़ेगा।
1: ठीक है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से बीजेपी को समझते हैं, कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात आई कैसे, मतलब कैसे पूरा का पूरा घटनाक्रम चला, क्योंकि अब तक तो इस्तीफा दे ही नहीं रहे थे, मतलब ऐसा लगता था कि वो भी अड़े हुए थे, तो इस्तीफा हुआ कैसे, क्या है इनसाइड स्टोरी?
6: 20 तारीख को एक घटनाक्रम हुआ, प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच गए और संसद के सभी गेटों को जो है साउथ यूटिलिटी, नॉर्थ यूटिलिटी, उनको बंद करना पड़ा। और जिस तरीके से वहां टीयर गैस छोड़ी गई, आंसू गैस छोड़ी गई, लाठी चार्ज हुआ, और उसके बाद जो है देश भर में ये आंदोलन कहीं ना कहीं दिखने लगा, चाहे वो बॉम्बे में हो, पुणे में हो, महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में हो, कोलकाता हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और फिर राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाके धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा ही होगा, तब तक संसद नहीं चलेगी। तो संसद का सत्र चल रहा हो, संसद के अंदर कई महत्वपूर्ण बिल लाने हैं, सरकार का कामकाज होता है, उसको पास कराना सरकार के लिए जरूरी है।
1: ठीक है, हिमांशु रोक रहा हूं आपको, सौरभ दास भी इसमें बयान देना चाहते हैं।
7: भारत माता की, दोस्तों थोड़ा पीछे चले जाओ, ये रेलिंग टूट जाएगी,
8: पीछे कर
7: लो, अभी सब लोग पीछे चले जाओ और बैठ जाओ। बहुत सारे लोग अंदर है, वो लोग स्क्वीज हो जाएंगे, अभी टाइम है, बातचीत अभी बाकी है। 3:30 बजे बुलाया है, जब तक सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते, जब तक लिखित में आ नहीं जाता, तब तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बैठ जाओ, पीछे हो जाओ और सब बैठ जाओ।
8: अरे नेशनल एंथम प्ले करो।
7: बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की, ये युवाओं का पावर है। और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है ये, हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए, आपको चेतावनी है, एक लोगों का, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में।
1: वक्ता को आप सुन रहे थे और उनके बयान से बिल्कुल क्लियर है कि वो अब वहां से अभी उठने वाले नहीं है, क्योंकि 3:30 बजे उनको बुलाया गया। लेकिन हिमांशु हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए। हिमांशु, सवाल यह है कि जिन पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए और उसके बाद केसेस दर्ज हुए, तो उन पर तो आप एफआईआर हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिन पुलिस वालों ने डंडे चलाए, आप चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो, तो ये कैसे संभव है?
6: देखिए, उन्होंने कुछ नाम बताए हैं जीत दिपके ने, तो वो ये जरूर चाहेंगे कि उन पे कार्रवाई हो जाए, लेकिन सरकार को तय करना है कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है, या जो केसेस दर्ज हुए जिन छात्रों के ऊपर 20 जून से उनके केसेस वापस ले लिए जाए।
1: जी मंशु,
6: और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि नीट पेपर लीक के बाद
1: मंशु आप बने रहे, मैं आपके पास लौट रहे पर हिमांशु हमारे साथ जंतर मंतर से भी जुड़े, उनके पास भी चल लेते हैं। हिमांशु, वहां की तस्वीरें भी दिखाएं।
4: यहाँ पर अब आप देखिए सीधी तस्वीरें, ये जगह अभी जो कभी पिछले हमने बुधवार को देखा, आज दोपहर में देखा कि यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी, अब वहां पर अब आप देखिए राष्ट्रगान आपको सुनाई देगा और यहाँ पर आपको तमाम लोग जो है वो सेलिब्रेशन के मोड में नजर आएंगे। ये पूरी जगह भर गई है, जबरदस्त यहाँ पर नारेबाजी लगातार होती रही है हमने देखा कि, और जैसे ही यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ, कैसे आप माता की जय, वंदे मातरम, ये नारे यहाँ से लगाए जा रहे हैं, यानी कुछ ही मिनटों में यहाँ की तस्वीर बदल गई। जैसे ही करीब 2:30 बजे के आसपास जैसे ही ये खबर यहाँ पर पहुंची, लोगों ने यकीन नहीं किया, क्योंकि आप देखिए नेट यहाँ पर स्लो है और लोगों की संख्या देखिए दूर दूर तक आपको जहाँ पर अभी आपकी नजर जाएगी, लोग ही लोग यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में जब खबर आई तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर यहाँ पे फिलहाल कम्युनिकेशन का एक ही साधन है और वो ये देखिए कि यहाँ पर खुद इनके संगठन के लोग ऊपर बैठे हुए हैं, ये पुलिस की ही वैन है, लेकिन यहाँ से कभी पुलिस कभी ये लोग भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर यही से जानकारी दी गई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और उसके तुरंत बाद आप देखिए वहां से अनाउंसमेंट हुआ और ये पूरा इलाका जो है वो तालियों से गूंज उठा। और अब चलो मुबारक हो भाइयों, यहाँ पे ये भी कहा गया कि आप जा सकते हैं, अब देखना ये होगा कि यहाँ पे जो कहा गया उसका कितना असर होता है, क्योंकि दिपके ने कहा है कि अभी 3:30 बजे मीटिंग है उसके बाद देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अब आप देखिए काफी संख्या में जो लोग मौजूद थे बैरिकेड के ऊपर, अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग बैरिकेड से पीछे हटना शुरू हुए हैं, सब लोग जो विक्ट्री का निशान है वो दिखा रहे हैं। सेलिब्रेशन हम कह सकते हैं कि लगातार फिलहाल जंतर मंतर पर चालू है। यहाँ पर जो चाहे वो छात्र थे चाहे जो लोग भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में पिछले दिनों से लगातार हिस्सा ले रहे थे वो यहाँ पहुंच रहे थे, वो यहाँ पर फिलहाल आपको उन सभी की खुशी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो थे, अब आप ये तस्वीरें देखिए, कोई कहीं नाच रहा है, आप वो देखिए सामने आपको एक छोटे से ग्रुप में लोग नाचते हुए दिखेंगे, कहीं कोई झंडा लेके घूम रहा है, कहीं कोई बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लिए घूम रहा है। तो ये प्रोटेस्ट साइड है, कोई भारत का झंडा है, कोई बाबा साहब की तस्वीर, कहीं कोई फ्लैग कार्ड लेकर के। तो ये तमाम लोग हैं, ये तस्वीरें हैं, अलग अलग रंग है ये जंतर मंतर का। जो सीधी तस्वीरें मैं आपको यहाँ जंतर मंतर की दिखा रहा हूँ, आप सोचिए कि ये संसद मार्ग है जिसपे इस वक्त फिलहाल ये गोल चक्कर है। और यहाँ की तस्वीर अगर हम कहें पिछले एक महीने से ये पूरी तरीके से काबू में नहीं थी। बुधवार की शाम तकरीबन 8:30 बजे यहाँ की स्थिति बदली थी जब 2 ACPA के इंस्पेक्टर को चोट लगी थी। 2:00 बजे फिर यहाँ की तस्वीर बदली थी जब अचानक से कुछ पत्थरबाजी हुई, उनको कंट्रोल करने के लिए माइक बल का उपयोग करना पड़ा। तो आपको अगर हम बताएं तो अब जैसे ही अनाउंस हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो यहाँ पर पूरी तरीके से तस्वीर बदल गई है। ऊपर पीछे से आप देखिए वहां से अनाउंस किया बीच की जगह खाली कर दो, ये लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि ये जो बीच में है ये जगह आप खाली कर दो, क्योंकि एक जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके कुछ लोग जो संभालने काम कर रहे हैं, हालांकि वॉलंटियर की जानकारी नहीं थी, वॉलंटियर बहुत ज्यादा नहीं थे इनके पास। जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर पहुंच रही थी वो अनाउंस कर रहे हैं कि कम से कम बीच की जगह जो जगह आप देख रहे हैं वो खाली किया जाए। देखिए बीच की जगह खाली करवाई जा रही है, आप देखिए ये जो बीच की जगह है वो खाली कराई जा रही है, यानी जो सेफ्टी कंसर्न भी अगर हम कहें तो राजीव यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रखा जा रहा है। कई बार माहौल यहाँ पर खराब हुआ था, कई बार गतिरोध हुई थी, तो उन्हीं सबको देखते हुए क्या डिसाइड होता है रुकेंगे कि जाएंगे, उसके पहले किसी तरीके से और माहौल ना खराब हो इसके लिए लोगों को बीच की जगह से खाली करने के लिए कहा जा रहा है। और जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल है वही कुछ लोग आगे की तरफ आ रहे हैं और लोगों को बीच की जगह से हटने के लिए कह रहे हैं। आप ये देखिए ये तस्वीरें हैं, तो आप अगर दूर की तरफ मैं आपको दिखाऊं, दूर कहीं देखिए तो जो जहां भी है वो वहीं कहीं किसी गाड़ी से खड़ा है, कहीं खड़ा है, ऊंचाई पर है, तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबके सेलिब्रेशन का तरीका अलग है, कोई नाच रहा है, कहीं म्यूजिक चल रहा है, कोई झंडा हाथ में लिए है, कोई नारेबाजी कर रहा है, तो इस तरीके के सेलिब्रेशन लगातार यहाँ पर जारी। राजीव
1: बिल्कुल हिमांशु बने रहे हमारे साथ। जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं जंतर मंतर की तस्वीर देख रहे हैं, और इसी जंतर मंतर का इस्तीफे के पीछे बहुत बड़ा रोल रहा है, जो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में भी दिखता है कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी था, और ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। वो लिखते हैं अपने पोस्ट में कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। ये वो जो अपने पोस्ट में कह रहे हैं, जंतर मंतर इंपैक्ट दिख रहा है। आपको सुनाते हैं अभिजीत दिबके ने इस्तीफे के बाद क्या कहा।
9: देश के युवा ने दिखा दिया है अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा ले सकती है। तो मैं पूरे देश भर में जो ये लोग आज हमें देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं आज शाम को 6 बजे अपने अपने राज्यों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कैंडल मार्च निकालिए उन नीट के बच्चों के लिए जिनका हत्यारा धर्मेंद्र प्रधान है। रेलिंग टूट जाएगी, सारे लोग पीछे हटिए, रेलिंग टूट जाएगी। रेलिंग से सारे लोग पीछे हट जाइए। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, सुबह हो गए मामो, सुबह हो गए मामो, सुबह हो गई है, डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है। अब इस देश की जनता जाग चुकी है और जैसे कि मैंने कहा था, यह पहला विकेट है, यह पहला विकेट है, यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूं, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहां पर 45 डिग्री की धूप में बैठे हुए थे, बारिश में बैठे हुए थे, पुलिस वालों ने पानी बंद कर दिया तब भी आप लोग बैठे रहे, खाना रोक दिया तब भी आप लोग बैठे रहे। आप लोगों की हिम्मत तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन आप लोगों की हिम्मत तोड़ती नहीं। आई सल्यूट यू ऑल। और मैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं, आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना। मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना, एक इंसान को हीरो बनाने के वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा। तो मुझे कोई भी हीरो नहीं बनाएगा, नारे लगेंगे भारत माता की जय के, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब इंकलाब, वंदे वंदे, जय जय जय जय जय भीम, जय जय जय जय जय भीम, जय जय जय जय जय भीम। और मराठी मीडिया,
1: अच्छा हमारे सहयोगी पूजा शाले भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो इस समय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर हैं। पूजा, 3:30 बजे की मुलाकात बताया जा रहा है कि होनी है, क्योंकि अभी हमने बयान भी सुना है वहां पर सीजेपी के प्रवक्ताओं का, वो कह रहे हैं कि 3:30 बजे का इंतजार करेंगे। क्या कोई मीटिंग हो रही है या नहीं होगी, क्योंकि इस्तीफा तो हो गया है?
10: राजीव, मैं आपको पहला कॉन्फर्मेशन यहां देना चाहूंगी 3 बातों का। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे मीटिंग कंफर्म्ड है, चंद मिनटों में ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा का आगमन एक्सपेक्टेड है। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ यहां पर डिप्लॉयड है, महिला पुलिस कर्मी भी मौजूद है, सीआरपीएफ पर्सनल अंदर तक गेट तक डिप्लॉयमेंट है। कॉन्फर्मेशन आ गई है कि मीटिंग होगी, सीजेपी की स्पोक्स पर्सन जा रहे हैं, सौरभ दास तो आ रहे हैं, क्या उनके साथ आशुतोष आएंगे, अभिजीत दिपके आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे कॉन्फर्मेशन मिला है यहाँ से हमारे सूत्रों से कि इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहला रिएक्शन हो सकता है सरकार की तरफ से जो रेजिग्नेशन आया है धर्मेंद्र प्रधान का, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का, क्योंकि सीजेपी के भी स्पोक्स पर्सन सरप्राइज जरूर हैं। वो भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी सरकार में 2014 से जहां कोई रेजिग्नेशन नहीं हुआ है यहां वो रेजिग्नेशन आता है। लेकिन देखिए सरकार है, सरकार की कोई और स्ट्रैटेजी भी यहां पर हो सकती है, क्योंकि सीजेपी के 3 डिमांड्स थे और वो 3 डिमांड्स ये थे, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन उनको चाहिए था, जो 1 करोड़ रुपए की राशि है वो मिलनी चाहिए कॉम्पनसेशन जो विक्टिम्स को, जिनका स्पेशली जिनके सुइसाइड केसेस हुए हैं, और तीसरा यहां जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ केसेस थे वो वापस लिए जाए, किसी के खिलाफ केस ना हो, पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ स्पेशली। तो इन बाकी दोनों डिमांड्स का अब क्या होगा, क्या अब सरकार कहेगी प्रोटेस्ट खत्म करिए वापस घर जाइए, क्या सीजेपी स्पोक्सपर्सन उसको सुनेंगे? बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑपोजिशन कैसे रिएक्ट करेगी, सदन चल रहा है, क्या सरकार कह सकती है सबसे बड़े पोस्टर जो थे प्रधान को बर्खास्त करो जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लेके चलते थे, क्या वो वापस होगा? सरकार के रिप्रेजेंटेटिव आ चुके हैं राजीव, देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और ये सौरभ दास है सीजेपी के स्पोक्स पर्सन उनके साथ। सौरभ, वन क्वेश्चन, इज दिस अ विक्ट्री फॉर यू? That's a thumbs up, that's a fist bump that's coming from the CJP. आई हैव नेवर सीन द सीजेपी स्पोक्सपर्सन इस तरह से जो उन्होंने अपना हाथ दिखा के ऊपर ऐसे किया और कहा, एक विक्टोरी साइन दिखाया, सीजेपी को बूस्ट मिला है। पर मोदी सरकार ने अगर ये कदम लिया है कि शिक्षा मंत्री जो है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करते हैं, स्ट्रैटेजी अगले क्या होगी? मैं इंतजार कर रही हूं मंत्रियों के आने का, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगी कि किस तरह का ये मैसेज है, कैसे सरकार ने कदम लिया। क्योंकि देखिए सिर्फ सीजेपी की बात नहीं है, मैं बार बार कह रही हूं पार्लियामेंट सेशन ऑन है, ऑपोजिशन ने सबसे ज्यादा कॉर्नर सरकार को किया है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन पे। अब अगर वो रेजिग्नेशन हो गया है, बर्खास्त हो गए हैं, तो अब ऑपोजिशन के पास क्या मुद्दा है? क्या सरकार कहेगी आइए जो बिल्स हमें पास करने थे अब वो बिल्स पास करते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन को लेकर हो, चाहे वो वंदे मातरम बिल हो, और जो बाकी डिस्कशन है वो होनी चाहिए। तो सरकार की क्या स्ट्रैटेजी अब इस पे हो सकती है? अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से या ऑपोजिशन की तरफ से अभी ज्यादा बड़े रिएक्शन नहीं आए हैं। बीजेपी स्पोक्सपर्सन आ चुके हैं और उनकी हंसी जो थी वही सब कुछ बयां कर रही है। जो हंसी जो थी, मैंने सौरभ दास को देखा, आशुतोष को देखा, और जब मैंने उनसे सवाल पूछा अगला क्या कदम है, आप बैठेंगे या जाएंगे, कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसे करके उन्होंने एक जो है अपनी तरफ से एक स्टेप दिखाया। तो ये दिखाता है कि सीजेपी को एक बूस्ट मिला है। पर देखिए सरकार के दो सीनियर मंत्री, MOSPMO, एक पार्टी के चीफ रहे हैं, JP नड्डा मंत्री रहे हैं, ये दोनों सीनियर मिनिस्टर्स को जब आज सरकार ने भेजा है, क्या आज एक तरह से टेबल्स टर्न हो गए हैं? और आज सरकार क्या कहेगी इन स्पोक्सपर्सन्स को, इस प्रोटेस्ट को, इस धरने को? कि सरकार का कहना है और प्रधानमंत्री के जो खुद वीडियो आए थे कि हम यूथ के लिए केयर करते हैं, हम बच्चों के भविष्य की केयर करते हैं, उस भविष्य के लिए हमने हमेशा कदम, कड़े कदम उठाए हैं, हमने कानून को टाइट किया है, हमने जो रिस्पॉन्सिबल है उनको अरेस्ट किया है। और अब देखिए धर्मेंद्र प्रधान भी,
11: मैं लौट रही हूँ आपके पास शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर। अब सोनम वांगचुक ने अपनी तरफ से बात लिखी है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर, उनका ये पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने लोकतंत्र की जीत इसे करार दिया है। सोनम वांगचुक ने अपने पोस्ट में, हालांकि आपने देखा होगा कि आज जब कॉकरोच जनता पार्टी के मंच से ये जीत दर्ज कराई जा रही है, क्योंकि जाहिर है सरकार झुकी है, छात्रों के आंदोलन के सामने झुकी है, और ये लोकतंत्र, वहां से सोनम वांगचुक का नाम नहीं लिया गया, लेकिन वो ये लिख रहे हैं इट्स अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी उन्होंने लिखा है, और कहा है सीधे सड़कों से, स्ट्रेट फ्रॉम द स्ट्रीट्स, इट्स अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो लिख रहे हैं, यानी सीधा लोकतंत्र, सीधा सड़क से। इसी के साथ कह रहे हैं बड़ी जीत है ये शांति की, और इसी के साथ शांति के साथ पेशेंस, परसिवरेंस। जल्दी से लिए चलते हैं आपको हिमांशु, हमारे सहयोगी जंतर मंतर से जुड़ गए। हिमांशु, क्या स्थिति है इस वक्त?
12: देखिए सेलिब्रेशन जारी है, लेकिन ये बीच की जगह को वॉलंटियर्स ने जो भर जाए तो समझ लीजिए कि आमने सामने की स्थिति आ जाती है, क्योंकि बैरिकेड जिसके इस तरफ हम है, इधर पुलिस है, सामने प्रोटेस्टर्स है, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही क्योंकि जो मेन डिमांड थी वो मान ली गई, तो सेलिब्रेशन की कंडीशन है। आप देखिए यहाँ पर कहीं कोई अभी बताओ कि कहीं डांस चल रहा है, कई तालियां बज रही है, कहीं आगे कोई गाना गा रहा है, कोई झंडे उठा करके डांस कर रहा है, कोई राष्ट्र का झंडा लेके चल रहा है, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से सबका अपना अपना तरीका है जो खुशी व्यक्त करने का, तो वो अपने अपने तरीके से यहाँ पे खुशी व्यक्त करते हुए लोग देखे जा रहे हैं। दरअसल जब ये खबर यहाँ पर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो कोई यकीन नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो है और लगभग ना के बराबर चल रहा है, तो ऐसे में लोगों के पास सीधे कोई इंफॉर्मेशन तब तक नहीं आ रही है जब तक कॉल नहीं आ रही है, लेकिन उस पर रिलायबल कितना विश्वास किया जाए, तो इसलिए ये देखिए जो पीछे पुलिस ने जो ये जगह बना रखी है, यहीं से ही वॉलंटियर ने इसी तरीके से अनाउंस किया, तब लोगों को पता चला कि हाँ धर्मेंद्र प्रधान ने तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद कि सच में इस्तीफा दिया, फिर लोगों ने यकीन किया और ये पूरी जगह जो 2 बजे के आसपास जंग के मैदान जैसी थी वो जगह सेलिब्रेशन में बदल गई। एकदम एक मिनट में ये पूरा माहौल यहाँ पर बदलते हुए देखा मैंने, यहाँ पर कैसे मतलब आप देखिए, आपको दूर तक जहाँ जहाँ आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग नजर आएंगे बैरिकेड के दूसरी तरफ, तो सेलिब्रेशन का अपना तरीका है। लगातार वॉलंटियर चाहते हैं कि ये बीच के जो लोग हैं ये जगह खाली कर दी जाए, एक तरीके से नो मैंस लैंड टाइप की जगह इसको बनाई गई थी, संसद मार्ग का ये हिस्सा है और यहाँ पर आमतौर पर कोई भी नहीं रहा था, जब भी अगर जगह भरी तो समझ लीजिए गतिरोध तय है। जी
11: बने रहिए हिमांशु हमारे साथ, जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है हिमांशु वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मुझे लगता है अब तस्वीरें आ रही है सीधे अभिजीत दिपके इस वक्त वहां पर क्या कह रहे हैं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सुनाते हैं।
13: इस्तीफे नहीं होते हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस्तीफा हो गया है लेकिन हमारी दो और मांगे ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो। तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना। मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा। तो मुझे कोई भी हीरो नहीं बनाएगा। नारे लगेंगे भारत माता की जय के।
14: सल्यूट। दोस्तों इस्तीफे नहीं होते बोल रहे थे और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला इस्तीफा भी होगा, पुलिस वालों पे FIR भी होगा और सरकार भी झुकेगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
13: मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, सुबह हो गए मामों, सुबह हो गए मामू, सुबह हो गई है, डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है। अब इस देश की जनता जाग चुकी है और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है।
11: तो जंतर मंतर पर इस वक्त जश्न है, इसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत करार दिया जा रहा है। इसी बीच आइए आपको बताते हैं बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। बैठकों का दौर चल रहा है इस वक्त राजधानी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हुई है। और माना जा रहा है कि अब जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, थोड़ी देर में ही नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हो चुकी है। वहीं तीसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अमित शाह से बैठक करने के बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मिलेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सौरभ दास, उनके मुख्य प्रवक्ता को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इस इस्तीफे के बाद जो जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं, क्योंकि यहां पर जो प्रदर्शनकारियों में जो छात्र अलग अलग हिस्सों से देश आए हुए हैं। इस बीच प्रियंका वाड्रा क्या बोल रही है, आइए आपको सुनाते हैं।
15: In the way that Mahatma Gandhi taught us, they have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today, this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there, regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhiji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he has been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students, but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. So now, I think this is the beginning, but I'm really, really happy. I got a little bit emotional when I heard this news, because many times in these last 10 or 12 years, I've thought to myself, when are our young people going to wake up? Look what is being done to our country. RSS is filling the entire educational system. Every post, every vice chancellor, the ideology of our forefathers has been broken down. Force is being used against young people, against anybody who raises their voice and protests. So today I'm a very happy person, because the youth of our country has spoken and nobody can ever dare to silence their voice.
11: तो प्रियंका वाड्रा गांधी ये कहती हुई कि बच्चों ने अपने तरीके से अशांति नहीं हो इसलिए वो पैलेट गन भी खाते रहे, बावजूद उसके उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा इस धरने को आंदोलन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने फिर इसका श्रेय राहुल गांधी को भी दिया। थोड़ी देर में जेपी नड्डा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ गृहमंत्री अमित शाह की बैठक होने वाली है, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर निकल चुके हैं। और उसके बाद अमित शाह से चर्चा के बाद जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आशुतोष जी यहाँ पर स्टूडियो में हैं, संगीत रागी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, आपके पास आते हुए, क्योंकि जैसा लगातार आप बता भी रहे हैं आज तक पर कि एमजे अकबर का एक इस्तीफा हुआ था, उसके बाद पहली बार अगर कोई इस्तीफा हुआ है जनता के दबाव में, इतने बड़े आंदोलन के दबाव में, तो वो आज धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है। किस तरह से इसे देखा जाए, समझा जाए?
6: देखिए, बिल्कुल अंजना, जब एमजे अकबर का इस्तीफा हुआ था तब किसी ने उनका इस्तीफा नहीं मांगा था, कोई आंदोलन नहीं हुआ था उसके लिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया,
11: लेकिन आंदोलन चल रहा था हिमांशु।
6: वो आंदोलन
11: मतलब एक मीटू मूवमेंट था और सोशल मीडिया पर उसकी आंच भी बहुत तेज थी, ताप चल रही थी,
6: वो कई लोगों के ऊपर था, लेकिन एमजे अकबर को लेकर स्पेसिफिकली किसी ने भी जो है वो इस्तीफा नहीं मांगा था।
11: हाँ।
6: और कोई राजनीतिक पार्टी का उसमें कोई बयान नहीं आया था, लेकिन सरकार ने स्वतः उससे इस्तीफा लिया था। उनको लगा ये मामला बड़ा है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनका इस्तीफा लिया गया। और उस वक्त के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे प्रिंसिपल सेकेटरी नृपेंद्र मिश्रा, वो उनसे मुलाकात करने गए थे, उनको समझाया, उनका इस्तीफा हो गया था। ये है कि आज जो हालात है, पिछले 20 दिनों से जो है सरकार को ये लगता था कि थोड़ी चीजें जो है वो सुधर सकती है बातचीत के कम्युनिकेशन से। 20 तारीख को जब ये आंदोलन हुआ, मतलब मार्च हुआ संसद तक, और उसमें जिस तरीके से पब्लिक आई संसद तक, ये प्रोटेस्टर पहुंच गए, प्रदर्शनकारी पहुंच गए, तब सरकार को ये लगा बातचीत होनी चाहिए, बातचीत का क्रम होना चाहिए। सरकार की तरफ से कहा गया 24 घंटे बातचीत के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। सोनम वांगचुक से बात हुई, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह वहां मुलाकात करने गए, सीजीपी के प्रोटेस्टर से बात हुई, फिर सोनम वांगचुक से मुलाकात हुई, और सरकार ने एक बैक चैनल बातचीत भी सोनम वांगचुक के साथ की, जिसमें कई सांसदों की इन्वॉल्वमेंट हुई, लॉयर हैं वो दूसरी पार्टी से आते हैं, उनके साथ बातचीत हुई कि ये जो उनका अनशन है इसको तोड़ना चाहिए, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य है वो लगातार गिरता जा रहा है। ये सारी चीजें होती रही बैकड्रॉप से, सोनम वांगचुक का इस्तीफा अनशन जो है वो टूट गया। प्रधानमंत्री की तरफ से 6 बड़े फैसले लिए गए। पहला घोषणा किया गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ। देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वीडियो रिलीज किया कि कल कैबिनेट में एक अमेंडमेंट बिल जो है वो लाया जाएगा, पब्लिक एग्जाम बिल जो है 2024 में कई संशोधन होंगे। और
11: एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मानसून में रोक रही हूँ आपको, दिल्ली रवाना हुए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, अमित शाह से मुलाकात करेंगे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, इस पर कुछ जानकारी है क्या हिमांशु, क्या मामला है?
6: देखिए इस पे अभी तक कोई इस तरीके की कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन आ रहे हैं, कुछ मसला होगा, लेकिन इस प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ अभी तक किस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। अगर दोनों एक साथ एक फ्लाइट से आ रहे हैं तो ये बड़ी चीज है, क्योंकि अभी तक पिछले कुछ समय से ये नहीं देखने को मिलता था कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक ही फ्लाइट से एक साथ दिल्ली आए हों या दिल्ली से जो है फिर से मुंबई गए हों। कुछ चीजें जरूर है,
11: नए मंत्री का चेहरा तो नहीं तलाश है ना इस खबर में?
6: नहीं नहीं नहीं नहीं, देखिए इस नए मंत्री का चेहरा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो वर्तमान मंत्रिमंडल है उसी में से किसी मंत्री को जो है वो ये प्रभार दिया जाएगा, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है। उसके बाद क्या होगा नहीं होगा वो एक अलग विषय हो सकता है, क्योंकि सरकार के 2 साल से ज्यादा का समय हो गया मंत्रिमंडल विस्तार पर। लेकिन अभी
11: मैं टोक रही हूं, एक सेकंड आपको, एक बार आपको सुना देते हैं सौरभ दास ने इस पर क्या कहा है आज इस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर, सुनिए।
14: सल्यूट सल्यूट दोस्तों, इस्तीफे नहीं होते बोल रहे थे, और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला इस्तीफा भी होगा, पुलिस वालों पे FIR भी होगा और सरकार भी झुकेगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
16: मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई है डेमोक्रेसी की, सुबह हो गई है। अब इस देश की जनता जाग चुकी है, और जैसे कि मैंने कहा था, यह पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है।
11: इस्तीफे के बाद ये जश्न की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त जंतर मंतर से देख रहे हैं, प्रदर्शनकारी छात्र सभी वहां पर जश्न मना रहे हैं, इस बात पर उनकी खुशी है। उनका ये कहना है कि जो उनकी सबसे बड़ी मांग थी जवाबदेही तय होने की, अकाउंटेबिलिटी तय होने की, वो पूरी हो रही है। आप दोनों से भी मैं एक रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से चलते हैं हिमांशु, इस वक्त आपका कुछ देर पहले फिर से जो फीड है वो धुंधला आ रहा था, लेकिन अब आप साफ वहां से तस्वीरें जरा दिखाइए। और जाहिर तौर पर जो छात्र लगातार जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे वो इसको एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं।
12: बिल्कुल एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है, और यहां सेलिब्रेशन भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि अब जो ये पूरा इलाका था ये खाली कराने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर लगातार जो वॉलंटियर हैं, लेकिन कुछ लोग जो अंदर ये छात्र हैं वो डटे हुए हैं, कहीं पे नारेबाजी, कहीं पर अब जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं उनको लेकर के भी यहाँ पर अलग अलग, चूंकि देखिए ये कोई एक संगठन या एक जगह से जुटे हुए छात्र नहीं है, इसमें अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं, कुछ छात्र हैं, कुछ छात्र संगठनों के जुड़े हुए लोग हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के दूसरे इलाके से आए हैं। और इतना ही नहीं, 2,500 ऐसे लोगों की पहचान भी हो चुकी है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं और जो इस भीड़ में जो छिपे रहे थे। तो अब देखिए ये जो तमाम अब आपको सेंटर प्लेस में दिख रहे हैं, कोशिश लगातार यही की जा रही थी कि ये जगह खाली हो, क्योंकि यहाँ पर नो मैंस लैंड टाइप का एक अघोषित तरीके से इसको बना के रखा गया था। संसद मार्ग का यह हिस्सा था, सेलिब्रेशन जारी है, किसी ने प्ले कार्ड ले रखा है, कोई देखिए झंडा लहरा रहा है, कोई देश का झंडा लहरा रहा है, कोई बाबा राव भीम साहब अम्बेडकर का कोई फूल लेकर के देखिए V1 हम जीत गए, प्रयागराज वासी थे ये। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अलग अलग तरीके से सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें यहाँ पर आप देखेंगे, तो किस तरीके की ये तस्वीरें आपकी लगातार आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो ये देखिए पत्थर, यहाँ से किसी ने पत्थर चलाया, तो इससे ये साफ जाहिर है कि किस तरीके के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में भी यहाँ से पत्थर चलाए गए हैं। अंजना साफ तौर पर वहां से पत्थर चलाया गया और यही वजह है कि वॉलंटियर भी यहाँ से लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ में असामाजिक तत्व है और वो असामाजिक तत्वों ने हमेशा से माहौल खराब करने की कोशिश की है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने पहले दिन भी पत्थरबाजी की थी, पुलिस के ऊपर अटैक किया था, बुधवार को भी यही कंडीशन थी जब पुलिस के ऊपर अटैक किया गया और अचानक से फिर एक बार उस भीड़ में से पत्थर यहाँ पर निकल के आए। हालांकि खुद जो लोग अंदर थे उन्होंने भीड़ को पूरी तरीके से पीछे ले जाने की कोशिश की और यहाँ पर जो पुलिस है वो ये सतर्क था। आप ये देखिए ये पत्थर है जो अभी अंदर की तरफ से आया है, यहाँ पर वो पत्थर वो सीधे उधर से चला है कि गनीमत है कि यहाँ पर जो लोग थे किसी को सीधे वो पत्थर लगा नहीं। तो आप ये देखिए कि अब अंदर जो लोग हैं वो कंट्रोल यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें किसी तरीके से इस जगह को खाली कराया जाए। और यही थी कारण कि इस जगह पर मैं जैसे बता रहा था कि नो मैन्स लैंड डिक्लेयर था कि एक डिस्टेंस रखा गया था ताकि गतिरोध न हो। तो आप देखिए यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी है उसका कोई एक फिक्स चेहरा नहीं है, अलग अलग तरीके के अलग अलग लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। अंजना,
11: वहीं दूसरी तरफ बैठक होने वाली है। हिमांशु, मैं लौट रही हूँ आपके पास क्योंकि तैनाती पूरी दिख रही है, लेकिन सौरभ दास पहुंच चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो MOS हैं इंडिपेंडेंट चार्ज PMO में, वो दोनों पहुंचने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब उनसे बातचीत करने के लिए। तो तीन सेंटर्स आप कह सकते हैं, एक तरफ तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके साथ गृहमंत्री की मुलाकात हुई है और दूसरी बड़ी बैठक एक हो रही है गृहमंत्री अमित शाह की, जिसमें वो जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ब्रीफ करेंगे कि क्या करना है। वहां से फिर ये दोनों पहुंचेंगे सीधा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जहां पर सौरभ दास पहुंच चुके हैं और वहां पर ये हो रही। वहीं दूसरी तरफ
17: हमारे बहुत लोकप्रिय बहुत सम्मानित विधायक आलम वजीद साहब के मैं परिवार और उनके सभी सगे साथी सहयोगी उन लोगों से मिलकर क्या परिवार के सभी सदस्यों से मिलने का मुझे
11: वीर लेकर इस वक्त मंच पर आप अभिजीत दीपके को देख रहे थे और वहीं पर सामने में जो लोग हैं वो खुशी इस वक्त मना रहे हैं। आशुतोष जी आप कैसे देख रहे हैं इसको?
18: नहीं, मेरा तो स्पष्ट तौर पर मानना है कि ये एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत है। सरकार की जीत हार को मैं उस नजर से नहीं देखूंगा, क्योंकि जब जनता सड़क पर उतर जाए और तमाम तरीके के हथकंडे अपनाने की कोशिश की जाए। अभी मैं सिर्फ आज का अखबार
11: हिमांशु को एक खबर है क्या? जल्दी से।
6: देखिए बिल्कुल अंजना, जो अभी खबर मिली है उसके अनुसार जो है गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है वो जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की मुलाकात खत्म हो गई है। अब से कुछ देर में जो है वो दोनों ही मंत्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचेंगे और सौरभ दास और उनके जो साथी हैं आशुतोष उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि कल जिन तीन मांगों पर चर्चा हुई थी सरकार की तरफ से दो पे एश्योरेंस दे दिया गया था, कितना मुआवजा दिया जाएगा ये नहीं कहा गया था। हाँ, मुआवजे के लिए सरकार तैयार थी। जिन छात्रों पर 20 जून से केस दर्ज हुए हैं अभी तक उनके केस को वापस लेने की भी बात पे आम मोटी तौर पे सहमति बन गई थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे पर दोनों ही मंत्रियों ने ये कह दिया था कि हम इस पे फैसला नहीं ले सकते हैं, जो भी चीजें होंगी हम आपको अपडेट दे देंगे।
11: हालांकि अगर आप याद कीजिए तो सोनम वांगचुक ने जो वीडियो बनाया था उसमें सोनम वांगचुक ने ये कहा था कि मंत्री को लेकर जो फैसला है वो उचित समय पर लिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। आई एम नो वन टू डिक्टेट, ऐसा उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा डिक्टेट नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसमें संकेत मिल गए थे कि कुछ ऐसा आश्वासन दिया गया है, लेकिन उसको फिर पार्लियामेंट सेशन के बाद फेरबदल से मतलब रीशफल से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन ये अपने आप में आज की सबसे बड़ी खबर जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, जल्दी से आशुतोष जी अपनी बात पूरी कीजिए फिर मैं आ रही हूँ रागी जी।
18: मैं इसलिए इस बात को कह रहा था क्योंकि ये लगभग एक अनथिंकेबल बात हो गई थी कि कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर सकता है और उसके बाद सरकार को झुका सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अपना पूरा चरित्र है उसके बारे में कहा जाता है वो किसी के दबाव में नहीं आते, वो दबाव में बड़े फैसले नहीं करते, दबाव में झुकना उनका स्वभाव नहीं है। ऐसे में अगर कोई छात्र जो अमेरिका से यहाँ आता है सबको इकट्ठा करता है और वो छात्र इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद अगर सरकार को झुकना पड़ता है और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ता है तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र की मैं इसको बहुत बड़ी जीत मानता हूँ, ना तो मैं सरकार के हार जीत से जोड़ के देखता हूँ। हाँ, हर सरकार को जवाबदेह होना चाहिए और ये जनता के प्रति जवाबदेही का एक तरीके से प्रमाण है कि आप कितने भी ताकतवर हों, कितना भी बड़ा आपका संगठन हो, लेकिन आपको जनता की डिमांड्स के सामने झुकना पड़ता है और आप झुके हैं, ये अच्छी बात है।
11: संगीत रागी जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं?
19: देखिए, मैं देख रहा हूँ इस तरीके से कि जिस प्रकार से छात्रों का आंदोलन शहर तक पहुँच गया था, मुझे ऐसा लगा या भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि विपक्ष को इसका राजनीतिक फायदा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है और जो जनता और युवा वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी से डिस्कनेक्ट होगी। दूसरी बात कि इसमें जिस प्रकार से अराजक तत्वों का मिश्रण हो रहा था, जिस प्रकार से मुस्लिम संगठनों ने आज कहा कि हम इस आंदोलन के साथ आकर के खड़े हुए हैं, जो किसान यूनियन का उग्राह ग्रुप था उसने कहा कि 27 के बाद हम दिल्ली आ रहे हैं, हम छात्रों के साथ जो है वो आकर के इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अन्य विपक्षी पार्टियां इस संगठन के साथ आकर के और छात्र आंदोलन को हवा दे रही थी, मुझे लगता है कि इससे एक आंदोलन का बड़ा विस्तार होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको प्रियम्प्ट करने की कोशिश की थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये करना ही था तो सरकार को पहले कर लेना चाहिए था।
17: ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और एक बात जो हम सब ने देखा, सीखा, समझा, भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे, लेकिन नई पीढ़ी युवा के लोगों ने ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो नारे आए, किसी का समर्थन रहा हो ना रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है, लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों उनको ठोस बना करके ही, कोई पेपर लीक ना हो और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे।
20: अच्छा, आप पे ये भी आरोप है सर कि
21: आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ी देर में,
17: क्योंकि मुझे उनकी कई बैठक हुई हैं, क्योंकि अंदर बैठक में क्या बात होती है वो तो हम नहीं समझ सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से जो बात आती है और जो हमारे साथी कुछ हैं जो जानकारी देते हैं उसके माध्यम से ही हम कोई बात कह पा रहे हैं, क्योंकि बात हमारे बीच नहीं है। लेकिन पहली बात जो थी विपक्ष की भी ये मांग थी जिसकी वजह से सदन नहीं चल रहा था, स्पीकर महोदय के सामने या अन्य मौकों पर या जो धरने प्रदर्शन हुए, जिन धरने प्रदर्शनों में हम लोग शामिल हुए, यही मांग थी कि छात्र युवाओं की मांगे मानी जाए, जिसमें सबसे पहली मांग यही थी कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वो पूरी हुई है। उसके लिए बहुत बधाई छात्र नौजवानों को जिन्होंने डट करके बिना परवाह किए है हुए, और एक ऐसा आंदोलन जिसका एक्सपीरियंस करने सब जा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे।
22: सर, आज किया गया है, ऐसा नहीं।

0: ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या BHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था।
1: युवाओं का डर था, ये सरकार डर गई विपक्ष से,
0: युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। मैंने देखा नहीं न सुना है, मैंने टिप्पणी क्या हुई है मेरी जानकारी में नहीं।
2: अगले जी क्या कहेंगे आजम खान को, सरकारी फरमान जारी हुआ बुलडोजर चलाने का, क्या कहेंगे?
0: उसके लिए कानूनी लड़ाई, और जो लोग शिक्षा और परीक्षा देखिए।
3: तो अखिलेश यादव को आपने सुना, उनका ये कहना था कि नई पीढ़ी के लोगों ने नए तौर तरीके से सड़क पर आंदोलन करके इंटरनेट के जरिए एक बड़ा आंदोलन किया, और उसके बाद से सरकार आंदोलन में युवाओं के सामने झुकी है, और यही जश्न की तस्वीरें जंतर मंतर से इस वक्त आ रही हैं जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं अभिजीत दीपके के माता पिता क्या कह रहे हैं, उससे पहले लेकिन हिमांशु के पास चल रहे हैं। हिमांशु, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर?
4: जंतर मंतर पर आप देखिए, जो आगे का इलाका है यहाँ पर लोगों को कंट्रोल भी किया जा रहा है, क्योंकि सेलिब्रेशन के बीच में जब हमने देखा कि अंदर से पत्थर चला, तो एक बार फिर से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आगे की तरफ हो गई और हम लोग पीछे की तरफ आ गए, क्योंकि एकदम से किसी ने पत्थर चलाया। अब ये कौन सा वो शख्स था जो सेलिब्रेशन के बीच में भी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इसकी पहचान की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर जो लोग ऊपर बैठे हुए ये लगातार लोगों को यहाँ से गाइड कर रहे हैं कि कहाँ रहना है। सेलिब्रेशन के आप ये तस्वीरें देखिए, ऊपर वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है जिसके ऊपर सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर देखिए साफ साफ कहा गया कि घर जा सकते हो, सारी मांगे पूरी हो गई है, घर जा सकते हो। यहाँ से देखिए अनाउंसमेंट हुआ है अंजना कि सारी मांगे पूरी हो गई, घर जा सकते हो। अब ये देखना होगा कि लोगों पर इसका क्या असर होता है, क्योंकि लोग यहाँ पर जो जटे हुए थे।
3: बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी हिमांशु बता रहे हैं कि मंच से वहाँ ऐलान किया जा रहा है कि अब सभी लोग जा सकते हैं, तीनों मांगे मान ली गई हैं। तो कुछ देर पहले अमित शाह से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह रवाना हो चुके थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक चल रही थी, और माना जा रहा है कि अब ये ऐलान वहां से किया गया है। इस बीच आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर अपना प्रोफाइल बदल दिया है, और जो HRD मिनिस्टर था वो हटा दिया है उन्होंने, अब वो अपने आप को सांसद लोकसभा संबलपुर लिख रहे हैं। हिमांशु बताइए, वहां पर मंच से क्या ऐलान किया जा रहा है?
4: देखिए यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो पुलिस की गाड़ी है, इसके ऊपर लोग जो प्रदर्शन से ही जुड़े हैं, ये लोग यहाँ पे लगातार गाइड कर रहे हैं, और यह आप देखिए मेट्रो स्टेशन सारे ओपन हो चुके हैं, सब लोग अपने घर जाएं, ये यहाँ से बताया जा रहा है। और क्या कह रहे हैं एक बार आप फिर से बोलिए, क्या भीड़ से कैसा
5: बताइए? हमारे सारे स्टूडेंट की मांगे पूरी हो चुकी है और सब अपने घर जाएंगे, और दिल्ली सरकार ने ये सारी मेट्रो स्टेशन के अभी सारी टिकट फ्री कर दिया, सब अपने घर जा सकते हैं, टिकट भी फ्री कर दिया है। और भाई तन मन धन से खड़े स्टूडेंट के साथ, किसी को कोई आंच नहीं, और भारत सरकार भी हमारी गुलाम है, हमारे लिए सेवा करेगी। वैसे हमारे धर्मेंद्र जी बिल्कुल सही थे, पर जब भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि स्टूडेंटों की मांग थी, इसलिए।
4: तो ये देखिए सारी मेट्रो सभी के लिए जो छात्र हैं, मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं, ये जहाँ पे जो लोग यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं भीड़ को, उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया। सामने देखिए ये तस्वीर देखिए कि एकदम से रह रह करके लोगों के बीच
6: सरकार की तरफ से,
3: और ये जेपी नड्डा आप देख रहे हैं इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच गए हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा जो कि इस वक्त सौरभ दास से वहां पर मुलाकात करने वाले हैं, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं।
6: Very categorically, what is the message that the government is sending out with the resignation of Dharmendra Pradhan?

0: और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे हैं जेपी नड्डा और वहां पर मुलाकात होने वाली है सौरभ दास के साथ। अब दिलचस्प यही होगा कि किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ता है, क्योंकि जेपी नड्डा के साथ ये मुलाकात, और अभी से कुछ देर पहले मंच से ये कहा गया था कि सभी मांगे माननी है, अब सभी मांगे मानी जाती हैं या नहीं, और सब पर कंफर्मेशन मिलने के बाद क्या प्रोटेस्ट को खत्म करने की बात की जाती है। हिमांशु, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने वहां से कहा था कि सभी मांगे मान ली गई हैं, क्या वाकई सारी मांगे मान ली गई हैं, ऐसा ऐलान वहां से किया गया है या एक दो लोग चिल्ला रहे थे? हाँ
1: ठीक है, बिल्कुल, या नहीं, नहीं, ये देखिए जो ऊपर आप देख रही हैं, जो गाड़ी के ऊपर जहां से भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है और जो लोग प्रोटेस्ट को यहां से सीधे संबोधित कर रहे हैं, यहां से कहा गया कि सारी मांगे आप लोगों की मान ली गई है, मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। आप देखिए पीछे पुलिस की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट हो रहा है कि मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं, यानी कि सीपी मेट्रो स्टेशन आप जाइए और यहां से अब आप मूव करिए, आगे की तरफ मूव करिए, ये कहा गया है। तो अब इनके पास ये जानकारी पीछे कहां से आई है, ये लोग लगातार अपने लोगों से संपर्क में, और कुछ दिन पहले यहीं से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी जानकारी भीड़ को दी गई थी। अंजना, यहीं से अनाउंस हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और उसके बाद तमाम जो सामने जो लोग हैं ये एकदम से यहाँ सेलिब्रेशन शुरू हो गया था। आप देखिए,
0: ठीक है, अब एक बार ऐश्वर्या के पास चल रही हूँ, आप तस्वीरें वहां से दिखाते रहिए, ये तस्वीरें भी दिखाते रहिए। ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ गई है। ऐश्वर्या, जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह अमित शाह से मिलने के बाद पहुंचे हैं सौरभ दास से बात करने, क्या अपडेट है?
2: देखिए अंजना, मैं बता दूं किस तरीके से चीजें आगे मूव करेंगी, क्योंकि सरकार जिस तरीके से तैयारी करके बैठी है, मंडे को जब संसद सत्र चालू होगा तो ठीक 11 बजे जो अमेंडेड बिल है उसको टेबल किया जाएगा। इस अमेंडेड बिल के अंदर ये कहा गया है कि जो पहले 1 करोड़ का फाइन था उसे बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है, पनिशमेंट को भी 5 साल के बाद अब 10 साल किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है एक कोशिश कर रही है कि एक मिडिल ग्राउंड उस तक वो आए, और सरकार की कोशिश है कि धीरे धीरे करके ये अश्योरेंस दिया जाए, और जिस तरीके से एक जो मेजर डिमांड थी कि नेशन होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, वो हो चुका है, तो आगे किस तरीके से चीजें बढ़ेंगी और सरकार जो है अपना पक्ष पूरी तरीके से सामने रखेगी, कोशिश की जाएगी अंजना कि अगले आने से 3 से 4 घंटे के अंदर सामान्य स्थिति जो है वो सामान्य हो जाए और कहीं ना कहीं अश्योरेंस दिया जाए जो बच्चे बैठे हैं उन लोगों को और सीजेपी को, कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों को ये अश्योरेंस दिया जाए कि हमने आपको जो जो वादा किया है एक एक करके हमने वो सब पूरा किया है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं, आगे भी आपको हमारे ऊपर विश्वास रखना होगा, जो हम अश्योरेंस देंगे उसको हम पूरा करेंगे। अंजना,
0: बिल्कुल, और यहीं से फिर तय होगा। एक बार फिर से जंतर मंतर लिए चलते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे एक तरफ बैठक हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या अब जो ये प्रदर्शनकारी है वो मानेंगे। सरकार के लिए वाकई इस वक्त भी ये बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि एक तो अब देखिए मुआवजा देने का ऐलान, ये अपने आप में, हिमांशु देखिए जो छात्र उनके परिवार वाले भी यहां पर पहुंचे थे, बड़े भावुक होकर टूटे दिल से पहुंचे थे, और उनका जो दर्द है वो कहीं ना कहीं एकदम जैसे इस वक्त लोगों के दिल में बहुत जोर पकड़ रहा था, और ऐसी मांगे मानने में तो सरकार को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है अमाउंट नहीं बताया गया है लेकिन वो तो करना ही है, अब इसमें मांग की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए टेक्निकली आप देखिए तो, ये तो स्वतः ही मतलब ऐसे परिवारों के लिए आगे आना चाहिए। दूसरी बड़ी मांग कि किसी छात्र के खिलाफ कोई केस ना हो, क्या कुछ कहा जा रहा है, पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कुछ ना हो। हिमांशु,
1: देखिए प्रोटेस्टर्स के खिलाफ तो कभी भी जो छात्र हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई की बात पुलिस ने भी नहीं की। पुलिस का कहना था कि जो भी पत्थर चले हैं उनकी पहचान की जाएगी, और देखिए जो अब तक की जानकारी है 2500 से ज्यादा का डाटा निकल चुका है, जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम था जब उसमें जब लोग आ रहे थे उनके सारे जब डाटा डाला गया तो उसमें पता चला 2500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस अलग अलग जगह पे दर्ज हैं, न वो स्टूडेंट है न कहीं उनका पढ़ाई से किसी तरीके का कोई नाता है, तो वो लोग यहाँ किस उद्देश्य से आ रहे थे, जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करने के लिए। अब उनके पीछे कौन थे, क्योंकि यहाँ पर अगर आके अगर आप कानून और व्यवस्था को खराब करते हो, वर्दी को देख के अटैक करते हो, मीडिया के ऊपर अटैक करते हो, तो आपके इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, तो आप पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। करीब 15 FIR दर्ज है और उन FIRों की जांच होगी अंजना, क्योंकि उसमें जो ACP रैंक के अधिकारी है उनके हाथ टूटे हैं, उनके ऊपर एक इंस्पेक्टर है जिनसे खुद मैंने बातचीत की थी, उनका कहना था कि चाकू जैसी नुकीली चीज से उनपे वार किया गया। तो आखिर जो इस छात्र है उसके पास ये चीजें नहीं होंगी, तो ये कौन लोग थे इनका पहचाना जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सड़क पर जो कुछ भी हुआ, चाहे वो 20 जुलाई को हो, पिछले सोमवार से लेकर के आज शनिवार है, और इस दौरान सोमवार को, फिर हमने मंगलवार को छिटपुट देखा, बुधवार को ठीक इसी जगह पर पत्थरबाजी और मारपीट देखी गई जिसमें एसीपी रैंक के अधिकारी इंस्पेक्टर घायल होते, और आज फिर हमने यहां पर पत्थरबाजी देखी, आज फिर हमने देखा कि किस तरीके से पत्थर चले और फिर आंसू गैस के गोले छोड़े पड़े कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हद तो तब हुई जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, जब ये हो गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, तो उसके बावजूद पत्थर आया जब हम आगे मौजूद थे।
0: और ये सवाल तो शुरू से बना ही हुआ है कि जो असल में वहां पर छात्र मौजूद है, जो प्रदर्शनकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, उनमें से कौन से ऐसे लोग घुस गए हैं जो जानबूझकर वहां पर, क्योंकि जाहिर तौर पर जो ईमानदारी से इस मुद्दे पर वहां बैठा है वो ऐसी हरकत नहीं कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, इस वक्त सुनाते हैं अभिजीत दिवके के माता पिता क्या कह रहे हैं।
3: ये बहुत ही अच्छा हुआ, ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा हुआ, उनकी जो मांगे थी वो सरकार ने सुनी, और मैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने रिजाइन देते समय भी बहुत बड़ा दिल दिखाया उसने, कि रिजाइन में भी उन्होंने लेटर में ये लिखा कि अभी जो बच्चे वहाँ पे धरने पे बैठे या दूसरे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये धरना इसके ऊपर ध्यान मत दो, ज्यादा पढ़ाई करो और देश का विकास करो। तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी का भी बहुत बड़ापन है इसमें,
4: बहुत बड़ा काम करा उसने, उसकी उम्र ही क्या है, 29 साल का वो बेटा है, वो कि इतना बड़ा भी नहीं है, इतने छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया, वो तो बहुत गर्व हो रहा है।
5: और सरकार से कुछ कहना चाहूंगा?
4: अभी कुछ नहीं, अच्छा हो गया, सरकार ने जो बच्चे की बात मानी वो बहुत अच्छा हो गया। नहीं ना, अभी वो फोन ही लगा रहे थे, लग रहे नहीं, फिर टीवी लगाया, आज टीवी लगाया हमने, अभी टीवी में उसका ही देख रहे थे। अभी
5: कैसा महसूस हो रहा है आपको?
4: बहुत अच्छा, अभी बहुत अच्छा, नहीं नहीं, माँ बोल के बहुत खुशी हो रही थी।
0: तो माता पिता अभिजीत दीपके के इस बात पर बहुत खुश हैं, और उनका कहना है कि ये सही हुआ है, बच्चों के हित में हुआ है। बड़ी खबर जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वो ये है कि दिल्ली में 18 में से 3 मेट्रो स्टेशन जो है वो खोल दिए गए हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस स्टेशन खोले गए हैं, केंद्रीय सचिवालय का स्टेशन खोल दिया गया है। अब देखते हैं कैसे पूरा मामला आता है, क्योंकि सौरभ दास जब जेपी नड्डा से मिलते हैं, सौरभ दास जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बैठक करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर निकलते हैं, वो क्या बताते हैं बैठक के बारे में, उसके बाद ही कुछ भी साफ कहना होगा कि क्या वो पूरी तरह से इस बात पर राजी है कि सारी मांगे सरकार ने मान ली है, क्या वो इस आंदोलन को कॉल ऑफ करते हैं। पूजा, इस वक्त बैठक चल रही है, और वहीं से जब सौरभ दास निकलेंगे उसके बाद पता चलेगा कि क्या प्रदर्शन को कॉल ऑफ करने के लिए फैसला लिया जाता है कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से, या फिर वो इसको और आगे ले जाते हैं।
6: जी अंजना, मुझे सूत्रों की तरह से बताया गया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शेड्यूल्ड है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या वो सरकार का पहला रिएक्शन होगा, क्योंकि सीजेपी के स्पोक्सपर्सन तो जंतर मंतर से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जो मैंने आज नोटिस करी, कल 2 घंटे तक मीटिंग चली, आज अभी से मंत्रियों की गाड़ी सामने ही रेडी कर दी गई है। क्या इसका मतलब है कि आज जो है वो मीटिंग कम ड्यूरेशन की होगी, या आज भी 2 से 3 घंटे चल सकती है, क्योंकि आज बड़ा दिन है। और मैं आपको बॉडी लैंग्वेज बताना चाहूंगी, जब सीजेपी के स्पोक्सपर्सन आए, कल 2 जने थे आशुतोष सौरभ, आज 4 आए हैं, और उन चारों ने ऐसे करके बड़े जोश में हंसते हुए अपना एक रिएक्शन दिखाया कि उनकी जीत हुई है, वो मान के चल रहे हैं। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा आए, जो सीनियर मंत्री रहे हैं, सीनियर नेता है, उनसे मैंने एकदम सवाल किया आते ही कि क्या संदेश जा रहा है सरकार की तरफ से जब ये इस्तीफा आया है धर्मेंद्र प्रधान का, उन्होंने देखा, सुना सवाल, लेकिन कहा कुछ नहीं, क्योंकि सरकार की भी अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो सब जानना चाहते थे। कि इतना बड़ा अगर डिसीजन सरकार से आया है, मोदी सरकार से, जो एमजे अकबर का डिसीजन था या जो फार्म लॉज वापस ले लिए गए थे, वो इतना बड़ा नहीं था जिस तरह के ये धरने के बाद ये डिसीजन लिया गया है। तो सरकार की स्ट्रैटेजी भी कुछ होगी, क्या ये प्रोटेस्ट एंड होगी, क्योंकि सीजेपी का कहना है अंजना, हम जब तीनों मांगे खत्म होंगी तभी हम हटेंगे, पर सरकार चाहेगी कि ये धरना भी खत्म हो, ऑपोजिशन के इश्यूज भी खत्म हो, तो उसके लिए सरकार किस तरह की तैयारी है। तो जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोई रिएक्शन ज्यादा नहीं किया, सवाल जरूर सुना, लेकिन गाड़ी अभी से रेडी है। तो मैं ये देखना चाहूंगी कि क्या 2 घंटे की मीटिंग होगी आज भी, या आज मीटिंग छोटी है, क्या इसके बाद और राउंड मीटिंग हो पाएगी? और सबसे जरूरी, सरकार का रिएक्शन अभी तक नहीं आया है, तो हम ऊपर जाएंगे कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और उसमें पहला रिएक्शन हम ट्रैक करेंगे कि क्या है नेक्स्ट स्टेप मोदी सरकार का।
0: बिल्कुल। और ऐश्वर्या, इस बैठक देखिए, एक तरफ तो साफ है कि सरकार इस मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात, क्योंकि अभी तक एमजे अकबर, जैसा हम लोग पहले भी बात करते हैं, एमजे अकबर और वो भी मीटू मूवमेंट पीक पर था, एमजे अकबर को लेकर गंभीर आरोप लग रहे थे, उस वक्त उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया था, हालांकि बैक चैनल से जो भी बात उस वक्त हुई थी। लेकिन इस बार जनता के आंदोलन के बाद एक कैबिनेट मंत्री और वो भी धर्मेंद्र प्रधान के कद के नेता का इस्तीफा देना मायने रखता है, यानी सरकार को भी समझ में तो आ गया है कि आंदोलन कितना बड़ा है और ये और कितना बड़ा हो सकता है जिस तरह का समर्थन आ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि बाकी मांगे मानने में भी कुछ ऐतराज होगा। हाँ, जल्दी से राजी
7: ने सवाल उठाया था संसद के अंदर और संसद के गेट के बाहर भी,
6: जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए अंदर कुछ भी लगेगा उसमें सवाल।
0: बोलिए बोलिए
6: उसका जी अंजना, उसका जो कारण है ना वो ये है कि सरकार ये समझ चुकी है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो बैठे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हमने देखा था बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बैरिकेड तोड़ा। मैं जहां पे खड़ी हूँ वहां तक बहुत सारे बच्चे पहुंच गए थे, जस्ट 50 मीटर की दूरी पर संसद भवन है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को पता था कि थोड़े से जो हैंडफुल ऑफ लोग थे उन लोगों ने बैरिकेड तोड़े, लेकिन मेजोरिटी जेन्युइन बच्चे हैं जिनकी मांग जेन्युइन ही थी। नीट का एग्जामिनेशन का जो पेपर था आखिरकार लीक हुआ तो हुआ कैसे, और अकाउंटेबिलिटी आपको सेट करनी होगी। हमने देखा किस तरीके से सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि की जगहों पे भी जेन्युइन बच्चे जो हैं वो सड़कों पे निकल के आ गए थे। सरकार को ये जो गैप था, जो ट्रस्ट डेफिसिट था, उसको पूरा करना था, क्योंकि देखिए अंजना, कहीं ना कहीं यही बच्चे हैं जो आगे चल के आपके मतदाता भी बनते हैं, वोटर्स भी बनते हैं। अगर इनमें नाराजगी होगी तो आगे जाके आपको दिखेगा कि कैसे ये जो नाराजगी है ये वोट्स के अंदर भी तब्दील हो सकती है। आपको वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको खत्म करना है। सरकार ने आज ये जो काम किया है इससे इन्होंने वो कोशिश करी है कि हम 10 कदम चलें, बच्चे भी 10 कदम चलें, ताकि एक मिडिल ग्राउंड जो है, एक मिडिल पाथ पे पहुंचा जा सके।
0: आशुतोष जी, कॉकरोच इज बैक जो उनका पोस्ट हैंडल है उसमें वो ये लिख रहे हैं कि ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया है, लेकिन एक तो वो वही मुआवजे की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ का मुआवजा, और दूसरा कह रहे हैं कि जो पुलिस गूंस, उनके इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस के गुंडों ने जो 20 जुलाई वाले मार्च के दिन गलत काम किया है उनके खिलाफ एक्शन हो। तो ये उनकी दो मांगे भी हैं जिस पर वो चाहेंगे कि सहमत।
8: देखिए, असली मुद्दा जो था वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, बाकी जो दो मांगे हैं इसको सरकार को मांगने में कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होती है। सरकार ने पहले भी इस बारे में काफी हिंट दिया, याद होगा कि जब सोनम वांगचुक ने भी अपना जब तोड़ा था तो उसमें भी यह था कि छात्रों के खिलाफ जितने केसेस वापस लिए जाएं और जो जिन पुलिस वालों ने गलत हरकत की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सरकार के लिए दोनों, बाकी की दोनों मांगे मानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब क्या होगा कि इस पूरे मसले पे हो सकता है सरकार कोई कमीशन बना दे जो एक एक घटना की जांच पड़ताल करे, अगर कोई पुलिस वाला गलत तरीके से काम करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन अब वो सब चीजें बैक बर्नर पर है। जो प्रमुख सवाल था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो इस्तीफा हो गया है और उस इस्तीफे के बाद अब ये आंदोलन के आगे बढ़ने का मुझे कोई बड़ा कारण दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार के लिए जैसे ये कि 1 करोड़ रुपए की का कॉम्पनसेशन, तो 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन कोई बड़ी बात नहीं, मुझे लगता सरकार को वैसे भी देना चाहिए था। और जहां तक पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई कमीशन बनेगा, जुडिशियल कमीशन बनता है या पुलिस का अपना इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें वक्त लगेगा। और अब इस आंदोलन के पास इस जीत के बाद इतनी ऊर्जा तो नहीं होगी कि वो तब तक बैठी रहेगी जब तक कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती।
0: आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हिमांशु, हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जंतर मंतर से। हिमांशु, क्या स्थिति है इस वक्त वहां पे, क्या अपडेट है दिखाइए। लेकिन उससे पहले हिमांशु मिश्रा के पास भी एक बार चलते हैं। हिमांशु, अगर हम बड़ी तस्वीर को देखने की कोशिश करें तो क्या मतलब, हालांकि संगीत रागी जी का ये साफ मानना था कि ये फैसला लेने में देर किया है सरकार ने, लेकिन जो भी वजह रही हो ये बात सच है कि ये फैसला अगर लेना ही था।
9: मेरा मानना था कि आपने पॉलिटिकल एज जो दिया है और इतने कंपल्सन के अंदर दिया तो या तो कैबिनेट का रिसफल आप पहले कर देते तो उस समय बदल दिया जाता तो ये मूवमेंट वहीं पर फिजल आउट हो जाता, या आप सोनम वांगचुंग को यदि क्रेडिट देते तब भी एक लगता कि थोड़ा था एक उसमें प्रतिष्ठा।
0: लेकिन सोनम वांगचुक ने तो अपना अनशन भी खत्म कर दिया, लेकिन हालांकि उन्होंने भी
9: खत्म किया, लेकिन यदि उसी समय यह भी मांग लिया जाता कि यदि कह देते कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हम स्वीकार कर लेते हैं तो भी बात मुझे लगती है कि बन जाती है। और तब फिर जो अभी जो बॉडी लैंग्वेज है सीजेपी के नेताओं का वो इस तरह का नहीं होता, और संभवतः भाषा भी है।
8: मुझे लगता है कि ये सरकार का अब जो वापस लिया ये ज्यादा बड़ा कदम इसलिए क्योंकि इससे परसेप्शन ये जाता है कि आपने जो छात्रों की मांग थी, जो लोगों की मांग थी, जो जेन्युइन मांग थी, आपने उसको स्वीकार किया। आप किसी व्यक्ति विशेष के अनशन का खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे थे। आई थिंक इट्स अ मच बेटर मूव एंड मैसेज देन दिस।
0: लेकिन कृषि कानून पर भी देखिए, जब आंदोलन लगातार चला तो प्रधानमंत्री ने वो तीनों कृषि कानून जो थे वो भी वापस लिए थे। हिमांशु
10: देखिए, क्योंकि जो बात संगीत जी कह रहे हैं कि उस दिन ले लेते, एक बैठक हुई जब सोनम वांगचुक का जो है वो इस्तीफा अनशन जो है वो खत्म हुआ सीजेपी की, जो कल बैठक हुई थी उस बैठक में सीजेपी इस बात को लेकर अड़ गई थी कि ये तीनों मांगे मान लीजिए, अगर आप नहीं मानेंगे तो सोमवार को जो है हम फिर से संसद तक मार्च करेंगे। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं सरकार को लगता था कि बड़ा एक इशू हो सकता है, जिस तरीके से कल मैंने पहले भी कहा महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में दिखा हो, कोलकाता में हो या देश के अन्य कोनों में प्रदर्शन करते हुए नजर आए, वो सरकार के लिए थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं कि इन सब चीजों पे विषयों पर जो है वो बढ़ जाएगा, इसीलिए ये फैसला हुआ। और आप देखिए, मैंने पहले भी कहा 6 ऐसे बड़े फैसले हुए प्रधानमंत्री ने किए, लेकिन आज जब ये बैठक होनी थी उससे पहले मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, ये हिंट आने लगे थे कि जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा हो सकता है अगर इस तरीके से सरकार को संसद का सत्र भी चलाना है, दूसरी तरफ सड़क पर भी अगर इस तरीके के प्रदर्शन होंगे सरकार की इमेज जिससे खराब होती हो, तो ये चीजें सरकार फैसला करेगी। लेकिन समय रहते हुए, हाँ ये बात सही है कि संगीत जी कह रहे हैं कि पहले अगर आपने जो है कैबिनेट विस्तार कर दिया होता तो नम वांग चुक के उस पे कर दिया होता, लेकिन जो बात आशुतोष जी कह रहे हैं ना वो ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को क्रेडिट
11: कौन थे, धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक थे, एक सिंबल थे इस देश की बहुत निम्न स्तरीय शिक्षा प्रणाली के, इस देश की बेरोजगारी के, इस देश में शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के, पुलिस बर्बरता के और सरकारी संवेदनहीनता के प्रतीक थे। ही वॉज अ सिंबल of corruption in education, he was a symbol of the failing education system, he was a symbol of paper leaks, he was a symbol recently of course of police brutality, of apathy of the government of India, but let's be very clear, he was just a symbol. Ladai sirf symbol se nahi thi, ladai sirf symbol se nahi hai, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं रहेगी, ये लड़ाई सिस्टम से थी, है और रहेगी। उस सिस्टम से जिस सिस्टम ने 21 जानों को लील लिया, अ सिस्टम विच फोर्स 21 पीपल टू कमिट सुसाइड इन फ्यू मंथ्स, 93 स्टूडेंट्स टू कमिट सुसाइड इन 5 इयर्स, इट इज दैट सिस्टम वी आर फाइटिंग, इट इज दैट सिस्टम दैट द यूथ ऑफ दिस कंट्री इज फाइटिंग। It is not symbols. जुल्म की हजार लाठियों पर भी हौसले की एक आवाज काफी होती है, यह साबित करके दिखाया इस देश की नौजवान पीढ़ी ने। ना केवल उन लोगों को, बच्चों को खदेड़ा गया, लाठियों से पीटा गया, आंसू गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन्स चलाए गए, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, शॉक बेटन्स का इस्तेमाल हुआ, ना केवल यह हुआ, उनकी आवाज उठाने वाले नेताओं को सड़कों पर घसीटते हुए हमने देखा, अपने राहुल गांधी जी को घसीटते हुए हमने देखा, प्रियंका गांधी को घसीटते हुए हमने देखा, आप सब ने देखा। यह उस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। देश की जेन जी ने, युवाओं ने अपने हौसले और साहस से एक बहुत ही घमंडी सरकार के घमंड को चूर चूर कर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, फिर चुप्पी हो गई, फिर रात को 12 बजे रील्स आने लगी, फिर फ्रेंड्स बन गए वो लोग, लेकिन घमंड टूटते हुए हमने रोज देखा, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, और आज उसकी परिणति यह हुई कि धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, आज राहुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत तरीके से एक बात रखी कि नरेंद्र मोदी अतीत हैं, लड़ाई भविष्य की हो रही है। नरेंद्र मोदी इज द पास्ट, वी आर फाइटिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और बहुत ही दुख की बात यह है कि जो ये पास्ट है ना, ये जाते जाते करोड़ों लोगों का भविष्य तबाह करते हुए जा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जा रहा है क्योंकि जाने की आवाज सुनाई दे रही है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। प्रियंका जी ने भी एक वीडियो निकाला, उसमें बहुत खूबसूरती से ये बात कही, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। आपने तो फ्रेंड्स कह दिया रात को 12 बजे की रील में, लेकिन इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान मोदी जी आपको अपना फ्रेंड नहीं मानते।
0: और ये तस्वीरें इस वक्त की आप देख रहे हैं, जो बैठक चल रही है, सौरभ दास और आशुतोष रांका आपको दिखाई दे रहे हैं, इधर जेपी नड्डा और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ में एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दोनों के साथ ये बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जगह वही और उसी तरीके से आज एक बार फिर ये बैठक वहां पर चल रही है, क्योंकि आज अंतिम फैसला होना है। जो ये सबसे बड़ी मांग थी प्रदर्शनकारियों की कि इस्तीफा हो, और जिसको लेकर एक उहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि क्या इसके लिए वो राजी होंगे, वो आखिरकार हो रहा है, इस्तीफा हो गया है धर्मेंद्र प्रधान का। और उसके बाद अब ये बैठक इस वक्त चल रही है। जो मुख्य मांगे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, वो एक बार फिर से आपको बता दें, क्योंकि उन्होंने पोस्ट में डाला है कि सबसे पहले हम ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है इसको कॉल ऑफ तभी करेंगे जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जो एक एक करोड़ का मुआवजा है वो उन परिवारों को दिया जाए जिनके बच्चों ने नीट पेपर लीक होने के बाद री एग्जाम के पहले अपना आत्महत्या कर ली, जान दे दी। आप सोचिए उन परिवार वालों पर क्या बीती होगी। वहीं तीसरी तरफ इनका कहना है कि पुलिस वाले जो हैं उनके खिलाफ एक्शन हो जिन्होंने ज्यादतियां की हैं, और कोई भी केस प्रदर्शन, जो शांति से प्रदर्शन जिन्होंने किया है उनके खिलाफ वो ना हो। तो कुल मिलाकर, और आपने सुना ही था मंच से, तीन लोगों का, तीन पुलिस वालों का नाम भी अभिजीत दीपके ने लिया है। तो ये दो तस्वीरें हैं, एक तरफ जंतर मंतर में जश्न है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, और वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर जहां पर आपको ये सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं पवन खेड़ा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन आशुतोष जी, अब मुझे लगता है कि अगर आप देखिए तो ये वो सबसे बड़ा फैसला है जिसके बाद ये डेडलॉक खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस पर एक्शन की भी वो मांग कर रहे हैं। तो
8: डेडलॉक आप खत्म मानिए ही मानिए, बाकी चीजें जो होती है, हर आंदोलन में इस तरीके से निगोशिएशंस होते हैं, डील होती है, लेकिन जो असली मुद्दा था उस मुद्दे पर अगर सरकार झुक गई है या सरकार संभल गई है, सरकार ने अगर इस्तीफा ले लिया, तो बाकी के मुद्दे इसमें उतने इंपॉर्टेंट नहीं। आपको अच्छी तरीके से याद होगा अभिजीत दीपके जब वहां से चला है, जब एयरपोर्ट पर आया तब भी उसने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। पहले दिन जब जंतर मंतर बैठा तब उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे तक इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा नहीं हुआ, फिर बोला कि 1 हफ्ते तक हम इंतजार करेंगे फिर इस्तीफा होना चाहिए। तो हर बार सिर्फ एक ही मांग हो रही थी, इस्तीफा होना चाहिए। अब आंदोलन के दौरान जो पुलिस वालों ने जो हरकत की है, जो लाठी चार्ज हुआ है, वो हर आंदोलन में ऑटोमेटिकली या स्वाभाविक तरीके से एक मुद्दा बन जाता है, ताकि जो लोग आंदोलन में हिस्सेदार थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। तो वो सब चीजें, उस पर सरकार को मानने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि कोई भी सरकार होगी जब इस तरीके की बातें होती हैं तो वो सीधे नहीं होता कि गया पुलिस को अरेस्ट, ऐसा कभी नहीं होता है। उसकी जांच पड़ताल होगी, कमीशन बनेगा, और उसमें जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए और होती भी है कार्रवाई। ऐसा नहीं उसमें कार्रवाई नहीं होती, भले ही वो पब्लिक डोमेन में ना हो, लेकिन डिपार्टमेंटल कार्रवाइयां होती हैं, ऐसे लोगों को सेंसर किया जाता है अगर आवश्यकता से ज्यादा है। जैसे कुछ महिलाओं ने आरोप आपत्ति की है कि उनके साथ बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार किया गया, तो ऐसे लोगों को तो सैक किया जाना चाहिए था, ऐसे लोगों की पुलिस डिपार्टमेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये आंदोलनकारी अगर ये समझ रहे हो कल ही वो सारी कार्रवाई हो जाएगी, वो नहीं होने वाला। लेकिन जो फाइनल, जिसे कहते हैं ना क्रॉसिंग द रूबिकॉन, वो हो चुका है, सरकार झुक गई है, सरकार ने इस्तीफा मांग लिया है, तो अब यहां से आंदोलन आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता।
0: एक बार पूरा टाइमलाइन आपको बता देते हैं। 3 मई वो तारीख जब नीट का पेपर हुआ था, 12 मई नीट पेपर लीक की खबर आई और उसके बाद से परीक्षा को रद्द किया गया। 15 मई को कॉकरोच पर सीजेआई का कथित बयान वायरल हुआ, जिसके बाद 16 मई को सीजेपी की स्थापना की गई। कॉकरोच जनता पार्टी बना दिया गया। 6 जून अभिजीत दीप के भारत लौटे और उसके बाद जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ। तो आप सोचिए कि 20 जून से शुरू सीजेपी का जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन कैसे, उसमें सोनम वांगचुक शामिल हुए। सोनम वांगचुक के शामिल होने से एक और पूरी ताकत उस आंदोलन में आई और खास तौर पर जब उन्होंने भूख हड़ताल किया और वो भी इतने दिनों तक अपनी सेहत को इस उम्र में उन्होंने ताक पर रखकर लगातार अनशन किया, उसके बाद से ये मामला आगे बढ़ा। लेकिन शुरू से लेकर अब तक एक वो मांग जो साफ साफ उठाई जा रही थी वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी और उसको मानने के बाद ही हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको कनेक्ट कीजिए, सीधा लिए चलेंगे आपको जंतर मंतर। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार दोनों से रिएक्शन ले लेते हैं, हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ हिमांशु। और ये मतलब एक तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और जिस तरह से आज भी खबर आ रही थी कि जो छात्र वहां पर इकट्ठा हुए थे भारी तादाद में हुए थे वो अब जंतर मंतर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो एक स्थिति साफ थी, दबाव बहुत ज्यादा था और ये घटता हुआ नहीं दिख रहा था। सोनम वांगचुक के अनशन को तोड़ने का प्रयास भी इस प्रदर्शन को रोकने में सफलता नहीं ला पाया, ये साफ दिख रहा था।
10: देखिए बिल्कुल इस पे कोई दो राय नहीं है सोनम वांगचुक का, क्योंकि परसों देर रात जब अनशन खत्म किया गया तो सरकार को लगता था एक बड़ी जीत जो है वो सरकार को मिल गई है और दूसरे राउंड की बातचीत जो है वो सीजेपी के साथ कल दोपहर हुई, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। उसमें 3 मांगे कही गई थी, सरकार 2 मांगों पे तैयार हो गई थी। एक, जो छात्र हैं उनके ऊपर केस नहीं होगा 20 जून से अभी तक जो भी छात्रों के हुआ है, और उसके साथ साथ जो है 1 करोड़ पे जो मुआवजा है जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके परिवार को, रकम तय नहीं थी लेकिन सरकार प्रिंसिपली उस पे एग्री कर गई थी। लेकिन तीसरी बात जो
0: आपको टोक रही हूं, बहुत दिलचस्प बात इस वक्त संजय राउत कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का यह दावा है कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह फडणवीस ले सकते हैं। आप दोनों इस पर हंस क्यों रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, सुनिए क्या कह रहे हैं।
12: धर्मेंद्र जी के जगह पर देवेंद्र जी आ सकते हैं, मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी के जगह पर देवेंद्र जी आ सकते, मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी के जगह पर देवेंद्र जी आ सकते।
9: सोनम वांगचुक के बाद जो है ये भूख हड़ताल पर बैठेंगे, हंगर स्ट्राइक पर संजय राउत ही बैठेंगे।
0: अच्छा, आपका कुछ अलग ही एंगल था। नहीं, मतलब, मैं, बिना मतलब का नहीं। अब देखिए क्यों ये, क्या गलत है, अब अगर सही हो गई खबर तो फिर वो हंसेंगे आप पर।
9: मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी जो प्रतिष्ठा या जो धमक देवेंद्र फडणवीस की है वो किसी की नहीं है, और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहां जीत दिलाई है उसमें वहां बदलना ये कभी भी खतरे से खाली नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं देखी जा सकती है। देवेंद्र फडणवीस के बारे में बहुत सारी बातें की गई थी, भाई उनको अध्यक्ष बना करके यहां पर लाया जा सकता था, लेकिन ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ये इस खबर में कोई दम नहीं है। संजय राउत एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा करते हैं,
8: बट लेकिन अंजना मोदी है तो मुमकिन है, वो अप्रत्याशित फैसलों के लिए जाने जाते हैं।
0: हिमांशु
10: जी
8: वो भी हंस रहे हैं।
10: नहीं, देखिए अंजना, जो आशुतोष जी और संगीत जी कह रहे हैं मैं उससे थोड़ा सा डिफर करता हूँ। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, लेकिन संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में कैबिनेट विस्तार की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल नहीं है।
0: लेकिन क्या एक मंत्रालय, वो भी ऐसा इम्पोर्टेंट मंत्रालय, देखिए एडमिशन का टाइम चल रहा है, अभी सब कुछ होना है, इतने दिनों तक क्या मतलब किसी को एडिशनल काम दिया जा सकता है? हाँ, एडिशनल काम तो दिया ही जाएगा।
10: बिल्कुल, एडिशनल जिम्मेदारी जो है वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसी में से एक मंत्री को एडिशनल ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसा पहले भी हजारों उसके उदाहरण होते हैं।
9: नहीं नहीं, इससे तो ये भी एक संदेश चला जाएगा ना अंजना जी, कि आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में या पूरे संसद के अंदर माने एनडीए में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शिक्षा मंत्री बन नहीं
0: सकता।
9: तो मतलब
0: लगता है कि कैबिनेट भी अब आप ही डिसाइड करेंगे।
9: नहीं, नहीं,
0: बैठे,
9: मैं,
0: बैठे।
9: मैं नहीं डिसाइड करता हूं, एक विश्लेषण कर रहा हूं।
0: चलिए ठीक है,
8: प्रोफेसर को तो बनाया जा सकता है ना शिक्षा मंत्री।
0: आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा, इस वक्त मेट्रो स्टेशन जो खोले जा रहे हैं वहां से ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं सुशांत।
13: बीजेपी के प्रोग्रेस के चलते पिछले 3 दिनों से लगातार बंद पड़े दिल्ली मेट्रो के गेट को जो है वो फिलहाल खोला गया है। तीन मेट्रो स्टेशन है जिसमें राजीव चौक सेंट्रल सेक्रेटेरियट और मंडी हाउस के गेट्स को जो है वो खोल दिया गया। ये तस्वीरें राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की है जहां पर तमाम जो स्टूडेंट्स पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर जुटे हुए थे मेट्रो स्टेशन बंद होने के चलते उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब फिलहाल ये गेट जो है वो खोले गए हैं। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तमाम जो सुबह से ही जितने प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस जंतर मंतर और हजारों की भीड़ आज सुबह से ही जो है वो जंतर मंतर पर देखने को मिल रही थी, जैसे ही रेजिग्नेशन आया उसके बाद से ही लोगों में एक जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा था। उसके बाद से अब धीरे धीरे तमाम जो स्टूडेंट्स दिल्ली और अलग अलग इलाकों से जो है वो आए थे वो फिलहाल अब धीरे धीरे मेट्रो के जरिए जो है वो वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 16 से 18 मेट्रो स्टेशन पिछले तीन दिन से बंद पड़े थे, उनमें से अब तीन मेट्रो स्टेशन को जो है वो फिलहाल खोला गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे कनॉट प्लेस में आपको जबरदस्त भीड़ जो है वो यहाँ पर नजर आएगी और पुलिस का फोर्स भी जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि आज भी जो है एक बार एक घटना होती हुई नजर आई थी जिसमें पथराव जो है वो हुआ था। लेकिन अभी आप देखिए कि ये जो रास्ता है सीधा जंतर मंतर की तरफ जाता है कनॉट प्लेस से होता हुआ, भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा और पुलिस के तमाम आला अधिकारी और पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो अब धीरे धीरे लोगों से घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और कई सारे छात्र जो है वो यहाँ पर आपको मौजूद नजर आएंगे कि किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो इस वक्त यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि आज भी जो है वो टॉलस्टॉय मार्ग पर एक बार फिर से पथराव हुआ था। ऐसे में फिर से इस तरीके की घटना ना उसको लेकर के पुलिस जो है वो अब लोगों को वापस जाने की अपील करती हुई जो है वो नजर आ रही है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। सीजीपी के प्रोटेस्ट के चलते पिछले तीन
0: तो हमारे सहयोगी सुशांत की आप रिपोर्ट देख रहे थे, कई मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। अगर जंतर मंतर से कोई कनेक्ट होता है तो लिए चलिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं अभिजीत दीप के, देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर और वहां पर जश्न, कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी मना रहे हैं और सामने जो युवा मौजूद हैं, जो प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, वो सब भी एक बड़ा जश्न मनाते हुए। हम लोग कैसे एडिशनल चार्ज अभी दिया जाएगा क्योंकि जब तक संसद चल रही है तब तक कैबिनेट में फेरबदल नहीं किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान, हालांकि मैं आपको पूरा टाइमलाइन बता रही थी कि कैसे 19 जुलाई को, ये जो 20 जुलाई को इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें आप देखिए कि संसद मार्च जो हुआ पुलिस के साथ झड़प हुई और उस दिन सबसे बड़ा आप कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट इस पूरे आंदोलन में आया, क्योंकि फिर यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति के इन्फ्लुएंस से आगे निकल चुका था। छात्रों का जो गुस्सा था, प्रदर्शनकारियों का था, वो सारे आगे बढ़ रहे थे और लेकिन कई जगहों पर जो पुलिस की लाठियां चली उसकी वजह से उनका गुस्सा और बढ़ा। कई ऐसे एलिमेंट्स भी इस आंदोलन में उस दौरान घुस गए जो दूसरी तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे आंदोलन की पूरी क्रेडिबिलिटी को। तो तरह तरह से ये मामला बढ़ते गया और उसके बाद 21 जुलाई को सोनम वांगचुक को शाम सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज कर गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में ले जाया गया था। उसके बाद से ये पूरा घटनाक्रम है। 22 जुलाई को फिर देखिए राहुल गांधी ने पेपर लीक पर सरकार को घेरा और वो सीधा प्रधानमंत्री आवास तक भी गए 23 जुलाई को राहुल गांधी। 24 जुलाई को देशभर में सीजेपी का प्रदर्शन हुआ और 25 जुलाई को आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। ये बड़ी खबर हम इस वक्त की आपको बता रहे हैं ऐश्वर्या। और अब यहीं से क्या ये डेडलॉक खत्म होगा इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि अब कम से कम मंडे को जब संसद चले तो संसद वाकई चले।
2: बिल्कुल अंजना, और सरकार की पूरी कोशिश यही होगी कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जितना जल्दी हो सके इन चीजों को शांत किया जा सके, जो अश्योरेंस है वो दिया जाए। और अश्योरेंस के साथ सरकार ये बोलेगी कि आप इसको सिर्फ हमारा मुंह जुबानी अश्योरेंस मत मानिए, आप जो हमने करके दिखाया है, धर्मेंद्र प्रधान का आपकी जो एक डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं। कहीं ना कहीं अंजना देखिए, मंडे को सरकार की जो योजना थी वो ये है कि 11 बजते ही, जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही चालू होगी, सरकार चाहती है कि जो अमेंडेड बिल है उसको टेबल किया सके और वो चाहती है कि विपक्ष उनके साथ आए अमेंडेड बिल के अंदर, जहां पे ये लिखा हुआ है कि 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा अगर किसी भी तरीके का कोई भी पेपर लीक आगे होता है, तो जो लोग हैं उनको 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा, 10 साल की उनको सजा होगी। तो सरकार चाहती है कि विपक्ष को भी एक पेज के ऊपर लेके आए, विपक्ष के साथ मिलकर इसको पास कराया जाए और एक जो जिस तरीके का एक भ्रम था बच्चों के अंदर, अगर हम बात करें जो यूथ है, जो युवा है, जिनको लगता है कि सरकार हमारी बात ही नहीं सुनती, जी कोशिश यही है कि सरकार ये बोले कि कहीं ना कहीं हम आपकी बात सुन रहे हैं और हमने एक्शन ले लिया।
0: और सारी नजरें इस वक्त जंतर मंतर पर हैं, और वो इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से निकलने के बाद सौरभ दास कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बताएंगे कि क्या वो आंदोलन खत्म कर रहे हैं नहीं खत्म कर रहे हैं। देखिए हिमांशु, जंतर मंतर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीन चार बड़े कदम जो सरकार ने उठाए हैं उसमें सबसे पहले तो कानून को मजबूत करना, 10 करोड़ का हम मुआवजा ये जुर्माना लगाएंगे, 10 साल की सजा का प्रावधान करना, 47 अधिकारियों को वहां से बर्खास्त करना, फिर शिक्षा सचिव को वहां से तबादला करना, और अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। लेकिन छात्र और उनकी मांगों में ये शामिल है, 1-1 करोड़ का मुआवजा उन परिवारों को जिनके बच्चे गए हैं इसमें, और वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भाई जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ एक्शन हो।
1: जी बिल्कुल, देखिए, और लेकिन उसके बावजूद अगर मैं इस समय करंट की आपको यहां पर तस्वीर दिखाऊं तो आप अगर पीछे की तरफ जो भीड़ थी वो धीरे धीरे यहां से कुछ कम होना शुरू हुई है, क्योंकि लगातार यहां पर जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन खोल दिया गया है, सरकार ने मांगे मान ली है और अब आप जा सकते हैं।
0: तो कुछ जो छात्र
1: थे या जो पेरेंट्स थे जो लोग यहां पर पहुंचे हुए थे तो कुछ संख्या में देखिए अनाउंसमेंट लगातार जो लोग वॉलंटियर इनकी तरफ से थे और ये इनकी तरफ से जुटे हैं और हमने देखा था वो शुरू से ही भीड़ को कंट्रोल करना हो, बीच का जो हिस्सा है उसको खाली करना हो, तो सीजेपी की तरफ से ही जो लोग यहां पर उपलब्ध थे वही अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। तो उनकी अनाउंसमेंट यही है कि मेट्रो खोल दी गई है, और पीछे की तरफ से कुछ लोग अगर आप देखेंगे तो जो भीड़ थी वो हल्की हुई है, क्योंकि कुछ लोग जो आपको यहां से जाते हुए नजर आएंगे इक्का दुक्का लोग इस तरफ से जाकर के राजीव चौक की तरफ गए, क्योंकि राजीव चौक का मेट्रो खोला गया, बीच का हिस्सा जो था जो हमेशा से खाली रखने की बात थी उस हिस्से को भी देखिए पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया। और अभी लेकिन बहुत सारे जो युवा हैं छात्र हैं कुछ वो अभी डटे हुए हैं, लेकिन कुछ आप देखिए ये आपको जो भीड़ जाते हुए नजर आ रहे हैं ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आगे अब दूसरी तरफ से ये रास्ता है और आगे मेट्रो है राजीव चौक है जहां से ये जा रहे हैं, लेकिन कुछ अभी पूरी तरीके से डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं इंतजार है कि जब ये सामने जो आप सामने देख रहे हैं ये सामने जंतर मंतर का इलाका है जो बैरिकेड लगा और बैरिकेड के दूसरी तरफ वहां पर जब पहुंचेंगे जो लोग केंद्रीय मंत्रियों से बात करके सौरभ दास और राका तो उसके बाद वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं। जाहिर तौर पर कुछ लोग उसके लिए भी रुके हैं, कुछ लोग इसलिए रुके हैं कि शायद वो दूर के हैं, तो अब ये कोशिश तो यही है जहां पे ये लोग थे कि
14: इन रीबिल्डिंग आवर एजुकेशन सिस्टम इट्स अ सिंबॉलिक स्टेप because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still two demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind. Education Minister Dharmendra Pradhan.
0: तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, राहुल गांधी भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर की जो तस्वीरें आ रही हैं और मुझे लगता है वहीं पर सीधे लिए चलते हैं। हिमांशु बताइए।
1: तो आप देखिए ये जो सामने की तस्वीर आप देख रही हैं, तो ये जो संसद मार्ग का इलाका है यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं और दूसरी तरफ जो जंतर मंतर जो सामने का इलाका है वहां पर अभी लोगों की भीड़ मौजूद है, लेकिन काफी हद तक जो इस पूरे इलाके में लोग थे वो धीरे धीरे यहां से जाना शुरू किए हैं, क्योंकि लगातार यहां पर अनाउंसमेंट किया गया कि मेट्रो खुल गई है, मांगे मान ली गई है। सबसे पहले जब यहां पर अनाउंसमेंट हुआ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, क्योंकि उसके पहले जब यहां पर बताया जा रहा था अंजना तो कोई यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि नेट यहां पर एकदम स्लो है, ना के बराबर चल रहा है, तो लोगों के पास अपने पर्सनल मैसेज या अपने व्हाट्सएप तो काम कर नहीं रहे। तो उसके बाद जब अनाउंस किया गया और अनाउंसमेंट में बोला गया कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, तो उसके बाद एकदम से यहाँ सेलिब्रेशन शुरू हुआ और उसके बाद फिर से अनाउंसमेंट किया गया कुछ देर के बाद कि सरकार ने मांगे मान ली हैं और अब मेट्रो स्टेशन भी खोल दिया गया है राजीव चौक का, तो हम यहां से जा सकते हैं। जो जाना चाहते हैं छात्र अब यहां से वो लोग जाना शुरू करें, अब वो अपने घरों की तरफ जा सकते हैं। तो आप देखिए लगातार यहां पर आप देखेंगे तो मूवमेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। जो लोग प्रोटेस्ट में यहां पर पिछले कई दिनों से रोज आ रहे थे, आसपास के थे, दिल्ली NCR के थे या छात्र थे, पास के हॉस्टल्स में रहते थे, युवा थे, किसी संगठन से जुड़े थे, वो सभी लोग जो यहाँ पर थे अब धीरे धीरे वो मूव करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। आप देखिए सामने जो बैरिकेड है आपको संसद मार्ग की तरफ, इस बैरिकेड पे लोग यहाँ पर चढ़े हुए दिन नजर आएंगे। इस बैरिकेड पे आगे की तरफ हालांकि इनकी भी संख्या थोड़ी कम हुई है। पीछे एक वाटर टैंकर है, उस वाटर टैंकर पे कम से कम 25 से 30 लोग अभी कुछ देर पहले चढ़े हुए थे, लेकिन अनाउंसमेंट करके बोला गया कि उस टैंकर से उतरे घर की तरफ चले तो वहां से भी कुछ लोग कम हुए हैं। हालांकि अभी बड़ी संख्या में छात्र यहां पर डटे हुए हैं, जो CJP के तमाम जो प्रोटेस्टर जो लोग गए हुए हैं बातचीत करके, जब वो वापस आएंगे तो एक मैसेज यहां पर उम्मीद है कि वो यहां पर एक स्पीच देंगे, मैसेज देंगे और शायद उसके बाद जो भीड़ यहां पर टिकी हुई है अंजना वो यहां से आगे की तरफ बढ़ेगी। तो एक लेकिन पुलिस उसके बाद चूंकि थोड़ी जो हमने देखा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात के बावजूद यहां से एक पत्थर चल गया था, तो उसके बाद पुलिस सतर्क हो गई थी। भीड़ बहुत ज्यादा थी, बैरिकेड पर एकदम आगे की तरफ भीड़ थी, तो उसके बाद पुलिस ने आगे फिर मोर्चा लिया था। लेकिन अब एक बार फिर से
15: सब लोगों को हो रहा है, मुझे भी तो
0: तस्वीरें सौरभ दास और आशुतोष शांका को आप देख रहे हैं बातचीत करते हुए। तो एक वीडियो जारी किया गया है, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और कोशिश करते हैं आपको सुनाएं क्या बातचीत उसमें हो रही है। शुरू से एक बार प्ले कर दीजिए क्योंकि हल्की फुल्की बातचीत एक दो जगह सुनाई देती है।
15: सब लोगों को हो रहा है, मुझे भी पहले भी था, कल भी था,
16: पहले वायरल में तो कल टाइफाइड था।
15: मेडिसिन डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है आपने से
16: टाइफाइड रिक्वायर्ड रेस्ट ऑल्सो।
15: चलो हो गया हमारे
0: तो तबियत को लेकर पूछताछ हो रही है। मुझे लगता है कि जो टाइफाइड की खबर आई थी उसको लेकर बातचीत हो रही है कि भाई, और सौरभ दास भी कह रहे हैं कि सबकी तबियत अब जिस तरह का मौसम है लगातार ये लोग विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं वहां पर, तो तमाम दिक्कतों का सामना ये लोग कर रहे हैं, उसी पर बातचीत हो रही है और पूछा जा रहा है। छोटा सा वीडियो वहां से जारी किया गया है। हिमांशु वापस आपके पास आ रहे हैं क्योंकि इसी बैठक के बाद ये दोनों क्या बताते हैं इस पर निर्भर करेगा कि आंदोलन कॉल ऑफ किया जाएगा या अभी जारी रहेगा। हिमांशु
1: बिल्कुल जाहिर तौर पर यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए अभी सभी लोग यहाँ पे गए नहीं हैं, अभी आप अगर आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे लोग जो है आपको डटे हुए नजर आएंगे, बहुत सारे लोग। ये देखिए कुछ जा भी रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग बैरिकेड पे, और खास तौर से जो सामने का इलाका है, जो मेन आप जिसे कह सकते हैं कि जंतर मंतर जहां से प्रोटेस्ट की शुरुआत हो रही है, और इसी जगह से थोड़ा सा आगे तकरीबन 75 से 100 मीटर आगे अगर हम जाएंगे तो वहां पर स्टेज बना हुआ है, जिस स्टेज जहां पर सोनम वांगचुक ने इतने दिनों तक हंगर स्ट्राइक किया था वहां पर वो आएंगे, या इस जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं इस जगह पर वो पहुंचते हैं और यहां पहुंच के वो मैसेज देते हैं। तो नो डाउट लोगों को इंतजार है उस मैसेज का कि जब CJP के सौरभ दास यहां पर आते हैं, जो केंद्रीय मंत्रियों से मिलके जब वो आएंगे तो क्या यहां पर वो बोलते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो यहां पर अनाउंसमेंट हो रहा था उसका इंपैक्ट ये हुआ की भीड़ यहाँ से छटनी शुरू हुई, थोड़ी भीड़ यहाँ से जरूर कम हुई, खासतौर से जो छात्र थे, जो आसपास के लोग थे, आप देखिए बैग लेके आप देखेंगे तो अभी भी जाते हुए कंटिन्यू एक भीड़ यहाँ से, ये रास्ता भी पुलिस ने एक पैसेज सा दिया हुआ है क्योंकि ये पूरी जगह जो थी वो पुलिस ने यहाँ पर यहाँ पुलिस की तैनाती थी, तो पुलिस पीछे हट गई और ये पूरा एक पैसेज दिया गया है। राजीव चौक का जो मेट्रो स्टेशन है वो अब खोल दिया गया है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो तमाम जो छात्र हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे की तरफ जो भीड़ बहुत ज्यादा थी, हम अभी अगर कुछ देर पहले की ही बात करते, 2 बजे 2:30 बजे, तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी अंजना, ये पूरी जगह पूरी सड़क पूरी तरीके से भरी हुई थी। और दूसरी तरफ सामने का जो इलाका है जंतर मंतर, हालांकि वो तो अभी भी भरा हुआ है, लेकिन वो भी और इस पूरे इलाके में छात्र ही छात्र, लोग ही लोग नजर आ रहे थे। तो अब देखना ये होगा, सबकी निगाहें खासतौर से ये जो सामने टिके हुए हैं पुलिस अधिकारी लगातार इंतजार कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि जो तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है इस इलाके की सिक्योरिटी को संभालना, वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे और सभी को इंतजार है उस फाइनल डिसीजन का कि क्या कुछ सीजेपी की तरफ से, सरकार का जो ये रुख रहा है अब तक का, आज 2 बजे के बाद से जो तमाम घटनाक्रम हुए हैं उसके बाद सीजेपी अपना क्या रुख अपनाती है, क्या वो अपना जो जो ये इतने दिन से प्रोटेस्ट है उसको वो अब कंप्लीट करती है और फिर उसके बाद उसको बंद करके छात्रों को वापस जाने के लिए कहती है, किसी वजह से या कोई जो बात में अगर कहीं कुछ कमी रहती है उसको देख करके वो यहीं पर टिकने का इरादा करते हैं। तो अभी तो इंतजार है और देखना ये होगा कि कितनी देर में यहां पर पहुंचते हैं। और जो ये लोग हैं, हमने जब इनसे बात करने की कोशिश, इनका ये कहना था कि इंतजार है, तो अभी इंतजार है कुछ लोगों का जिनके मन में, खासतौर से उन लोगों के मन में जिनके मन में संशय है, वो लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। तो एक तरफ तमाम कुछ प्रोटेस्टर्स, कुछ छात्र, कुछ युवा वो डटे हुए हैं, दूसरी तरफ पुलिस डटी हुई है, पैरामिलिट्री फोर्स डटे हुए हैं इस पूरे इलाके को, बीच के इलाके को जहां तक हो सकता है पुलिस खाली करा के रख रही है ताकि आपस में क्लैश की पोजीशन ना हो, एक डिस्टेंस बना रहा है। बड़ी सोच समझ के इस जगह को डिजाइन किया गया था, बुधवार को अगर आप देखेंगे तो यहीं पर क्लैश हुआ था, बहुत जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद आंसू गैस के गोले छूटे थे, पुलिस ने भी बल प्रयोग किया था और उसके बाद जाकर के स्थिति कंट्रोल में हुई थी। आज फिर दोपहर में 2 बजे वही स्थिति उत्पन्न हुई थी और पुलिस को एक बार फिर से भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। अब देखिए सामने कोई डमरू बजा रहा है तो कोई अभी पुराने गेटअप में जिस तरीके से गदा वदा लेकर के कोई घूम रहा है, तो सब लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। कोई प्ले कार्ड लेके घूम रहा है, कोई देश का झंडा लेके घूम रहा है, कोई बाबा साहब की तस्वीर लेके घूम रहा है। तो ये जो जीत लोग मान रहे हैं उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए सबका तरीका यहाँ पर अलग देखने में आया अंजना, कि सब लोग अपने तरीके से इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं सेलिब्रेट कर रहा है। तो फाइनल डिसीजन अब इस ये सेलिब्रेशन जो है किस तरफ आगे बढ़ेगा, ये देखना इंतजार है कि क्या सेलिब्रेशन के बाद अब तमाम लोग, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिसकी वजह से ये पूरा नई दिल्ली का इलाका पिछले कई दिनों से हम कहें कि एक चौक की कंडीशन पे है। आप देखिए कि पिछले कई दिनों से नई दिल्ली इलाके के, आज तो 18 मेट्रो स्टेशन बंद थे सुबह, अब आप सोचिए कि नई दिल्ली से लेकर के बाराखंबा रोड तक, बाराखंबा से लेकर के झंडे वालान तक, झंडे वालान से लेकर के उधर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम मेट्रो स्टेशन बंद थे और इसका इम्पैक्ट इस पूरे इलाके में जो तमाम सरकारी ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, उन सब के ऊपर पड़ रहा था। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक एम्बुलेंस आई है और आप देखिए ये भीड़ की खूबसूरती अभी आपको दिखेगी कि एम्बुलेंस जब आती है तो इतनी तेजी से ये जो भीड़ है एक तरफ छटती है, जगह दिया जाता है, बैरिकेड हटा दिया जाता है और आराम से एम्बुलेंस को निकलने के यहाँ पे नारा। आप देखिए यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है, तो अंजना देखिए ये लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है कि मेट्रो स्टेशन खोल दिए हैं, सरकार ने आपकी सभी मांगे मांग ली हैं, अब आप जाइए। उसके बाद यहाँ जबरदस्त तरीके से ऐसे नारा लगता है, लोग शोर मचाते हैं और कुछ लोग कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें जो है वो आप जंतर मंतर की देख रही है। डमरू एक शख्स बचा रहा है, तो वहीं एक आदमी जो है वो हाथ में गदा और एकदम कॉस्ट्यूम ऐसा जैसा कि पुराने जमाने में वो कॉस्ट्यूम पहन के वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो अपना अपना तरीका लोगों ने अख्तियार करके रखा हुआ है। अब देखना ये होगा कि जो लोग यहाँ डटे हुए हैं वो क्या कुछ सुनकर यहाँ से जाना चाहते हैं। सीजेपी के जो लोग जिन लोगों के कॉल करने पर आए थे फाइनल ही के कहने पर ये जाएंगे शायद, ऐसा ऐसी उम्मीद लग रही है। जी अंजना,
0: ठीक है, एक बार फिर आपके पास आएंगे हिमांशु, क्योंकि सबकी नजर अब जंतर मंतर पर ही है। लेकिन पूजा शाली हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, अब माना जा रहा है कुछ देर पहले एक वीडियो भी रिलीज किया गया है, उसमें ऐसा लग रहा है कि तबियत को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन इस आंदोलन की तबियत आगे कैसे रहती है वो यहीं से पता चलेगा।
6: बिल्कुल सही सवाल आप पूछ रहे हैं अंजना, क्योंकि देखिए सेटअप तैयार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें बोला गया है यहाँ पर आने के लिए। हम नीचे खड़े थे गेट पे जहाँ पे नेता और सीजेपी स्पोक्स पर्सन आए, वहां से शिफ्ट हुआ है। अभी 3 कुर्सियां लगाई गई हैं, तो इसीलिए ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि मंत्री भी आएंगे और सीजेपी स्पोक्स पर्सन साथ में आएंगे, हाथ मिला के कहेंगे धरना खत्म, सबकी विजय हुई है, घर वापस जाओ। क्योंकि देखिए अगर आप उस वीडियो को नोटिस करें तो 4 स्पोक्स पर्सन आए थे, सिर्फ 2 को परमिशन दी गई। जो कंटिन्यू बात कर रहे हैं वो है सौरभ दास आशुतोष, दूसरी तरफ टेबल के बैठे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा। कुर्सियां 3 हैं, तो ये अब हम गेस कर सकते हैं कि यहां कौन आएगा, क्योंकि सीजेपी की तो बात हम सुन रहे हैं, जंतर मंतर पे वो अपने बयान दे रहे हैं, मंत्री का सुनना बहुत जरूरी है। आते हुए भी दोनों नेता ने कुछ नहीं कहा। अभी मुझे कहा गया है कि चांस यही है कि शायद मंत्री भी आएंगे, तो वो सरकार का पहला रिएक्शन होगा इस्तीफा के बाद। लेकिन अभी कल के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूं तो 2 घंटे मीटिंग चली है, अभी ऑलरेडी घंटा भर हो चुका है, क्या इसके आगे और भी मीटिंग होगी? और यहाँ आज सिर्फ मीटिंग के लिए नेता नहीं आए, देखिए जिस तरह से मीटिंग्स चल रही हैं, गृहमंत्री प्रधानमंत्री वीडियोस आ रहे थे, आज जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक पक्का स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे, और वो स्ट्रैटेजी यही होगी कि मैसेज देना कि हमने आपकी बात मानी, अब आप धरना बंद करें। सीजेपी कहते हैं 1 करोड़ रुपए जो मुआवजा है उसको अप्रूव करिए, केसेस जो है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ उनको वापस लीजिए, तभी हम हटेंगे। अब सरकार आगे कैसे बढ़ती है अंजना, ये नेक्स्ट जो रहेगा अगले 1 घंटे में शायद हमको और डिटेल्स।
0: बिल्कुल अगले 1 घंटे में शायद और जानकारी मिले। और 3 कुर्सियां लगाई गई हैं वो बता रही हैं, और अभी क्लियर नहीं है कि कौन कौन यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होता है, तो सभी को इस बात का इंतजार है कि क्या इस बातचीत के जरिए। हालांकि अगर आप देखिए तो जो मांगे हैं 2 ही बातें और थी, एक तो मुआवजे की बात और एक दोषी पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन ना हो पूजा, ये मुख्य 2 शर्तें बची हुई हैं।
6: जी 3 डिमांड्स थी, सबसे पहली थी धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो या उनका इस्तीफा लीजिए, और फिर उसके बाद मुआवजा और उसके बाद केसेस। मैं आपको ये भी कह सकती हूँ जिस तरह से सीजेपी स्पोक्सपर्सन ने बयान दिया अंजना, सबसे पहले ऐसा लगा कि उनको भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जो उनकी सबसे बड़ी डिमांड थी, जो सरकार के सूत्रों से खुद क्लियर कर दिया गया था 24 घंटे पहले कि इस्तीफा तो नहीं आएगा, इस्तीफा जो है सरकार अगर देती है तो वो तो सबसे आसान बात होगी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते। मगर मीटिंग शुरू होने से चंद मिनटों पहले ही एक इस्तीफा आता है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, वो सोशल मीडिया पे डालते हैं, पर वो इस्तीफा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अगर हम ध्यान से पढ़े उसमें स्टार्टिंग से ही धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि मैंने शिक्षक और शिक्षा के लिए अपने स्टूडेंट डेज से काम किया है, वो भी खुद प्रोटेस्टर रहे हैं। फिर वो बताते हैं मई में जब NET के साथ लीक गेट की कंट्रोवर्सी हुई वो बहुत दुखी थे, जुलाई तक उन्होंने री एग्जामिनेशन करके रिजल्ट लाया ताकि किसी का फ्यूचर भविष्य बच्चों का खराब ना हो, क्योंकि उन्होंने ये सब किया उनको लगा कि उन्होंने अपनी तरफ से काम किया है। लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा एंड किस तरह किया, धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कुछ इन्फ्लुएंस पोजीशन पे, कुछ बड़े पदों पे बैठे जो किसी तरह से जो डिस्कोर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स को, उन्होंने बच्चों को मैनिपुलेट किया है, उन्होंने एक जो है नेगेटिव बातें फैलाई हैं जिसकी वजह से मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन्होंने ये कहा और ये माना है कि कुछ तत्व हैं जिन्होंने एक नैरेटिव फैलाया उसकी वजह से मुझे इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो इसीलिए सरकार अब आगे कैसे बढ़ती, मोदी सरकार ने जो आज तक कभी ऐसा बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया वो लिया है, ऑपोजिशन कहती है कांग्रेस सरकार राहुल गांधी के धरने की वजह से ये डिसीजन लिया गया है, पर यूथ को किस तरह सरकार ये मैसेज देगी कि उनकी बात सुनी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अंजना
0: बिल्कुल, हिमांशु जंतर मंतर पर इस वक्त एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दीजिए, और हिमांशु हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, और आप दोनों से एक कमेंट लेकिन लेते हुए, आप तो समझ रहे हैं कि खत्म हो गया, मतलब माइक वाइक हटाने लगे आशुतोष जी, आंदोलन का एक्सपीरियंस है इनको।
17: नहीं देखिए मैं फिर बार बार इसी चीज को दोहरा रहा हूँ,
9: इन्हीं का एंड्रॉइड वर्जन है,
17: मैं एक बात को बार बार दोहरा रहा हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि जिस चीज को लेकर आपका आंदोलन चल रहा था, अगर सरकार ने वो बात मान ली है, अगर वो काम हो चुका है, तो उसके बाद आंदोलन चलने का कोई अर्थ होता नहीं है। बाकी चीजें उसकी उसकी मॉनिटर, लेकिन एक चीज ये है कि इस आंदोलन ने एक बात तो साबित कर दिया है कि अगर आप मनोबल के साथ, अगर आप इच्छा के साथ, अगर आप वाकई में सरकार से लड़ना चाहते हैं तो आप लड़ सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो राजनीतिक पार्टियों की जो क्रेडिबिलिटी वो बहुत लो है। क्या अगर कोई राजनेता धरने पर इस तरीके से बैठता है, क्या कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करती, तब भी लोग इसी तरीके से आते? मुझे इसमें संदेह है। लोगों को लगता है कि राजनीति जो है वो सारी समस्याओं की एक जड़ है। और फिर तीसरी बात क्या है कि ये भारत की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और मैं इसको जिस तरीके से अन्ना के आंदोलन के बाद मनमोहन सिंह की सरकार को लेकर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ था, यहां से मोदी सरकार के लिए वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होगा, अनलेस कि कुछ बड़े कदम उठाए जाएं, कुछ बड़े रिफॉर्म्स उठाए जाएं और लोगों के अंदर यह भरोसा पैदा हो कि जो कुछ भी गड़बड़ियां हुई है उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। खासतौर पर शिक्षा को लेके मैं देखता हूं शिक्षा का बजट लगातार कम होता जा रहा है। शिक्षा के बजट को आपको बढ़ा के 4% 5% करने की जरूरत है। आज शिक्षा आम आदमी या गरीब लोगों की रीच से बाहर हो गया। लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं जिसकी जिसके बारे में तो हमारे जैसे लोग सोच ही नहीं सकते
0: कि फीस ऐसी है कि मतलब कल्पना नहीं कर सकते।
17: और हम लोग जब छोटे थे,
0: आप नीट में ही देख लीजिए, बच्चे निकाल भी लेते हैं तब भी ऐसे अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है आप उसकी फीस ही नहीं दे सकते।
17: बिल्कुल नहीं दे सकते,
0: आप नहीं ले पाते एडमिशन।
17: और
9: अंजना जी ऐसा है कि दो हिस्सा है।

0: बात तो की है कि नरेंद्र मोदी यहाँ से पीछे नहीं, उन्हें आगे नहीं निकल सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए ये संभव हो पाया कि ये एक ऐसा मुद्दा था जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक था उससे भी ये जुड़ा हुआ था। सभी अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम,
1: राम मंदिर का चंदा चोरी मुद्दा भी आपके कोर वोट बैंक से जुड़ा हुआ।
0: मैंने कहा ना कि ये एक ऐसा मुद्दा था जो आप किसी के भी परिवार के साथ जुड़ा हुआ था। तो ये छात्रों के आंदोलन होने के कारण ये नॉन पॉलिटिकल था। मैं मानता हूं इसे पॉलिटिकल आंदोलन था, लेकिन ये नॉन पॉलिटिकल शेप में निकल करके आया और बहुत सारा गांव घर तक, बहुत दूर तक पेनिट्रेट कर गया।
1: मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं ये मानती हूं कि वहां पर बहुत सारे छात्र पहुंचे थे, सिर्फ पॉलिटिकल आंदोलन ये नहीं था।
0: सुन लीजिए,
1: इसी मुगालते में तो इतना टाइम लगा है। फिर अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे पहले रिजाइन करना
0: चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं फिर पहले कह रहा हूं,
1: बहुत सारे जेन्युइन छात्र वहां बैठे हुए।
0: मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। मैंने कहा यदि यही करना था तो पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मैं शुरू से ये बात कहते आ रहा हूं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच में अंतर करना चाहिए। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पॉलिसी डिसाइड करता है, एग्जीक्यूशन का काम परमानेंट एग्जीक्यूटिव का।
1: सुशांत हमारे सहयोगी एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं मेट्रो स्टेशन।
2: जो मेट्रो स्टेशन की एंट्री खोल दी गई है, इसके अलावा सेंट्रल
3: पैरामिलिट्री के जो जवान है वो अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी है उनको घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही कनॉट प्लेस पर जबरदस्त भीड़ जो थी देखी जा रही थी। मेट्रो से तमाम लोग आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन को खोला गया, उसके बाद की ये तस्वीर है कि किस तरीके से कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी। जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे थे, अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो उनको वापस जाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इनर सर्कल की तस्वीर है, अभी भी आपको जबरदस्त प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में माहौल खराब ना हो इसको ध्यान रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अब तमाम लोगों से ये अपील कर रही है कि वो अपने घर जो है वो वापस जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। ट्रैफिक अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो चल रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं रुकावट जो है वो देखने को मिली, क्योंकि प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर जो है वो पहुंचे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोशिश ये है कि इन तमाम रास्तों को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो खोला जाए, ताकि रास्ते में जो लोग हैं, जो लोग घूमने के लिए आ रहे हैं कनॉट प्लेस आ रहे हैं, उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। या तस्वीरें देख सकते हैं कि ये कनॉट प्लेस की तस्वीर है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सुबह से ही ये भीड़ जो है वो नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आपको यहाँ पर पूरे कनॉट प्लेस, ये पूरा ये सीधा रास्ता जो है वो जंतर मंतर की तरफ जाता है, और भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के जो गेट्स हैं उनको फिलहाल जो है वो अब खोला गया है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
2: राजीव चौक मेट्रो स्टेशन
1: आप देख रहे थे सुशांत मेहरा की रिपोर्ट, कैसे वहां पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है और मेट्रो स्टेशंस का खोलकर बच्चों को वहां से जिनको निकलना है उनके लिए जानकारी दी जा रही है। तो अब सवाल यही है कि क्या ये घमासान रुकेगा? क्या कहते हैं सौरभ दास और आशुतोष रांका, जो इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से? क्योंकि इसी बैठक में लगभग आप समझिए कि ये तय हो जाएगा कि क्या वो अब बच्चे मान गए हैं और इसके बाद से क्या आंदोलन खत्म होगा, या वो ये सोचते हैं कि अभी इसको और भी हम जारी रखेंगे जब तक मुआवजा उन परिवारों को वाकई मिल ना जाए, या फिर इसी के साथ साथ जब तक केसेस ना हो। तो अभी अभी देखना पड़ेगा कैसे प्ले आउट करता है। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेज लग गया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मंच तैयार है। आइए आपको सीधे पूजा शाली के पास लिए चलते हैं। पूजा, आज मतलब अगर सारी नजरें जंतर मंतर पर लगातार हैं तो सारी नजरें अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर भी रहेंगी, क्योंकि यहीं से जो अनाउंस होगा वो तय करेगा कि कैसे ये प्ले आउट करेगा। लेकिन दो तीन बातें हैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो पहले जेपी नड्डा के घर पर बैठक, फिर उस बैठक के बाद वापस लौटने पर पूछा गया कि आप लोग कहां थे जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, 20 तारीख की बात है। उसके बाद से एक न्यूट्रल जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर सहमति बनी कि भाई आप वहां पर आइए, और एक स्मूथ रास्ता दोनों के बीच में बातचीत का निकाला गया, जिसकी वजह से सार्थकता से यह मामला आगे बढ़ा है। और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी

0: साहिल जोशी के पास दंगल के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। तो लोकतंत्र में सत्ता कितनी भी अभेद्य क्यों ना दिखे, लेकिन जब देश का युवा सड़कों पर उतरता है तो बड़े बड़े से राजनीतिक दुर्ग की दीवारें दरकना शुरू हो जाती है। और आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से यही दिखाई देता है। नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर पिछले 50 दिनों से जारी देशव्यापी छात्र आंदोलन के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा। 24 छात्रों के भविष्य, उनकी रास्तों की नींद और आंसुओं का हिसाब मांगने सड़कों पर उतरे छात्रों का ऐतिहासिक जीत आज हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जन दबाव के आगे झुककर अपना इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा महज एक मंत्री की विदाई नहीं है, बल्कि इस बात का गवाह भी है कि उस ऐतिहासिक तारीख का, दरअसल क्योंकि 6 जून का, जब जंतर मंतर की तपती सड़कों पर कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले इस आंदोलन की चिंगारी सुलगी थी। पुलिस की लाठियां, पानी की बौछारें और सत्ता की बेरुखी भी इन नौजवानों के फौलादी इरादों को बिल्कुल हिला नहीं पाई। आज जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर हुआ है तो जंतर मंतर पर नारों का वो सैलाब है जिसे देश बरसों तक याद रखेगा। विपक्ष और छात्र संगठन इसे अहंकार पर लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जन आक्रोश को ठुकराने के बजाय जन संवाद की मर्यादा को सर्वोपरि रखता है। और आखिरकार इसी के वजह से क्यों ना हो, लेकिन मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। मोदी सरकार ने देश के भविष्य की सामूहिक चेतना के आगे शीश झुका दिया। इसी जन आक्रोश को शांत करने और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाना शुरू किया है। हालांकि ये कदम पिछले 3 दिन में उठाए गए। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया। 24 जुलाई को एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त किए गए। हालांकि पहले कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अगर इस्तीफा देते हैं तो वो जिम्मेदारी झटकना कहा जाएगा। लेकिन आखिरकार आज धर्मेंद्र प्रधान को भी शिक्षा मंत्री पद से जाना पड़ा। लेकिन इस बीच सरकारी सूत्रों से भी ये खबरें आती रही कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन 3 बजे की डेडलाइन थी और ये 3 बजे की डेडलाइन फॉलो की गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन 48 घंटों में क्या हुआ कि जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और अब देखते हैं कि अभिजीत दिपके ने क्या कहा, क्योंकि जब वो मंच पर थे तब उन्हें फोन पर यह जानकारी मिली कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा वो जरा एक बार देखें।
2: इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे। ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो। ऐसे ही नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना। 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो। तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया, इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए।
1: तो यहां पर कांग्रेस जनता पार्टी अभिजीत दिपके खास करके कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, दो मांगे अभी भी उनकी और बाकी है, और वो दो मांगों का क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे वहां पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल और सरकार के तरफ से दो वरिष्ठ मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, इनके साथ बातचीत चल रही है। पूजा शाली हमारी संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद है। पूजा, दो मांगों का जिक्र अभिजीत दिपके भी वहां पर कर रहे हैं क्योंकि एक मांग नॉन नेगोशिएबल थी, उन्होंने साफ कह दिया था कल कि किसी भी हालत में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। बार बार सरकार के तरफ से कहे जाने के बावजूद भी कि इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा देना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को, लेकिन दो मांगे बाकी है। एक कॉम्पेंसेशन की मांग, 10 करोड़ का कॉम्पेंसेशन वो मांग रहे हैं, एक मांग। दूसरा, जिन छात्रों पर मामले दर्ज किए गए, FIR दर्ज किया गया है, वो FIR भी वापस लेने की बात रखी गई है। क्या दो मांगों का क्या होगा, कब तक चलेगी मीटिंग?
3: देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी कुछ देर पहले तक 3 कुर्सियां लगी हुई थी, हमें ये मालूम था कि 4 लोग हैं उस मीटिंग में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा, सौरभ दास और आशुतोष जंका। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइजर आए हैं और उन्होंने 3 की 4 कुर्सियां कर दी। इसका सिर्फ एक मतलब है और वो है कि यहाँ पर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का अंदेशा है, क्योंकि CJP स्पोक्सपर्सन तो अपनी बात रख रहे हैं जंतर मंतर से। सरकार की तरफ से अभी पहला रिएक्शन नहीं आया है कि जो सरकार के मंत्री हैं वो क्या कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। जब जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए थे और एंट्री कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे, तब मैंने उनसे वो सवाल पूछा था, कुछ नहीं कहा नेता ने, बिल्कुल साइलेंस था उनकी तरफ से। उन्होंने सुना जरूर सवाल, वही सवाल मैं उनसे अब पूछूंगी कि सरकार का क्या संदेश गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर। पर 4 कुर्सियों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंट होगी, उसका मतलब ये है कि क्या कोई एक डिसीजन हुआ है। क्योंकि देखिए, अभिजीत दिपके जो एक चेहरा मान के चल रहे थे हम CJP प्रोटेस्ट का, वो यहाँ नहीं है, वो जंतर मंतर पे हैं। क्या यहाँ पर एक जॉइंट डिसीजन अनाउंस हो सकता है बिना अभिजीत दिपके के, या CJP के स्पोक्सपर्सन चाहेंगे कि वो जंतर मंतर पे ही जाए और वहीं पे अनाउंस करें? लेकिन सरकार है ये, जेपी नड्डा, आपको याद होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
1: एक और एक चीज आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि अभी कोई जॉइंट डिक्लेरेशन वहां पर हो सकता है क्योंकि 5 कुर्सियां वहां पर लगाई गई है, 2 प्रतिनिधिमंडल वहां पर सौरभ दास और अभिजीत रंका वहां पर है और उसके साथ 2 मंत्री है, इन सबकी मिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। लेकिन जरा वो तस्वीरें चलाइए जो आज की तस्वीरें हैं, ये मीटिंग की तस्वीरें जो इससे पहले चल रही थी, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। शक्तिशाली सरकार के 2 मंत्री उनके सामने बैठे हुए और उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और कल की तस्वीरें भी मैंने देखी थी, उसमें मंत्री बैठे थे सोफे पर और जो प्रतिनिधि मंडल आया था उनके लिए 2 कुर्सियां रखी हुई थी और वो ऐसे बैठे थे, यानी दोनों हाथ इस तरीके से पकड़कर बैठे थे। आज दोनों के लिए सोफा रखा गया और रिलैक्स्ड दिख रहा है, यानी बड़ी मांग पूरी हो गई है उनकी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर नजर आ रहा है, दोनों के लिए आज सोफा रखा गया है, कल दोनों को कुर्सी पर बिठाया गया था और दोनों हाथ इस तरीके से एक दूसरे के हाथ पर रखकर ऐसे बैठे हुए थे, आज देखिए रिलैक्स दिख रहा है पूरा एकदम। ये बहुत बड़ा फर्क है बॉडी लैंग्वेज में।
3: ये साहिल, आपने बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे से नोटिस करी। एक और बात, कल जब लिस्ट सामने रखी गई थी CJP की तरफ से, तो सौरभ दास और आशुतोष बहुत हल्का, एक ऑकवर्ड हंसी जिसको कहते हैं, वो दे रहे थे, एक डिस्टेंस था, पर मंत्रियों ने इंश्योर किया कि कैमरा पे दिखे कि एक हैंडशेक हो रहा है, बातचीत हो रही है। आज जब सौरभ दास आए, उनके साथ 3 और स्पोक्सपर्सन थे, मैंने पहला सवाल पूछा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगी? कहा कुछ नहीं, पर उन्होंने ऐसे करके हंसते हुए एक एक पंच दिखाया, क्योंकि CJP का मानना है कि उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री है। पर जैसा आप कह रहे हैं साहिल, याद रखें ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार की हमेशा एक स्ट्रैटेजी रही है और CJP अभी मान के चल रही है कि ये उनकी जीत है। पर क्या मोदी सरकार का नेक्स्ट स्टेप है, वो कैसे इंश्योर करेंगे कि धरना तो खत्म हो पर धरना को और CJP को क्रेडिट उतना ना मिले जितना मैसेज ये जाए कि सरकार यूथ के लिए इतनी बड़ी आउटरीच कर रही है। सरकार ने किसान के लॉ वापस लिए, याद रखिए MJ अकबर ने भी स्टेप डाउन किया, मगर दोनों ही वक्त फार्म लॉस के टाइम मंत्री नहीं हटे, एमजी अकबर के टाइम धरना सोशल मीडिया पे ज्यादा था, सड़कों पर नहीं था। ये सड़कों का धरना है। किस तरह से सरकार की अब स्ट्रैटेजी रहेगी जब यहाँ ज्वाइंट अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड है साहिल, दो यंग जर्नलिस्ट कह लीजिए, प्रोफेशनल्स कह लीजिए, एक्टिविस्ट कह लीजिए, उनके साथ मोदी सरकार के दो सीनियर मंत्री बैठे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे ये पता है, मैंने इतनी क्लैरिटी निकाल ली है यहाँ से कि जो स्पोक्सपर्सन है वो चाहेंगे कि जंतर मंतर पे शायद अनाउंसमेंट हो। क्योंकि याद रखिए सोनम वांगचुक भी हॉस्पिटल में रात को डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा पहुंच गए थे, उनका फास्ट उन्होंने एंड करवाया था। काफी लोगों ने कहा कि ये जंतर मंतर पे क्यों नहीं खत्म किया गया, तो सरकार चाहेगी यहीं पे अनाउंसमेंट हो, सरकार भी नहीं चाहेगी कि अनाउंसमेंट जंतर मंतर पे हो। तो इसीलिए कुछ ही देर की और बात है साहिल, हमारे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर 3 से 4 कुर्सियां कर दी गई है दैट मीन्स एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड है।
1: ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे अनाउंसमेंट करेंगे। जो वहां के स्पोक्सपर्सन हैं उनके या प्रतिनिधि मंडल के लोग हैं वो वहां पर अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि धरना प्रदर्शन तो चल रहा है जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर के प्रदर्शन के वजह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे वहां पर मीटिंग हो रही है। क्योंकि पहले तो सरकार कह रही थी कि घर पे आइए या हमारे दफ्तर पे आइए, लेकिन जब कहा गया कि नहीं कोई ऐसे स्थल पे जाना है कि जो ना घर होगा ना दफ्तर होगा, कोई ऐसे मिडिल ग्राउंड पे हमको मिलना है, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब यहां पर मिला है। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं, नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, नवल किशोर जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से, और अनुप्रिया हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़ रही है, और थोड़ी देर में कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ डॉली शर्मा जुड़ेंगी। पूजा आप भी हमारे साथ बने रही है क्योंकि बड़ी दिलचस्प चीज वहां पर हो रही है, और ये तस्वीरें खास करके नलिन कोहली जी आप अगर देख रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं कि सरकार, शक्तिशाली सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री वहां पर बैठे हुए हैं। कल सोफा पर थे, आज कल कुर्सी पर बिठाया गया था प्रतिनिधिमंडल को, आज दोनों के लिए सोफा है, दोनों की बॉडी लैंग्वेज काफी रिलैक्स लग रही है, और जो नॉन नेगोशिएबल डिमांड थी वो सरकार को माननी पड़ी। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में उसका जिक्र नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं चूंकि वहां पर कोई ऐसी ताकतें जो सरकार विरोधी या देश विरोधी ताकतें उसका फायदा ना उठाए, इसके लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वो दबाव में इस्तीफा नहीं दे रहे हैं इस जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ उसके असली कारण आप बता दीजिएगा नलिन कोहली जी, किस वजह से इस्तीफा दिया है?
4: ये पहलू है और इसको एक एक करके साहिल जी देखें। पहले देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से कभी भी कोई ऐसी मंशा थी किसी को सोफा पे बुलाना नहीं। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने ऐसे रख दिया होगा, चर्चा रही मीडिया में, कोई गलत संदेश ना जाए, क्योंकि वह जब बातचीत हो रही है उसमें कोई ऊपर नीचे दिखाने की बात नहीं है, नहीं तो बातचीत हो ही नहीं सकती है। ये तो भाई हल ढूंढने वाली बात थी। सरकार जो है, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट किया है, हमारी पार्टी ने, सबने स्पष्ट किया है कि भाई छात्रों की जो चिंताएं हैं उसको लेकर तो हम कहीं पर इसमें कोई लड़ाई है ही नहीं। जो चिंताएं उनको पूरा करना है, इसलिए तो एक कानून आया, कानून में संशोधन हुआ है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद लिखा अपने इस्तीफे में कि मैं तुरंत एग्जाम को कैंसिल किया, सबके को इन्वॉल्व करके आपने एग्जाम कराया, रिजल्ट कराया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू जो है जो महत्वपूर्ण है कि छात्रों के साथ किस प्रकार से राजनीतिक दल इसका राजनीतिकरण कर रहे थे, हिंसक बातें हो रही थी, हिंसा हो रही थी, छात्रों के कंधों पे उनकी चिंता ना करते हुए राजनीतिकरण कर रहे थे। तो धर्मेंद्र जी ने स्पष्ट लिखा भी है अपने इस्तीफा पत्र में कि उन्होंने इन कारणों से अपने आप को छात्रों के हितों में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। दूसरी बात, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि छात्र जो है वो अपने भविष्य की चिंता करे, सरकार भी उनकी भविष्य की चिंता करते हैं, उसमें वो अपनी बात रखे, बिना हिंसा के रखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो लोकतंत्र है। लेकिन जिस प्रकार से गुंडे तत्व आए, जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों की पिटाई हुई, जिस प्रकार से चोट लगी, वहां पर पत्थर फेंके गए, गाड़ियों को बर्बाद किया गया, न्यूज़पेपर में आया कि कई लोग जो है पत्थर अपने बैग में उठा के ला रहे थे, ये तो छात्र थे नहीं ना। तो छात्रगण अलग है, जो वहां हिंसक लोग आ रहे हैं, छात्र के जो उनका एक आंदोलन चल रहा है उसमें मिलकर छात्रों के कंधों पर अपने राजनीति और हिंसा कर रहे हैं, वो तो कम से कम कोई इसके साथ आपसे पूछनी है सकता।
1: एक बात नलिन कोहली जी मुझे आपसे पूछनी है, आप कई साल से राजनीति देख रहे हैं, ठीक है, आप कई साल से आंदोलन भी देख रहे हैं, ये पहला आंदोलन नहीं है देश की सड़क पर हुआ है, और पहला आंदोलन नहीं है कि जब छात्र इस तरीके से, युवा पीढ़ी सड़क पर किसी मांग को लेकर उतर आई होगी। इस बात का मुझे मतलब नहीं समझ में आया जो धर्मेंद्र प्रधान उनके जो इस्तीफा का पत्र है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में हम फंसने नहीं देंगे, और इसीलिए उनका कहना है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। जो वहां पर अभिजीत दीप के या फिर जिनके साथ आप वहां पर बात कर रहे हैं, अभिजीत रांका या फिर सौरभ दास, वो जो वहां पर आकर मिल रहे हैं उस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के रूप में, वो किस तरीके के कुचक्र में फंसे हुए हैं, जरा वो मैं समझना चाहता हूं। क्या उनको भ्रमित किया जा रहा है, क्या उनको भ्रमित किया जा रहा है?
4: इसका एक और
1: उनकी मांगे बड़ी साफ नजर आती है वहां पर, नलिन कोहली जी।
4: नहीं साहिल जी, पहली बात साहिल जी आप सही कह रहे हैं, ये छात्रों का पहला आंदोलन नहीं है, हम सब छात्र रहे, आंदोलन में किसी न किसी रूप से हम लोग भी रहे हैं, और लोकतंत्र में बिना हिंसा किए आंदोलन करना इसमें कोई ना बुराई है, ये तो एक अधिकार भी है एक रूप से। राजनीतिक दल भी तो इसी आधार पे आगे बढ़ते हैं, युवा जो हैं अक्सर आए हैं आंदोलन में, लेकिन हिंसा और असामाजिक तत्वों का एक जो एजेंडा होता है वो इसके साथ ना मिले वो एक अलग विषय है। अब आ जाती है कि जो भ्रम की बात कर रहे हैं, इस वक्त एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मूवमेंट किस पे स्टार्ट हुआ, नीट पे। नीट में चिंताएं जो जताई गई और जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई बच्चे आत्महत्या करे, एक पूरा परिवार और एक संसार खत्म हो जाता है, और उस विषय को आगे रखते हुए ये आए भ्रम फैला रहे थे राजनीति। आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी का तो ये मूवमेंट था नहीं, समाजवादी पार्टी का तो नहीं था, आम आदमी पार्टी का तो नहीं था, लेफ्ट फ्रंट की पार्टियों का तो नहीं है, तो ना था ना है। तो ये जो है जो घुस के धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफा मांग रहे, राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो इस भ्रम में ना रहे। धर्मेंद्र जी स्पष्ट कह रहे हैं वो तो राजनीतिक पार्टियों की तरफ वार कर रहे हैं, यदि अगर इसमें कोई ऐसी सोच होती तो सरकार
1: के दो इतने बड़े
4: एक वाक्य भाई साहब, मोदी जी के सरकार के दो इतने वरिष्ठ मंत्री दो बार बातचीत कर रहे हैं, आज दूसरी बार हो रही है, तीसरी बार बात हो रही है, पहले तो नड्डा जी से हुई, फिर दोनों की बातचीत हुई, दूसरी बार जितेंद्र सिंह जी, और दोनों थे अपने दोनों सीजेपी के जो जवान हमारे नौजवान नेता हैं उनके साथ जो बातचीत हुई, ये बातचीत थोड़ी ना होती अगर कोई दोहरी सोच होती, बातचीत छात्रों के साथ अपनी जगह है, राजनीति कांग्रेस आम आदमी पार्टी सपा या अन्य दल है उनके साथ एक अलग बात है। धर्मेंद्र जी का
1: सही बात,
4: निशाना सीधा उस
1: राजनीति अपनी जगह पर है, आंदोलन अपनी जगह पर है, लेकिन इस देश का इतिहास अगर हम खंगाले तो यही नजर आता है कि इमरजेंसी के पहले भी छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था, संपूर्ण क्रांति के पहले वो हॉस्टल के मेस के दाम बढ़े उसके वजह से शुरू हुआ था, और वहां से लेकर करप्शन तक पहुंच गया, और तब भी भाषा सरकार की यही थी कि छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है, कोई गैर सामाजिक तत्व उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए हम वहां पर इमरजेंसी लाना चाहते हैं, और इसीलिए हम इस आंदोलन के खिलाफ हैं, या आंदोलन जब तक छात्र कर रहे हैं तब तक हम उनसे बात करेंगे, लेकिन गैर सामाजिक तत्व और विरोधी पार्टियां विपक्षी पार्टियां, भाषा सेम है नलिन कोहली जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, 35-40 साल के बाद भी जब भी छात्रों का आंदोलन होता है तो भाषा उसी तरीके की इस्तेमाल की जाती है, सरकार भले किसी की हो, यह बड़ी दिलचस्प बात है। डॉली शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई, नलिन जी आपके पास एक बार फिर मैं आऊंगा,
4: बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात कही, मुझे इसलिए मैं कह रहा था बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही, और आपने जिस प्रकार से कहा, लेकिन इसमें फर्क साहिल भाई एक ही है, वो समय और आज के समय में बहुत फर्क है, उस समय लोकतंत्र की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और आज जो है जो लोकतंत्र ऐसा है कि आप उतर के प्रधानमंत्री जी के बारे में अच्छा बोल सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं, लोग जो है इतनी तादाद में वोट करते हैं वो एक अलग है। इंदिरा गांधी जी के समय के इमरजेंसी की जो आप बात कर रहे थे, उस समय आप नहीं थे इतने चैनल, उतना ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ न्यूज नहीं था, हर जगह सोशल मीडिया कुछ नहीं था, तो जो दूरदर्शन कहता था वही सब सुनते थे, और फिर आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग रोबस्ट, जिसको कहते हैं मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, लॉयर हूँ, तो इसीलिए ये लीगल सिस्टम इतना रोबस्ट जो है आज वो उस टाइप का नहीं था, तो बहुत फर्क है।
1: ठीक है, चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता हंस रहे हैं इस पर, तो इनके पास तो मैं जाऊंगा, क्यों हंस रहे थे वो जरा वो पूछना है मुझे उनसे, लेकिन डॉली शर्मा जी, क्या ये एक राजनीतिक घटना है सिर्फ, क्या उस तरीके से हमें इसे देखना चाहिए, या भारतीय लोकतंत्र का बदलता मिजाज यहां पर नजर आता है? क्योंकि आसान बात नहीं है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते से लेकर इस्तीफा देना, मतलब अपनी जिम्मेदारी को झटकने से लेकर 48 घंटे में इस्तीफा होना, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है, और आप अपनी पीठ थपथपाएगी या जो छात्र जंतर मंतर पर बैठे थे उनको क्रेडिट देंगी उसके लिए, वो भी बता दीजिएगा।
5: राहिल जी, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि लाठियां हार गई और सवाल जीत गए, सत्ता झुकी, देश का युवा नहीं, ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, ये बताता है कि किस तरीके से आपने पैलेट गन बच्चों की आंखों में मारी, बच्चों के शरीरों पर डंडे मारे, बेटियों को अलग अलग अलग अलग जगह आपने किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आज देश का युवा जीता है, इस जेंजी की जीत हुई है, और उसने बता दिया है कि अपने लिए जब हम खड़े हैं तो देश के हर वर्ग के लिए खड़े हो सकते हैं, उस हर परिवार के लिए। आज ये इस्तीफा जवाब है जिसके लिए इन्होंने कहा था इस्तीफे नहीं होते हैं इस सरकार में, यूपीए में इस्तीफे होते थे, एनडीए में इस्तीफे नहीं होते। आज युवा की जीत हुई, इस देश के लोकतंत्र की जीत हुई। और आपने कहा ना, राहुल जी ने तो उस दिन भी कहा था कि मैं थोड़ा सा घसीटा गया, उसकी बात नहीं करो, इस देश के युवा की बात करो। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो मेरे नेता कह रहे हैं कि देश के युवा की जीत हुई, हम क्रेडिट कभी नहीं लेना चाहते, न लेंगे। इस देश के युवा की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, ये बता दिया है कि।
1: लेकिन डॉली जी, धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा उस आंदोलन के वजह से नहीं हुआ है, उस आंदोलन का कोई गलत फायदा ना उठाए उसके वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, और ताकि छात्र जाकर पढ़ाई कर सके। वो तो अच्छे मन से इस्तीफा दे रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से छात्रों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, और गैर सामाजिक तत्व इस आंदोलन का फायदा ना उठाए उस तरीके, उसके वजह से वो इस्तीफा दे रहे, वरना नहीं देते वो इस्तीफा।
5: साहिल जी, अगर इतना अच्छा मन था ना, तो जब देश के 20 बच्चों से ज्यादा की आवाज आई कि बच्चों ने आत्महत्या कर ली, परिवार लुट गए, बर्बाद हो गए, कल भी उत्तराखंड में एक पेपर लीक हुआ, तो धर्मेंद्र प्रधान पहले ही इस्तीफा दे देते। 20 तारीख को ये बच्चों के साथ दुर्व्यवहार ना होता, उनकी आंखों पे पैलेट गन ना चलाए गए होते, लाठियां ना भांजी गई होती, उनके लिए पत्थर ट्रक भर के ना मंगाए गए होते, अगर ये उनकी नियत और नीति होती।
1: जी, मैं एक मिनट आपको रोकूंगा, सचिन पायलट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन पायलट जी से मुझे जरा कुछ बात करनी है, जरा 2 मिनट में आपको रुकूंगा। सचिन जी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। जो घटना आज हम देख रहे हैं सचिन जी, आज क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, इस सरकार में 12 साल में ये केवल दूसरा इस्तीफा है। पहला इस्तीफा हुआ था जब मीटू के आरोप लगे थे सरकार के एक मंत्री पर, और उसके बाद उन्हें जाना पड़ा था। लेकिन ये इस्तीफा एक आंदोलन के वजह से इस्तीफा हुआ है। कांग्रेस सरकार के समय पे इस्तीफे हुआ करते थे, इस गवर्नमेंट में इस्तीफा नहीं होती ये कहा जाता था सरकार की तरफ से। कैसे देखते हैं आप इस बात को?
6: पहली बात तो जो इस्तीफा आज हुआ है, हम सब जानते हैं कि सरकार ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन देश के लाखों करोड़ों युवाओं छात्रों ने अपना एक मत जाहिर किया और बिना डरे उन्होंने संघर्ष किया, और हम सब जो मांग कर रहे थे उस मांग को सरकार को पूरा करना पड़ा। और ये बहुत खुशी खुशी नहीं किया होगा, मुझे लगता है बहुत पीड़ा के साथ सरकार ने इस्तीफा करवाया होगा। लेकिन ये इशू किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, मुझे लगता है कि जो उम्मीदें नौजवानों की थी अपनी शिक्षा प्रणाली को लेकर और व्यवस्था को लेकर, उससे बहुत असंतोष था, लोगों में नाराजगी थी, और इसी कारण उनकी इस्तीफे की मांग की गई, क्योंकि बहुत बच्चों ने आत्महत्या की थी और बहुत पीड़ित थे। और मुझे लगता है कि ये एक जीत है नौजवानों की इच्छा शक्ति की, और जो आंदोलन भी किया, पुलिस ने बर्बरता करी, लाठीचार्ज किया, लेकिन जो रिस्पॉन्स था बच्चों का, छात्रों का, संयमित था, बहुत संतुलित था, और उन्होंने एक क्रिएटिव वे में अपनी अपने दुख और पीड़ा को जाहिर किया। ये सब छात्र नौजवानों की मांगों को पूरा होना मुझे लगता है युवाओं की एक जीत है।
1: सचिन जी, आप राजस्थान से आते हैं और इसीलिए सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक का मुद्दा राजस्थान चुनाव के पहले बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। कुछ प्रधानमंत्री वहां की चुनावी सभाओं में राजस्थान में होने वाले पेपर लीक का मुद्दा उठाते थे, और ये कहते थे कि ये पेपर लीक बंद करना है तो बीजेपी की सरकार लाई है, और आज इसी मुद्दे पर उनके सरकार के एक मंत्री को जाना पड़ रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको, क्योंकि राजस्थान में
6: पूरे देश में बहुत खराब है और अनेक राज्यों में हुआ है, कई बार हुआ है, लेकिन पेपर लीक होना एक घटना है, लेकिन उसके रिस्पांस में प्रशासन, सरकार, जिम्मेदार लोग क्या करते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश इस बार जब नीट का पेपर लीक हुआ तो वो दोबारा सीबीआई की जांच होगी, मेरे सारे बच्चों ने आत्महत्याएं की, और जो रीनीट हुआ उसमें 2 लाख बच्चे कम अपीयर हुए, तो ये बहुत ही एक नकारात्मक, और ये मुझे लगता है सब्र का बांध टूट रहा था। ये बात सच है कि पेपर लीक कई जगह हुए हैं, लेकिन जब जब हमको मौका मिला है, किसी को मौका मिला सुधारने की, रिफॉर्म करने की, सख्त कानून बनाने की, लोगों को दंडित करने की पूरी सच्ची कोशिश की गई, इस बार मुझे लगा ऐसा नहीं था। और इस बार जो बहुत जिद और अहंकार सरकार ने जो दर्शाया उसको देखकर और लोगों के अंदर संतोष फैला है, और ये मुझे लगता नहीं अच्छी बात है कि सरकार ने इस्तीफा 12 साल में नहीं कराया। भाई, इंसान अगर कभी गलती करता है, इनकॉम्पिटेंस होता है, तो बदलाव होते रहते हैं, और इस जीवन में सबसे बड़ा सत्य बदलाव ही है। आप बदलाव से मना कर दें, हर बात को नाक का इशू बना लें, जोर जबरदस्ती करें, इंटरनेट बंद कर दें, लाठीचार्ज कराएं, ये मुझे लगता है कि किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए।
1: ठीक है, मैं इसको एक और एक नजर से देख रहा हूं। देखिए 2009 में जब कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आई थी, यूपीए 2 की सरकार बनी थी, तब विपक्ष जिस तरीके से तितर बितर हो गया था और उनके मुद्दे किसी ना किसी तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच रहे थे, एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जो पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल के तौर पर देखा गया, एक नॉन पॉलिटिकल आंदोलन शुरू हुआ, किसी भी पार्टी के झंडे के बिना वो आंदोलन सक्सेस हुआ। इसी तरीके से क्या आज भी हम कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को देखना चाहिए, क्योंकि विपक्ष आंदोलन करता है तो उसका नतीजा यह नहीं निकला है कभी, लेकिन जब कोई नॉन पॉलिटिकल आंदोलन हुआ है जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने किया, क्या यह विपक्ष की भी एक तरीके से विफलता है कि वो इस तरीके का आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के युवा इस आंदोलन को खड़ा कर पाए?
6: कौन सी है, प्लेटफॉर्म क्या है, विचारधारा क्या है, वो इशू नहीं है, मुद्दा क्या है। और वो एक ऐसा मुद्दा था जो पूरे देश को उसने जोड़ा, जज्बातों से जोड़ा, हर घर परिवार में बच्चे बच्चियां जो पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए तलाश रहे हैं। और आप कल्पना कीजिए 12 सालों में, ये हालत आज नहीं हुए, इन 12 सालों में हालात निर्मित हुए कि आज बेरोजगारी भी है, अशिक्षा भी है, लोगों के अंदर कॉम्पिटिशन बैठने की जो इच्छा शक्ति है वो कम हो रही थी। तो इसका एक ऑटोमेटिक फॉलोआउट ये था कि फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गए थे। और हम लोग जो विपक्ष में, सिर्फ एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम विपक्ष के दलों ने मिलकर इस बात को उठाया, पूरे देश में सहयोग मिला। कोई भी इशू हो, अगर वो पब्लिक का इशू नहीं होता, पब्लिक में उसकी सहमति नहीं होती, तो इशू कामयाब नहीं हो सकते हो। और ये तो सिर्फ इतना था कि अकाउंटेबिलिटी तय करनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी है। दुर्भाग्यवश सरकार बहुत लंबे समय तक छुपाती रही, टालती रही, और लोगों को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझा और अपनी इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाई नहीं, इसलिए अंत में।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल और उसके साथ साथ सरकार के मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड ये एड्रेस करेंगे। आशुतोष रांका, सौरभ दास, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया चलते।
7: सर एक और काम कर सकते हैं आशु, अगर सर आप अगर सारे माइक कैच नहीं करेंगे,
8: कर लेंगे
7: हाँ? अच्छा,
8: उनका खुद का माइक एक पूरा कैच
9: पिछले कुछ दिनों में 3 राउंड डिस्कशन सरकार की डेलीगेशन के साथ हमारे हुए हैं। 37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगें थी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन FIRs को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए, और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ ना, के अगेंस्ट ना लिए जाए। और 3री डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग जो इस पूरे प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे FIRs जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे BJP रूल्ड और BJP एलाइज स्टेट्स में, वो FIRs विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकेंड मांग थी, सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो FIRs फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 FIRs दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे FIRs की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है, जो गारंटी है रिटन में। वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये एफआईआर्स के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
10: एफआईआर्स के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
11: तो आप लोग फॉलो अप कर रहे हैं जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन रही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है तो देन वी वुड लाइक टू ऑल्सो विड्रॉ। सर मे बी इफ यू कैन।
12: मित्रों, ये आज हमारे सौरभ दास और लंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबो लबाव ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। आई एम करेक्ट। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वट एवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सब से कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
9: ऑन दैट नोट द कॉकरोच जनता पार्टी डिक्लेयर्स दैट वी विड्रॉ द एजिटेशन इन गुड फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग दैट द एग्रीड अपॉन टर्म्स will be executed within the agreed upon timelines. हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए।
13: प्रदर्शनकारी छात्र आप भी मांग मानेंगे कि आप लोग?
12: चलो हो गया, आप सारी बातें बता दी, हो गया।
1: तो बड़ी खबर, सीजेपी ने अपना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया है। इनो मांगे कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन ने जो सरकार के सामने रखी थी वो मान ली गई है। जो नॉन नेगोशिएबल मांग के तहत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, उसके साथ साथ जो दिल्ली में 15 से 20 FIR दर्ज किए गए थे और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी या उनके अलायंस पार्टनर के शासित प्रदेशों में भी कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो FIR दर्ज किए गए थे वो सारे FIR CJP के साथ शेयर किए जाएंगे और अगले कुछ दिनों में सभी FIR विड्रॉ कर लिए जाएंगे, वापस लिए जाएंगे। ये भी सरकार ने वादा CJP के डेलीगेशन को किया हुआ है। 1 करोड़ के कॉम्पनसेशन की मांग CJP के तरफ से की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि जिन छात्रों ने आत्महत्या की है पेपर लीक के वजह से उनके घर वालों को 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया जाए। उस पर भी सरकार ने नियमों के पर आधारित कॉम्पनसेशन दिया जाएगा ये कहते हुए उनकी मांग भी मान ली गई है। जो 5 मुद्दे रिफॉर्म्स के लिए, परीक्षा पद्धति के रिफॉर्म्स के लिए CJP के तरफ से दिए गए थे, उन मुद्दों पर चर्चा इसके आगे भी चलती रहेगी और जो मांगों पर सरकार की भूमिका का एक ड्राफ्ट दिया गया है CJP के तरफ से वो भी गारंटी के साथ शेयर किया जाएगा CJP के डेलीगेशन को अगले कुछ दिनों में, ये भी सरकार की तरफ से कहा गया। और उसके बाद आशुतोष रांका और सौरभ दास, ये जो प्रतिनिधि मंडल CJP के हैं, उन्होंने उस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये अनाउंस किया कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनकारी वहां पर जमा हुए हैं वो अपने घर लौट जाए और ये प्रदर्शन अब खत्म करने का ऐलान CJP के तरफ से किया गया है। पूजा शाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। पूजा, बड़ी जीत है CJP के डेलीगेशन के लिए, तीनों मांगे मान ली गई है लेकिन उसके साथ साथ गारंटी का लेटर भी मांगा गया सरकार के तरफ से
9: और सरकार से डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें।
14: देखिए हम लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती। हमारे जो डिमांड थे कोई रेवोल्यूशनरी, कोई रेडिकल डिमांड नहीं थे, जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उसकी मांग थी, जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए। एक मिनट, आप बताइए।
15: उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आ गए थे जिनकी वजह से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी।
16: देखिए, इस आंदोलन को तो पहले दिन से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों पर भी अलग अलग टैग्स लगाए गए, एंटी नेशनल बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि देश के युवा ने सच्चाई देखी, इस देश के युवा ने हमारा इंटेंट देखा और जिस मुद्दे के लिए हम लोग लड़ रहे थे उस मुद्दे से सभी लोग रेजोनेट किया और बहुत पीसफुली 37 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद रहे, सब कुछ बहुत पीसफुली हुआ और हमें बहुत खुशी है कि अब हम लोग जब विड्रॉ करेंगे तो वो भी बहुत पीसफुली होगा। देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो भी पॉपुलर जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं बहुत ही पीसफुल पढ़े लिखे सपोर्टर्स हैं, बहुत ही समझदारी से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया। ये बात आपकी सही है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेज के पिछले लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में घुसे हैं जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद ना सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स बल्कि तमाम जो दिक्कतें हमने पिछले 37 दिनों में फेस की है उन सबके बावजूद हम लोग वहां पर डटे रहे, हमारे युवा वहां पर डटे रहे और आज फाइनली 37 दिन बाद हमारी मांगे मान ली
14: गई। इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट घुसाए गए, हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ, रिपोर्टर्स नहीं लेकिन जो मीडिया के ओनर्स है एंड जो एंकर्स है और जो एडिटर इन चीफ है उनको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स उससे लोग खुश नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब युवा ऐसे ही डिमांड लेके आगे बढ़ेगा एंड उस टाइम पे उनका भी आंसरेबिलिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ कि आप जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स हैं और एंकर्स हैं उनको समझना चाहिए कि वो कैसे अपने रिपोर्टर्स को ऐसे रिस्क जोन में भेजते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्यों ऐसे फीलिंग्स हैं। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट में और इस देश में कोई स्पेस नहीं है, ये हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं। सिमरन बताइए।
16: हम लोगों ने अभी जो भी आज सरकार से अलाइनमेंट हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारे पास FIR की कोई भी कॉपी नहीं है, कोई भी FIR की कोई भी कॉपी अभी तक हमें मौजूद प्रोवाइड नहीं कराई गई है, लेकिन जो सरकार से अलाइनमेंट हुआ है कि हमारी प्रोटेस्ट 20 जुलाई का इवेंट और उससे पहले के जितने भी दिन थे और पिछले कुछ दिनों में अगर किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर अगर कोई FIR लॉन्च हुई है तो उसको विड्रॉ किया जाएगा, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस द्वारा बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर भी अगर FIR हुई है तो उन्हें विड्रॉ किया जाए और फ्यूचर में कोई भी ऐसी FIR या कानूनी कार्रवाई प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर्स पर ना करें। बाकी जो डिटेल्स है वो एक बार अगर हमें FIR की कॉपी मिलेगी, रिटर्न स्टेटमेंट सरकार से मिलेगा तो हम इस बारे में
17: जो असामाजिक तत्व है जिन्होंने हिंदू के खिलाफ पुलिस एक्शन ले आना।
18: आप दोनों से सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने जैसे अभी यहाँ से कहा है कि मीडिया के साथ बदतमीजी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, क्या यही बात आपको जब मंच से नहीं कहना चाहिए था?
16: आई थिंक मैम, इफ आई मे आंसर दिस क्वेश्चन हम लोग मैं खुद 37 दिन से मंच संचालन कर रहा हूँ डेली। मैं खुद 5 बार अनाउंसमेंट करता हूँ कि हमें शांति बना के रखनी है, हमें मीडिया से बदतमीजी नहीं करनी है। ये हम लोग खुद अपने लेवल पे इंश्योर किए। और जैसा कि हमने बोला किसी भी प्रकार की कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी प्रदर्शन में, किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम लोगों ने पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें मेंटेन की हैं कि हम लोग पीसफुल रहेंगे और हम संविधान से चलेंगे।
19: बीबीसी एक मिनट बीबीसी की। अच्छा ओके, और कोई क्वेश्चन? एक मिनट रुके, ये पूछ रहे हैं। एक मिनट
20: है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने
16: When we started the sit-in protest on June 20th, we did go to the police, and even after that, we did go to the police and said that please open a communication channel with the government. We would like to talk to them. But that the government only reached out 30 days later was not too good. However, the talks could have happened before that because we were all for talks.
18: Do you believe this could have been organized
19: better? It was
16: very well organized.
19: You have already asked me. एक मिनट सबका क्वेश्चन लेंगे।
21: पार्टियों ने आप लोगों का बहुत साथ दिया और ये हालांकि गांव घर में जुड़कर मिलकर नहीं आए,
19: अरे आप लोग शांति बना गया।
21: सवाल सुन ले,
19: अब सुन नहीं पा रहे तो फिर क्या फायदा।
21: ओपोजिशन पार्टियों ने आप लोगों का साथ दिया, किसान सड़कों पर हैं, जमीन पर बैठे हैं, उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? और एक श्रेय लेने की भी होड़ है कि भाई हमने किया है, संसद को विधान करके रखा है, उनके रोल को इस पर आगे।
16: नहीं सर, हम लोग श्रेय के लिए तो ये लड़ नहीं रहे थे, ये तो हम इस देश के बच्चों के लिए लड़ रहे थे। हम उन 21 परिवारों के लिए लड़ रहे थे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया नीट का पेपर लीक होने के बाद। हम तमाम राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन, किसान संगठन, दलित संगठन, महिला संगठन, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटीज का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को पीछे छोड़कर देश के नागरिक के तौर पर हमारा साथ दिया। ना सिर्फ जंतर मंतर पहुंचकर बल्कि जो भी उनकी बातचीत रही, जो भी उनका कार्डर रहा जिसमें उन्होंने बात चले, तो उन्होंने जिन व्यक्तियों ने भी हमारा साथ दिया है हम उनका स्वागत करते हैं। और जिन भी संगठनों ने, पार्टियों ने अपने अपने लेवल पर भी लड़ाई लड़ी है युवाओं के मुद्दों को उठाने की, हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि पिछले 12 साल से ये हो नहीं रहा था। और हमें खुशी है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस देश के युवाओं को जगाने में और इस देश की जो पूरी पॉलिसी और पॉलिटी है उसको जगाने में।
19: ये जो पीछे
21: पार्टी का पार्टी बनाएंगे क्या आप भी सीजेपी पार्टी का?
16: सर, हमारी हम लोग की जो शुरुआत हुई थी वो इस देश में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए हुई थी। उसका एक स्क्यू जो हुआ, जो सारा फोकस गया, वो गया नीट के पेपर लीक पे, क्योंकि जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके जस्ट अराउंड नीट का पेपर लीक हुआ था। और फिर जो युवाओं का मुद्दा था वो आकर टिका शिक्षा व्यवस्था पर। शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत सिंगल फोकस पॉइंट आया धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म, हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो सिस्टम को जवाबदेह बनाए और जहां जेन्युइनली इस देश का युवा कंफर्टेबल फील करे अपनी आवाज रखने में। अब ये प्लेटफॉर्म अब ये प्लेटफॉर्म क्या शेप और फॉर्म लेता है आगे जाकर, ये मुझे लगता है वक्त बताएगा।
14: मैडम मैडम वाइट में जो मैडम है प्लीज, सी व्हाट वी हैव डेफिनेटली मैनेज्ड इज टू रिस्टोर बेसिक अकाउंटेबिलिटी इन आवर डेमोक्रेसी। आई थिंक इट इज हिस्टोरिक, इट इज अ बिग बिग विन फॉर इंडिया, अ बिग विन फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री, एंड वी हैव रिस्टोर्ड डेमोक्रेसी टुडे। सो ऑन ऑगस्ट 15th this year when we celebrate Independence Day, it will truly be about the youth, because we have managed what we haven't been able to manage in the last 12 years.
21: Pakistan ke 400 surrender kar rahe the,
0: Dilip Prasad bol rahe Pakistan ke 400 surrender kaam kar rahe the, jinhone is protest ke dauran hinsa bhi
14: dekhiye, Delhi police jo bhi kare wo unka kaam hai, unko karna chahiye, lekin aap sabhi se request hai ki foreign ministry ne kal ek statement diya कि कोई भी फॉरेन हैंड या फॉरेन फंडिंग का कोई एंगल नहीं है सीजेपी का और इस प्रदर्शन में, तो प्लीज आप फॉरेन मिनिस्ट्री की भी बात सुने, एबीपी एबीपी एबीपी का
2: पॉलिटिकल पार्टी जैसे इस्तीफा हुआ, हालांकि आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया था, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं कि उसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोगों ने पूरा मूवमेंट शुरू किया उसका क्रेडिट अब हम कोई अपने लेवल पे लेना चाह रहा है?
16: सर हम लोग क्रेडिट लेने के लिए कर ही नहीं रहे थे सर, नहीं हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले ले। देश का युवा बहुत समझदार है, ये वही युवा है जिसको दो महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात भी रख सकते हैं, तो आप उन पर भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है। आई थिंक यू हैव मेड आवर पॉइंट,
22: ये इन पर का ले
23: लीजिए। आपने जो वेबसाइट बनाई जिसमें पुलिस वालों की जो तस्वीरों का जिक्र आप कर रहे हैं, उसका क्या आया और क्या उसी वेबसाइट पे उन अंकरों की फोटो भी अपलोड की जाएगी जिन्होंने बीजेपी का प्रदर्शन खराब करने को,
14: देखिए हमने
23: ताकि आगे कोई प्रदर्शन हो और लोग उन शरारती तत्वों से सर
14: देखिए जो हम लोगों ने स्टेज से अनाउंसमेंट की है हम उसमें अमल करेंगे, जो हम लोगों ने वादा किया उस पर अमल करेंगे, एंड आगे की जो रणनीति होगी अभी हम लोग सब वापस जाके जो कोर टीम है हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आगे लेके जाएंगे इस आंदोलन को, ठीक है।
1: कांग्रेस जनता पार्टी के डेलीगेशन ने सारे सवालों के जवाब दिए, उन्होंने कहा कि आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिश की गई है, उसके साथ साथ ये भी कहा कि कोई पाकिस्तानी हैंडल्स, दिल्ली पुलिस के तरफ के सूत्रों के तरफ से दावा किया गया था कि पाकिस्तानी हैंडल्स इसमें शामिल है, उसका भी जवाब उन्होंने दिया। उनका कहना है कि फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिलीज निकाला गया कि कोई फॉरेन हैंड इस प्रदर्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, साथ में यह भी कहा गया कि एक अकाउंटेबिलिटी की जीत है, उन्हें चाहिए था कि इस देश में अकाउंटेबिलिटी रहे, उस अकाउंटेबिलिटी की जीत है, यह मुद्दा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साथ में रखा हुआ है, और उसके साथ साथ कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते, जिसको लेना है वो क्रेडिट ले सकता है, राजनीतिक लड़ाई को लेकर पॉलिटिकल फाइट को लेकर यह उन्होंने मुद्दा उसमें रखा हुआ है, और उसके साथ साथ युवाओं में हमें सच्चाई देखी, कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से कहा गया, और इसी के वजह से इस आंदोलन को इतना बड़ा जनसमर्थन, युवाओं का समर्थन मिल पाया है। ऐश्वर्या पालीवार और मौसमी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। सबसे पहले ऐश्वर्या, क्या बदल गया 24 घंटे में? 24 घंटे पहले सरकार के तरफ से सूत्रों के जरिए कहा गया था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि जिम्मेदारी झटकना कहा जाएगा, लेकिन आज सीजेपी दावा कर रही है कि अकाउंटेबिलिटी की जीत हुई है। 24 घंटे में सरकार को अकाउंटेबिलिटी कैसे समझ में आई? क्या बदल हो गया 24 घंटे के भीतर?
3: देखिए एक चीज जो बहुत बड़ी हुई साहिल, जो हमें से इस समय समझ आ रही है वो ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये जेन्युइन बच्चों का प्रोटेस्ट है, ये युवाओं का प्रोटेस्ट है। ज्यादातर लोग जो सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर भी निकल के आ रहे हैं, वो सब एक ही चीज बोल रहे थे कि आखिरकार हमें अकाउंटेबिलिटी कब मिलेगी, क्योंकि नीट जैसी एक बड़े एग्जामिनेशन का जब पेपर लीक होता है तो लोगों के फ्यूचर पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो सरकार को ये समझ आया कि जिस तरीके से चीजें उन्होंने मूव करी है, लगभग 47 लोगों को एनटीए से निकाला गया, अश्योरेंसेस भी दिए गए, लेकिन जो एक बड़ी डिमांड थी उसको फुलफिल करना जरूरी था, क्योंकि जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जिनका फ्यूचर रियली एट स्टेक है, वो सब इस समय बाहर आ रहे हैं और सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। एक बड़ा जो ट्रस्ट डेफिसिट है, एक जो गैप था सरकार को, वो सामने नजर आया कि वो गैप बढ़ता हुआ बढ़ेगा अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। तो फिर इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने देखा कि कैसे 24 घंटे के अंदर कहानी जो है वो बदल गई है। आपको जल्दी से बताना चाहूंगी साहिल, मैं इस समय जंतर मंतर पर खड़ी हूं और बहुत सारे बच्चे ये जो अनाउंसमेंट हुआ है इसके बाद आपको बाहर आते हुए नजर आएंगे। आजादी आजादी के देखिए इस समय नारे भी बच्चे लगाते हुए आ रहे हैं बाहर। उनका ये कहना है कि हमारी जो डिमांड थी बहुत जेन्युइन डिमांड थी, हमारी जेन्युइन डिमांड को अगर आप मांग लेंगे तो फिर हम धीरे धीरे करके मूव आउट करना शुरू करेंगे। और एग्जैक्टली वही चीजें इस समय आपको यहाँ पर जंतर मंतर में नजर आ रही है। वहां पे सीजेपी ने जो है अपनी डिमांड खोली, जो हमारी मांगे थी उन सबको पूरा किया गया है, हमारी मांग पूरी हो गई है, अब हम धीरे धीरे करके मूव आउट कर रहे हैं। और वही आपको इस समय ये जो सैलाब सा नजर आ रहा है, ये बच्चे यहाँ से जंतर मंतर से मूव आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। साहिल,
1: आप जब वहां पर जा रही थी तो पुलिस वाले भी वहां पर खड़े, और पहली बार मैं देख रहा हूं कि हाथ में उनके लाठी नहीं है, हाथ पीछे खड़े लेकर वहां पर पुलिस वाले खड़े हुए हैं, यानी उन्होंने भी डंडे डाल दिए हैं, सारे एफआईआर वापस लेने पड़ेंगे, ये भी

0: प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरीके से कांग्रेस यह भी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है कि यह जीत तो विपक्ष की भी है, विपक्ष ने भी यह मुद्दे उठाए थे, कांग्रेस ने भी यह मुद्दे उठाए थे।
1: साहिल, आज शनिवार है, मंडे को हम लोग लाठीचार्ज और जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन था वो कवर कर रहे थे, जो संसद आ गया था। शायद सरकार ने भी कल्पना नहीं की होगी, तमाम मंत्री जिनसे हम बात कर रहे थे, कि किसी की धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा होगा। लेकिन जो छात्रों का की संख्या बढ़ती गई मंडे के बाद खास तौर से, और जिस तरीके से पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ और उसको लेके विपक्ष भी काफी आक्रामक नजर आया। एक मांग मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपने दोहराई, एक मांग जो यहाँ मैं 10 जनपद पे खड़ी हूँ, और 10 जनपद में सुबह ही राहुल गांधी ने छात्रों के साथ एक प्रेस वार्ता की थी, उसमें एक मांग जो मैंने नहीं सुनी प्रेस वार्ता में, राहुल गांधी ने कहा था हमारी तीसरी मांग ये है, जो छात्रों की भी मांग है, कि प्रधानमंत्री इस पूरे मसले पर माफी मांगे। अब राहुल गांधी यहाँ पे आएंगे, वो क्या कहते हैं और इसको किस तरीके से, क्योंकि मंडे को फिर से संसद है, किस तरीके से आगे ले जाएंगे इस पूरे मसले को, ये देखना होगा।
0: दूसरा मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का रवैया अब सोमवार को क्या होगा उस बात को लेकर भी पूछना है, क्योंकि क्या आप सदन की कार्यवाही शुरू हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस की का मुद्दा एकदम साफ था कि पहले पर्चा फिर चर्चा, तो उस पर भी मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन देवेश चंद्र श्रीवास्तव स्पेशल सीपी है, उनसे बातचीत की गई है, अब क्योंकि अभी आंदोलन खत्म हो गया है, FIR वापस लेने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है, क्या कह रहे हैं वो जरा एक बार सुनिए।
2: फिलहाल क्या स्थिति है जंतर मंतर की?
3: देखिए, अभी स्थिति शांतिपूर्ण है और हम लोग घटना पे पूरी नजर बनाए हुए हैं, और इनका आंदोलन भी खत्म हो गया और इन्होंने भी अपील की है जनता को लौटने की, तो मैं भी ये अपील करना चाहूँगा कि जनता शांति बनाए रखे, खासतौर पर जो हमारे युवा साथी हैं उनको मैं ये अपील करना चाहूँगा कि शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन स्थल को छोड़ें और अपने अपने घर जाएं, और दिल्ली पुलिस की देश की राजधानी में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद।
2: सर, आज भी देखा जाए तो 2 से 3 बार जो है वो पथराव हुआ और पुलिस को भी काउंटर जो है वो करना पड़ा। फिलहाल अब जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, और हमने भी कई सारी वीडियोज़ देखी जिसमें उपद्रवी जो है वो फंसे हुए थे और लगातार पुलिस पर हमला भी कर रहा है।
3: जी, हमारे सारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, और जैसा आपने देखा सारी जो हमारी दिल्ली पुलिस की तमाम यूनिट्स इकाइयाँ हैं और बाकी जो पैरामिलिट ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं उनके साथी भी हमारे साथ हैं, तो हम लोग स्थिति पे पूरा नियंत्रण बनाए।
2: इसके अलावा जो मोबाइल नेटवर्क थे वो बंद थे, क्या उनको थोड़ी देर बाद जो ओपन करेंगे? जो अलाउंस हो चुका है CGB की तरफ से प्रोफेसर घर जाए।
3: जैसा मैंने बताया कि घटना अभी डिस्पर्सल शुरू है, घटना पे हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, तो जैसा भी मुनासिब कार्रवाई होगी उससे हम आप लोगों को बता सकते हैं।
4: सर, आज दोपहर में जो 2 बजे हुआ उसमें कितने कुल लोग घायल हुए, कितने ऑफिसर?
3: देखिए, सिचुएशन इस समय हमारा जो मुख्य दायित्व जो हमारा ड्यूटी है या जो हम लोग इसकी तरफ देख रहे हैं वो लोगों के डिस्पर्सल की तरफ देख रहे हैं, एक बार ये डिस्पर्सल कम्प्लीट हो जाता है तो हम पूरी घटना।
2: हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर विवेक श्रीवास्तव। सर, सर जंतर मंतर पर फिलहाल क्या
0: तो स्पेशल CP यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी स्थिति काफी सामान्य है, फिलहाल वो ये नहीं बता रहे हैं कि कितने पुलिस वाले घायल हुए हैं, क्योंकि अब तो ये कहा गया है कि आंदोलन को बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी, सरकार की तरफ से मान लिया गया है कि FIR वापस लिए जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद शुरू हो जाएगी मौसमी, क्या सोमवार से हम ये मान सकते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी जो एक लॉकजाम बना हुआ था पार्लियामेंट के भीतर वो टूट जाएगा, क्योंकि उस बिल पर भी चर्चा होनी है जो सरकार ने कैबिनेट में मंजूर कर लिया है?
1: साहिल, मैं उसी बात पे आ रही थी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री के माफी पर अब विपक्ष हंगामा करेगा कि ये जो पूरा रायता फैला, और आपने जो उनका कहना है कि सरकार ने जो अहंकार दिखाया, जो पिटाई की छात्रों की, जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता दिखाई, इसके लिए माफीनामा भी होना चाहिए और वो देश के प्रधान का होना चाहिए, पूरी जो सरकार को लीड कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री के माफीनामा को लेकर राहुल गांधी सुबह यहीं 10 जनपद पर उन्होंने कहा कहा था कि तीसरी मांग ये है कि प्रधानमंत्री माफी मांगे, तो देखना होगा कि राहुल गांधी इस पूरे मसले को अब आगे किस तरीके से उठाते हैं। और ये भी दिलचस्प है कि आप देखिए कि राहुल गांधी एक ही दिन सुबह 10 जनपद पे तमाम छात्रों से मिलते हैं, 24 घंटे पहले उन्होंने

0: छात्र जिसको पैलेट गन से इंजरी हुई थी उनको लेकर आए थे और ऐसी चर्चा जोरों पर थी कि राहुल गांधी जंतर मंतर भी धरने पर बैठ सकते हैं। दोपहर को ये सुगबुगाहट हुई थी कि रात भर राहुल गांधी डेरा डाल सकते हैं जंतर मंतर पर। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अब संसद में इसका गतिरोध इतनी जल्दी नहीं सुलझेगा, क्योंकि बात एक संशोधित बिल की भी हो रही है जो मंडे को आने वाला है, उसको लेकर भी विपक्ष आपत्ति जता सकता है कि पहले ही आपके पास 2024 में एक कानून है। अब
1: थोड़ी देर में राहुल गांधी भी वहां पर बात करने वाले हैं, उनकी भूमिका भी पता चलेगी। सीजेपी के आंदोलन के बाद क्या कांग्रेस पार्टी अपनी तीसरी मांग को लेकर अड़ी रहती है, जो सीजेपी की मांग नहीं है, उस पर भी नजर बनाए रखेंगे। कंटिन्यूस कवरेज हमारा लगातार जारी रहेगा। चलते मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप के पास एक बार फिर, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, ये एक तरीके से लोकतंत्र का जो बदला हुआ मिजाज है उसका कवरेज ये चल रहा है। चलते हैं अंजना ओम कश्यप के पास।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशन।
4: That we withdraw the agitation.
5: There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime.
6: ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था, ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों
7: की। I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them.
8: हमारे देश के युवाओं को, Gen Z को बहुत बधाई। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है।
9: ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है।
10: नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों की बहुत बड़ी जीत। आज धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR वापस होगी और भविष्य में इस आंदोलन को लेकर FIR नहीं होगी। खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ के मुआवजे की मांग पर नियमों के मुताबिक फैसला होगा। सीजेपी की तीनों मांगों पर सरकार की रजामंदी के साथ ही जंतर मंतर पर 20 जून से चले आ रहे धरने को खत्म करने का ऐलान हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने आज जब चिट्ठी लिखकर शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा का ऐलान किया, उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम से दुखी हैं, ये मेरे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है और इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए तो बड़ी जीत है। उधर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने इस इस्तीफे के बाद सरकार पर हमला बढ़ा दिया है। राहुल गांधी अभी भी प्रधानमंत्री मोदी से माफी की मांग पर अड़े हैं। सवाल यह है कि पेपर लीक के मुद्दे पर सीजेपी का धरना तो खत्म हो गया, लेकिन क्या अभी राजनीति की पिक्चर बाकी है? देखिए, सोमवार को संसद में जो संशोधित बिल है पेपर लीक वाला, वो आना है। तो पेपर लीक रोकने के लिए नया बिल जो आ रहा है उस पर क्या रुख रहता है विपक्ष का? क्या विपक्ष का हंगामा थमेगा? कुछ सार्थक इस देश की संसद में होगा? प्रधान का इस्तीफा युवाओं की जीत, हम करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन राजनीति में आगे क्या? चर्चा के पहले ये रिपोर्ट। ये जश्न की तस्वीरें हैं पेपर लीक को लेकर छात्रों की लड़ाई की जीत की। ये खुशी है उस उम्मीद की जहां छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा था। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की तीनों मांगे मानी।
4: हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए।
10: इस लड़ाई में सबसे बड़ा मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की वजह छात्रों के हित को बताया।
11: इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
12: देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला, इस्तीफा भी होगा, पुलिस वालों पे FIR भी होगा और सरकार भी झुकेगी।
10: अब सवाल ये कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही पेपर लीक की समस्या खत्म हो जाएगी, या अभी सरकार को इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। सोमवार को संसद में सख्त कानून लाने की तैयारी है।
5: इट्स आल्सो अ सिग्नल टू अदर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, फार्मर्स, लेबरर्स, पुअर पीपल, एनीबॉडी हु दिस रेजिम इज अटैकिंग एंड ओप्रेसिंग। देयर इज विजडम एंड करेज इन स्टैंडिंग अप। डरो मत, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस रेजिम।
6: ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
7: I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will.
8: हमारे देश के युवाओं को, Gen Z को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है।
10: सवाल ये भी है कि क्या ये लड़ाई एक इस्तीफे पर जाकर खत्म हो जाएगी?
11: ये पहला विकेट है। यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है।
10: सड़क पर छात्रों की लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन अभी संसद में जंग बाकी है, क्योंकि सरकार सोमवार को पेपर लीक पर सख्त कानून का बिल पास की तैयारी में है। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। वहीं संसद में पेपर लीक पर चर्चा का रास्ता भी साफ हो चुका है, जहां विपक्ष भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा था। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून और इस्तीफे से इस समस्या का समाधान निकलेगा? क्या देश में पेपर लीक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? आज तक ब्यूरो। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सत्यप्रकाश मिश्रा कुछ देर में यहां पर पहुंचेंगे, और रागी जी और आशुतोष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मौसमी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, क्या स्थिति है, और अब जबकि आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है, किस तरह की स्थिति दिख रही है वहां पर?
0: अजरा, हम 10 जनपद पर खड़े हैं, जहां राहुल गांधी कुछ ही देर में मीडिया से मुखातिब होंगे। ये दूसरी बार होगा जब दिन में वो इस तरीके से मीडिया से 10 जनपद पर ही बात करेंगे। और आपको बता दें कि सुबह उन्होंने एक मांग जो करी थी, जो तीसरी मांग थी कि प्रधानमंत्री इसमें माफीनामा दे, प्रधानमंत्री जो है माफी मांगे, उसके बारे में हमने प्रेस वार्ता में नहीं सुना। क्या हो सकता है राहुल गांधी उसको लेके, इस पूरी मांग को लेके संसद में जो है विपक्ष की तरफ से सरकार पर दबाव बनाए कि छात्रों की पिटाई हुई, पुलिस की बर्बरता हुई। दूसरी बात, बिल को लेकर भी जो संशोधन आ रहा है उसको लेकर भी लगातार पेचीदगियां बनी हुई हैं। विपक्ष उसको लेकर भी सरकार को घेरने का काम कर सकता है। अभी आप देखिए कि पूरे माइक लग गए हैं, तमाम मीडिया यहाँ पे मौजूद है। एक दिन पहले भी राहुल गांधी ने यही पर साहिल, जिनको पैलेट गन से चोट लगी थी, उन पर जो है प्रेस वार्ता की थी, और लगातार यहाँ पे राहुल गांधी दबाव बनाते हुए सरकार के ऊपर, प्रियंका गांधी का भी रिएक्शन वायनाड से आया, और छात्र जाहिर तौर पे छात्रों के इस आंदोलन को कांग्रेस क्रेडिट तो दे रही है लेकिन सियासी रूप से उनको लगता है लड़ाई अभी बाकी है।
10: बिल्कुल, और ये दिलचस्प है क्योंकि देखिए कॉकरोच जनता पार्टी का, आप तो एक बार पहले अपने दर्शकों को दिखा दें ये तस्वीर जो दिखा रहे थे कुछ देर पहले हाथ मिलाने की, क्योंकि पहले बैठक होती है, सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो इस्तीफा जिस पर छात्र अड़े हुए थे, कॉकरोच जनता पार्टी अड़ी हुई थी, वो इस्तीफे की खबर आती है और उस इस्तीफे के आने की खबर के फौरन बाद तीन बड़ी बैठकें होती है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होती है गृहमंत्री अमित शाह से, और उसके बाद से अमित शाह एक बैठक करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा जी से। अब जेपी नड्डा उसके बाद से पहुंचते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और उन्हीं के साथ, आइए सत्य प्रकाश जी आइए बैठिए, और जेपी नड्डा वहां पर पहुंचते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचते हैं और वो लोग बात करते हैं सौरभ दास और आशुतोष रांका से। यानी उसके बाद से ये लगभग तय हो गया कि आंदोलन खत्म होने वाला है। मौसमी को हटा दीजिए, उनको पता नहीं है वो लाइव है इस वक्त। हाँ, एक बार दिखा दीजिए तस्वीरें उस जगह की। उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, सीक्वेंस ये है कि उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, यही वो बैठक की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, जो ये फाइनल बैठक हुई है जिसमें ये डिसाइड किया गया है। क्योंकि इससे पहले तो मंच से अभिजीत दीप के ये कह रहे थे कि कॉकरोच एक बार घुस जाते हैं तो निकलते नहीं, उनका ये कहना था कि हम अभी जो हमारी मांगे हैं कि पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन हो, मुआवजा दिया जाए, वो मानी जाती है। लेकिन फिर ये बैठक हुई और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो दिखा दीजिए, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हाथ भी मिलाया जाता है और एक सहमति बनती है जिसके बाद आंदोलन को वापस कॉल कर लिया गया है। तो सभी मेहमान मुझे लगता है हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, राहुल गांधी भी लेकिन अभी तैयार है, कुछ देर में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि वो सीधा पीएम से की माफी की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी उन्होंने अपना आंदोलन कॉल ऑफ कर दिया। लेकिन इसी के साथ आप तो सांसद हैं सुधांशु जी, बड़ी जिम्मेदारी आपकी सरकार की रहेगी, सारे बच्चों की छात्रों की नजरें रहेंगी, पेपर लीक अब स्वीकार्य नहीं होगा, इस जिम्मेदारी को आप लोग समझ रहे हैं?
13: देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के दो पक्ष हैं, नैतिक और तकनीकी पक्ष। नैतिक दृष्टि से देखें तो यह निर्णय जो आज हुआ वह हमारी सरकार की छात्रों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का प्रमाण है, और श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बिल्कुल उदार हृदय का परिचय देते हुए, कोई अहम मान्यता का भाव न रखते हुए, छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है। और इसी के साथ साथ एक और बात भी बहुत स्पष्ट हो गई कि यह सिर्फ त्यागपत्र आज का निर्णय नहीं है, यह पिछले कुछ दिनों में हुए निर्णयों की श्रृंखला की एक कड़ी है। अगर आप देखें तो पहले सोनम वांगचुक जी के साथ बात करके नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी ने उनका जो आमरण अनशन था उसको रुकवाने में सफलता हासिल की, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की, उसके बाद लगातार तीन दिन ये छात्र आंदोलनकारियों के साथ सरकार के मंत्रियों ने वार्ता की, उसके बाद सरकार ने कठोर दंडात्मक कार्रवाई वाला बिल कैबिनेट में पास किया जो संसद में आएगा, एनटीए के अंदर व्यापक और शिक्षा व्यवस्था शिक्षा विभाग के अंदर व्यापक ट्रांसफर किए गए, और उस कड़ी में यह पांचवा निर्णय। यानी सरकार उत्तरोत्तर उत्तरदायित्व का वहन करते हुए व्यवस्था के सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है। तकनीकी दृष्टि से हम देखें तो इस व्यवस्था को कैसे फुल प्रूफ बनाया जाए, इसके लिए पूरी एक टेक्निकल एक्सपर्टीज, और इस बारे में सरकार बात कर रही, जैसे इस बार का विषय था कि पेपर सेटिंग करने वाले ने लीक कर दिया, तो अब अगली बार से यह व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि पेपर सेटिंग का काम ह्यूमन इंटरफेस में कम से कम हो, केवल एक ही व्यक्ति या कुछ लोगों को पेपर के बारे में पूरी जानकारी ना हो, उसके कुछ कुछ अंशों के बारे में लोगों से डिटेल ले लिए जाए, फिर जो भी व्यवस्था होगी उस पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किया जाए, और वो कैसे डिजीलॉक, वो सब एक अलग व्यवस्था है कि कैसे किया जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस तरफ एक सकारात्मक समाधान दिखा है और छात्रों ने अपने आंदोलन समाप्त करने का, तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। हां, दूसरा एक पक्ष जरूर दिखा कि राहुल गांधी जी जिनकी आपने बात की, वो कभी छात्रों के मंच पर गए नहीं, दिल्ली में रहकर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मुख मुद्राएं बनाकर वह तरह तरह के प्रदर्शन करते रहे, कभी प्रधानमंत्री आवास पे जाकर, कभी गांधी स्मृति पे जाके, तो कभी इंदिरा भवन में जाकर, कभी यहां पर आकर। इससे यह भी बात साफ हो गई कि कांग्रेस पार्टी जो किसी भी आंदोलन को खड़ा करने में पूर्णतः अक्षम है, जनाधार विहीन, विवेकहीन नेतृत्व के कारण न जनता उनके साथ है, न उनके गठबंधन सहयोगी उनके साथ है, न उनके नेता उनके साथ है, किसी आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर पाती है, तो सत्ता लोलुप दृष्टि से वो
14: नमस्कार थोड़ा सा भैया हो जाओ पीछे हाँ सबसे पहले ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनकी विक्ट्री है इनकी जीत है जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है एजुकेशन सिस्टम जो हमारा हमारी शान हुआ करती थी पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है उसको कैप्चर किया जा रहा है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है उस पर रिएक्शन था बेरोजगारी पर रिएक्शन था और जो हिंदुस्तान का जो कि जो आज हालत है जो सिचुएशन है उस पर रिएक्शन था प्रधान एक सिंबल है करप्शन का सिंबल एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल इनकॉम्पिटेंस का सिंबल उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर एजुकेशन सिस्टम पर अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है क्योंकि दीमक का काम आरएसएस ने किया है हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया है तो गहरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं बट देखते हैं स्टूडेंट्स की दो और मांगें थी उनको नहीं भूलना है पहली मांग जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया अटैक किया मारा इंप्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि ये लोग इस कारण पनिश हुए हैं और दूसरी बात जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के नरेंद्र मोदी जी उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए तो ये भैया देखिए एक एक करके वन एट अ टाइम आई कांट हियर ओके प्लीज प्लीज वन एट अ टाइम आई कांट आंसर अदरवाइज नो नो आई टेल यू यू गो अहेड
15: And the students are now going back. There are two demands, sir, as you mentioned, that has been not fulfilled. So, what will be your step in the parliament when parliament commences on Monday?
14: Well, the first
15: they are also bringing a new bill, sir.
14: The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns, on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. Of course, the students, as I said, have also got the demand of an apology from the Prime Minister. Look, this protest, the reason it has happened, the deeper reason it has happened, is that the Indian system, job creation, creation system, education system, institutional system, media system has been destroyed. It has ceased to exist. There are consequences to this. We are facing now a time of serious economic crisis. And in times of serious economic crisis, you need that system. So the government should be aware that what has happened here is just one step in a very deep problem. Right? So the government needs to start listening to what the people of India are saying. And this is a warning to them. This is a warning from the students of India, this is a warning from the opposition, that you cannot run India the way you have been running. This is not your personal fiefdom. This is not something that belongs to you. This belongs to the people of India. This belongs to the Constitution of India. This, all these institutions, they do not belong to you. And if you carry on down this path, you will see that what has happened right now will be at 10 times the scale. So that is basically the message. One by one, please. One by one. Please. देखिए, इसमें हमारा कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल प्रिंसिपल है कि हम ये जो सवाल है, हमारी जो मीटिंग होती है ऑपोजिशन के साथ, उस मीटिंग में हम रेज करते हैं और जो ऑपोजिशन का कंसेंसस बनता है उस पर हम डिसीजन लेते हैं पार्लियामेंट में. दैट इज आवर डिसिप्लिन, दैट इज आवर वे ऑफ फंक्शनिंग. तो आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ. नहीं, हमारा प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है वो चलेगा, क्योंकि हमारी इश्यूज लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं और हमारा तो नहीं रुकेगा. हम इश्यूज रेज कर रहे हैं और उसको हम करते जाएंगे. मैं अंत में सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे साइड से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जहां भी सपोर्ट चाहिए, मैं तैयार हूं. कांग्रेस पार्टीज आइडिया विद द प्रोटेस्ट वॉज टू सपोर्ट इट होल हार्टेडली. वी सपोर्टेड इट एंड वी आर हियर टू प्रोटेक्ट द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर ऑफ इंडिया. एज आई सेड, दिस इज अ फाइट बिटवीन द पास्ट विच इज नरेंद्र मोदी एंड द RSS एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया. एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट द फ्यूचर ऑफ इंडिया विल डिफीट द पास्ट. थैंक यू वेरी मच.
10: तो राहुल गांधी ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी की माफी पर वो अड़े रहेंगे और संसद में छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा वो जोर शोर से उठाएंगे. आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है कि अब एक रिएक्शन आपके पास चलते हैं, क्योंकि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और ये कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आंदोलन का अंत हुआ है. उम्मीद यही होगी कि जब संसद चले तो कम से कम बच्चों के मुद्दे पर सबसे ज्यादा गंभीरता से चर्चा हो.
16: सबसे पहले तो अंजना जी, मैं छात्रों को और देश के युवाओं को बधाई भी देना चाहूंगा और धन्यवाद भी करना चाहूंगा तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज का जिन्होंने इस आंदोलन में छात्रों का साथ दिया. और आज जिस तरह से देश की जनता ने धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया, उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया, क्योंकि ये अनैतिकता, अहंकार और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हुई है जो पिछले कई दिनों में देखी गई है. जिस तरह से आज जो आज इस्तीफा हुआ है, अगर ये पहले हो जाता तो 22 बच्चों की जान भी बचती, सैकड़ों बच्चे घायल होने से बचते। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो केवल एक मुखौटा है, सिस्टम से लड़ाई, लड़ाई सिस्टम से है जो टूल किट चलाता है। आज छात्रों की गूंज ने अहंकार की दीवार को गिरा दिया, घमंड टूटते हुए पूरे देश ने देखा। लेकिन मैं फिर कहूंगा, बहुत देर कर दी आते आते हुजूर आला, ये बच्चों की जो 22 बच्चे हैं उनके माँ बाप जो हैं वो आज किस अवस्था में होंगे, और जो सैकड़ों बच्चे हॉस्पिटल में पैलेट गन और लाठियों खा के जो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये पूरा देश देख रहा है। मोदी जी ने तमाम चीजें चलाई, मोदी जी ने हर तरह से बच्चों को गुमराह करने का भी प्रयास किया, रात को 12 बजे आकर रील भी बनाई। लेकिन मोदी जी, आपके फ्रेंडशिप को युवाओं ने अस्वीकार कर दिया। आज तक पर जो आज ये दृश्य चल रहा है, देखिए सब लोग किस तरह से युवा झूम रहे हैं, ये झूम रहे हैं केवल इस बात पे कि मोदी सरकार का अहंकार इन्होंने तोड़ा है। मुख मुद्राएं राहुल गांधी की मत देखिए मेरे बीजेपी के साथी, मुख मुद्राएं मोदी जी की रात को जब 12 बजे रील बनाई थी ना, उन मुख मुद्राओं को भी देख लेते, उनमें क्या किस तरह के भाव भंगिमा पूरे देश ने देखी है और किस तरह से जेंजी ने उसको किस रूप में लिया है। दुर्भाग्य ये है कि इन्होंने पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बैठा दिया है, वो पूरा का पूरा आरएसएस के हाथों में गिर भी रख दिया है। वो शिक्षा तंत्र, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का हो, एनसीईआरटी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूनिवर्सिटीज हो, पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जिस तरह से आरएसएस ने कब्जा किया है, अगली लड़ाई हमारी उस चीज को लेकर है। दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से तकनीक की बात हमने अभी बीजेपी के साथी कह रहे थे, नैतिकता तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, तकनीक की बात कही, एयरफोर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, उसके बावजूद 21 जून का पेपर इनोवेटिव व्यू कंपनी की चालाकी और बदमाशी और भ्रष्टाचार की वजह से उसके बाद भी बायोमेट्रिक्स में घपले हुए बिहार में और महाराष्ट्र में। तकनीक की बात तो भाजपा के लोग करें ही ना, ये तो नाली से गैस निकाले, इनकी सोच वहीं तक है। तकनीक की बात कांग्रेस पार्टी करती है और तमाम तकनीक हम ही लेकर आए थे, इन्होंने शिक्षा के नाम पर कोई एजुकेशन रिफॉर्म्स नहीं किया। एनईपी भी लेकर आए, वो केवल अपना एजेंडा लेकर आए, जिस तरह से यूपीएससी के चेयरमैन को मनोज जोशी को हटाया गया था, पूरे देश ने देखा था। इन्होंने पूरी तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, पेपर लीक तक बात सीमित नहीं है, जिस तरह से तमाम एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया है उसके लिए आगे चर्चा होनी चाहिए। सरकार को माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, जिन लोगों के आदेश पर पैलेट गन चले, लाठी चार्ज हुआ, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, केस वापस लिए जाएंगे उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। किसान आंदोलन में भी इन्होंने वायदे किए थे, लेकिन आज तक केस चल रहे हैं, केस टाइम फ्रेम में तमाम केस वापस होने चाहिए। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो झुंझुना देश को दिया है इन्होंने, सुबह फास्ट ट्रैक कोर्ट का झुंझुना दिया इन्होंने, और शाम को जो 2024 का मुख्य आरोपी था वो सीबीआई ने बरी कर दिया। सीबीआई भी अकाउंटेबल है,
17: ठीक है सुधांशु जी, अब जवाब सुन लीजिए आलोक जी, आलोक ठीक है, ठीक है, चार लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक ठीक
16: नहीं होता,
17: ठीक है, एक बार आशुतोष जी भी बोले, एक ही साथ जवाब दीजिएगा, आशुतोष जी आपके पास आ रहे, एक बार आशुतोष जी से बोल लेते, फिर एक बार जवाब दीजिएगा सुधांशु जी। आशुतोष जी, आज अखिलेश जी को भी हमने सुना, आज सबसे बड़ा कंसर्न यही होना चाहिए कि अल्टीमेटली पेपर लीक रुके, क्योंकि अब पेपर लीक नहीं रुकेगा तो फिर वो फोकस जो है ना वो बच्चों से शिफ्ट हो जाएगा।
18: देखिए, छात्र क्यों इतने उद्वेलित थे, क्यों गुस्से में थे, क्यों नाराज,
17: लेकिन बोल लीजिए आप, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, गो अहेड, इसके बाद वर्मा जी आ रही हूँ, जल्दी से बोल, नहीं नहीं, अरे बोल लीजिए भाई,
18: नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि छात्र क्यों नाराज थे, क्यों गुस्से में थे, क्यों उबल रहे थे, पेरेंट्स क्यों सड़क पे थे। एक बार नहीं, अगर एक बार का मामला होता तो सुलट जाता, बार बार बार बार पेपर लीक हो रहे, जब पूरा देश उबला हुआ है, जंतर मंतर पर लोगों की नजर लगी, तब भी उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक हो रहे, यानी कहीं तो कोई रोक लगनी
17: चाहिए। और भी कई राज्यों में हुआ है, उत्तराखंड में,
13: मैं पंजाब भूल जाता,
18: मैं एक एक पे,
17: कोई बात नहीं, पंजाब है तो आपको पंजाब याद रहता है, ये भी तो गड़बड़ है ना,
13: हमें सब याद है,
17: सत्यप्रकाश जी पेपर लीक,
18: सत्यप्रकाश जी, उत्तराखंड अगर केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो मैं उसको भी दोष नहीं देता। सवाल ये कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार कर रहे हैं, 12 साल से केंद्र सरकार आपके, नरेंद्र मोदी जैसे इतने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, उसके बावजूद आप कानून लेकर आए 2024 से, आप पेपर लीक नहीं रोक पा रहे, इसका क्या मतलब? इसके दो ही चीज हो सकते हैं, या तो पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंस है, इनएफिशिएंसी है, या फिर कोई बहुत बड़ा आदमी इस पेपर लीक के पीछे लगा हुआ है जो नहीं चाहता कि सुचारू रूप से, स्वच्छ तरीके से, साफ सुथरे तरीके से बच्चों का सिलेक्शन हो। दो ही चीज हो सकती है, तीसरी चीज तो हो नहीं सकती। अरे भाई झारखंड में क्या हो रहा है, मान लिया आपकी बात, आप ले आइए विपक्ष की सरकार को केंद्र के अंदर, कांग्रेस सरकार ले आइए, हम कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएं। 12 साल से आप सरकार के अंदर, आप झारखंड की बात करते, पंजाब की बात करते, अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं। ये छात्र बेवकूफ से जो सड़कों पर बैठे होते वहां पे।
17: और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ये खबर दे रहे हैं, 72 घंटे के अल्टीमेटम के चलते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी ने, आ रही हूं मिश्रा जी, आ रही हूं, प्रधान के इस्तीफे पर ये खबर है कि 72 घंटे के अंदर हम फिर संसद मार्च करेंगे। ये कांग्रेस जनता पार्टी ने अल्टीमेटम दे दिया था 20 जुलाई को, जो हुआ उसने सरकार को ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। हिमांशु, हिमांशु आवाज आ रही है? हिमांशु
19: जी, अंजना देखिए, जब से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, जो कल दूसरे राउंड की बातचीत हुई थी उसमें ये साफ साफ कह दिया गया था कि हम 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, नहीं तो हम संसद तक मार्च निकालेंगे और ये बात हम बाहर जाके अनाउंस कर सकते हैं। सरकार की तरफ से दो मांगे जो है उनकी लगभग मान ली गई थी, प्रिंसिपली एग्री हो गए थे, जिनमें केस वापसी और उसके साथ साथ जो है मुआवजे की बात, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उसका अमाउंट तय नहीं हुआ था। सीजेपी के जो प्रतिनिधि है वो ये कह रहे थे 1 करोड़ में, सरकार की तरफ से क्या जो भी होगा हम आपको बता देंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी मांग थी वो थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उन्होंने कहा इससे कम पर हम नहीं मानेंगे, अपने दो मांगे मानने के लिए तैयार है लेकिन तीसरी नहीं मानेंगे, तो हमारे लिए भी मजबूरी है, हमको 72 घंटे में जो है नया 1 मार्च की घोषणा करनी है। अब तय कर लीजिए, हम बाहर जाके घोषणा करते हैं, ये कहा गया, आप मत कीजिए, हम बात करेंगे, फिर आपसे बातचीत करके जो भी अपडेट होगा वो बताया जाएगा। आज तीसरे राउंड की बातचीत जो है वो होनी थी 3:30 बजे, लेकिन उससे पहले 2:17-18 पर जो है धर्मेंद्र प्रधान ने ये एक्स पर पोस्ट करके जो है वो बताया कि उन्होंने छात्रों की भावनाओं को सम्मान करते हुए जो है वो इस्तीफा दिया है। उन्होंने पहले दिन से ये कहा था कि वो अकाउंटेबल है, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी और जो भी संभव हो सकता था वो सभी काम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें छात्रों के प्रदर्शन का फायदा उठा सकती थी, इसीलिए वो इस्तीफा दिया है उन्होंने। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं सरकार के अंदर ये इस चीज का एक अनुमान हो चुका था कि ये प्रोटेस्ट इससे कम पर नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि 2 राउंड की बातचीत सीजेपी के साथ हुई जो उनके प्रतिनिधि है, उसके साथ साथ सोनम वांगचुक से भी 2 राउंड की बातचीत हुई। 2 राउंड में उन्होंने जरूर जो है वो अपना अनशन खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब होगा ये एश्योरेंस नहीं दी गई है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, अगर जल्दी होगा तो नुकसान कम होगा। इस चीज को पूरे तरीके से अगर देखें तो ये जो कल दूसरे राउंड की मुलाकात थी सीजेपी प्रोटेस्टर्स के प्रतिनिधियों के साथ, वहां जब मामला अटक गया उसके बाद शायद सरकार के अंदर बहुत सी चीजें हुई, दोनों मंत्री जाके गृह मंत्री को ब्रीफ करके आए, गृह मंत्री से बातचीत हुई, सारी चीजें उन्होंने डिस्क्राइब की कि वो मानने को तैयार नहीं है और 72 घंटे की बात जो है वो कही गई है, तो कहीं ना कहीं फिर सरकार के अंदर एक तरीके से बातचीत हुई और उसके बाद जो भी हुआ वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।
17: एक और खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें सभी मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं दिल्ली के, अब जबकि ये ऐलान हो गया है और जेपी नड्डा और सौरभ दास, आशुतोष रांका, डॉक्टर जितेंद्र सिंह सभी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हाथ मिलाते हुए ऐलान किया गया है वहां से कि अब अनशन खत्म कर रहे हैं, तो अब सारे मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं ताकि जो छात्र यहां पर आए हुए हैं, जो प्रदर्शनकारी आए हुए हैं, वो वहां से निकल पाए। जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं उसको। दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं, इसका अर्थ यह है कि अब जो प्रदर्शनकारी यहां पर आए हुए थे, जो छात्र आए हुए थे, उनके लिए वहां से निकलना आसान हो जाएगा, वरना मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से उनको दिक्कतें हो रही थी। लेकिन ये कॉल ऑफ भी कर दिया गया है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि चलिए अब ये आंदोलन खत्म हो रहा है क्योंकि जो मांगे थी वो मान ली गई है। आशुतोष जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली थी, आपने कर ली थी। आशुतोष वर्मा जी जल्दी से आपके पास आ रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी आज देखिए बड़ा सवाल भाई जो मैं इनसे भी पूछ रही थी कि पेपर लीक ना हो इसके लिए मिलकर अब एक कुछ एक कारगर तरीके से काम करना होगा, और अगर वो बिल लेकर आ रहे हैं तो आपको उनको मजबूर करना होगा कि इन्वेस्टिगेशन कुछ मतलब उस पर तैयारी करके कि भाई इन्वेस्टिगेशन भी ऐसे हो, ये नहीं कि सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से होगा। जब तक सही आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि कन्विक्शन नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है, इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करना होगा।
20: नहीं देखिए अंजना जी ये बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि पूरा आंदोलन का अगर लब्बो लबाव यही है कि एक प्रतीकात्मक जीत तो हुई है लेकिन अगर रिफॉर्म्स नहीं हुए तो काम नहीं हो सकता। एक बड़ी सरकार की एक बात समझनी होगी, ये सरकार जो है ये प्रतीकात्मक हो गई है, ये प्रतीकात्मक हो गई, मतलब अगर जनजी आके आंदोलन ना करते तो ये नीट की परीक्षा के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं होता, ये अहंकार चलता रहता और ऐसे ही लगातार और पेपर लीक होते रहते, बच्चे परेशान होते रहते, सुसाइड होते रहते, प्रधानमंत्री ऐसे ही मेलोडी मेलोडी करते रहते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उत्तर प्रदेश में कमोवेश यही हुआ, लगातार चोरी होती जा रही थी अयोध्या मंदिर में, अगर अखिलेश यादव विपक्ष के नेता होके इस बात का रहस्योघाटन ना होता तो चोरी चलती रहती, काम होता रहता। इसका मतलब अब प्रोएक्टिव सरकार नहीं रह गई और सरकार के पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है जो अब वो सरकार बताए कि हम ये करने वाले हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में अनसुलझे सवाल कई पेपर लीक के बारे में है, मैं बात उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये करना क्या चाहते थे और पूरी कोशिश करी आखिरी दिन तक इस प्रोटेस्ट को बदनाम किया जाए, इस प्रोटेस्ट को फंडिंग बताई जाए, चाइना सोरेस पाकिस्तान ना जाने क्या क्या किया, अंतोगत्ता मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आके बोलना पड़ा कि इस प्रोटेस्ट में कहीं से कोई फंडिंग आ रही मुझे नहीं पता, हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन जबरदस्त AIDF फेक की तरीके से पूरा भाजपा लगा हुआ था कि गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, प्रोटेस्ट नहीं है, ये देशद्रोही है, एंटी नेशनल है, पता नहीं क्या क्या किया। अरे एक बार भी आप नहीं समझ रहे थे ये आपके बच्चे, इनका तरीका अलग हो सकता है लेकिन आप बात सुनने को तैयार नहीं है।
17: सत्य प्रकाश
20: मैं देख रहा था, मैं एक मिनट अंजना जी बोलिए, मैं देख रहा था सुधांशु जी कह रहे थे कि दिशाहीन नेतृत्वहीन ये लोग विपक्ष के हैं। अरे 2013 के अन्ना आंदोलन में क्या नरेंद्र मोदी चले गए थे, अमित शाह चले गए थे, राजनाथ सिंह चले गए थे, वो दिशाहीन है, वो नेतृत्वहीन है, ये कैसी बातें आप बेकार की बोल रहे हैं। छात्रों के आंदोलन में वहां पे क्या करते राहुल गांधी और अखिलेश यादव खड़े होके, हम लोगों का समर्थन था, सदन में खड़े होके समर्थन दिया, अगर हम झंडे लेके जाते तो आप कहते लेखो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कहीं नहीं थे सुधांशु जी, कहीं नहीं थे, टाइमलाइन में जाइए, सुषमा जी और जेटली जी ने सदन में खड़े होकर अन्ना आंदोलन का सपोर्ट किया था और कहीं नरेंद्र मोदी किसी स्टेज पे नहीं गए थे, इसलिए गलत मत कीजिए। छात्रों
17: बोल रहे हैं कुछ, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं इसका, सुधांशु जी वो कह रहे हैं अन्ना आंदोलन में भी तो बीजेपी के नेता नहीं गए थे, ये अलग बात है कि किरण बेदी बाद में बीजेपी की नेता बन गई थी, उमा भारती मंच पे गई थी। अच्छा आशुतोष जी को याद है उमा भारती मंच पे
21: हम नहीं गए थे, हमने उसके अंदर कोई सहभागिता नहीं की, मगर यहां तो उल्टी बात है, केजरीवाल जी जाएंगे, सुप्रिया सुले जाएंगी, आम आदमी पार्टी जाएगी, अखिलेश यादव जाएंगे और राहुल गांधी नहीं जाएंगे,
20: उससे आपको क्या मतलब है?
21: वो मैं वो, कह रहा हूं वो डिस्कशन का मतलब नहीं है, लोगों की बातों का क्रमवार उत्तर दे,
22: नीचे थी मंच पर नहीं।
21: अरे सर अब पूरी बात सुन लीजिए, अभी सारे देखिए आज विपक्ष के अंदर की जो मना स्थिति है वो राहुल गांधी जी के वक्तव्य और भाव भंगिमा से आप देखिए कि जिस समय यहां पर अनशन चल रहा था उस समय वो धरती के अज्ञात स्थान पर आनंद मंगल करते हुए आमोद प्रमोद करते हुए कहां अंतर ध्यान थे ये किसी को नहीं पता। अचानक संसद सत्र से शुरू होने से 3-4 दिन पहले साहिबे आलम अवतरित होते हैं, दिल्ली के भिन्न भिन्न जगहों पे जाकर स्थानों पे तरह तरह की नाटकीयता करते हैं और वो 10 जनपद के सामने खंभा नोचते हुए दिखाई पड़े। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो कुछ भी हुआ ये छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए, इस आंदोलन में अवसरवादी तत्व, अराजक तत्व और अपराधी तत्व तीनों अंदर घुसकर छात्रों के पीछे छुपकर देश की व्यवस्था के अंदर समस्या उत्पन्न करना चाहते थे, उनके मंसूबे नाकाम हो गए। और अंजना जी मैं कहूंगा जैसे आपके अभी संवाददाता बोल रहे थे हिमांशु जी, अब इनका स्रोत क्या है मेरे को जानकारी नहीं, मगर ये थोड़ा तर्कसंगत नहीं लगता क्योंकि आज तो वार्ता शुरू होने से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। यदि ये कह रहे हैं कि कल 72 घंटे का अल्टीमेटम हुआ था तो फिर आज 3:30 बजे के लिए वो तैयारी नहीं होते वार्ता करने के लिए। इसलिए यह बात बहुत तर्कसंगत नहीं लगती है, लॉजिकल नहीं लगती है। खैर वो जो भी है स्रोत वो अपनी जगह, मगर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि छात्रों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता और छात्रों को आगे सतर्क रहने की जरूरत है कि आगे से ऐसे कोई सत्ता लोलुप अवसरवादी दल, ऐसे कोई अराजक तत्व, इवन आपराधिक तत्व आपके आंदोलनों में घुसपैठ कर समस्या उत्पन्न करने का प्रयास न करें। जब सरकार आपसे सीधे संवाद के द्वारा समाधान करने के लिए तैयार है तो निश्चित रूप से अराजकता के द्वारा घमासान उत्पन्न करने का मंसूबा पाले हुए तत्वों के प्रति छात्रों को भी बहुत सतर्क दृष्टि रखने की आवश्यकता है।
17: रागी जी, आप अभी तक नहीं बोल पाए, आप भी बोलिए। अब तो इस्तीफा हो गया है और आपका, आप ये बार बार कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी आते आते।
1: हाँ, इसके साथ ही मैं दो चीजें बोल देना चाहता हूँ। इस आंदोलन में CAA, किसान आंदोलन और छात्र आंदोलन, ये तीनों का सम्मिश्रण होने की भूमिका तैयार कर दी गई थी। शाहीनबाग का आंदोलन, किसान आंदोलन, क्योंकि किसान, भारतीय किसान,
17: बात कर रहे हैं आप,
1: प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए।
17: नहीं नहीं,
1: आप हस्तक्षेप मत कीजिए, मुझे पहले बोल लेने दीजिए।
17: मैं हस्तक्षेप करूंगी
1: इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन, सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए उसके बाद बोलिएगा। किसान आंदोलन ने कहा, भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि 27 से हम भी दिल्ली आ रहे हैं और उसके बाद हम छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े होंगे।
17: अगर कोई समर्थन दे रहा है तो क्या गलत है इसमें?
1: तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ,
17: नहीं, नहीं, भाई भारत, आप डिस्क्रेडिट करना चाह रहे हैं ना, आप डिस्क्रेडिट करना मत कीजिए
1: और
17: मत कीजिए, मैं आपको कह रही हूँ ना,
1: तीनों का सम्मिश्रण होने जा रहा था और ये खतरनाक होता।
17: जिनके समर्थक है ना उन्हीं को नुकसान पहुंचाएंगे ये सब बोल के।
1: आप मुझे
17: मत बोलिए
1: भाई,
17: ये इसमें छात्र
1: नुकसान
17: थे
1: हो रहा है, मैं देख करके तो नहीं बोलूंगा।
17: छात्र थे,
1: मैं
17: इसमें छात्र थे या नहीं थे आप ये बताइए।
1: छात्र थे तो, लेकिन जो गुंडागर्दी कर रहे तो वो भी छात्र थे?
17: वो तो पुलिस बताएगी।
1: नहीं नहीं,
17: पुलिस बताए ना, कौन
1: गुंडागर्दी करने वाले भी छात्र थे, 40 साल के लोग भी वहां पर छात्र थे, 36 और 35 साल और 36 साल के लोग भी वहां पर छात्र थे।
17: ठीक है, आप अपनी दुनिया में रहिए।
1: नहीं नहीं नहीं, हम अपनी दुनिया में नहीं है, लेकिन आप ब्लैंकेट ऐसे मत बोलिए।
17: मैं ये मान रहा हूं, लेकिन जिन्होंने उत्पात किया है वो प्रदर्शनकारी ही थे या वो छात्र थे ये प्रूफ नहीं हुआ है, इसलिए मत ऐसा बोलिए। कुछ लोग ऐसे थे जो वहां पर जानबूझकर डिस्क्रेडिट करना चाह रहे थे इस आंदोलन,
1: समझिए,
17: छात्र थे तभी तो छात्रों की बात मानी गई।
1: आपका एसेसमेंट ऐसा है,
17: मंत्री का
1: मैं कह रहा हूं कि छात्र आंदोलन, आंदोलनकारी छात्र इसका नेतृत्व कर रहे थे जिसमें बाकी और लोगों की भूमिका थी। क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर नहीं थे क्या? क्या वामपंथियों के कार्यकर्त्ता वहां पर नहीं थे क्या?
17: ठीक,
2: मैं एक जरूर कहूंगा, राहुल गांधी जी ने कहा है छात्रों की बड़ी जीत हुई है, ठीक है, हमारी तरफ से इतना है कि नरेंद्र मोदी सरकार की छात्रों से बहुत प्रीत है और उस प्रीत को निभाएंगे। उन्होंने मांग रखी, सारी मांगे स्वीकार कर ली गई, ये लोकतंत्र है, यहां जनता की बातों को सुना, समझा और स्वीकार किया जाता है। जो प्रधानमंत्री हर मंच पर दंडवत जनता को प्रणाम करते हैं, संसद की सीढ़ियों को नतमस्तक होकर सदन की ओर जाते हैं, उनको कहा जा रहा है कि अहंकार में बिल्कुल नहीं, जनता से प्यार में, अहंकार में नहीं है। ठीक है, एक डेडलॉक आया था, थोड़ी बातें उनकी आई, समझी गई, पहली प्राथमिकता थी कि नीट को कैसे दुरुस्त फिर से कराया जाए। इस देश में पेपर लीक की समस्या आज नई नहीं है, अभी थोड़ी ज्यादा बढ़ी भी है, उसको हर तरह से उस लीक को खत्म किया जाए, ये सरकारों का प्रयास बिल्कुल होना चाहिए और दुरुस्त होना चाहिए। अब एक सवाल है कि जो छात्र आंदोलन में घुस गए थे, देखिए पॉलिटिकल वल्चरिज्म वहां हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी बैठ गए प्रधानमंत्री के आवास पे, बोला कि सब यहीं पहुंच जाओ, उनका मकसद कुछ और था, हो सकता है अराजकता फैलाना हो, नेपाल बांग्लादेश वो लोग कहते भी रहते हैं हमेशा, श्रीलंका बना दो, केजरीवाल जी भी कह चुके हैं। सवाल है जिन छात्रों ने इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाई, उनके संवाद का स्तर जरूर थोड़ा गिरावट भरा दिखा है कई वीडियो में, लेकिन एक मांग थी, उस मांग को स्वीकार कर सरकार ने जनतंत्र का सम्मान किया है। यह सरकार 1974 में छात्र आंदोलन से इस देश में सरकार बदल गई थी, उसके बहुत सारे लोग इस सरकार में भी हैं। क्या हुआ था 18 मार्च को 1974 को, आशुतोष जी को शायद याद हो, गोलियां चल गई थी, छात्र मर गए थे, मांग बहुत साधारण सी थी। मेरा मानना यहां से एक नया रास्ता सरकार और छात्रों के बीच का संवाद का खुलता है। सरकार हमेशा छात्रों के भरोसे के साथ काम करे और यह मुकर्रर करे कि इस देश में कम से कम छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। एक बात और है, जो पॉलिटिकल वल्चरिज्म पे निकले हैं उन लोगों का इतिहास इन छात्रों को शायद इसलिए नहीं मालूम होगा कि जो छात्र 12 साल पहले 5 साल के थे वो आज 17 साल के हैं, नीट दे रहे हैं। जो 10 साल के थे वो 20 साल के हैं, जो 12 साल के थे वो 22 साल हैं, जो 12 साल के होंगे वो 24 के होंगे। तो उनका इतिहास नहीं पता कांग्रेस का कि गहलोत साहब को पार्टी से बर्खास्त कर दीजिए ना, आज भी कर दीजिए, मॉरल ग्राउंड लीजिए राहुल गांधी जी, गहलोत को पार्टी से बाहर भेजिए। 1919 पेपर लीक होकर के
17: प्रियंका गांधी हटा दिया जनता ने,
2: एक नहीं
17: गई राजस्थान से कांग्रेस की सरकार।
2: आप वैसे पापी को ढो रहे हैं अपनी पार्टी में। एक प्रश्न और है, पंजाब में भी पेपर लीक हुआ तो अच्छा ट्रेंड सेट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो आज वो मील का पत्थर कर दिया कि इस देश में कोई भी मंत्री नॉन परफॉर्मेंस पे पकड़ा जाए इस्तीफा दे। पंजाब वाला दे, केजरीवाल कहां खामोश होकर घूम रहे,
17: अपने मंत्री को हटाइए,
2: हां वहां भी जाए। पेपर लीक
17: सारे शिक्षा मंत्री
2: बिल्कुल, अगर कोई मंत्री जिनके कांधे ये जिम्मेदारी है, मैं यहां से कहता हूं कि ये सेट कर दिया धर्मेंद्र प्रधान जी ने, इस्तीफा हो। अरे अदना सा दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नहीं हटाता नीरज कुमारी लोगों से निर्भया गैंग रेप पे, बोलना नहीं चाहता, लेकिन सरकार के इस प्रयास से इस देश के छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। संवाद का नया पुल बना है, ये पुल मजबूत होना चाहिए और ये प्रीत बरकरार रहेगी। छात्रों को सलाम है और प्रणाम।
16: अंजना जी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आज भी छात्रों को गिद्ध कहा जा रहा है, आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। आज हालत यह है कि यानी बिल्ली के
2: बीजेपी हालत
16: है, लेकिन मैं दो तीन चीजों से इनकी सहमत हूँ। एक तो चीज ये है, सबसे पहली चीज कि इन्होंने कहा सतर्क रहना चाहिए, युवाओं को सतर्क रहना चाहिए कि हमारे पिताजी और दादाजी ने 70 साल तक बीजेपी और आरएसएस को दूर क्यों रखा, अब युवाओं को सतर्क हो जाना चाहिए। दूसरी चीज है कि 7 और 8 साल के बच्चे भी वहां पर आंदोलन में गए थे, वो भी अपने भविष्य के लिए चिंता पूरी चिंता कर रहे थे। नैतिकता की बात करने वालों में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो जो इन बच्चों ने सुसाइड किया है उनको मुआवजा दियाइए उनके परिवारों को, और जिन बच्चों को चोट लगी है उनको भी मुआवजा दिलवाइए। एनटीए को भंग कीजिए, आरएसएस और बीजेपी के लोग जो एनटीए में घुसे हुए हैं उनको बाहर कीजिए। धर्मेंद्र प्रसाद पर जो प्रधान थे वो एक केवल डुगडुगी थे, कुछ नहीं थे, मोदी जी का मुखौटा थे और कुछ नहीं थे, आरएसएस के मुखौटा थे। सीबीआई को अकाउंटेबल कीजिए, जो सीबीआई 2024 में कुछ नहीं कर पाई वो अब 26 में भी करेगी कि नहीं करेगी, और ये टूल किट चलाना बंद कर दीजिए। अब राजनीतिक विश्लेषकों को थोड़ा बच्चों का भी सोचना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता भी कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, राहुल राहुल राहुल राहुल राहुल राहुल राहुल, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है, एक सुझाव नहीं दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, और प्रीत की जो बात की है कि मोदी जी को प्रीत है वो देख ली जनता ने, पैलेट गन मार
3: नौजवानों की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोजर से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में फ्यूचर में कोई पेपर लीक कहीं पर भी किसी प्रदेश में या फिर किसी हमारे देश के नेशनल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें नहीं होगा।
4: अभी जी कह रहे हैं कि अभी ये लड़ाई बाकी है, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है।
3: क्या कहा आपने?
4: अभी जी लिखके कह रहे हैं कि अभी तो ये लड़ाई और भी बाकी है, अभी ये शुरुआत है।
9: प्रोटेस्ट भी सर
4: पहला कदम लिख रहा है,
9: प्रोटेस्ट खत्म।
3: हाँ तो लड़ाई लड़ने का इख्तियार भारत के संविधान ने सबको दिया है, और अभी मोदी सरकार के अभी 2 ही साल तो मुकम्मल हुए हैं, तो जाहिर है सबको मिलकर जद्दोजहद करना पड़ेगा।
4: अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनकलाब की जीत हुई है,
3: अब वो उनके बारे में मुझे
9: सर अजय राय है कांग्रेस अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और फिर उसके बाद जांच होनी चाहिए।
3: कोई दूसरे पार्टी का क्या बोलेगा, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप, वो जवाब देंगे अपना।
9: सर लीडर ऑफ अपोजिशन के पे तो वो बताएंगे सर, वो बोल रहे हैं कि लड़ाई जो है इस पूरे मामले में जो कार्यवाही है, जिन्होंने लाठीचार्ज किया है पुलिस वालों पे, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और एक्शन सख्त होना चाहिए, आपका क्या स्टैंड है?
3: चार लोगों को पैलेट गन से गोली मारी गई और एक की तो आंख जाय होने वाली है, इस पर एक्शन होना जरूरी है कि कैसे पैलेट गन इस्तेमाल किया गया और जिन लड़के लड़कियों का लाठियों से सर फोड़ा गया है वो वीडियो विजुअल तो सारी दुनिया ने देखे हैं और वो मसला दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया है, अब शायद सुप्रीम कोर्ट भी उसमें सुनवाई होगी। तो सरकार को चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। तो यकीनन ये पैलेट गन आप देखिए कि जब जम्मू कश्मीर में इसको इस्तेमाल किया गया था, करीब मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना कहूं तो 1000 के ऊपर लोगों को पैलेट गन से मारा गया था, उसमें से 50-60 लोग बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। तो पैलेट गन का इस्तेमाल जिन 4 युवाओं पर हुआ है उसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। एक तो मंसूरी है जबलपुर मध्य प्रदेश के, जो बीए एमबीए करे, एक इसमें कोई आपकी बरादरी का आउटलुक का जर्नलिस्ट है, तो ऐसे कैसे होगा? तो बिल्कुल गलत हुआ है। और जिन लड़कियों को आपने उनसे बदसलूकी की, बल्कि वो तो सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ उनके ऊपर, वो भी कैमरा वीडियोस में कैद है, तो इस पर यकीनन एक्शन होना चाहिए।
5: 36 दिन बाद इस्तीफा आया इतने कियोस के बाद, तो आपको लगता है कि सरकार ने देरी की है इसमें?
3: अब सरकार झुकने के लिए देरी कर दी ना, 36 दिन लगे उनको झुकने के लिए।
6: शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार अब होना है सर, इसमें किस तरह की?
3: उत्तर प्रदेश में कितने पेपर का लीक हुआ बताइए, कितने पेपर्स का लीक हुआ है? तो हम उम्मीद करते हैं कि ये देखिए सरकार कह रही है कि 2024 में कानून बनाया पेपर लीक के खिलाफ, उसमें 10 साल और 1 करोड़ का फाइन लगाया। अब आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ का फाइन होगा। भाई पेपर लीक हो क्यों रहा है वो तो देखिए आप, कानून बनाएंगे ये बनाएंगे। अच्छा फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट तो एक मजाक बन चुका है, 2009 में फास्ट ट्रैक।
17: तो असदुद्दीन ओवैसी भी इस मुद्दे पर बोल रहे थे। आलोक जी आपको बीच में टोक दिया गया था, बोलिए। एक और खबर इस वक्त आ रही है, हरसिमरत कौर बादल का बयान आया है, पंजाब के शिक्षा मंत्री बर्खास्त। देखिए आप ये कह रहे थे,
21: जोर से बोल दीजिए थोड़ा।
17: अब ये आम आदमी पार्टी का तो कोई है नहीं यहाँ पर, आप सरकार में 6 शिक्षा घोटाले।
18: मैं तो कह रहा हूँ बर्खास्त होना चाहिए, देश की शिक्षा के साथ चाहे राज्य के अंदर हो चाहे केंद्र के अंदर हो, जरा सा भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ है। जहां कहीं भी पेपर लीक हो रहा है वहां के शिक्षा मंत्री बर्खास्त हो,
17: बर्खास्त हो, इस्तीफा दे।
18: नहीं बर्खास्त हो, ये देखिए इनकॉम्पिटेंट आदमी।
17: भगवंत मान जी से कह रहे हैं आपके बर्खास्त करें उनको।
18: मैं भगवंत मान की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जहां कहीं भी चाहे झारखंड के अंदर हो चाहे उत्तराखंड में हो चाहे पंजाब के अंदर हो चाहे केंद्र में हो चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, जो कोई भी शिक्षा मंत्री
17: एक पेपर लीक तो एक इस्तीफा।
18: यस,
17: ये नियम बना done. बच्चों के लिए।
18: आप उस बच्चे की तकलीफ नहीं समझते जो बेचारा साल साल भर मेहनत करता है।
16: मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते में 2 पेपर लीक हुए हैं, और अगर हमारी सरकार 4 जगह पर है वहां पर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है इस तरह की पेपर लीक की बात आती है वहां पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए, और इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए, बर्खास्तगी भी होनी चाहिए। लेकिन रेल एक्सीडेंट में रेल मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए, रेल मंत्री कितने एक्सीडेंट करवा चुके हैं उसके ऊपर भी होना चाहिए। हर मंत्री की अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे हमारा हो और चाहे भाजपा का हो। ये मोदी जी का विश्व गुरु का जो गुब्बारा है फूट चुका है, अब देश इनसे जानना चाहता है कि वित्त मंत्री की क्या परफॉर्मेंस है। 100 के पार अगर डॉलर जाए तो वित्त मंत्री भी हटनी चाहिए,
18: कितने
16: वित्त मंत्री भी हटनी चाहिए,
18: यूपीए का
16: पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हटने चाहिए,
18: कपिल सिब्बल
16: मुद्दे पे गडकरी भी हटने चाहिए।
18: इस्तीफा दिए थे क्या?
16: बता दूं कि अगला नंबर गडकरी जी का है, ये बता रहा हूं मैं आपको।
18: इस्तीफा दिए थे,
16: हमारे देश के इंजीनियर को बट्टा बैठा दिया। अगला नंबर गडकरी जी का है, अपने बच्चों का घर बहुत भर लिया है, अगला नंबर गडकरी जी का है और अश्विनी वैष्णव जी का है।
17: सुधांशु जी
21: देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी आपने इतना लंबा ओवैसी साहब का बयान दिखाया तो मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के सदर और बिगड़े दिल शहजादे के शब्द लगभग एक थे। जो बात आलोक जी ने कही तो मैं भी कहना चाहता हूं, शायद आपको याद ही नहीं कर्नाटक में 4 पेपर लीक हो चुके, सब छोड़िए परफॉर्मेंस बिल्कुल जनता के सामने नहीं हुआ। हम विपक्ष में थे, गुजरात बॉर्डर था, मध्य प्रदेश बॉर्डर था, आज विपक्ष में रहते हुए आप जहां सत्ता में हैं वहां होना चाहिए कि कर्नाटक
17: तेलंगाना
21: का केरल का और क्या मॉडल है।
17: एक सेकंड सुधांशु जी, आलोक जी आज ही खबर आई है और चली भी, इसीलिए आपको बता रही हूं कि कर्नाटका में वेटनरी, चूंकि आपने पूछा है तो जो जानकारी है वो यही है, आरोपों के मुताबिक केपीएससी एंट्रेंस एग्जाम में जो रिक्रूटमेंट स्कैम का आरोप लग रहा है कि कर्नाटका वेटनरी डॉक्टर्स का ये आरोप है कि केपीएससी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, रिजॉर्ट में एग्जाम लिया गया है और 80 लाख की घूस का आरोप है। तो ये कल की खबर है।
7: देखिए आरोप है, पेपर लीक नहीं। अगर कहीं पर कोई गलत चीज हुई है उस पर एक्शन होगा। पेपर लीक और किसी तरह का स्कैंडल हुआ उसमें फर्क है, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। 21 जून के पेपर वाले दिन इनोवेटिव व्यू ने बायोमेट्रिक में सैकड़ों बच्चों के साथ गबन किया।
17: ठीक है, जो खबर जैसे हमने बता दिया आपको, वेटनरी डॉक्टर्स ने बाकायदा विधान सौदा के बाद थाने में
7: एक एफआईआर में उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
17: एक रिपोर्ट आई। ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी कि भाई एक पेपर लीक।

0: अब विपक्ष का थोड़ा विवेक जागृत होगा और वो उस बिल पर संसद में चर्चा करेंगे ताकि शीघ्र वह कानून बने और वह कठोर दंड लागू हो जाए, ये देखने का विचार होगा। और सोमवार से
1: यह प्रयास
0: मैं आशा करता हूं कि इस समय कम से कम आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर संसद
1: बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, आज ही तो देश की जनता ने शिक्षा मंत्री को इनकॉम्पिटेंसी के चलते हुए बर्खास्त किया। आज ही आप विपक्ष की विवेक की बात कर रहे हैं, विपक्ष हमेशा से विवेकशील रहा है, आप ही लोग विवेकहीन रहे हैं। लेकिन इस बार जनजी ने, युवाओं ने बता दिया है कि इस बार वो जो 56 इंच का सीना और वो जो फर्जी गुब्बारा फुला रखा था वो सब उतर चुका है। दुर्भाग्य यह है कि आप लोग अभी भी नहीं जाग रहे हैं, अभी भी कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हैं। एनटीए को भंग करो, सारे आरएसएस के संगी भरे पड़े हैं उसके अंदर, उसको निकालो, उनको वो इनोवेटिव व्यू कंपनी को सीबीआई से जांच करवाओ, जो असली गुनहगार है जिसके चलते हुए सारी चीजें हो रही हैं। दो चार टीचर्स को जेल में डाल के आप केवल ये शो कर दें, बाकी सब मगरमच्छों को बचा लें, ये नहीं होगा। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, कंपनी का नाम ले रहा हूं, जिसके पास एनटीए की सिक्योरिटी का दसियों साल से ठेका है, कौन दे रहा था? विनीत जोशी क्यों हटा? किसकी नजदीकियां थी? धर्मेंद्र प्रधान के नजदीक?
2: देखिए सुधांशु जी, ये मामला अचानक ऐसा नहीं है कि अचानक उठा है, लगातार ऐसा होना, ब्लैकलिस्टेड लोगों को टेंडर मिल जाना, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जो पूरी तरह से रोकी जा सकती थी। सुधांशु जी,
0: जी इसीलिए जहां से मैंने बात शुरू की थी अंतिम चरण में वही कह रहा हूं, तो नैतिक और तकनीकी दोनों पक्ष पे काम कर रहे हैं। और आलोक जी कह रहे हैं विवेक की बात, तो भाई साहब हम दर्शकों के विवेक पे छोड़ते हैं कि अगर किसी राज्य की विधानसभा बाल बुद्धि शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दे तो किसके विवेक पर प्रश्न चिन्ह था, ये समझा जा सकता था। अभी आलोक जी ने कहा 6 और 7 साल के बच्चे भी उसको समर्थन दे रहे थे। अब मैं दर्शकों से पूछता हूं, 6 और 7 साल का बच्चा समर्थन दे रहा था, अब ये किसी की शारीरिक आयु के बारे में बता रहे थे या मानसिक आयु के बारे में? यह भी मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं, वह यह समझ सकते।
1: मैं उत्तर दे देता हूं,
0: इतना कहना चाहता हूं कि अब ये एक कसौटी होगी विपक्ष की, क्या वो संसद में चलने देती है संसद और अपनी बात संसद के पटल पर रखती है धारदार तरीके से, या फिर भागने का प्रयास करती है, या अगले 48 से 72 घंटे में साफ हो जाएगा।
3: आशुतोष जी जल्दी। देखिए मैं एक ही बात कह रहा हूं, सीधी सी बात है, कानून इस देश के अंदर बहुत सारे हैं। निर्भया के बाद भी कानून बना था क्या, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बलात्कार?
2: निर्भया कांड को 7 साल लगे, निर्भया में जस्टिस में 7 साल, जो
3: 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार एक कानून लेकर आई थी, क्यों नहीं उस पर पालन हुआ? आप फिर एक कानून लेकर आ रहे हैं, अरे कानून आप 100 लेकर आइए, कम से कम एग्जीक्यूट कराइए उसको महाराज।
2: जल्दी से सत्यप्रकाश मिश्रा जी,
4: देखिए कानून रहेगा तभी एग्जीक्यूट होगा, कानून और कठोर आएगा मैसेज स्ट्रांग जाएगा। सरकार ने ठान लिया है पेपर लीक नहीं होने देंगे। रहा धर्मेंद्र जी का इस्तीफा, ठीक है स्वागत योग्य कदम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने जो लिखा है कि मैं राष्ट्र के और कोई योजना कर ले उसके हित में इस्तीफा दे रहा हूं, ट्रेंड सेट हो गया। एक लाइन और, वो जो मुख्यमंत्री और मंत्री लोग जेल चले जाते हैं 30 दिन तक, सबको इस्तीफा नहीं देते, उस बिल पे कांग्रेस वोट करेगी क्या सदन में समर्थन में? मोर अकाउंटेबिलिटी आएगी, जो भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री, आरोपित मंत्री और गवर्नर जो भी पद पर संवैधानिक पद पर बैठे हैं उसमें तो कांग्रेस अखिलेश सब भाग खड़े हुए हैं, दीजिए ना समर्थन 30 दिन में बर्खास्त करेंगे, कोई भी किसी पद पर बैठ के इस देश के लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ाएगा। जेल में बैठे मुख्यमंत्री के साथ आलोक शर्मा हाथ मिला रहे थे दिल्ली के चुनाव में, शर्म तो आई नहीं उस दिन। पंजाब के शिक्षा मंत्री पर उसी तरह चिंगारी के बोले जैसे उत्तराखंड में बोले, देश का कोई मंत्री भ्रष्ट हो,
1: अगली आतंकवादी
4: दिन के जेल में हो उसकी बर्खास्ती पर वोट देने का,
2: ठीक है जवाब दे
1: राहुल गांधी होना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि अगले रेल एक्सीडेंट पे अश्विनी वैष्णव का भी इस्तीफा मांगेंगे हमारे मित्र, और अगली आतंकवादी घटना पे, अगले पहलगांव और पुलवामा पे और दिल्ली के लाल किले के ब्लास्ट पे अमित शाह जी का भी इस्तीफा मांगा जाएगा।
4: नीतीश कुमार हिम्मत लालू जी को रेल मंत्री बनाए थे, श्वेत पत्र
1: जरूर मांगिएगा, हमारे समय में
4: घोटाला करके गए, नौकरी के बदले जमीन, शर्म तो आती नहीं है, बेशर्म यूपीए सरकार को शर्म आई नहीं, जनता ने बता दिया कर दिया, अब आए हैं।
2: चलिए आप लोग लड़ाई करते रहिए, अब थोड़ा सा घर में भी जाके लड़िएगा, कितना टीवी पर लड़िएगा, बच्चे आप सबको आंक रहे हैं, सबको माप रहे हैं, और ये देखेंगे कि उनके मुद्दों के प्रति ईमानदार अंत में कौन निकलता है। पेपर लीक रोकना ही होगा कोई

0: कल्प नहीं है। आइए आप दिखाते हैं आपको 7 बजे की हेडलाइंस 7 तक राजीव के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, कहा युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। त्याग पत्र के बाद जंतर मंतर में भी छात्रों का जश्न।

नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। पेपर लीक के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा था, सीजेपी ने, कांग्रेस जनता पार्टी ने उस प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। तीन दौर की बातचीत के बाद एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार बैकफुट पर सीधी सीधी दिखाई दी। धर्मेंद्र प्रधान के जो इस्तीफे की मांग की जा रही थी, वो इस्तीफा आज हो गया और उस इस्तीफे के बाद एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जो बाकी बची हुई मांग थी, यानी कि मुआवजे का ऐलान था, इसके साथ साथ जो FIR थी प्रदर्शनकारियों पर, वो वापस लेने की मांग थी, उसको वापस ले लिया गया। उस फैसले को मान लिया गया सीजेपी के, और उसके बाद आंदोलन खत्म हो गया। सरकार ने छात्रों की बातें मान ली और इन शर्तों को जब मान लिया गया तो वहीं से मंच पर से ही वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान कर दिया गया कि जो सीजेपी है वो अपना जो प्रदर्शन है वो खत्म कर देगी। अब सवाल जो है उस मुद्दे का है जिसकी वजह से आंदोलन शुरू हुआ। क्या पेपर लीक अब रुकेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। और क्या छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ अब इससे पहले हो रहा था, क्या अब नहीं होगा?

0: की मांग कॉकरोच पार्टी का अनशन, राहुल गांधी की जिद विपक्ष का प्रदर्शन, आखिरकार शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट की। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए कुछ यूं लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। जंतर मंतर पर पिछले 50 दिनों से चल रहे ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के भारी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सौंपते ही कॉकरोच जनता पार्टी झूम उठी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: अर्थात से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा।
0: आज सरकार के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के तीसरे राउंड की बैठक थी, जिसमें सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना पक्ष रखना था, लेकिन बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कॉकरोच पार्टी और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बात हुई। सरकार ने तीनों शर्तें मानी और आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया।
3: भारत माता की।
4: मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिबेट रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
0: सरकार के सामने कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मांगे रखी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई ना हो।
5: सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो गारंटी है रिटर्न में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग FIR के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि क्या सिर्फ एक चेहरे के बदलने से भारत का परीक्षा तंत्र सुधर पाएगा या फिर छात्रों को न्याय मिलने तक ये आंदोलन एक नया रूप लेगा। आज तक ब्यूरो।
6: और अब आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हमारे 2 संवाददाता इस समय ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ खास मेहमान भी हमारे साथ इस समय हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी हैं, हमारे साथ इस समय बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जुड़े हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे चरण सिंह सापरा जी और सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मौसमी आपके पास आते हुए, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कह रहे थे कि इस्तीफा तो देना ही था, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ इस समय कांग्रेस कार्यालय के भीतर चल रहा है, क्या क्या चर्चाएं हुई इस प्रोटेस्ट के बाद, अब कैसे आगे बढ़ेगी कांग्रेस, क्या करेगी आगे?
7: देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का एहसास है और राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में भी ये जाहिर हुआ कि सड़क की लड़ाई भले ही अभी स्थगित हो गई हो, सड़क की लड़ाई छात्र जीत गए हो, लेकिन कांग्रेस अब इस तैयारी में है कि संसद में जो लड़ाई करनी है, सरकार को घेरने का काम करना है, उसकी अब वो तैयारी कर रही है। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री की माफी की बात कहते हुए इस बात का जिक्र भी करते हैं, संघ पर प्रहार करते हुए वो कहते हैं जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा प्रणाली है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश की जो शिक्षा प्रणाली है वो इस कदर जो है खराब की गई हो, और उसको लेके मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष अब लामबंदी करेगा, क्योंकि सोमवार को आपको पता ही है कि एक संशोधन आने वाला है एंटी चीटिंग लॉ जो है 2024 का, उसमें तो उसको लेकर विपक्ष अब अपनी रणनीति बना रहा है। हालांकि आज अगर हम कहें तो आज का दिन छात्रों का था, छात्र जिस तरीके से जंतर मंतर में प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे और ये ऐलान हुआ इस्तीफे का, तो भले चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी विपक्षी दल, इसको छात्रों की जीत ही बता रहा है।
6: ठीक है, मौसम बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं। आशुतोष इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है, जंतर मंतर के बिल्कुल निकट हैं। तो प्रदर्शन आशुतोष खत्म हो गया, तो अब सीजेपी के समर्थक वापस लौट रहे हैं या अभी भी जश्न मन रहा है वहां पे?
8: जश्न अगर कहें तो ठीक होगा, और वो इतने क्रिएटिव है, इतने पोस्टर उस्टर लेकर के आ गए कि देखिए कि ये लगता है कि ये हम मिलेनियल्स का समय चला गया, अब ये नई जनरेशन की बारी है। और वो लिटरली कहते हैं ना कि वो ऐसे नारे हैं कि गोली तलवार से नहीं बल्कि इंस्टाग्राम और रील के वार से जो है घायल करेंगे, और वो अभी भी चल रहा है। कई सारे कोई डीजे वीजे भी लेकर के आ गए, लेकिन हाँ थोड़ी सी मैं तस्वीरें दिखाने, दरअसल एक और भी है कि पुलिस और प्रशासन आप चीज़ें लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि जानकारी ले लें, यहाँ चले जाएँ, खुल गया है, लेकिन वो जानकारी इन तक पहुँचेगी कैसे? यहाँ तो इंटरनेट बंद है, उन बच्चों को कुछ पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे। तो थोड़ा मुझे लगता है प्रशासन को भी यहाँ कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंटरनेट बंद है तो उनको जानकारी नहीं मिल पाएगी। लेकिन अब निकल रहे हैं, आपको आउटर सर्कल में तस्वीरें दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे निकलना शुरू हो गए हैं। कुछ और भी लोग हैं, वीकेंड है तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं, वो भी अब जंतर मंतर क्या है कि अट्रैक्शन पॉइंट बन चुका है। और इस समय अगर मैं राजू में जो देखते हुए आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है वहाँ कोई यूथ फेस्टिवल चल रहा है। एक तूफान लेकर के वो आए थे, मांग था, मुद्दा जायज था, उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, आंसू गैस के गोले खाए, मार खाई, और उसके बाद भी वो टिके रहे और डटे रहे। और उसी डटने के बाद जब ये लगा कि सरकार, देखिए लोकतंत्र में यही तो होता है, लोग प्रदर्शन करते हैं, विरोध जताते हैं, सरकार उनकी बात मानती है, और उसी के तहत सरकार आई, डेलीगेशन आया, केंद्रीय दो दो मंत्री आते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत के बाद जैसे उनकी मांगे माने गए, उधर इस्तीफा होता है, उन्होंने कहा केस भी वापस होंगे, बाकी चीजें होंगे, वहीं से अनाउंस कर दिया गया, मंच से घोषणा की गई। मैं बड़ी संख्या में छात्रों को जाता हुआ देख रहा हूं, मेट्रो के सारे एंट्री एग्जिट खोल दिए गए हैं, तो हाँ धीरे धीरे हो सकता है कि देर रात तक ट्रैफिक वगैरह बिल्कुल सामान्य हो जाए।
6: यानी कि वो अपना कर्म कर रहे थे, फल की चिंता नहीं कर रहे थे, और अब जो कर्म करता है फल उनको मिलता है, और फल उनको मिल गया है। और खास मेहमान भी हमारे साथ हैं अब, प्रेम शुक्ला जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि एक बयान भी अभी बड़ा वायरल हो रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, कि भाई मंत्रियों का त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, ये यूपीए नहीं, ये तो एनडीए है। लेकिन आज अभिजीत दिपके ने बिल्कुल तंज कसते हुए कहा कि कहा जाता था कि यहां तो इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफा हो गया है, झुकने वाला मतलब चाहिए, झुकता है हर कोई है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
9: फलदार वृक्ष जो है झुकता है, बबूल का पेड़ नहीं झुकता है। फलदार वृक्ष में जो है लोच भी होता है और झुकाव भी होता है। बबूल झुकता नहीं है, ताड़ झुकता नहीं है, यूकलिप्टस झुकता नहीं है, वो टूटता है। तो आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने छात्रों के इस आंदोलन को अलगाववादी, अराजक और अवसरवादी तत्वों में के हाथों में जाने से रोकने के लिए जिस तरह से अराजक शक्तियां इस आंदोलन में घुस गई थी, और ये स्वयं सोनम वांगचुक ने भी स्वीकार किया, और आज भी सीजेपी के प्रवक्ताओं ने अपने पत्रकार वार्ता की मंच से इस तथ्य को स्वीकार किया कि उनके
6: प्रेम शुक्ला जी, अभी आप ये नहीं मान रहे हैं कि वो अपनी गलती से उन्होंने रिजाइन दिया, आप ये कह रहे हैं कि अलगाव तत्व घुस गए थे, वो और ज्यादा खराब कर देते माहौल, इसलिए इस्तीफा दिया?
9: नहीं, निश्चित तौर पर जिस तरह से भ्रम की स्थिति छात्रों में फैलाई जा रही थी, छात्रों के करियर को नष्ट करने के लिए अराजक तत्व अगर इस तरह की हरकतें करते, मामले कुछ छात्रों पर भी दर्ज होते, तो इससे छात्रों का करियर संकट में आता। तो छात्रों के उज्जवल भविष्य की हमको चिंता है, हम छात्रों के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ करने का अवसर राजनीतिक अवसरवादियों को नहीं दे सकते, अराजक शक्तियों को नहीं दे सकते, इसलिए
6: ये चिंता क्यों है? और ये त्याग पत्र में ये तो मांग कर रहे थे, तो ये नौबत ही नहीं आते।
9: नहीं, ये 10 दिन में देखा ना, नहीं ये 10 दिन में देखा गया ना कि अराजक शक्तियां, अवसरवादी शक्तियां किस तरह का कुचक्र रच रही थी और छात्रों के कंधों पर रखकर बंदूक दाग रही थी, ये देखा गया। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के त्यागपत्र को ठीक से एक बार आप पढ़ लीजिए, तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि हम किस मुद्दे पर त्यागपत्र दे रहे हैं। और हम ही त्यागपत्र दे सकते, कपिल सिब्बल ने दिया था क्या त्यागपत्र? 2006 में भी पेपर लीक हुए थे, 19 पेपर लीक हुए राजस्थान में 19, और गोविंद डोटासरा का प्रमोशन कर दिया राहुल गांधी ने, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया शिक्षा मंत्री से। तो यहां तो वहां तो पदोन्नति होती थी। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए लेकिन मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दिया, क्योंकि जो बबूल का वृक्ष होता है वो सिर्फ कांटे ही दे सकता है, वो फलदार वृक्षों की तरफ
6: से फलदार वृक्ष है, तो इसलिए झुके। सभी मेहमान हमारे साथ, में एक एक करके सबके पास आने वाला हूं, लेकिन इस बीच में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही छात्र आंदोलन तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी इस मुद्दे पर जो सियासी खेल है वो चल रहा है। सोमवार को एक बार फिर से मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी, संसद खुलेगी, जहां पर एक बार फिर से बड़े घमासान के आसार हैं।
10: छात्र खुश हैं, विपक्ष खुश है।
2: सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।
5: खुश है कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए।
10: लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरा गतिरोध खत्म हो जाएगा? क्योंकि सड़क पर तो जंग खत्म हो गई है, लेकिन संसद में लड़ाई अभी बाकी है।
11: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे।
12: ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
10: सरकार ने पेपर लीक को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है, लेकिन इस ड्राफ्ट के साथ मॉनसून सत्र में घमासान का नया चैप्टर खुलने वाला है, क्योंकि सरकार जहां पेपर लीक पर चर्चा पर लगातार जोर दे रही थी, तो वहीं विपक्ष के लिए चर्चा की पहली शर्त ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। ऐसे में क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में पेपर लीक पर चर्चा होगी?
13: Fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will.
14: आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी, लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा।
15: जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी, और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी।
10: उधर दीपके भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है,
16: ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है।
10: सड़क पर पेपर लीक की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब एक लड़ाई संसद में होनी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
6: और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए चरण सिंह सापरा जी, अब आपके पास आते हुए आज दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाई संसद चल रही है, संसद में आप जवाब भी मांग रहे हैं, अब शिक्षा मंत्री वहां नहीं होंगे तो जवाब कौन देगा, अब शिक्षा मंत्री उन्होंने रिजाइन कर दिया है, अब क्या सब किन सवालों के साथ जाएंगे आप जब संसद में पहुंचेंगे? तो
17: देखिए राजीव जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी उत्तर दे रहे थे, उन्होंने कई सारी कहानियां सुनाने का प्रयास किया, बबुल का पेड़ वगैरह क्या क्या बातें कही, इससे में मुझे चंद लाइनें याद आ गई हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, और दूसरा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दरअसल हुआ क्या है, प्रजातंत्र की आज जीत हुई है, मोदी तंत्र की हार हुई है, ये हुआ है, और आज संविधान जीता है, संविधानिक मूल्य जीते हैं। मोदी जी और इनके जितने सहयोगी थे ये क्या करने जा रहे थे, ये हेट और हिट से युवाओं को मारना चाह रहे थे, लेकिन युवाओं ने इनको हिट विकेट कर दिया। आपने राजनाथ सिंह की भी बात की तो मैं कहना चाहूंगा कि अहंकार तो रावण का भी जो है वो भी ध्वस्त हुआ था, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी क्या चीज है? सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए महात्मा गांधी लड़े थे गोरों से, और वही सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आदरणीय राहुल गांधी लड़े हैं चोरों से। ये पूरी जीत जो है, ये समूचा जो हमारा विपक्ष है उसकी सांझी जीत है, छात्रों की जीत है, और ये उन परिवारों की जीत है जिनके बच्चों ने आत्महत्या की है, उन परिवारों की जो पीड़ा है उसके साथ हम खड़े हैं और सदैव खड़े रहेंगे। अब बात यह आती है कि इस सरकार को अभी और भी हिलाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अब तो चेहरा गया है, चेहरे के बाद में सिस्टम भी तो सुधारना है ना। जो भ्रष्टाचार का चेहरा था एनटीए में, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, वो चेहरा गया है, अब सिस्टम को सुधारना है। तो सिस्टम को सुधारने के लिए देखते हैं कि सोमवार को सरकार क्या लेकर के आ रही है, उसके ऊपर क्या सुधार हो सकते हैं वो हम बताएंगे, और इनकी खामियां
6: उम्मीद
17: भी बताएंगे।
6: हम करते हैं कि सर आप पूरा सहयोग भी करेंगे। ठीक है,
17: अंदाजी है।
6: ठीक है सर। प्रोफेसर संगीत रागी, क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि ईगो पर ले लिया गया था, मतलब एक्चुअल में अहंकारी हो गई थी सरकार? अगर ईगो पर नहीं लेती, पहले इस्तीफा हो जाता तो शायद इतना डैमेज नहीं होता।
14: देखिए, यदि सरकार ईगो पर ले लेती तो क्या करती, वही करती जो कपिल सिब्बल ने 2011 में किया था। लखनऊ में प्रश्न पत्र जो है वो घूम रहे थे चारों ओर, उसको साइक्लो स्टाइल्ड कॉपी चारों ओर घूम रही थी। हुआ क्या, वहां का सिर्फ पेपर जो है वो दोबारा क्वेश्चन पेपर वहां पर भेज दिया गया था और एग्जाम करा लिया गया। तब किसी ने कपिल सिब्बल से इस्तीफा नहीं मांगा था 2011 में। अन्ना आंदोलन के समय महिला की एक मृत्यु हो गई थी, पहले पैरालिटिक हुआ उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, उस पर भी लाठी चलाया गया था, किसी ने कंपेंसेशन नहीं दिया था। कार सेवकों की हत्या, बर्बर हत्या किया था समाजवादी पार्टी ने, उन पर कोई वो कार सेवक अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर के नहीं, वो भी अहिंसक आंदोलन था, लेकिन किसी को कंपेंसेशन नहीं दिया गया था। देखिए क्यों ये सरकार झुकी, उसका कारण मैं बताता हूं। इस आंदोलन को बांग्लादेश और नेपाल की तरह तख्ता पलटने के आंदोलन में परिणत करने की कोशिश की जा रही थी, और उसमें शाहीन बाग एलिमेंट आ गया था। आज सुबह हमने देखा था मुस्लिम नेताओं का, धर्मगुरुओं का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा, जिसमें उन्होंने कहा, मैं अपनी बात खत्म कर लूं,
6: अगर ऐसे मनसूबे वाले आ गए थे तो सरकार ने रिजाइन कर दिया।
14: सुन ले
6: तो उनको और ज्यादा स्ट्रांगली खड़े होना चाहिए।
14: सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए पूरी, अपनी बात खत्म नहीं किया है। चूंकि ऐसे तत्व आ रहे थे, शाहीन बाग वाले तत्व भी जुड़ गए थे इसमें, गुंडे, मवाली, बदमाश, हलवाई की दुकान पर काम करने वाले ऐसे लोगों से पंचर बनाने वाले तक छपरा में पकड़े गए कि ऐसे लोग भी उसमें शामिल थे। अराजक तत्व, किसान आंदोलन, आपने देखा होगा कि उग्राह ग्रुप ने कहा कि भाई हम 27 को दिल्ली मार्च करेंगे और हम किसान आ रहे हैं पंजाब से चल करके।
6: ठीक है,
14: उनको वहां पर आंदोलन नहीं करना था, लेकिन किसान आंदोलन का समर्थन, यानी कि फिर किसान आंदोलन एक नया खड़ा करने की कोशिश, शाहीन बाग खड़ा करने की कोशिश, और साथ में छात्र आंदोलन था ही, छात्र आंदोलन में घुस गए जो जिसे हम कहते हैं असामाजिक तत्व, गुंडे, बदमाश, इन सब को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता, उसको बचाने के लिए सरकार ने मुझे इस्तीफा ले लिया।
6: मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, इस बीच में एक बड़ी खबर मिल रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, ये बड़ी खबर, इस्तीफा दे चुके हैं, और जानकारी ये भी मिल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया, लेकिन एक अहम मुलाकात उनकी हुई है। अभी धर्मेंद्र प्रधान ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और चीजें बिल्कुल अब सामान्य होती हुई दिखाई दे रहे हैं कनॉट प्लेस और संसद के इर्द गिर्द, लेकिन इस बीच में ये मुलाकात की खबर मिल रही है। हाँ, मैं चाहता हूँ आशुतोष आप इस पर जवाब दें।
18: मैं तो एक ही बात, एलिमेंट्स वहाँ पर आ रहे हैं, एक ही बात कह सकता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर अगर विनम्रता आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप अभी भी
6: माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, मैं आपके पास आऊंगा अभी। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, ये जो मुलाकात हुई है, क्या इसमें बातचीत में क्या मायने हैं इस मुलाकात के?
19: तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये जो मुलाकात हुई, और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं हुई है, दो बार जो है धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफे के बाद गृहमंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं, और उसके अलावा उनसे कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके घर मिलने भी गए हैं। देखिए नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि अब एक बड़ा सवाल जो है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है ये एज एडिशनल चार्ज, क्या एडिशनल चार्ज के तौर पर दिया जाएगा या फिर किसी एक जो लोग है क्या किसी एक को बनाया जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर, तो क्या एडिशनल चार्ज होगा या फिर हम देखेंगे बहुत जल्द एक नए एजुकेशन मिनिस्टर, तो ये इस समय बड़ा सवाल है। और बातचीत जो हुई उसके अंदर यही डिसाइड किया जाएगा कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, और मंडे सुबह 11 बजे लोकसभा के अंदर जो अमेंडेड बिल है उसको भी प्रस्तुत किया जाएगा।
6: किसको जिम्मेदारी मिल सकती है,
19: एक बहुत गहन
6: किसकी चर्चा हो रही
19: है, हमने देखा है कि एक तांता लग गया है, बड़ा सवाल देखिए इस समय ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस किस का नाम राउंड कर रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर है। अचानक से हमने देखा किस तरीके से इस्तीफा आया, जबकि हमने जो हमें पता चला था पहले वो ये है कि सरकार को लग रहा था कि अगर इस्तीफा दिया गया तो ऐसा लगेगा कि जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तो इंतजार
6: बीजेपी में तो ऐसे इजीली नाम सामने आते भी नहीं है। अच्छा ऐश्वर्या, चूंकि आप जंतर मंतर पर एक बार जल्दी से आप तस्वीर भी दिखा दें हमें प्लीज, क्या इस समय माहौल है, क्या सीजेपी वाले वापस लौट रहे हैं?
20: जिन बच्चों की मौत हो गई कुछ भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, कुछ भी उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता, लेकिन उनकी जो फैमिलीज है उनके लिए हम लोगों ने 1 करोड़ का मुआवजा का डिमांड किया था। सरकार ने एक ऑनरेबल कॉम्पेंसेशन पे एग्री किया है, तो एटलीस्ट उससे फैमिलीज को रिलीफ मिले, ये हमारा प्रयास है। क्या चीज का देखिए, ये सरकार अड़ी हुई थी, उनका ईगो बड़ा था कि हम लोगों में रेजिग्नेशन नहीं होता, लेकिन वो भूल गए थे कि युवा अगर एकता एकजुट हो जाए तो फिर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो।
6: एक बार फिर से ऐश्वर्या के पास जल्दी चलते हैं। ऐश्वर्या, इस समय क्या माहौल है अभी वहां पे?
19: डर से दूर से खड़े होके देखते हैं। देखिए बहुत ही सामान्य इस समय यहाँ पे माहौल हो चुका है। सबसे पहले बताना चाहूंगी बैरिकेड्स की बात, बैरिकेड्स को अगर आप देखेंगे तो बैरिकेड्स अभी भी यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी तरीके से बैरिकेड रुकावट नहीं बन रहे। देखिए पानी में आपको बता दूं, हमने देखा था कि किस तरीके से लोग खाना पीना लेके आ रहे थे, तो पानी की बॉटल्स यहाँ पे अभी भी कई सारे लोग जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी भी आपको यहाँ पे खड़े हुए नजर आएंगे बैरिकेड्स के पास, तो बहुत ही नॉर्मल यहाँ पे जो है माहौल है, और हिंदुस्तान का झंडा वो आपको जगह जगह पे यहाँ पे नजर आएगा।
6: चलिए बड़ी अच्छी बात है, ठीक है नजर बनाए रखें। आपके पास लौटते हैं आशुतोष, आपके पास आते हुए बड़ा सिंपल से मेरा सवाल है कि जब ऑपोजिशन ये आरोप लगाता है कि भाई सत्ता पक्ष जो है लोकतंत्र को कुचल रहा है, ऑपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका आवाज उठाना और आवाज उठाने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऑपोजिशन अब जो है इसमें जो क्रेडिट है आप किसको देंगे, क्या सीजेपी को उसका क्रेडिट मिलेगा? और मेरा एक सवाल कि ऑपोजिशन इस तरह से प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर पा से पहले जैसे सीजेपी ने किया?
21: देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो जेन नेक्स्ट है इसके मन में इस सरकार को लेके गहरा अविश्वास था। सवाल किया गया कि भाई कांग्रेस के जमाने में क्यों नहीं हुआ, डोटासरा का जिक्र किया गया, कपिल सिब्बल का जिक्र किया गया, तब लोगों के मन में अविश्वास नहीं था। आज आपकी सरकार को लेके छात्रों के मन में, युवाओं के मन में अविश्वास है कि ये इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने वो इतने बड़ी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी बात मनवाई और एक तरीके से साबित कर दिया कि जब इस देश की जनता उठ खड़ी होती तब आपको करना पड़ता है, आपको मानना पड़ता है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि इस कदम के बाद सरकार के अंदर, उनके समर्थकों के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ विनम्रता आई होगी, लेकिन मैं देख के हैरान हूं कि अभी भी अहंकार जिस तरीके से फूट फूट कर निकल रहा, आप अभी भी उसमें धर्मगुरु देख रहे हैं, अभी भी उनके अंदर आप एंटी नेशनल देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेचारे छात्र थे, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा था।
22: अरुंधति राय वहां पर,
21: मैंने आपको बीच में नहीं बोला,
22: अरुंधति राय वहां पर जाने को क्या कर रहे हैं? जो व्यक्ति वहां पर करता हो कि 170 का हम विरोध कर रहे हैं वो बेचारा हो सकता है, जो व्यक्ति कहता हो कि 170 जो है,
6: संगीत जी देखिए मैंने मैंने आपको पूरा समय दिया,
21: मुझे तो बहुत
6: सबको समय दिया,
21: वाकई में
6: आपके पास आएगा, आपको समय दूंगा, आप अपने समय,
21: मुझे तो वाकई में बड़ी हैरानी होती है।
6: नहीं ये आपको समय दूंगा, पूरा समय दूंगा,
21: ये बातचीत को जल्दी कंप्लीट करना चाहिए। ये कह रहा हूं ये जो अहंकार आ रहा है कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हमारी सरकार में कोई गलती नहीं होती, छात्रों ने साबित कर दिया कि आप जो है वो छात्रों के लिए काम नहीं कर रहे थे, आप कुछ लोगों के लिए का। ये पेपर क्यों लीक हो रहे थे, मैं सवाल पूछता हूं, ये पेपर इसलिए लीक हो रहे थे क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, अपने लोगों को जानबूझ के पूरे शिक्षा तंत्र के अंदर फैला देना। मेरे पास अभी नाम नहीं है लेकिन मैं नाम भी लूंगा एक दिन, ये जानबूझ के पेपर लीक कराए जा रहे थे और जानबूझकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी तक नहीं लिया गया, जैसे कि सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, सारे कॉलेजेस के अंदर, सारे अध्यापकों के अंदर अपने लोगों को भरा जा रहा है, ये उस साजिश का एक हिस्सा
6: है। सुनील सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संगीत बोलना चाहिए, 20 सेकंड में बस अपनी बात रखिए। सुनील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं।
22: मैं जरा एक बात मुझे बताइए, कपिल सिब्बल भी अपने लोगों को करवा रहे थे,
21: क्यों जनता नहीं उतरी उस वक्त?
22: एक मिनट,
21: जनता क्यों नहीं उतरी उस वक्त मुझे बताइए? आज जनता, इसका मतलब अविश्वास है ना?
22: अब परेशान,
21: आपको पता चला कि जब आप बीच में बोले तो कैसा लगता है?
22: ठीक है,
21: अब आपको मालूम पड़ा ना?
22: मैं रुक गया, अब बोल रहा हूँ। अरुंधति राय जैसा व्यक्ति वहां पर जाकर के जो कहता है कि भारत
21: राय जैसे एक भी साहित्यकार ऐसा नहीं हुआ,
22: मैं फिर वही कह रहा हूँ,
21: साहित्यकार ऐसा नहीं हुआ,
22: लेकिन ऐसा झूठ बोलने वाला भी कोई नहीं हुआ।
21: राष्ट्रीय स्तर
22: पर एहसान जाफरी के मुद्दे पर उसने उसी अरुंधति राय
6: दोनों की बात नहीं जा रही। सुनील सिंह साजन के पास चलूंगा, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही प्लीज। सुनील सिंह साजन इस्तीफा हो गया है, आपकी प्रमुख मांग थी वो हो गया है, दूसरी मांगे भी सरकार ने मान ली है, सरकार ने मांग ली है। आप कहते थे इगोइस्टिक है, आप कहते थे अहंकारी है, उन्होंने तो आपकी सारी बातें मान ली है। अब परसों जब संसद खुलेगी तो इजिली शांतिपूर्वक सब चलने देंगे?
1: देखिए राजीव जी, आपका चैनल पूरा देश दुनिया में देखा जाता है। मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि ये जीत देश के नौजवानों की है, देश के छात्र छात्राओं और भाई बहनों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संघर्ष की जीत है, हौसले की जीत है, इंकलाब की जीत है। और हार किसकी है? हार है मोदी जी के घमंड की, उनके अहंकार की, और हार है एक भ्रष्ट सरकार की। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक भ्रष्ट सरकार का एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है, अभी तो एक प्लेयर ने इस्तीफा दिया है। और आप ये सोच लीजिए कि अभी तो उस भ्रष्ट सरकार का जो कैप्टन है उससे भी हिसाब किताब होगा। अभी आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी पर बात नहीं होगी, E20 पर बात नहीं होगी? क्या देश में जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनकी शहादत को छिपाने वालों पर बात नहीं होगी?
6: लिस्ट काफी लंबी है। मैं सुनील जी आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, एक बड़ी खबर इस समय मिल रही है, संसद में सरकार बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं। सोमवार को जानकारी मिल रही है कि पेपर लीक के संबंध में, पेपर लीक के खिलाफ एक बिल सरकार प्रस्तुत करने वाली है, लोकसभा में बिल आएगा, ऑपोजिशन का क्या रुख रहेगा सोमवार को वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार अब बिल लेकर आने वाली है, इस बिल में क्या क्या रहेगा इसके बारे में सरकार की तरफ से तमाम तरह की जानकारियां दी ही गई। और अब सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश होगा सोमवार को, ये बिल पेश होगा, उसमें तमाम तरह के प्रावधान है। तो आज एक बार फिर से सड़कों पर छात्र प्रदर्शन के लिए उतरे हुए थे, लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई पूरा प्रदर्शन जश्न में तब्दील हो गया।

0: फोन पर जैसे ही अभिजीत दिपके को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिली, मंच का माहौल जश्न में तब्दील हो गया। छात्रों ने हाथ उठाकर जीत की ताकत का एहसास कराया तो वहीं दिपके को छात्रों ने कंधे पर बैठा लिया। पूरे जंतर मंतर में फैला छात्रों का गुस्सा जश्न में तब्दील हो गया। उधर मुंबई में भी जो छात्र आज नीट पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर विरोध के लिए उतरे थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर ने वहां की तस्वीर भी बदल दी। नागपुर में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जबरदस्त डांस देखने को मिला। इंदौर में भी छात्रों का गुस्सा देखते देखते खुशी में बदल गया। बेंगलुरु से लेकर चेन्नई तक हर प्रदर्शनकारी अपनी इस जीत के जश्न में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। छात्रों के चेहरे पर खुशी की लहर है और ये उम्मीद कि अब उनसे पेपर लीक कभी ये मुस्कान न छीन सके। आज तक ब्यूरो।
1: तो आज ये जश्न की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, जंतर मंतर पर जमकर जश्न मनाया गया और ये खुशी जो है आज ऑपोजिशन में भी देखने को मिल रही है कि एक डैमेज बताया जा रहा है कि उन्होंने किया है। प्रेम शुक्ला जी, ब्रांड मोदी की छवि को भी ऑपोजिशन कह रहा है कि अब इम्पैक्ट पड़ा है और जो वो सख्ती की बात करते थे या एक जो प्रदर्शित होता था सारी चीजें कि बड़े सख्त है और बड़ा इजीली निर्णय नहीं लेते हैं, लेकिन उसको ब्रांड मोदी को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है?
2: राजीव जी, ऐसा है कि ब्रांड मोदी तो हमेशा जन कल्याण के लिए समर्पित है, इसलिए प्रधानमंत्री जी स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं। जो छात्रों की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस ने 1975 में बिहार में छात्रों पर गोलीबारी की थी, तमिलनाडु में गोलीबारी की थी, गोलियां चलाई छात्रों पर। तो जो लोग छात्रों पर गोलियां चलाते थे, आज वो जब पुलिस कर्मियों को 150 के लगभग पुलिसकर्मी घायल कर दिए गए, छात्रों के भीड़ में घुसे अराजक तत्वों के हाथों, और अराजक तत्व घुसे थे ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, सोनम वांगचुक भी ये स्वीकार कर रहे हैं और सीजेपी के प्रवक्ता भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि अराजक तत्व घुसे थे और 150 जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं वो छात्रों ने नहीं घायल किए,
1: अराजक तत्वों ने घायल किए हैं। उन अराजक तत्वों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग क्यों मानी? आपने एफआईआर वापस लेने की मांग
2: अराजक तत्वों के खिलाफ नहीं, एफआईआर दर्ज वापस लिए छात्रों के खिलाफ नहीं, अराजक तत्वों के। देखे जो हिस्ट्री सीटर्स जो हैं, जो जिनको दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है, ऐसे किसी भी हिस्ट्री सीटर के खिलाफ मामला वापस लेने का कोई वचन नहीं दिया गया है। छात्रों के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं वो वापस होंगे, क्योंकि छात्रों के खिलाफ कोई मामला नहीं चलना चाहिए। छात्रों के करियर के साथ किसी भी तरह का कोई भी विपरीत परिणाम पड़े ऐसा निर्णय सरकार नहीं लेगी। लेकिन जो हिस्ट्री सीटर घुसे थे, जो हाजी अफजल जैसे लोग, मकोका के अभियुक्त आशुतोष जी की जो पूर्व पार्टी है उसने जिस तरह से वहां पर उतारा था हाजी अफजल जैसे हिस्ट्री सीटर मकोका के अभियुक्त,
1: सीजेपी के प्रोटेस्ट नहीं था, ये आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट आप कह रहे हैं ना,
2: उनको छोड़ दिया।
3: मैं उत्तर दे दूं,
1: मैं आ रहा हूं चरण,
2: उसमें आम आदमी पार्टी के लोग पकड़े गए, हाजी अफजल पकड़ा गया, हाजी अफजल उसमें शामिल था, हाजी अफजल मकोका का अभियुक्त, मकोका का अभियुक्त आशुतोष जी जिस पार्टी के आज भी समर्थक है और कभी उस पार्टी के सदस्य थे, और आशुतोष जी जब अन्ना आंदोलन को
1: मैं जवाब ले लेता हूं, मैं चरण जी मैं आपके पास एक छोटा सा आशुतोष जी का नाम लिया है,
2: लेकिन उस पर एक छोटा सा सेलिब्रेट कर रहे हैं।
4: मैं तो ठीक है आशुतोष, मैं तो बड़ी मुझे बड़ी हैरानी होती क्योंकि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रह चुका हूं, टेलीविजन चैनल पर आकर जब आज जैसे दिन में जब इस तरीके की बातें की जाती, दरअसल आप अपनी ही पार्टी का नुकसान कर रहे होते। वाकई में आप राजीव एक बात मुझे समझाइए कि वहां आंदोलन छात्र कर रहे हैं, वो आंदोलन खराब हो इसकी कोशिश
1: सरकार के शब्दों को मैं सपोर्ट नहीं करता,
2: कांग्रेस के दलाल अब नफा नुकसान बताएंगे
1: जी प्लीज, मैं मतलब
2: कांग्रेस के दलाल को क्या प्रयोग कर रहे हैं, दलाल के लिए आप शब्द बताएं,
1: प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं निंदा करता हूँ, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप एक नेशनल मीडिया पर आप आज तक जैसे प्लेटफॉर्म पर हैं, आप मैं खुद निंदा करता हूँ इस तरह की। मतलब प्रेम शुक्ला जी पहले भी हुआ है, मैं लौट रहा हूँ आप लोगों के पास। लेकिन पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा था, छात्रों में बड़ा आक्रोश था, वो आक्रोश देश की राजधानी दिल्ली में दिखाई दिया, जंतर मंतर पर दिखाई दिया, जिससे जिस आंदोलन को शुरुआत में बड़े हल्के में लिया, बाद में उसने इतना बड़ा रूप धारण कर दिया कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, सरकार को इस्तीफा भी लेना पड़ा, छात्रों की मांगों को मानना भी पड़ा।
0: सीजेआई का कॉकरोच पर एक बयान, फिर सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान, और फिर जंतर मंतर पर 50 दिनों तक चला आंदोलन। जिनकी मांगों को सरकार ने मान लिया,
3: नहीं हम लोगों को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले ले। देश का युवा बहुत समझदार है, ये वही युवा है जिसको 2 महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं रख सकते, तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है, और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है, आई थिंक वी हैव मेड आवर पॉइंट।
5: इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने के वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है, एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा।
0: आज अभिजीत दिपके की माँ की आंखें खुशी से नम हैं, पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
6: डर लग रहा था ना मुझे, अभी सर को ऐसे उठा के ले गए सुबह सुबह में, अभी ये बैठा था इसको कुछ करेंगे, उस बहुत डर लग रहा था, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं मालूम नहीं था ना, इतना अभी आगे क्या क्या होता है।
7: गरीब लोगों के लिए उसका लगाव और उनके प्रतिभूति सहानुभूति उसके दिल में है, तो वो कोई तो भी अच्छा ही काम करेगा उसके हम पीछे रहेंगे जो भी अच्छा काम करेगा।
0: एक अनोखे ड्रामे से सोशल मीडिया से शुरू हुई ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची, जहां छात्रों के मन की बात को सरकार ने भी समझा। आज तक ब्यूरो।
1: एक बहुत बड़ा दिन है आज देश के लिए, और चरण सिंह सापरा जी जो काम सीजेपी ने कर दिया, मतलब इतने सालों से काम कांग्रेस क्यों नहीं कर पाए?
8: देखिए राजीव जी, ऐसा है कि सभी ने मिलकर के ये काम किया है ना। अब मैं आपकी बात सुन रहा था, आप ठीक कह रहे थे, इमेज बिल्डिंग की बात कर रहे थे, ये वही हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो इमेज थी, जो इन्होंने एक एक, एक हवा का गुब्बारा बनाया था ना, एक इमेज बनाई थी विश्व गुरु की, 56 इंच के सीने की जो इमेज बनाई थी, वो सारी इमेज जो है उसकी मिट्टी पलीत हो गई है। वो मिट्टी पलीत को बचाने के लिए अब ये कहते हैं कि वहां पर असामाजिक तत्व थे, वहां पर गुंडा एलिमेंट थे। अरे गुंडा एलिमेंट और असामाजिक तत्व अगर आए हैं तो आपकी पुलिस क्या कर रही है, अमित शाह की पुलिस क्या कर रही है, अमित शाह की पुलिस क्या पकौड़े तल रही थी वहां पे? अगर वहां पर पत्थर आए, वहां पर लाठियां आई, वहां पर सारी चीजें जो आप बोल रहे हैं कि गैर कानूनी चीजें वहां पर आई हैं, तो ये पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस का क्या काम है?
1: इसका जवाब दूंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए साहब, आप करें कि सब मिलजुल कर, तो मतलब सीजेपी ही नहीं, आप उसमें अपने आप को भी इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब
8: चलाने की इजाजत
1: सिर्फ सीजेपी का योगदान नहीं है, आपका भी योगदान है, सबका योगदान है।
8: नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो पैलेट गन जो चली है, वो पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी? अमित शाह ने दी क्या?
1: ये वो पैलेट
8: गन को, पैलेट गन को वहां से जो आर्मरी के रूम से निकालने की इजाजत किसने दी, आदेश किसने दिया?
1: आपके सवाल ठीक है, ये तो ये सवाल है, मैं इस पर जवाब दे लूंगा, लेकिन आप बताए कि जो क्रेडिट है, क्रेडिट किसको मिलना चाहिए?
8: इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए,
1: क्रेडिट किसको मिलना चाहिए?
8: नहीं, क्रेडिट तो छात्रों का क्रेडिट है ना, पहली बात तो यही है, छात्रों का क्रेडिट है,
1: सीजेपी का ना, मतलब सीजेपी का
8: है, सीजेपी को क्रेडिट, कार्यक्रम जो 200 से ज्यादा कार्यक्रम पूरे देश भर में हुए,
1: छात्रों की गूंज
8: के कार्यकर्ताओं ने, हमारे अग्रिम संगठनों ने किए, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई ने किए, उनको भी क्रेडिट जाता है। क्या बीजेपी ये क्रेडिट खा सकती है हमारा? अरे अपनी इमेज बचाइए जाकर के भाई, कहां आ रहे हैं? छात्रों ने आपको मार मार के भगाया
1: है। सीजेपी वाले पर्टिकुलर सीजेपी वाले सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं चरण जी, सीजेपी को कितना बड़ा क्रेडिट जाएगा?
8: नहीं देखिए, सवाल ऐसा है कि सीजेपी के अपने मुद्दे हैं, अब हमारे और भी मुद्दे बाकी है ना। नरेंद्र मोदी जी ने इन छात्रों से जिनके ऊपर हमले हुए, जिन पे अटैक हुए, टीयर गैस चली, पैलेट गन चली, उनके ऊपर जो ये सब चीजें हुई है उसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने, अमित शाह ने माफी मांगनी चाहिए, और जिन लोगों ने चलाई है उनके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जुडिशियल इंक्वायरी में दूध का दूध।
1: ठीक है प्रोफेसर संगीत रागी, मतलब राहुल गांधी भी कह रहे थे कि पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए, और चरण सिंह जी कह रहे हैं कि गृहमंत्री अमित शाह को भी माफी मांगनी चाहिए, पुलिस तो उन्हीं के अंडर में दिल्ली में।
9: अब वो तो सदन में प्रधानमंत्री ये देखेंगे कि
1: नहीं, तो आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए?
9: मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री को माफी मांगने की जरूरत है। सरकार ने निगोशिएशन में आया, सरकार निगोशिएट करी, और मैंने कहा कि क्यों निगोशिएट की। दूसरी बात जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी, कांग्रेस पार्टी की हैसियत नहीं है कि इस देश में कोई आंदोलन खड़ा कर सके। वो छात्रों की पीठ पर सवार होकर के बेशक चल रहे थे, लेकिन किसी भी इनमें से पार्टी में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हैसियत नहीं है कि वो कोई आंदोलन खड़ा कर सके। राहुल गांधी
1: कह रहे हैं छात्रों के बीच कार्यक्रम,
9: अरे सुनिए सही, जब यहाँ छात्र भूख हड़ताल पर थे तो राहुल जी गुप्त ठिकाने में विदेश यात्रा पर थे, अब ऐसे से ऐसे आंदोलन होता है? एकाएक आप हवाई जहाज से उतरते हैं दिल्ली में और अगले दिन आप फोटो फ्रेम में होने के लिए जो है वो बहुत अच्छा पिक्चर आता है, जब आप आपको चार आदमी उठाए हुए हो, गोद में उठाए हुए हो, आपका एक एक पैर में चप्पल हो एक पैर में ना चप्पल हो, तो फोटो फ्रेम के लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो राहुल गांधी अब पूछ रहे हैं ना, राहुल गांधी पुलिस तो इतनी लिबरल थी कि जहां पर सांसद आकर के धरना दे रहे थे राहुल गांधी को, राहुल गांधी में इतनी बेसिक ये चीज नहीं थी कि वो हाई सिक्योरिटी जोन है वहां पर कम से कम हम नहीं करें, और करें तो पहले बता दें ताकि आपकी सुरक्षा की व्यवस्था भी हो। कोई भी आदमी आपकी आपकी सुरक्षा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आपको तो मिलता है ना, आपके पूरे परिवार को मिलता है, बेशक सुरक्षा की जरूरत हो या नहीं।
4: राजीव एक बात मुझे बताइए,
1: मुझे
4: तो हाई सिक्योरिटी
1: आप ही,
4: कांग्रेस पे आरोप लगाया जगह है ना,
9: नहीं नहीं
4: लेकिन वहां कैसे खतरा हो सकता है?
9: वहां पर तो कोई करने की जरूरत नहीं है,
4: आप एक
9: वहां पर कोई करने की जरूरत नहीं, संसद के पास कर लेते हैं, कहीं और कर लेते
1: हैं। चरण सिंह जी जवाब दीजिए,
9: नौटंकी करनी थी
8: जो संगीत रागी जी ने जो वक्तव्य दिया है उससे सिद्ध होता है कि अंगूर खट्टे हैं, अब इनको अंगूर खट्टे लग रहे हैं, अब इनके पास में इनके घुटने टिक गए हैं, नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए हैं देश में और इनकी इमेज डैमेज हो गई है, अब ये उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर बता के जाते तो आपकी सिक्योरिटी की सुविधा होती, अरे क्या सुविधा होती वहां पर, क्या आप सिक्योरिटी दे देते वहां पर, क्या बातें कर रहे हैं कि हम इतने मूर्ख हैं? आप मूर्ख हो सकते हैं इस तरह की बात करने वाले कि भाई सिक्योरिटी जो है वो उस बता के जाते तो सिक्योरिटी मिलती। अरे हमको जिस तरह से पीटा है ना बच्चों को सड़कों पर, वो देख करके जिस तरह से महिलाओं को पीटा है, लड़कियों को पीटा है, जिस तरह से लड़कियों का मॉलेस्टेशन वहां पर हुआ है क्राउड में जंतर मंतर पे, और पटना में भी हुआ और मुंबई में भी हुआ, उसको देख करके ये सारी चीजें हुई है।
9: और जो महिला पत्रकारों के कपड़े फाड़ दिए गए थे और उनके साथ छेड़खानी की गई थी, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता थे क्या? उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता थे? महिला पत्रकारों को उनकी बॉडी को टच करना, उनके कपड़े फाड़ देना, उनकी पिटाई करना, कांग्रेस के हिसाब पर तो हुआ वहां पर।
1: पत्रकार तो खैर बहुत ज्यादा ही पिटे, उनके बारे में तो क्या ही बोलना, कोई
9: कांग्रेस के हिसाब पर हुआ।
1: चरणजीत
9: डिबेट
1: एक तरीके से चलेगी, ठीक है चरण जी आपकी बात आगे, मैं एक कमेंट सुनील जी आपको मिलूंगा, फिर दूसरे मेहमान के पास। सुनील जी मतलब आप 2027 की भी आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, सीजेपी के इस आंदोलन से समाजवादी पार्टी ने क्या सीखा है?
10: देखिए मैं एक बात तो साफ कर दूं कि इस आंदोलन में बहुत से दल थे जो समर्थन कर रहे थे, लेकिन आंदोलन देश के नौजवानों का था, इसको अभी भटकाइए नहीं और इसको भटकाने की जरूरत नहीं है। हम तो अभी सुन रहे थे दीपके ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमको हीरो मत बनाइए, क्योंकि आपने एक आदमी को हीरो बना करके देख लिया देश को कहां लेकर के वह व्यक्ति चला गया है। और हम फिर कह रहे हैं अभी आरएसएस के विचारक कह रहे थे समाजवादी पार्टी में ताकत नहीं आंदोलन खड़ा करने की, हमारा आंदोलन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नहीं झेल पाएगी। अभी उत्तर प्रदेश में हाफ किया था, अभी उत्तर प्रदेश में साफ करेंगे। और हम फिर कह रहे हैं अभी भ्रष्ट सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है, अभी कैबिनेट अभी जो आपका कप्तान है ना उसका भी इस्तीफा होगा, और इसी देश का नौजवान किसान पिछड़ा दलित मुसलमान और ये सब लोग मिलकर के लेंगे, क्योंकि आप पीएम केयर फंड हिसाब नहीं दोगे, कैसे हिसाब नहीं दोगे, ये आपका पैसा था, आरएसएस का पैसा था, प्रधानमंत्री कह रहा हम हिसाब नहीं देंगे, रक्षा मंत्री बताएंगे नहीं, गृह मंत्री चुप रहेंगे, ऐसे सरकार चलाएंगे,
1: ठीक है,
10: देश को बेचने के लिए आए थे,
1: ठीक है,
10: तो देश को आगे बढ़ाने के लिए।
1: आज अभिजीत दीपकेवी ने भी कहा कि अभी तो पहला विकेट गिरा है, अभी तो और विकेट गिरने बाकी हैं।
2: देखिए ऐसे बहुत सारे लोग जो है सपने देखते रहते हैं, बेहिसाबी संपत्ति के अभियुक्त अमर सिंह ने तहलका को इंटरव्यू देकर कहा कि बेहिसाबी संपत्ति के मामले में फंसे होने के कारण परमाणु समझौते पर दुम दबाकर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से समझौता करना पड़ा। अब बेहिसाबी संपत्ति वाले जो हैं वो बातें कर रहे हैं, अरे भाई 2013 में TET के अभ्यर्थियों ने मोर्चा निकाला और आपने लाठियों से उनको लहूलुहान कर दिया, 2016 में फिर उसी को रिपीट किया, लखनऊ में मारा, प्रयाग में भी मारा, और समाजवादी पार्टी ये बातें कर रही है। गोवारियों को गोवारी मोर्चा लेकर गए नागपुर में, उन पर हमला करके कांग्रेस की सरकार ने
1: 114
2: नेहरू जी के
1: स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों को देखिए, हाथों में कैंडल लिए हुए बड़ी संख्या में, मतलब अब तो प्रदर्शनकारियों की मांगे भी मान ली गए हैं। ये हैदराबाद की तस्वीरें, तिरंगा भी है, कैंडल मार्च भी चल रहा है, क्या कहेंगे?
2: शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका आदर होना चाहिए। नेहरू जी ने 250 किसानों की हत्या करवा दी थी बिहार में 1946 में, जब वो अंतरिम प्रधानमंत्री थे, 250 किसानों की निर्ममता से हत्या कराने का दुष्कांड जो है श्रीमान जवाहरलाल नेहरू के
1: कार्यकाल में। वापस आते हैं ना वो
2: 10,000
1: भी क्या हुआ, मैं उस पर अभी जाना नहीं चाहता,
2: राजीव गांधी ने करवा दिया।
1: अभी आपसे मौजूदा तस्वीर पर बात करें,
2: क्यों नहीं बताया इतिहास से, क्यों डर रहे
1: हैं? ये तस्वीर आपको आत्मचिंतन करने का जो है करना नहीं सिखा रहे, क्या आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि अगर पहले बातें समझ ली जाए, मान ली जाए, तो ये लोगों को कैंडल मार्च करने के लिए ना उतरना पड़े?
2: हम लोग आत्मचिंतन भी करते हैं, परिमार्जन भी करते हैं, परिष्करण भी करते हैं, क्योंकि हम जन कल्याण के लिए समर्पित हैं। प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक हैं, नेहरू इंदिरा राजीव सोनिया की तरह डिक्टेटर नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक है, विनम्रता पूर्वक जनता की सेवा करने का संकल्प लेकर ही
8: जब भी समर्पित किए पड़े। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास उत्तर नहीं होता ना, ये चले जाते हैं पीछे के इतिहास में, चले जाते हैं नेहरू जी तक जाएंगे, उससे पहले भी जाएंगे, वर्तमान की बात नहीं करेंगे।
2: जब इतिहास बहुत कलंकित है,
8: बात कर रहे
2: इंदिरा का इतिहास कलंकित है, सोनिया का इतिहास कलंकित है, उनका कलंक उनका पूर्ण तो
1: ये कलंक जवाब देने का हक है। प्रेम शुक्ला जी
8: करते हो यहाँ पर बैठ करके वर्तमान की बात,
2: कलंक कलंक
8: एकदम से बताओ। अरे खलनायक को आप
1: रोकना पड़ा, समय इतनी इजाजत है, मेरा देश के अलग अलग हिस्से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आज तक से लगातार आपको दिखाए जाएंगे। फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
12: Bharat ki apni electric sawari.
13: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
14: Sokudo.
15: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: 16 साल पहले एक धमाका क्या थी, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को आरडीएक्स रिमोट बम से उड़ाने की साजिश, देखिए आज तक पर।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर यार
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी हिंद बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: हमारे पीछे आप देखें और वहीं रेल भवन जो कि संसद परिसर पर ही है और
3: टीयर गैस को इस्तेमाल करने जा रही है और यहाँ पे टीयर गैस का इस्तेमाल पुलिस करती हुई नजर आ रही है।
2: पीछे संसद का पूरा मार्ग है और यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
4: कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मौसमी सिंह दिल्ली आज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: 16 साल पहले एक धमाका क्या थी, कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को आरडीएक्स रिमोट बम से उड़ाने की साजिश, देखिए आज तक पर।
5: मुझे पैरालिसिस हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा प्यार में पागल हो गई थी किसी के, एंड मैं बहुत ज्यादा मतलब इन्वेस्टेड थी उस इंसान के अंदर। तो फिर वापिस से मुझे एक बार और स्ट्रोक आया था जनवरी में, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप ओनली। I started taking steroids. इसमें steroids होते हैं। My weight was 52 and within 7 days my weight goes 85. So it's a trigeminal neurology. मुझे डॉक्टर ने ही बताया। हाँ, ये सलमान खान को भी बीमारी है, वो भी मुझे डॉक्टर ने ही बताया कि उनको भी है। सडन अटैक्स आते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ करंट लग गया है। दिस इज अ सुसाइडल डिजीज।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, कहा युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। सोमवार को लोकसभा में पेश होगा पेपर लीक के खिलाफ बिल। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने खत्म किया आंदोलन। दिपके ने कहा लोकतंत्र की जीत, जंतर मंतर में छात्रों का जश्न। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीठ, राहुल गांधी ने कहा सालों से शिक्षा व्यवस्था पर हमला, जितनी गलती मोदी की उतनी ही संघ की। अखिलेश बोले सरकार को झुकना ही था।

0: दिन भर पेपर लीक पर बिहार में आक्रोश, लिफ्ट के बंद पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में पत्थरबाजी, पुलिस का लाठीचार्ज, पटना, छपरा, भागलपुर, औरंगाबाद में बवाल। गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात, नवसारी में 21 लोगों की मौत, असम में 61 लोगों की गई जान।
1: बात रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है।
2: एनीबॉडी हु हैज रेज्ड अ फिंगर ऑन आवर स्टूडेंट्स, बीटन देम, शॉट एट देम has to be held accountable.
3: ये बड़ी चीज है नई पीढ़ी के लोगों की।
4: आज जनता के सामने झुकना पड़ा, ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है।
5: आज तो वही हुआ, उनके जज्बे के समक्ष आपको झुकना पड़ा।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज आखिरकार जो छात्रों का आंदोलन था वो खत्म हो गया। वो खत्म इसलिए हो गया क्योंकि जो उनकी सबसे प्रमुख मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो हो गया। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर जब लगातार ये खबरें आती रहीं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, जब ये दावा सरकार के सूत्र करते रहे कि इस्तीफा किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान का हो नहीं सकता है, तो ये हुआ कैसे? आज हम आपको इस त्याग पत्र की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे।
1: शनिवार दोपहर तक किसी को अंदाजा नहीं था कि अचानक वो होगा जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया। पेपर लीक के बाद 36 दिन से चलते जंतर मंतर के धरने वाले मंच पर आई इस आवाज ने बताया कि अगर त्याग करते हुए अपनी मांगों को मजबूती से युवा रखते हैं, तो बड़े बड़े चुनाव जिताने वाले संगठन शिल्पी भी अपनी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं निभा पाने पर अपनी कुर्सी नहीं बचा पाते हैं।
2: क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: जिस सरकार में 12 साल के कार्यकाल में अब तक आंदोलन प्रदर्शन किसी मंत्री को कुर्सी से डिगा नहीं पाया था, जिस सरकार में तीसरे कार्यकाल में सीटें घटने के बावजूद बड़े मंत्रालय पर उन्हीं मंत्रियों को जगह देकर ये संदेश दिया गया कि सरकार की मजबूती पर रत्ती भर असर नहीं आया, उस सरकार में 12 साल का रिकॉर्ड बनाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र इस बात की गवाही है कि जब अन्य त्याग कर अपनी मांग रखी जाती है, जब धैर्य और संयम के साथ मार्च करते युवा पुलिस की लाठी सहकर भी रास्ते से भटकते नहीं, छात्रों के हक में धरने प्रदर्शन के साथ त्याग के जंतर मंतर पर जुटे रहते हैं, जब देश के अलग अलग राज्यों तक शहरों तक प्रदर्शन के साथ युवाओं ने अपने रोज के कामों को त्याग कर अपनी आवाज उठाने की ठानी, तब जाकर मोदी राज के हर कार्यकाल में मंत्री बनते आ रहे, 5 साल से देश का शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे, नीट से लेकर CBSE कॉपी जांच विवाद तक के साए में जवाबदेही के कटघरे में खड़े किए गए धर्मेंद्र प्रधान को त्याग पत्र देना पड़ता है।
2: This is for them. ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थी। ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। टू द पीपल ऑफ इंडिया, दिस इज हाउ अ डेमोक्रेसी शुड बी। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है।
1: जंतर मंतर पर 5 हफ्ते तक चले इस धरने में सबसे अहम यही 20 तस्वीरें। असल में ये 20 तस्वीर नहीं, बल्कि वो 20 सवाल रहे जो सरकार और सिस्टम की नाकामी की वजह से लीक हुए नीट पेपर के बाद अपनी उम्मीदों के टूट जाने के डर के साए में जान दे देते हैं। और तब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आकांक्षा जैसी बेटियों के परिवारों को उनकी बेटी तो नहीं लौटा सकता, लेकिन ये विश्वास दिला सकता है कि जवाबदेही तय की गई है। आकांक्षा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मम्मी पापा आपका मुझ पर भरोसा था, मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है? सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। 19 साल की आकांक्षा चतुर्वेदी जैसे देश के 20 बच्चों ने 3 मई को हुई नीट परीक्षा के बाद सोचा था अब की बार डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा, लेकिन पेपर लीक और फिर नीट पेपर रद्द की खबर मिलने के बाद वो ऐसा टूटे, परिवार का सब कुछ उजड़ गया था।
3: जब पेपर दे के घर आई तो वो बहुत खुशहाल थी, उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। मन वो बोली कि हम 650 से नीचे मेरा मार्क नहीं आएगा। और जब पेपर लीक हो गया तो बच्ची काफी सदमे में आ गई, काफी दुख में आ गई, खाना पीना सब बंद कर दी थी और किसी से बात वात करने में भी ज्यादा उत्सुक नहीं रहती थी।
4: बहुत बड़ा नाम होगा
5: ऐसा बोलती,
4: कितने सारे सपने दिखा के चली गई थी कि उसके नाम की आगे डॉक्टर लग जाए।
1: इन्हीं परिवारों को न्याय दिलाने, नीट पेपर लीक के बाद अकाउंटेबिलिटी तय करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर सोशल मीडिया से जन्म कॉकरोच जनता पार्टी ने धरना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ शुरू किया, जो 36 दिन बाद अंजाम पर पहुंचा है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। शनिवार दोपहर 2:18 पर दो सफेद पन्ने पर 575 शब्दों की काली इबारत लिखकर धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट की। अपनी गलती खुलकर नहीं मानी बल्कि लिखा कि पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी, ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं। धर्मेंद्र प्रधान अपने त्याग पत्र में लिखते हैं कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, ये मेरा संकल्प। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात का विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है।
6: ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में, और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले।
1: इस बात से कोई रत्ती भर इनकार नहीं कर सकता है, नीट पेपर लीक के जिस मामले पर चारों तरफ से उठते तमाम सवालों पर प्रधान इस्तीफा प्रूफ बने रहे, जहां विपक्ष का प्रदर्शन भी पहले धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी पर चुनौतियों का बादल नहीं ला पाया, वहां 16 मई को बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने 2.25 महीने से कम वक्त में आंदोलन करके युवाओं को जोड़कर प्रधान को इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया।
7: सोमवार को पेपर लीक के खिलाफ बिल पेश किया जाएगा। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक का प्रस्ताव जितेंद्र सिंह रखेंगे, वो विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी रखेंगे। सोमवार यानी परसों ये कार्रवाई होने वाली है लोकसभा में। सोमवार को पेपर लीक के खिलाफ वो बिल आएगा जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा था। इधर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उधर जंतर मंतर पर जश्न मनने लगा। लोकतंत्र की जीत की बात हर शहर में कही जाने लगी, लेकिन ये जीत और जश्न यूं ही इस मंजिल तक नहीं पहुंचा है। सरकार और सीजेपी के बीच 3 मुलाकातें हुई, थोड़ी खींचतान हुई, लेकिन जब सीजेपी एक कदम भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटी तो शुक्रवार तक बातचीत में जिन्हें सोफे की जगह कुर्सी बैठने को दी गई, उन्हीं लोगों के आंदोलन की वजह से शनिवार को मंत्री की कुर्सी चली गई।
1: जंतर मंतर से संसद मार्ग तक की 2 तस्वीरें 5 दिन के भीतर बदलाव की मांग करते युवाओं की मांगों पर बदली हुई तस्वीर की गवाही देती। जहां 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद मार्च करते निकलते युवाओं पर पुलिस लाठीचार्ज करती है, वहीं 25 जुलाई को जंतर मंतर से लेकर आसपास के इलाके में वही युवा जश्न मनाते दिखते हैं, नाचते गाते दिखते हैं, क्योंकि पुलिस की लाठी से मिली लोकतंत्र की हार पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ने जीत दिला दी है।
8: एक लंबा आंदोलन, उसके बाद वो जेनरेशन जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जिद्दी है, जेन जी, और उठा करके मोबाइल फोन, इंस्टाग्राम टूल, रील, पता नहीं क्या क्या लेकर के आए। तो ये बताइए, आप लोगों ने तो रील से ही मार दिया सब कुछ इस बार है?
9: अब वो तो क्या है?
8: हो गया खत्म या यहाँ पे जमावड़ा चल?
9: अभी भी है। अभी बहुत ज्यादा है कि अभी तो ये तो छोटी सी शुरुआत थी। हाँ,
8: व्हेन यू हर्ड दिस की रेजिग्नेशन हो गया, पहला थॉट मन में क्या आया था?
9: We hugged each other. That was the unity which we could not think of anything. I could not believe कि हो गया है।
8: सबसे बड़ा वेपन क्या था इस पूरे प्रोटेस्ट में आप लोगों का?
10: आई थिंक सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया पे कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं कर सकती,
9: क्योंकि ऑल्सो यूनिटी, बिकॉज कितना भी सरकार ने इतना ज्यादा तोड़ने की कोशिश करी, इतना ज्यादा अलग करने की कोशिश करी, हर एक एड़ी से छोटी तक का जोर लगा लिया.
8: व्हेन यू हर्ड दैट पाकिस्तान पैसा, अमेरिका, चाइना, ये कहां के लड़के हैं, पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं,
9: हम लोग को गुस्सा इतना नहीं आ रहा था, हम लोग को हंसी आ रही थी कि यार मतलब किस तरीके की ये चीजें सोच रहे हैं, उसके बाद भी स्टूडेंट्स इतने बेवकूफ होकर नहीं बैठे.
1: ये जश्न यूं हंसते हंसते नहीं आया, ये जश्न तब हो पाया जब 36 दिन आंदोलन चला. ये जश्न तब हो पा रहा है जब इसके लिए 26 दिन सोनम वांगचुक को अनशन करना पड़ा. जंतर मंतर जश्न का गवाह तब बन पाया है जब इसके लिए सोनम वांगचुक को कोर्ट के आदेश की आड़ में पुलिस सादी वर्दी में सफेद चादर से ढककर अचानक जंतर मंतर से हटा देती है और युवा गुस्से में आ जाता है. संसद मार्च में लाठी, पैलेट गन के दावे और आंसू गैस के गोले तक खाने के बाद भी जब अडिग रहे युवा, तब जाकर 20 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई इन तीन मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की राह बनती है. और इन्हीं सीजेपी और सरकार के बीच मुलाकात की तीन तस्वीरों में बहुत कुछ कहानी पता चलती है. 20 जुलाई की पहली मुलाकात याद करिए, जब सीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया कि 2 घंटे इंतजार करा के मंत्री जी ने केवल 10 मिनट बात की. ये वो मुलाकात थी जिसमें कोई बात बनती नहीं दिखी. इसके बाद जब लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी डटे रहे, टस से मस नहीं हुए, तब 24 जुलाई यानी शुक्रवार को दूसरे राउंड की बातचीत सरकार और सीजेपी के बीच होती. अब इस वीडियो को देखिए. सोशल मीडिया पर शुक्रवार को हुई इस बातचीत में चर्चा ये होने लगी कि सरकार के मंत्री तो सोफे पर बैठे रहे, लेकिन सीजेपी के 2 प्रवक्ता जो बातचीत करने पहुंचे उन्हें कुर्सी पर बैठाया गया. हालांकि ये वो मुलाकात रही जिसने आगे धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी खिसकने की जमीन तैयार की, क्योंकि इसी मुलाकात में सीजेपी ने साफ कर दिया कि भले सरकार ने मृतक छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने पर सहमति जताई हो, लेकिन प्रदर्शनकारी बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के झुकने और रुकने को तैयार नहीं.
11: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार से विस्तृत चर्चा हुई. हमने सरकार को न सिर्फ जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रही है, बल्कि जो देश भर में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, 150-200 से ज्यादा शहरों में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्त की. ये सेंटिमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है. हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा. सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा.
1: इसी के बाद 25 जुलाई को जब सरकार से तीसरे राउंड की बातचीत होती है और 24 जुलाई की मुलाकात के मुकाबले कुर्सी की जगह सोफा सीजेपी के प्रवक्ताओं को भी बैठने के लिए मिलता है, तो इस मुलाकात से पहले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री वाली कुर्सी छोड़ देते हैं और सीजेपी के लोग भी सरकार के सामने सोफे पर आ जाते हैं. इसी मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. सीजेपी ने बताया कि तीनों मांग मंजूर हुई है, आंदोलन खत्म हुआ है.
12: डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबो लबाव ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा. इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है. उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है. आई एम करेक्ट. दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है. हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं, और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वट एवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम.
13: हम लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट है कि ये जो आंदोलन है, ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है, एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती। हमारे जो डिमांड्स है कोई रेवोल्यूशनरी कोई रेडिकल डिमांड नहीं है, जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उसकी मांग थी, जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड एक्सेप्ट हुए।
7: इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नए शिक्षा मंत्री के तौर पर प्रहलाद जोशी दिख सकते हैं। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। फिलहाल सरकार में वो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मंत्रालय संभालते हैं। उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की दी जा रही है। आज सुबह धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा हुआ दिन में, उसके बाद उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया और अब अपने मौजूदा मंत्रालय के साथ प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। हिमांशु,
14: देखिए बिल्कुल, प्रहलाद जोशी जो है वो अब नए शिक्षा मंत्री होंगे। उनके पास पहले से दो विभाग है, एक कंज्यूमर अफेयर है और उसके साथ साथ जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो उनके पास विभाग है। क्योंकि आज ही दोपहर जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और क्योंकि कोई कैबिनेट रिशफल नहीं है तो जो वर्तमान में कैबिनेट है उन्हीं में से किसी एक को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, तो प्रहलाद जोशी को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है नए शिक्षा मंत्री के तौर पर। वो अब कार्यभार देखेंगे और जब भी कैबिनेट रिशफल होगा तो हो सकता है प्रहलाद जोशी की जगह कोई और कैबिनेट शिक्षा मंत्री हो या फिर प्रहलाद जोशी परमानेंट हो और उनके जो बाकी दो डिपार्टमेंट है वो किसी और मंत्री को फेरबदल और विस्तार में दे दिए जाए।
7: हालांकि कुछ ही देर पहले प्रहलाद जोशी की तरफ से भी बाकी मंत्रियों ने भी अपने कैबिनेट को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के बारे में लिखा। प्रहलाद जोशी ने भी लिखा कि उनके कार्यकाल के दौरान जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसका क्रियान्वयन हुआ है 2020 की, और अब प्रहलाद जोशी भी समझ रहे होंगे कि अभी इस समय जो सबसे कठिन एक मंत्रालय हो सकता है वो शिक्षा मंत्रालय ही है, शिक्षा विभाग ही है। हिमांशु,
14: देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों में अगर जितने विवाद आप देखेंगे पिता, तो वो ज्यादातर विवाद शिक्षा मंत्रालय से होंगे। आप यूजीसी का जब मैटर, उसके अंदर जो है शिक्षा मंत्रालय है, सीबीएसई के अंदर जिस तरीके से मार्कशीट का इशू आया, जो है ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम वो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ था, नीट पेपर लीक का मामला जो है वो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ था। तो एक तरीके से लगातार जो है कई ऐसे विवाद है जो इस सरकार में आए वो शिक्षा मंत्रालय से ही जुड़े हुए थे। तो प्रहलाद जोशी के लिए एक कठिन राह जरूर होगी, लेकिन क्योंकि प्रहलाद जोशी एक लंबे से राजनीति में है, सांसद है, मंत्री है, 2019 से 20 वो जो है मंत्रालय देखते थे, माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर, उसके बाद जो है उनको जब 24 में सरकार बनी है तो कंज्यूमर अफेयर और रिन्यूएबल एनर्जी का मंत्रालय दिया गया है। उसके साथ साथ जो है लगातार वो कर्नाटक के अंदर भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं लंबे समय तक। एक तरीके से एक मंझे हुए पॉलिटिशियन है, मंझे हुए राजनेता है,
7: और उम्मीद उनसे अब सरकार को रहेगी, प्रधानमंत्री को रहेगी कि वो शिक्षा मंत्रालय इस कठिन समय में अच्छे से संभाल पाए। लेकिन ये भी देखना है कि ये टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है या फिर शिक्षा विभाग उन्हीं के अधीन रहेगा। बहरहाल, आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर जब लगातार ये खबरें आती रहीं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो फिर आखिर क्या हुआ? परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, वो काम करने में सरकार जुटी है, तो फिर अचानक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने कैसे दिया? आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा इसकी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। इस इनसाइड स्टोरी का शीर्षक है कि क्या 72 घंटों के अल्टीमेटम के कारण हुआ प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि खबर है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए सीजेपी ने 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया था। शुक्रवार को जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बातचीत में ये अल्टीमेटम दिया गया था। सीजेपी की तरफ से कहा गया था कि उनकी एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सीजेपी की ओर से कहा गया था कि अगर 72 घंटों में इस्तीफा नहीं होता है तो फिर से संसद की ओर मार्च किया जाएगा। सीजेपी के प्रवक्ता ने साफ कह दिया था कि दोबारा संसद मार्च करने की बाहर जाकर घोषणा कर देंगे। इस पर दोनों मंत्रियों ने कहा कि हम आपको बात करके बताते हैं। इसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी। इस बीच एनटीए के 47 अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई। एनटीए के पुनर्गठन के लिए नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इसके बावजूद सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही। आज जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने एक बार फिर अमित शाह से मुलाकात की। खबर है कि उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा। इसी के बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सीजेपी नेताओं से मिले और फिर आंदोलन खत्म हुआ। हिमांशु, ये जो पूरी जानकारी सामने आ रही है, जाहिर है कि शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि चूंकि सीजेपी लगातार अड़ी हुई थी, भले ही विपक्ष की तरफ से भी यह मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार के लिए ज्यादा बड़ी चिंता जो छात्र हैं उनकी तरफ से ये मांग और उस पर एक कदम भी पीछे नहीं खींचने को वो तैयार हो रहे थे। हिमांशु,
14: देखिए कल जब दूसरे राउंड की मुलाकात हुई थी सीजेपी के जो प्रोटेस्ट प्रदर्शनकारियों के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ, तो उस वक्त दो मुलाकातों पे आम सहमति जो है वो बन चुकी थी। एक कि जो छात्रों पर किसी भी तरीके के केस रजिस्टर हुए हैं उनको वापस ले लिया जाएगा 20 जून से कल तक। उसके साथ साथ जो है वो जो जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनको मुआवजा देने के लिए सहमति बन गई थी। अमाउंट कितना होगा ये सहमति नहीं बन पाई थी। उन्होंने कहा था जो भी होगा बस वो हम करेंगे, जिसकी घोषणा आज जेपी नड्डा और सौरभ ने की है। लेकिन एक चीज थी, उन्होंने ये कहा ये दो सहमतियां ठीक है, हमारी जो मुख्य मांग है वो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उनको इस्तीफे से कम कोई चीज स्वीकार नहीं है। तब जो है दोनों ही मंत्रियों ने ये साफ साफ कह दिया ये हमारा, हम इसका डिसीजन नहीं ले सकते, हम प्रधानमंत्री तक आपकी बात को पहुंचाएंगे, जो भी कुछ होगा उसके लिए आपको बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम बाहर जाकर जो है अभी मार्च की और अन्य किसी प्रोग्राम की जो है वो घोषणा कर दे। तो उन्होंने कहा नहीं आप रुकिए, हम बात करके जब अगली मुलाकात होगी आपको अपडेट देंगे। 72 घंटे का समय था, उस समय के अंदर अगर आप देखेंगे तो आज ही 24 घंटे हुए होने तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। उन्होंने खुद से जिम्मेदारी ली, उन्होंने कहा कि पहले दिन से मैंने इसकी जिम्मेदारी ली थी और जो कुछ बेस्ट हो सकता था वो मैंने करने की कोशिश की। श्वेता, उनका पूरा पत्र है जो उन्होंने युवाओं को एड्रेस करते हुए लिखा है। उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें जो है इस प्रदर्शन का, इस धरने का फायदा उठा सकती थी, मैंने इसी लिए जो है इस्तीफा दिया है। मैं नीट के दोबारा पेपर एग्जाम कराए, वो सारी चीजें हैं।
7: लेकिन आप देखिए लगातार सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि जब लोग ये सोच रहे थे कि क्या इस्तीफा होगा, इस्तीफा अचानक आज उनका सामने आ जाना और उसके बाद जो सीजेपी की तरफ से भी जो 72 घंटे की डेडलाइन दी गई थी वो सारी चीजें अब पीछे रह गई, इस्तीफा हो गया। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या विपक्ष पहले से ज्यादा हमलावर होगा? प्रधान के त्याग पत्र के बाद अब ये सबसे बड़ा सियासी सवाल है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल से लेकर अखिलेश तक उनके इस्तीफे को पीएम मोदी और बीजेपी का झुकना बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जंतर मंतर पर जो आंदोलन खत्म हो चुका है वो दूसरे रूप में संसद में लड़ा जाएगा?
15: क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सवाल है कि क्या ये मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा या फिर सरकार के लिए सियासी मैदान में भी आगे बड़ी लड़ाई लड़ने की चुनौती रहेगी। इस सवाल पर सबसे बड़ा संकेत लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी देते हैं।
16: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है, जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है। एजुकेशन सिस्टम जो हमारा हमारी शान हुआ करती थी। पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उस पर रिएक्शन था।
17: राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे को बेरोजगारी से जोड़ते हुए सरकार के साथ आरएसएस को भी घेरना शुरू कर दिया और बता दिया कि उनके लिए मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ है।
16: प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल, उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया। बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है।
17: इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी दो मांगे रखी, बताया कि संसद में इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी तक पर हमले करते रहेंगे।
16: मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए।
17: तो कॉकरोच जनता पार्टी ने भले ही अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन इसने विपक्ष को ताकत देने का काम किया है, जिससे लगने लगा है कि सरकार को झुकाया जा सकता है।
18: ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया है। ये युवाओं की बड़ी जीत है, लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों उनको ठोस बना करके ही, कोई पेपर लीक ना हो और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोले।
17: अखिलेश यादव को 2027 में बदलाव के लिहाज से छात्रों के आंदोलन में सरकार का झुकना शुभ संकेत लगने लगा है, जिससे यह सवाल और मजबूत होता है, क्या ये लड़ाई एक इस्तीफे पर ही जाकर खत्म हुई है या आगे और लंबी चलेगी।
19: I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will.
17: तो विपक्ष का सारा जोर नौजवानों को बधाई देने के बाद ये बात बार-बार दोहराने में लग गया है कि सरकार और बीजेपी को तो जनता ने आंदोलन करके झुका दिया।
20: आप सबको बहुत बहुत बहुत बधाई, हमारे देश के युवाओं को, जेंजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है आप लोगों का संघर्ष रंग लाया, धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी, हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है।
17: छात्रों की जीत बताने के साथ अब धीमे धीमे ही सही इसका श्रेय लेने की भी होड़ शुरू होने लगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी जेंजी की बहुत दिनों से बात कर रहे थे, जिनकी ताकत का एहसास अब सरकार को हुआ है।
21: देश की जेंजी ने, युवाओं ने अपने हौसले और साहस से एक बहुत ही घमंडी सरकार के घमंड को चूर चूर कर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, फिर चुप्पी हो गई, फिर रात को 12 बजे रील्स आने लगी, फिर फ्रेंड्स बन गए वो लोग। लेकिन घमंड टूटते हुए हमने रोज देखा, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, और आज उसकी परिणति यह हुई कि धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया।
1: शरद पवार ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को नौजवानों की जीत बताया और पीएम के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया और लिखा कि बातचीत के 2-3 दौर पहले ही हो चुके थे, मैं खुद प्रधानमंत्री से मिला, मैंने उनसे अनुरोध किया कि लोकतंत्र में संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, या तो इस्तीफा देना चाहिए या फिर बातचीत करके उनकी क्या बातें हैं उन्हें सुनना चाहिए, इसके लिए आप केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2-3 मंत्रियों, संभव हो तो वरिष्ठ मंत्रियों को नियुक्त करें। तो सड़क पर छात्रों की लड़ाई भले ही अब पूरी हो गई हो, लेकिन अभी संसद में जंग बाकी है।
0: ये कामयाबी है उन तमाम नौजवानों की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोजर से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी, लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा।
1: सरकार सोमवार को पेपर लीक पर सख्त कानून का बिल पास करने की तैयारी में है, ड्राफ्ट तैयार है, चर्चा भी तय हो चुकी है, जहां विपक्ष की पहली बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूप में पूरी हो चुकी है, इसलिए सरकार और बीजेपी अब विपक्ष से भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की हिदायत देने लगे।
2: अब ये एक कसौटी होगी विपक्ष की, क्या वो संसद में चलने देती है संसद और अपनी बात संसद के पटल पर रखती है धारदार तरीके से, या फिर भागने का प्रयास करती है, या अगले 48 से 72 घंटे में साफ हो जाएगा।
1: लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या कानून और इस्तीफे से इस समस्या का समाधान निकलेगा, क्या छात्रों को पेपर लीक की बीमारी से मजबूत छुटकारा मिल पाएगा। आज तक ब्यूरो।
7: आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, यूं तो रोज देश में अलग अलग मुद्दे समस्या पर होता आया है, लेकिन ये आंदोलन क्यों अलग है? क्योंकि यहां नारे अलग रहे, यहां प्रदर्शन करने वाले पोस्टर अलग हैं, जंतर मंतर पर जेनजी ने विरोध की नई स्क्रिप्ट लिख दी जिसमें मीम, व्यंग और छोटी छोटी पंचलाइन से कही गई बातों ने आंदोलन को पिछले सभी आंदोलनों से अलग कर दिया।
22: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि
1: आंदोलनकारी जेनजी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम से अपने संदेश दिए जो कुछ ही समय में करोड़ों लोगों तक पहुंचे। ये सिर्फ एक मोबाइल वीडियो नहीं बल्कि इस बात का कबूलनामा रहा कि जनता अगर डिजिटल मंचों पर सक्रिय है तो लोकतांत्रिक संवाद भी उसी भाषा और माध्यम से होना सियासत की नई जरूरत।
22: खुशियों की खबरें भी आ रही। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात
1: पहले किसी आंदोलन की सफलता उसकी भीड़ और मीडिया कवरेज से आंकी जाती रही, लेकिन अब किसी भी प्रदर्शन का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसकी तस्वीरें, वीडियो और संदेश डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कितनी तेजी से फैलते हैं।
22: थैंक्स टू एवरीबॉडी।
23: तो आपको कैसा मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, मेरे को बहुत लग रहा है, समोसा खा के फिर करना चाहिए। यहाँ तो फ्री में
1: जंतर मंतर पर चलता रहा छात्रों का प्रदर्शन, सिर्फ नारों का आंदोलन नहीं रहा बल्कि विरोध की बदलती भाषा का एक नया चेहरा भी रहा, जहां हाथों में तख्तियां हैं लेकिन उन पर लंबे भाषण नहीं बल्कि मीम, तंज कस्त व्यंग, छोटे छोटे पंचलाइन और इंटरनेट कल्चर से निकले मैसेजेस लिखे गए। यही वजह है कि ये प्रदर्शन पिछले बहुत आंदोलनों से बिल्कुल अलग नजर आया।
23: गवर्नमेंट और पुलिस से इस जेन ज़ी के प्रोटेस्ट को जो रात के 3 बजे क्लब पार्टी हो रही है, इसको आप कैसे रोकोगे? आप रोक के दिखाओ, नहीं रोक सकते।
24: तेरी गली मैं मोहम्मद।
3: है लखनऊ से, ये अभी दिल्ली के प्रोटेस्ट में आ नहीं पाई है, तो आज इनका डिजिटल प्रोटेस्ट कराने लाया है यहाँ पे। आप
4: पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में नौजवान सोशल मीडिया के दौर में बड़े, इसलिए आंदोलन उन्होंने उसी शैली में बात की जिसमें हास्य, व्यंग और रचनात्मकता को हथियार बनाकर गंभीर मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुँचाया गया। प्रदर्शन के दौरान कई सोशल मीडिया रील्स वायरल, जिन्होंने सबका ध्यान खींचा। उनमें से एक रील में एक लड़की अपने मेकअप की बात करते करते पेपर लीक पर तंज कसती।
5: स्टूडेंट रही नहीं हूँ, स्टूडेंट बनने का था कि सपना था कि बनूंगी, नीट की तैयारी करूंगी, पर अब नीट के बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है तो लग रहा है कि नहीं बनना चाहिए।
4: प्रदर्शन में पॉप कल्चर की झलक भी खूब दिखाई। कोई दुल्हन बनकर कुछ पुचू अब तो रिजाइन कर दो का पोस्टर लेकर पहुंची। बैटमैन, स्पाइडरमैन, गोरिल्ला अवतार भी चर्चा में रहे।
10: मिलेनियल्स और जनरेशन जी में जो फर्क है ना, वो है उनकी क्रिएटिविटी का। अब जंतर मंतर पर भी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया, ऐसे ऐसे पोस्टर, ऐसे ऐसे रील दिखाई दिए ना, हमने तो कभी अपनी पीढ़ी में नहीं देखा, नहीं पढ़ा। अब रेजिग्नेशन हो गया ना, जरा क्या लिखा पढ़ के बताइए।
6: आप पढ़ के बताइए भैया।
10: ये सबसे ज्यादा ये वाला वायरल हो रहा था, और उसके बाद फिर अब इस्तीफा हो गया तो फिर बना, ये तुरंत बना के लेके भी आ गए आप लोग। यहाँ क्या लिखा है, मान लिया तो हार गए, ठान लिया तो पार गए। तो आप लोग नहीं बैठे बैठे बना लिया?
6: नहीं, घर से
10: बना करके।
6: जल्दी जल्दी, कोई तो जल्दी जल्दी काम करे।
10: ये वाला आइडिया कौन लाया था, ये लिखना है, ये किसका आइडिया था? ये
6: मेरा ही था वैसे।
10: आपने खुद से बना लिया? ये जो जनरेशन है वो इतनी ज्यादा क्रिएटिव है, और ऐसे ऐसी चीज आपको एक बार पढ़ने में हंसी आ जाएगी, लेकिन वो हंसी लाकर मंच। अच्छा, यहाँ पोस्टर्स का बड़ा रोल रहा है, इंडिया नीड्स टोटल रेवोल्यूशन। अब ये भी है कि अब नीट का मामला था तब से लेकर के छात्र जो हैं वो टोटल रेवोल्यूशन लेकर जा गए।
5: मेन है कि अब आज के टाइम में माता पिता।
4: दुल्हन की ड्रेस में जंतर मंतर पर पहुंची इस महिला ने सबका ध्यान खींचा। महिला ने कहा कि अब करियर तो बनने से रहा, शादी ही कर लो।
5: तो आपके साथ भी ऐसे ही हो? हाँ जी, बस मेन मोटिव यही था कि करियर तो बनने से रहा, आप शादी कर लो आज ही, मैं यही बोलूंगी। स्टूडेंट रही नहीं हूँ, स्टूडेंट बनने का था कि सपना था कि बनूंगी, नीट की तैयारी करूंगी, पर अब नीट के बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है तो लग रहा है कि नहीं बनना चाहिए। और मेन है कि अब आज के टाइम में माता पिता जो सोच रहे हैं कि हम इतना अच्छा करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अब वो ये सोच रहे हैं ऐसे स्टूडेंट के साथ, इतने सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा, तो अब शादी करा रहे हो लड़कियों के।
4: तो इस आंदोलन में कई सारी ऐसी चीजें हुई जो पहले कभी नहीं हुई। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये युवाओं का प्लेटफॉर्म जिससे प्रदर्शनकारियों के साथ देश भर के नौजवान इस्तेमाल करते हैं, जिनसे सीधी बात करने के लिए प्रधानमंत्री ने इस प्लेटफॉर्म को चुना।
24: थैंक यू दोस्तों।
7: सवाल ये भी आता है कि क्या इस बात को सत्ता ने समझा कि जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन शहर शहर जंतर मंतर बनाने लगा है, जहां यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान तक युवा सड़क पर उतरते दिखने लगे थे। पेपर लीक के खिलाफ शनिवार को भी देश भर में प्रदर्शन होते रहे, लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई, सभी जगह जश्न मनाया गया। हालांकि कई शहरों में ये विरोध उग्र भी होता दिखा। तो सवाल ये भी है कि क्या ऐसे ही शहर शहर आंदोलन की चिंता ने इस्तीफा कराया?

0: दिल्ली की तरह लखनऊ में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी झूम उठते हैं, विरोध जश्न में बदल जाता है।
1: इसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटरी
2: पैरामिलिट्री के जो जवान है वो अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी है उनको घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही कनॉट प्लेस पर जबरदस्त भीड़ जो थी देखी जा रही थी। मेट्रो से तमाम लोग आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन को खोला गया, उसके बाद की ये तस्वीर है कि किस तरीके से कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे थे। अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो उनको वापस जाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इनर सर्कल की तस्वीर है, अभी भी आपको जबरदस्त प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में माहौल खराब ना हो इसको ध्यान रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अब तमाम लोगों से ये अपील कर रही है कि वो अपने घर जो है वो वापस जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं।
0: देश के बाकी राज्यों की तरह पेपर लीक के खिलाफ छात्रों में लखनऊ में आक्रोश था, जिसमें वो छात्र छात्राएं शामिल हुए जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
3: ये ना घर से पता गया है?
4: नहीं।
3: घर पे नहीं बोला है?
4: नहीं।
3: घर पे क्या बोला है?
4: अभी जाकर बता देंगे, अभी पता नहीं था कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
3: अच्छा, अब रास्ते से निकले देखा कि हो रहा है, पहुंच गए? आक्रोश देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे?
4: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए हम उनको जानते भी नहीं थे।
0: लखनऊ में जहां प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन प्रयागराज में इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, वहीं कुछ ने तोड़फोड़। हालांकि पुलिस ने यहां संयम से काम लिया और कार्रवाई नहीं। ऐसा ही हंगामा पटना में भी देखने को मिला, यहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो जाती। पुलिस पर पथराव हुआ जिसके जवाब में लाठीचार्ज पुलिस ने किया।
5: ये लोग कहाँ से हैं सर?
6: कहाँ से है? पटना के ही है, लोकल है जो
5: कि बाहर से भी पकड़ा रहे। बाहर के लोग भी आए?
6: बाहर से भी आया है, बाहर से भी। तो आप लोग को भी तो ऊपर चलाया, हम लोग ऊपर भी चलाया, वही तो पकड़ाया। चलिए चलिए, उपद्रवी है ना।
7: यहाँ पर धरना प्रदर्शन सब विद्यार्थी लोग है जो ढेला देखिए तो ढेला चलाए, उसे फोड़ फाड़ दिए।
8: चोट भी लगा?
7: यहाँ हम तो रोड पर थे तो उधर भाग गए, ऊपर थे इसमें न थे, इसमें होगा तो हो ही गया। हम उस सुलभ शौचालय में भाग गए थे।
0: बिहार के सिवान में प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ, पुलिस ने बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पूर्णिया में भी सड़कें रणभूमि बन गई, अलग अलग संगठनों ने मिलकर पैदल मार्च निकाला लेकिन फिर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस ने बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन जब बात नहीं बनी और बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खुशी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभी उनकी एक मांग पूरी हुई, वो अब चाहते हैं कि पूरा शिक्षा तंत्र सुधरे।
9: पहली बार इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने और मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और देख लो,
10: ये मेरा दोस्त है, इसके पापा ने बोली थी कि तुम जा तो रहे हो घर, जब भी आना जब इस्तीफा लेके आना, और मैम इस्तीफा लेके हम घर जाएंगे।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन इस आंदोलन का असली मकसद तब पूरा होगा जब शिक्षा के पूरे शैक्षिक तंत्र में सुधार होगा।
11: शिक्षा मंत्रालय मोदी सरकार का ये वो विभाग है जिसके साथ एक अलग ही खबर का रिश्ता है। मोदी सरकार के 12 साल में 4 लोग शिक्षा मंत्री रहे और इसी से आप समझ जाइए कि इन 12 साल में कोई शिक्षा मंत्री 5 साल तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नहीं संभाल पाया। सबसे पहले स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री बनी जिनका कार्यकाल 771 दिन का रहा। इसके बाद प्रकाश जावड़ेकर 1060 दिन तक शिक्षा मंत्री रहे। रमेश पोखरियाल निशंक तीसरे मंत्री बने लेकिन शिक्षा विभाग में 770 दिन तक रह पाए। धर्मेंद्र प्रधान 7 जुलाई 2021 से अब तक 1845 दिन शिक्षा मंत्री रहे। एक बात यह भी पता चली है कि मोदी राज में 4 शिक्षा मंत्रियों में से 3 को जुलाई के महीने में ही बीच कार्यकाल पद छोड़ना पड़ा। जैसे इस बार धर्मेंद्र प्रधान जो खुद कभी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करते रहे, इस बार खुद लीक पर आंदोलन से कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ी।
8: ये तस्वीर अब याद करना जरूरी है, जरूरी इसलिए क्योंकि ये शख्स अभी देश की हर खबर में दर्ज है। ये तस्वीर बताती कि आंदोलन से निकले नेता अगर आंदोलन का हासिल भूल जाएं, तो फिर आंदोलन ही उनके लिए भी भारी पड़ जाता है। 29 साल पहले 1997 की तस्वीर, पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने तब ओडिशा में विरोध प्रदर्शन किया। प्रधान के सहयोगी रहे प्रशांत राउत अंग्रेजी अखबार को बताते हैं कि 1997 में ओडिशा में एक पेपर लीक हुआ था, तब धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदर्शन किया जिसमें करीब 150 छात्र शामिल हुए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, धर्मेंद्र प्रधान को बुरी तरह पीटा गया। 29 साल बाद नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हुए आंदोलन ने उन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया जो संगठन और सरकार के सबसे मजबूत सिपाही बनकर चलते रहे। तारीख 15 मार्च 2025, बिहार में चुनावी हलचल से महीनों पहले पटना के डीएम दफ्तर में माता पिता के साथ बैठी 10वीं पास खुशबू को एक फोन कॉल आता है।
12: आपकी चिंता न करो, बिहार शासन आपके साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों आपको पढ़ाएंगे।
8: 10वीं में तब पास हुई खुशबू को गरीबी की वजह से पढ़ाई आगे न कर पाने और उसके डॉक्टर बनने के सपने में रुकावट की खबर मिलने पर एक फोन तब अब तक के शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान ने ही किया था।
12: डॉक्टर बनोगे?
13: यस सर।
12: बिल्कुल बनोगे?
13: यस सर।
12: प्रभु के आशीर्वाद आपके ऊपर और आप सभी के शुभेच्छाएं, आप चिंता ना करो, देश की बेटियों को मोदी जी के शासन में और बिहार में तो नीतीश जी ने बहुत चिंता की बेटियों के बारे में।
8: लेकिन काश ऐसे ही देश के हर बच्चे के लिए जरूरी परीक्षा व्यवस्था का जिम्मा धर्मेंद्र प्रधान उठा पाते जिन्हें अब इस्तीफा देना पड़ा।
14: आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग जो इस पूरी प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है।
8: साल 2000 में ओडिशा की पल्हड़ा सीट से विधायक, 2004 में देवगढ़ सीट से सांसद बनकर सियासत में आगे बढ़ते रहे धर्मेंद्र प्रधान, 2014 से लगातार पेट्रोलियम, कौशल विकास, इस्पात मंत्रालय 2021 तक संभालते रहे, 2021 से शिक्षा मंत्री बने, जिन पर 2024 में भी संकट के बादल नीट पेपर लीक के बाद छाए, लेकिन तब धर्मेंद्र प्रधान बच गए। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी छोड़नी पड़ी। जो संगठन के माहिर माने गए, जिन्हें 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में जिम्मा इलेक्शन का दिया गया जब नीतीश अलग हो गए थे, तब 30 से ज्यादा सीट एनडीए जीती थी। 2014 में झारखंड, अस्थिर सियासत जिस राज्य में चलती रहती थी, वहां धर्मेंद्र प्रधान के संगठन वाले नेतृत्व में ऐसी सत्ता दिलाई कि 5 साल का सीएम कार्यकाल पहली बार बीजेपी के रघुवर दास पूरा कर पाए। 2016 में असम में पहली बार बीजेपी का सीएम तभी बना जब चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान रहे। 2017 में उत्तराखंड की जीत धर्मेंद्र प्रधान के चुनाव प्रभारी रहते मिली, अहम बात थी कि हाथ से निकली सत्ता वापस वहां दिलवाई थी। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान रहे तो लगातार दूसरी जीत बीजेपी को मिली। 2024 में हरियाणा में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान रहे तो लगातार तीसरी जीत का इतिहास भी बना। संगठन के शिल्पकार माने जाने वाले धर्मेंद्र प्रधान की जगह वापस अब संगठन में होगी या फिर आगे फेरबदल में वो कोई दूसरा मंत्रालय पाएंगे, ये आगे ही पता चलेगा।
11: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्र आंदोलन से जुड़े अभिजीत दिपके के माता पिता ने भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनके बेटे की जीत नहीं बल्कि पूरे देश के उन युवाओं की सफलता है जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आवाज उठाई।
15: इस्तीफा दे दिया है, आपका पहला रिएक्शन क्या है?
16: बहुत खुशी हो गई, आज बच्चे फ्री हो गए, बहुत खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई, बहुत खुशी हो गई।
15: अभिजीत के बारे में क्या कहेंगे? आपका जो लड़का है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जंग जीत चुका है, आपको कैसा फील हो रहा है?
16: अभी गर्व फील हो रहा है, गर्व से बोलती है कि अभिजीत ने अभी अच्छा काम करा है। बीच में डर लग रहा था उसको मारने के वजह से, मुझे बहुत डर लग रहा था क्या होता है क्या नहीं।
15: उनके जो है जब वो कर रहे थे तो शहीद देखी गई, आतंकवादी कहा गया,
16: थप्पड़ मारे उसके, तो जब बहुत कई बुरा लगा रहा था, बहुत नींद नहीं आ रही थी हमको, तीन तीन चार चार बजे तक नींद नहीं, खाना भी नहीं थे दोनों को भी, ऐसा खाना नींद दोनों भी गायब हो गए थे हमारे। 7 जून से ही हमारे घर में ऐसे दिल ही नहीं लगता था।
15: टाइफाइड
16: ही हुआ है ना कल उसको।
15: क्या बोलेंगे आप अभिजीत के लिए? क्या बोलेंगे
16: अभिजीत के लिए? बहुत बड़ा काम करा उसने, उसकी उम्र ही क्या है, 29 साल का वो बेटा है, वो कि इतना बड़ा भी नहीं है, इतने छोटी उम्र में इतना बड़ा काम करते हैं, वो तो बहुत गर्व हो रहा है उससे।
15: और सरकार से कुछ कहना चाहूंगी?
16: अभी कुछ नहीं, अच्छा हो गया, सरकार ने जो बच्चे की बात मानी वो बहुत अच्छा हो गया।
11: एक और बड़ी खबर इस समय हम आपको दे दें जो बिहार से आ रही है। बिहार में आज छात्रों का आंदोलन उग्र हुआ। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि सीवान में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने AK-47 से फायरिंग की है। तेजस्वी यादव ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बड़ा आरोप ये तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से AK-47 से फायरिंग की गई है। रोहित सिंह हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या खबर है? और एक वीडियो भी साथ में पोस्ट किया है तेजस्वी ने।
17: जी सता, आज ये घटना जो है सिवान में घटी है, जब आज जबरदस्त बवाल सिवान में भी देखने को मिला, जहां पर उपद्रवियों ने और प्रदर्शनकारियों ने जो है जमकर बवाल काटा था। उसी दौरान पुलिस को जो है हालात पर काबू पाने के लिए फायरिंग करनी पड़ी है, और AK-47 से भी एक पुलिसकर्मी जो है वो फायरिंग करता नजर आ रहा है। साथ ही साथ पिस्तौल जो होती है सर्विस रिवॉल्वर, उससे भी फायरिंग करते हुए जो है एक दो पुलिसकर्मी जो है वीडियो में नजर आए हैं। यानी कि हालात आज सिवान में इतने ज्यादा खराब हो चुके थे और प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा उग्र होकर पूरे शहर में बवाल काटा हुआ था, जिसके बाद पुलिस के पास कोई चारा नहीं बचा ऐसा लगता है, और इसीलिए उनको फायरिंग का सहारा लेना पड़ा। और ये वीडियो अब वायरल हो गया है। सो और तेजस्वी यादव ने इसको लेकर आरोप लगाया है कि छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की है। हालांकि इस घटना में कोई घायल कोई चोटिल नहीं हुआ है, किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन फिलहाल ये वीडियो वायरल है। और तेजस्वी यादव ने सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि भाई प्रदर्शन को रोकने के लिए AK-47 का सहारा लिया गया था। श्वेता,
11: शुक्रिया रोहित सिंह इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये वीडियो है, अभी देखना होगा कि आगे क्या इस पर कहा जाता है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट के स्पेशल एडिशन में आपका बहुत स्वागत है। कहते हैं कि नेतृत्व की असली परीक्षा फैसले लेने में नहीं बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार करने के साहस में होती है। नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन 36 दिन पहले शुरू हुआ था, आज देखिए वो कहां पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ वो आज खत्म हुआ। इस आंदोलन में सवाल सिर्फ ये नहीं था कि पेपर लीक कैसे हुआ और ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, सवाल ये भी था कि जब लाखों युवाओं के भविष्य पर असर पड़ा तो क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेगी। और आज जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो ये सिर्फ एक मंत्री के पद छोड़ने की खबर नहीं थी, ये उस प्रक्रिया का नतीजा जिसमें छात्रों का गुस्सा, सड़कों पर आंदोलन, सरकार के फैसले, जवाबदेही की मांग हुई, सब एक साथ दिखाई दिया। नीट पेपर लीक से शुरू हुई ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रही, एक भरोसे का संकट बन गया नीट पेपर लीक, उसके बाद ओएसएम जो सीबीएसई की मार्किंग थी, क्योंकि भारत में ये परीक्षाएं सिर्फ एक पेपर नहीं होती, करोड़ों परिवारों के सपने जुड़े होते हैं। एक छात्र के लिए सिर्फ नंबर नहीं होता, सालों की मेहनत, दिन रात जागना, खाना पीना सब भूल जाना, ये उसके माता पिता की उम्मीद, उसके पूरे भविष्य का सवाल होता है। सरकार ने स्थिति संभालने के लिए कई कदम उठाए, जांच बिठाई गई, कानून सख्त किए गए, परीक्षा व्यवस्था बदलने की घोषणा हुई, अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन छात्रों का सवाल सिर्फ सुधार का नहीं था, सवाल था कि आखिर इस पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा। और यहां वो समझिए कि यही वो बिंदु था जहां लोकतंत्र की ताकत दिखाई दी। आज जब जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे थे तो उस तस्वीर में सिर्फ एक आंदोलन की जीत नहीं थी बल्कि लोकतंत्र की वो तस्वीर थी जहां सवाल उठते हैं, जवाब मांगे जाते हैं, व्यवस्था खुद को सुधारने की कोशिश करता है। और इस सब के साथ लोकतंत्र में हर जीत के बाद एक नई जिम्मेदारी भी आती है। अब असली जिम्मेदारी, असली परीक्षा सरकार की है। क्या वो सिर्फ इस्तीफे तक सीमित रहेगी या परीक्षा व्यवस्था में वो बदलाव करेगी जिससे दोबारा किसी युवा को अपने भविष्य के लिए सड़क पर ना उतरना पड़े, जिससे दोबारा किसी बच्चे को आत्महत्या ना करनी पड़े। क्योंकि आज की कहानी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं है, आज की कहानी है एक पीढ़ी की आवाज की, वो पीढ़ी जिसे कल तक सिर्फ सोशल मीडिया, ये तो रील्स बनाते हैं, ट्रेंड्स की पीढ़ी कहा जाता था, उसने आज दिखाया कि जब सवाल भविष्य का हो तो वह पीढ़ी बदलाव की सबसे बड़ी आवाज बन सकती है। आप कल्पना कीजिए, इस जेन जी पीढ़ी के लिए आज एक शब्द भी कहा जा रहा है और वो शब्द है जेन जीत। जेन जी

0: नहीं जेन जीत। अब से अगले एक घंटे तक हम इस इस्तीफे का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि यह घटना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक टर्निंग पॉइंट से कम नहीं है, और अगर ऐसा है तो क्यों। लेकिन इस विश्लेषण को हम इन शब्दों में शुरू करना चाहते हैं। ये शब्द हैं डेमोक्रेसी करेक्ट्स इटसेल्फ, यानी लोकतंत्र स्वयं अपना सुधार करता है। जब इस देश के लाखों युवा पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे, तब सबसे बड़ी बहस यही थी कि भारत का लोकतंत्र इस पूरी घटना में किस पक्ष को चुनेगा। यानी सवाल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं रह गया था, सवाल यह था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र किस ओर लौटेगा। और आज जब हमने इन तस्वीरों को देखा तो हमें सबसे पहले यही शब्द याद आए कि डेमोक्रेसी करेक्ट्स इटसेल्फ। आज सिर्फ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है, आज ये पता चला है कि जब इस देश के युवाओं ने आवाज उठाई तो सरकार ने उस आवाज को सुना, संस्थाओं ने उस पर प्रतिक्रिया दी, व्यवस्था ने खुद को सुधारा। और यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसमें वो गलती होने पर खुद को सुधार सकता है। आज जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो इसमें आंदोलन की गरिमा भी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी, इसमें देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी दिख रही थी। और सबसे बड़ी बात, ये इस्तीफा हमारे उन युवाओं की जीत को दिखा रहा था जो अपने भविष्य के लिए जवाबदेही मांग रहे थे, वो जवाबदेही जो गलतियों पर व्यवस्था को बदलती है और ये सुनिश्चित करती है कि इस देश के प्रत्येक युवा के साथ न्याय हो। देखिए,
1: जे जे जे जे जे

0: धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की घोषणा किसी राजनीतिक बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की। उन्होंने देश के युवाओं के नाम एक पत्र लिखा और इस पत्र में ये बताया कि आखिर उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया। लिखा कि यह मामला उनके व्यक्तिगत सम्मान या प्रतिष्ठा का नहीं है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण देश की युवा आबादी है और वो नहीं चाहते थे कि देश के छात्र भ्रम, विवाद, राजनीतिक संघर्ष के जाल में फंसे। और यही वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि जंतर मंतर समेत देशभर में बन रहे हालात राष्ट्रीय एकता बनाए रखने, किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत को इस मुद्दे का फायदा उठाने से रोकने, छात्रों के भविष्य को लंबे कानूनी विवादों में उलझने से बचाने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि देश के बच्चे अपना समय आंदोलन नहीं बल्कि पढ़ाई, अपने करियर पर लगा सके, इसके लिए आज ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। और उनके इस पत्र को आइए हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसका निष्कर्ष यही है, जो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं इसका निष्कर्ष ये है कि जंतर मंतर पर छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन हुआ उससे दबाव बना और उसी के बाद धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा हुआ है। औपचारिक रूप से अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह इस्तीफा सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान से मांगा था या धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपनी स्वेच्छा से यह इस्तीफा दिया, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि खुद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की पहल की और यह इस्तीफा उन्होंने दिया है। साल 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद यह दूसरी बार है जब किसी मौजूदा केंद्रीय मंत्री ने जनता के दबाव और उठते सवालों के बीच अपना पद छोड़ा है। इससे पहले साल 2018 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया था और अब धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी सूची में जुड़ गया है। यह भी तब हुआ है जब धर्मेंद्र प्रधान उन चुनिंदा नेताओं में शामिल थे जो साल 2014 से मौजूदा सरकार में लगातार मंत्री थे। इस पूरे घटनाक्रम को कुछ लोग सरकार की जवाबदेही के तौर पर देख रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे इसे एक ऐसा कदम मान रहे हैं जिससे सरकार ने विवाद को खत्म करने, छात्रों के भरोसे को बनाए रखने की एक कोशिश की। कुल मिलाकर देखें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में उन चुनिंदा मौकों में शामिल हो गया है जब लगातार बढ़ते दबाव के बीच किसी मौजूदा केंद्रीय मंत्री ने अपना पद छोड़ा और इसके बाद जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने किस तरह जश्न मनाया वो भी आप देखिए।
1: जैसे ही करीब 2:30 बजे के आसपास जैसे ही ये खबर यहाँ पर पहुंची, लोगों ने यकीन नहीं किया, क्योंकि आप देखिए नेट यहाँ पर स्लो है और लोगों की संख्या देखिए दूर दूर तक आपको जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग यहाँ पर मौजूद है।
0: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी एक घटना की वजह से नहीं हुआ, इसके पीछे कई महीनों से चल रहे विवाद, छात्रों की नाराजगी, लगातार बढ़ता दबाव, एक के बाद एक पेपर लीक, गलत ब्लैकलिस्टेड लोगों को बार बार टेंडर मिलना, कई सारी परीक्षाओं में लीक होना और परीक्षा लीक होने के बाद पेपर रद्द होने के बाद री एग्जाम की वजह से कई बच्चों का सुसाइड कर लेना। इसलिए आज इस इस्तीफे की पूरी टाइमलाइन को देखना होगा। ये कहानी शुरू हुई 3 मई। 3 मई को पहली बार नीट पेपर लीक का यह पूरा मामला सामने आया। मामला गंभीर हुआ तो सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया, जांच सीबीआई को सौंप दी गई, दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा कर दी गई। यह शिक्षा मंत्रालय के लिए बड़ा संकट था क्योंकि इसमें लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा था। एक बार पेपर लीक और दूसरी बार भी हो जाता तो आप कल्पना कीजिए, इस पेपर लीक पर युवाओं का गुस्सा शांत होता। उससे पहले 13 मई को सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग सिस्टम पर नया विवाद खड़ा हो गया। OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग, कई छात्रों ने OSM व्यवस्था को लेकर शिकायतें शुरू की। छात्रों का आरोप था कि स्कैन की गई कॉपियां साफ नहीं थी, कुछ पेज गायब थे, कहीं पर मार्क्स नहीं दिए थे, कहीं पर टिक मार्क लगा था फिर भी नंबर नहीं थे, कई उत्तर सही होने के बावजूद नंबर्स नहीं मिले थे और कुछ छात्रों की कॉपियों की जांच में गड़बड़ी की आरोप था। धीरे धीरे यह मामला भी बहुत बड़ा विवाद बन गया और कई महीने के आखिर में धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी जिम्मेदारी भी अब जाकर ली है। उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार कहा कि नीट पेपर लीक जैसी घटना नहीं होनी चाहिए थी और सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। यह बयान इसलिए भी आया क्योंकि उसी वक्त कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक आंदोलन तैयार हो गया था। यह पार्टी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के उस बयान के खिलाफ विरोध में बनाई गई जिसमें उन्होंने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसमें दावा था कि उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता बनने वाले बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बताया था। हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया है कि उन्होंने इस वजह से नहीं कहा था, लेकिन खैर ये कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। अब अमेरिका में रहते हुए अभिजीत दीपके ने 16 मई को ये पार्टी बनाई, तब इसके कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हो गए। सोशल मीडिया पर उस वक्त पेपर लीक की चर्चा बढ़ी और विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया तो धर्मेंद्र प्रधान को यह कहना पड़ा कि वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और इसे ठीक किया जाएगा। यही वो बयान था जिसे अभिजीत दीपके ने मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं देते। अब इसी के बाद अभिजीत दीपके ने भारत लौटने का फैसला किया और यह कहा कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए आ रहे हैं। यहां तक अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के बीच कोई संबंध नहीं था और यह भी तय नहीं था कि सोनम वांगचुक इस आंदोलन में अनशन पर बैठेंगे। इन सारे विवादों के बीच नीट की दोबारा परीक्षा हुई। 21 जून को यह परीक्षा करा दी गई। इस बार करीब 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी, लेकिन विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 24 जून को धर्मेंद्र प्रधान ने फिर वहां कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो खुद इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। यहां से मामला और बढ़ा और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान बार बार पेपर लीक की जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं होगा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि जब दोबारा परीक्षा हुई तब उससे पहले नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों ने आत्महत्या कर ली। कल्पना कीजिए, जिन बच्चों ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि इतनी मेहनत की थी, दिन रात एक करके एग्जाम दिया था, पेपर लीक की वजह से पेपर रद्द और अब फिर लग जाइए उसी तरह से पढ़ने में। व्यथा समझिए, कल्पना कीजिए कि किसी बच्चे ने इस वजह से अगर जान दे दी तो उस पर कैसा दबाव रहा होगा। अब सरकार भी जानती थी कि छात्रों की आत्महत्या युवाओं के गुस्से को बढ़ाएगी और इसलिए उसने 21 जून के री एग्जाम में पूरी ताकत झोंकी। हालांकि इससे गुस्सा कम नहीं हुआ, एग्जाम तो सफलता से हो गया, रिजल्ट भी निकल गए हैं, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हुआ। धीरे धीरे यह मामला सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भरोसा जवाबदेही का मुद्दा बन गया कि भाई इतने बच्चों की जान गई है तो जवाबदेह कौन। और 20 जून से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ जिसमें शुरुआत में 500 लोग भी शामिल नहीं थे, लेकिन 28 जून को सोनम वांगचुक की इस आंदोलन में एंट्री हुई। वो सरकार की जवाबदेही के मुद्दे पर अनशन पर बैठ गए। जब इस अनशन को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए और सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के वीडियो वायरल होने लगे तब जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। ये वही पल था जब कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को संसद चलो का आह्वान किया, देश भर के युवाओं से जंतर मंतर आने की अपील की। इस मार्च से 2 दिन पहले जब 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई तब युवा और नाराज हुए। हालात ऐसे बने कि जंतर मंतर भारत में ट्रेंड करने लगा। बड़ी संख्या में युवा 20 तारीख के संसद मार्च के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर से संसद मार्च निकाला और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। इससे यह आंदोलन बड़ा हो गया। आखिरकार आज धर्मेंद्र प्रधान को अपना यह इस्तीफा देना पड़ा। आप खुद देखिए कि जब अभिजीत दीपके को पहली बार फोन पर यह खबर मिली कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है तब वो और मौजूद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, इसका मंच से ऐलान किया। फिर देखिए, इस इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके ने मंच से एक भाषण भी दिया और ये कहा कि अगर लोग अपनी मांगों को लेकर मजबूती से खड़े रहे, डरे नहीं, तो लोकतंत्र में बदलाव संभव है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, याद रखना कॉकरोच से पंगा मत लेना। सुनिए,
2: ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है।
0: भाषण के दौरान अभिजीत दीपके भावुक होकर मंच पर घुटनों के बल बैठ गए। इसके बाद प्रदर्शनकारी एक दूसरे को गले लगाने लगे, वहां इसे इंसाफ का जश्न मनाया गया। इस दौरान अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और अभी पहला विकेट गिरा है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सुनिए,
2: यह पहला विकेट है, यह पहला विकेट है, यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूं, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहां पर 45 डिग्री की धूप में बैठे हुए थे।

0: बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु किरणा, कहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बैगम, मैथिली अशोक सोनोमरे, अवंतिका मौर्या, जतिन कुमार, गोपिका, शेख सना, वेत्यानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वैष्णवी गिव द नेम्स ऑफ ऑल द लीग वाले बच्चों को बैनर लो।
1: मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्री की कुर्सी कभी आसान नहीं रही। 2014 से अब तक 4 नेता इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन कोई भी एक बार में पूरा 5 साल का कार्यकाल शिक्षा मंत्री के रूप में पूरा नहीं कर पाया। सबसे पहले स्मृति ईरानी मई 2014 में शिक्षा मंत्री बनी। करीब 2 साल बाद जुलाई 2016 के कैबिनेट विस्तार में उन्हें इस मंत्रालय से हटाकर कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई। उनकी जगह प्रकाश जावड़ेकर ने शिक्षा मंत्रालय संभाला। लगभग 3 साल तक जिम्मेदारी निभाई, लेकिन साल 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें दोबारा शिक्षा मंत्रालय नहीं मिला। इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री बने, लेकिन जुलाई 2021 में स्वास्थ्य कारणों, खासकर कोविड के बाद आई परेशानियों के चलते उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। फिर धर्मेंद्र प्रधान ने 7 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय की कमान संभाली और वो मोदी सरकार के सबसे लंबे समय तक शिक्षा मंत्री रहे। 1845 दिन तक शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन नीट पेपर लीक, छात्रों के आंदोलन और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच आज उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। यहां एक संयोग ये भी है कि मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्रालय छोड़ने वाले तीनों मंत्रियों, स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल और धर्मेंद्र प्रधान को जुलाई महीने में ही इस मंत्रालय से विदाई मिली। यानी पिछले 12 सालों का इतिहास यही बताता है कि मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री का पद सबसे चुनौतीपूर्ण मंत्रालयों में रहा है।
2: होगी तो सभी लोग शांतिपूर्वक अपने घर लौटे, आराम करें, खुशी मनाएं और जरूर से उन परिवारों को याद करें जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने बच्चों को खोया।
1: यहां ये भी देखना होगा कि इस्तीफा कब हुआ। तब हुआ जब इससे पहले सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कड़े कदम है वो उठाने की कोशिश शुरू कर दी थी। 15 मई 2026 को शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि 2027 से नीट परीक्षा कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड में कराई जाएगी ताकि परीक्षा को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। इसके बाद 16 जून को नीट परीक्षा से पहले पेपर लीक अफवाहों को रोकने के लिए टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया गया और मैसेज एडिट करने की सुविधा भी बंद कर दी गई। बढ़ते दबाव के बीच 23 जुलाई को शिक्षा मंत्रालय में बड़े प्रशासनिक बदलाव हुए। शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाया गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की। फिर इसके बाद अगले दिन 24 जुलाई को सरकार ने पेपर लीक रोकने वाले कानून में बदलाव को मंजूरी दी। नए प्रावधानों में ऐसे मामलों की सुनवाई 3 महीने के अंदर पूरी करने, दोषियों को 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया और भी कदम उठाए गए। इसी दिन एनटीए में भी कार्रवाई हुई और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े 47 कर्मचारियों को हटाया गया। साथ ही दिल्ली पुलिस ने परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसटीएफ बनाया। यानी सरकार ने विवाद को शांत करने के लिए कई स्तर पर कदम उठाए, कानून बदला, अधिकारियों पर कार्रवाई की, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की, घोषणा और जांच तेज की। लेकिन छात्रों का मुख्य सवाल सिर्फ सुधारों तक नहीं था, वो चाहते थे जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो। आखिर अगर इतने बच्चों की जान गई है पेपर लीक की वजह से और री एग्जाम की वजह से तो जवाबदेही कोई तो लेगा। और लगातार विरोध आंदोलन, बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और इस इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक ने भी इसे युवाओं की जीत बताया है। देखिए
3: जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवा खड़े हुए उन सबका सम्मान करता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी आगे भी। ये जो शक्ति है लोकतंत्र की वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से।
1: अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। तो इस इस्तीफे के बाद सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत हुई जिसमें इसमें सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हुए। इस बैठक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संगठन अच्छे विश्वास के साथ आंदोलन वापस ले रहा है और उम्मीद करता है कि सरकार बातचीत में तय हुई बातों को तय सीमा, जो समय सीमा है, उसमें लागू करेगी। सुनिए।
4: जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में, वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकेंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे।
5: ये इनकी डिमांड्स थी, मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सब से कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े।
6: कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें। हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई है। आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे। हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था, और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें।
1: सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की तीनों मांगों को मान लिया। इनमें पहली मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मांग पूरी हुई। सीजेपी की दूसरी बड़ी मांग थी आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस हों, माना गया, सरकार ने सहमति जताई। पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि सरकार ने भरोसा दिया है कि प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में करीब 15 से 20 एफआईआर दर्ज होने की जानकारी है और उनकी कॉपी भी प्रदर्शनकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। सीजेपी की तीसरी मांग थी कि पेपर लीक विवाद के बाद आत्महत्या करने वाले जो छात्र हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। सरकार ने इस मांग पर भी सकारात्मक रुख दिखाया है, यानी सारी मांगे सरकार ने बिना शर्त स्वीकार कर ली। और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर बैठे सभी प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर खाली करने के लिए कहा है और जंतर मंतर के आसपास बंद किए गए जो 18 मेट्रो स्टेशन थे उन मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट भी खोल दिए गए। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
7: सीजेपी के प्रोटेस्ट के चलते पिछले 3 दिनों से लगातार बंद पड़े दिल्ली मेट्रो के गेट को जो है वो फिलहाल खोला गया है। 3 मेट्रो स्टेशन है जिसमें राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और मंडी हाउस के गेट्स को जो है वो खोल दिया गया। ये तस्वीरें राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की है जहां पर तमाम जो स्टूडेंट्स पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर जुटे हुए थे, मेट्रो स्टेशन बंद होने के चलते उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब फिलहाल ये गेट जो है वो खोले गए हैं। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तमाम जो सुबह से ही जितने प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस, जंतर मंतर और हजारों की भीड़ आज सुबह से ही जो है वो जंतर मंतर पर देखने को मिल रही थी, जैसे ही रेजिग्नेशन आया उसके बाद से ही लोगों में एक जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा था। उसके बाद से अब धीरे धीरे तमाम जो स्टूडेंट्स दिल्ली और अलग अलग इलाकों से जो है वो आए थे वो फिलहाल अब धीरे धीरे मेट्रो के जरिए जो है वो वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं।
1: जिस जंतर मंतर से कुछ दिन पहले तक सरकार के खिलाफ नारे गूंज रहे थे आज वही तस्वीर बदल गई, वही मंच, वही भीड़, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग। जहां कल तक प्रदर्शन था आज वहां जश्न था, जहां मांग थी इस्तीफे की वहां धन्यवाद और जीत के नारे थे। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर तैनात पुलिसकर्मियों का भी मुंह मीठा कर रहे थे। यानी नीट पेपर लीक से शुरू हुई ये लड़ाई आज एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में बदल गई और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही विपक्ष ने इसे सरकार की जवाबदेही बताया। प्रदर्शनकारियों ने इसे अपने आंदोलन की सफलता कहा। देखिए

0: पिछले 12 साल के कार्यकाल में शायद पहली बार केंद्र सरकार खुद को युवाओं के गुस्से और विपक्ष के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पा रही थी। नीट पेपर लीक मामले में बीजेपी सरकार एक साथ दो मोर्चों पर लड़ने में नाकाम हो गई। पहला मोर्चा था जंतर मंतर, जहां गुस्से से तमतमाए चेहरे लिए हजारों युवा सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार खड़े थे।
1: मुझे क्या लगता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, सरकार को तय करना है वो इस्तीफा लेते या नहीं लेते, अगर नहीं लेते तो हमारा आंदोलन जारी रहे।
0: और दूसरा मोर्चा था देश की संसद, जहां पूरा विपक्ष सरकार को एक पल भी चैन से बैठने नहीं दे रहा था। संसद का मानसून सत्र युवाओं के गुस्से की आग में सूखा जा रहा था। विपक्ष के नेता पुलिस द्वारा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से आग बबूला थे।
2: मकर द्वार पे जोरों शोरों से इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन करने वाले हैं सारे विपक्षी नेता। अखिलेश यादव की बात करें तो वो इस समय काले कपड़ों के अंदर पहुंचे हैं। राहुल गांधी खड़े हैं काले कपड़ों के अंदर, प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हैं, और ये सब बड़े जितने भी विपक्षी नेता हैं वो सब एकजुट हैं, एक साथ हैं और खड़े हैं पीछे और बोल रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं, जो एक अहम मांग है वो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। वो सभी लोग यहां आपको पीछे नजर आएंगे।
0: और आखिरकार करीब 36 दिनों बाद सीजेपी को वो मिल गया जिसकी वो मांग कर रहे थे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस सफलता का जश्न सीजेपी ही नहीं बल्कि वो सभी विपक्षी नेता मना रहे हैं जिन्होंने छात्रों की मांगों को लेकर संसद को सिर पर उठाया हुआ था।
3: The first one and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked.
4: They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend.
0: जिस सरकार ने अभी तक राजनीतिक दबाव में किसी मंत्री से इस्तीफा न लिया हो, उस सरकार के शिक्षा मंत्री ने खुद इस्तीफा दे दिया। ये एक बड़ी राजनीतिक घटना है और ऐसा तभी मुमकिन हो पाया जब युवाओं के मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं ने भी संसद और सड़क एक कर दी।
5: हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत बहुत बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेन जी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया, धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है।
6: प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सीजेपी और विपक्ष के नेता एक बड़ी सफलता मान रहे हैं और इस सफलता का श्रेय युवा प्रदर्शनकारियों और विपक्ष के एक ऐसे अलिखित गठबंधन को जाता है जिसका तोड़ खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो गया था। सरकार पर राजनीतिक और नैतिक दोनों तरह का दबाव था। सोनम वांगचुक का अनशन और हजारों की संख्या में जुटे युवाओं के तीखे सवाल सरकार पर नैतिक दबाव डाल रहे थे। मुख्य रूप से मांग दो ही थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई। सरकार के लिए इन मांगों को पूरा करना एक चुनौती बन गया था। दूसरी तरफ विपक्ष ने संसद की कार्यवाही को पूरी तरह से ठप कर दिया था। पिछले 5 दिनों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं चल पाई। विपक्ष की नारेबाजी सदन के अंदर ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी दिखी।
7: जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए।
8: अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो
4: क्या है वो स्टेप्स, मारपीट हुई है। ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको।
0: संसद में सरकार को घेरने के बाद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया था। इस अति संवेदनशील इलाके में विपक्षी नेताओं का ऐसा जमघट लगा कि सुरक्षा एजेंसियों तक के होश उड़ गए। विपक्ष ने केंद्र सरकार से युवा प्रदर्शनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज पर सवाल पूछे, आंसू गैस के इस्तेमाल पर घेरा और सोनम वांगचुक का अनशन खुलवाने की अपील की। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए इस धरना प्रदर्शन से सख्ती से निपटा गया।
8: सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनार्की हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठीचार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रखा जाए।
9: बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीट कर हिरासत में लिया, हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीट कर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं, हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है।
0: विपक्ष और प्रदर्शनकारियों के नैतिक और राजनीतिक दबाव का ही असर था कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत शुरू की और साथ ही साथ सोनम वांगचुक के अनशन को खत्म करवाने की कोशिशें शुरू हुई। दोनों ही मंत्रियों ने सोनम वांगचुक से अस्पताल में मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि प्रदर्शनकारियों की मांगे मान ली जाएं।
10: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पहले खबरें आ रही थी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और न ही उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा। इन खबरों के बीच 23 जुलाई को अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। इस खबर के बीच विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ एक नया चक्रव्यूह रचा और राहुल गांधी शाम होते होते विपक्षी नेताओं के साथ सड़क पर उतर गए। वो इंडिया गेट तक मार्च करना चाहते थे लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने गांधी स्मृति पर जाकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार की नीति पर सवाल उठाए।
11: 12 साल से तो अघोषित इमरजेंसी है, 12 साल से अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई, अधिकार खत्म कर दिए गए, लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने की कोई कमी नहीं रखी, संविधान मिटाने की व्यवस्था किया गया, सारी संस्थाओं को कैद किया गया, तो आप उठा करके देखिए क्या स्थिति है। तो जब आप पूरी की पूरी डेमोक्रेसी खत्म कर दोगे तो फिर रास्ता क्या बचता है।
12: सरकार से छोटी सी मांग है कि आप शिक्षा मंत्री जो कि 120 जो कि रिकॉर्ड पे है पेपर लीक उसके लिए जिम्मेवार हैं, उनका इस्तीफा लीजिए, उसके बाद संसद में बहस हो, चर्चा हो, जो कमियां हैं खामियां हैं सरकार की तरफ से उसमें सुधार हो।
0: विपक्षी नेताओं के इस हंगामे के बीच दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के उस ट्वीट को पूरी तरह से नकार दिया जिसमें कहा गया था कि 23 जुलाई की रात जंतर मंतर पर पुलिस का बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। माना गया कि कुछ होने वाला था जो विपक्ष के हंगामे के बीच टाल दिया गया। और उधर जंतर मंतर पर बेखबर प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी का दौर जारी था। हालांकि इस दौरान खबर आई कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की अपील पर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है क्योंकि सरकार ने उनकी मांगे मानने का आश्वासन दिया है।
10: अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे ये आश्वासन दिया।
0: और फिर देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सेल्फी वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए पेपर लीक पर सख्त कानून लाने की बात कही।
13: फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा।
0: पीएम मोदी के इस वीडियो संबोधन के आने के बाद माना गया कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। अगले ही दिन कैबिनेट ने पेपर लीक पर संशोधन बिल लाने का ऐलान कर दिया जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और सख्त सजा का ऐलान किया गया।
14: This is a complete eye wash. The fast track courts or a law, I just imagine they are breaking a law after no discussion, no deliberation, nothing at all. What is going to be the credibility of that law? How is it going to change people's lives? वो ही नहीं सकता है।
0: इसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के नेताओं के साथ दूसरे राउंड की बातचीत शुरू की जिससे ये पता चला कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा बाकी मांगों पर सरकार राजी है लेकिन जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहे।
1: प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दिक्के या एक सोनम वांगचुक सरकार नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है।
15: धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।
0: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत में फंसी वो गरारी थी जिसके ठीक होने पर ही गाड़ी आगे बढ़ती और फिर 25 जुलाई दोपहर 2:18 पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया और इसी के साथ जश्न का एक नया दौर शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
16: कभी कभी लोकतंत्र में एक आवाज सिर्फ आवाज नहीं रहती, वो एक सवाल बन जाती है और जब सवाल लाखों युवाओं की उम्मीदों से जुड़ जाए तो उनकी गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है। नीट पेपर लीक से शुरू हुई यह लड़ाई पहले जंतर मंतर के धरने तक पहुंची और आज इस कहानी का बड़ा मोड़ तब आया जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। इस इस्तीफे के बाद आज जंतर मंतर पर जश्न था, नारे थे और इस दौरान एक नया शब्द सुनाई दिया, जेन जीत है, यानी जेन जी नहीं जेन जीत है, यानी वो पीढ़ी जिसे अक्सर सिर्फ सोशल मीडिया और ट्रेंड्स के से जोड़कर देखा जाता था, उसने दिखाया कि असली मुद्दों पर खड़ा होना, उन पर सवाल पूछना, बदलाव की मांग करना उसकी पहचान है। आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए।

0: जंतर मंतर पर कल रात तक किसी को नहीं पता था कि ये प्रदर्शन 25 जुलाई की शाम तक खत्म हो जाएगा। कल रात भी हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मोर्चे पर मौजूद थे और उनके नेता आगे की रणनीति बनाने में जुटे थे, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण था। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी नेताओं की बैठक होने वाली थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर फाइनल बातचीत होनी थी और सीजेपी नेताओं का रुख प्रधान के इस्तीफे पर अटका हुआ था।
1: And I'm very sure, अगर हम ऐसे पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर होगा।
0: सीजेपी के प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया था कि अगर 72 घंटों के अंदर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो 20 जुलाई की तरह ही एक बार फिर संसद तक मार्च होगा। सरकार ने इस मांग पर शनिवार दोपहर तक का समय मांगा था। सरकार पर इस आंदोलन को खत्म करने का दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अगर दोबारा संसद मार्च होता और उसमें पुलिस की सख्त कार्रवाई होती तो हालात बद से बदतर हो सकते थे। हालात को काबू में रखने के लिए कल रात से ही जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और ज्यादा मजबूत कर दिया गया था। आज सुबह सुबह ही सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि उन्हें टाइफाइड हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये ऐलान भी किया कि प्रदर्शन जारी रहेगा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ये खत्म नहीं होगा।
1: जैसे कि आप सबको पता था, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, तो ब्लड रिपोर्ट्स आ गए एंड आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद टाइफाइड और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। रोज सुबह और शाम को आईवीज लग रहे हैं, बट आई रियली वांट टू थैंक ऑल द कॉकरोचेस जो पूरे देश भर में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस मूवमेंट को इतना सक्सेसफुल बना दिया है आप लोगों ने। अ बिग बिग थैंक यू टू ऑल एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर मेकिंग दिस मूवमेंट सच अ बिग बिग सक्सेस। एंड आई एम वेरी श्योर, अगर हम ऐसे ही पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर होगा।
0: माना जा रहा था कि आज दोपहर 3:30 बजे सीजेपी नेताओं के साथ जो बैठक होनी है उसमें कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन इस बैठक से पहले ही बड़ी खबर आ गई। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया और एक्स पर एक पत्र लिखकर इस्तीफे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहते। आरोप लगाया कि छात्रों को गुमराह किया जा रहा है और वो पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम को देखकर व्यथित हैं। उनका मानना है कि जंतर मंतर पर जो कुछ हो रहा है उसका फायदा राष्ट्र विरोधी ताकतें उठा सकती हैं। अपने पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत कुछ कहा, लेकिन सच यही है कि प्रदर्शनकारियों को उनकी इन बातों से नहीं बल्कि उनके इस्तीफे से मतलब था। जैसे ही ये खबर सामने आई, जंतर मंतर पर महोत्सव शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी खुशी से झूम उठे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनकर सीजेपी के नेताओं की आंखें चमक उठीं। उन्हें वो मिल गया जिसके लिए वो पिछले 36 दिनों से लड़ रहे थे, पुलिस की लाठियां खा रहे थे, और इस सफलता की गरज जंतर मंतर के मंच से दिखी और ऐलान हुआ, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने के वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा। तो मुझे कोई भी हीरो नहीं बनाएगा। नारे लगेंगे भारत माता की जय के।
0: प्रधान के इस्तीफे के बाद एक बात और साफ हो गई कि कोई और संसद मार्च नहीं होने जा रहा है। सरकार ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें प्रदर्शनकारी नेताओं की तरफ से पक्का वादा चाहिए था, इसीलिए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी नेताओं की जो बैठक तय हुई थी वो तय समय पर हुई। इस बैठक के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सीजेपी ने वो ऐलान किया जिसके लिए सरकार पिछले 5 दिनों से लगी हुई थी। धरना खत्म होने के इस ऐलान के बाद तो सरकार को ऐसा लगा जैसे दिल्ली की आबोहवा शांत हो गई है। पिछले 5 दिनों से नई दिल्ली का पूरा क्षेत्र युवाओं के गुस्से से दहक रहा था और इसकी तपिश संसद में महसूस की जा रही थी। धरना खत्म होने का ऐलान हुआ तो सब कुछ शांत हो गया। ये तूफान के गुजर जाने के बाद की शांति थी जिसमें उपद्रव का दंश भी था और सफलता का शोर भी। धरना खत्म होने के ऐलान के साथ ही जंतर मंतर पर मिठाई खाने खिलाने का दौर शुरू हो गया। म्यूजिक पर थिरकते नौजवान नजर आने लगे। मंच जोशीले नारों से गूंज उठा। सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने भी अब राहत की सांस ली और माइक से ऐलान किया गया कि प्रदर्शनकारियों की मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब वो अपने घरों को लौट जाएं। प्रदर्शन के खत्म होने के बाद दिल्ली के जिन मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था उन्हें खोल दिया गया ताकि प्रदर्शनकारी धीरे धीरे अपने घर लौट जाएं। मांगे मान ली गई थी। सरकार को युवा शक्ति ने घुटनों पर ला दिया। मिशन पूरा हो चुका था इसलिए धरना स्थल खाली होने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
3: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और सहानुभूति का नया नियम यह है कि जब तक दुख का कोई वीडियो प्रूफ ना हो लोग संवेदना की पहली किश्त भी जारी नहीं करते। नमस्कार।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime, and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits, or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
7: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
8: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
9: तू सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
7: मतलब
9: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
7: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
9: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB मेरा अपना बैंक।
10: हे, लाइफ hey, में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर किधर?
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
6: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही छात्र आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन अभी इस मुद्दे पर सियासी खेल बचा है। सोमवार को एक बार फिर मानसून सत्र के लिए संसद खुलेगी, जहां पर बड़े घमासान के आसार हैं।
7: छात्र खुश हैं, विपक्ष खुश है।
8: सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।
9: खुश है कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए।
7: लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरा गतिरोध खत्म हो जाएगा? क्योंकि सड़क पर तो जंग खत्म हो गई है, लेकिन संसद में लड़ाई अभी बाकी है।
10: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे।
11: ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
7: सरकार ने पेपर लीक को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है। लेकिन इस ड्राफ्ट के साथ मानसून सत्र में घमासान का नया चैप्टर खुलने वाला है, क्योंकि सरकार जहां पेपर लीक पर चर्चा पर लगातार जोर दे रही थी, तो वहीं विपक्ष के लिए चर्चा की पहली शर्त ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। ऐसे में क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में पेपर लीक पर चर्चा होगी?
12: पैलेट गन्स वर फायर एट देम, टियर गैस वर फायर एट देम, दे वर बीटन विद लाठीज, they had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will.
13: आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसके तहत चलाना पड़ेगा।
14: जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी, और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी।
7: उधर दिपके भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है,
15: ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है।
7: सड़क पर पेपर लीक की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब एक लड़ाई संसद में होनी बाकी है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
2: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। सोमवार को लोकसभा में पेश होगा पेपर लीक के खिलाफ बिल। सरकार से तीसरे दौर के बातचीत के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने खत्म किया आंदोलन। दीपके ने कहा लोकतंत्र की जीत, जंतर मंतर में छात्रों का जश्न दिखा। विपक्ष ने छात्रों की पीठ थपथपाई। राहुल गांधी ने कहा सालों से शिक्षा व्यवस्था पर हमला, जितनी गलती मोदी की उतनी ही संघ की। अखिलेश बोले सरकार को झुकना ही था। पेपर लीक पर बिहार में आक्रोश, लेफ्ट के बंद पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में पत्थरबाजी, लाठीचार्ज। पटना, छपरा, भागलपुर, औरंगाबाद में बवाल। गुजरात में बाढ़।

0: से बिगड़े हालात नवसारी में 21 लोगों की मौत, असम में भी 61 ने गंवाई जान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: बदल गया है युद्ध, और बदल गया है युद्ध लड़ने का तरीका।
1: अगर 99 वाले हालात दोबारा बनते हैं तो हम एनिमी की मूवमेंट्स को पहले से ही डिटेक्ट करके उन पे जवाबी हमला कर सकते हैं।
0: बदलती दुनिया के बीच कितना बदला है भारत।
2: अभी हमारे पास में AK-203, 6-4 राइफल, निगेव LMG और साको स्नाइपर जैसे आधुनिक हथियार आज हमारे पास में।
3: अब हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे साल एक्टिव रहने वाली सड़कों को बना दिया है।
0: और नए युग के युद्ध के लिए कैसे किया है खुद को तैयार, देखिए करगिल महाविजय के 27 साल बाद नए भारत की नई ताकत। है अमर शहीदों की पूजा हर एक राष्ट्र की परंपरा, उनसे है मां की कोख धन्य, उनको पाकर है धन्य धरा। गिरता है उनका रक्त जहां वो ठौर, तीर्थ बन जाते हैं वो रक्त बीज, अपने जैसों की नई फसल दे जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, मैं हूं श्वेता सिंह। हम करगिल में हैं इस समय, वो करगिल जहां का युद्ध हमने ऐसे जीता कि उसके बाद पाकिस्तान हिम्मत ही नहीं कर सका एक पूर्ण युद्ध भारत से लड़ने के लिए। लेकिन दुनिया के बाकी जो देश हैं वो अपनी हार में सबक सीखते हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है दुनिया का जो अपनी जीत से भी सबक लेता है। ये युद्ध भूमि के टुकड़े के लिए नहीं था, ये भारत माता के आंचल के सम्मान की जंग थी। ये हिंदुस्तान के अभिमान की जंग थी, ये हमारे अधिकार की जंग थी, ये पाकिस्तान को उसका हद बताने की जंग थी, ये सरहद पर स्वाभिमान की जंग थी। करगिल युद्ध को 27 साल बीत चुके हैं। भारत की सेना ने यहां पाकिस्तान को ऐसी शिकस्त दी थी कि वो दशकों से भूल नहीं पा रहा। लेकिन विजयी दबदबे के अति आत्मविश्वास की जगह भारत ने जीत से भी सीख लेते हुए इस मोर्चे को अभेद बनाया है। जहां भी गुंजाइश थी वहां सुधार किया है।
2: फिर एक बार उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां हम एक बार 1999 में हुआ करते थे। उस समय की हालात को देखते हैं और आज की हालात को देखते हैं तो हर एक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में काफी ज्यादा बदलाव लाए गए हैं। पहाड़ियों के बीच भी छोटे छोटे ट्रैक्स बना दिए गए हैं जिनकी मदद से हमारे छोटे व्हीकल हमारे फॉरवर्ड पोस्टों तक जाने की कार्रवाई कर सकते हैं।
0: भारत ने करगिल युद्ध में महाविजय हासिल की थी, लेकिन ये भारतीय सेना की परंपरा रही कि युद्ध के उपरांत हर सीख को आगे की पीढ़ियों के लिए दर्ज किया जाता है। जहां कमी लगती है उसे दूर किया जाता है, जो सफलता मिलती है उसे आगे के लिए ट्रेनिंग में शामिल किया जाता है। ठीक इसी तरह जहां कमी पाई गई उनमें ऐसा सुधार किया गया कि दुश्मन को हमारी रक्षा में अब एक भी दरार नहीं मिलेगी। जैसे करगिल के समय दुश्मन की जिस चालबाजी का पता चलने में वक्त लगा था उसे दूर करने के लिए जानकारी हासिल करने का तंत्र दुरुस्त किया गया है। हाई ऑल्टीट्यूड की ट्रेनिंग और इन परिस्थितियों में सैनिकों के साजो सामान को बेहतर किया गया है। संचार प्रणाली को पुख्ता और मजबूत किया गया है। हथियार प्रणालियों को जरूरत के अनुसार अपग्रेड किया गया। स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता को बढ़ाया गया। जल थल वायु सेना का समन्वय बेहतर हुआ है और सबसे बढ़कर उपकरणों और हथियारों का स्वदेशीकरण हुआ है। करगिल विजय दिवस पर हम आपको दिखाएंगे क्यों अब इस मोर्चे पर दुश्मन आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकता।
4: 1999 तक इंसास राइफलों का इस्तेमाल, LMG जो बहुत अपडेटेड नहीं थी, नाइट विजन का उतनी बहुतायत में नहीं था, लेकिन अब किस तरीके के उपकरण इस्तेमाल होते हैं, किस तरह के वेपन्स इस्तेमाल होते हैं।
0: 27 साल पहले जिन हथियारों से हमने युद्ध लड़ा था वो अब इतिहास की कहानियां हैं। आधुनिक हथियारों की इस तस्वीर में हमारा हुनर, हमारी आशा, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का भरोसा नजर आता है। ये नया अर्जित जो असॉल्ट राइफल है, ग्रेनेड लॉन्चर्स और उसी में कुछ ऐसी चीजें जो आज भारतीय सेना की तरक्की आपको और ज्यादा दिखाती है, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ये भारत में निर्मित है। इससे पहले रूस में निर्मित एंटी टैंक मिसाइल हम यूज करते थे, लेकिन अब भारतीय निर्माण जो है, जो स्वदेशी हथियार ये है, उसमें जो रेंज है वो लगभग डबल हो गया है। 3 किलोमीटर से अधिक तक ये निशाना साध सकता है, 75 मीटर से लेकर 3000 मीटर के ऊपर तक इसका रेंज होता है। और ये जो हथियार है, इसे 4 लोग कुल मिलकर ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि एक जो टुकड़ी है वो साथ लेकर इसे चल सकती है। इसी तरीके से आप हमारी स्नाइपर राइफल को देख लीजिए, कहीं भी किसी भी दूरी से सटीक निशाना बिल्कुल लगाने में सक्षम। आज भारतीय सेना ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रही है जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इनमें कुछ दूसरे देशों में निर्मित है तो कुछ का उत्पादन भारत में हो रहा है। रूस के साथ रक्षा समझौते के तहत AK-203 का उत्पादन भारत में हो रहा है। काउंटर टेररिज्म से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर तक AK-203 विस्तृत कॉम्बैट परिस्थितियों में प्रयोग के लिए बेहतरीन। ये राइफल दुनिया के सबसे एडवांस और भरोसेमंद असॉल्ट राइफल्स में से एक है।
5: इसका नाम है AK-203 असॉल्ट राइफल। ये पहले सेना के अंदर AK-47 का इस्तेमाल किया जाता था, अभी इसका लेटेस्ट वर्जन AK-203 को सेना के अंदर शामिल किया गया है। AK-47 के बनिस्पत इसका रिकॉइल कम और एक्यूरेसी ज्यादा होने के कारण हम लंबे रेंज पर निकलने वाले टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। इसके साथ 5 मैगजीन आते हैं, उससे हम लड़ाई में ज्यादा एमिनेशन कैरी कर सकते हैं और इसका फायर पावर भी बढ़ जाता है।
0: इसके अलावा भारतीय सेना फ्रंटलाइन ट्रूप्स, स्पेशल फोर्सेस, घातक प्लाटून के लिए उनकी जरूरतों के अनुसार राइफलें इस्तेमाल करती है।
6: ये एक स्नैपर है, इसका नाम है 8.6 mm साको स्नैपर राइफल। अभी इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर बाइपॉड की सुविधा दी गई है, इसके अलावा इसके अंदर बोल्ट एक्शन है, जिसके वजह से क्या है, इसके अंदर पुर्जे की मूवमेंट नहीं होती, जिसके वजह से क्या है, इसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है। दूसरी बात है, इसके अंदर पिकअप रेल की सुविधा दी गई है, जिसके वजह से दिन के समय जिस प्रकार से हम साइट लगा के फायर करते हैं, उसी हिसाब से क्या है, इसके अंदर नाइट के समय भी हम TI साइट लगा के उसको हम फायर के अंदर शामिल कर सकते हैं, जिसके वजह से दिन और रात के समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: साथ ही जो नाइट विजन और थर्मल वेपन साइट्स हैं, वो बेहद कारगर हैं।
7: इस साइट का नाम है लॉन्ग रेंज थर्मल इमेजर कैमरा। ये एक नाइट साइट है जो कि भारत में बेल कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह साइट थर्मल इमेजर के सिद्धांत पे काम करती है। इस साइट के साथ एक TFT की सुविधा दी गई है, जिसकी मदद से एक ऑपरेटर साइट को किसी डोमिनेंट हाइट पे और या फिर बंकर पर खुद ऑपरेटर बंकर के अंदर बैठकर अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की निगरानी आसानी से कर सकता है। साइट लाइट वेट होने के कारण एक ऑपरेटर इस साइट को एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से कैरी कर सकता है।
0: बुलेट प्रूफ जैकेट्स की क्षमता भी बढ़ी है और वजन घटा है। ठंड में इस्तेमाल में आने वाला गियर भी पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हुआ है। हम आपको वो उपकरण भी दिखाते हैं जो 1999 में इस्तेमाल किए जाते थे।
4: भारतीय सेना के हाथों में आज आप अलग अलग तरह के हथियार देखते होंगे, लेकिन उस समय कौन से हथियार, कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था? ये AK-47 राइफल्स, हालांकि इनमें कई ऐसे हैं जो कि दुश्मन से कैप्चर भी किए गए हैं, दुश्मन के दांत किस तरह से खट्टे किए थे आप सबको याद है। ये मैगजीन्स हैं, ये वो नेजा है, वो बेनेट है, जिसके अलग अलग तरह के इस्तेमाल हो जाते हैं। उस समय भी आपने देखा होगा कि चाहे गोलियां बचे ना बचे, लेकिन दुश्मन नहीं बचता था। बंदूक के सामने के हिस्से में इसे फिट भी किया जा सकता है और अलग अलग अवरोध को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी चीज़ को खोलने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो ग्रेनेड है, हैंड ग्रेनेड, इसका इस्तेमाल किया गया था। टाइप 36 जिसे कहते हैं, और साथ ही जो मोटोरोला सेट्स थे जो कि उस समय डिजिटल नहीं बल्कि एनालॉग, और ये जितने भी उपकरण आप देख रहे हैं वो जो पहाड़ियों को पार करने के लिए जिनका प्रयोग किया गया था उन सब को अर्जित किया गया था। और जब भी एक सैनिक युद्ध भूमि के लिए निकलता था तो वो जो फील्ड ड्रेसिंग होती है, क्योंकि उस समय आपको जिस तरह की चोटें आ रही हैं उसके लिए सबसे पहले किस तरह से जल्दी फौरी उपचार मिल जाए उसके हिसाब से, तो ये सारे उपकरण मोटे तौर पर जो एक योद्धा हमारा 1999 करगिल युद्ध में लेकर निकला था। दरअसल 1999 में जब युद्ध छिड़ा तो भारत को जरा भी आशंका नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद से भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण को अपनी मुहिम बनाया। खासकर पिछला एक दशक इस दिशा में बेहद निर्णायक रहा है। इस बोफोर्स को जब आप द्रास करगिल की चोटियों के बीचों बीच देखते हैं तो अपने एहसास में आपको 1999 की उसकी गर्जना भी सुनाई देती है। गेम चेंजर था उस युद्ध में, जिस तरीके से इसने दुश्मन को अपनी हदों में रहने को मजबूर किया था, ये गेम चेंजर था। और अब हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ तेजी से बढ़ते हुए, बोफोर्स की खूबियों को रखते हुए, बोफोर्स की कमियों को दूर करते हुए हथियारों के साथ लैस हैं। करगिल की लड़ाई में बोफोर्स तोप एक ऐसा ब्रह्मास्त्र साबित हुआ जिसने घुसपैठियों को बेबस कर दिया था। करगिल युद्ध में पहली बार इन तोपों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब ढाई दशक बाद 15,000 फीट की ऊंचाई पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस धनुष हाउइट्ज़र भी मोर्चे पर लगाए गए हैं। किसी भी मौसम में, कैसे भी हालात में ये दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकते हैं। हजारों मील में फैली घाटी में धनुष भारतीय सेना की ताकत को बढ़ा रहा है। आज इन ताकतों के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। न्यू इंडिया की बदलती तस्वीर की वजह से भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। 1999 करगिल युद्ध में बोफोर्स के दम ने दुश्मन का सर कुचल दिया था। 155 mm की ये गन ऊंची चोटियों पर फतेह में निर्णायक थी, लेकिन भारतीय सेना ने मोर्चे की बदलती जरूरतों पर ध्यान रखते हुए अपने तोपखाने के आधुनिकीकरण पर निरंतर जोर दिया।
8: मेक इन इंडिया के तहत जो भी हमारे डिफेंसिव इक्विपमेंट अब भारत में तैयार किए जा रहे हैं वो पहले के मुकाबले काफी बेहतर हैं। जे हमारी जमीनी बनावट और हमारे ऑपरेशनल टास्क को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जा रहे हैं, जैसे हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट और असॉल्ट राइफल और ड्रोन्स, ये सब अब भारत में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। इनकी सबसे खास बात ये है कि इनमें अगर कभी भी कोई टेक्निकल फॉल्ट या कोई इशू आ जाता है तो हम इनको जल्द से रिपेयर करके और अपने ऑपरेशनल टास्क में शामिल कर सकते हैं। इनकी वजह से हमारी ऑपरेशनल पावर भी बढ़ी है और ये भारत के डिफेंस सिस्टम में एक मजबूत कदम है और ये हमारे लिए गौरव की बात है।
4: आज भारत के पास धनुष है, M777 अल्ट्रा लाइट हाउइट्ज़र है, K9 वज्र है, स्वदेशी रॉकेट आर्टिलरी है, DRDO द्वारा विकसित एटैक्स है। एक तरह से समझिए कि भारत में फायर पावर के लिहाज से क्रांति है।
2: उस समय पर यदि मैं हथियार की बात करूं तो हमने 99 के अंदर SLR और LMG 7.62 से लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन हमने उसके बाद में इंसास परिवार को भी पीछे छोड़ दिया। अभी हमारे पास में AK-203 6-0 राइफल, निगेव LMG और साको स्नाइपर जैसे आधुनिक हथियार आज हमारे पास में, जिनको इस इलाके में ऑपरेट करना, साथ ही उनका रखरखाव करना काफी आसान है, तो आसानी से एक जवान उनका इस्तेमाल कर सकता है।
4: इस इलाके में बहुत बदलाव हुआ है। सीमावर्ती इलाकों में अब सेना ने ज्यादातर ऊंची चोटियों तक पहुंचने के लिए रास्ते और सड़कें बना ली हैं। टाइगर हिल, तोलोलिंग जैसी ऊंची चोटियों पर सेना ने मजबूत पोस्ट कायम कर ली है। जिन जगहों से पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी वहां घुसपैठ रोधी ग्रिड बना दिए गए हैं। जिन पहाड़ी चोटियों को बर्फबारी के मौसम में खाली कर दिया जाता था अब वहां पूरे साल सैनिकों की तैनाती रहती है।
0: किसी भी वक्त तुरंत सैन्य तैनाती और मदद के लिए एलओसी पर जगह जगह हेलीपैड्स का निर्माण हुआ है। आम नागरिकों के लिहाज से भी इलाके की सूरत ही बदल दी गई।
9: कारगिल पर विजय हासिल करने के बाद भारतीय सेना और सरकार दोनों ने एक साथ मिलकर इस इलाके में नए विकास का एक नया दौर शुरू किया है। पहले यह इलाका काफी आइसोलेटेड माना जाता था, लेकिन अब इस इलाके में सिविल और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चल रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर में भी काफी सुधार हुआ है। 4G, 5G, ब्रॉडबैंड और सैटेलाइट इंटरनेट जैसे अपॉर्चुनिटीज ने यहाँ के युवा को नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ जोड़ दिया है।
3: अब हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस इलाके के अंदर पूरे साल एक्टिव रहने वाली सड़कों को बना दिया है। इसके साथ ही जोजिला टनल मेगा प्रोजेक्ट ने हमारे पूरे लद्दाख रीजन को राउंड द ईयर असेसिबल बनाया है। इससे क्या हुआ है कि हमारी सेना का जो मूवमेंट है वो और भी आसान हो गया है, और अगर जरूरत पड़ती है कि हमें प्रतिक्रिया करनी है तो हमारी प्रतिक्रिया भी पहले के बजाय अब तेज हो गई है।
0: इसके अलावा एलओसी पर सर्वेलांस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सैटेलाइट और टोही ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है।
4: ड्रोन्स अलग अलग भूमिकाओं में हैं भारतीय सेना में। सर्वेलेंस बहुत प्रमुख रोल इसका हो जाता है, जैसे ये त्रिनेत्र जिसका नाम है, और केवल नाम भारतीय नहीं होता है बल्कि उसमें भारत का अंश होता है। उसके चाहे असेंबली को ले लीजिए या फिर उसके निर्माण को ले लीजिए, अलग अलग तरह के ड्रोन्स, ये एक सर्वेलेंस ड्रोन है, वैसे कॉम्बैट ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होता है। इसकी खासियत क्या है कि ये दिन में और रात में दोनों समय में हमारी सेना की आंखें बनकर हमें वो तस्वीरें सीधे भेजता है।
0: ये गर्व की बात है कि उस युद्ध के दौरान की चुनौतियों को अनुभव करने के बाद उन सभी को दूर करने की बारीक कोशिशें आप यहाँ पर देखेंगे। करगिल युद्ध के बाद से भारतीय सेना में आधुनिकीकरण की रफ्तार और तेज हो रही। युद्ध के स्मारक पर एक ओर आप करगिल दौर के हथियारों को शान से सजा देखते हैं, तो नए भारत की नई ताकत का बखान करते उपकरणों से भी गर्व महसूस करते हैं।
10: इस राइफल का नाम 6 और 716 असल्ट राइफल है। ये यूएसए का बना हुआ है। इसकी एक खासियत यह है, हम 500 से लेकर 800 मीटर तक आसानी से दुश्मन को सिंगल शॉट और ब्रश राउंड फायर से बर्बाद कर सकते हैं। इस हथियार की कुछ एक विशेषताएं जो इस प्रकार से हैं, इसमें मैगजीन कैच और फायर सेफ्टी कैच लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों दे रखा है। अच्छा। अगर कोई बंदा लेफ्ट हैंड फायरर है, कोई राइट हैंड फायरर है, वो इसका आराम से इस्तेमाल कर सकता है। कई बार क्या होता है कि हाइट अलग अलग होने के कारण कि बट को एडजस्ट करना पड़ता है, इसमें एडजस्टिंग बट की सुविधा दे रखी है। साथ में क्या होता है कि फायरिंग के दौरान धूल वगैरह उड़ती है, इसमें एजेक्शन स्लॉट के ऊपर ना कवर के लिए डस्ट कवर की सुविधा दे रखी है। अच्छा। साथ में इसमें क्या है कि जो ओपन साइड और रियर साइड दोनों है ना, इनमें जीरो करने के लिए हमें किसी भी जीरोइंग टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ में इसके पिकनोटिंग रेल दे रखी है जिसके ऊपर हम डे साइड और नाइट साइड आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना भी इस्तेमाल करें, हम जरूरत अनुसार इस्तेमाल करके उसको उतार के रख सकते हैं।
0: विजय का अहंकार नहीं बल्कि चुनौतियों को परख कर व्यवस्था में सुधार ही भारत का ध्येय है, उद्देश्य। द्रास करगिल की इन पहाड़ियों पर कभी गोलियों और गोलाबारी के बीच हमारे सैनिक चढ़े थे। इन ऊंची चोटियों से दुश्मन को बेदखल किया था, तिरंगा लहराया था। इसके बाद से भारत ने कभी अपनी तैनाती यहां कमजोर नहीं पड़ने दी। आज सैनिकों के सहयोग के लिए यहां ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं, जो अलग अलग जरूरतों के अनुसार ट्रूप मूवमेंट से लेकर लॉजिस्टिक्स में काम आते हैं।
4: एक तो यहाँ का भूगोल, यहाँ का टेरेन, और दूसरा यहाँ का जो कर्कश मौसम है, मोबिलिटी बड़ी जरूरी होती है। सब इस व्हीकल के बारे में बताएं, क्योंकि ज्यादातर समय तो यहाँ पर स्नो रहता है पूरे इलाके में। जी,
11: ये मैम ये पोलारिस 550 हाँ। ये पोलारिस कंपनी से बना हुआ है। ये सेना में इसीलिए दिया गया है कि मोबिलिटी बढ़ाने के लिए हाँ। जहाँ पे 4-व्हील व्हीकल जा नहीं पाता है, वहाँ पे ये ले जाके हम आराम से ट्रूप्स को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं।
4: अच्छा, मतलब जब पूरा बर्फ रहती है
11: जी,
4: तो उसमें बहुत
11: जी जी, और स्टार्टिंग में जो -डिग्री है हाँ। उसमें भी आसानी से स्टार्ट हो जाता है। हाँ। जो एविएशन का फ्यूल इसमें डालते हैं, इसीलिए
4: अच्छा
11: -डिग्री में भी वो आसानी से स्टार्ट हो सकता है।
4: अच्छा अच्छा, वैसे भी तो द्रास को जो दुनिया की सबसे दूसरी नंबर पर आने वाली ठंडी जगह है जो कि आबाद जगह है, मतलब एक ऐसी रिहायशी जगह जो दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे ठंडी जगह है, वो है द्रास। यहाँ पर माइनस में भी तापमान रहता है और बर्फ से ढके हुए पहाड़ रहते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण इस हिसाब से हो जाता है हमारे फोर्सेस के लिए।
0: इन एटीवी में भी कई भारत में निर्मित है, ये खड़ी चढ़ाई पर भी फर्राटे से भागते हैं, भारी वजन ले जाने में सक्षम।
4: जब आप एक विजय गाथा को बार बार दोहराते हैं, जब एक उत्सव बार बार मनाते हैं, तो उसके मायने कई होते हैं, न केवल देश के सैनिकों के लिए बल्कि देशवासियों के लिए भी। दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद वंदे मातरम।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर गया।
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: 16 साल पहले एक धमाका क्या थी, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को RDX रिमोट बम से उड़ाने की साजिश, देखिए आज तक पर।
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: मैदानी इलाके मूसलाधार प्रहार से दरबदर है तो वहीं पहाड़ों पर दोहरी मार पड़ रही है. यहाँ बारिश के साथ साथ पहाड़ भी टूट रहे हैं. ये दिल दहला देने वाला वीडियो चंबा के भरमौर का है, जहाँ खड़मुख में NHPC परियोजना के पास अचानक पहाड़ दरकने लगा. देखते ही देखते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे. पहाड़ों से पत्थरों की बरसात किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी, लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त ये भयानक लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त वहाँ से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था. चंबा के ही जनजाति इलाके पांगी में कुड्डू नाला के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहाँ पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरा, जिसकी चपेट में कार आ गई. उस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. तबाही का ये सिलसिला यही नहीं रुका. पांगी को चंबा से जोड़ने वाले साच पास पर बादल फटने से भारी तबाही मची है. भारी बारिश की वजह से सतुरंडी नाले में अचानक बाढ़ आ गई. रानीकोट और कार्थ नाला के पास भी बादल फटने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ. प्रशासन और विभागीय टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, ताकि जल्द से जल्द स्थिति बहाल की जा सके, लेकिन लगातार खराब मौसम इसमें बड़ी बाधा बन रहा है. चंबा प्रशासन ने अलर्ट किया है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने तक कोई भी व्यक्ति साच पास की तरफ जाने का जोखिम न उठाए. सिर्फ हिमाचल नहीं, जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में बारिश और फ्लैश फ्लड से लोग परेशान हैं. कठुआ में अचानक आई बाढ़ में एक शख्स फंस गया, जिसको निकालने के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया. अपनी जान पर खेलकर जवानों ने पानी में फंसे शख्स को सुरक्षित निकाल लिया. भारी बारिश की वजह से उरी, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामूला जिलों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ है. फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है. भारी बारिश की वजह से बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं. झेलम नदी भी खतरे के निशान पर पहुंच गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे से झेलम का पानी घट रहा है. मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। सोमवार को लोकसभा में पेश होगा पेपर लीक के खिलाफ बिल। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने खत्म किया आंदोलन। दीपकिया ने कहा लोकतंत्र की जीत, जंतर मंतर में छात्रों का जश्न। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीट। राहुल गांधी ने कहा सालों से शिक्षा व्यवस्था पर हमला, जितनी गलती मोदी की उतनी ही संघ की। अखिलेश बोले सरकार को झुकना ही था। पटना में जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव गिरफ्तार। नीट पर प्रदर्शन में शामिल होने पर कार्रवाई। गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात। नवसारी में 21 लोगों की मौत। असम में भी 61 की जान गई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो हेक्सा ऑर्गेनिक।
2: 1947-48 से लेकर कई ऐसे वर्ष आए जब पाकिस्तान ने भारत पर धोखे से आक्रमण किया और उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन 1999 का करगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिस युद्ध में पाकिस्तान को इतनी तगड़ी शिकस्त मिली कि उसके बाद वो कभी भी दोबारा सर नहीं उठा सका, कभी भी एक पूर्ण युद्ध भारत के खिलाफ छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सका।

0: बाद हमें टाइगर हिल पर डिप्लोमेट दुश्मन के ऊपर हमला करके उसे बर्बाद करने का टास्क मिला हुआ है। क्या आप उस टास्क को पूरा करने के
1: वो ऐसा युद्ध था जिसने पाकिस्तान को सर उठाने लायक नहीं छोड़ा।
2: इस लड़ाई में अहम रोल था हमारे जवानों का अदम्य साहस, हमारी टीम स्पिरिट और हर जवान का जोश और जज्बा।
1: वो ऐसा युद्ध था जिसने भारत के पराक्रम का परचम बुलंद किया।
3: दुश्मन चाहे हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन दुश्मन के ऊपर हमारी कड़ी नजर रहते हैं ताकि हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं।
1: वो ऐसा युद्ध था जो छल कपट विश्वासघात की बुनियाद पर शुरू हुआ।
2: यहाँ की चोटियों में बलिदान वीर गाथाओं जैसी बहुत सारी कहानियां हैं जो इन चट्टानों में बसी हुई।
1: वो ऐसा युद्ध था जो वीरता, विश्वास और भारत की विजय के साथ समाप्त हुआ।
4: ग्रेनेड से जो मरे वो 48 थे और मेरे साथी गोलियों से मारे वो अलग थे, तकरीबन 70-80 आदमी। उस ओलोलिंग को मारे पूरी कंपनी खत्म करी थी वहां पर। पाकिस्तान की 5 नॉर्थ लाइट एंड फिटिंग की एक कंपनी थी, उसको पूरी को खत्म किया गया।

0: युद्ध केवल जय और पराजय का पैमाना नहीं, युद्ध तय करता है इतिहास, युद्ध निर्धारित करता है भूगोल। ये एक ऐसे युद्ध की कहानी है जहां हर बात दुश्मन के पक्ष में थी लेकिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं रहा।
1: जब हमारे जवान 5140, टाइगर हिल और तोलोलिंग जैसे नाम सुनते हैं तो उनके मन में एक अलग ही गर्व और अलग ही श्रद्धा भाव पैदा होता है।
2: हमारी बटालियन ने 5140 और 4875 के ऊपर कब्जा करके दुश्मन का मोराल बुरी तरह से तोड़ दिया था।
3: हम आज भी 26 साल बाद जब महसूस करते हैं कि जब वही मिट्टी है जहां पर हमारे सेना ने अपने खून को बलिदान किया था।
4: दुश्मन ऐसी तैयारी से आया, ऐसे धोखे से घात लगाया, ऐसी अभेद रणनीति बनाई कि उसको पीछे धकेलना नामुमकिन लग रहा था। पर भारत के रणबांकुरों ने न तो सुना है ये शब्द, न सीखा है हारना। वो तो हवाओं के रुख को मोड़ देते हैं, पर्वतों को चुनौती देते हैं, कड़कड़ाती ठंड को पिघलाते हैं, जज्बातों में देशभक्ति का उबाल लाते हैं।
5: जब एक जवान पहली बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तब ही वह एक असली सोल्जर बनता है।
6: हर एक जवान जानता है कि ये मुश्किल आती ही हमारे कर्तव्य का एक हिस्सा ही है।
0: जोश, जज्बा और जुनून नहीं बदला, लेकिन समय के साथ भारतीय सेना में तकनीक बदली है, हथियार बदले। आक्रमण के हथियार कैसे बदली ये हमने आपको दिखाया। अब इस क्षेत्र में बचाव का भी एक नमूना देखिए। स्वाति, ये एक ऐसा रडार है जो पहाड़ों के पीछे, घाटियों के अंदर, जंगलों में छिपे हथियारों को खोजकर लोकेशन बताती है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार को इसीलिए बनाया गया ताकि अपनी ओर आते दुश्मन के गोले, रॉकेट या मोर्टार्स को ट्रैक किया जा सके। स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार दूर से आते आर्टिलरी को पहचान लेता है, उसकी दिशा और गति बता देता है, रॉकेट या छोटे मिसाइल को ट्रेस कर लेता है, साथ ही मोर्टार के गोले को भी पहचान लेता है और नष्ट करने में मदद करता है।
7: अगर इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे से कहीं से दुश्मन का फायर आ रहा हो, उनका आर्टिलरी फायर, रॉकेट कहां से आ रहा है ये निर्धारित करना हो ताकि उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, तो वो कैसे पता लगाया जाए, उसके लिए भारत का ये वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति। बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। भारतीय सेना की ताकत को अगर हम आज के दौर में समझना चाहते हैं तो स्वदेशी निर्मित हथियार और उपकरण उसमें बहुत अहम हो जाते हैं।
0: भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत हमेशा हमारे सैनिक ही होंगे, लेकिन उनके जो साथी होते हैं, उनके जो हथियार होते हैं, उनका बेहतर होना, उन्नत होना उतना ही आवश्यक होता है, क्योंकि तिरंगे की शान अगर हर एक हिंदुस्तानी के दिल में है तो वो सब इन्हीं भारतीय सैनिकों के कारण।
8: ये पूरा क्षेत्र जब आप देखते हैं तो देखकर ही इस सोच में डूब जाते हैं कि आखिर कैसे इन पहाड़ी चोटियों पर हमारे सैनिकों ने वो युद्ध लड़ा होगा, वो विजय हासिल की होगी। मेरे पीछे टाइगर हिल देखिए, 0.4875 जिसे आप बथरा टॉप के नाम से जानते हैं, राइनोज हॉर्न देखिए, 18,000 फीट से अधिक की ऊंचाइयां हैं ये। और जब हम इन ऊंचाइयों की बात करते हैं तो सबसे बढ़कर बात क्या हो जाती है कि हमारे सैनिकों के लिए सुविधाएं किस तरीके से बदली हैं 1999 से लेकर अब तक, किस तरीके से उस ऊंचाई से, उस ठंड से जूझने के लिए उन्हें मजबूत किया गया है, उनके उपकरण उस हिसाब के, उनका पहनावा उस हिसाब का किया गया है।
0: रण क्षेत्र की रणनीति भारत के सैन्य नेतृत्व की ताकत और युद्ध भूमि पर हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे सैनिकों का जज्बा है। हथियारों के बल पर उस जज्बे को हरा पाना असंभव। इस देश की मिट्टी ऐसे वीरों को उपजती है जो बलिदान की परंपरा को साथ लेकर युद्ध भूमि में उतरते हैं।
9: इस युद्ध में हिंदुस्तान का हर सैनिक परमवीर था। रणभूमि की जटिलताओं को समझते हुए, रण की चुनौतियों को जानते हुए अपना सर्वस्व झोंक देने को तत्पर।
1: द्रास हमारे लिए सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि ये एक हमारे लिए सम्मान, एक जिम्मेदारी और हमारे लिए एक जज्बात है, क्योंकि यह वही जगह है जहां सन 1999 के अंदर हमारे पूर्वजों ने अपना सब कुछ यहां पर न्योछावर कर दिया। इस धरती पर उन्होंने अपना खून बहाया है। जब भी कोई जवान यहां पर आता है तो सबसे पहले वो यहां द्रास की मिट्टी को महसूस करता है और यहां पर बड़े गर्व के साथ वो अपने आप को बाद में और अपने कर्तव्य को पहले मान करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है और अपनी ड्यूटी करता है।
9: अगर हमारे सैनिकों की हिम्मत नहीं होती तो महीनों की तैयारी के साथ मैदान में उतरा पाकिस्तान नहीं हारता। अगर हमारे सैनिकों की ताकत नहीं होती तो हजारों फीट की ऊंचाई पर मजबूती से काबिज पाकिस्तान के पांव नहीं उखड़ते। अगर हमारे सैनिकों का हौसला नहीं होता तो करगिल की कठिन जंग में केवल 2 महीनों में नतीजा नहीं निकलता, लेकिन हिंदुस्तान के बेटों की हुंकार के आगे बड़े बड़े दुश्मन पस्त हो जाते हैं। करगिल युद्ध में भी ऐसा ही हुआ। और फिर आती है एक राष्ट्र की जिम्मेदारी कि इन वीर सपूतों के लिए कठिन परिस्थितियों से मुकाबला करने में साजो सामान का सहयोग बढ़ाया जाए।
10: भरवाड़ इलाका पर बनाए गए तकनीकी से बनाए गए शेल्टर वहाँ काफ़ी मजबूत हैं और उसके अंदर फिट किए गए हीटिंग सिस्टम जो कि कैरो हीटर बुकारी जवानों को सर्दी से काफ़ी राहत मिलती है।
11: सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन -35 डिग्री से लेकर -40 डिग्री के नीचे चला जाता है। क्लाइमेट में ढलने के लिए हमें एक्सट्रीमली कोल्ड गियर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड स्नो बूट्स, इनरवेयर, स्नो गॉगल्स, बालाक्लास। इसे एक जवान के बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है।
9: युद्ध का परिणाम केवल जय और पराजय नहीं होता है, युद्ध का परिणाम पराक्रम से होता है। तिरंगे की शान और भारत माता की आन के आगे हमारे देश का कोई सिपाही अपनी जान की तनिक भी परवाह नहीं करता। 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ ही ऑपरेशन विजय को सफल घोषित कर दिया गया। रणभूमि में तैनात हर एक वीर ने शौर्य की अनमोल विरासत हर देशवासी के लिए छोड़ी।
12: करगिल विजय दिवस का जश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है हर एक भारतीय के लिए, लेकिन इस साल क्यों और ज्यादा अहम हम है कह रहे हैं, क्योंकि एक साल पहले ऑपरेशन सिंदूर और आज हम आकलन यही कर रहे हैं कि करगिल विजय दिवस से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के विजय के एक वर्ष बाद कितना आगे भारत बढ़ा है। और हम कह सकते हैं कि बहुत आगे भारत बढ़ा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय के वो उपकरण आपको बताते हैं कि जय जवान के साथ जब जय विज्ञान जुड़ जाता है तो तस्वीर भारत की शक्तिशाली ऐसी रहती है जो विश्व विजय के संकेत देती है। हमारे साथ इस समय एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसे उपकरण दिए जो भारतीय सेनाओं ने इस्तेमाल किया ऑपरेशन सिंदूर के समय, और मुझे लगता है कि आपके लिए भी बहुत फख्र की बात होगी। पुनीत कौरा जी हैं जो कि MD और CEO हैं सैम्पल एवियोनिक्स के। ये समझाइए कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर और एक तरीके से एक टेलीवाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट था जिसे भारत में बैठा बच्चा बच्चा देख रहा था, उस समय आपकी ही जो कंपनी है उसके बनाए हुए जो मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले थे उनका इस्तेमाल हो रहा था, क्या क्या मायने रखते हैं कि आप मेड इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल भारत की तरफ से उन सेनाओं के हाथ मजबूत करने के लिए दे रहे हैं?
13: श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज इस बात पे चर्चा कर रहे हैं और आई थिंक अगर आप देखो दुनिया में आज की डेट पे कई जगहों पे डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण योगदान प्ले कर रही है ये इंडस्ट्री वो सामने आ रहा है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे प्रोडक्ट्स ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे। जितने भी फाइटर जेट्स उड़ रहे थे जिन्होंने उस टाइम पे पार्टिसिपेट किया उनमें हमारे डिस्प्ले सिस्टम्स कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम्स लगे हुए थे। उनको हम ईगल आईज भी बोलते हैं एयरफोर्स की। अच्छा। क्योंकि उनके थ्रू ही आप देख पाते हो कि आपको क्या करना है क्योंकि उसके बिना प्लेन उड़ नहीं सकता। बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन उन डिस्प्लेस पे आती है जो कि कॉकपिट्स में के थ्रू देखी जाती है तो इसीलिए उनको आंखें भी कहा जाता है। तो ईगल आईज ऑफ द एयरफोर्स एंड बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए और बहुत ही गर्व की बात है। हम बहुत इस बात से गर्व फील करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट्स उसमें यूज हो पाए और देश के लिए योगदान दे पाए।
12: बहुत इंटरेस्टिंग ये हो जाता है अगर हम पुराने वॉर से कंपेयर करते हैं। कई दफ़ा हमने देखा कि युद्ध के बीचों बीच आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है और जो जिस देश से आप उसे आयात करते हैं वो देश आपको देने में देरी कर रहा है, आनाकानी कर रहा है, अलग अलग एक्सेस हैं इस दुनिया में। आज जब एक कॉन्फ्लिक्ट के समय भारत में बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो हमें एक तो नंबर वन स्वतंत्रता देती हैं कि हमें किसी से उसे मांगने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा हमारी फोर्सेस की जरूरत शायद हमारी कंपनियां बेहतर समझेंगी।
13: आज की डेट पे जब पूरे दुनिया में सब अपने आप के बारे में सोच रहे हैं और अपनी कंट्रीज को पहले कंट्री फर्स्ट वाला जो एक मूवमेंट है पूरे वर्ल्ड में चल रहा है उसमें हम लोग अब जो कैपेबिलिटीज डेवलप कर पाए पिछले 12 साल में बहुत काम आने वाली। आई थिंक जहां तक कि हमारे प्रोडक्ट का सवाल है मैं कुछ और आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, बट जनरली हम लोग कई ऐसे क्षेत्रों में और घुस रहे हैं जो कि स्ट्रेटेजिक क्षेत्र माने जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर बने और उसमें ऑफ कोर्स हम लोग अपना जो भी योगदान हो सकता है वो दे रहे हैं।
12: एवियोनिक्स अगर ये हमारे आम दर्शकों के लिए आप एक्सप्लेन कर सकें और उन प्रोडक्ट्स के बारे में भी जिनका आपने जिक्र किया कि सरल भाषा में लोग समझ सकें कि क्या बन रहा है।
13: बड़ा सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ कि अगर आप कोई भी हवाई जहाज देखते हैं, फाइटर प्लेन देखते हैं या फिर सिविलियन जेट देखते हैं, 35-25% के बीच एवियोनिक्स होता है। एवियोनिक्स का मतलब होता है एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो भी एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं वो इस 25-35% की रेंज में होते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं वो इसी 25-35% के एरिया में काम करते हैं। अब इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ हवाई जहाज को उड़ाने के लिए काम आते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पायलट को दिखाते हैं कि उनको कहाँ पे उड़ना है और कहाँ पे दुश्मन का प्लेन है, कहाँ पे हमारा प्लेन है, जैसे फ्रेंड एंड फो बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसको बोला जाता है, वो एक और एरिया है जहाँ पे हम लोग काफ़ी सिग्निफिकेंट काम कर रहे हैं। और इस तरह के कई और एरिया, रेडार होता है जो कि फिर से आपका यू नो सिग्नेचर बोला जाता है, जो कि एयरक्राफ्ट अगर उड़ रहा है तो वो कैसे उसको हम लोग, अब आजकल एक टेक्नोलॉजी आई है ऐसा रेडार करके जिसमें बेसिकली हम चाहते हैं कि दुश्मन हमें नहीं देख पाए, हमारे को एयरक्राफ्ट को नहीं देख पाए पर हम उनको देख पाए। इस तरह के बहुत सारे आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज इस देश में अब डेवलप हो चुकी हैं और हम लोग काफी हद तक आत्मनिर्भर बन गए और एवियोनिक्स ये सारा एरिया जो है वो कवर करता है।
12: DRDO हो गया जो इतने सालों से भारतीय सेनाओं के लिए चीज़ों को डेवलप कर रहा है, HAL है जो एविएशन के क्षेत्र के लिए बहुत काम, अब ड्रोन्स भी बहुत बना रहे हैं। अगर मैं DRDO, HAL और प्राइवेट इंडस्ट्री के समन्वय की बात करूं, तालमेल की बात करूं, ये कितना ज़रूरी है?
13: बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने खुद DRDO के साथ ही शुरुआत की, हमारा पहला प्रोडक्ट जो बना वो DRDO ने फंड किया था डेवलपमेंट उसका, MFD उन्हीं का बनाया हुआ, उनके साथ बनाया हुआ प्रोडक्ट है। आज की डेट में हम उसको नॉट ओनली अपना हिंदुस्तान बट पूरे विदेश के बहुत सारे एयरफोर्सेज इसको यूज़ कर रहे हैं। मलेशियन एयरफोर्स हमारा कस्टमर है, फ्रेंच एयरफोर्स हमारा कस्टमर है और ऐसे कई और कस्टमर्स बन गए हैं हमारे जहाँ की ये देश का झंडा लेके हमारे प्रोडक्ट्स पहुँच रहे हैं। तो जब हम साथ में होते हैं तो 1+1=11 बन सकते हैं, मेरे को इसकी पूरी उम्मीद है।
12: मुझे इसी थॉट के साथ बहुत आपका शुक्रिया क्योंकि पूरा देश को भी एक साथ मिलना होगा, जिस तरीके से सरकारी और प्राइवेट एक साथ आकर देश की सेनाओं के हाथ को मजबूत कर रहे हैं उसी तरीके से हर एक व्यक्ति दूसरे का हाथ थामे तभी भारत सशक्त रहेगा। और करगिल विजय दिवस पर इससे बेहतर संदेश क्या हो सकता है?
4: करगिल की विजय ने बहुत कुछ बदला, सरहद पर हमारी तैनाती से लेकर विश्व में हमारे रुतबे तक। भारतीय सेना कठिन से कठिन इलाकों में, मुश्किल से मुश्किल मौसम में भी तैनात रहती है। पाकिस्तान करारी हार के बाद
14: फिर युद्ध छेड़ने की कभी हिम्मत नहीं कर पाया।
8: मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। द्रास करगिल की ऊंची पहाड़ियों को देखकर और करगिल के उस युद्ध को याद करके यही ख्याल मन में आते हैं। अभी के लिए इतना ही। अभिषेक सिंह और कैमरा पर्सन अमित बदवार और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
18: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here. On TuneIn.
19: We are over, Jimmy.
20: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
21: 16 साल पहले एक धमाका क्या थी, कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को आरडीएक्स रिमोट बम से उड़ाने की साजिश, देखिए आज तक पर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: अब बड़ी खबर आपको देते हैं। शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद से प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा तो किया है, साथ ही साथ इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने की बात भी कही है। कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसको अच्छे से निभाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया।
2: अभी अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी।
1: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक,
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: sorry.
1: Aie, aie, traie, aie, aie, stii ochii notri, paie, aie, aie, aie.

धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। कहा, पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा जिम्मेदारी। सोमवार को लोकसभा में पेश होगा पेपर लीक के खिलाफ बिल। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने खत्म किया आंदोलन। दिपके ने कहा, लोकतंत्र की जीत जंतर मंतर में, छात्रों का दिखा जश्न। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीठ। राहुल गांधी ने कहा, सालों से शिक्षा व्यवस्था पर हमला, जितनी गलती मोदी की उतनी ही संघ की। अखिलेश बोले, सरकार को झुकना ही था। पटना में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव गिरफ्तार। गांधी मैदान में छात्रों के प्रदर्शन में हुए थे शामिल। गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात, नवसारी और सूरत में बुरा हाल। दो दिन में 35 लोगों की मौत, असम में 61 ने गंवाई जान।

0: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। किसी भी लोकतंत्र में सड़क सिर्फ आने जाने की जगह नहीं होती है। कभी कभी यही सड़कें वो जगह बन जाती हैं जहां आम आदमी अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाता है, यानी अपनी आवाज। जब शिकायतें दफ्तरों की फाइलों से बाहर निकलकर सड़कों तक पहुंचती हैं तो आंदोलन जन्म लेता है। दिल्ली ने ऐसे अनगिनत आंदोलन देखे हैं जिन्होंने देश की राजनीति और समाज दोनों को प्रभावित किया। लेकिन तमाम आवाजों के बीच एक जगह ऐसी है जहां दशकों से देश के अलग अलग हिस्सों की बेचैनी आकर जमा होती रही है। आज कहानी जंतर मंतर की।
1: देश के हर हिस्से में लोग आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे,
2: लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम हर एक उस महिला के पास जाएंगे।
3: हम चुप बैठने वाली नहीं है, हम अब डंके से डंका बजा देंगे।
4: अभी रोटी खा रहा है ना, तो वो ये सोचे कि वो रोटी आई कहाँ से, तो वो भी रोज आ रहा है।
5: भारत माता की वंदे।
6: The Congress Janata Party declared that we withdraw the agitation.
0: जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहां हर दौर अपनी बेचैनी दर्ज कराता है। यहां कभी किसानों की पुकार सुनाई देती है, कभी छात्रों की, कभी खिलाड़ियों की, तो कभी पूर्व सैनिकों की। सत्ता बदलती रही, मुद्दे बदलते रहे, लेकिन ये जगह हर दौर में लोकतंत्र

0: पंथ की सबसे बड़ी गवाही बनकर खड़ी रही।
1: हर चेहरा अलग, हर तौर अलग, हर मांग अलग, लेकिन पता हर बार एक ही। कभी ये सड़क नारों से भर जाती है, कभी सन्नाटे से, कभी यहाँ भूख बोलती है, कभी गुस्सा, कभी उम्मीद और कभी पूरा देश।
2: ऐसा नहीं चलेगा, पूरा सिस्टम अकाउंटेबल बनाना, और जब तक ये नहीं होगा संघर्ष चलता रहेगा।
3: 36 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसकी एक महत्वपूर्ण जीत है ये इस्तीफा।
4: धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया।
1: यहाँ कोई अजर अमर होकर नहीं आता, न आदमी, न इमारतें, न विचार, न आंदोलन, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जो वक्त से बड़ी हो जाती है। वहाँ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी आवाजें ठहर जाती हैं। वहाँ चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन सवाल वही रहते हैं।
5: जो बात रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े।
6: हम लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट है कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है, एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती।
7: जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में।
1: और इन्हीं सवालों के बीच खड़ा है जंतर मंतर। आखिर जंतर मंतर कब बना, इसे किसने बनवाया और क्यों बनवाया? एक खगोलीय वेधशाला आंदोलनों का सबसे बड़ा पता कैसे बन गई? देश में विरोध की सबसे बुलंद आवाज आखिर यही क्यों सुनाई देती है? जंतर मंतर को प्रदर्शन की राजधानी किसने बनाया? और क्या सचमुच यहाँ से उठी आवाजें सरकारों तक पहुंचती हैं? आज कहानी में इन सभी सवालों का जवाब। इन दिनों जंतर मंतर एक बार फिर सुर्खियों में।
8: क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते।
9: इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।
10: धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया।
11: जब एक बार लीक होता है, दो बार लीक, बार बार तो लीक नहीं होता है ना। ये लड़का लड़की लोग पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए जाते, एसएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे वो क्लास 10 का एग्जाम क्यों ना हो, अगर कल एग्जाम है, आज पेपर लीक हो जाता है तो कितना दुख होता है। वो दुख एक जन को खाली नहीं होता है, वो अपने मम्मी पापा और भाई बहन सबको दुख होता है। वो एक खाली स्टूडेंट को नहीं दुख होता है, घर के सारे सदस्य को दुख होता है।
1: लेकिन ये पहली बार नहीं है। जंतर मंतर ने ऐसी आवाजें पहले भी सुनी है, ऐसे नारे पहले भी देखे, ऐसे आंसू, ऐसी भूख, ऐसी उम्मीदें सब पहले भी यहां उतर चुकी है। आज की कहानी किसी एक आंदोलन की नहीं, आज कहानी जंतर मंतर की।
12: जंतर मंतर को अगर आप सिर्फ एक सड़क समझेंगे तो शायद इसकी पूरी कहानी को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सड़क ने सिर्फ प्रदर्शन नहीं देखे बल्कि वक्त को बदलता देखा है। कभी कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे तो कभी हजारों लोग, तो कभी पूरा देश इस सड़क पर अपनी आवाज को तलाशता हुआ नजर आया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक खगोलीय वेधशाला लोकतंत्र के सबसे बड़े इंतजार घर में कैसे बदल गई?

0: दिल्ली में समय सिर्फ इमारतों में नहीं बसता, कुछ सड़कों पर भी रहता है। और संसद से कुछ ही कदम दूर एक सड़क है जहां लोकतंत्र अपनी सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। 1990 के बाद जब बोट क्लब पर बड़े प्रदर्शनों पर रोक लगी, तब विरोध की राजधानी बदल गई। सरकार ने कहा प्रदर्शन अब जंतर मंतर पर होंगे।
1: बड़ी रैलियां, बड़े प्रदर्शन होते थे वो बोट क्लब पे होते थे ये। और बोट क्लब पर आमतौर पर जो बोट क्लब का जो ये आपका जनपथ वाला जो रोड है वो उस पर जो है बोट क्लब पर वहां तंबू लगा करके लोग बैठ जाते थे। और जब बड़ी रैलियां भी वहां होती थी, जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे और अयोध्या आंदोलन बहुत चरम पर था, तो दिल्ली में एक रैली बुलाई गई थी विश्व हिंदू परिषद की, और उसमें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सारे विश्व हिंदू परिषद सब ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। और तब वोट क्लब को प्रतिबंधित कर दिया गया था पूरे क्षेत्र को, और ये तय हुआ था कि वोट क्लब पर जो है कोई रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। जंतर मंतर पर छोटे धरनों की और अनशन वगैरह की अनुमति दी गई, और वहां पर उसके बाद से सिलसिला जंतर मंतर पर पूरी तरह से केंद्रित हो गया।
0: शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये सड़क आगे चलकर भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी डायरी बन जाएगी जिस पर हर दौर अपना एक पन्ना लिखेगा।
2: सड़क पर आने वाले लोगों की मांगे अलग हैं, उनके संघर्ष अलग हैं, उनकी कहानियां भी अलग हैं, लेकिन इन सब को जोड़ती है एक उम्मीद कि कहीं ना कहीं कोई उनकी आवाज जरूर सुनेगा। यही वजह है कि जंतर मंतर पर हर प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी उसकी आवाज पूरी तरीके से खत्म नहीं होती। कोई आंदोलन जीतता है, कोई हारता है, कोई बीच रास्ते में रुक जाता है, लेकिन इस सड़क की याददाश्त में हर आवाज दर्ज हो जाती है।
0: यहाँ सुबह किसी किसान के बांध से होती है तो शाम किसी छात्र के नारे पर खत्म होती है। कभी यहाँ पूर्व सैनिक अपने मेडल लेकर बैठ जाते हैं, कभी बेरोजगार अपनी डिग्रियां लेकर, कभी महिलाएं न्याय मांगती हैं।
3: गुरु जी 55 में कानून बना था जिसके तहत सरकार, जिसके तहत लोगों ने जो आंदोलन किया था देश को भूखा मरने से बचाने के लिए आंदोलन किया था।
0: कभी खिलाड़ी सम्मान, कभी आदिवासी अपने जंगल, कभी मजदूर अपनी मजदूरी, और कभी पूरा देश अपनी सरकार से जवाब। जंतर मंतर सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये लोकतंत्र का इंतजार घर है।
1: ज्यादा असर वाला हाल के वर्षों में पिछले वो अन्ना आंदोलन ही था जिसका सरकार पर सबसे ज्यादा असर हुआ, लेकिन इसके अलावा तमाम सारे जो जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो नर्मदा डैम की दूरी को कम करने को, वो उसके लोग भी एक्टिविस्ट जंतर मंतर पर बैठते रहे। आपका उत्तराखंड राज्य आंदोलन, उसके भी लोग जंतर मंतर और संसद मार्ग पर प्रदर्शन करते रहे और आते रहे, उनके भी सब असर पड़े हैं। ऐसा नहीं उनका असर नहीं पड़ा सरकार पर, लेकिन फौरी तौर पर तात्कालिक जो है और इमीडिएट इफेक्ट वाला असर जो है वो अन्ना आंदोलन का ही सबसे ज्यादा पड़ा था।
0: कहते हैं इमारतें पत्थरों से बनती हैं, लेकिन कुछ जगह लोगों की आवाजों से बनती हैं। जंतर मंतर भी ऐसी ही जगह है। यहाँ हर तख्ती एक कहानी है, हर नारा एक दस्तावेज, हर भूख हड़ताल एक उम्मीद। शायद इसलिए जब भी देश के किसी कोने में कोई नागरिक ये महसूस करता है कि उसकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही, तो उसके कदम अक्सर इसी सड़क की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि संसद के दरवाजे भले बंद हों, लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा इंतजार घर अब भी खुला है। और इसलिए आज फिर जंतर मंतर सुर्खियों में, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की एक सड़क नहीं, भारत के लोकतंत्र की धड़कन है। आज कहानी जंतर मंतर की।
4: दिल्ली का जंतर मंतर आज देश भर के आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, कभी दिल्ली में विरोध का सबसे बड़ा मैदान बोट क्लब हुआ करता था। बड़े बड़े आंदोलन यहीं से राष्ट्रीय बहस बनते थे। फिर 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में लाखों किसानों के आंदोलन के बाद बोट क्लब पर बड़े प्रदर्शनों को लेकर सरकार की सोच बदली और 1993 में प्रदर्शन का पता जंतर मंतर कर दिया गया।
0: ये तस्वीरें आज की हैं, लेकिन दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की कहानी आज से शुरू नहीं होती। दिल्ली लंबे वक्त से देश की राजनीतिक बेचैनी का सबसे बड़ा पता रही है।

0: आजादी से पहले भी दिल्ली की सड़कों पर बड़े आंदोलन हुए, लेकिन आजादी के बाद जो आंदोलन हुए उसने हमेशा से सरकार को परेशान किया।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं।
0: 1974 से 1975 जेपी आंदोलन, 1975 से 77 तक आपातकाल विरोधी आंदोलन, 1990 मंडल आयोग विरोधी आंदोलन, 1988 महेंद्र सिंह टिकैत का किसान आंदोलन, 2011 में अन्ना हजारे का जन लोकपाल आंदोलन, दिसंबर 2012 निर्भया केस के बाद प्रदर्शन, 2015 में वन रैंक वन पेंशन आंदोलन, 2017 में तमिलनाडु के किसानों का आंदोलन, 2019-20 में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन, 2020-21 में किसान आंदोलन, 2023 में पहलवानों का आंदोलन। इन सारे आंदोलन ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना दिया, लेकिन 1990 के दशक के पहले अगर किसी आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान चाहिए होती थी तो उसकी मंजिल थी बोट क्लब।
2: 25 अक्टूबर 1988 दिल्ली के बोट क्लब में जुटी ये भीड़ सिर्फ किसानों की भीड़ नहीं थी, बल्कि 14 राज्यों के 5 लाख किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट के पूरे इलाके पे अपना कब्जा कर लिया था। बाबा टिकैत के नेतृत्व में किसान कई दिनों तक यहाँ पर डटे रहे। ये वो दौर था जब सरकार को यह एहसास हुआ कि दिल्ली सत्ता केंद्र के इतने करीब बैठी लाखों की भीड़ को नजरअंदाज आसानी से नहीं किया जा सकता। इस आंदोलन ने दिखा दिया कि बोट क्लब सिर्फ रैली की जगह नहीं बल्कि सत्ता पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा मैदान बन चुका था।
0: इंडिया गेट से विजय चौक तक फैले राजपथ के लॉन का हिस्सा आज जिसे कर्तव्य पथ कहा जाता है उस वक्त बोट क्लब था, मतलब विरोध का सबसे बड़ा मैदान।
3: पहले प्रदर्शनों का, जुलूसों का, धरनों का केंद्र जो था वो बोट क्लब ही था। चाहे किसान संगठन हो, चाहे मजदूर संगठन हो, चाहे शिक्षकों के संगठन हो, कर्मचारियों के संगठन हो, सबकी रैलियां, सबके बड़े बड़े जलसे जो है और विरोध प्रदर्शन बोट क्लब पर ही होते थे, और बोट क्लब तक ही आने दिया जाता था और वहीं रोका जाता था। और महेंद्र सिंह टिकैत की दो बड़ी रैलियां बोट क्लब पर हुई, इसके अलावा चौधरी मंडल आंदोलन के दौरान चौधरी देवीलाल की पहल पर बुलाया गया, बड़ी एक रैली बोट क्लब पे हुई थी जो बहुत ही वायलेंट हो गई थी, बहुत हिंसक हो गई थी, तमाम लूटपाट भी हुई थी उसमें।
0: इस जगह की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी लोकेशन, संसद से दूर नहीं, राष्ट्रपति भवन दूर नहीं, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक भी करीब और टीवी कैमरों के लिए खुला मैदान, यानी हजारों लाखों लोग एक साथ जुटे तो उस आवाज को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। और फिर आया अक्टूबर 1988। भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में 5 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली पहुंच गए गन्ने के दाम और बिजली पानी पर टैक्स को लेकर। किसानों ने बोट क्लब और राजपथ इलाके में कई दिनों तक डेरा डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि केंद्रीय दिल्ली लगभग ठहर गई थी। पूरे इलाके में हजारों की संख्या में गाय भैंस और ट्रैक्टर लगाकर पूरे इलाके को जाम कर दिया गया था। तब सवाल ये था, संसद और राष्ट्रपति भवन के इतने करीब इतनी बड़ी भीड़ को कैसे संभाला जाए। यहीं से सरकार की सोच बदलनी शुरू हुई। विरोध को पूरी तरह रोकना संभव नहीं था, लेकिन सत्ता के सबसे संवेदनशील इलाके से प्रदर्शन को थोड़ा दूर ले जाना एक प्रशासनिक जरूरत माना जाने लगा। और इस आंदोलन के 5 साल बाद 1993 में बोट क्लब पर बड़े सार्वजनिक प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई, और इसके बाद जंतर मंतर रोड को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान बना दिया गया।
2: बाबा टिकैत के इस आंदोलन का असर इतना बड़ा था कि सत्तारूढ़ कांग्रेस को भी अपनी रैली की जगह बदलनी पड़ी। बोट क्लब पर किसानों का कब्जा था और ऐसे में कांग्रेस को अपनी रैली लाल किला मैदान में करनी पड़ी। आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ओर से किसानों की मांगों पर भरोसा मिलने के बाद 31 अक्टूबर को धरना खत्म हुआ। इसके बाद ये तय हो गया कि बोट क्लब पर उसके बाद कोई धरना नहीं होगा।
0: यानी विरोध खत्म नहीं हुआ, बस उसका पता बदल दिया गया। जंतर मंतर दिल्ली के बीचों बीच आसानी से पहुंचने वाली जगह मीडिया की नजरों के करीब, लेकिन बोट क्लब की तरह खुला और विशाल मैदान नहीं। और यहीं से एक खगोलीय वेधशाला धीरे धीरे विरोध की पहचान बनती चली गई।
4: आंदोलन किसी भी लोकतंत्र की ताकत होती है, क्योंकि जब जनता की आवाज सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचती तो वही आवाज सड़कों पर सुनाई देती है। दिल्ली का जंतर मंतर ऐसी ही आवाज का गवाह रहा है। अन्ना हजारे का आंदोलन हो, पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग हो, तमिलनाडु के किसानों का संघर्ष हो या फिर देश के पहलवानों का प्रदर्शन, हर आंदोलन ने इस जगह की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ा है।
5: जो लिखा जा रहा है आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं।
6: मैं भी आपके साथ हूँ, आप में से ही एक।
0: कहते हैं आंदोलन सरकारें नहीं चलाती, लेकिन आंदोलन सरकारों की दिशा जरूर तय कर देते हैं। दिल्ली ने इस बात को कई बार सच होते देखा है। रामलीला मैदान में जेपी आंदोलन से लेकर बोट क्लब पर किसानों के बड़े जमावड़े तक, मंडल आंदोलन से लेकर इंडिया गेट पर दिसंबर 2012 के विरोध प्रदर्शन तक, इस शहर ने हर दौर के गुस्से, हर दौर की बेचैनी और हर दौर की उम्मीद को अपनी सड़कों पर उतरते देखा है।
7: जो कानून प्रॉपर कार्रवाई से पास ही नहीं किए गए, उनकी किसी भी अमेंडमेंट में हमें कोई रुचि नहीं है।
0: कभी छात्र सड़कों पर उतरे, कभी किसान, कभी पूर्व सैनिक, कभी खिलाड़ी और कभी आम नागरिक।
8: 3 साल की सजा उसके लिए काफी।
9: सैनिक एकता,
10: सिर्फ न्याय के लिए बैठे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब, लेकिन न्याय दिलवाने के बजाय और बहुत सारी चीजें हो रही हैं।
0: मुद्दे अलग थे, चेहरे अलग थे, जगह अलग थी, लेकिन सवाल एक था, क्या सत्ता जनता की आवाज सुन रही है? आज से 15 साल पहले दिल्ली के जंतर मंतर से एक आवाज उठी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। एक बुजुर्ग अन्ना हजारे गांधी टोपी पहनकर बैठे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल की मांग लेकर शुरू हुआ आंदोलन देखते ही देखते देशव्यापी लहर बन गया था। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, मोमबत्तियां जली, तिरंगे लहराए और पहली बार सोशल मीडिया और सड़क एक साथ दिखाई दी।
2: ग्यारह का अन्ना आंदोलन जंतर मंतर के इतिहास में सिर्फ एक बड़ा आंदोलन नहीं था, ये वो पल था जब इस जगह पर उठी आवाज पहली बार इतनी तेजी से पूरे देश तक पहुंची। सड़क पर बैठे कुछ लोग देखते ही देखते देशव्यापी आंदोलन का चेहरा बन गए। कैमरे यहाँ थे, सोशल मीडिया यहाँ था और देश की जनता भी। जंतर मंतर ने उस आंदोलन को सिर्फ जगह नहीं दी बल्कि उसकी कहानी को दर्ज किया। उसके बाद ये साफ हो गया कि इस जगह पर उठी आवाज दिल्ली की सीमा तक कैद नहीं रहती।
0: जंतर मंतर पर बैठे लोग देश के कोने कोने में दिखाई दे रहे थे। एक आवाज हजारों आवाजों में बदल गई। कई नए चेहरे राजनीति में आए, कई पुराने चेहरे सत्ता से चले गए। एक आंदोलन नेताओं की पूरी नई पीढ़ी लेकर आया।
11: सरकार तो नहीं मान रही है।
12: हम ऐलान करते हैं कि आज से हम लोग चुनावी राजनीति में कूद रहे हैं। अगर तो कुछ आपको मेरे अंदर गलती दिखाई दे तो मुझे तुरंत टोक देना कि ये गलत कर रहे हो आप, ये आम आदमी से भटक गए।
0: फिर समय बदला लेकिन जंतर मंतर नहीं बदला। पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन की मांग लेकर यहाँ पहुंचे। सीने पर तमगे थे लेकिन आंखों में उपेक्षा का दर्द था। उन्होंने अपने मेडल तक लौटाने शुरू कर दिए थे। देश के लिए लड़ने वाले सैनिक अब अपनी मांग लिए राजधानी की सड़क पर बैठे थे। सरकार पर दबाव बढ़ा और आखिरकार फैसला लेना पड़ा।
13: हमारा बहुत सीधा सा डिमांड है, उसका नाम है एक रैंक एक पेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि 1996 से पहले रिटायर होने वाले सिपाही को और 2006 के बाद रिटायरमेंट होने वाले सिपाही को एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए।
14: फौज में सेना में कितने जवान काम कर रहे हैं? अरे आजादी के बाद 35,000 से ज्यादा हमारे पुलिस के जवानों का बलिदान हुआ है। हम क्यों भूल जाएं उनको? हम उनको कैसे भूल सकते हैं? यही तो लोग हैं जिनके कारण हम सुख चैन की जिंदगी जी सकते हैं, और इसलिए ये पर्व उनके भी नमन करने का है। और कई वर्षों से वन रैंक वन पेंशन का मसला लटका पड़ा था। हम टालने वालों में से नहीं, हम टकराने वालों में। हमने उसको पूरा किया, वन रैंक वन पेंशन हर हिंदुस्तान के फौजी के घर में खुशहाली पहुंचा दी, इस काम को किया।
0: तमिलनाडु से हजारों किसान जंतर मंतर पहुंचे थे। जो तस्वीरें सामने आई थी उन्हें देखकर शायद यकीन करना मुश्किल था। किसान अपने साथ इंसानी खोपड़ियां लेकर बैठे थे, मुंह में चूहे रखे घास खाई और नंगे बदन धूप में बैठे रहे। उनका मकसद सिर्फ एक था कि दिल्ली उनकी तरफ देखे और सत्ता उनकी आवाज सुने। कभी कभी लोकतंत्र में सबसे ज्यादा शोर चुप्पी मचाती है। समय आगे बढ़ा और जंतर मंतर फिर भरता रहा। कभी नागरिकता कानून के खिलाफ आवाजें आई, कभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी पहुंचे और कभी बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठी। जंतर मंतर के साथ दिल्ली के दूसरे हिस्से भी आंदोलनों के गवाह बनते रहे हैं। कभी इंडिया गेट पर लोग जुटे, कभी संसद की ओर जाती सड़कों पर आवाजें उठी और कभी रामलीला मैदान आंदोलन का केंद्र बना। हर सरकार बदली लेकिन विरोध की जरूरत नहीं बदली, क्योंकि मांगे बदलती रही लेकिन इंतजार नहीं। फिर आए देश के पहलवान, जिन खिलाड़ियों ने भारत का तिरंगा दुनिया में लहराया था, उन्हीं खिलाड़ियों ने दिल्ली में न्याय की गुहार लगाई थी।
15: यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो पंच भूषण तो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मत मत ऐसे सो रहा बेड पे। हम एक वो तख्ते के वो तो काट के पड़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है।
0: सड़कों पर बैठी बेटियां, जमीन पर रखे पदक और टीवी स्क्रीन के सामने बैठा था पूरा देश। जंतर मंतर फिर खबर बन गया था, लेकिन इस बार खबर से ज्यादा एक सवाल बन गया, क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए हर बार सड़क पर बैठना जरूरी है? और अब एक बार फिर जंतर मंतर सुर्खियों में।
16: जनता पार्टी के सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें, हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई है।
0: जंतर मंतर सिर्फ धरनों की जगह नहीं है, ये देश के मूड का बैरोमीटर है। जब सरकार और जनता के बीच बातचीत कम होने लगती है तो जंतर मंतर भरने लगता है। यहाँ भाषण कम और बेचैनी ज्यादा दिखाई देती है, यहाँ राजनीति कम और उम्मीद ज्यादा बैठती है। लेकिन दिल्ली में ऐसे कई प्रदर्शन भी हुए हैं जिसका सीधा कनेक्शन तो जंतर मंतर से नहीं था, लेकिन उस आंदोलन की परछाई जंतर मंतर पर नजर आ रही थी। निर्भया की मौत के बाद दिल्ली में गुस्सा सिर्फ सड़कों पर नहीं था, वो हर उस घर में था जहां बेटियों की सुरक्षा को लेकर डर पैदा हो गया था। दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए उस जघन्य अपराध के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने इस गुस्से को एक बड़े जन आंदोलन में बदल दिया। हजारों छात्र, युवा और आम नागरिक हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए थे। इंडिया गेट से लेकर जंतर मंतर तक हर तरफ एक ही सवाल था, आखिर कब तक? लोगों के हाथों में मोमबत्तियां थी, लेकिन आवाज में गुस्सा था। प्रदर्शनकारी सिर्फ दोषियों को सजा देने की मांग नहीं कर रहे थे, वो एक ऐसी व्यवस्था की मांग कर रहे थे जहां किसी लड़की को घर से निकलते वक्त डरना न पड़े। नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली में शुरू हुआ विरोध धीरे धीरे पूरे देश की बहस बन गया था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से शुरू हुआ विरोध दिल्ली के कई इलाकों तक पहुंच गया। यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन हुए, सड़कों पर नारे लगे और जगह जगह लोग इस कानून के खिलाफ अपनी चिंताएं जाहिर करने के लिए जुटने लगे। लेकिन दिल्ली का विरोध सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं था। शाहीन बाग में महिलाओं का धरना देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। और इन तमाम आवाजों के बीच जंतर मंतर भी लगातार गूंज रहा था। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जुटे, यहाँ सीए और एनआरसी को लेकर सवाल उठाए गए। दिल्ली उस वक्त सिर्फ विरोध नहीं देख रही थी, दिल्ली नागरिकता, संविधान और देश की पहचान को लेकर एक बड़ी बहस का मंच बन चुकी थी। साल 2020 देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, लेकिन इसी बीच संसद से पास हुए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों से किसान दिल्ली पहुंच गए थे। सरकार से बातचीत की कोशिश हुई लेकिन बात नहीं बनी, और फिर दिल्ली के बॉर्डर आंदोलन के सबसे बड़े केंद्र बन गए। हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे। कड़ाके की ठंड पड़ रही, बारिश हुई, गर्मी आई, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर वहीं बैठे रहे। आंदोलन की तस्वीरों में सबसे ज्यादा नजर आ रहे थे पुरुष किसान, लेकिन इस आंदोलन में महिलाएं भी पीछे नहीं थी। किसानों के परिवारों की महिलाएं भी गांवों से निकलकर दिल्ली पहुंची। खेतों में काम करने वाली ये महिलाएं अब राजधानी की सड़कों पर अपने अधिकारों की आवाज उठा रही हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर जहां पुरुष किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, वहीं जंतर मंतर पर महिला किसानों ने मोर्चा संभाल लिया था। और आखिरकार लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया।
17: समाधान चाहते है, ठीक है। किसान वापसी नहीं जाना यहाँ से, सरकार आज सुन ले या 10 दिन में सुन ले।
18: किसाना जैसे मोदी जी ने कानून वापस लिए है, उस बात की खुशी भी है। याद कर रहे हैं वही सारे पल हमारे सामने हैं कि जैसे शुरू किया उस समय इतने टेंट नहीं थे, फिर धीरे धीरे अपने हाथों से टेंट बनाए, सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं भी की, और हमारे बीच में मौसमों का भी रहा, बारिशें हुई, ठंड हुई, सब चीजें देखी। लेकिन आज सभी किसान, क्योंकि जो
19: जीत का श्रेय किसको देंगे आप इस जीत का?
18: मैं समस्त किसान भाई जितने भी हैं जो यहाँ पर हमारे समय समय पर बॉर्डरों पर आते रहे, मैं सभी उन्हें किसान भाइयों के इस जीत का श्रेय दूंगा।
2: जंतर मंतर कई आंदोलन का गवाह रहा। कुछ आंदोलन यहाँ आए, अपनी मांगे रखी और कुछ लौट गए। कुछ ने सरकारों को फैसला बदलने पे मजबूर किया, कुछ आंदोलन इतिहास बन गए और कुछ वक्त के साथ भीड़ में खो गए। लेकिन इस सड़क ने किसी आवाज से ये नहीं पूछा कि वो कितनी बड़ी है, किसकी है और कितने लोग उसके साथ हैं। हर आवाज के लिए यहाँ जगह रही, क्योंकि जंतर मंतर सिर्फ एक प्रदर्शन की जगह नहीं, देश के लोकतंत्र की वो डायरी है जिसमें हर दौर के सवाल दर्ज करता है।
0: यहाँ हर आंदोलन सफल नहीं हुआ, हर मांग पूरी नहीं हुई, हर धरना इतिहास नहीं बना, लेकिन रामलीला मैदान से बोट क्लब तक, इंडिया गेट से जंतर मंतर तक, इस शहर ने हर पीढ़ी को अपनी आवाज उठाने की जगह दी है। और जंतर मंतर आज भी उस आवाज का सबसे पहचान वाला पता है।
4: दिल्ली के दिल में मौजूद जंतर मंतर आज इसकी पहचान धरना प्रदर्शन और आंदोलन की जगह के तौर पर होती है, लेकिन कभी यहाँ पत्थरों से बने विशाल यंत्रों के जरिए सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की चाल को समझा जाता था। करीब 300 साल पहले बनाए गए ये यंत्र बताते हैं कि उस दौर में भारत का खगोल विज्ञान कितना आगे था।
0: भारत की संस्कृति एवं सभ्यता तो पूरे विश्व में विख्यात है। अपनी खोज और आविष्कार के लिए प्राचीन भारत में विज्ञान और खगोल विज्ञान का ज्ञान कितना उन्नत था, इसका एक बड़ा उदाहरण है दिल्ली के दिल में मौजूद ये जंतर मंतर। दिल्ली में बड़ी बड़ी इमारतों के बीच है जंतर मंतर। अपने समय में ये एक अनूठी इमारत थी और आज भी जानकार प्राचीन भारत के वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल कहते हैं।
20: 18वीं शताब्दी में जो खगोल शास्त्री थे उनके बीच में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को और पंचांग निर्माण को लेकर मतभेद थे। उस समय की जो पंचांग सारणियां थी यानी कि जो टेबल थी एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशंस की वो एक्यूरेट नहीं थी, वो पूर्णतः सही नहीं थी, तो ऐसे में पंचांग निर्माण को लेकर विवाद रहता था। इसी संदर्भ में जयपुर के कछुआ वंशीय एक शासक थे सवाई राजा जयसिंह द्वितीय, उन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई जिनमें दिल्ली के साथ साथ जयपुर उज्जैन वाराणसी और मथुरा में भी ये खगोलीय वेधशालाएं बनवाई गई। ये वेधशालाएं उन्होंने 1724 में बनवाई। इनका उद्देश्य ग्रह नक्षत्रों की सही स्थिति बनाना, इनकी जो वास्तुकला है, इनको जो बनाया गया, इनका जो आर्किटेक्चर है वो इस तरह से बनाया गया जिससे कि ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक स्थिति आकाशीय दृश्य हमें स्पष्ट समझ आ सके और पंचांग निर्माण में सहायता।
0: महाराजा जयसिंह द्वितीय ने संपूर्ण भारत में कुल 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करवाया था जो दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में है। इन सभी वेधशालाओं का निर्माण उस दौर में हुआ जब आधुनिक टेलीस्कोप और कंप्यूटर जैसी तकनीकें मौजूद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद खगोल विज्ञानियों ने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति को समझने के लिए बेहद सटीक गणनाएं की। जंतर मंतर में समय और ग्रहों की स्थिति को मापने के लिए 13 अलग अलग उपकरणों को स्थापित किया गया है। इनमें से हर यंत्र का अपना अलग महत्व है और हर यंत्र को एक खास वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सम्राट यंत्र। ये करीब 70 फीट ऊंचा और 114 फीट लंबा विशाल ढांचा है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी भी कहा जाता है। सम्राट यंत्र सूर्य रोशनी और उसकी छाया की मदद से समय की गणना करता है, यानी जिस दौर में घड़ी का आविष्कार भी नहीं हुआ था उस दौर में सूर्य की छाया से समय को समझने की कोशिश की जा रही थी। ये यंत्र घंटे, मिनट और सेकेंड तक की सटीक जानकारी देने के लिए बनाया गया था। फिर आता है मिश्री यंत्र जिसे साल के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन को निर्धारित करने के लिए खुद महाराजा जयसिंह ने डिजाइन किया था। मिश्री यंत्र को 5 अलग अलग यंत्रों को मिलाकर बनाया गया है। ये यंत्र इस बात को समझने में मदद करता था कि साल का सबसे लंबा दिन कौन सा है और सबसे छोटा दिन कौन सा, यानी आज जिस जानकारी को हम आधुनिक तकनीक और कैलेंडर के जरिए आसानी से जान लेते हैं उसे सदियों पहले इन विशाल पत्थर के यंत्रों की मदद से समझा जाता था। इसके बाद आता है राम यंत्र। महाराजा जयसिंह द्वितीय के दादा राजा राम सिंह के नाम पर बनाए गए इस यंत्र की संरचना भी बेहद अनोखी है। राम यंत्र दो बड़ी बेलनाकार नुमा और एक दूसरे की पूरक इमारतों से बना है। प्रत्येक इमारत के बीच में एक स्तंभ स्थित है और इस स्तंभ के चारों ओर गोलाकार दीवार बनी हुई है और दीवारों और स्तंभ की ऊंचाई इमारत की आंतरिक रेडियस के बराबर है। इसका फर्श लगभग 30 भागों में बांटा गया है। इस यंत्र का उपयोग आकाशीय पिंड, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। जंतर मंतर केवल पत्थरों से बनी कुछ विशाल इमारतें नहीं है बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का ज्ञान कितना विकसित था।
4: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद प्रहलाद जोशी का पहला बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। इसके साथ साथ उन्होंने इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेने की बात भी कही है, इसका निर्वहन करने की उन्होंने बात कही है। कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा, पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश के नए एजुकेशन सिस्टम में काफी तरक्की हुई है और 12 सालों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: अभी अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी।
0: पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर 50 दिन से जारी छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। सरकार ने छात्रों की सारी शर्तें मान ली है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन अब सवाल उस मुद्दे का है जिसकी वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ। क्या पेपर लीक अब रुकेंगे? क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की हिम्मत अब कोई नहीं करेगा?

0: लोगों की मांग कॉकरोच पार्टी का अनशन, राहुल गांधी की जिद विपक्ष का प्रदर्शन, आखिरकार शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट की। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए कुछ यूं लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। जंतर मंतर पर पिछले 50 दिनों से चल रहे ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के भारी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सौंपते ही कॉकरोच जनता पार्टी झूम उठी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: अतः से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा।
0: आज सरकार के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के तीसरे राउंड की बैठक थी, जिसमें सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना पक्ष रखना था, लेकिन बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कॉकरोच पार्टी और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बात हुई। सरकार ने तीनों शर्तें मानी और आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया।
3: मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
0: सरकार के सामने कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मांगें रखी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई ना हो।
4: सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो गारंटी है रिटर्न में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूजडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूजडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये FIRs के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि क्या सिर्फ एक चेहरे के बदलने से भारत का परीक्षा तंत्र सुधर पाएगा या फिर छात्रों को न्याय मिलने तक ये आंदोलन एक नया रूप लेगा। आज तक ब्यूरो।
5: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही छात्र आंदोलन तो खत्म हुआ, लेकिन अभी इस मुद्दे पर सियासी खेल बचा है। सोमवार को एक बार फिर मानसून सत्र की शुरुआत होगी, संसद खुलेगा, जहां पर बड़े घमासान के आसार हैं।
6: छात्र खुश हैं, विपक्ष खुश है।
2: सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।
7: खुश है कि ये सारे डिमांड एक्सेप्ट हुए।
6: लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरा गतिरोध खत्म हो जाएगा? क्योंकि सड़क पर तो जंग खत्म हो गई है, लेकिन संसद में लड़ाई अभी बाकी है।
8: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की, सरकार को लेने पड़ेंगे।
9: ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
6: सरकार ने पेपर लीक को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसे सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है, लेकिन इस ड्राफ्ट के साथ मॉनसून सत्र में घमासान का नया चैप्टर खुलने वाला है, क्योंकि सरकार जहां पेपर लीक पर चर्चा पर लगातार जोर दे रही थी तो वहीं विपक्ष के लिए चर्चा की पहली शर्त ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। ऐसे में क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में पेपर लीक पर चर्चा होगी?
10: पैलेट गन्स वर फायर्ड एट देम, टियर गैस वाज फायर्ड एट देम, दे वर बीटन विद लाठीज, दे हैड इंजरीज, सीरियस इंजरीज, बट दे डिड नॉट बेंड, द गवर्नमेंट हैड टू बेंड टू देयर विल।
11: आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी, लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा।
12: जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी।
6: उधर दिपके भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है,
1: ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है।
6: सड़क पर पेपर लीक की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब एक लड़ाई संसद में होनी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
5: पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी का क्या होगा? क्या अब और मुद्दों पर कॉकरोच जनता पार्टी उतरेगी, प्रोटेस्ट करेगी? तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं।
6: सीजेआई का कॉकरोच पर एक बयान, फिर सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान और फिर जंतर मंतर पर 50 दिनों तक चला आंदोलन। जिनकी मांगों को सरकार ने मान लिया।
13: नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले ले। देश का युवा बहुत समझदार है, ये वही युवा है जिसको 2 महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात भी रख सकते हैं, तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है, आई थिंक ये मेन आर पॉइंट।
1: इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने के वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है, एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा।
6: आज अभिजीत दिपके की माँ की आंखें खुशी से नम हैं, पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
14: डर लग रहा था ना मुझे, अभी सर को ऐसे उठा के ले गए सुबह सुबह में, अभी ये बैठा था, इसको कुछ करेंगे, उस बहुत डर लग रहा था, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं मालूम नहीं था ना, इतना अभी आगे क्या क्या होता है।
15: गरीब लोगों के लिए उसका लगाव और उनके प्रतिभूति सहानुभूति उसके दिल में है, तो वो कोई तो भी अच्छा ही काम करेगा, उसके हम पीछे रहेंगे जो भी अच्छा काम करेगा।
6: एक अनोखे ड्रामे से सोशल मीडिया से शुरू हुई ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची, जहां छात्रों के मन की बात को सरकार ने भी समझा। आज तक ब्यूरो।
5: और बड़ी खबर आपको देते हैं, गृहमंत्री अमित शाह का पहला बयान भी सामने आया है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृहमंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट लिखा और ये धर्मेंद्र प्रधान के पोस्ट को ही उन्होंने जो है उस पर कोट किया, लिखा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो अपने पद से जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वो इसी को दर्शाता है। मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है, पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के लिए कटिबद्ध है, पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिले इसके लिए पीएम मोदी के द्वारा लिए गए निर्णय सराहनीय है, ये उन्होंने लिखा। और नीट परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों के साथ पूरा न्याय भी होगा, ये उन्होंने लिखा। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र करते हुए कहा कि अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, मातृभाषाओं में परीक्षाओं की व्यवस्था करना, पीएम श्री विद्यालयों के विस्तार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, तमाम तरह के उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए उनके कार्य की सराहना भी की और कहा कि उन्होंने अपने काम के प्रति अपने समर्पण को दर्शाया, अपने संकल्प को दर्शाया। तो ये गृहमंत्री अमित शाह का पोस्ट धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कई घंटों के बाद आया, लगभग 9 घंटों के बाद। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने उनके कार्य को भी सराहा और अपने सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई कि हमारे लिए पद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, हमारी युवा पीढ़ी और स्टूडेंट्स विद्यार्थी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये इस्तीफा इसी बात को दर्शाता है। गृहमंत्री अमित शाह का ये पोस्ट, ये ट्वीट और इसमें वो धर्मेंद्र प्रधान की सराहना भी करते हुए दिखाई दिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान चाहे वो मातृभाषाओं को आगे बढ़ाना हो, उसमें परीक्षाएं आयोजित करवाना हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन हो, कौशल विकास और उद्योग अकादमिक समन्वयन को सुदृढ़ करने की दिशा में उठाए गए कदम हो। उन्होंने आगे इसमें लिखा है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में भी धर्मेंद्र प्रधान ने काफी उल्लेखनीय काम किया है। पेपर लीक के खिलाफ शनिवार को भी देश भर में प्रदर्शन दिखे, जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया खबर आई उसके बाद से जश्न मनता हुआ दिखाई दिया। कई शहरों में विरोध उग्र दिख रहा था और अब सवाल बड़ा यह है कि ऐसे शहर आंदोलन की चिंता ने इस्तीफा जो है ये करवाया है, इसके पीछे क्या क्या वजह रही है, इनसाइड स्टोरी बताते हैं।

0: दिल्ली की तरह लखनऊ में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी झूम उठते हैं, विरोध जश्न में बदल जाता है।
1: इसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटरी
2: पैरामिलिट्री के जो जवान है वो अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी है उनको घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही कनॉट प्लेस पर जबरदस्त भीड़ जो थी देखी जा रही थी। मेट्रो से तमाम लोग आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन को खोला गया, उसके बाद की ये तस्वीर है कि किस तरीके से कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे थे। अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो उनको वापस जाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इनर सर्कल की तस्वीर है, अभी भी आपको जबरदस्त प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में माहौल खराब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अब तमाम लोगों से ये अपील कर रही है कि वो अपने घर जो है वो वापस जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं।
0: देश के बाकी राज्यों की तरह पेपर लीक के खिलाफ छात्रों में लखनऊ में आक्रोश था, जिसमें वो छात्र छात्राएं शामिल हुए जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
3: ये ना घर से पता गया है?
4: नहीं,
3: घर पे नहीं बुलाया?
4: नहीं।
3: घर पे क्या बोला है?
4: अभी जाकर बता देंगे, हमें पता नहीं था कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
3: अच्छा, अब रास्ते से निकले देखा कि हो रहा है, पहुंच गए? आक्रोश देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे?
4: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए हम उनको जानते भी नहीं थे।
0: लखनऊ में जहां प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन प्रयागराज में इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। वहीं कुछ ने तोड़फोड़, हालांकि पुलिस ने यहां संयम से काम लिया और कार्रवाई नहीं की। ऐसा ही हंगामा पटना में भी देखने को मिला। यहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो जाती। पुलिस पर पथराव हुआ जिसके जवाब में लाठीचार्ज पुलिस ने किया।
5: ये लोग कहाँ से हैं सर?
6: कहाँ से? पटना के ही है, लोकल है जो
5: कि बाहर से भी पकड़ा रहे। बाहर के लोग
6: बाहर से भी आया है, बाहर से भी। तो आप लोग को भी तो ऊपर चलाया, हम लोग को ऊपर भी चलाया, वही तो पकड़ाया। चलिए चलिए, उपद्रवी है ना।
7: यहाँ पर धरना प्रदर्शन सब विद्यार्थी लोग है जो ढेला देखिए तो ढेला चलाया, फोड़ फाड़ दिए,
8: चोट भी लगा।
7: यहाँ हम तो रोड पर थे तो उधर भाग गए, ऊपर थे इसमें न थे, इसमें होगा तो होइएगा। हम उस सुलभ शौचालय में भाग गए थे।
0: बिहार के सिवान में प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ। पुलिस ने बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पूर्णिया में भी सड़कें रणभूमि बन गई। अलग अलग संगठनों ने मिलकर पैदल मार्च निकाला लेकिन फिर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस ने बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन जब बात नहीं बनी और बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खुशी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभी उनकी एक मांग पूरी हुई, वो अब चाहते हैं कि पूरा शिक्षा तंत्र सुधरे।
9: पहली बार इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने और मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और देख लो,
10: ये मेरा दोस्त है, इसके पापा ने बोली थी कि तुम जा तो रहे हो, घर जब भी आना, जब इस्तीफा लेके आना, और मैम इस्तीफा लेके हम घर जाएंगे।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन इस आंदोलन का असली मकसद तब पूरा होगा जब शिक्षा के पूरे शैक्षिक तंत्र में सुधार होगा।
11: अब बिहार से बड़ी खबर आपको देते हैं। तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया, उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल छात्रों के समर्थन में उनको ये गिरफ्तार किया गया है, पटना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बिहार में बड़ी राजनीतिक ये हलचल देखने को मिले। दरअसल आज छात्रों का प्रोटेस्ट देखने को मिला था और उस छात्रों के प्रदर्शन में तेज प्रताप पहुंच गए शामिल होने के लिए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: की साजिश देखिए आज तक पर।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। कहा, पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा जिम्मेदारी। अमित शाह बोले, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से अधिक देश अहम। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने खत्म किया आंदोलन। दिपके ने कहा, लोकतंत्र की जीत, जंतर मंतर पर छात्रों का जश्न। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीठ। राहुल गांधी ने कहा, सालों से शिक्षा व्यवस्था पर हमला, जितनी गलती मोदी की संघ की भी उतनी।

0: अखिलेश बोले सरकार को झुकना ही था। पटना में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव गिरफ्तार। गांधी मैदान में छात्रों के प्रदर्शन में हुए थे शामिल। सीजेएम कोर्ट में पेशी भी हुई। गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात। नवसारी और सूरत में बुरा हाल। अब तक 56 लोगों की मौत। असम में भी 61 की गई जान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रहलाद जोशी को मिला अतिरिक्त प्रभार। शिक्षा मंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के बाद बोले, निष्ठा के साथ निभाऊंगा जिम्मेदारी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके का बयान, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर से प्रदर्शन खत्म, तुरंत लौटने लगे फिर प्रदर्शनकारी। कांग्रेस जनता पार्टी की सभी मांगों को केंद्र सरकार ने माना। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रवक्ताओं के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जेपी नड्डा बोले, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस ली जाएगी, मुआवजा नियमों के तहत मिल जाएगा। मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सीजेपी प्रवक्ता, मंगलवार को मिलेगी सरकार की तरफ से लिखित गारंटी। चार हफ्तों के बाद शिक्षा सुधारों पर फिर से होगी सरकार से बात। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीट, राहुल गांधी बोले कि यही हिंदुस्तान का युवा भविष्य है, सरकार को वो सिस्टम लाना होगा। जंतर मंतर पर हिंसा के लिए राहुल गांधी ने अमित शाह को बताया जिम्मेदार, कहा कि पीएम मोदी मांगे माफी, यही हमारी मांग। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अखिलेश यादव की ये युवा पीढ़ी की जीत है सरकार का, प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हर चीज के बारे में बहुत गंभीरता से उनको सोचना होगा। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को दी बधाई, बताया लोकतंत्र की बड़ी जीत। एनसीपीएसपी अध्यक्ष शरद पवार ने सोशल मीडिया पर लिखा, पीएम मोदी से मैंने संवाद के लिए कहा था और बातचीत का असर दिखा। शिवसेना यूपीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने तिरंगा यात्रा का ऐलान, कहा कि मुंबई के शिवाजी पार्क में होगी यात्रा, ये युवाओं की जीत का जश्न। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मायावती का बयान, पहले इस्तीफा हो जाता तो बेहतर होता, छात्रों युवाओं पर केस जो दर्ज है वापस हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को तेजस्वी यादव ने सच हक न्याय की जीत बताया, कहा कि झूठ पैंतरे अहंकार की हार। आंदोलन के सूत्रधार सोनम वांगचुक बोले कि ये लोकतंत्र की जीत, जेन जी और सीजेपी को बधाई दी। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास बोले कि अगर समस्या का हल नहीं होता तो फिर से लौटेंगे, प्रदर्शन करेंगे। पेपर लीक के खिलाफ सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा बिल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। जितेंद्र सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान की सराहना भी की, कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का काम सराहनीय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे छात्रों की भावनाओं का बड़ा सम्मान बताया। धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की, सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इस्तीफे का फैसला बड़ा हित में लिया गया और पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने स्वागत किया, सोशल मीडिया पर लिखा कि देर आए दुरुस्त आए। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ की, कहा कि राष्ट्र हित में दिया गया इस्तीफा, उन्होंने दायित्व निभाया। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में कसीदे पड़े, बोले कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में अहम भूमिका निभाई उन्होंने। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर असम के सीएम हेमंत बिस्व सोरेन बोले कि इस्तीफा देना उनका फैसला, लेकिन उन्होंने असम की बहुत मदद की। ममता बनर्जी ने प्रधान के इस्तीफे पर सिर्फ दिखावा इसे बताया, दबाव के में सरकार पीछे हटी है कहा। केंद्र सरकार को असदुद्दीन ओवैसी ने घेरा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कि सरकार किसी को दबा नहीं सकती, सरकार की तानाशाही अब नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पंजाब में उठी आवाज, हरसिमरत कौर बादल बोली कि पंजाब के शिक्षा मंत्री बर्खास्त होने चाहिए। पटना में जनशक्ति दल के नेता तेज प्रताप यादव गिरफ्तार, नीट प्रदर्शन में सड़क पर उतरने के बाद बिहार पुलिस का एक्शन। तेजस्वी यादव का एक वीडियो से दावा कि सीवान में AK-47 से फायरिंग हुई, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पटना में गांधी मैदान के करीब पुलिस टीओपी को प्रदर्शनकारी छात्रों ने सुतली बम से उड़ाया, जमकर तोड़फोड़ दी। नीट पेपर लीक के विरोध में शनिवार को बिहार बंद रहा, भागलपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दिए। बिहार के औरंगाबाद में दिन में प्रदर्शन के दौरान पथराव हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज हुआ। बिहार बंद का भोजपुर में दिखा असर, आरा स्टेशन पर ट्रेन रोककर बवाल मचाया गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रदर्शनकारियों में खुशी की लहर दिखी, मुकदमे वापस लेने की भी मांग की। बिहार के समस्तीपुर में आईएसआई कार्यकर्ताओं का जश्न, बिहार बंद के दौरान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जताई। सूरत में कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों ने मनाया जश्न, मिठाइयां बांटी। चंडीगढ़ में कांग्रेस के समर्थकों और छात्रों ने बांटी मिठाइयां, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जीत का दावा किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूर्वांचल में युवाओं का जश्न, चंदौली में एक दूसरे को मिठाई खिलाई, खुशी जाहिर की। लखनऊ में भी समर्थकों की खुशी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर चॉकलेट बांटी। विशाखापट्टनम में छात्रों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया, एनटीए के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। इस्तीफे के बाद नागपुर में भी छात्रों का जश्न, संविधान चौक पर नाचते दिखाई दिए। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक के मास्टरमाइंड समेत को गिरफ्तार, महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार से किया अरेस्ट। फतेहपुर में पेपर लीक पर बोले सीएम योगी, नकल माफिया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की देन। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान से सोशल मीडिया के जरिए फैला गया दुष्प्रचार, 400 से ज्यादा पाकिस्तानी हैंडल्स ब्लॉक किए।
आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल में भव्य सजा। रक्षा मंत्री ने युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ऑपरेशन विजय के शहीदों के बलिदान को याद किया। गुजरात में बाढ़ बारिश से अब तक 56 लोगों की मौत। पिछले दो दिनों में ही 25 लोगों की जान। गुजरात में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच में देवदूत बने हैं सेना के जवान। राज्य भर में देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। असम में भी बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई। अब तक 61 लोगों की मौत। दिल्ली में अगले दो दिनों तक हल्की बारिश की संभावना। 36 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंचा। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। शोपियां मुफंती धाराओं ने बागों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया। जिम्बाब्वे को 90 रनों से हराकर टीम इंडिया ने जीती T20 मैच की यह सीरीज। श्रीलंका में 2-0 से आगे। पहले खेलते हुए भारत ने 5 विकेट पर बनाए 219 रन। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 17.5 ओवर में 129 पर ऑल आउट। भारत की ओर से ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए। तिलक ने 29 बॉल में 60 रन की पारी खेली। अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। यश ठाकुर और प्रिंस यादव के खाते में 2-2 विकेट। ग्लासगो में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में झंडू कुमार ने भारत के लिए पहला मेडल जीता है। हैवीवेट पैरा पावर ओलंपिक इवेंट में 190 किलोग्राम की बेस्ट लिफ्ट के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। यमन की हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल रिफाइनरी पर किया हमला। हूती सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि जिनान और यानबू में अमारको की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। यूक्रेन शहरों पर रूसी सेना का भीषण हमला। कीव और ज़ापोरिज़्या में रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। 13 लोगों की मौत। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस में फिर से बढ़ा तनाव। चीन तटरक्षक बल ने फिलीपींस के जहाज पर पानी की बौछार छोड़ी। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने राजधानी दमिश्क में सीरिया राष्ट्रपति से मुलाकात की। यूएन महासचिव का यह दौरा महत्वपूर्ण उपलब्धि। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एआई शिखर सम्मेलन। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने दिग्गज टेक कंपनीज के सीईओ से मुलाकात की। नेटो में इंटर्नशिप कर रही कैनेडियाई महिला जासूस गिरफ्तार की गई। बेल्जियम की संघीय पुलिस ने कार्रवाई की। चीनी मूल की महिला बेल्जियम में नेटो के सैन्य ठिकानों पर इंटर्नशिप कर रही थी। हंगरी के पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया। कहा कि हंगरी में स्वतंत्रता खतरे में है। रूसी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मंडराया ड्रोन हमले का खतरा। और येकातेरिनबर्ग में खतरे के चलते चैंपियनशिप को एक दिन पहले स्थगित करना पड़ा। स्पेन में जंगलों की आग से तबाही। रिहायशी इलाकों में तक ये जंगलों की आग पहुंची। राजधानी मैड्रिड के पास भी कई घर चपेट में। दक्षिणी चीन में शक्तिशाली तूफान नॉल का बड़ा कहर। तूफान की वजह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट के स्पेशल एडिशन में आपका बहुत स्वागत है। कहते हैं कि नेतृत्व की असली परीक्षा फैसले लेने में नहीं बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार करने के साहस में होती है। नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन 36 दिन पहले शुरू हुआ था, आज देखिए वो कहां पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ वो आज खत्म हुआ। इस आंदोलन में सवाल सिर्फ ये नहीं था कि पेपर लीक कैसे हुआ और ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, सवाल ये भी था कि जब लाखों युवाओं के भविष्य पर असर पड़ा तो क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेगी। और आज जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो ये सिर्फ एक मंत्री के पद छोड़ने की खबर नहीं थी, ये उस प्रक्रिया का नतीजा जिसमें छात्रों का गुस्सा, सड़कों पर आंदोलन, सरकार के फैसले, जवाबदेही की मांग हुई, सब एक साथ दिखाई दिया। नीट पेपर लीक से शुरू हुई ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रही, एक भरोसे का संकट बन गया। नीट पेपर लीक, उसके बाद OSM जो CBSE की मार्किंग थी, क्योंकि भारत में ये परीक्षाएं सिर्फ एक पेपर नहीं होती, करोड़ों परिवारों के सपने जुड़े होते हैं। एक छात्र के लिए सिर्फ नंबर नहीं होता, सालों की मेहनत, दिन रात जागना, खाना पीना सब भूल जाना, ये उसके माता पिता की उम्मीद, उसके पूरे भविष्य का सवाल होता है। सरकार ने स्थिति संभालने के लिए कई कदम उठाए, जांच बिठाई गई, कानून सख्त किए गए, परीक्षा व्यवस्था बदलने की घोषणा हुई, अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन छात्रों का सवाल सिर्फ सुधार का नहीं था, सवाल था कि आखिर इस पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा। और यहां वो समझिए कि यही वो बिंदु था जहां लोकतंत्र की ताकत दिखाई दी। आज जब जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे थे तो उस तस्वीर में सिर्फ एक आंदोलन की जीत नहीं थी बल्कि लोकतंत्र की वो तस्वीर थी जहां सवाल उठते हैं, जवाब मांगे जाते हैं, व्यवस्था खुद को सुधारने की कोशिश करता है। और इस सब के साथ लोकतंत्र में हर जीत के बाद एक नई जिम्मेदारी भी आती है। अब असली जिम्मेदारी, असली परीक्षा सरकार की है। क्या वो सिर्फ इस्तीफे तक सीमित रहेगी या परीक्षा व्यवस्था में वो बदलाव करेगी जिससे दोबारा किसी युवा को अपने भविष्य के लिए सड़क पर ना उतरना पड़े, जिससे दोबारा किसी बच्चे को आत्महत्या ना करनी पड़े। क्योंकि आज की कहानी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं है, आज की कहानी है एक पीढ़ी की आवाज की। वो पीढ़ी जिसे कल तक सिर्फ सोशल मीडिया, ये तो रील्स बनाते हैं, ट्रेंड्स की पीढ़ी कहा जाता था, उसने आज दिखाया कि जब सवाल भविष्य का हो तो वह पीढ़ी बदलाव की सबसे बड़ी आवाज बन सकती है। आप कल्पना कीजिए, इस जेन जी पीढ़ी के लिए आज एक शब्द भी कहा जा रहा है और वो शब्द है जेन जीत। जेन जी नहीं, जेन जीत। अब से अगले एक घंटे तक हम इस इस्तीफे का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि यह घटना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक टर्निंग पॉइंट से कम नहीं है, और अगर ऐसा है तो क्यों। लेकिन इस विश्लेषण को हम इन शब्दों में शुरू करना चाहते हैं। ये शब्द हैं डेमोक्रेसी करेक्ट्स इटसेल्फ, यानी लोकतंत्र स्वयं अपना सुधार करता है। जब इस देश के लाखों युवा पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे तब सबसे बड़ी बहस यही थी कि भारत का लोकतंत्र इस पूरी घटना में किस पक्ष को चुनेगा। यानी सवाल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं रह गया था, सवाल यह था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र किस ओर लौटेगा। और आज जब हमने इन तस्वीरों को देखा तो हमें सबसे पहले यही शब्द याद आए कि डेमोक्रेसी करेक्ट्स इटसेल्फ। आज सिर्फ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है, आज ये पता चला है कि जब इस देश के युवाओं ने आवाज उठाई तो सरकार ने उस आवाज को सुना, संस्थाओं ने उस पर प्रतिक्रिया दी, व्यवस्था ने खुद को सुधारा, और यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है जिसमें वो गलती होने पर खुद को सुधार सकता है। आज जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो इसमें आंदोलन की गरिमा भी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी, इसमें देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी दिख रही थी। और सबसे बड़ी बात, ये इस्तीफा हमारे उन युवाओं की जीत को दिखा रहा था जो अपने भविष्य के लिए जवाबदेही मांग रहे थे, वो जवाबदेही जो गलतियों पर व्यवस्था को बदलती है और ये सुनिश्चित करती है कि इस देश के प्रत्येक युवा के साथ न्याय हो। देखिए,
1: कन्फर्म है, कन्फर्म है।
2: We are the
0: धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की घोषणा किसी राजनीतिक बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की। उन्होंने देश के युवाओं के नाम एक पत्र लिखा और इस पत्र में ये बताया कि आखिर उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया। लिखा कि ये मामला उनके व्यक्तिगत सम्मान या प्रतिष्ठा का नहीं है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण देश की युवा आबादी है और वो नहीं चाहते थे कि देश के छात्र भ्रम, विवाद, राजनीतिक संघर्ष के जाल में फंसे। और यही वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि जंतर मंतर समेत देशभर में बन रहे हालात राष्ट्रीय एकता बनाए रखने, किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत को इस मुद्दे का फायदा उठाने से रोकने, छात्रों के भविष्य को लंबे कानूनी विवादों में उलझने से बचाने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि देश के बच्चे अपना समय आंदोलन नहीं बल्कि पढ़ाई, अपने करियर पर लगा सके, इसके लिए आज ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। और उनके इस पत्र को आइए हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसका निष्कर्ष यही है, जो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं इसका निष्कर्ष ये है कि जंतर मंतर पर छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन हुआ उससे दबाव बना और उसी के बाद धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा हुआ है। औपचारिक रूप से अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह इस्तीफा सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान से मांगा था या धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपनी स्वेच्छा से यह इस्तीफा दिया, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि खुद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की पहल की और यह इस्तीफा उन्होंने दिया है। साल 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद यह दूसरी बार है जब किसी मौजूदा केंद्रीय मंत्री ने जनता के दबाव और उठते सवालों के बीच अपना पद छोड़ा है। इससे पहले साल 2018 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया था और अब धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी सूची में जुड़ गया है। यह भी तब हुआ है जब धर्मेंद्र प्रधान उन चुनिंदा नेताओं में शामिल थे जो साल 2014 से मौजूदा सरकार में लगातार मंत्री थे। इस पूरे घटनाक्रम को कुछ लोग सरकार की जवाबदेही के तौर पर देख रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे इसे एक ऐसा कदम मान रहे हैं जिससे सरकार ने विवाद को खत्म करने, छात्रों के भरोसे को बनाए रखने की एक कोशिश की। कुल मिलाकर देखें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में उन चुनिंदा मौकों में शामिल हो गया है जब लगातार बढ़ते दबाव के बीच किसी मौजूदा केंद्रीय मंत्री ने अपना पद छोड़ा और इसके बाद जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने किस तरह जश्न मनाया वो भी आप देखिए।
2: जैसे ही करीब 2:30 बजे के आसपास जैसे ही ये खबर यहाँ पर पहुंची, लोगों ने यकीन नहीं किया, क्योंकि आप देखिए नेट यहाँ पर स्लो है और लोगों की संख्या देखिए दूर दूर तक आपको जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग यहाँ पर मौजूद है।
0: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी एक घटना की वजह से नहीं हुआ, इसके पीछे कई महीनों से चल रहे विवाद, छात्रों की नाराजगी, लगातार बढ़ता दबाव, एक के बाद एक पेपर लीक, गलत ब्लैकलिस्टेड लोगों को बार बार टेंडर मिलना, कई सारी परीक्षाओं में लीक होना और परीक्षा लीक होने के बाद, पेपर रद्द होने के बाद री एग्जाम की वजह से कई बच्चों का सुसाइड कर लेना। इसलिए आज इस इस्तीफे की पूरी टाइमलाइन को देखना होगा। ये कहानी शुरू हुई 3 मई। 3 मई को पहली बार नीट पेपर लीक का यह पूरा मामला सामने आया। मामला गंभीर हुआ तो सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया, जांच सीबीआई को सौंप दी गई, दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा कर दी गई। ये शिक्षा मंत्रालय के लिए बड़ा संकट था क्योंकि इसमें लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा था। एक बार पेपर लीक और दूसरी बार भी हो जाता तो आप कल्पना कीजिए, इस पेपर लीक पर युवाओं का गुस्सा शांत होता। उससे पहले 13 मई को सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग सिस्टम पर नया विवाद खड़ा हो गया। OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग, कई छात्रों ने OSM व्यवस्था को लेकर शिकायतें शुरू की। छात्रों का आरोप था कि स्कैन की गई कॉपियां साफ नहीं थी, कुछ पेज गायब थे, कहीं पर मार्क्स नहीं दिए थे, कहीं पर टिक मार्क लगा था फिर भी नंबर नहीं थे, कई उत्तर सही होने के बावजूद नंबर्स नहीं मिले थे और कुछ छात्रों की कॉपियों की जांच में गड़बड़ी की आरोप का आरोप था। धीरे धीरे ये मामला भी बहुत बड़ा विवाद बन गया और कई महीने के आखिर में धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी जिम्मेदारी भी अब जाकर ली है। उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार कहा कि नीट पेपर लीक जैसी घटना नहीं होनी चाहिए थी और सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। ये बयान इसलिए भी आया क्योंकि उसी वक्त कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक आंदोलन तैयार हो गया था। ये पार्टी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के उस बयान के खिलाफ विरोध में बनाई गई जिसमें उन्होंने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसमें दावा था कि उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता बनने वाले बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बताया था। हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया है कि उन्होंने इस वजह से नहीं कहा था, लेकिन खैर ये कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। अब अमेरिका में रहते हुए अभिजीत दीपके ने 16 मई को ये पार्टी बनाई, तब इसके कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हो गए। सोशल मीडिया पर उस वक्त पेपर लीक की चर्चा बढ़ी और विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया तो धर्मेंद्र प्रधान को ये कहना पड़ा कि वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और इसे ठीक किया जाएगा। यही वो बयान था जिसे अभिजीत दीपके ने मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं देते। अब इसी के बाद अभिजीत दीपके ने भारत लौटने का फैसला किया और यह कहा कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए आ रहे हैं। यहां तक अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के बीच कोई संबंध नहीं था और यह भी तय नहीं था कि सोनम वांगचुक इस आंदोलन में अनशन पर बैठेंगे। इन सारे विवादों के बीच नीट की दोबारा परीक्षा हुई। 21 जून को यह परीक्षा करा दी गई। इस बार करीब 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी लेकिन विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 24 जून को धर्मेंद्र प्रधान ने फिर वहां कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो खुद इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। यहां से मामला और बढ़ा और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान बार बार पेपर लीक की जिम्मेदारी ले रहे हैं वो इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि जब दोबारा परीक्षा हुई तब उससे पहले नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों ने आत्महत्या कर ली। कल्पना कीजिए, जिन बच्चों ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि इतनी मेहनत की थी, दिन रात एक करके एग्जाम दिया था, पेपर लीक की वजह से पेपर रद्द और अब फिर लग जाइए उसी तरह से पढ़ने में। व्यथा समझिए, कल्पना कीजिए कि किसी बच्चे ने इस वजह से अगर जान दे दी तो उस पर कैसा दबाव रहा होगा। अब सरकार भी जानती थी कि छात्रों की आत्महत्या युवाओं के गुस्से को बढ़ाएगी और इसलिए उसने 21 जून के री एग्जाम में पूरी ताकत झोंकी। हालांकि इससे गुस्सा कम नहीं हुआ, एग्जाम तो सफलता से हो गया, रिजल्ट भी निकल गए हैं, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हुआ। धीरे धीरे यह मामला सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भरोसा जवाबदेही का मुद्दा बन गया कि भाई इतने बच्चों की जान गई है तो जवाबदेह कौन। और 20 जून से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ जिसमें शुरुआत में 500 लोग भी शामिल नहीं थे, लेकिन 28 जून को सोनम वांगचुक की इस आंदोलन में एंट्री हुई। वो सरकार की जवाबदेही के मुद्दे पर अनशन पर बैठ गए। जब इस अनशन को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए और सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के वीडियो वायरल होने लगे तब जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। ये वही पल था कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को संसद चलो का आह्वान किया, देश भर के युवाओं से जंतर मंतर आने की अपील की। इस मार्च से 2 दिन पहले जब 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई तब युवा और नाराज हुए। हालात ऐसे बने कि जंतर मंतर भारत में ट्रेंड करने लगा। बड़ी संख्या में युवा 20 तारीख के संसद मार्च के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर से संसद मार्च निकाला और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। इससे यह आंदोलन बड़ा हो गया। आखिरकार आज धर्मेंद्र प्रधान को अपना यह इस्तीफा देना पड़ा। आप खुद देखिए कि जब अभिजीत दीपके को पहली बार फोन पर यह खबर मिली कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है तब वो और मौजूद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, इसका मंच से ऐलान किया। फिर देखिए,
3: कंफर्म है।
0: इस इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके ने मंच से एक भाषण भी दिया और ये कहा कि अगर लोग अपनी मांगों को लेकर मजबूती से खड़े रहे, डरे नहीं, तो लोकतंत्र में बदलाव संभव है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, याद रखना कॉकरोच से पंगा मत लेना। सुनिए,
3: ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है।
0: भाषण के दौरान अभिजीत दीपके भावुक होकर मंच पर घुटनों के बल बैठ गए। इसके बाद प्रदर्शनकारी एक दूसरे को गले लगाने लगे, वहां इसे इंसाफ का जश्न मनाया गया। इस दौरान अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और अभी पहला विकेट गिरा है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सुनिए,
3: ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है, यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूं, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहाँ पर 45 डिग्री की धूप में बैठे हुए थे।
0: मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्री की कुर्सी कभी आसान नहीं रही। 2014 से अब तक 4 नेता इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन कोई भी एक बार में पूरा 5 साल का कार्यकाल शिक्षा मंत्री के रूप में पूरा नहीं कर पाया। सबसे पहले स्मृति ईरानी मई 2014 में शिक्षा मंत्री बनी, करीब 2 साल बाद जुलाई 2016 के कैबिनेट विस्तार में उन्हें इस मंत्रालय से हटाकर कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई। उनकी जगह प्रकाश जावड़ेकर ने शिक्षा मंत्रालय संभाला, लगभग 3 साल तक जिम्मेदारी निभाई, लेकिन साल 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें दोबारा शिक्षा मंत्रालय नहीं मिला। इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री बने, लेकिन जुलाई 2021 में स्वास्थ्य कारणों, खासकर कोविड के बाद आई परेशानियों के चलते उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। फिर धर्मेंद्र प्रधान ने 7 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय की कमान संभाली और वो मोदी सरकार के सबसे लंबे समय तक शिक्षा मंत्री रहे, 1845 दिन तक शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन नीट पेपर लीक, छात्रों के आंदोलन और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच आज उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। यहां एक संयोग ये भी है कि मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्रालय छोड़ने वाले तीनों मंत्रियों, स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल और धर्मेंद्र प्रधान को जुलाई महीने में ही इस मंत्रालय से विदाई मिली। यानी पिछले 12 सालों का इतिहास यही बताता है कि मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री का पद सबसे चुनौतीपूर्ण मंत्रालयों में रहा है।
3: हमारी सभी मांगों को मांग लिया गया है, इसलिए जंतर मंतर का प्रदर्शन हम यही समाप्त कर रहे हैं। लेकिन जो वादा है आप लोगों से, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तो सभी लोग शांतिपूर्वक अपने घर लौटे, आराम करें, खुशी मनाए और जरूर से उन परिवारों को याद करें जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने बच्चों को खोया।
0: यहां यह भी देखना होगा कि इस्तीफा कब हुआ। तब हुआ जब इससे पहले सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कड़े कदम है वो उठाने की कोशिश शुरू कर दी थी। 15 मई 2026 को शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि 2027 से नीट परीक्षा कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड में कराई जाएगी ताकि परीक्षा को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। इसके बाद 16 जून को नीट परीक्षा से पहले पेपर लीक अफवाहों को रोकने के लिए टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया गया और मैसेज एडिट करने की सुविधा भी बंद कर दी गई। बढ़ते दबाव के बीच 23 जुलाई को शिक्षा मंत्रालय में बड़े प्रशासनिक बदलाव हुए। शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाया गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की। फिर इसके बाद अगले दिन 24 जुलाई को सरकार ने पेपर लीक रोकने वाले कानून में बदलाव को मंजूरी दी। नए प्रावधानों में ऐसे मामलों की सुनवाई 3 महीने के अंदर पूरी करने, दोषियों को 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया और भी कदम उठाए गए। इसी दिन एनटीए में भी कार्रवाई हुई और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े 47 कर्मचारियों को हटाया गया। साथ ही दिल्ली पुलिस ने परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसटीएफ बनाया। यानी सरकार ने विवाद को शांत करने के लिए कई स्तर पर कदम उठाए, कानून बदला, अधिकारियों पर कार्रवाई की, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की, घोषणा और जांच तेज की। लेकिन छात्रों का मुख्य सवाल सिर्फ सुधारों तक नहीं था, वो चाहते थे जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो। आखिर अगर इतने बच्चों की जान गई है पेपर लीक की वजह से और री एग्जाम की वजह से तो जवाबदेही कोई तो लेगा। और लगातार विरोध आंदोलन, बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और इस इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक ने भी इसे युवाओं की जीत बताया है। देखिए
4: जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवा खड़े हुए उन सबका सम्मान करता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी आगे भी। ये जो शक्ति है लोकतंत्र की वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से।
0: अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। तो इस इस्तीफे के बाद सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत हुई जिसमें इसमें सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हुए। इस बैठक के बाद कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संगठन अच्छे विश्वास के साथ आंदोलन वापस ले रहा है और उम्मीद करता है कि सरकार बातचीत में तय हुई बातों को तय सीमा, जो समय सीमा है, उसमें लागू करेगी। सुनिए।
5: जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे FIRs जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में, वो FIRs विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकेंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो FIRs फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 FIRs दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे FIRs की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे।
6: ये इनकी डिमांड्स थी, मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सब से कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े।
7: कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें। हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई हैं। आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे। हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था, और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें।
0: सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की तीनों मांगों को मान लिया। इनमें पहली मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मांग पूरी हुई। सीजेपी की दूसरी बड़ी मांग थी आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस हों, माना गया, सरकार ने सहमति जताई। पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि सरकार ने भरोसा दिया है कि प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में करीब 15 से 20 एफआईआर दर्ज होने की जानकारी है और उनकी कॉपी भी प्रदर्शनकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। सीजेपी की तीसरी मांग थी कि पेपर लीक विवाद के बाद आत्महत्या करने वाले जो छात्र हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। सरकार ने इस मांग पर भी सकारात्मक रुख दिखाया है, यानी सारी मांगे सरकार ने बिना शर्त स्वीकार कर ली। और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर बैठे सभी प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर खाली करने के लिए कहा है और जंतर मंतर के आसपास बंद किए गए जो 18 मेट्रो स्टेशन थे उन मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट भी खोल दिए गए। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
8: सीजेपी के प्रोटेस्ट के चलते पिछले 3 दिनों से लगातार बंद पड़े दिल्ली मेट्रो के गेट को जो है वो फिलहाल खोला गया है। 3 मेट्रो स्टेशन है जिसमें राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और मंडी हाउस के गेट्स को जो है वो खोल दिया गया। ये तस्वीरें राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की है जहां पर तमाम जो स्टूडेंट्स पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर जुटे हुए थे, मेट्रो स्टेशन बंद होने के चलते उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब फिलहाल ये गेट जो है वो खोले गए हैं। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तमाम जो सुबह से ही जितने प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस, जंतर मंतर और हजारों की भीड़ आज सुबह से ही जो है वो जंतर मंतर पर देखने को मिल रही थी, जैसे ही रेजिग्नेशन आया उसके बाद से ही लोगों में एक जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा था। उसके बाद से अब धीरे धीरे तमाम जो स्टूडेंट्स दिल्ली और अलग अलग इलाकों से जो है वो आए थे वो फिलहाल अब धीरे धीरे मेट्रो के जरिए जो है वो वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं।
0: जिस जंतर मंतर से कुछ दिन पहले तक सरकार के खिलाफ नारे गूंज रहे थे आज वही तस्वीर बदल गई, वही मंच, वही भीड़, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग। जहां कल तक प्रदर्शन था आज वहां जश्न था, जहां मांग थी इस्तीफे की वहां आज धन्यवाद और जीत के नारे थे। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर तैनात पुलिसकर्मियों का भी मुंह मीठा कर रहे थे, यानी नीट पेपर लीक से शुरू हुई ये लड़ाई आज एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में बदल गई और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही विपक्ष ने इसे सरकार की जवाबदेही बताया, प्रदर्शनकारियों ने इसे अपने आंदोलन की सफलता कहा। देखिए

0: पिछले 12 साल के कार्यकाल में शायद पहली बार केंद्र सरकार खुद को युवाओं के गुस्से और विपक्ष के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पा रही थी। नीट पेपर लीक मामले में बीजेपी सरकार एक साथ दो मोर्चों पर लड़ने में नाकाम हो गई। पहला मोर्चा था जंतर मंतर, जहां गुस्से से तमतमाए चेहरे लिए हजारों युवा सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार खड़े थे।
1: मुझे क्या लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप सरकार को तय करना है वो इस्तीफा लेते या नहीं लेते, अगर नहीं लेते तो हमारा आंदोलन जारी रहे।
0: और दूसरा मोर्चा था देश की संसद, जहां पूरा विपक्ष सरकार को एक पल भी चैन से बैठने नहीं दे रहा था। संसद का मानसून सत्र युवाओं के गुस्से की आग में सूखा जा रहा था। विपक्ष के नेता पुलिस द्वारा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से आग बबूला थे। और आखिरकार करीब 36 दिनों बाद सीजेपी को वो मिल गया जिसकी वो मांग कर रहे थे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस सफलता का जश्न सीजेपी ही नहीं बल्कि वो सभी विपक्षी नेता मना रहे हैं जिन्होंने छात्रों की मांगों को लेकर संसद को सिर पर उठाया हुआ था।
2: The first one and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked.
3: They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend.
0: जिस सरकार ने अभी तक राजनीतिक दबाव में किसी मंत्री से इस्तीफा ना लिया हो, उस सरकार के शिक्षा मंत्री ने खुद इस्तीफा दे दिया। ये एक बड़ी राजनीतिक घटना है और ऐसा तभी मुमकिन हो पाया जब युवाओं के मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं ने भी संसद और सड़क एक कर दी।
4: हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत बहुत बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेन ज़ी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है आप लोगों का संघर्ष रंग लाया, धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है।
5: प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सीजेपी और विपक्ष के नेता एक बड़ी सफलता मान रहे हैं और इस सफलता का श्रेय युवा प्रदर्शनकारियों और विपक्ष के एक ऐसे अलिखित गठबंधन को जाता है जिसका तोड़ खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो गया था। सरकार पर राजनीतिक और नैतिक दोनों तरह का दबाव था। सोनम वांगचुक का अनशन और हजारों की संख्या में जुटे युवाओं के तीखे सवाल सरकार पर नैतिक दबाव डाल रहे थे। मुख्य रूप से मांग दो ही थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई। सरकार के लिए इन मांगों को पूरा करना एक चुनौती बन गया था। दूसरी तरफ विपक्ष ने संसद की कार्यवाही को पूरी तरह से ठप कर दिया था। पिछले 5 दिनों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं चल पाई। विपक्ष की नारेबाजी सदन के अंदर ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी दिखी।
6: जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए।
7: अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो, क्या है वो स्टेप्स, मारपीट हुई है। ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको।
0: संसद में सरकार को घेरने के बाद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया था। इस अति संवेदनशील इलाके में विपक्षी नेताओं का ऐसा जमघट लगा की सुरक्षा एजेंसियों तक के होश उड़ गए। विपक्ष ने केंद्र सरकार से युवा प्रदर्शनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज पर सवाल पूछे, आंसू गैस के इस्तेमाल पर घेरा और सोनम वांगचुक का अनशन खुलवाने की अपील की। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए इस धरना प्रदर्शन से सख्ती से निपटा गया।
8: सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनार्की हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठीचार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रखा जाए।
9: बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया, हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं, हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है।
0: विपक्ष और प्रदर्शनकारियों के नैतिक और राजनीतिक दबाव का ही असर था कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत शुरू की और साथ ही साथ सोनम वांगचुक के अनशन को खत्म करवाने की कोशिशें शुरू हुई। दोनों ही मंत्रियों ने सोनम वांगचुक से अस्पताल में मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि प्रदर्शनकारियों की मांगे मान ली जाए।
10: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पहले खबरें आ रही थीं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और न ही उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा। इन खबरों के बीच 23 जुलाई को अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। इस खबर के बीच विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ एक नया चक्रव्यूह रचा और राहुल गांधी शाम होते होते विपक्षी नेताओं के साथ सड़क पर उतर गए। वो इंडिया गेट तक मार्च करना चाहते थे लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने गांधी स्मृति पर जाकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार की नीति पर सवाल उठाए।
11: 12 साल से तो अघोषित इमरजेंसी है, 12 साल से अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई, अधिकार खत्म कर दिए गए, लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने की कोई कमी नहीं रखी, संविधान मिटाने की व्यवस्था किया गया, सारी संस्थाओं को कैद किया गया, तो आप उठा करके देखिए क्या स्थिति है। तो जब आप पूरी की पूरी डेमोक्रेसी खत्म कर लोगे तो फिर रास्ता क्या बचता है।
12: सरकार से छोटी सी मांग है कि आप शिक्षा मंत्री जो कि 120 जो कि रिकॉर्ड पे है पेपर लीक उसके लिए जिम्मेवार हैं, उनका इस्तीफा लीजिए, उसके बाद संसद में बहस हो, चर्चा हो, जो कमियां हैं खामियां हैं सरकार की तरफ से उसमें सुधार हो।
0: विपक्षी नेताओं के इस हंगामे के बीच दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के उस ट्वीट को पूरी तरह से नकार दिया जिसमें कहा गया था कि 23 जुलाई की रात जंतर मंतर पर पुलिस का बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। माना गया कि कुछ होने वाला था जो विपक्ष के हंगामे के बीच टाल दिया गया। और उधर जंतर मंतर पर बेखबर प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी का दौर जारी था। हालांकि इस दौरान खबर आई कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की अपील पर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है क्योंकि सरकार ने उनकी मांगे मानने का आश्वासन दिया है।
10: अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहां आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे ये आश्वासन दिया।
0: और फिर देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सेल्फी वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए पेपर लीक पर सख्त कानून लाने की बात कही।
13: फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा।
0: पीएम मोदी के इस वीडियो संबोधन के आने के बाद माना गया कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। अगले ही दिन कैबिनेट ने पेपर लीक पर संशोधन बिल लाने का ऐलान कर दिया जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और सख्त सजा का ऐलान किया गया।
14: दिस इज अ कंप्लीट आई वॉश द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और अ लॉ। जस्ट इमेजिन दे आर ब्रिंगिंग अ लॉ आफ्टर नो डिस्कशन नो डेलिब्रेशन नथिंग एट ऑल। What is going to be the credibility of that law? How is it going to change people's lives? वो ही नहीं सकता है।
0: इसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के नेताओं के साथ दूसरे राउंड की बातचीत शुरू की जिससे ये पता चला कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा बाकी मांगों पर सरकार राजी है लेकिन जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहे।
1: प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दिखे या एक सोनम वांगचुक सरकार नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है।
15: धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।
0: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत में फंसी वो गरारी थी जिसके ठीक होने पर ही गाड़ी आगे बढ़ती और फिर 25 जुलाई दोपहर 2:18 पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया और इसी के साथ जश्न का एक नया दौर शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
16: कभी कभी लोकतंत्र में एक आवाज सिर्फ आवाज नहीं रहती, वो एक सवाल बन जाती है और जब सवाल लाखों युवाओं की उम्मीदों से जुड़ जाए तो उनकी गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है। नीट पेपर लीक से शुरू हुई ये लड़ाई पहले जंतर मंतर के धरने तक पहुंची और आज इस कहानी का बड़ा मोड़ तब आया जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। इस इस्तीफे के बाद आज जंतर मंतर पर जश्न था, नारे थे और इस दौरान एक नया शब्द सुनाई दिया, जेन जीत है। यानी जेन जी नहीं, जेन जीत है, यानी वो पीढ़ी जिसे अक्सर सिर्फ सोशल मीडिया और ट्रेंड्स के से जोड़कर देखा जाता था, उसने दिखाया कि असली मुद्दों पर खड़ा होना, उन पर सवाल पूछना, बदलाव की मांग करना उसकी पहचान है। आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए।

0: जंतर मंतर पर कल रात तक किसी को नहीं पता था कि ये प्रदर्शन 25 जुलाई की शाम तक खत्म हो जाएगा। कल रात भी हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मोर्चे पर मौजूद थे और उनके नेता आगे की रणनीति बनाने में जुटे थे, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण था। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी नेताओं की बैठक होने वाली थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर फाइनल बातचीत होनी थी, और सीजेपी नेताओं का रुख प्रधान के इस्तीफे पर अटका हुआ था।
1: And I'm very sure, अगर हम ऐसे ही पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर होगा।
0: सीजेपी के प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया था कि अगर 72 घंटों के अंदर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो 20 जुलाई की तरह ही एक बार फिर संसद तक मार्च होगा। सरकार ने इस मांग पर शनिवार दोपहर तक का समय मांगा था। सरकार पर इस आंदोलन को खत्म करने का दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अगर दोबारा संसद मार्च होता और उसमें पुलिस की सख्त कार्रवाई होती तो हालात बद से बदतर हो सकते थे। हालात को काबू में रखने के लिए कल रात से ही जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और ज्यादा मजबूत कर दिया गया था। आज सुबह सुबह ही सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि उन्हें टाइफाइड हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये ऐलान भी किया कि प्रदर्शन जारी रहेगा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ये खत्म नहीं होगा।
1: जैसे कि आप सबको पता था, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, तो ब्लड रिपोर्ट्स आ गए एंड आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद टाइफाइड और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। रोज सुबह और शाम को आईवीज लग रहे हैं, बट आई रियली वांट टू थैंक ऑल द कॉकरोचेस जो पूरे देश भर में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस मूवमेंट को इतना सक्सेसफुल बना दिया है आप लोगों ने। अ बिग बिग थैंक यू टू ऑल एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर मेकिंग दिस मूवमेंट सच अ बिग बिग सक्सेस। एंड आई एम वेरी श्योर, अगर हम ऐसे ही पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर होगा।
0: माना जा रहा था कि आज दोपहर 3:30 बजे सीजेपी नेताओं के साथ जो बैठक होनी है उसमें कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन इस बैठक से पहले ही बड़ी खबर आ गई। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया और एक्स पर एक पत्र लिखकर इस्तीफे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहते। आरोप लगाया कि छात्रों को गुमराह किया जा रहा है और वो पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम को देखकर व्यथित हैं। उनका मानना है कि जंतर मंतर पर जो कुछ हो रहा है उसका फायदा राष्ट्र विरोधी ताकतें उठा सकती हैं। अपने

0: आंखें चमक उठी, उन्हें वो मिल गया जिसके लिए वो पिछले 36 दिनों से लड़ रहे थे, पुलिस की लाठियां खा रहे थे। और इस सफलता की गरज जंतर मंतर के मंच से दिखी और ऐलान हुआ, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा। तो मुझे कोई भी हीरो नहीं बनाएगा, नारे लगेंगे भारत माता की जय के।
0: प्रधान के इस्तीफे के बाद एक बात और साफ हो गई कि कोई और संसद मार्च नहीं होने जा रहा है। सरकार ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें प्रदर्शनकारी नेताओं की तरफ से पक्का वादा चाहिए था। इसीलिए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी नेताओं की जो बैठक तय हुई थी वो तय समय पर हुई। इस बैठक के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सीजेपी ने वो ऐलान किया जिसके लिए सरकार पिछले 5 दिनों से लगी हुई थी। धरना खत्म होने के इस ऐलान के बाद तो सरकार को ऐसा लगा जैसे दिल्ली की आबोहवा शांत हो गई है। पिछले 5 दिनों से नई दिल्ली का पूरा क्षेत्र युवाओं के गुस्से से दहक रहा था और इसकी तपिश संसद में महसूस की जा रही थी। धरना खत्म होने का ऐलान हुआ तो सब कुछ शांत हो गया। ये तूफान के गुजर जाने के बाद की शांति थी, जिसमें उपद्रव का दंश भी था और सफलता का शोर भी। धरना खत्म होने के ऐलान के साथ ही जंतर मंतर पर मिठाई खाने खिलाने का दौर शुरू हो गया। म्यूजिक पर थिरकते नौजवान नजर आने लगे, मंच जोशीले नारों से गूंज उठा। सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने भी अब राहत की सांस ली और माइक से ऐलान किया गया कि प्रदर्शनकारियों की मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब वो अपने घरों को लौट जाएं। प्रदर्शन के खत्म होने के बाद दिल्ली के जिन मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था उन्हें खोल दिया गया, ताकि प्रदर्शनकारी धीरे धीरे अपने घर लौट जाएं। मांगे मान ली गई थी। सरकार को युवा शक्ति ने घुटनों पर ला दिया, मिशन पूरा हो चुका था, इसलिए धरना स्थल खाली होने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और सहानुभूति का नया नियम यह है कि जब तक दुख का कोई वीडियो प्रूफ ना हो, लोग संवेदना की पहली किश्त भी जारी नहीं करते। नमस्कार।
3: पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर 50 दिन से जारी छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। सरकार ने छात्रों की सारी शर्तें मान ली है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन अब सवाल उस मुद्दे का है जिसकी वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ। क्या पेपर लीक अब रुकेंगे? क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की हिम्मत अब कोई नहीं करेगा?

छात्रों की मांग, कॉकरोच पार्टी का अनशन, राहुल गांधी की जिद, विपक्ष का प्रदर्शन, आखिरकार शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट की। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए कुछ यूं लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। जंतर

0: अंतर पर पिछले 50 दिनों से चल रहे ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के भारी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सौंपते ही कांग्रेस जनता पार्टी झूम उठी। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: अतः से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा।
0: आज सरकार के साथ कांग्रेस जनता पार्टी के तीसरे राउंड की बैठक थी, जिसमें सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना पक्ष रखना था, लेकिन बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बात हुई। सरकार ने तीनों शर्तें मानी और आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया।
3: भारत माता की।
4: मेरे ख्याल से इन्होंने जो भी बात रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
0: सरकार के सामने कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मांगे रखी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई ना हो।
5: सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो गारंटी है रिटर्न में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये FIR के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि क्या सिर्फ एक चेहरे के बदलने से भारत का परीक्षा तंत्र सुधर पाएगा या फिर छात्रों को न्याय मिलने तक ये आंदोलन एक नया रूप लेगा। आज तक ब्यूरो।
6: शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद प्रहलाद जोशी का पहला बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। इसके साथ साथ उन्होंने इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेने की बात भी कही है, इसका निर्वहन करने की उन्होंने बात कही है। कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा, पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश के नए एजुकेशन सिस्टम में काफी तरक्की हुई है और 12 सालों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं।
7: अभी अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी।
6: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही छात्र आंदोलन तो खत्म हुआ, लेकिन अभी इस मुद्दे पर सियासी खेल बचा है। सोमवार को एक बार फिर मानसून सत्र की शुरुआत होगी, संसद खुलेगा, जहां पर बड़े घमासान के आसार हैं।
8: छात्र खुश हैं, विपक्ष खुश है।
2: सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।
5: खुश है कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए।
8: लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरा गतिरोध खत्म हो जाएगा? क्योंकि सड़क पर तो जंग खत्म हो गई है, लेकिन संसद में लड़ाई अभी बाकी है।
9: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे।
10: ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
8: सरकार ने पेपर लीक को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसे सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है, लेकिन इस ड्राफ्ट के साथ मॉनसून सत्र में घमासान का नया चैप्टर खुलने वाला है, क्योंकि सरकार जहां पेपर लीक पर चर्चा पर लगातार जोर दे रही थी तो वहीं विपक्ष के लिए चर्चा की पहली शर्त ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। ऐसे में क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में पेपर लीक पर चर्चा होगी?
11: पैलेट गन्स वर फायर एट देम, टियर गैस वर फायर एट देम, दे वर बीटन विद लाठीज, दे हैड इंजरीज, सीरियस इंजरीज, बट दे डिड नॉट बेंड, द गवर्नमेंट हैड टू बेंड टू देयर विल।
12: आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी, लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा।
13: जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी।
8: उधर दिपके भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है,
14: ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है।
8: सड़क पर पेपर लीक की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब एक लड़ाई संसद में होनी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
6: लीक के खिलाफ शनिवार को भी देश भर में प्रदर्शन दिखे, जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया खबर आई उसके बाद से जश्न मनता हुआ दिखाई दिया। कई शहरों में विरोध उग्र दिख रहा था और अब सवाल बड़ा यह है कि ऐसे शहर आंदोलन की चिंता ने इस्तीफा जो है ये करवाया है, इसके पीछे क्या क्या वजह रही है, इनसाइड स्टोरी बताते हैं।

0: दिल्ली की तरह लखनऊ में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी झूम उठते हैं, विरोध जश्न में बदल जाता है।
1: इसके अलावा
2: पैरामिलिट्री के जो जवान है वो अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी है उनको घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही कनॉट प्लेस पर जबरदस्त भीड़ जो थी देखी जा रही थी। मेट्रो से तमाम लोग आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन को खोला गया, उसके बाद की ये तस्वीर है कि किस तरीके से कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे थे। अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो उनको वापस जाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इनर सर्कल की तस्वीर है, अभी भी आपको जबरदस्त प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में माहौल खराब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अब तमाम लोगों से ये अपील कर रही है कि वो अपने घर जो है वो वापस जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं।
0: देश के बाकी राज्यों की तरह पेपर लीक के खिलाफ छात्रों में लखनऊ में आक्रोश था, जिसमें वो छात्र छात्राएं शामिल हुए जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
3: ना घर से पता गया है?
4: नहीं,
3: घर पे नहीं बोला है?
4: नहीं,
3: घर पे क्या बोला है?
4: अभी जाकर बता देंगे, हमें पता नहीं था कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
3: अच्छा, अब रास्ते से निकले देखा कि हो रहा है, पहुंच गए? आक्रोश देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे?
4: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए हम उनको जानते भी नहीं थे।
0: लखनऊ में जहां प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन प्रयागराज में इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, वहीं कुछ ने तोड़फोड़। हालांकि पुलिस ने यहां संयम से काम लिया और कार्रवाई नहीं की। ऐसा ही हंगामा पटना में भी देखने को मिला, यहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो जाती। पुलिस पर पथराव हुआ जिसके जवाब में लाठीचार्ज पुलिस ने किया।
5: ये लोग कहाँ से हैं सर?
6: कहाँ से? पटना के ही है, लोकल है जो कि
5: बाहर से भी पकड़ा रहे, बाहर के लोग भी,
6: बाहर से भी आया है, बाहर से भी। तो आप लोग को भी तो ऊपर चलाया, हम लोग को ऊपर भी चलाया, वही तो पकड़ा है। चलिए चलिए, उपद्रवी है ना
7: यहाँ पर, धरना प्रदर्शन सब विद्यार्थी लोग है जो ढेला देखिए तो ढेला चलाए, उससे फोड़ फाड़ दिए,
8: चोट भी लगा।
7: यहाँ हम तो रोड पर थे तो उधर भाग गए, ऊपर थे इसमें न थे, इसमें होगा तो हो ही गया, हम उस सुलभ शौचालय में भाग गए थे।
0: बिहार के सिवान में प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ, पुलिस ने बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पूर्णिया में भी सड़कें रणभूमि बन गई, अलग अलग संगठनों ने मिलकर पैदल मार्च निकाला लेकिन फिर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस ने बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन जब बात नहीं बनी और बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खुशी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभी उनकी एक मांग पूरी हुई, वो अब चाहते हैं कि पूरा शिक्षा तंत्र सुधरे।
9: पहली बार इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने और मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और देख लो,
10: ये मेरा दोस्त है, इसके पापा ने बोली थी कि तुम जा तो रहे हो घर, जब भी आना, जब इस्तीफा लेके आना, और मैम इस्तीफा लेके हम घर जाएंगे।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन इस आंदोलन का असली मकसद तब पूरा होगा जब शिक्षा के पूरे शैक्षिक तंत्र में सुधार होगा।
11: पार्टी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है लेकिन अब कांग्रेस जनता पार्टी का क्या होगा? क्या अब और मुद्दों पर कांग्रेस जनता पार्टी उतरेगी, प्रोटेस्ट करेगी? तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं।
12: आई का कॉकरोच पर एक बयान, फिर सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान और फिर जंतर मंतर पर 50 दिनों तक चला आंदोलन। जिनकी मांगों को सरकार ने मान लिया।
8: नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले ले। देश का युवा बहुत समझदार है, ये वही युवा है जिसको दो महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात भी रख सकते हैं। तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है, आई थिंक ये मेन आर पॉइंट।
13: इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने के वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा।
12: आज अभिजीत दिपके की माँ की आंखें खुशी से नम हैं, पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
14: डर लग रहा था ना मुझे, अभी सर को ऐसे उठा के ले गए सुबह सुबह में, अभी ये बैठा था इसको कुछ करेंगे, उस बहुत डर लग रहा था, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं मालूम नहीं था ना, इतना अभी आगे क्या क्या होता है।
15: गरीब लोगों के लिए उसका लगाव और उनके प्रतिभूति सहानुभूति उसके दिल में है, तो वो कोई तो भी अच्छा ही काम करेगा, उसके हम पीछे रहेंगे जो भी अच्छा काम करेगा।
12: एक अनोखे ड्रामे से सोशल मीडिया से शुरू हुई ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची, जहां छात्रों के मन की बात को सरकार ने भी समझा। आज तक ब्यूरो।
11: अब बात गुजरात की करेंगे, क्योंकि गुजरात में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। अहमदाबाद, सूरत जैसे शहर इस समय आपदा की चपेट में है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। नवसारी में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हो गई।
16: गुजरात इस समय आसमानी आफत झेल रहा है। पिछले 2 दिनों में दक्षिण गुजरात के इलाकों में इतनी बरसात हुई है कि दशकों पुराने रिकॉर्ड टूट गए, शहर पानी में डूब गए, गांवों का भी बुरा हाल है। अहमदाबाद हो या वलसाड या फिर सूरत, हर जगह मॉनसून अपने साथ मुसीबत लेकर आया है।
17: अहमदाबाद के कई इलाकों में अभी भी जल जमाव की स्थिति है। 2 दिन में 20 इंच बारिश के कारण अहमदाबाद के काफी सारे इलाके जो है जलमग्न हुए थे। अभी हम जो है घुमा इलाका है अहमदाबाद का, जहां पे जलदीप 3 जलदीप 4 ये सोसाइटियां आई हुई हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। जिस तरह से जो है पानी की निकासी नहीं हो रही, 2 दिन में पहले बारिश हुई थी 20 इंच, पर कल से जो है बारिश बंद हुई, फिर भी जो है वो जल जमाव अभी भी देखने को मिल रहा है।
16: नवसारी, वलसाड, सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा, तापी और डांग, ये वो जिले हैं जहां मॉनसून का आक्रमण हुआ है।
17: अहमदाबाद में बारिश का जोर कम हुआ है, पर जल निकासी का इश्यू अभी भी लग रहा है। पूरे अहमदाबाद में जो है वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं, जल जमाव जो है हो चुका है। ये घुमा एरिया है अहमदाबाद का, जहाँ पे ये मुख्य रास्ता है, मुख्य रास्ते पे जो है ये हालत है, जो मुख्य रास्तों पे पानी भर चुका है, हर जगह पे जो है पानी देखने को मिल रहा है। लोगों को अगर बाहर निकलना है अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, तो यही पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है।
16: अहमदाबाद में बारिश ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2000 के बाद पहली बार अहमदाबाद में 24 घंटे के अंदर इतनी बरसात हुई थी जितनी अब हुई है। साल 2000 में अहमदाबाद में एक दिन में 328 mm बारिश हुई थी। 23 जुलाई 2026 को 294 mm बारिश दर्ज की गई। अहमदाबाद के बोपल में 23 और 24 जुलाई के बीच 491 mm से ज्यादा बारिश हुई है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है। अहमदाबाद शहर पर आसमानी अटैक हुआ तो भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने अहमदाबाद में 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। सेना के अलावा स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात की गई हैं। प्रभावित इलाकों से अब तक 38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है।
18: तेज बारिश हुई है, हैवी रेनफॉल साउथ गुजरात में खास तौर पर, जिसमें वलसाड, नौसारी, डांग, सूरत और दमन ये सब इलाके में काफी भारी बारिश हुई है। उसके वजह से फ्लडिंग हुई, एनडीआरएफ की टीम्स को वहां भेजा गया है, मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाया गया है और एडिशनल टीम्स जो है डिमांड की गई। ओडिशा से हमने 4 टीम एयरलिफ्ट की है और गुजरात में अभी 2 अहमदाबाद में, 1 नवसारी में, 1 सूरत में तैनात की गई है।
16: अहमदाबाद के बोपल इलाके में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सड़कों पर उतरे। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा था। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत की, जमीनी हकीकत को जाना परखा और फिर आश्वासन दिया कि सरकार हर तरह से सहयोग करेगी, जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। उधर वलसाड में गुजरात से डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ग्राउंड पर उतरे। वलसाड में मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही मची है। 12,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। हर्ष सांघवी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनके घर बार देखे और अफसरों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए। सूरत की सड़कों पर अब गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। नाव से ही अफसरों की टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और स्थिति की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। नवसारी जिले की नदियों में आई भीषण बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन इसके साथ ही तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। कावेरी नदी में आई बाढ़ से कर्णदेवी इलाके में 9 लोग बह गए थे, जिनमें से अब तक 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें गांव के आसपास नदी और खेतों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आज तक ब्यूरो।
11: बाद पहाड़ों के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत आई है। पहाड़ी इलाकों में मुसीबत दोगुनी हो जाती है क्योंकि बारिश के साथ साथ पहाड़ दरकने लगते हैं। चंबा में कार पर मलबा गिरा जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है।
16: मैदानी इलाके मूसलाधार प्रहार से तरबतर है तो वहीं पहाड़ों पर दोहरी मार पड़ रही है। यहाँ बारिश के साथ साथ पहाड़ भी टूट रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला वीडियो चंबा के भरमौर का है, जहां खड़मुख में एनएचपीसी परियोजना के पास अचानक पहाड़ दरकने लगा। देखते देखते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। पहाड़ों से पत्थरों की बरसात किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी, लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त ये भयानक लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। चंबा के ही जनजातीय इलाके पांगी में कुड्डू नाला के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरा जिसकी चपेट में कार आ गई। उस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
19: जो उदयपुर से पांगी की ओर जा रहे थे और वहां मार्ग में उदयपुर के आगे एक कड़ू नाला से पहले एक स्थान पर पहाड़ दरकने की वजह से उनकी पूरी गाड़ी पहाड़ के नीचे आ गई, जिसमें गाड़ी में सवार 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग सुरक्षित जो है वो वहां पर बच पाए हैं।
16: तबाही का ये सिलसिला यही नहीं रुका। पांगी को चंबा से जोड़ने वाले साच पास पर बादल फटने से भारी तबाही मची है। भारी बारिश की वजह से सतुरंडी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। रानीकोट और कार्थ नाला के पास भी बादल फटने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और विभागीय टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द स्थिति बहाल की जा सके, लेकिन लगातार खराब मौसम इसमें बड़ी बाधा बन रहा है। चंबा प्रशासन ने अलर्ट किया है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने तक कोई भी व्यक्ति साच पास की तरफ जाने का जोखिम न उठाए। सिर्फ हिमाचल नहीं, जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में बारिश और फ्लैश फ्लड से लोग परेशान हैं। कठुआ में अचानक आई बाढ़ में एक शख्स फंस गया, जिसको निकालने के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अपनी जान पर खेलकर जवानों ने पानी में फंसे शख्स को सुरक्षित निकाल लिया। भारी बारिश की वजह से उरी, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामूला जिलों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ है। फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है।
20: जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर जारी है और पिछले 3 से 4 दिन से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ जगहों पे तबाही बहुत ज्यादा है, इसमें जम्मू के राजौरी और पुंछ इलाके हैं, लेकिन अब जेहलम भी जो है उबाल पे है। जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, अभी फ्लड डिक्लेरेशन मार्क जेहलम ने क्रॉस कर लिया है और अभी हालात ये हैं कि जैसे आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन जेहलम का अगर फ्लड की बात करें तो श्रीनगर में जो बारिश हो रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी कश्मीर में जो क्लाउड बस्ट होते हैं और बारिश होती है, वही पानी जो है जेहलम में आता है और फिर वही फ्लड ला सकता है। यही कहानी हमने 2014 में देखी और अभी जैसे आप देख सकते हैं कल से तकरीबन 2 से 3 फीट तक इसका पानी बढ़ा है।
16: भारी बारिश की वजह से बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। झेलम नदी भी खतरे के निशान पर पहुंच गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे से झेलम का पानी घट रहा है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
11: ईरान अमेरिका टकराव अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हमले और तेज किए जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और खाड़ी देशों में चेतावनी जारी कर चुका है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ट्रंप से अहम मुलाकात होने जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की अब निगाहें हैं।

0: भीषण बमबारी, तबाही भारी। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ बातचीत जारी। फिर तल्ख हुए अमेरिका ईरान, हॉर्मुज में भी घमासान। हर बीतते दिन के साथ अमेरिका और ईरान के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर रहा है। ताजा हमलों में उसने ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें बरसाई हैं। इनमें बंदर अब्बास, तेहरान और अहवाज जैसे शहर शामिल हैं। अहवाज खुजस्तान प्रांत की राजधानी है और ईरान के तेल उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। ईरान का दावा है कि अहवाज पर 40 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिका के इस हमले से ईरान के रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने पिछले 48 घंटों में ईरान के जिन शहरों में बमबारी की है उनमें बंदर अब्बास, जास्क, कोनारक, सुझा, ताफ्त, खोंडाब, खुर्रमाबाद, अहवाज, खुर्रम शहर, अनारक, फिरोजाबाद और उम्मीदिये शामिल हैं। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान को बख्शने के मूड में नहीं है। सीजफायर टूटने के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब अमेरिका की मिसाइलों ने ईरान में तबाही न मचाई हो। वॉशिंगटन में कल रात मीडिया ने इस युद्ध के बारे में जब उनसे सवाल किए तो उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, लेकिन लगता है कि तेहरान फिलहाल कोई डील करने के मूड में नहीं है।
1: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy, and that's you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet, but they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys.
0: माना कि बातचीत चल रही है और मिसाइलों के बीच भी मुलाकात के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, लेकिन अगर कोई डील नहीं हुई तो आने वाले दिनों में क्या युद्ध और भीषण होगा। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वहां वह राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।

धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। कहा, पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा जिम्मेदारी। अमित शाह बोले, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से अधिक देश अहम। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने खत्म किया आंदोलन। दिपके ने कहा, लोकतंत्र की जीत, जंतर मंतर पर छात्रों का जश्न। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीठ। राहुल गांधी ने कहा, सालों से शिक्षा व्यवस्था पर हमला, जितनी गलती मोदी की संघ की भी उतनी ही। अखिलेश बोले, सरकार को झुकना ही था। पटना में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव गिरफ्तार। गांधी मैदान में छात्रों के प्रदर्शन में हुए थे शामिल। सीजेएम कोर्ट में पेशी भी हुई। गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात। नवसारी और सूरत में बुरा हाल। अब तक 56 लोगों की मौत। असम में भी 61 की गई जान। पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर 50 दिन से जारी छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। सरकार ने छात्रों की सारी शर्तें मान ली है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन अब सवाल उस मुद्दे का है जिसकी वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ। क्या पेपर लीक अब रुकेंगे? क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की हिम्मत अब कोई नहीं करेगा?

0: छात्रों की मांग, कॉकरोच पार्टी का अनशन, राहुल गांधी की जिद, विपक्ष का प्रदर्शन, आखिरकार शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट की। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए कुछ यूं लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाए, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। जंतर मंतर पर पिछले 50 दिनों से चल रहे ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के भारी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सौंपते ही कॉकरोच जनता पार्टी झूम उठी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: अतः से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा।
0: आज सरकार के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के तीसरे राउंड की बैठक थी, जिसमें सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना पक्ष रखना था, लेकिन बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कॉकरोच पार्टी और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बात हुई। सरकार ने तीनों शर्तें मानी और आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया।
3: भारत माता की।
4: मेरे ख्याल से इन्होंने जो भी बात रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
0: सरकार के सामने कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मांगें रखी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई ना हो।
5: सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो गारंटी है रिटर्न में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये FIRs के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि क्या सिर्फ एक चेहरे के बदलने से भारत का परीक्षा तंत्र सुधर पाएगा या फिर छात्रों को न्याय मिलने तक ये आंदोलन एक नया रूप लेगा। आज तक ब्यूरो।
6: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही छात्र आंदोलन तो खत्म हुआ, लेकिन अभी इस मुद्दे पर सियासी खेल बचा है। सोमवार को एक बार फिर मानसून सत्र की शुरुआत होगी, संसद खुलेगा, जहां पर बड़े घमासान के आसार हैं।
7: छात्र खुश हैं, विपक्ष खुश है।
2: सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।
8: खुश है कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए।
7: लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरा गतिरोध खत्म हो जाएगा? क्योंकि सड़क पर तो जंग खत्म हो गई है, लेकिन संसद में लड़ाई अभी बाकी है।
9: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की, सरकार को लेने पड़ेंगे।
10: ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
7: सरकार ने पेपर लीक को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसे सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है, लेकिन इस ड्राफ्ट के साथ मॉनसून सत्र में घमासान का नया चैप्टर खुलने वाला है, क्योंकि सरकार जहां पेपर लीक पर चर्चा पर लगातार जोर दे रही थी तो वहीं विपक्ष के लिए चर्चा की पहली शर्त ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। ऐसे में क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में पेपर लीक पर चर्चा होगी?
11: पैलेट गन्स वर फायर्ड एट देम, टियर गैस वर फायर्ड एट देम, दे वर बीटन विद लाठीज, दे हैड इंजरीज, सीरियस इंजरीज, बट दे डिड नॉट बेंड, द गवर्नमेंट हैड टू बेंड टू देयर विल।
12: आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी, लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा।
13: जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी।
7: उधर दिपके भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है,
1: ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है।
7: सड़क पर पेपर लीक की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब एक लड़ाई संसद में होनी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
6: लीक के खिलाफ शनिवार को भी देश भर में प्रदर्शन दिखे, जैसे कि जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया खबर आई उसके बाद से जश्न मनता हुआ दिखाई दिया। कई शहरों में विरोध उग्र दिख रहा था और अब सवाल बड़ा यह है कि ऐसे शहर शहर आंदोलन की चिंता ने इस्तीफा जो है ये करवाया है, इसके पीछे क्या क्या वजह रही है, इनसाइड स्टोरी बताते हैं।

0: दिल्ली की तरह लखनऊ में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी झूम उठते हैं, विरोध जश्न में बदल जाता है।
1: पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही कनॉट प्लेस पर जबरदस्त भीड़ जो थी देखी जा रही थी। मेट्रो से तमाम लोग आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन को खोला गया, उसके बाद की ये तस्वीर है कि किस तरीके से कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे थे। अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो उनको वापस जाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इनर सर्कल की तस्वीर है, अभी भी आपको जबरदस्त प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में माहौल खराब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अब तमाम लोगों से ये अपील कर रही है कि वो अपने घर जो है वो वापस जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं।
0: देश के बाकी राज्यों की तरह पेपर लीक के खिलाफ छात्रों में लखनऊ में आक्रोश था, जिसमें वो छात्र छात्राएं शामिल हुए जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित है।
2: ना घर से पता गया है?
3: नहीं,
2: घर पे नहीं बोला है?
3: नहीं,
2: घर पे क्या बोला है?
3: अभी जाकर बता देंगे, हमें पता नहीं था कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
2: अच्छा, अब रास्ते से निकले देखा कि हो रहा है, पहुंच गए?
3: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे हम लोग, जिनके साथ हम यहाँ तक आए हम उनको जानते भी नहीं थे।
0: लखनऊ में जहां प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन प्रयागराज में इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, वहीं कुछ ने तोड़फोड़। हालांकि पुलिस ने यहां संयम से काम लिया और कार्रवाई नहीं। ऐसा ही हंगामा पटना में भी देखने को मिला, यहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो जाती। पुलिस पर पथराव हुआ जिसके जवाब में लाठीचार्ज पुलिस ने किया।
4: ये लोग कहाँ से हैं सर?
5: कहाँ से? पटना के ही है, लोकल है जो
4: क्या राजस्थान। बाहर से भी पकड़ा रहे, बाहर के लोग भी
5: आए, बाहर से भी आया है, बाहर से भी। तो आप लोग को भी तो ऊपर चलाया, हम लोग को ऊपर भी चलाया, वही तो पकड़ाया। चलिए चलिए, उपद्रवी है ना।
6: यहाँ पर धरना प्रदर्शन सब विद्यार्थी लोग है, जो ढेला देखिए तो ढेला चलाए, उसे फोड़ फाड़ दिए,
7: चोट भी लगा।
6: यहाँ हम तो रोड पर थे तो उधर भाग गए, ऊपर थे इसमें न थे, इसमें होगा तो हो ही गया, हम उस सुलभ शौचालय में भाग गए थे।
0: बिहार के सिवान में प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ, पुलिस ने बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पूर्णिया में भी सड़कें रणभूमि बन गई, अलग अलग संगठनों ने मिलकर पैदल मार्च निकाला लेकिन फिर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस ने बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन जब बात नहीं बनी और बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खुशी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभी उनकी एक मांग पूरी हुई, वो अब चाहते हैं कि पूरा शिक्षा तंत्र सुधरे।
8: पहली बार इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने और मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और देख लो,
9: ये मेरा दोस्त है, इसके पापा ने बोली थी कि तुम जा तो रहे हो, घर जब भी आना, जब इस्तीफा लेके आना, और मैम इस्तीफा लेके हम घर जाएंगे।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन इस आंदोलन का असली मकसद तब पूरा होगा जब शिक्षा के पूरे शैक्षिक तंत्र में सुधार होगा।
10: के खिलाफ छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है लेकिन अब कांग्रेस जनता पार्टी का क्या होगा? क्या अब और मुद्दों पर कांग्रेस जनता पार्टी उतरेगी, प्रोटेस्ट करेगी? तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं।
11: सीजेआई का कॉकरोच पर एक बयान, फिर सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान और फिर जंतर मंतर पर 50 दिनों तक चला आंदोलन। जिनकी मांगों को सरकार ने मान लिया।
7: नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले ले। देश का युवा बहुत समझदार है, ये वही युवा है जिसको दो महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं रख सकते। तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है, आई थिंक ये मेन आर पॉइंट।
12: इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने के वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा।
11: आज अभिजीत दिपके की माँ की आंखें खुशी से नम हैं, पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
13: डर लग रहा था ना मुझे, अभी सर को ऐसे उठा के ले गए सुबह सुबह में, अभी ये बैठा था इसको कुछ करेंगे, उस बहुत डर लग रहा था, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं मालूम नहीं था ना, इतना अभी आगे क्या क्या होता है।
14: गरीब लोगों के लिए उसका लगाव और उनके प्रतिभूति सहानुभूति उसके दिल में है, तो वो कोई तो भी अच्छा ही काम करेगा, उसके हम पीछे रहेंगे जो भी अच्छा काम करेगा।
11: एक अनोखे ड्रामे से सोशल मीडिया से शुरू हुई ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची, जहां छात्रों के मन की बात को सरकार ने भी समझा। आज तक ब्यूरो।
10: अब बात गुजरात की करेंगे, क्योंकि गुजरात में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। अहमदाबाद, सूरत जैसे शहर इस समय आपदा की चपेट में है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। नवसारी में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हो गई।
15: गुजरात इस समय आसमानी आफत झेल रहा है। पिछले 2 दिनों में दक्षिण गुजरात के इलाकों में इतनी बरसात हुई है कि दशकों पुराने रिकॉर्ड टूट गए, शहर पानी में डूब गए, गांवों का भी बुरा हाल है। अहमदाबाद हो या वलसाड़ या फिर सूरत, हर जगह मॉनसून अपने साथ मुसीबत लेकर आया है।
16: अहमदाबाद के कई इलाकों में अभी भी जल जमाव की स्थिति है। 2 दिन में 20 इंच बारिश के कारण अहमदाबाद के काफी सारे इलाके जो है जलमग्न हुए थे। अभी हम जो है घुमा इलाका है अहमदाबाद का, जहां पे जलदीप 3, जलदीप 4 ये सोसाइटियां आई हुई हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। जिस तरह से जो है पानी की निकासी नहीं हो रही, 2 दिन में पहले बारिश हुई थी 20 इंच, पर कल से जो है बारिश बंद हुई, फिर भी जो है वो जल जमाव अभी भी देखने को मिल रहा है।
15: नवसारी, वलसाड, सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा, तापी और डांग, ये वो जिले हैं जहां मॉनसून का आक्रमण हुआ है।
16: अहमदाबाद में बारिश का जोर कम हुआ है, पर जल निकासी का इश्यू अभी भी लग रहा है। पूरे अहमदाबाद में जो है वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं, जल जमाव जो है हो चुका है। ये गुमा एरिया है अहमदाबाद का, जहाँ पे ये मुख्य रास्ता है, मुख्य रास्ते पे जो है ये हालत है, जो मुख्य रास्तों पे पानी भर चुका है, हर जगह पे जो है पानी पानी देखने को मिल रहा है। लोगों को अगर बाहर निकलना है अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, तो यही पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है।
15: अहमदाबाद में बारिश ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2000 के बाद पहली बार अहमदाबाद में 24 घंटे के अंदर इतनी बरसात हुई थी जितनी अब हुई है। साल 2000 में अहमदाबाद में एक दिन में 328 mm बारिश हुई थी। 23 जुलाई 2026 को 294 mm बारिश दर्ज की गई। अहमदाबाद के बोपल में 23 और 24 जुलाई के बीच 491 mm से ज्यादा बारिश हुई है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है। अहमदाबाद शहर पर आसमानी अटैक हुआ तो भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने अहमदाबाद में 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। सेना के अलावा स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात की गई हैं। प्रभावित इलाकों से अब तक 38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है।
17: तेज बारिश हुई है, हैवी रेनफॉल साउथ गुजरात में खासतौर पर, जिसमें वलसाड, नौसारी, डांग, सूरत और दमन, ये सब इलाके में काफ़ी भारी बारिश हुई है। उसके वजह से फ्लडिंग हुई, एनडीआरएफ की टीम्स को वहाँ भेजा गया है, मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और एडिशनल टीम्स जो है डिमांड की गई। उड़ीसा से हमने 4 टीम एयरलिफ्ट की है और गुजरात में अभी 2 अहमदाबाद में, 1 नवसारी में, 1 सूरत में तैनात की गई है।
15: अहमदाबाद के बोपल इलाके में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सड़कों पर उतरे। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा था। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत की, जमीनी हकीकत को जाना परखा और फिर आश्वासन दिया कि सरकार हर तरह से सहयोग करेगी, जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। उधर वलसाड में गुजरात से डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ग्राउंड पर उतरे। वलसाड में मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही मची है। 12,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। हर्ष सांघवी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनके घर बार देखे और अफसरों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए। सूरत की सड़कों पर अब गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। नाव से ही अफसरों की टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और स्थिति की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। नवसारी जिले की नदियों में आई भीषण बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन इसके साथ ही तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। कावेरी नदी में आई बाढ़ से कर्णदेवी इलाके में 9 लोग बह गए थे, जिनमें से अब तक 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें गांव के आसपास नदी और खेतों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आज तक ब्यूरो।
10: बाद पहाड़ों की हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत आई है। पहाड़ी इलाकों में मुसीबत दोगुनी हो जाती है क्योंकि बारिश के साथ साथ पहाड़ दरकने लगते हैं। चंबा में एक कार पर मलबा गिरा जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है।
15: मैदानी इलाके मूसलाधार प्रहार से तरबतर है तो वहीं पहाड़ों पर दोहरी मार पड़ रही है। यहाँ बारिश के साथ साथ पहाड़ भी टूट रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला वीडियो चंबा के भरमौर का है, जहां खड़मुख में एनएचपीसी परियोजना के पास अचानक पहाड़ दरकने लगा। देखते ही देखते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। पहाड़ों से पत्थरों की बरसात किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी, लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त ये भयानक लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। चंबा के ही जनजातीय इलाके पांगी में कुड्डू नाला के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरा जिसकी चपेट में कार आ गई। उस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
18: जो उदयपुर से पांगी की ओर जा रहे थे और वहां मार्ग में उदयपुर के आगे कड़ू नाला से पहले एक स्थान पर पहाड़ दरकने की वजह से उनकी पूरी गाड़ी पहाड़ के नीचे आ गई, जिसमें गाड़ी में सवार 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोगों सुरक्षित जो है वो वहां पर बच पाए हैं।
15: तबाही का ये सिलसिला यही नहीं रुका। पांगी को चंबा से जोड़ने वाले साच पास पर बादल फटने से भारी तबाही मची है। भारी बारिश की वजह से सतुरंडी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। रानीकोट और कार्थ नाला के पास भी बादल फटने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और विभागीय टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द स्थिति बहाल की जा सके, लेकिन लगातार खराब मौसम इसमें बड़ी बाधा बन रहा है। चंबा प्रशासन ने अलर्ट किया है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने तक कोई भी व्यक्ति साच पास की तरफ जाने का जोखिम ना उठाए। सिर्फ हिमाचल नहीं, जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में बारिश और फ्लैश फ्लड से लोग परेशान हैं। कठुआ में अचानक आई बाढ़ में एक शख्स फंस गया, जिसको निकालने के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अपनी जान पर खेलकर जवानों ने पानी में फंसे शख्स को सुरक्षित निकाल लिया। भारी बारिश की वजह से उरी, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामूला जिलों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ है। फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है।
19: जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर जारी है और पिछले 3 से 4 दिन से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ जगहों पे तबाही बहुत ज्यादा है, इसमें जम्मू के राजौरी और पुंछ इलाके हैं, लेकिन अब जेहलम भी जो है उबाल पे है। जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, अभी फ्लड डिक्लेरेशन मार्क जेहलम ने क्रॉस कर लिया है और अभी हालात ये है कि जैसे आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन जेहलम का अगर फ्लड की बात करें तो श्रीनगर में जो बारिश हो रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी कश्मीर में जो क्लाउड बस्ट होते हैं और बारिश होती है, वही पानी जो है जेहलम में आता है और फिर वही फ्लड ला सकता है। यही कहानी हमने 2014 में देखी और अभी जैसे आप देख सकते हैं कल से तकरीबन 2 से 3 फीट तक इसका पानी बढ़ा है।
15: भारी बारिश की वजह से बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। झेलम नदी भी खतरे के निशान पर पहुंच गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे से झेलम का पानी घट रहा है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
10: ईरान अमेरिका टकराव अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हमले और तेज किए जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और खाड़ी देशों में चेतावनी जारी कर चुका है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ट्रंप से अहम मुलाकात होने जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की अब निगाहें हैं।

भीषण बमबारी, तबाही भारी। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ बातचीत जारी। फिर तल्ख हुए अमेरिका ईरान, हॉर्मुज में भी घमासान। हर बीतते दिन के साथ अमेरिका और ईरान के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर रहा है। ताजा हमलों में उसने ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें बरसाई। इनमें बंदर अब्बास, तेहरान और अहवाज जैसे शहर शामिल हैं। अहवाज खुजस्तान प्रांत की राजधानी है और ईरान के तेल उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। ईरान का दावा है कि अहवाज पर 40

0: इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने पिछले 48 घंटों में ईरान के जिन शहरों में बमबारी की है उनमें बंदर अब्बास, जास्क, कोनारक, सुझा, ताफ्त, खोंडाब, खुर्रमाबाद, अहवाज, खुर्रम शहर, अनारक, फिरोजाबाद और उम्मीदिये शामिल है। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान को बख्शने के मूड में नहीं है। सीजफायर टूटने के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब अमेरिका की मिसाइलों ने ईरान में तबाही न मचाई हो। वॉशिंगटन में कल रात मीडिया ने इस युद्ध के बारे में जब उनसे सवाल किए तो उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, लेकिन लगता है कि तेहरान फिलहाल कोई डील करने के मूड में नहीं है।
1: Or there's a smarter strategy, and that's you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet, but they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys.
0: माना कि बातचीत चल रही है और मिसाइलों के बीच भी मुलाकात के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। लेकिन अगर कोई डील नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में क्या युद्ध और भीषण होगा? इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वहां वह राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।

धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। कहा, पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा जिम्मेदारी। अमित शाह बोले, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से अधिक देश अहम। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने खत्म किया आंदोलन। दिपके ने कहा, लोकतंत्र की जीत, जंतर मंतर पर छात्रों का जश्न। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीठ। राहुल गांधी ने कहा, सालों से शिक्षा व्यवस्था पर हमला, जितनी गलती मोदी की संघ की भी उतनी ही। अखिलेश बोले, सरकार को झुकना ही था। पटना में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव गिरफ्तार। गांधी मैदान में छात्रों के प्रदर्शन में हुए थे शामिल। सीजेएम कोर्ट में पेशी भी हुई। गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात। नवसारी और सूरत में बुरा हाल। अब तक 56 लोगों की मौत। असम में भी 61 की गई जान। पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर 50 दिन से जारी छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। सरकार ने छात्रों की सारी शर्तें मान ली है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन अब सवाल उस मुद्दे का है जिसकी वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ। क्या पेपर लीक अब रुकेंगे? क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की हिम्मत अब कोई नहीं करेगा?

0: जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। जंतर मंतर पर पिछले 50 दिनों से चल रहे ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के भारी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सौंपते ही कांग्रेस जनता पार्टी झूम उठी। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: अतः से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा।
0: आज सरकार के साथ कांग्रेस जनता पार्टी के तीसरे राउंड की बैठक थी, जिसमें सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना पक्ष रखना था, लेकिन बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बात हुई। सरकार ने तीनों शर्तें मानी और आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया।
3: भारत माता की।
4: मेरे ख्याल से इन्होंने जो रिवाज रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
0: सरकार के सामने कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मांगे रखी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई ना हो।
5: सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो गारंटी है, रिटर्न में वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूजडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूजडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग FIRs के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि क्या सिर्फ एक चेहरे के बदलने से भारत का परीक्षा तंत्र सुधर पाएगा या फिर छात्रों को न्याय मिलने तक ये आंदोलन एक नया रूप लेगा। आज तक ब्यूरो।
6: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही छात्र आंदोलन तो खत्म हुआ, लेकिन अभी इस मुद्दे पर सियासी खेल बचा है। सोमवार को एक बार फिर मानसून सत्र की शुरुआत होगी, संसद खुलेगा, जहां पर बड़े घमासान के आसार हैं।
7: छात्र खुश हैं, विपक्ष खुश है।
2: सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।
8: खुश है कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए।
7: लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरा गतिरोध खत्म हो जाएगा? क्योंकि सड़क पर तो जंग खत्म हो गई है, लेकिन संसद में लड़ाई अभी बाकी है।
9: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे।
10: ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
7: सरकार ने पेपर लीक को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसे सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है, लेकिन इस ड्राफ्ट के साथ मॉनसून सत्र में घमासान का नया चैप्टर खुलने वाला है, क्योंकि सरकार जहां पेपर लीक पर चर्चा पर लगातार जोर दे रही थी तो वहीं विपक्ष के लिए चर्चा की पहली शर्त ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। ऐसे में क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में पेपर लीक पर चर्चा होगी?
11: Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will.
12: आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा।
13: जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी।
7: उधर दीपके भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है,
14: ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है।
7: सड़क पर पेपर लीक की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब एक लड़ाई संसद में होनी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
6: लीक के खिलाफ शनिवार को भी देश भर में प्रदर्शन दिखे, जैसे कि जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया खबर आई उसके बाद से जश्न मनता हुआ दिखाई दिया। कई शहरों में विरोध उग्र दिख रहा था और अब सवाल बड़ा यह है कि ऐसे शहर शहर आंदोलन की चिंता ने इस्तीफा जो है ये करवाया है, इसके पीछे क्या क्या वजह रही है, इनसाइड स्टोरी बताते हैं।

छात्रों की मांग, कॉकरोच पार्टी का अनशन, राहुल गांधी की जिद, विपक्ष का प्रदर्शन, आखिरकार शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट की। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए कुछ यूं लिखा।

0: दिल्ली की तरह लखनऊ में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी झूम उठते हैं, विरोध जश्न में बदल जाता है।
1: पैरामिलिट्री के जो जवान है वो अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी है उनको घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही कनॉट प्लेस पर जबरदस्त भीड़ जो थी देखी जा रही थी। मेट्रो से तमाम लोग आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन को खोला गया, उसके बाद की ये तस्वीर है कि किस तरीके से कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे थे। अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो उनको वापस जाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इनर सर्कल की तस्वीर है, अभी भी आपको जबरदस्त प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में माहौल खराब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अब तमाम लोगों से ये अपील कर रही है कि वो अपने घर जो है वो वापस जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं।
0: देश के बाकी राज्यों की तरह पेपर लीक के खिलाफ छात्रों में लखनऊ में आक्रोश था, जिसमें वो छात्र छात्राएं शामिल हुए जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित है।
2: ना घर से पता गया है?
3: नहीं,
2: घर पे नहीं बोला
3: है?
2: घर पे क्या बोला है?
3: अभी जाकर बता देंगे, हमें पता नहीं था कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
2: अच्छा, अब रास्ते से निकले देखा कि हो रहा है, पहुंच गए? आक्रोश देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे?
3: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए हम उनको जानते भी नहीं थे।
0: लखनऊ में जहां प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन प्रयागराज में इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, वहीं कुछ ने तोड़फोड़। हालांकि पुलिस ने यहां संयम से काम लिया और कार्रवाई नहीं। ऐसा ही हंगामा पटना में भी देखने को मिला, यहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो जाती। पुलिस पर पथराव हुआ जिसके जवाब में लाठीचार्ज पुलिस ने किया।
4: ये लोग कहाँ से हैं सर?
5: कहाँ से? पटना के ही है, लोकल है जो कि
4: बाहर से भी पकड़ा रहे। बाहर के लोग
5: बाहर से भी आया है, बाहर से भी। तो आप लोग को भी तो ऊपर चलाया, हम लोग को ऊपर भी चलाया, वही तो पकड़ाया। चलिए चलिए, उपद्रवी है ना।
6: यहाँ पर धरना प्रदर्शन सब विद्यार्थी लोग है जो ढेला देखिए तो ढेला चलाए, उससे फोड़ फाड़ दिए,
7: चोट भी लगा।
6: यहाँ हम तो रोड पर थे तो उधर भाग गए, ऊपर थे इसमें न थे, इसमें होगा तो होइएगा, हम उस सुलभ शौचालय में भाग गए थे।
0: बिहार के सिवान में प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ, पुलिस ने बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पूर्णिया में भी सड़कें रणभूमि बन गई, अलग अलग संगठनों ने मिलकर पैदल मार्च निकाला लेकिन फिर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस ने बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन जब बात नहीं बनी और बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खुशी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभी उनकी एक मांग पूरी हुई, वो अब चाहते हैं कि पूरा शिक्षा तंत्र सुधरे।
8: पहली बार इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने और मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और देख लो,
9: ये मेरा दोस्त है, इसके पापा ने बोली थी कि तुम जा तो रहे हो, घर जब भी आना, जब इस्तीफा लेके आना, और मैम इस्तीफा लेके हम घर जाएंगे।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन इस आंदोलन का असली मकसद तब पूरा होगा जब शिक्षा के पूरे शैक्षिक तंत्र में सुधार होगा।
10: के खिलाफ छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है लेकिन अब कांग्रेस जनता पार्टी का क्या होगा? क्या अब और मुद्दों पर कांग्रेस जनता पार्टी उतरेगी, प्रोटेस्ट करेगी? तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं।
11: सीजेआई का कॉकरोच पर एक बयान, फिर सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान और फिर जंतर मंतर पर 50 दिनों तक चला आंदोलन। जिनकी मांगों को सरकार ने मान लिया।
7: नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले ले। देश का युवा बहुत समझदार है, ये वही युवा है जिसको दो महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात भी रख सकते हैं। तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है, आई थिंक ये मेन आप।
12: इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा।
11: आज अभिजीत दिपके की माँ की आंखें खुशी से नम हैं, पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
13: डर लग रहा था ना मुझे, अभी सर को ऐसे उठा के ले गए सुबह सुबह में, अभी ये बैठा था इसको कुछ करेंगे, उस बहुत डर लग रहा था, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं मालूम नहीं था ना, इतना अभी आगे क्या क्या होता है।
14: गरीब लोगों के लिए उसका लगाव और उनके प्रतिभूति सहानुभूति उसके दिल में है, तो वो कोई तो भी अच्छा ही काम करेगा, उसके हम पीछे रहेंगे जो भी अच्छा काम करेगा।
11: एक अनोखे ड्रामे से सोशल मीडिया से शुरू हुई ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची, जहां छात्रों के मन की बात को सरकार ने भी समझा। आज तक ब्यूरो।
10: अब बात गुजरात की करेंगे, क्योंकि गुजरात में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। अहमदाबाद, सूरत जैसे शहर इस समय आपदा की चपेट में है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। नवसारी में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हो गई।
15: गुजरात इस समय आसमानी आफत झेल रहा है। पिछले 2 दिनों में दक्षिण गुजरात के इलाकों में इतनी बरसात हुई है कि दशकों पुराने रिकॉर्ड टूट गए, शहर पानी में डूब गए, गांवों का भी बुरा हाल है। अहमदाबाद हो या वलसाड़ या फिर सूरत, हर जगह मॉनसून अपने साथ मुसीबत लेकर आया है।
16: अहमदाबाद के कई इलाकों में अभी भी जल जमाव की स्थिति है। 2 दिन में 20 इंच बारिश के कारण अहमदाबाद के काफी सारे इलाके जो है जलमग्न हुए थे। अभी हम जो है गुमा इलाका है अहमदाबाद का, जहां पे जलदीप 3, जलदीप 4 ये सोसाइटियां आई हुई हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। जिस तरह से जो है पानी की निकासी नहीं हो रही, 2 दिन में पहले बारिश हुई थी 20 इंच, पर कल से जो है बारिश बंद हुई, फिर भी जो है वो जल जमाव अभी भी देखने को मिल रहा है।
15: नवसारी, वलसाड़, सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा, तापी और डांग ये वो जिले हैं जहां मॉनसून का आक्रमण हुआ है।
16: अहमदाबाद में बारिश का जोर कम हुआ है, पर जल निकासी का इश्यू अभी भी लग रहा है। पूरे अहमदाबाद में जो है वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं, जल जमाव जो है हो चुका है। ये गुमा एरिया है अहमदाबाद का, जहाँ पे ये मुख्य रास्ता है, मुख्य रास्ते पे जो है ये हालत है, जो मुख्य रास्तों पे पानी भर चुका है, हर जगह पे जो है पानी पानी देखने को मिल रहा है। लोगों को अगर बाहर निकलना है अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, तो यही पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है।
15: अहमदाबाद में बारिश ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2000 के बाद पहली बार अहमदाबाद में 24 घंटे के अंदर इतनी बरसात हुई थी जितनी अब हुई है। साल 2000 में अहमदाबाद में एक दिन में 328 mm बारिश हुई थी। 23 जुलाई 2026 को 294 mm बारिश दर्ज की गई। अहमदाबाद के बोपल में 23 और 24 जुलाई के बीच 491 mm से ज्यादा बारिश हुई है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है। अहमदाबाद शहर पर आसमानी अटैक हुआ तो भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने अहमदाबाद में 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। सेना के अलावा स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात की गई हैं। प्रभावित इलाकों से अब तक 38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है।
17: तेज बारिश हुई है, हैवी रेनफॉल साउथ गुजरात में खासतौर पर, जिसमें वलसाड, नौसारी, डांग, सूरत और दमन, ये सब इलाके में काफ़ी भारी बारिश हुई है। उसके वजह से फ्लडिंग हुई, एनडीआरएफ की टीम्स को वहाँ भेजा गया है, मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाया गया है और एडिशनल टीम्स जो है डिमांड की गई। उड़ीसा से हमने 4 टीम एयरलिफ्ट की है और गुजरात में अभी 2 अहमदाबाद में, 1 नवसारी में, 1 सूरत में तैनात की गई है।
15: अहमदाबाद के बोपल इलाके में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सड़कों पर उतरे। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा था। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत की, जमीनी हकीकत को जाना परखा और फिर आश्वासन दिया कि सरकार हर तरह से सहयोग करेगी, जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। उधर वलसाड में गुजरात से डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ग्राउंड पर उतरे। वलसाड में मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही मची है। 12,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। हर्ष सांघवी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनके घर बार देखे और अफसरों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए। सूरत की सड़कों पर अब गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। नाव से ही अफसरों की टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और स्थिति की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। नवसारी जिले की नदियों में आई भीषण बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन इसके साथ ही तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। कावेरी नदी में आई बाढ़ से कर्णदेवी इलाके में 9 लोग बह गए थे, जिनमें से अब तक 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें गांव के आसपास नदी और खेतों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आज तक ब्यूरो।
10: बाद पहाड़ों की हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत आई है। पहाड़ी इलाकों में मुसीबत दोगुनी हो जाती है क्योंकि बारिश के साथ साथ पहाड़ दरकने लगते हैं। चंबा में कार पर मलबा गिरा जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है।
15: मैदानी इलाके मूसलाधार प्रहार से तरबतर है तो वहीं पहाड़ों पर दोहरी मार पड़ रही है। यहाँ बारिश के साथ साथ पहाड़ भी टूट रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला वीडियो चंबा के भरमौर का है, जहां खड़मुख में एनएचपीसी परियोजना के पास अचानक पहाड़ दरकने लगा। देखते देखते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। पहाड़ों से पत्थरों की बरसात किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी, लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त ये भयानक लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। चंबा के ही जनजातीय इलाके पांगी में कुड्डू नाला के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरा जिसकी चपेट में कार आ गई। उस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
18: जो उदयपुर से पांगी की ओर जा रहे थे और वहाँ मार्ग में उदयपुर के आगे एक कड़ू नाला से पहले एक स्थान पर पहाड़ दरकने की वजह से उनकी पूरी गाड़ी पहाड़ के नीचे आ गई, जिसमें गाड़ी में सवार 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोगों सुरक्षित जो है वो वहाँ पर बच पाए हैं।
15: तबाही का ये सिलसिला यही नहीं रुका। पांगी को चंबा से जोड़ने वाले साच पास पर बादल फटने से भारी तबाही मची है। भारी बारिश की वजह से सतुरंडी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। रानीकोट और कार्थ नाला के पास भी बादल फटने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और विभागीय टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द स्थिति बहाल की जा सके, लेकिन लगातार खराब मौसम इसमें बड़ी बाधा बन रहा है। चंबा प्रशासन ने अलर्ट किया है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने तक कोई भी व्यक्ति साच पास की तरफ जाने का जोखिम ना उठाए। सिर्फ हिमाचल नहीं, जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में बारिश और फ्लैश फ्लड से लोग परेशान हैं। कठुआ में अचानक आई बाढ़ में एक शख्स फंस गया, जिसको निकालने के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अपनी जान पर खेलकर जवानों ने पानी में फंसे शख्स को सुरक्षित निकाल लिया। भारी बारिश की वजह से उरी, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामूला जिलों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ है। फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है।
19: जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर जारी है और पिछले 3 से 4 दिन से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ जगहों पे तबाही बहुत ज्यादा है, इसमें जम्मू के राजौरी और पुंछ इलाके हैं, लेकिन अब जेहलम भी जो है उबाल पे है। जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, अभी फ्लड डिक्लेरेशन मार्क जेहलम ने क्रॉस कर लिया है और अभी हालात ये है कि जैसे आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन जेहलम का अगर फ्लड की बात करें तो श्रीनगर में जो बारिश हो रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी कश्मीर में जो क्लाउड बस्ट होते हैं और बारिश होती है, वही पानी जो है जेहलम में आता है और फिर वही फ्लड ला सकता है। यही कहानी हमने 2014 में देखी और अभी जैसे आप देख सकते हैं कल से तकरीबन 2 से 3 फीट तक इसका पानी बढ़ा है।
15: भारी बारिश की वजह से बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। झेलम नदी भी खतरे के निशान पर पहुंच गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे से झेलम का पानी घट रहा है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
10: ईरान अमेरिका टकराव अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हमले और तेज किए जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और खाड़ी देशों में चेतावनी जारी कर चुका है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ट्रंप से अहम मुलाकात होने जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की अब निगाहें हैं।

0: भीषण बमबारी, तबाही भारी। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ बातचीत जारी। फिर तल्ख हुए अमेरिका ईरान, हॉर्मुज में भी घमासान। हर बीतते दिन के साथ अमेरिका और ईरान के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर रहा है। ताजा हमलों में उसने ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें बरसाई। इनमें बंदर अब्बास, तेहरान और अहवाज जैसे शहर शामिल हैं। अहवाज खुजस्तान प्रांत की राजधानी है और ईरान के तेल उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। ईरान का दावा है कि अहवाज पर 40 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिका के इस हमले से ईरान के रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने पिछले 48 घंटों में ईरान के जिन शहरों में बमबारी की है उनमें बंदर अब्बास, जास्क, कोनारक, सुझा, ताफ्त, खोंडाब, खुर्रमाबाद, अहवाज, खुर्रम शहर, अनारक, फिरोजाबाद और उम्मीदिये शामिल हैं। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान को बख्शने के मूड में नहीं है। सीजफायर टूटने के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब अमेरिका की मिसाइलों ने ईरान में तबाही न मचाई हो। वॉशिंगटन में कल रात मीडिया ने इस युद्ध के बारे में जब उनसे सवाल किए तो उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, लेकिन लगता है कि तेहरान फिलहाल कोई डील करने के मूड में नहीं है।
1: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy, and that's you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet, but they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys.
0: माना कि बातचीत चल रही है और मिसाइलों के बीच भी मुलाकात के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, लेकिन अगर कोई डील नहीं हुई तो आने वाले दिनों में क्या युद्ध और भीषण होगा। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वहां वह राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।

0: धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। कहा, पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा जिम्मेदारी। अमित शाह बोले, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से अधिक देश अहम। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने खत्म किया आंदोलन। दिपके ने कहा, लोकतंत्र की जीत, जंतर मंतर पर छात्रों का जश्न। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीठ। राहुल गांधी ने कहा, सालों से शिक्षा व्यवस्था पर हमला, जितनी गलती मोदी की संघ की भी उतनी ही। अखिलेश बोले, सरकार को झुकना ही था। पटना में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव गिरफ्तार। गांधी मैदान में छात्रों के प्रदर्शन में हुए थे शामिल। सीजेएम कोर्ट में पेशी भी हुई। गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात। नवसारी और सूरत में बुरा हाल। अब तक 56 लोगों की मौत। असम में भी 61 की गई जान। पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर 50 दिन से जारी छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। सरकार ने छात्रों की सारी शर्तें मान ली है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन अब सवाल उस मुद्दे का है जिसकी वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ। क्या पेपर लीक अब रुकेंगे? क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की हिम्मत अब कोई नहीं करेगा?
1: छात्रों की मांग, कॉकरोच पार्टी का अनशन, राहुल गांधी की जिद, विपक्ष का प्रदर्शन, आखिरकार शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट की। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए कुछ यूं लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। जंतर मंतर पर पिछले 50 दिनों से चल रहे ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के भारी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सौंपते ही कॉकरोच जनता पार्टी झूम उठी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
3: अतः से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा।
1: आज सरकार के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के तीसरे राउंड की बैठक थी जिसमें सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना पक्ष रखना था। लेकिन बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया जिसके बाद कॉकरोच पार्टी और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बात हुई। सरकार ने तीनों शर्तें मानी और आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया।
4: मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सब से कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
1: सरकार के सामने कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मांगे रखी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई ना हो।
5: सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो गारंटी है रिटर्न में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये FIRs के बारे में और एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि क्या सिर्फ एक चेहरे के बदलने से भारत का परीक्षा तंत्र सुधर पाएगा या फिर छात्रों को न्याय मिलने तक ये आंदोलन एक नया रूप लेगा। आज तक ब्यूरो।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही छात्र आंदोलन तो खत्म हुआ, लेकिन अभी इस मुद्दे पर सियासी खेल बचा है। सोमवार को एक बार फिर मानसून सत्र की शुरुआत होगी, संसद खुलेगा, जहां पर बड़े घमासान के आसार हैं।
6: छात्र खुश हैं, विपक्ष खुश है।
3: सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।
5: खुश है कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए।
6: लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरा गतिरोध खत्म हो जाएगा? क्योंकि सड़क पर तो जंग खत्म हो गई है, लेकिन संसद में लड़ाई अभी बाकी है।
7: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे।
8: ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
6: सरकार ने पेपर लीक को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है, लेकिन इस ड्राफ्ट के साथ मानसून सत्र में घमासान का नया चैप्टर खुलने वाला है, क्योंकि सरकार जहां पेपर लीक पर चर्चा पर लगातार जोर दे रही थी, तो वहीं विपक्ष के लिए चर्चा की पहली शर्त ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। ऐसे में क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में पेपर लीक पर चर्चा होगी?
9: They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will.
10: आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी, लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा।
11: जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी, और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी।
6: उधर दिपके भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है,
12: ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है।
6: सड़क पर पेपर लीक की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब एक लड़ाई संसद में होनी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
0: लीक के खिलाफ शनिवार को भी देश भर में प्रदर्शन दिखे, जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, खबर आई उसके बाद से जश्न मनता हुआ दिखाई दिया। कई शहरों में विरोध उग्र दिख रहा था, और अब सवाल बड़ा यह है कि ऐसे शहर आंदोलन की चिंता ने इस्तीफा जो है ये करवाया है, इसके पीछे क्या क्या वजह रही है, इनसाइड स्टोरी बताते हैं।

0: दिल्ली की तरह लखनऊ में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी झूम उठते हैं, विरोध जश्न में बदल जाता है।
1: इसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटरी
2: पैरामिलिट्री के जो जवान है वो अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी है उनको घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही कनॉट प्लेस पर जबरदस्त भीड़ जो थी देखी जा रही थी। मेट्रो से तमाम लोग आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन को खोला गया, उसके बाद की ये तस्वीर है कि किस तरीके से कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे थे। अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो उनको वापस जाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इनर सर्कल की तस्वीर है, अभी भी आपको जबरदस्त प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में माहौल खराब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अब तमाम लोगों से ये अपील कर रही है कि वो अपने घर जो है वो वापस जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं।
0: देश के बाकी राज्यों की तरह पेपर लीक के खिलाफ छात्रों में लखनऊ में आक्रोश था, जिसमें वो छात्र छात्राएं शामिल हुए जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
3: ये ना घर से पता गया है? घर पे नहीं बताया?
4: नहीं।
3: घर पे क्या बोला है?
4: अभी जाकर बता देंगे, अभी पता नहीं था।
3: हाँ।
4: कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
3: अच्छा, अब रास्ते से निकले देखा कि हो रहा है, पहुंच गए? आक्रोश देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे?
4: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए हम उनको जानते भी नहीं थे।
0: लखनऊ में जहां प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन प्रयागराज में इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, वहीं कुछ ने तोड़फोड़। हालांकि पुलिस ने यहां संयम से काम लिया और कार्रवाई नहीं की। ऐसा ही हंगामा पटना में भी देखने को मिला, यहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो जाती। पुलिस पर पथराव हुआ जिसके जवाब में लाठीचार्ज पुलिस ने किया।
5: ये लोग कहाँ से हैं सर?
6: कहाँ से? पटना के ही है, लोकल है जो कि
5: बाहर से भी पकड़ा रहे। बाहर के लोग
6: बाहर से भी आया है, बाहर से भी। तो आप लोग को भी ऊपर चलाया, हम लोग ऊपर भी चलाया, वही तो पकड़ाया। चलिए चलिए, उपद्रवी है ना।
7: यहाँ पर धरना प्रदर्शन सब विद्यार्थी लोग है जो ढेला देखिए तो ढेला चलाए, उसे फोड़ फाड़ दिए।
8: चोट भी लगा?
7: यहाँ हम तो रोड पर थे तो उधर भाग गए, ऊपर थे इसमें न थे, इसमें होगा तो हो ही गया। हम उस सुलभ शौचालय में भाग गए थे।
0: बिहार के सिवान में प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ, पुलिस ने बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पूर्णिया में भी सड़कें रणभूमि बन गई, अलग अलग संगठनों ने मिलकर पैदल मार्च निकाला लेकिन फिर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस ने बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन जब बात नहीं बनी और बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खुशी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभी उनकी एक मांग पूरी हुई, वो अब चाहते हैं कि पूरा शिक्षा तंत्र सुधरे।
9: पहली बार इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने और मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और देख लो,
10: ये मेरा दोस्त है, इसके पापा ने बोली थी कि तुम जा तो रहे हो, घर जब भी आना, जब इस्तीफा लेके आना, और मैम इस्तीफा लेके हम घर जाएंगे।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन इस आंदोलन का असली मकसद तब पूरा होगा जब शिक्षा के पूरे शैक्षिक तंत्र में सुधार होगा।
11: के खिलाफ छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन अब कांग्रेस जनता पार्टी का क्या होगा? क्या अब और मुद्दों पर कांग्रेस जनता पार्टी उतरेगी, प्रोटेस्ट करेगी? तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं।
12: CJI का कॉकरोच पर एक बयान, फिर सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान और फिर जंतर मंतर पर 50 दिनों तक चला आंदोलन। जिनकी मांगों को सरकार ने मान लिया।
8: नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले ले। देश का युवा बहुत समझदार है, ये वही युवा है जिसको दो महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं रख सकते, तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है, आई थिंक वी हैव मेड आवर पॉइंट।
13: इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने के वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है, एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा।
12: आज अभिजीत दिपके की माँ की आंखें खुशी से नम हैं, पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
14: डर लग रहा था ना मुझे, अभी सर को ऐसे उठा के ले गए सुबह सुबह में, अभी ये बैठा था इसको कुछ करेंगे, उस बहुत डर लग रहा था, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं मालूम नहीं था ना इतना, अभी आगे क्या क्या होता है।
15: गरीब लोगों के लिए उसका लगाव और उनके प्रतिभूति सहानुभूति उसके दिल में है, तो वो कोई तो भी अच्छा ही काम करेगा, उसके हम पीछे रहेंगे जो भी अच्छा काम करेगा।
12: एक अनोखे ड्रामे से सोशल मीडिया से शुरू हुई ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची, जहां छात्रों के मन की बात को सरकार ने भी समझा। आज तक ब्यूरो।
11: अब बात गुजरात की करेंगे, क्योंकि गुजरात में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। अहमदाबाद, सूरत जैसे शहर इस समय आपदा की चपेट में है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। नवसारी में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हो गई।
16: गुजरात इस समय आसमानी आफत झेल रहा है। पिछले 2 दिनों में दक्षिण गुजरात के इलाकों में इतनी बरसात हुई है कि दशकों पुराने रिकॉर्ड टूट गए, शहर पानी में डूब गए, गांवों का भी बुरा हाल है। अहमदाबाद हो या वलसाड़ या फिर सूरत, हर जगह मॉनसून अपने साथ मुसीबत लेकर आया है।
17: अहमदाबाद के कई इलाकों में अभी भी जल जमाव की स्थिति है। 2 दिन में 20 इंच बारिश के कारण अहमदाबाद के काफी सारे इलाके जो है जलमग्न हुए थे। अभी हम जो है गुमा इलाका है अहमदाबाद का, जहां पे जलदीप 3 जलदीप 4 ये सोसाइटियां आई हुई हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। जिस तरह से जो है पानी की निकासी नहीं हो रही, 2 दिन में पहले बारिश हुई थी 20 इंच, पर कल से जो है बारिश बंद हुई, फिर भी जो है वो जल जमाव अभी भी देखने को मिल रहा है।
16: नवसारी, वलसाड़, सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा, तापी और डांग, ये वो जिले हैं जहां मॉनसून का आक्रमण हुआ है।
17: अहमदाबाद में बारिश का जोर कम हुआ है, पर जल निकासी का इश्यू अभी भी लग रहा है। पूरे अहमदाबाद में जो है वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं, जल जमाव जो है हो चुका है। ये गुमा एरिया है अहमदाबाद का, जहाँ पे ये मुख्य रास्ता है, मुख्य रास्ते पे जो है ये हालत है, जो मुख्य रास्तों पे पानी भर चुका है, हर जगह पे जो है पानी पानी देखने को मिल रहा है। लोगों को अगर बाहर निकलना है अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, तो यही पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है।
16: अहमदाबाद में बारिश ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2000 के बाद पहली बार अहमदाबाद में 24 घंटे के अंदर इतनी बरसात हुई थी जितनी अब हुई है। साल 2000 में अहमदाबाद में एक दिन में 328 mm बारिश हुई थी। 23 जुलाई 2026 को 294 mm बारिश दर्ज की गई। अहमदाबाद के बोपल में 23 और 24 जुलाई के बीच 491 mm से ज्यादा बारिश हुई है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है। अहमदाबाद शहर पर आसमानी अटैक हुआ तो भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने अहमदाबाद में 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। सेना के अलावा स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात की गई है। प्रभावित इलाकों से अब तक 38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है।
18: तेज बारिश हुई है, हैवी रेनफॉल साउथ गुजरात में खास तौर पर, जिसमें वलसाड, नौसारी, डांग, सूरत और दमन, ये सब इलाके में काफ़ी भारी बारिश हुई है। उसके वजह से फ्लडिंग हुई, एनडीआरएफ की टीम्स को वहां भेजा गया है, मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाया गया है और एडिशनल टीम्स जो है डिमांड की गई। उड़ीसा से हमने 4 टीम एयरलिफ्ट की है और गुजरात में अभी 2 अहमदाबाद में, 1 नवसारी में, 1 सूरत में तैनात की गई है।
16: अहमदाबाद के बोपल इलाके में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सड़कों पर उतरे। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा था। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत की, जमीनी हकीकत को जाना परखा और फिर आश्वासन दिया कि सरकार हर तरह से सहयोग करेगी, जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। उधर वलसाड में गुजरात से डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ग्राउंड पर उतरे। वलसाड में मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही मची है। 12,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। हर्ष सांघवी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनके घर बार देखे और अफसरों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए। सूरत की सड़कों पर अब गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। नाव से ही अफसरों की टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और स्थिति की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। नवसारी जिले की नदियों में आई भीषण बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन इसके साथ ही तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। कावेरी नदी में आई बाढ़ से कर्णदेवी इलाके में 9 लोग बह गए थे, जिनमें से अब तक 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें गांव के आसपास नदी और खेतों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आज तक ब्यूरो।
11: बाद पहाड़ों की हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत आई है। पहाड़ी इलाकों में मुसीबत दोगुनी हो जाती है क्योंकि बारिश के साथ साथ पहाड़ दरकने लगते हैं। चंबा में कार पर मलबा गिरा जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है।
16: मैदानी इलाके मूसलाधार प्रहार से तरबतर है तो वहीं पहाड़ों पर दोहरी मार पड़ रही है। यहाँ बारिश के साथ साथ पहाड़ भी टूट रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला वीडियो चंबा के भरमौर का है, जहां खड़मुख में एनएचपीसी परियोजना के पास अचानक पहाड़ दरकने लगा। देखते देखते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। पहाड़ों से पत्थरों की बरसात किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी, लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त ये भयानक लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। चंबा के ही जनजातीय इलाके पांगी में कुड्डू नाला के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरा जिसकी चपेट में कार आ गई। उस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
19: जो उदयपुर से पांगी की ओर जा रहे थे और वहाँ मार्ग में उदयपुर के आगे एक कड़ू नाला से पहले एक स्थान पर पहाड़ दरकने की वजह से उनकी पूरी गाड़ी पहाड़ के नीचे आ गई, जिसमें गाड़ी में सवार 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोगों सुरक्षित जो है वो वहाँ पर बच पाए हैं।
16: तबाही का ये सिलसिला यही नहीं रुका। पांगी को चंबा से जोड़ने वाले साच पास पर बादल फटने से भारी तबाही मची है। भारी बारिश की वजह से सतुरंडी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। रानीकोट और कार्थ नाला के पास भी बादल फटने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और विभागीय टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द स्थिति बहाल की जा सके, लेकिन लगातार खराब मौसम इसमें बड़ी बाधा बन रहा है। चंबा प्रशासन ने अलर्ट किया है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने तक कोई भी व्यक्ति साच पास की तरफ जाने का जोखिम ना उठाए। सिर्फ हिमाचल नहीं, जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में बारिश और फ्लैश फ्लड से लोग परेशान हैं। कठुआ में अचानक आई बाढ़ में एक शख्स फंस गया, जिसको निकालने के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अपनी जान पर खेलकर जवानों ने पानी में फंसे शख्स को सुरक्षित निकाल लिया। भारी बारिश की वजह से उरी, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामूला जिलों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ है। फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है।
20: जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर जारी है और पिछले 3 से 4 दिन से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ जगहों पे तबाही बहुत ज्यादा है, इसमें जम्मू के राजौरी और पुंछ इलाके हैं, लेकिन अब जेहलम भी जो है उबाल पे है। जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, अभी फ्लड डिक्लेरेशन मार्ग जेहलम ने क्रॉस कर लिया है और अभी हालात ये है कि जैसे आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन जेहलम का अगर फ्लड की बात करें तो श्रीनगर में जो बारिश हो रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी कश्मीर में जो क्लाउड बस्ट होते हैं और बारिश होती है, वही पानी जो है जेहलम में आता है और फिर वही फ्लड ला सकता है। यही कहानी हमने 2014 में देखी और अभी जैसे आप देख सकते हैं कल से तकरीबन 2 से 3 फीट तक इसका पानी बढ़ा है।
16: भारी बारिश की वजह से बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। झेलम नदी भी खतरे के निशान पर पहुंच गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे से झेलम का पानी घट रहा है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
11: ईरान अमेरिका टकराव अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हमले और तेज किए जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और खाड़ी देशों में चेतावनी जारी कर चुका है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ट्रंप से अहम मुलाकात होने जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की अब निगाहें हैं।

भीषण बमबारी, तबाही भारी। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ बातचीत जारी। फिर तल्ख हुए अमेरिका ईरान, हॉर्मुज में भी घमासान। हर बीतते दिन के साथ अमेरिका और ईरान के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर रहा है। ताजा हमलों में उसने ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें बरसाई। इनमें बंदर अब्बास, तेहरान और अहवाज जैसे शहर शामिल हैं। अहवाज खुजस्तान प्रांत की राजधानी है और ईरान के तेल उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। ईरान का दावा है कि अहवाज पर 40 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिका के इस हमले से ईरान के रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने पिछले 48 घंटों में ईरान के जिन शहरों में बमबारी की है उनमें बंदर अब्बास, जास्क, कोनारक, सुझा, ताफ्त, खोंडाब, खुर्रमाबाद, अहवाज, खुर्रम शहर, अनारक

0: युद्ध के बारे में जब उनसे सवाल किए तो उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, लेकिन लगता है कि तेहरान फिलहाल कोई डील करने के मूड में नहीं है।
1: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet, but they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys.
0: माना कि बातचीत चल रही है और मिसाइलों के बीच भी मुलाकात के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, लेकिन अगर कोई डील नहीं हुई तो आने वाले दिनों में क्या युद्ध और भीषण होगा। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वहां वह राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।

धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। कहा, पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा जिम्मेदारी। अमित शाह बोले, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से अधिक देश अहम। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने खत्म किया आंदोलन। दिपके ने कहा, लोकतंत्र की जीत, जंतर मंतर पर छात्रों का जश्न। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीठ। राहुल गांधी ने कहा, सालों से शिक्षा व्यवस्था पर हमला, जितनी गलती मोदी की संघ की भी उतनी ही। अखिलेश बोले, सरकार को झुकना ही था। पटना में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव गिरफ्तार। गांधी मैदान में छात्रों के प्रदर्शन में हुए थे शामिल। सीजेएम कोर्ट में पेशी भी हुई। गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात। नवसारी और सूरत में बुरा हाल। अब तक 56 लोगों की मौत। असम में भी 61 की गई जान। पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर 50 दिन से जारी छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। सरकार ने छात्रों की सारी शर्तें मान ली है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन अब सवाल उस मुद्दे का है जिसकी वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ। क्या पेपर लीक अब रुकेंगे? क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की हिम्मत अब कोई नहीं करेगा?

लोगों की मांग कॉकरोच पार्टी का अनशन, राहुल गांधी की जिद, विपक्ष का प्रदर्शन, आखिरकार शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट की। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए कुछ यूं लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। जंतर मंतर पर पिछले 50 दिनों से चल रहे ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के भारी

0: जवाब के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सौंपते ही कांग्रेस जनता पार्टी झूम उठी। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: हर तरह से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा।
0: आज सरकार के साथ कांग्रेस जनता पार्टी के तीसरे राउंड की बैठक थी, जिसमें सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना पक्ष रखना था, लेकिन बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बात हुई। सरकार ने तीनों शर्तें मानी और आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया।
3: मेरे ख्याल से इन्होंने जो बात रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
0: सरकार के सामने कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मांगे रखी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई न हो।
4: सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो गारंटी है रिटर्न में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये FIR के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि क्या सिर्फ एक चेहरे के बदलने से भारत का परीक्षा तंत्र सुधर पाएगा या फिर छात्रों को न्याय मिलने तक ये आंदोलन एक नया रूप लेगा। आज तक ब्यूरो।
5: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही छात्र आंदोलन तो खत्म हुआ, लेकिन अभी इस मुद्दे पर सियासी खेल बचा है। सोमवार को एक बार फिर मानसून सत्र की शुरुआत होगी, संसद खुलेगा, जहां पर बड़े घमासान के आसार हैं।
6: छात्र खुश हैं, विपक्ष खुश है।
2: सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।
4: खुश है कि ये सारे डिमांड एक्सेप्ट हुए।
6: लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरा गतिरोध खत्म हो जाएगा? क्योंकि सड़क पर तो जंग खत्म हो गई है, लेकिन संसद में लड़ाई अभी बाकी है।
7: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे।
8: ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
6: सरकार ने पेपर लीक को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है, लेकिन इस ड्राफ्ट के साथ मानसून सत्र में घमासान का नया चैप्टर खुलने वाला है, क्योंकि सरकार जहां पेपर लीक पर चर्चा पर लगातार जोर दे रही थी, तो वहीं विपक्ष के लिए चर्चा की पहली शर्त ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। ऐसे में क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में पेपर लीक पर चर्चा होगी?
9: Fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will.
10: आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी. लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा.
11: जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है. तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ. युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी.
6: उधर दिपके भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है.
12: ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है. यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है.
6: सड़क पर पेपर लीक की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब एक लड़ाई संसद में होनी बाकी है. आज तक ब्यूरो.
5: लीक के खिलाफ शनिवार को भी देश भर में प्रदर्शन दिखे. जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, खबर आई उसके बाद से जश्न मनता हुआ दिखाई दिया. कई शहरों में विरोध उग्र दिख रहा था और अब सवाल बड़ा यह है कि ऐसे शहर आंदोलन की चिंता ने इस्तीफा जो है ये करवाया है, इसके पीछे क्या क्या वजह रही है. इनसाइड स्टोरी बताते हैं.

0: दिल्ली की तरह लखनऊ में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी झूम उठते हैं, विरोध जश्न में बदल जाता है।
1: पैरामिलिट्री के जो जवान है वो अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी है उनको घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही कनॉट प्लेस पर जबरदस्त भीड़ जो थी देखी जा रही थी। मेट्रो से तमाम लोग आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन को खोला गया, उसके बाद की ये तस्वीर है कि किस तरीके से कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे थे। अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो उनको वापस जाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इनर सर्कल की तस्वीर है, अभी भी आपको जबरदस्त प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में माहौल खराब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अब तमाम लोगों से ये अपील कर रही है कि वो अपने घर जो है वो वापस जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं।
0: देश के बाकी राज्यों की तरह पेपर लीक के खिलाफ छात्रों में लखनऊ में आक्रोश था, जिसमें वो छात्र छात्राएं शामिल हुए जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित है।
2: ना घर से पता गया है?
3: नहीं।
2: घर पे नहीं बोला
3: है? नहीं।
2: घर पे क्या बोला है?
3: अभी जाकर बता देंगे, हमें पता नहीं था कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
2: अच्छा, अब रास्ते से निकले देखा कि हो रहा है, पहुंच गए? आक्रोश देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे?
3: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए हम उनको जानते भी नहीं थे।
0: लखनऊ में जहां प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन प्रयागराज में इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, वहीं कुछ ने तोड़फोड़। हालांकि पुलिस ने यहां संयम से काम लिया और कार्रवाई नहीं। ऐसा ही हंगामा पटना में भी देखने को मिला, यहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो जाती है। पुलिस पर पथराव हुआ जिसके जवाब में लाठीचार्ज पुलिस ने किया।
4: ये लोग कहाँ से हैं सर?
5: कहाँ से? पटना के ही है, लोकल है जो
4: कि बाहर से भी पकड़ा रहे। बाहर के लोग
5: भी आए, बाहर से भी आया है, बाहर से भी। तो आप लोग को भी तो ऊपर चलाया, हम लोग ऊपर भी चलाया, वही तो पकड़ाया। चलिए चलिए, उपद्रवी है ना।
6: यहाँ पर धरना प्रदर्शन सब विद्यार्थी लोग है जो ढेला देखिए तो ढेला चलाए, उससे फोड़ फाड़ दिए,
7: चोट भी लगा।
6: यहाँ हम तो रोड पर थे तो उधर भाग गए, ऊपर थे इसमें न थे, इसमें होगा तो हो ही गया, हम उस सुलभ शौचालय में भाग गए थे।
0: बिहार के सिवान में प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ, पुलिस ने बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पूर्णिया में भी सड़कें रणभूमि बन गई, अलग अलग संगठनों ने मिलकर पैदल मार्च निकाला लेकिन फिर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस ने बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन जब बात नहीं बनी और बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खुशी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभी उनकी एक मांग पूरी हुई, वो अब चाहते हैं कि पूरा शिक्षा तंत्र सुधरे।
8: पहली बार इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने और मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और देख लो,
9: ये मेरा दोस्त है, इसके पापा ने बोली थी कि तुम जा तो रहे हो, घर जब भी आना, जब इस्तीफा लेके आना, और मैम इस्तीफा लेके हम घर जाएंगे।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन इस आंदोलन का असली मकसद तब पूरा होगा जब शिक्षा के पूरे शैक्षिक तंत्र में सुधार होगा।
10: के खिलाफ छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है लेकिन अब कांग्रेस जनता पार्टी का क्या होगा? क्या अब और मुद्दों पर कांग्रेस जनता पार्टी उतरेगी, प्रोटेस्ट करेगी? तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं।
11: आई का कॉकरोच पर एक बयान, फिर सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान और फिर जंतर मंतर पर 50 दिनों तक चला आंदोलन। जिनकी मांगों को सरकार ने मान लिया।
7: नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले ले। देश का युवा बहुत समझदार है, ये वही युवा है जिसको दो महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं रख सकते। तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है, आई थिंक ये मेड आर पॉइंट।
12: इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा।
11: आज अभिजीत दिपके की माँ की आंखें खुशी से नम हैं, पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
13: डर लग रहा था ना मुझे, अभी सर को ऐसे उठा के ले गए सुबह सुबह में, अभी ये बैठा था इसको कुछ करेंगे, उस बहुत डर लग रहा था, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं मालूम नहीं था ना इतना, अभी आगे क्या क्या होता है।
14: गरीब लोगों के लिए उसका लगाव और उनके प्रतिभूति सहानुभूति उसके दिल में है, तो वो कोई तो भी अच्छा ही काम करेगा, उसके हम पीछे रहेंगे जो भी अच्छा काम करेगा।
11: एक अनोखे ड्रामे से सोशल मीडिया से शुरू हुई ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची, जहां छात्रों के मन की बात को सरकार ने भी समझा। आज तक ब्यूरो।
10: अब बात गुजरात की करेंगे, क्योंकि गुजरात में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। अहमदाबाद, सूरत जैसे शहर इस समय आपदा की चपेट में है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। नवसारी में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हो गई।
15: गुजरात इस समय आसमानी आफत झेल रहा है। पिछले 2 दिनों में दक्षिण गुजरात के इलाकों में इतनी बरसात हुई है कि दशकों पुराने रिकॉर्ड टूट गए, शहर पानी में डूब गए, गांवों का भी बुरा हाल है। अहमदाबाद हो या वलसाड या फिर सूरत, हर जगह मॉनसून अपने साथ मुसीबत लेकर आया है।
16: अहमदाबाद के कई इलाकों में अभी भी जल जमाव की स्थिति है। 2 दिन में 20 इंच बारिश के कारण अहमदाबाद के काफी सारे इलाके जो है जलमग्न हुए थे। अभी हम जो है गुमा इलाका है अहमदाबाद का, जहां पे जलदीप 3, जलदीप 4 ये सोसाइटियां आई हुई हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। जिस तरह से जो है पानी की निकासी नहीं हो रही, 2 दिन में पहले बारिश हुई थी 20 इंच, पर कल से जो है बारिश बंद हुई, फिर भी जो है वो जल जमाव अभी भी देखने को मिल रहा है।
15: नवसारी, वलसाड, सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा, तापी और डांग ये वो जिले हैं जहां मॉनसून का आक्रमण हुआ है।
16: अहमदाबाद में बारिश का जोर कम हुआ है, पर जल निकासी का इश्यू अभी भी लग रहा है। पूरे अहमदाबाद में जो है वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं, जल जमाव जो है हो चुका है। ये गुमा एरिया है अहमदाबाद का, जहाँ पे ये मुख्य रास्ता है, मुख्य रास्ते पे जो है ये हालत है, जो मुख्य रास्तों पे पानी भर चुका है, हर जगह पे जो है पानी पानी देखने को मिल रहा है। लोगों को अगर बाहर निकलना है अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, तो यही पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है।
15: अहमदाबाद में बारिश ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2000 के बाद पहली बार अहमदाबाद में 24 घंटे के अंदर इतनी बरसात हुई थी जितनी अब हुई है। साल 2000 में अहमदाबाद में एक दिन में 328 mm बारिश हुई थी। 23 जुलाई 2026 को 294 mm बारिश दर्ज की गई। अहमदाबाद के बोपल में 23 और 24 जुलाई के बीच 491 mm से ज्यादा बारिश हुई है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है। अहमदाबाद शहर पर आसमानी अटैक हुआ तो भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने अहमदाबाद में 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। सेना के अलावा स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात की गई हैं। प्रभावित इलाकों से अब तक 38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है।
17: तेज बारिश हुई है, हैवी रेनफॉल साउथ गुजरात में खासतौर पर, जिसमें वलसाड, नौसारी, डांग, सूरत और दमन, ये सब इलाके में काफी भारी बारिश हुई है। उसके वजह से फ्लडिंग हुई, एनडीआरएफ की टीम्स को वहां भेजा गया है, मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाया गया है और एडिशनल टीम्स जो है डिमांड की गई उड़ीसा से। हमने 4 टीम एयरलिफ्ट की है और गुजरात में अभी 2 अहमदाबाद में, 1 नवसारी में, 1 सूरत में तैनात की गई है।
15: अहमदाबाद के बोपल इलाके में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सड़कों पर उतरे। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा था। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत की, जमीनी हकीकत को जाना परखा और फिर आश्वासन दिया कि सरकार हर तरह से सहयोग करेगी, जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। उधर वलसाड में गुजरात से डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ग्राउंड पर उतरे। वलसाड में मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही मची है। 12,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। हर्ष सांघवी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनके घर बार देखे और अफसरों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए। सूरत की सड़कों पर अब गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। नाव से ही अफसरों की टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और स्थिति की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। नवसारी जिले की नदियों में आई भीषण बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन इसके साथ ही तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। कावेरी नदी में आई बाढ़ से कर्णदेवी इलाके में 9 लोग बह गए थे, जिनमें से अब तक 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें गांव के आसपास नदी और खेतों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आज तक ब्यूरो।
10: बाद पहाड़ों के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत आई है। पहाड़ी इलाकों में मुसीबत दोगुनी हो जाती है क्योंकि बारिश के साथ साथ पहाड़ दरकने लगते हैं। चंबा में कार पर मलबा गिरा जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है।
15: मैदानी इलाके मूसलाधार प्रहार से तरबतर है तो वहीं पहाड़ों पर दोहरी मार पड़ रही है। यहाँ बारिश के साथ साथ पहाड़ भी टूट रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला वीडियो चंबा के भरमौर का है, जहां खड़मुख में एनएचपीसी परियोजना के पास अचानक पहाड़ दरकने लगा। देखते देखते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। पहाड़ों से पत्थरों की बरसात किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी, लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त ये भयानक लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। चंबा के ही जनजातीय इलाके पांगी में कुड्डू नाला के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरा जिसकी चपेट में कार आ गई। उस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
18: जो उदयपुर से पांगी की ओर जा रहे थे और वहां मार्ग में उदयपुर के आगे एक कड़ू नाला से पहले एक स्थान पर पहाड़ दरकने की वजह से उनकी पूरी गाड़ी पहाड़ के नीचे आ गई, जिसमें गाड़ी में सवार 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोगों सुरक्षित जो है वो वहां पर बच पाए हैं।
15: तबाही का ये सिलसिला यही नहीं रुका। पांगी को चंबा से जोड़ने वाले साच पास पर बादल फटने से भारी तबाही मची है। भारी बारिश की वजह से सतुरंडी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। रानीकोट और कार्थ नाला के पास भी बादल फटने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और विभागीय टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द स्थिति बहाल की जा सके, लेकिन लगातार खराब मौसम इसमें बड़ी बाधा बन रहा है। चंबा प्रशासन ने अलर्ट किया है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने तक कोई भी व्यक्ति साच पास की तरफ जाने का जोखिम ना उठाए। सिर्फ हिमाचल नहीं, जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में बारिश और फ्लैश फ्लड से लोग परेशान हैं। कठुआ में अचानक आई बाढ़ में एक शख्स फंस गया, जिसको निकालने के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अपनी जान पर खेलकर जवानों ने पानी में फंसे शख्स को सुरक्षित निकाल लिया। भारी बारिश की वजह से उरी, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामूला जिलों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ है। फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है।
19: जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर जारी है और पिछले 3 से 4 दिन से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ जगहों पे तबाही बहुत ज्यादा है, इसमें जम्मू के राजौरी और पुंछ इलाके हैं, लेकिन अब जेहलम भी जो है उबाल पे है। जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, अभी फ्लड डिक्लेरेशन मार्क जेहलम ने क्रॉस कर लिया है और अभी हालात ये है कि जैसे आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन जेहलम का अगर फ्लड की बात करें तो श्रीनगर में जो बारिश हो रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी कश्मीर में जो क्लाउड बस्ट होते हैं और बारिश होती है, वही पानी जो है जेहलम में आता है और फिर वही फ्लड ला सकता है। यही कहानी हमने 2014 में देखी और अभी जैसे आप देख सकते हैं कल से तकरीबन 2 से 3 फीट तक इसका पानी बढ़ा है।
15: भारी बारिश की वजह से बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। झेलम नदी भी खतरे के निशान पर पहुंच गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे से झेलम का पानी घट रहा है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
10: ईरान अमेरिका टकराव अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हमले और तेज किए जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और खाड़ी देशों में चेतावनी जारी कर चुका है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ट्रंप से अहम मुलाकात होने जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की अब निगाहें हैं।

0: भीषण बमबारी, तबाही भारी। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ बातचीत जारी। फिर तल्ख हुए अमेरिका ईरान, हॉर्मुज में भी घमासान। हर बीतते दिन के साथ अमेरिका और ईरान के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर रहा है। ताजा हमलों में उसने ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें बरसाई। इनमें बंदर अब्बास, तेहरान और अहवाज जैसे शहर शामिल हैं। अहवाज खुजस्तान प्रांत की राजधानी है और ईरान के तेल उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। ईरान का दावा है कि अहवाज पर 40 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिका के इस हमले से ईरान के रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने पिछले 48 घंटों में ईरान के जिन शहरों में बमबारी की है उनमें बंदर अब्बास, जास्क, कोनारक, सुझा, ताफ्त, खोंडाब, खुर्रमाबाद, अहवाज, खुर्रम शहर, अनारक, फिरोजाबाद और उम्मीदिये शामिल हैं। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान को बख्शने के मूड में नहीं है। सीजफायर टूटने के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब अमेरिका की मिसाइलों ने ईरान में तबाही न मचाई हो। वॉशिंगटन में कल रात मीडिया ने इस युद्ध के बारे में जब उनसे सवाल किए तो उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, लेकिन लगता है कि तेहरान फिलहाल कोई डील करने के मूड में नहीं है।
1: And they want to make a deal. I just don't think they're ready yet. But they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys.
0: माना कि बातचीत चल रही है और मिसाइलों के बीच भी मुलाकात के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। लेकिन अगर कोई डील नहीं हुई तो आने वाले दिनों में क्या युद्ध और भीषण होगा? इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वहां वह राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।

धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, कहा पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा जिम्मेदारी। अमित शाह बोले बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से अधिक देश अहम। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने खत्म किया आंदोलन। दिपके ने कहा लोकतंत्र की जीत, जंतर मंतर पर छात्रों का जश्न। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीठ, राहुल गांधी ने कहा सालों से शिक्षा व्यवस्था पर हमला, जितनी गलती मोदी की संघ की भी उतनी ही। अखिलेश बोले सरकार को झुकना ही था। पटना में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव गिरफ्तार, गांधी मैदान में छात्रों के प्रदर्शन में हुए थे शामिल, सीजेएम कोर्ट में पेशी भी हुई। गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात, नवसारी और सूरत में बुरा हाल, अब तक 56 लोगों की मौत, असम में भी 61 की गई जान। पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर 50 दिन से जारी छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। सरकार ने छात्रों की सारी शर्तें मान ली है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन अब सवाल उस मुद्दे का है जिसकी वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ। क्या पेपर लीक अब रुकेंगे? क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की हिम्मत अब कोई नहीं करेगा?

0: लोगों की मांग कॉकरोच पार्टी का अनशन, राहुल गांधी की जिद विपक्ष का प्रदर्शन, आखिरकार शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट की। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए कुछ यूं लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाए, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। जंतर मंतर पर पिछले 50 दिनों से चल रहे ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के भारी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सौंपते ही कॉकरोच जनता पार्टी झूम उठी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा।
0: आज सरकार के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के तीसरे राउंड की बैठक थी, जिसमें सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना पक्ष रखना था, लेकिन बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कॉकरोच पार्टी और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बात हुई। सरकार ने तीनों शर्तें मानी और आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया।
3: भारत माता की।
4: मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिबेट रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
0: सरकार के सामने कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मांगें रखी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई ना हो।
5: सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो गारंटी है रिटर्न में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये FIRs के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि क्या सिर्फ एक चेहरे के बदलने से भारत का परीक्षा तंत्र सुधर पाएगा या फिर छात्रों को न्याय मिलने तक ये आंदोलन एक नया रूप लेगा। आज तक ब्यूरो।
6: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही छात्र आंदोलन तो खत्म हुआ, लेकिन अभी इस मुद्दे पर सियासी खेल बचा है। सोमवार को एक बार फिर मानसून सत्र की शुरुआत होगी, संसद खुलेगा, जहां पर बड़े घमासान के आसार हैं।
7: छात्र खुश हैं, विपक्ष खुश है।
2: सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।
8: खुश है कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए।
7: लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरा गतिरोध खत्म हो जाएगा? क्योंकि सड़क पर तो जंग खत्म हो गई है, लेकिन संसद में लड़ाई अभी बाकी है।
9: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की, सरकार को लेने पड़ेंगे।
10: ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
7: सरकार ने पेपर लीक को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसे सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है, लेकिन इस ड्राफ्ट के साथ मॉनसून सत्र में घमासान का नया चैप्टर खुलने वाला है, क्योंकि सरकार जहां पेपर लीक पर चर्चा पर लगातार जोर दे रही थी तो वहीं विपक्ष के लिए चर्चा की पहली शर्त ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। ऐसे में क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में पेपर लीक पर चर्चा होगी?
11: पैलेट गन्स वर फायर्ड एट देम, टियर गैस वाज फायर्ड एट देम, दे वर बीटन विद लाठीज, दे हैड इंजरीज, सीरियस इंजरीज, बट दे डिड नॉट बेंड, द गवर्नमेंट हैड टू बेंड टू देयर विल।
12: आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी, लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा।
13: जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी।
7: उधर दिपके भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है,
14: ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है।
7: सड़क पर पेपर लीक की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब एक लड़ाई संसद में होनी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
6: लीक के खिलाफ शनिवार को भी देश भर में प्रदर्शन दिखे, जैसे कि जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया खबर आई उसके बाद से जश्न मनता हुआ दिखाई दिया। कई शहरों में विरोध उग्र दिख रहा था और अब सवाल बड़ा यह है कि ऐसे शहर शहर आंदोलन की चिंता ने इस्तीफा जो है ये करवाया है, इसके पीछे क्या क्या वजह रही है, इनसाइड स्टोरी बताते हैं।

0: दिल्ली की तरह लखनऊ में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी झूम उठते हैं, विरोध जश्न में बदल जाता है।
1: पैरामिलिट्री के जो जवान है वो अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी है उनको घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही कनॉट प्लेस पर जबरदस्त भीड़ जो थी देखी जा रही थी। मेट्रो से तमाम लोग आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन को खोला गया, उसके बाद की ये तस्वीर है कि किस तरीके से कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे थे। अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो उनको वापस जाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इनर सर्कल की तस्वीर है, अभी भी आपको जबरदस्त प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में माहौल खराब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अब तमाम लोगों से ये अपील कर रही है कि वो अपने घर जो है वो वापस जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं।
0: देश के बाकी राज्यों की तरह पेपर लीक के खिलाफ छात्रों में लखनऊ में आक्रोश था, जिसमें वो छात्र छात्राएं शामिल हुए जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित है।
2: ना घर से पता गया है?
3: नहीं,
2: घर पे नहीं बोला
3: है? नहीं।
2: घर पे क्या बोला है?
3: अभी जाकर बता देंगे, हमें पता नहीं था कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
2: अच्छा, अब रास्ते से निकले देखा कि हो रहा है, पहुंच गए? आक्रोश देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे?
3: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए हम उनको जानते भी नहीं थे।
0: लखनऊ में जहां प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन प्रयागराज में इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, वहीं कुछ ने तोड़फोड़। हालांकि पुलिस ने यहां संयम से काम लिया और कार्रवाई नहीं। ऐसा ही हंगामा पटना में भी देखने को मिला, यहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो जाती। पुलिस पर पथराव हुआ जिसके जवाब में लाठीचार्ज पुलिस ने किया।
4: ये लोग कहाँ से हैं सर?
5: कहाँ से? पटना के ही है, लोकल है जो कि
4: बाहर से भी पकड़ा रहे। बाहर के लोग
5: बाहर से भी आया है, बाहर से भी। तो आप लोग को भी तो ऊपर चलाया, हम लोग को ऊपर भी चलाया, वही तो पकड़ाया। चलिए चलिए, उपद्रवी है ना।
6: यहाँ पर धरना प्रदर्शन सब विद्यार्थी लोग है जो ढेला देखिए तो ढेला चलाए, उससे फोड़ फाड़ दिए,
7: चोट भी लगा।
6: यहाँ हम तो रोड पर थे तो उधर भाग गए, ऊपर थे इसमें न थे, इसमें होगा तो हो ही गया, हम उस सुलभ शौचालय में भाग गए थे।
0: बिहार के सिवान में प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ, पुलिस ने बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पूर्णिया में भी सड़कें रणभूमि बन गई, अलग अलग संगठनों ने मिलकर पैदल मार्च निकाला लेकिन फिर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस ने बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन जब बात नहीं बनी और बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खुशी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभी उनकी एक मांग पूरी हुई, वो अब चाहते हैं कि पूरा शिक्षा तंत्र सुधरे।
8: पहली बार इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने और मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और देख लो,
9: ये मेरा दोस्त है, इसके पापा ने बोली थी कि तुम जा तो रहे हो, घर जब भी आना, जब इस्तीफा लेके आना, और मैम इस्तीफा लेके हम घर जाएंगे।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन इस आंदोलन का असली मकसद तब पूरा होगा जब शिक्षा के पूरे शैक्षिक तंत्र में सुधार होगा।
10: के खिलाफ छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन अब कांग्रेस जनता पार्टी का क्या होगा? क्या अब और मुद्दों पर कांग्रेस जनता पार्टी उतरेगी, प्रोटेस्ट करेगी? तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं।
11: आई का कॉकरोच पर एक बयान, फिर सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान और फिर जंतर मंतर पर 50 दिनों तक चला आंदोलन। जिनकी मांगों को सरकार ने मान लिया।
7: नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले ले। देश का युवा बहुत समझदार है, ये वही युवा है जिसको दो महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं रख सकते। तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है, आई थिंक ये मेड आप।
12: इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने के वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा।
11: आज अभिजीत दिपके की माँ की आंखें खुशी से नम हैं, पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
13: डर लग रहा था ना मुझे, अभी सर को ऐसे उठा के ले गए सुबह सुबह में, अभी ये बैठा था इसको कुछ करेंगे, उस बहुत डर लग रहा था, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं मालूम नहीं था ना, इतना अभी आगे क्या क्या होता है।
14: गरीब लोगों के लिए उसका लगाव और उनके प्रतिभूति सहानुभूति उसके दिल में है, तो वो कोई तो भी अच्छा ही काम करेगा, उसके हम पीछे रहेंगे जो भी अच्छा काम करेगा।
11: एक अनोखे ड्रामे से सोशल मीडिया से शुरू हुई ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची, जहां छात्रों के मन की बात को सरकार ने भी समझा। आज तक ब्यूरो।
10: अब बात गुजरात की करेंगे, क्योंकि गुजरात में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। अहमदाबाद, सूरत जैसे शहर इस समय आपदा की चपेट में है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। नवसारी में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हो गई।
15: गुजरात इस समय आसमानी आफत झेल रहा है। पिछले 2 दिनों में दक्षिण गुजरात के इलाकों में इतनी बरसात हुई है कि दशकों पुराने रिकॉर्ड टूट गए, शहर पानी में डूब गए, गांवों का भी बुरा हाल है। अहमदाबाद हो या वलसाड़ या फिर सूरत, हर जगह मॉनसून अपने साथ मुसीबत लेकर आया है।
16: अहमदाबाद के कई इलाकों में अभी भी जल जमाव की स्थिति है। 2 दिन में 20 इंच बारिश के कारण अहमदाबाद के काफी सारे इलाके जो है जलमग्न हुए थे। अभी हम जो है गुमा इलाका है अहमदाबाद का, जहां पे जलदीप 3, जलदीप 4 ये सोसाइटियां आई हुई हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। जिस तरह से जो है पानी की निकासी नहीं हो रही, 2 दिन में पहले बारिश हुई थी 20 इंच, पर कल से जो है बारिश बंद हुई, फिर भी जो है वो जल जमाव अभी भी देखने को मिल रहा है।
15: नवसारी, वलसाड़, सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा, तापी और डांग ये वो जिले हैं जहां मॉनसून का आक्रमण हुआ है।
16: अहमदाबाद में बारिश का जोर कम हुआ है, पर जल निकासी का इश्यू अभी भी लग रहा है। पूरे अहमदाबाद में जो है वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं, जल जमाव जो है हो चुका है। ये गुमा एरिया है अहमदाबाद का, जहाँ पे ये मुख्य रास्ता है, मुख्य रास्ते पे जो है ये हालत है, जो मुख्य रास्तों पे पानी भर चुका है, हर जगह पे जो है पानी पानी देखने को मिल रहा है। लोगों को अगर बाहर निकलना है अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, तो यही पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है।
15: अहमदाबाद में बारिश ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2000 के बाद पहली बार अहमदाबाद में 24 घंटे के अंदर इतनी बरसात हुई थी जितनी अब हुई है। साल 2000 में अहमदाबाद में एक दिन में 328 mm बारिश हुई थी। 23 जुलाई 2026 को 294 mm बारिश दर्ज की गई। अहमदाबाद के बोपल में 23 और 24 जुलाई के बीच 491 mm से ज्यादा बारिश हुई है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है। अहमदाबाद शहर पर आसमानी अटैक हुआ तो भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने अहमदाबाद में 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। सेना के अलावा स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात की गई हैं। प्रभावित इलाकों से अब तक 38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है।
17: तेज बारिश हुई है, हैवी रेनफॉल साउथ गुजरात में खासतौर पर, जिसमें वलसाड, नौसारी, डांग, सूरत और दमन, ये सब इलाके में काफी भारी बारिश हुई है। उसके वजह से फ्लडिंग हुई, एनडीआरएफ की टीम्स को वहां भेजा गया है, मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाया गया है और एडिशनल टीम्स जो है डिमांड की गई। उड़ीसा से हमने 4 टीम एयरलिफ्ट की है और गुजरात में अभी 2 अहमदाबाद में, 1 नवसारी में, 1 सूरत में तैनात की गई है।
15: अहमदाबाद के बोपल इलाके में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सड़कों पर उतरे। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा था। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत की, जमीनी हकीकत को जाना परखा और फिर आश्वासन दिया कि सरकार हर तरह से सहयोग करेगी, जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। उधर वलसाड में गुजरात से डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ग्राउंड पर उतरे। वलसाड में मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही मची है। 12,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। हर्ष सांघवी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनके घर बार देखे और अफसरों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए। सूरत की सड़कों पर अब गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। नाव से ही अफसरों की टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और स्थिति की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। नवसारी जिले की नदियों में आई भीषण बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन इसके साथ ही तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। कावेरी नदी में आई बाढ़ से कर्णदेवी इलाके में 9 लोग बह गए थे, जिनमें से अब तक 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें गांव के आसपास नदी और खेतों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आज तक ब्यूरो।
10: बाद पहाड़ों के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत आई है। पहाड़ी इलाकों में मुसीबत दोगुनी हो जाती है क्योंकि बारिश के साथ साथ पहाड़ दरकने लगते हैं। चंबा में एक कार पर मलबा गिरा जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है।
15: मैदानी इलाके मूसलाधार प्रहार से तरबतर है तो वहीं पहाड़ों पर दोहरी मार पड़ रही है। यहाँ बारिश के साथ साथ पहाड़ भी टूट रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला वीडियो चंबा के भरमौर का है, जहां खड़मुख में एनएचपीसी परियोजना के पास अचानक पहाड़ दरकने लगा। देखते देखते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। पहाड़ों से पत्थरों की बरसात किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी, लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त ये भयानक लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। चंबा के ही जनजातीय इलाके पांगी में कुड्डू नाला के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरा जिसकी चपेट में कार आ गई। उस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
18: जो उदयपुर से पांगी की ओर जा रहे थे और वहां मार्ग में उदयपुर के आगे कड़ू नाला से पहले एक स्थान पर पहाड़ दरकने की वजह से उनकी पूरी गाड़ी पहाड़ के नीचे आ गई, जिसमें गाड़ी में सवार 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोगों सुरक्षित जो है वो वहां पर बच पाए हैं।
15: तबाही का ये सिलसिला यही नहीं रुका। पांगी को चंबा से जोड़ने वाले साच पास पर बादल फटने से भारी तबाही मची है। भारी बारिश की वजह से सतुरंडी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। रानीकोट और कार्थ नाला के पास भी बादल फटने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और विभागीय टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द स्थिति बहाल की जा सके, लेकिन लगातार खराब मौसम इसमें बड़ी बाधा बन रहा है। चंबा प्रशासन ने अलर्ट किया है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने तक कोई भी व्यक्ति साच पास की तरफ जाने का जोखिम ना उठाए। सिर्फ हिमाचल नहीं, जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में बारिश और फ्लैश फ्लड से लोग परेशान हैं। कठुआ में अचानक आई बाढ़ में एक शख्स फंस गया, जिसको निकालने के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अपनी जान पर खेलकर जवानों ने पानी में फंसे शख्स को सुरक्षित निकाल लिया। भारी बारिश की वजह से उरी, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामूला जिलों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ है। फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है।
19: जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर जारी है और पिछले 3 से 4 दिन से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ जगहों पे तबाही बहुत ज्यादा है, इसमें जम्मू के राजौरी और पुंछ इलाके हैं, लेकिन अब जेहलम भी जो है उबाल पे है। जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, अभी फ्लड डिक्लेरेशन मार्क जेहलम ने क्रॉस कर लिया है और अभी हालात ये है कि जैसे आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन जेहलम का अगर फ्लड की बात करें तो श्रीनगर में जो बारिश हो रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी कश्मीर में जो क्लाउड बस्ट होते हैं और बारिश होती है, वही पानी जो है जेहलम में आता है और फिर वही फ्लड ला सकता है। यही कहानी हमने 2014 में देखी और अभी जैसे आप देख सकते हैं कल से तकरीबन 2 से 3 फीट तक इसका पानी बढ़ा है।
15: भारी बारिश की वजह से बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। झेलम नदी भी खतरे के निशान पर पहुंच गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे से झेलम का पानी घट रहा है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
10: ईरान अमेरिका टकराव अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हमले और तेज किए जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और खाड़ी देशों में चेतावनी जारी कर चुका है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ट्रंप से अहम मुलाकात होने जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की अब निगाहें हैं।

0: भीषण बमबारी, तबाही भारी। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ बातचीत जारी। फिर तल्ख हुए अमेरिका ईरान, हॉर्मुज में भी घमासान। हर बीतते दिन के साथ अमेरिका और ईरान के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर रहा है। ताजा हमलों में उसने ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें बरसाई। इनमें बंदर अब्बास, तेहरान और अहवाज जैसे शहर शामिल हैं। अहवाज खुजस्तान प्रांत की राजधानी है और ईरान के तेल उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। ईरान का दावा है कि अहवाज पर 40 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिका के इस हमले से ईरान के रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने पिछले 48 घंटों में ईरान के जिन शहरों में बमबारी की है उनमें बंदर अब्बास, जास्क, कोनारक, सुझा, ताफ्त, खोंडाब, खुर्रमाबाद, अहवाज, खुर्रम शहर, अनारक, फिरोजाबाद और उम्मीदिये शामिल हैं। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान को बख्शने के मूड में नहीं है। सीजफायर टूटने के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब अमेरिका की मिसाइलों ने ईरान में तबाही न मचाई हो। वॉशिंगटन में कल रात मीडिया ने इस युद्ध के बारे में जब उनसे सवाल किए तो उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, लेकिन लगता है कि तेहरान फिलहाल कोई डील करने के मूड में नहीं है।
1: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose.

0: want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys.
1: माना कि बातचीत चल रही है और मिसाइलों के बीच भी मुलाकात के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, लेकिन अगर कोई डील नहीं हुई तो आने वाले दिनों में क्या युद्ध और भीषण होगा। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वहां वह राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।

धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। कहा, पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा जिम्मेदारी। अमित शाह बोले, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से अधिक देश अहम। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने खत्म किया आंदोलन। दिपके ने कहा, लोकतंत्र की जीत, जंतर मंतर पर छात्रों का जश्न। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीठ। राहुल गांधी ने कहा, सालों से शिक्षा व्यवस्था पर हमला, जितनी गलती मोदी की संघ की भी उतनी ही। अखिलेश बोले, सरकार को झुकना ही था। पटना में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव गिरफ्तार। गांधी मैदान में छात्रों के प्रदर्शन में हुए थे शामिल। सीजेएम कोर्ट में पेशी भी हुई। गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात। नवसारी और सूरत में बुरा हाल। अब तक 56 लोगों की मौत। असम में भी 61 की गई जान। पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर 50 दिन से जारी छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। सरकार ने छात्रों की सारी शर्तें मान ली है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन अब सवाल उस मुद्दे का है जिसकी वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ। क्या पेपर लीक अब रुकेंगे? क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की हिम्मत अब कोई नहीं करेगा?

मजदूरों की मांग कॉकरोच पार्टी का अनशन, राहुल गांधी की जिद विपक्ष का प्रदर्शन, आखिरकार शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट की। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए कुछ यूं लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। जंतर मंतर पर पिछले 50 दिनों से चल रहे ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के भारी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सौंपते ही कॉकरोच जनता पार्टी झूम उठी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।

0: क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: हर तरह से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा।
2: आज सरकार के साथ कांग्रेस जनता पार्टी के तीसरे राउंड की बैठक थी, जिसमें सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना पक्ष रखना था, लेकिन बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बात हुई। सरकार ने तीनों शर्तें मानी और आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया।
3: मेरे ख्याल से इन्होंने जो बात रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
2: सरकार के सामने कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मांगे रखी थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई न हो।
4: सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो गारंटी है रिटर्न में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूजडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूजडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग FIR के बारे में और एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि क्या सिर्फ एक चेहरे के बदलने से भारत का परीक्षा तंत्र सुधर पाएगा या फिर छात्रों को न्याय मिलने तक ये आंदोलन एक नया रूप लेगा। आज तक ब्यूरो।
5: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही छात्र आंदोलन तो खत्म हुआ, लेकिन अभी इस मुद्दे पर सियासी खेल बचा है। सोमवार को एक बार फिर मानसून सत्र की शुरुआत होगी, संसद खुलेगा, जहां पर बड़े घमासान के आसार हैं।
6: छात्र खुश हैं, विपक्ष खुश है।
1: सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।
7: खुश है कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए।
6: लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरा गतिरोध खत्म हो जाएगा? क्योंकि सड़क पर तो जंग खत्म हो गई है, लेकिन संसद में लड़ाई अभी बाकी है।
8: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे।
9: ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
6: सरकार ने पेपर लीक को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है, लेकिन इस ड्राफ्ट के साथ मानसून सत्र में घमासान का नया चैप्टर खुलने वाला है, क्योंकि सरकार जहां पेपर लीक पर चर्चा पर लगातार जोर दे रही थी, तो वहीं विपक्ष के लिए चर्चा की पहली शर्त ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। ऐसे में क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में पेपर लीक पर चर्चा होगी?
10: Fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will.
11: आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा।
12: जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी।
6: उधर दीपके भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है।
0: ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है।
6: सड़क पर पेपर लीक की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब एक लड़ाई संसद में होनी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
5: लीक के खिलाफ शनिवार को भी देश भर में प्रदर्शन दिखे। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, खबर आई उसके बाद से जश्न मनता हुआ दिखाई दिया। कई शहरों में विरोध उग्र दिख रहा था और अब सवाल बड़ा यह है कि ऐसे शहर आंदोलन की चिंता ने इस्तीफा जो है ये करवाया है, इसके पीछे क्या क्या वजह रही है, इनसाइड स्टोरी बताते हैं।

0: दिल्ली की तरह लखनऊ में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी झूम उठते हैं, विरोध जश्न में बदल जाता है।
1: पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही कनॉट प्लेस पर जबरदस्त भीड़ जो थी देखी जा रही थी। मेट्रो से तमाम लोग आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन को खोला गया, उसके बाद की ये तस्वीर है कि किस तरीके से कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे थे। अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो उनको वापस जाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इनर सर्कल की तस्वीर है, अभी भी आपको जबरदस्त प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में माहौल खराब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अब तमाम लोगों से ये अपील कर रही है कि वो अपने घर जो है वो वापस जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं।
0: देश के बाकी राज्यों की तरह पेपर लीक के खिलाफ छात्रों में लखनऊ में आक्रोश था, जिसमें वो छात्र छात्राएं शामिल हुए जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित है।
2: ना घर से पता गया है?
3: नहीं,
2: घर पे नहीं बोला
3: है? नहीं।
2: घर पे क्या बोला है?
3: अभी जाकर बता देंगे, हमें पता नहीं था कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
2: अच्छा, अब रास्ते से निकले देखा कि हो रहा है, पहुंच गए? आक्रोश देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे?
3: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए हम उनको जानते भी नहीं थे।
0: लखनऊ में जहां प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन प्रयागराज में इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, वहीं कुछ ने तोड़फोड़। हालांकि पुलिस ने यहां संयम से काम लिया और कार्रवाई नहीं। ऐसा ही हंगामा पटना में भी देखने को मिला, यहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो जाती है। पुलिस पर पथराव हुआ जिसके जवाब में लाठीचार्ज पुलिस ने किया।
4: ये लोग कहाँ से हैं सर?
5: कहाँ से? पटना के ही है, लोकल है जो क्या
4: लोग बाहर से भी पकड़ा रहे, बाहर के लोग
5: बाहर से भी आया है, बाहर से भी। तो आप लोग को भी तो ऊपर चलाया, हम लोग ऊपर भी चलाया, वही तो पकड़ाया। चलिए चलिए, उपद्रवी है ना।
6: यहाँ पर धरना प्रदर्शन सब विद्यार्थी लोग है जो ढेला देखिए तो ढेला चलाए, उसे फोड़ फाड़ दिए,
7: चोट भी लगा।
6: यहाँ हम तो रोड पर थे तो उधर भाग गए, ऊपर इसमें न थे, इसमें होगा तो हो ही गया, हम उस सुलभ शौचालय में भाग गए थे।
0: बिहार के सिवान में प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ, पुलिस ने बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पूर्णिया में भी सड़कें रणभूमि बन गई, अलग अलग संगठनों ने मिलकर पैदल मार्च निकाला लेकिन फिर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस ने बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन जब बात नहीं बनी और बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खुशी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभी उनकी एक मांग पूरी हुई, वो अब चाहते हैं कि पूरा शिक्षा तंत्र सुधरे।
8: पहली बार इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने और मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और देख लो,
9: ये मेरा दोस्त है, इसके पापा ने बोली थी कि तुम जा तो रहे हो, घर जब भी आना जब इस्तीफा लेके आना, और मैं इस्तीफा लेके हम घर जाएंगे।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन इस आंदोलन का असली मकसद तब पूरा होगा जब शिक्षा के पूरे शैक्षिक तंत्र में सुधार होगा।
10: के खिलाफ छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है लेकिन अब कांग्रेस जनता पार्टी का क्या होगा? क्या अब और मुद्दों पर कांग्रेस जनता पार्टी उतरेगी, प्रोटेस्ट करेगी? तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं।
11: सीजेआई का कॉकरोच पर एक बयान, फिर सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान और फिर जंतर मंतर पर 50 दिनों तक चला आंदोलन। जिनकी मांगों को सरकार ने मान लिया।
7: नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले ले। देश का युवा बहुत समझदार है, ये वही युवा है जिसको दो महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं रख सकते। तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है। आई थिंक ये मेन आर पॉइंट।
12: इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने के वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा।
11: आज अभिजीत दिपके की माँ की आंखें खुशी से नम हैं, पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
13: डर लग रहा था ना मुझे, अभी सर को ऐसे उठा के ले गए सुबह सुबह में, अभी ये बैठा था इसको कुछ करेंगे, उस बहुत डर लग रहा था, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं मालूम नहीं था ना, इतना अभी आगे क्या क्या होता है।
14: गरीब लोगों के लिए उसका लगाव और उनके प्रतिभूति सहानुभूति उसके दिल में है, तो वो कोई तो भी अच्छा ही काम करेगा, उसके हम पीछे रहेंगे जो भी अच्छा काम करेगा।
11: एक अनोखे ड्रामे से सोशल मीडिया से शुरू हुई ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची, जहां छात्रों के मन की बात को सरकार ने भी समझा। आज तक ब्यूरो।
10: अब बात गुजरात की करेंगे, क्योंकि गुजरात में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। अहमदाबाद, सूरत जैसे शहर इस समय आपदा की चपेट में है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। नवसारी में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हो गई।
15: गुजरात इस समय आसमानी आफत झेल रहा है। पिछले दो दिनों में दक्षिण गुजरात के इलाकों में इतनी बरसात हुई है कि दशकों पुराने रिकॉर्ड टूट गए, शहर पानी में डूब गए, गांवों का भी बुरा हाल है। अहमदाबाद हो या वलसाड़ या फिर सूरत, हर जगह मॉनसून अपने साथ मुसीबत लेकर आया है।
16: अहमदाबाद के कई इलाकों में अभी भी जलजमाव की स्थिति है। दो दिन में 20 इंच बारिश के कारण अहमदाबाद के काफी सारे इलाके जो है जलमग्न हुए थे। अभी हम जो है गुमा इलाका है अहमदाबाद का, जहां पे जलदीप 3 जलदीप 4 ये सोसाइटियां आई हुई हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। जिस तरह से जो है पानी की निकासी नहीं हो रही, दो दिन में पहले बारिश हुई थी 20 इंच, पर कल से जो है बारिश बंद हुई, फिर भी जो है वो जलजमाव अभी भी देखने को मिल रहा है।
15: नवसारी, वलसाड, सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा, तापी और डांग, ये वो जिले हैं जहां मॉनसून का आक्रमण हुआ है।
16: अहमदाबाद में बारिश का जोर कम हुआ है, पर जल निकासी का इश्यू अभी भी लग रहा है। पूरे अहमदाबाद में जो है वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं, जल जमाव जो है हो चुका है। ये गुमा एरिया है अहमदाबाद का, जहाँ पे ये मुख्य रास्ता है, मुख्य रास्ते पे जो है ये हालत है, जो मुख्य रास्तों पे पानी भर चुका है, हर जगह पे जो है पानी पानी देखने को मिल रहा है। लोगों को अगर बाहर निकलना है अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, तो यही पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है।
15: अहमदाबाद में बारिश ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2000 के बाद पहली बार अहमदाबाद में 24 घंटे के अंदर इतनी बरसात हुई थी जितनी अब हुई है। साल 2000 में अहमदाबाद में एक दिन में 328 mm बारिश हुई थी। 23 जुलाई 2026 को 294 mm बारिश दर्ज की गई। अहमदाबाद के बोपल में 23 और 24 जुलाई के बीच 491 mm से ज्यादा बारिश हुई है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है। अहमदाबाद शहर पर आसमानी अटैक हुआ तो भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने अहमदाबाद में 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। सेना के अलावा स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात की गई हैं। प्रभावित इलाकों से अब तक 38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है।
17: तेज बारिश हुई है, हैवी रेनफॉल साउथ गुजरात में खास तौर पर, जिसमें वलसाड, नौसारी, डांग, सूरत और दमन ये सब इलाके में काफी भारी बारिश हुई है। उसके वजह से फ्लडिंग हुई, एनडीआरएफ की टीम्स को वहां भेजा गया है, मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाया गया है और एडिशनल टीम्स जो है डिमांड की गई। उड़ीसा से हमने 4 टीम एयरलिफ्ट की है और गुजरात में अभी 2 अहमदाबाद में, 1 नवसारी में, 1 सूरत में तैनात की गई है।
15: अहमदाबाद के बोपल इलाके में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सड़कों पर उतरे। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा था। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत की, जमीनी हकीकत को जाना परखा और फिर आश्वासन दिया कि सरकार हर तरह से सहयोग करेगी, जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। उधर वलसाड में गुजरात से डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ग्राउंड पर उतरे। वलसाड में मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही मची है। 12,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। हर्ष सांघवी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनके घर बार देखे और अफसरों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए। सूरत की सड़कों पर अब गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। नाव से ही अफसरों की टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और स्थिति की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। नवसारी जिले की नदियों में आई भीषण बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन इसके साथ ही तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। कावेरी नदी में आई बाढ़ से कर्णदेवी इलाके में 9 लोग बह गए थे, जिनमें से अब तक 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें गांव के आसपास नदी और खेतों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आज तक ब्यूरो।
10: बाद पहाड़ों की हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत आई है। पहाड़ी इलाकों में मुसीबत दोगुनी हो जाती है क्योंकि बारिश के साथ साथ पहाड़ दरकने लगते हैं। चंबा में कार पर मलबा गिरा जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है।
15: मैदानी इलाके मूसलाधार प्रहार से तरबतर है तो वहीं पहाड़ों पर दोहरी मार पड़ रही है। यहाँ बारिश के साथ साथ पहाड़ भी टूट रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला वीडियो चंबा के भरमौर का है, जहां खड़मुख में एनएचपीसी परियोजना के पास अचानक पहाड़ दरकने लगा। देखते देखते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। पहाड़ों से पत्थरों की बरसात किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी, लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त ये भयानक लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। चंबा के ही जनजातीय इलाके पांगी में कुड्डू नाला के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरा जिसकी चपेट में कार आ गई। उस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
18: जो उदयपुर से पांगी की ओर जा रहे थे और वहां मार्ग में उदयपुर के आगे कड़ू नाला से पहले एक स्थान पर पहाड़ दरकने की वजह से उनकी पूरी गाड़ी पहाड़ के नीचे आ गई, जिसमें गाड़ी में सवार 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोगों सुरक्षित जो है वो वहां पर बच पाए हैं।
15: तबाही का ये सिलसिला यही नहीं रुका। पांगी को चंबा से जोड़ने वाले साच पास पर बादल फटने से भारी तबाही मची है। भारी बारिश की वजह से सतुरंडी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। रानीकोट और कार्थ नाला के पास भी बादल फटने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और विभागीय टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द स्थिति बहाल की जा सके, लेकिन लगातार खराब मौसम इसमें बड़ी बाधा बन रहा है। चंबा प्रशासन ने अलर्ट किया है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने तक कोई भी व्यक्ति साच पास की तरफ जाने का जोखिम ना उठाए। सिर्फ हिमाचल नहीं, जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में बारिश और फ्लैश फ्लड से लोग परेशान हैं। कठुआ में अचानक आई बाढ़ में एक शख्स फंस गया, जिसको निकालने के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अपनी जान पर खेलकर जवानों ने पानी में फंसे शख्स को सुरक्षित निकाल लिया। भारी बारिश की वजह से उरी, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामूला जिलों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ है। फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है।
19: जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर जारी है और पिछले 3 से 4 दिन से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ जगहों पे तबाही बहुत ज्यादा है, इसमें जम्मू के राजौरी और पुंछ इलाके हैं, लेकिन अब जेहलम भी जो है उबाल पे है। जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, अभी फ्लड डिक्लेरेशन मार्क जेहलम ने क्रॉस कर लिया है और अभी हालात ये है कि जैसे आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन जेहलम का अगर फ्लड की बात करें तो श्रीनगर में जो बारिश हो रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी कश्मीर में जो क्लाउड बस्ट होते हैं और बारिश होती है, वही पानी जो है जेहलम में आता है और फिर वही फ्लड ला सकता है। यही कहानी हमने 2014 में देखी और अभी जैसे आप देख सकते हैं कल से तकरीबन 2 से 3 फीट तक इसका पानी बढ़ा है।
15: भारी बारिश की वजह से बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। झेलम नदी भी खतरे के निशान पर पहुंच गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे से झेलम का पानी घट रहा है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
10: ईरान अमेरिका टकराव अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हमले और तेज किए जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और खाड़ी देशों में चेतावनी जारी कर चुका है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ट्रंप से अहम मुलाकात होने जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की अब निगाहें हैं।

0: भीषण बमबारी, तबाही भारी। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ बातचीत जारी। फिर तल्ख हुए अमेरिका ईरान, हॉर्मुज में भी घमासान। हर बीतते दिन के साथ अमेरिका और ईरान के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर रहा है। ताजा हमलों में उसने ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें बरसाई हैं। इनमें बंदर अब्बास, तेहरान और अहवाज जैसे शहर शामिल हैं। अहवाज खुजस्तान प्रांत की राजधानी है और ईरान के तेल उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। ईरान का दावा है कि अहवाज पर 40 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिका के इस हमले से ईरान के रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने पिछले 48 घंटों में ईरान के जिन शहरों में बमबारी की है उनमें बंदर अब्बास, जास्क, कोनारक, सुझा, ताफ्त, खोंडाब, खुर्रमाबाद, अहवाज, खुर्रम शहर, अनारक, फिरोजाबाद और उम्मीदिये शामिल हैं। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान को बख्शने के मूड में नहीं है। सीजफायर टूटने के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब अमेरिका की मिसाइलों ने ईरान में तबाही न मचाई हो। वॉशिंगटन में कल रात मीडिया ने इस युद्ध के बारे में जब उनसे सवाल किए तो उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, लेकिन लगता है कि तेहरान फिलहाल कोई डील करने के मूड में नहीं है।
1: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy, and that's you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet, but they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys.
0: माना कि बातचीत चल रही है और मिसाइलों के बीच भी मुलाकात के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, लेकिन अगर कोई डील नहीं हुई तो आने वाले दिनों में क्या युद्ध और भीषण होगा। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वहां वह राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।

धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, कहा पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा जिम्मेदारी। अमित शाह बोले बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से अधिक देश अहम। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने खत्म किया आंदोलन। दिपके ने कहा लोकतंत्र की जीत, जंतर मंतर पर छात्रों का जश्न। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीठ, राहुल गांधी ने कहा सालों से शिक्षा व्यवस्था पर हमला, जितनी गलती मोदी की संघ की भी उतनी ही। अखिलेश बोले सरकार को झुकना ही था। पटना में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव गिरफ्तार, गांधी मैदान में छात्रों के प्रदर्शन में हुए थे शामिल, सीजेएम कोर्ट में पेशी भी हुई। गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात, नवसारी और सूरत में बुरा हाल, अब तक 56 लोगों की मौत, असम में भी 61 की गई जान। पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर 50 दिन से जारी छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। सरकार ने छात्रों की सारी शर्तें मान ली है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन अब सवाल उस मुद्दे का है जिसकी वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ। क्या पेपर लीक अब रुकेंगे? क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की हिम्मत अब कोई नहीं करेगा?

0: की मांग कॉकरोच पार्टी का अनशन, राहुल गांधी की जिद विपक्ष का प्रदर्शन, आखिरकार शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट की। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए कुछ यूं लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। जंतर मंतर पर पिछले 50 दिनों से चल रहे ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के भारी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सौंपते ही कॉकरोच जनता पार्टी झूम उठी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: अतः से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा।
0: आज सरकार के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के तीसरे राउंड की बैठक थी, जिसमें सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना पक्ष रखना था, लेकिन बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कॉकरोच पार्टी और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बात हुई। सरकार ने तीनों शर्तें मानी और आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया।
3: मेरे ख्याल से इन्होंने जो भी बात रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
0: सरकार के सामने कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मांगे रखी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई ना हो।
4: सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो गारंटी है रिटर्न में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूजडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूजडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग FIR के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि क्या सिर्फ एक चेहरे के बदलने से भारत का परीक्षा तंत्र सुधर पाएगा या फिर छात्रों को न्याय मिलने तक ये आंदोलन एक नया रूप लेगा। आज तक ब्यूरो।
5: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही छात्र आंदोलन तो खत्म हुआ, लेकिन अभी इस मुद्दे पर सियासी खेल बचा है। सोमवार को एक बार फिर मानसून सत्र की शुरुआत होगी, संसद खुलेगा, जहां पर बड़े घमासान के आसार हैं।
6: छात्र खुश हैं, विपक्ष खुश है।
2: सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।
4: खुश है कि ये सारे डिमांड एक्सेप्ट हुए।
6: लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरा गतिरोध खत्म हो जाएगा? क्योंकि सड़क पर तो जंग खत्म हो गई है, लेकिन संसद में लड़ाई अभी बाकी है।
7: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की, सरकार को लेने पड़ेंगे।
8: ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
6: सरकार ने पेपर लीक को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसे सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है, लेकिन इस ड्राफ्ट के साथ मॉनसून सत्र में घमासान का नया चैप्टर खुलने वाला है, क्योंकि सरकार जहां पेपर लीक पर चर्चा पर लगातार जोर दे रही थी तो वहीं विपक्ष के लिए चर्चा की पहली शर्त ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। ऐसे में क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में पेपर लीक पर चर्चा होगी?
9: पैलेट गन्स वर फायर्ड एट देम, टियर गैस वर फायर्ड एट देम, दे वर बीटन विद लाठीज, दे हैड इंजरीज, सीरियस इंजरीज, बट दे डिड नॉट बेंड, द गवर्नमेंट हैड टू बेंड टू देयर विल।
10: आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी, लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा।
11: जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी।
6: उधर दिपके भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है,
12: ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है।
6: सड़क पर पेपर लीक की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब एक लड़ाई संसद में होनी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
5: लीक के खिलाफ शनिवार को भी देश भर में प्रदर्शन दिखे, जैसे कि जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया खबर आई उसके बाद से जश्न मनता हुआ दिखाई दिया। कई शहरों में विरोध उग्र दिख रहा था और अब सवाल बड़ा यह है कि ऐसे शहर शहर आंदोलन की चिंता ने इस्तीफा जो है ये करवाया है, इसके पीछे क्या क्या वजह रही है, इनसाइड स्टोरी बताते हैं।

0: दिल्ली की तरह लखनऊ में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी झूम उठते हैं, विरोध जश्न में बदल जाता है।
1: पैरामिलिट्री के जो जवान है वो अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी है उनको घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही कनॉट प्लेस पर जबरदस्त भीड़ जो थी देखी जा रही थी। मेट्रो से तमाम लोग आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन को खोला गया, उसके बाद की ये तस्वीर है कि किस तरीके से कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे थे। अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो उनको वापस जाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखें कि किस तरीके से इनर सर्कल की तस्वीर है, अभी भी आपको जबरदस्त प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में माहौल खराब ना हो इसको ध्यान रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अब तमाम लोगों से ये अपील कर रही है कि वो अपने घर जो है वो वापस जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं।
0: देश के बाकी राज्यों की तरह पेपर लीक के खिलाफ छात्रों में लखनऊ में आक्रोश था, जिसमें वो छात्र छात्राएं शामिल हुए जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
2: इन्हें घर से पता गया है?
3: नहीं,
2: घर पे नहीं बोला है?
3: नहीं।
2: घर पे क्या बोला है?
3: अभी जाकर बता देंगे, हमें पता नहीं था कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
2: अच्छा, आप रास्ते से निकले, देखा कि हो रहा है, पहुंच गए?
3: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे हम लोग, जिनके साथ हम यहाँ तक आए हम उनको जानते भी नहीं थे।
0: लखनऊ में जहां प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन प्रयागराज में इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, वहीं कुछ ने तोड़फोड़। हालांकि पुलिस ने यहां संयम से काम लिया और कार्रवाई नहीं की। ऐसा ही हंगामा पटना में भी देखने को मिला, यहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो जाती। पुलिस पर पथराव हुआ जिसके जवाब में लाठीचार्ज पुलिस ने किया।
4: ये लोग कहाँ से हैं सर?
5: कहाँ से है? पटना के ही है, लोकल है जो
4: कह रहा है। बाहर से भी पकड़ा रहे, बाहर के लोग
5: बाहर से भी आया है, बाहर से भी। तो आप लोग को भी तो ऊपर चलाया, हम लोग को ऊपर भी चलाया, वही तो पकड़ाया। चलिए चलिए, उपद्रवी है ना
6: यहाँ पर। धरना प्रदर्शन सब विद्यार्थी लोग है, जो ढेला देखिए तो ढेला चलाए, उसे फोड़ फाड़ दिए,
7: चोट भी लगा।
6: यहाँ हम तो रोड पर थे तो उधर भाग गए, ऊपर थे, इसमें न थे, इसमें होगा तो हो ही गया, हम उस सुलभ शौचालय में भाग गए थे।
0: बिहार के सिवान में भी प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ, पुलिस ने बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पूर्णिया में भी सड़कें रणभूमि बन गई, अलग अलग संगठनों ने मिलकर पैदल मार्च निकाला लेकिन फिर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस ने बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन जब बात नहीं बनी और बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खुशी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभी उनकी एक मांग पूरी हुई, वो अब चाहते हैं कि पूरा शिक्षा तंत्र सुधरे।
8: पहली बार इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने और मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और देख लो,
9: ये मेरा दोस्त है, इसके पापा ने बोली थी कि तुम जा तो रहे हो, घर जब भी आना, जब इस्तीफा लेके आना, और मैम इस्तीफा लेके हम घर जाएंगे।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन इस आंदोलन का असली मकसद तब पूरा होगा जब शिक्षा के पूरे शैक्षिक तंत्र में सुधार होगा।
10: पार्टी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है लेकिन अब कांग्रेस जनता पार्टी का क्या होगा? क्या अब और मुद्दों पर कांग्रेस जनता पार्टी उतरेगी, प्रोटेस्ट करेगी? तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं।
11: आई का कॉकरोच पर एक बयान, फिर सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान और फिर जंतर मंतर पर 50 दिनों तक चला आंदोलन। जिनकी मांगों को सरकार ने मान लिया।
7: नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले लें। देश का युवा बहुत समझदार है, ये वही युवा है जिसको दो महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं रख सकते। तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है। आई थिंक ये मेन आर पॉइंट।
12: इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा।
11: आज अभिजीत दिपके की माँ की आंखें खुशी से नम हैं, पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
13: डर लग रहा था ना मुझे, अभी सर को ऐसे उठा के ले गए सुबह सुबह में, अभी ये बैठा था इसको कुछ करेंगे, उस बहुत डर लग रहा था, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं मालूम नहीं था ना इतना, अभी आगे क्या क्या होता है।
14: गरीब लोगों के लिए उसका लगाव और उनके प्रतिभूति सहानुभूति उसके दिल में है, तो वो कोई तो भी अच्छा ही काम करेगा उसके हम पीछे रहेंगे जो भी अच्छा काम करेगा।
11: एक अनोखे ड्रामे से सोशल मीडिया से शुरू हुई ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची, जहां छात्रों के मन की बात को सरकार ने भी समझा। आज तक ब्यूरो।
10: अब बात गुजरात की करेंगे, क्योंकि गुजरात में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। अहमदाबाद, सूरत जैसे शहर इस समय आपदा की चपेट में है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। नवसारी में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हो गई।
15: गुजरात इस समय आसमानी आफत झेल रहा है। पिछले 2 दिनों में दक्षिण गुजरात के इलाकों में इतनी बरसात हुई है कि दशकों पुराने रिकॉर्ड टूट गए, शहर पानी में डूब गए, गांवों का भी बुरा हाल है। अहमदाबाद हो या वलसाड़ या फिर सूरत, हर जगह मॉनसून अपने साथ मुसीबत लेकर आया है।
16: अहमदाबाद के कई इलाकों में अभी भी जल जमाव की स्थिति है। 2 दिन में 20 इंच बारिश के कारण अहमदाबाद के काफी सारे इलाके जो है जलमग्न हुए थे। अभी हम जो है गुमा इलाका है अहमदाबाद का, जहां पे जलदीप 3, जलदीप 4 ये सोसाइटियां आई हुई हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। जिस तरह से जो है पानी की निकासी नहीं हो रही, 2 दिन में पहले बारिश हुई थी 20 इंच, पर कल से जो है बारिश बंद हुई, फिर भी जो है वो जल जमाव अभी भी देखने को मिल रहा है।
15: नवसारी, वलसाड, सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा, तापी और डांग, ये वो जिले हैं जहां मॉनसून का आक्रमण हुआ है।
16: अहमदाबाद में बारिश का जोर कम हुआ है, पर जल निकासी का इश्यू अभी भी लग रहा है। पूरे अहमदाबाद में जो है वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं, जल जमाव जो है हो चुका है। ये गुमा एरिया है अहमदाबाद का, जहाँ पे ये मुख्य रास्ता है, मुख्य रास्ते पे जो है ये हालत है, जो मुख्य रास्तों पे पानी भर चुका है, हर जगह पे जो है पानी पानी देखने को मिल रहा है। लोगों को अगर बाहर निकलना है अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, तो यही पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है।
15: अहमदाबाद में बारिश ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2000 के बाद पहली बार अहमदाबाद में 24 घंटे के अंदर इतनी बरसात हुई थी जितनी अब हुई है। साल 2000 में अहमदाबाद में एक दिन में 328 mm बारिश हुई थी। 23 जुलाई 2026 को 294 mm बारिश दर्ज की गई। अहमदाबाद के बोपल में 23 और 24 जुलाई के बीच 491 mm से ज्यादा बारिश हुई है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है। अहमदाबाद शहर पर आसमानी अटैक हुआ तो भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने अहमदाबाद में 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। सेना के अलावा स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात की गई हैं। प्रभावित इलाकों से अब तक 38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है।
17: तेज बारिश हुई है, हैवी रेनफॉल साउथ गुजरात में खास तौर पर, जिसमें वलसाड़, नौसारी, डांग, सूरत और दमन, ये सब इलाके में काफी भारी बारिश हुई है। उसके वजह से फ्लडिंग हुई, एनडीआरएफ की टीम्स को वहां भेजा गया है, मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाया गया है और एडिशनल टीम्स जो है डिमांड की गई। उड़ीसा से हमने 4 टीम एयरलिफ्ट की है और गुजरात में अभी 2 अहमदाबाद में, 1 नवसारी में, 1 सूरत में तैनात की गई है।
15: अहमदाबाद के बोपल इलाके में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सड़कों पर उतरे। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा था। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत की, जमीनी हकीकत को जाना परखा और फिर आश्वासन दिया कि सरकार हर तरह से सहयोग करेगी, जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। उधर वलसाड़ में गुजरात से डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ग्राउंड पर उतरे। वलसाड़ में मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही मची है। 12,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। हर्ष सांघवी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनके घर बार देखे और अफसरों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए। सूरत की सड़कों पर अब गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। नाव से ही अफसरों की टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और स्थिति की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। नवसारी जिले की नदियों में आई भीषण बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन इसके साथ ही तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। कावेरी नदी में आई बाढ़ से कर्णदेवी इलाके में 9 लोग बह गए थे, जिनमें से अब तक 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें गांव के आसपास नदी और खेतों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आज तक ब्यूरो।
10: बाद पहाड़ों के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत आई है। पहाड़ी इलाकों में मुसीबत दोगुनी हो जाती है क्योंकि बारिश के साथ साथ पहाड़ दरकने लगते हैं। चंबा में कार पर मलबा गिरा जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है।
15: मैदानी इलाके मूसलाधार प्रहार से तरबतर है तो वहीं पहाड़ों पर दोहरी मार पड़ रही है। यहाँ बारिश के साथ साथ पहाड़ भी टूट रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला वीडियो चंबा के भरमौर का है, जहां खड़मुख में एनएचपीसी परियोजना के पास अचानक पहाड़ दरकने लगा। देखते ही देखते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। पहाड़ों से पत्थरों की बरसात किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी, लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त ये भयानक लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। चंबा के ही जनजातीय इलाके पांगी में कुड्डू नाला के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरा जिसकी चपेट में कार आ गई। उस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
18: जो उदयपुर से पांगी की ओर जा रहे थे और वहां मार्ग में उदयपुर के आगे कड़ू नाला से पहले एक स्थान पर पहाड़ दरकने की वजह से उनकी पूरी गाड़ी पहाड़ के नीचे आ गई, जिसमें गाड़ी में सवार 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोगों सुरक्षित जो है वो वहां पर बच पाए हैं।
15: तबाही का ये सिलसिला यही नहीं रुका। पांगी को चंबा से जोड़ने वाले साच पास पर बादल फटने से भारी तबाही मची है। भारी बारिश की वजह से सतुरंडी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। रानीकोट और कार्थ नाला के पास भी बादल फटने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और विभागीय टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द स्थिति बहाल की जा सके, लेकिन लगातार खराब मौसम इसमें बड़ी बाधा बन रहा है। चंबा प्रशासन ने अलर्ट किया है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने तक कोई भी व्यक्ति साच पास की तरफ जाने का जोखिम न उठाए। सिर्फ हिमाचल नहीं, जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में बारिश और फ्लैश फ्लड से लोग परेशान हैं। कठुआ में अचानक आई बाढ़ में एक शख्स फंस गया, जिसको निकालने के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अपनी जान पर खेलकर जवानों ने पानी में फंसे शख्स को सुरक्षित निकाल लिया। भारी बारिश की वजह से उरी, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामूला जिलों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ है। फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है।
10: जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर जारी है और पिछले 3 से 4 दिन से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ जगहों पे तबाही बहुत ज्यादा है, इसमें जम्मू के राजौरी और पुंछ इलाके हैं, लेकिन अब जेहलम भी जो है उबाल पे है। जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, अभी फ्लड डिक्लेरेशन मार्क जेहलम ने क्रॉस कर लिया है और अभी हालात ये है कि जैसे आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन जेहलम का अगर फ्लड की बात करें तो श्रीनगर में जो बारिश हो रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी कश्मीर में जो क्लाउड बस्ट होते हैं और बारिश होती है, वही पानी जो है जेहलम में आता है और फिर वही फ्लड ला सकता है। यही कहानी हमने 2014 में देखी और अभी जैसे आप देख सकते हैं कल से तकरीबन 2 से 3 फीट तक इसका पानी बढ़ा है।
15: भारी बारिश की वजह से बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। झेलम नदी भी खतरे के निशान पर पहुंच गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे से झेलम का पानी घट रहा है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
10: ईरान अमेरिका टकराव अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हमले और तेज किए जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और खाड़ी देशों में चेतावनी जारी कर चुका है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ट्रंप से अहम मुलाकात होने जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की अब निगाहें हैं।

0: भीषण बमबारी, तबाही भारी। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ बातचीत जारी। फिर तल्ख हुए अमेरिका ईरान, हॉर्मुज में भी घमासान। हर बीतते दिन के साथ अमेरिका और ईरान के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर रहा है। ताजा हमलों में उसने ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें बरसाई। इनमें बंदर अब्बास, तेहरान और अहवाज जैसे शहर शामिल हैं। अहवाज खुजस्तान प्रांत की राजधानी है और ईरान के तेल उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। ईरान का दावा है कि अहवाज पर 40 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिका के इस हमले से ईरान के रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने पिछले 48 घंटों में ईरान के जिन शहरों में बमबारी की है उनमें बंदर अब्बास, जास्क, कोनारक, सुझा, ताफ्त, खोंडाब, खुर्रमाबाद, अहवाज, खुर्रम शहर, अनारक, फिरोजाबाद और उम्मीदिये शामिल हैं। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान को बख्शने के मूड में नहीं है। सीजफायर टूटने के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब अमेरिका की मिसाइलों ने ईरान में तबाही न मचाई हो। वॉशिंगटन में कल रात मीडिया ने इस युद्ध के बारे में जब उनसे सवाल किए तो उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, लेकिन लगता है कि तेहरान फिलहाल कोई डील करने के मूड में नहीं है।
1: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet. But they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys.
0: माना कि बातचीत चल रही है और मिसाइलों के बीच भी मुलाकात के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। लेकिन अगर कोई डील नहीं हुई तो आने वाले दिनों में क्या युद्ध और भीषण होगा?

0: अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वहां वह राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी। आज तक ब्यूरो।
1: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।

0: धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। कहा, पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा जिम्मेदारी। अमित शाह बोले, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से अधिक देश अहम। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने खत्म किया आंदोलन। दीपके ने कहा, लोकतंत्र की जीत, जंतर मंतर पर छात्रों का जश्न। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीठ। राहुल गांधी ने कहा, सालों से शिक्षा व्यवस्था पर हमला, जितनी गलती मोदी की संघ की भी उतनी ही। अखिलेश बोले, सरकार को झुकना ही था। पटना में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव गिरफ्तार। गांधी मैदान में छात्रों के प्रदर्शन में हुए थे शामिल। सीजेएम कोर्ट में पेशी भी हुई। गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात। नवसारी और सूरत में बुरा हाल। अब तक 56 लोगों की मौत। असम में भी 61 की गई जान। पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर 50 दिन से जारी छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। सरकार ने छात्रों की सारी शर्तें मान ली है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन अब सवाल उस मुद्दे का है जिसकी वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ। क्या पेपर लीक अब रुकेंगे? क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की हिम्मत अब कोई नहीं करेगा?
1: छात्रों की मांग, कॉकरोच पार्टी का अनशन, राहुल गांधी की जिद, विपक्ष का प्रदर्शन, आखिरकार शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट की। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए कुछ यूं लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। जंतर मंतर पर पिछले 50 दिनों से चल रहे ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के भारी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सौंपते ही कॉकरोच जनता पार्टी झूम उठी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: क्या कहते थे, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
3: अतः से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश

0: चलाने का तरीका जरा बदलेगा।
1: आज सरकार के साथ कांग्रेस जनता पार्टी के तीसरे राउंड की बैठक थी, जिसमें सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना पक्ष रखना था, लेकिन बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बात हुई। सरकार ने तीनों शर्तें मानी और आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया।
2: मेरे ख्याल से इन्होंने जो बात रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
1: सरकार के सामने कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मांगे रखी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई ना हो।
3: सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो गारंटी है रिटर्न में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूजडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूजडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग FIRs के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि क्या सिर्फ एक चेहरे के बदलने से भारत का परीक्षा तंत्र सुधर पाएगा या फिर छात्रों को न्याय मिलने तक ये आंदोलन एक नया रूप लेगा। आज तक ब्यूरो।
4: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही छात्र आंदोलन तो खत्म हुआ, लेकिन अभी इस मुद्दे पर सियासी खेल बचा है। सोमवार को एक बार फिर मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी, संसद खुलेगा, जहां पर बड़े घमासान के आसार हैं।
5: छात्र खुश हैं, विपक्ष खुश है।
0: सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।
6: खुश है कि ये सारे डिमांड एक्सेप्ट हुए।
5: लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरा गतिरोध खत्म हो जाएगा? क्योंकि सड़क पर तो जंग खत्म हो गई है, लेकिन संसद में लड़ाई अभी बाकी है।
7: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे।
8: ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
5: सरकार ने पेपर लीक को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है, लेकिन इस ड्राफ्ट के साथ मॉनसून सत्र में घमासान का नया चैप्टर खुलने वाला है, क्योंकि सरकार जहां पेपर लीक पर चर्चा पर लगातार जोर दे रही थी, तो वहीं विपक्ष के लिए चर्चा की पहली शर्त ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। ऐसे में क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में पेपर लीक पर चर्चा होगी?
9: They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will.
10: आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी, लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा।
11: जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी, और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी।
5: उधर दिपके भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है,
12: ये पहला विकेट है यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है।
5: सड़क पर पेपर लीक की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब एक लड़ाई संसद में होनी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
4: लीक के खिलाफ शनिवार को भी देश भर में प्रदर्शन दिखे। जैसा कि जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, खबर आई उसके बाद से जश्न मनता हुआ दिखाई दिया। कई शहरों में विरोध उग्र दिख रहा था और अब सवाल बड़ा यह है कि ऐसे शहर शहर आंदोलन की चिंता ने इस्तीफा जो है ये करवाया है, इसके पीछे क्या क्या वजह रही है, इनसाइड स्टोरी बताते हैं।

0: दिल्ली की तरह लखनऊ में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी झूम उठते हैं, विरोध जश्न में बदल जाता है।
1: पैरामिलिट्री के जो जवान है वो अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी है उनको घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही कनॉट प्लेस पर जबरदस्त भीड़ जो थी देखी जा रही थी। मेट्रो से तमाम लोग आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन को खोला गया, उसके बाद की ये तस्वीर है कि किस तरीके से कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे थे। अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो उनको वापस जाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इनर सर्कल की तस्वीर है, अभी भी आपको जबरदस्त प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में माहौल खराब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अब तमाम लोगों से ये अपील कर रही है कि वो अपने घर जो है वो वापस जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं।
0: देश के बाकी राज्यों की तरह पेपर लीक के खिलाफ छात्रों में लखनऊ में आक्रोश था, जिसमें वो छात्र छात्राएं शामिल हुए जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित है।
2: ना घर से पता गया है?
3: नहीं।
2: घर पे नहीं बोला है?
3: नहीं।
2: घर पे क्या बोला है?
3: अभी जाकर बता देंगे, हमें पता नहीं था कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
2: अच्छा, अब रास्ते से निकले देखा कि हो रहा है, पहुंच गए?
3: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे हम लोग, जिनके साथ हम यहाँ तक आए हम उनको जानते भी नहीं थे।
0: लखनऊ में जहां प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन प्रयागराज में इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, वहीं कुछ ने तोड़फोड़। हालांकि पुलिस ने यहां संयम से काम लिया और कार्रवाई नहीं की। ऐसा ही हंगामा पटना में भी देखने को मिला, यहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो जाती। पुलिस पर पथराव हुआ जिसके जवाब में लाठीचार्ज पुलिस ने किया।
4: ये लोग कहाँ से हैं सर?
5: कहाँ से? पटना के ही है, लोकल है जो
4: क्या बाहर से भी पकड़ा रहे? बाहर के लोग
5: बाहर से भी आया है, बाहर से भी। तो आप लोग को भी तो ऊपर चलाया, हम लोग को ऊपर भी चलाया, वही तो पकड़ाया। चलिए चलिए, उपद्रवी है ना
6: यहाँ पर। धरना प्रदर्शन सब विद्यार्थी लोग है जो ढेला देखिए तो ढेला चलाए, उसे फोड़ फाड़ दिए।
7: चोट भी लगा
6: यहाँ? हम तो रोड पर थे तो उधर भाग गए, ऊपर थे इसमें न थे, इसमें होगा तो हो ही गया। हम उस सुलभ शौचालय में भाग गए थे।
0: बिहार के सिवान में प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ, पुलिस ने बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पूर्णिया में भी सड़कें रणभूमि बन गई, अलग अलग संगठनों ने मिलकर पैदल मार्च निकाला लेकिन फिर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस ने बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन जब बात नहीं बनी और बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खुशी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभी उनकी एक मांग पूरी हुई, वो अब चाहते हैं कि पूरा शिक्षा तंत्र सुधरे।
8: पहली बार इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने और मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और देख लो
9: ये मेरा दोस्त है, इसके पापा ने बोली थी कि तुम जा तो रहे हो, घर जब भी आना जब इस्तीफा लेके आना, और मैम इस्तीफा लेके हम घर जाएंगे।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन इस आंदोलन का असली मकसद तब पूरा होगा जब शिक्षा के पूरे शैक्षिक तंत्र में सुधार होगा।
10: दिल्ली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है लेकिन अब कांग्रेस जनता पार्टी का क्या होगा? क्या अब और मुद्दों पर कांग्रेस जनता पार्टी उतरेगी, प्रोटेस्ट करेगी? तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं।
11: आई का कॉकरोच पर एक बयान, फिर सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान और फिर जंतर मंतर पर 50 दिनों तक चला आंदोलन। जिनकी मांगों को सरकार ने मान लिया।
7: नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले ले। देश का युवा बहुत समझदार है, ये वही युवा है जिसको दो महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं रख सकते। तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है। आई थिंक ये मेन आर पॉइंट।
12: इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा।
11: आज अभिजीत दिपके की माँ की आंखें खुशी से नम हैं, पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
13: डर लग रहा था ना मुझे, अभी सर को ऐसे उठा के ले गए सुबह सुबह में, अभी ये बैठा था इसको कुछ करेंगे, उस बहुत डर लग रहा था, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं मालूम नहीं था ना, इतना अभी आगे क्या क्या होता है।
14: गरीब लोगों के लिए उसका लगाव और उनके प्रतिभूति सहानुभूति उसके दिल में है, तो वो कोई तो भी अच्छा ही काम करेगा उसके हम पीछे रहेंगे जो भी अच्छा काम करेगा।
11: एक अनोखे ड्रामे से सोशल मीडिया से शुरू हुई ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची, जहां छात्रों के मन की बात को सरकार ने भी समझा। आज तक ब्यूरो।
10: अब बात गुजरात की करेंगे, क्योंकि गुजरात में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। अहमदाबाद, सूरत जैसे शहर इस समय आपदा की चपेट में है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। नवसारी में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हो गई।
15: गुजरात इस समय आसमानी आफत झेल रहा है। पिछले 2 दिनों में दक्षिण गुजरात के इलाकों में इतनी बरसात हुई है कि दशकों पुराने रिकॉर्ड टूट गए, शहर पानी में डूब गए, गांवों का भी बुरा हाल है। अहमदाबाद हो या वलसाड़ या फिर सूरत, हर जगह मॉनसून अपने साथ मुसीबत लेकर आया है।
16: अहमदाबाद के कई इलाकों में अभी भी जल जमाव की स्थिति है। 2 दिन में 20 इंच बारिश के कारण अहमदाबाद के काफी सारे इलाके जो है जलमग्न हुए थे। अभी हम जो है घुमा इलाका है अहमदाबाद का, जहां पे जलदीप 3, जलदीप 4 ये सोसाइटियां आई हुई हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। जिस तरह से जो है पानी की निकासी नहीं हो रही, 2 दिन में पहले बारिश हुई थी 20 इंच, पर कल से जो है बारिश बंद हुई, फिर भी जो है वो जल जमाव अभी भी देखने को मिल रहा है।
15: नवसारी, वलसाड़, सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा, तापी और डांग, ये वो जिले हैं जहां मॉनसून का आक्रमण हुआ है।
16: अहमदाबाद में बारिश का जोर कम हुआ है, पर जल निकासी का इश्यू अभी भी लग रहा है। पूरे अहमदाबाद में जो है वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं, जल जमाव जो है हो चुका है। ये गुमा एरिया है अहमदाबाद का, जहाँ पे ये मुख्य रास्ता है, मुख्य रास्ते पे जो है ये हालत है, जो मुख्य रास्तों पे पानी भर चुका है, हर जगह पे जो है पानी पानी देखने को मिल रहा है। लोगों को अगर बाहर निकलना है अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, तो यही पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है।
15: अहमदाबाद में बारिश ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2000 के बाद पहली बार अहमदाबाद में 24 घंटे के अंदर इतनी बरसात हुई थी जितनी अब हुई है। साल 2000 में अहमदाबाद में एक दिन में 328 mm बारिश हुई थी। 23 जुलाई 2026 को 294 mm बारिश दर्ज की गई। अहमदाबाद के बोपल में 23 और 24 जुलाई के बीच 491 mm से ज्यादा बारिश हुई है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है। अहमदाबाद शहर पर आसमानी अटैक हुआ तो भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने अहमदाबाद में 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। सेना के अलावा स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात की गई हैं। प्रभावित इलाकों से अब तक 38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है।
17: तेज बारिश हुई है, हैवी रेनफॉल साउथ गुजरात में खास तौर पर, जिसमें वलसाड, नौसारी, डांग, सूरत और दमन, ये सब इलाके में काफी भारी बारिश हुई है। उसके वजह से फ्लडिंग हुई, एनडीआरएफ की टीम्स को वहां भेजा गया है, मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाया गया है और एडिशनल टीम्स जो है डिमांड की गई। उड़ीसा से हमने 4 टीम एयरलिफ्ट की है और गुजरात में अभी 2 अहमदाबाद में, 1 नवसारी में, 1 सूरत में तैनात की गई है।
15: अहमदाबाद के बोपल इलाके में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सड़कों पर उतरे। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा था। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत की, जमीनी हकीकत को जाना परखा और फिर आश्वासन दिया कि सरकार हर तरह से सहयोग करेगी, जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। उधर वलसाड में गुजरात से डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ग्राउंड पर उतरे। वलसाड में मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही मची है, 12,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। हर्ष सांघवी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनके घर बार देखे और अफसरों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए। सूरत की सड़कों पर अब गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। नाव से ही अफसरों की टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और स्थिति की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। नवसारी जिले की नदियों में आई भीषण बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन इसके साथ ही तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। कावेरी नदी में आई बाढ़ से कर्णदेवी इलाके में 9 लोग बह गए थे, जिनमें से अब तक 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें गांव के आसपास नदी और खेतों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आज तक ब्यूरो।
10: बाद पहाड़ों की हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत आई है। पहाड़ी इलाकों में मुसीबत दोगुनी हो जाती है क्योंकि बारिश के साथ साथ पहाड़ दरकने लगते हैं। चंबा में कार पर मलबा गिरा जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है।
15: मैदानी इलाके मूसलाधार प्रहार से तरबतर है तो वहीं पहाड़ों पर दोहरी मार पड़ रही है। यहाँ बारिश के साथ साथ पहाड़ भी टूट रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला वीडियो चंबा के भरमौर का है, जहां खड़मुख में एनएचपीसी परियोजना के पास अचानक पहाड़ दरकने लगा। देखते ही देखते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। पहाड़ों से पत्थरों की बरसात किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी, लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त ये भयानक लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। चंबा के ही जनजातीय इलाके पांगी में कुड्डू नाला के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरा जिसकी चपेट में कार आ गई। उस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
18: जो उदयपुर से पांगी की ओर जा रहे थे और वहां मार्ग में उदयपुर के आगे कड़ू नाला से पहले एक स्थान पर पहाड़ दरकने की वजह से उनकी पूरी गाड़ी पहाड़ के नीचे आ गई, जिसमें गाड़ी में सवार 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोगों सुरक्षित जो है वो वहां पर बच पाए हैं।
15: तबाही का ये सिलसिला यही नहीं रुका। पांगी को चंबा से जोड़ने वाले साच पास पर बादल फटने से भारी तबाही मची है। भारी बारिश की वजह से सतुरंडी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। रानीकोट और कार्थ नाला के पास भी बादल फटने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और विभागीय टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द स्थिति बहाल की जा सके, लेकिन लगातार खराब मौसम इसमें बड़ी बाधा बन रहा है। चंबा प्रशासन ने अलर्ट किया है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने तक कोई भी व्यक्ति साच पास की तरफ जाने का जोखिम ना उठाए। सिर्फ हिमाचल नहीं, जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में बारिश और फ्लैश फ्लड से लोग परेशान हैं। कठुआ में अचानक आई बाढ़ में एक शख्स फंस गया, जिसको निकालने के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अपनी जान पर खेलकर जवानों ने पानी में फंसे शख्स को सुरक्षित निकाल लिया। भारी बारिश की वजह से उरी, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामूला जिलों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ है। फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है।
10: जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर जारी है और पिछले 3 से 4 दिन से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ जगहों पे तबाही बहुत ज्यादा है, इसमें जम्मू के राजौरी और पुंछ इलाके हैं, लेकिन अब जेहलम भी जो है उबाल पे है। जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, अभी फ्लड डिक्लेरेशन मार्क जेहलम ने क्रॉस कर लिया है और अभी हालात ये है कि जैसे आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन जेहलम का अगर फ्लड की बात करें तो श्रीनगर में जो बारिश हो रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी कश्मीर में जो क्लाउड बस्ट होते हैं और बारिश होती है, वही पानी जो है जेहलम में आता है और फिर वही फ्लड ला सकता है। यही कहानी हमने 2014 में देखी और अभी जैसे आप देख सकते हैं कल से तकरीबन 2 से 3 फीट तक इसका पानी बढ़ा है।
15: भारी बारिश की वजह से बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। झेलम नदी भी खतरे के निशान पर पहुंच गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे से झेलम का पानी घट रहा है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
10: ईरान अमेरिका टकराव अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हमले और तेज किए जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और खाड़ी देशों में चेतावनी जारी कर चुका है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ट्रंप से अहम मुलाकात होने जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की अब निगाहें हैं।

0: भीषण बमबारी, तबाही भारी। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ बातचीत जारी। फिर तल्ख हुए अमेरिका ईरान, हॉर्मुज में भी घमासान। हर बीतते दिन के साथ अमेरिका और ईरान के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर रहा है। ताजा हमलों में उसने ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें बरसाईं। इनमें बंदर अब्बास, तेहरान और अहवाज जैसे शहर शामिल हैं। अहवाज खुजस्तान प्रांत की राजधानी है और ईरान के तेल उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। ईरान का दावा है कि अहवाज पर 40 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिका के इस हमले से ईरान के रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने पिछले 48 घंटों में ईरान के जिन शहरों में बमबारी की है उनमें बंदर अब्बास, जास्क, कोनारक, सुझा, ताफ्त, खोंडाब, खुर्रमाबाद, अहवाज, खुर्रम शहर, अनारक, फिरोजाबाद और उम्मीदिये शामिल हैं। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान को बख्शने के मूड में नहीं है। सीजफायर टूटने के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब अमेरिका की मिसाइलों ने ईरान में तबाही न मचाई हो। वॉशिंगटन में कल रात मीडिया ने इस युद्ध के बारे में जब उनसे सवाल किए तो उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, लेकिन लगता है कि तेहरान फिलहाल कोई डील करने के मूड में नहीं है।
1: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that's you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet, but they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys.
0: माना कि बातचीत चल रही है और मिसाइलों के बीच भी मुलाकात के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, लेकिन अगर कोई डील नहीं हुई तो आने वाले दिनों में क्या युद्ध और भीषण होगा। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वहां वह राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।

धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, कहा पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा जिम्मेदारी। अमित शाह बोले बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से अधिक देश अहम। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने खत्म किया आंदोलन। दीपके ने कहा लोकतंत्र की जीत, जंतर मंतर पर छात्रों का जश्न। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीठ, राहुल गांधी ने कहा सालों से शिक्षा व्यवस्था पर हमला, जितनी गलती मोदी की संघ की भी उतनी ही। अखिलेश बोले सरकार को झुकना ही था। पटना में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव गिरफ्तार, गांधी मैदान में छात्रों के प्रदर्शन में हुए थे शामिल, सीजेएम कोर्ट में पेशी भी हुई। गुजरात में बाढ़ से बिगड़े हालात, नवसारी और सूरत में बुरा हाल, अब तक 56 लोगों की मौत, असम में भी 61 की गई जान। पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर 50 दिन से जारी छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। सरकार ने छात्रों की सारी शर्तें मान ली है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन अब सवाल उस मुद्दे का है जिसकी वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ। क्या पेपर लीक अब रुकेंगे? क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की हिम्मत अब कोई नहीं करेगा?

0: की मांग कॉकरोच पार्टी का अनशन, राहुल गांधी की जिद विपक्ष का प्रदर्शन, आखिरकार शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट की। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए कुछ यूं लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। जंतर मंतर पर पिछले 50 दिनों से चल रहे ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के भारी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सौंपते ही कॉकरोच जनता पार्टी झूम उठी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: अतः से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा।
0: आज सरकार के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के तीसरे राउंड की बैठक थी।